0: उसके बारे में ही सोचते रहते हैं। आपने बताया कि पहले तो मैं ना तैयार नहीं हो रही थी माँ पार्वती की माँ, लेकिन जब सब विष्णु जी ने समझाया और नारद जी ने शिव को कहा कि आप अपने वास्तविक रूप में आइए, तो मैं ना हैरान हो गई थी उनकी सुंदरता देखकर। तब रत्नों से सुशोभित संसार के देवता को अपने सामने पाकर मैं ना अचंभित सी हो गई थी। तब शिव ने भी, फिर उन दोनों ने, शिव और माँ पार्वती ने अंदर विवाह मंडप में प्रवेश किया। शिव ने भी शिवा को देखा। तब सभी देवताओं ने जो थे माँ आदि शक्ति की देखकर, उनकी सुंदरता देखकर, अनुपम छटा देखकर, उनके सामने नतमस्तक होकर सबने प्रणाम किया। और गर्ग ऋषि ने हिमालय से कहा कि अब आप भगवान शिव को पाणी ग्रह के लिए अपने घर में ले आइए। अब उनका विवाह शुरू होने वाला था कि अब मंत्रोच्चारण से, विधि विधान से। तो अब लीना जी हमें बताइए कि हिमालय राज भगवान शिव को पाणी ग्रह संस्कार के लिए अपने घर में ले आए, अब वहाँ क्या हो रहा है वो हम सुनना चाहते हैं
1: जी। अब रुद्र संहिता के पार्वती खंड का,
0: हाँ जी,
1: 47वां अध्याय है। और इस 47वें अध्याय में हम देखते हैं कि आगे क्या होता है कि कहते हैं कि बारात तो अंदर आ गई, शिव जी अंदर आ गए, सभी बड़े खुश, इतना खूबसूरत दूल्हा, इतना अप्रतिम वर और इतने अद्वितीय पति शिव जी बनने वाले थे पार्वती के। और पार्वती भी अनिद्य सुंदरी थी, यानी कि जो सर्वांग सुंदरी कहा जाए, आदिशक्ति हैं, सारा सौंदर्य ब्रह्मांड का जिनमें समाया हुआ है वो आदिशक्ति हैं और सदाशिव हैं। तो ऐसे सुंदर वर वधु का मिलन होने जा रहा था इस विवाह मंडप में, विवाह संस्कार में, और बाराती जो बन रहे थे वो गदगद हो रहे थे, वो धन्य हो रहे थे। धन्यता तो थी ही, क्योंकि ये जिस परमेश्वर को पाने के लिए ऋषि मुनि कितने काल तक तपस्या करते रहते हैं, साधना रत रहते हैं, उपासना में रत रहते हैं, कोई एक पैर पर खड़े रहते हैं क्योंकि ध्यान से उनको देखा जाता है, कोई निर्विकल्प समाधि में, कोई सविकल्प समाधि में जाते हैं परमेश्वर, लेकिन नजर तो आए। और उन परमेश्वर की शादी है, उन परमेश्वरी का विवाह है। तो ये अद्भुत दृश्य देखने के लिए हर कोई व्याकुल है, हर कोई लालायित है कि आखिर यह मनोरम दृश्य उनकी आंखों से ओझल ना हो जाए। तो इसके लिए सभी एक टक नजर वहाँ डाले हुए हैं, निहार रहे हैं भगवान शिव की अप्रतिम छवि को और वधु की अप्रतिम छवि को। अब देखिए आगे क्या होता है कि सब जो है सब सुखपूर्वक शिव जी की सेवा करने लगे, तथा हिमालय ने अनेक प्रकार की संपत्तियों से उन सबका सम्मान किया जो बाराती थे। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, ततः शैल वरह सो अपि प्रीत्या दुर्गो पवीतकम कार्यामा सोत्साहम वेद मंत्र ही शिवस्य च अथ विष्णु वादयो देवा मुनय सकुतूहलम हिमाचल प्रार्थनया विवेशांतर गृहम गिरे श्रुत्याचारम भवाचारम विधाय च यथार्थत शिवामलंकृता कृताम चक्रुः शिवदत्त विभूषण प्रथमम स्नापयित्वा ताम भूषयित्वात् सर्वसः। अब क्या कहते हैं ब्रह्मा जी कि तब हिमालय ने उत्साह पूर्वक दुर्गा और शिव जी का उपनयन संस्कार वैदिक मंत्रों द्वारा करवाया। ब्रह्मा जी ने कहा कि गर्ग मुनि ने क्या किया, दोनों का उपनयन संस्कार करवाया
0: गर्ग मुनि ने,
1: और पार्वती को दुर्गा शब्द से ही संबोधित किया जा रहा है, क्योंकि पार्वती ही दुर्गा है, दुर्गा ही पार्वती है। अब कहते हैं कि फिर विष्णु आदि देवता और मुनिजन गिरिराज हिमालय की प्रार्थना को सुनकर कुतूहल के साथ प्रवेश किए, वेदाचार और लोकाचार को यथोचित विधि से करके शिवजी द्वारा दिए गए आभूषणों से शिवा को विभूषित किया। पहले उसे स्नान कराया, फिर ब्राह्मणों की स्त्रियों तथा सखियों ने उनकी आरती की, दो नए वस्त्रों को उसे पहनाया जिससे जिनसे वह सुशोभित हुई। उस समय वह हिमालय की कन्या शंकर की पत्नी शोभित हुई। हिमालय की कन्या थी लेकिन शंकर से उनका विवाह हो रहा था तो वो उससे सुशोभित हुई। वीरराज महाशैल दुहिता शंकर प्रिया कंचुकी परमा दिव्या नाना रत्नान्विता अद्भुता विधृता च तया देव्या विलसंती अधिकम मुने सा बभार तदाहारम दिव्य रत्न समन्वितम वलयानी महारानी शुद्ध चामी करानी च स्थिता तत्रैव सुभगा ध्यायन्ती मनसा शिवम सुशुभे अति महाशैल कन्यका त्रिजगत प्रसु। अब कहते हैं कि उस समय उसने अनेक रत्न जटित सुंदर कंचुकी को धारण किया, उससे वह अधिक सुशोभित हुई। उसके बाद उसने दिव्य रत्न जटित हार को धारण किया और बहुमूल्य शुद्ध सोने की चूड़ियों को भी उसने धारण किया। वह सौभाग्यवती गिरिराज पुत्री तीनों लोकों की माता मन से शिव जी का ध्यान करती हुई वहीं बैठी हुई शोभित हो रही थी। उस समय दोनों ओर आनंददायक उत्सव मनाया जा रहा था। ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिए गए जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। उस समय औरों को भी दान दिया गया। उत्सव के साथ गीत वाद्य भी वहां हो रहा था। फिर मैं यानी ब्रह्मा जी विष्णु आदि देवता तथा मुनिजन सभी प्रसन्न होकर उत्सव मनाने लगे। भक्ति से शिवा को प्रणाम कर और शिव जी के चरण कमलों का ध्यान कर हिमालय की आज्ञा पाकर अपने अपने स्थान पर बैठ गए। इस बीच वहां ज्योतिष शास्त्र के पंडित गर्ग मुनि ने गिरिराज हिमालय से कहा। अब गर्ग मुनि जो है वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पानी ग्रहण संस्कार के लिए शिव जी को ले आइए। अब सभी उठ गए और वेद मंत्रों के साथ बाजे बजने लगे। प्रसन्न होकर आपस में कहने लगे, शिव जी को लेने के लिए संभवतः पर्वत आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हम सब के बड़े भाग्य से पानी ग्रहण का समय आ गया है। और सभी हिमालय के घर पहुंच गए थे। कहते हैं कि काली जो है वो कौन है, पार्वती। पार्वती ही दुर्गा है, पार्वती ही काली है। कहते हैं काली के प्राप्त होने की इच्छा से शंभु अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि हर जन्म में काली किनकी बनती है, भगवान शिव की। और यद्यपि माता पार्वती जब शिव से विलग होती है तो सब कुछ भूल जाती है। जीवात्मा रूप में जब इस संसार में आती हैं तो सब कुछ भूल जाती हैं, सब कुछ नए सिरे से उनका होता है, लेकिन अंदर में परमेश्वर के प्रति इतना प्रेम भरा हुआ है कि वो प्रेम खत्म नहीं होता। और जिस तरह से बारिश के समय में सूखी हुई दूब हरी हो जाती है, ठीक उसी तरह से भावनाएं समय पाकर के हरी हो जाती हैं। कि पार्वती और शिव का पहला साक्षात्कार जब होता है तो पार्वती अपने शिव को कहीं ना कहीं से पहचान लेती हैं और फिर उनके अंदर प्रेम का अंकुरण होता है। चाहे वो जिस किसी भी रूप में आए इस धरती पर, लेकिन अंततः भगवान शिव को वो पहचान ही लेती हैं। यानी जीवात्मा परमात्मा की सहचरी है और जीवात्मा हमेशा परमात्मा को ढूंढती रहती है, और इस ढूंढने के क्रम में जो उत्सुकता जो प्रेम उनके अंदर जागृत होता है वही वैराग्य का भी रूप धारण करता है, क्योंकि परमात्मा को वैराग्य से ही वो पा सकती है। प्रेम में वैराग्य ये होना पार्वती से कोई सीखे। वैराग्य मतलब कि संसार से उन्होंने अपने आप को खींच लिया और जोड़ दिया किससे, भगवान शिव से। संसार को माइनस कर दिया, शिव जी को प्लस कर दिया। शिव का अनुराग जिनके रग रग में बह रहा हो, शिव के प्रति पुलकन है, शिव के प्रति ही उनकी धड़कनें धड़कती हैं, शिव ही जिनकी सांसों में बसे हुए हैं, शिव ही जिनके रोम रोम में हैं, वो है पार्वती, वो है काली, वो है दुर्गा। तो कहते हैं कि दोनों जो है सुंदर सुंदर वस्त्र पहने हुए थे और महोत्सव मन रहा था। ब्रह्मा विष्णु महेश सब आगे चल रहे थे। उस महोत्सव में शंख भेड़िया नगारे बड़े ढोल गोमुख आदि बार बार बजाए जा रहे थे। गायक मंगल गान गा रहे थे, स्त्रियां अनेक प्रकार से नृत्य कर रही थीं। इन सब के साथ संसार के एकमात्र हितकर्ता परम शक्ति से संपन्न होकर उस समय समस्त देवों द्वारा प्रसन्नता से सेवित तथा फूलों की वर्षा को स्वीकार करते हुए वहां गए। अब देखिए यहाँ दिया है स्त्रियां उस समय नृत्य कर रही थी, यानी कि केवल आज के समय स्त्रियां नृत्य नहीं करती थी, उस समय भी स्त्रियां नृत्य कर रही थी। बीच में ये नृत्य आदि सब खत्म हो चुका था, लेकिन अब सब कुछ हो रहा है कि बारात के साथ साथ स्त्रियां भी जाती थी और अब भी जा रही हैं, और नृत्य गान सब जगह होता है। अब कहते हैं कि बड़े सम्मान के साथ शिव जी ने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया, बारात के साथ आए यज्ञ मंडप में उन्होंने प्रवेश किया, वहाँ उनकी अनेक प्रकार से स्तुति की गई। अब कहते हैं आगे कि वृषाद दुतार तारयामास सुमहेशम पर्वतोत्तम निन्यूड गुहांतरम प्रीत्या महोत्सव पुरः सरम हिमालयो अपि संप्राप्तम सदेवगण मिश्वरम प्रणम्य विधि बद भक्त्या नीराजनम अथागरोत। नीराजनम मतलब आरती। कहते हैं कि पर्वत श्रेष्ठों ने उन्हें बैल से उतारा और महान उत्सव तथा प्रेम के साथ उन्हें घर के भीतर ले गए। देवताओं के साथ अपने घर में आए हुए शिव जी को हिमालय ने भक्ति से विधिवत प्रणाम किया और उनकी आरती उतारी। सभी देवताओं मुनि आदि को प्रणाम कर बड़े उत्साह के साथ अपने भाग्य की प्रशंसा करते हुए हिमालय ने उन सब का सम्मान किया। वह हिमालय विष्णु शिव आदि प्रमुख देवताओं को अर्धपाद्य द्वारा सम्मानित कर अपने घर के भीतर ले गया और उसने ब्रह्मा विष्णु शिव आदि प्रमुख देवताओं को आंगन में रत्न सिंहासनों पर बैठाया, क्योंकि राजा का घर था भाई, रत्न सिंहासनों की कमी नहीं थी, तो उन रत्न सिंहासनों को उसने विशिष्ट अतिथियों के लिए रखा हुआ था, वो थे ब्रह्मा विष्णु महेश। अब कहते हैं कि मीना ने, उसकी सखियों ने, ब्राह्मणियों ने तथा सौभाग्यवती स्त्रियों ने प्रसन्नता से उनकी आरती। कर्मकांड के ज्ञाता पुरोहित ने शिव जी के हाथ से मधुपर्क आदि कृत्य विधिवत करवाए। हे मुनि, मैंने पुरोहित को प्रस्ताव के अनुसार मंगल कार्य करने की प्रेरणा दी, उसने भी तदनुसार सब किया। हिमालय ने अत्यंत प्रेम के साथ घर के भीतर प्रवेश कर वहाँ समस्त आभूषणों से विभूषित वेदी के ऊपर बैठी वह कृशोदरी पार्वती सुशोभित हो रही थी। मेरे और विष्णु के साथ शिव जी को वहाँ ले आए। कन्यादान के योग्य लग्न की प्रतीक्षा करते हुए बृहस्पति आदि देवता वहाँ आनंदित हो रहे थे। खूबसूरत वर्णन है। और देखिए जो विवाह आजकल करवाया जा रहा है, ऐसा लगता है कि सतयुग में जो शिव पार्वती का विवाह हुआ था वहीं से सब कुछ लिया,
0: वही विधि विधान,
1: वही विधि
0: मंत्रोच्चारण द्वारा,
1: वही मंत्रोच्चारण है, वही सब कुछ है, और उसी के अनुसार दंपति में जो कहा जाता है कि सर्वश्रेष्ठ दंपति शिव और पार्वती को ही कहा जाता है। हमेशा वामांगी बन करके पार्वती उनके साथ रहती है, शिव पार्वती को नहीं छोड़ते, पार्वती शिव को नहीं छोड़ती है, चाहे जन्म जन्मांतर क्यों नहीं पार्वती के हो जाए, लेकिन पार्वती हमेशा शिव की ही होती है और शिव हमेशा पार्वती को कहीं ना कहीं से ढूंढ ही निकालते हैं।
0: और ये भी तो एक बात देखिए लीना जी कि विवाह के मंत्रोच्चारण के लिए, विधि विधान के लिए, सारे संस्कार के लिए एक विद्वान पंडितों को ही चुना जाता है
1: जी,
0: जिन्हें ये सारे सब कुछ विद्या आती हो। कोई छोटे मोटे या थोड़ी सी उच्च श्रृंखल से विद्या वाले पंडित को विवाह के लिए नहीं चुना जाता। तो ये पहले से ही परंपरा चली आ रही है कि गर्गाचार्य ऋषि, गर्ग के जैसे महाऋषि जो वहाँ पे मंत्रोच्चारण हो रहा है और उनको पाणी ग्रहण संस्कार करा रहे हैं, तो उसी परंपरा को आज भी ये यहाँ पर चल रही है हमारे समाज में कि विद्वान ब्राह्मणों को ही चुना जाता है जो विधि विधान से और उचित मंत्रोच्चारण द्वारा पूरी तरह से विवाह को संपन्न करा सके और उसके पूरे वेदोचित जो हैं जितने भी मंत्र हैं उनका सही तरह से वहाँ पर पालन हो सके।
1: लेकिन आजकल क्या होता है कि रात्रि में सब कुछ होता है, रात में लोग नाच गा करके थक जाते हैं, थकने के बाद खाना पीना खाया, यानी कि बरवधु भी खा लेते हैं, प्रायः प्रायः सब खा पी लेते हैं, उसके बाद आराम करने का

0: समय आता है और उस समय विवाह होता है। विवाह जैसा शुभ कार्य उस समय होता है जिस समय सभी थक करके चूर हो जाते हैं, तो फिर विवाह हुआ कहाँ ठीक से। वेदोच्चारण जहाँ होता है वहाँ उसी समय कान में फूंक देते हैं कोई कि पंडित जी जरा जल्दी जल्दी करवा दो, उतना समय नहीं है। हर चीज़ के लिए समय है, फोटो खिंचाने के लिए समय है, बारात के स्वागत के लिए समय है, खान पान के लिए समय है, सब कुछ के लिए समय है, लेकिन विवाह के लिए समय नहीं होता। जबकि अगर पूर्ण विधि विधान के साथ विवाह कराया जाए तो 2-3 घंटे लग जाते हैं,
1: बड़े आराम से।
0: हाँ,
1: बड़े आराम से लग जाते हैं,
0: लेकिन ऐसा होता नहीं है।
1: इसीलिए आप याद करिए कि अभी भी, अभी पिछली पीढ़ी को लेकर चलते हैं, तभी भी 12 बजे के करीब जो है वो शुरू होते थे फेरे मंत्रोच्चारण के साथ में, और सुबह के 4-5 बजे तक जो है ख़त्म होता था विवाह का मंत्रोच्चारण। लेकिन अब क्या है कि 1 बजे तक, जैसा कि आपने बताया कि वो नाच गाना चलता रहता है, फ़ोटो सेशन चलते रहते हैं, और फिर उसके बाद में 2 बजे के करीब वो फिर शुरू होता है। तो उसमें क्या है कि पुत्र के और पुत्री के जो घर वाले हैं बस वही लगभग वही
0: हो जाते हैं।
1: हाँ, और आप ठीक कह रही हैं कि ये उनके कान में डाल दिया जाता है कि थोड़ा विवाह भाई जल्दी ख़त्म कर देना। अब 2 बजे वो बैठे हैं दूल्हा दुल्हन, या 2:30 बजे बैठे हैं, और 4 बजे फिर उनको ख़त्म करना पड़ेगा।
0: दुल्हन सो रही है, दूल्हा भी सो रहा है, नींद आती रहती है, प्राय नींद आती रहती है, स्वाभाविक है नींद आएगी। तो इसलिए सवेरे का टाइम जो होता था प्रातः काल का, उस समय जो विवाह होता था वो दैवी विवाह होता है,
1: क्योंकि एक
0: देवताओं का अनुग्रह बरसता है।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन इस समय पिशाच, प्रेत, राक्षस ये सब घूमते रहते हैं
1: ब्रह्म मुहूर्त में जब।
0: तो इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में जो विवाह होता था, विवाह कार्य होता था, वो सबसे अच्छा होता था। और ब्रह्म मुहूर्त नहीं
1: हुआ,
0: दिन में, दिन में फिर भी विवाह करिए वो भी अच्छा है, लेकिन 12 बजे रात के बाद तो भूत प्रेतों का टाइम होता, आनंददायक नहीं रहता, स्थिति आनंददायक नहीं होती है उस समय। हाँ, नींद तोड़ करके लोग आते हैं और कुछ देर बैठते भी हैं, लेकिन ज्यादातर जो है ये अरुचिकर होता है। और इस समय वेद मंत्र भी लोगों को कान में मधुर नहीं लगते हैं, तो इसलिए हम लोगों को इस विषय पर विचार करना चाहिए।
1: लीना जी, जैसे आजकल का ब्रह्म मुहूर्त जो है, जैसा कि कहा है, मैंने भी सुना है कि ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे से फिर 5 बजे तक का, और उससे ऊपर भी जा सकते हैं, वो सारा ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। तो उसे अवधि में, उसी काल में जो है विवाह संपन्न होना चाहिए, जैसा कि आप कह रही हैं।
0: लेकिन प्राय सुबह हो ही जाती है, वो तो हो गई, लेकिन रात की जो थकान रहती है वो उस ब्रह्म मुहूर्त को जो है आनंदित नहीं कर पाती। तो इसलिए इस विषय पर हमें विचार करना चाहिए आज के समय में। अब देखिए, जब शिव का विवाह हो रहा था तो सभी दिवस में गए थे और आनंद मग्न थे, उत्सव हो रहा था, ब्रह्मा विष्णु महेश सभी वहाँ पर विराजमान हैं, और पार्वती के साथ शिव जी का विवाह हो रहा है, और जितनी भी नागरिक स्त्रियाँ थी, नगर की वधुएँ थी, सब इन दोनों को देख देख करके क्या हो रहे थे, मगन हो रहे थे, विभोर हो रहे थे, आत्मविभोर हो रहे थे। कहते हैं कि जब गर्ग ऋषि जब बोलते हैं कि ये शिव जी को ले आइए, तो सब विभोर होकर के उनको देख रहे हैं। कहते हैं जहाँ घड़ी रखी थी वहीं गर्गाचार्य बैठे हुए थे, जैसे ही घड़ी समाप्त हुई वैसे ही ओम का उच्चारण किया, गर्गाचार्य ने पुण्य वचन कह करके अपने हाथ से पार्वती की अंजलि में अक्षत डाले, और उन अक्षतों को उसने शिव जी के ऊपर डाला। वधु ने वर का क्या किया, पूजन किया। दही अक्षत तथा कुशोदक द्वारा उस प्रसन्नचित सुमुखी पार्वती ने शिव जी की पूजा की, जिनको प्राप्त करने के लिए पहले शिवा ने कठोर तप किया था। पूजा के अवसर पर उन शिव जी को देखते हुए अत्यंत सुशोभित हो रही थी। हे मुनि, मैंने गर्ग आदि ऋषियों से कहा, लोक व्यवहार में तत्पर शिव जी शिवा की पूजा करें। अब ब्रह्मा जी कहते हैं कि शिव जी की पूजा तो शिवा ने कर दी, लेकिन शिव जी शिवा की पूजा करें। देखिए, उस समय भी ये चलन में था कि वर वधु की पूजा करे या वधु वर की पूजा करे, क्योंकि दोनों के अंदर एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव प्रदर्शित होता है इससे। और अगर हम मन से तन मन धन से एक दूसरे को सम्मान देते हैं तभी सम्मान मिलेगा, नहीं तो सम्मान नहीं मिलेगा। आजकल तो एक छत के नीचे रह कर के भी पति पत्नी में बातें नहीं होती हैं। कभी कभी तन मन मिलते हैं, आत्मा नहीं। तो तन मन और आत्मा ये तीनों मिल जाए तभी विकास है, मुक्ति है। अब कहते हैं कि इस प्रकार वे दोनों पार्वती परमेश्वर लौकिक रूप से परस्पर पूजा करते हुए सुशोभित हो रहे हैं। पार्वती और शिव जी एक दूसरे क्या कर रहे थे, उनकी पूजा कर रहे थे। तीनों लोकों की शोभा से सुशोभित एक दूसरे को देखने वाले उन दोनों की लक्ष्मी आदि स्त्रियों ने आरती उतारी। उसी प्रकार ब्राह्मणों की स्त्रियों और नागरिक स्त्रियों ने उनकी आरती की और शिव शिवा को देखती हुई बहुत प्रसन्न हुई। शिवांच संभुश्च विलोकयन्त्यो अपूर्वम मुदम ताह सकला महोत्सवम। ये अपूर्व मोद उन्हें होने लगा, आमोद प्रमोद में दोनों रम गए और इस तरह से दोनों का विवाह संपन्न हुआ। अब आगे देखिए क्या कहते हैं। रुद्र संहिता के पार्वती खंड का 48वां अध्याय अब शुरू हो रहा है। अभी विवाह जो है पूर्णतः संपन्न नहीं हुआ है, अभी दोनों एक दूसरे की पूजा कर रहे हैं। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, अब क्या कहते हैं। इसी समय गर्गाचार्य द्वारा प्रेरित हिमालय मेना के साथ कन्यादान करने के लिए तैयार हुए। अब कन्यादान भी हो रहा है, यानी कि जितनी विवाह परंपरा है
1: तभी से है,
0: वो उसी समय से है। पानी ग्रहण हो रहा है, द्वार पर पूजन हो रहा है वर का, फिर वर वधु दोनों का पूजन एक दूसरे लोग कर रहे हैं। अब पानी ग्रहण संस्कार हो रहा है, कन्यादान हो रहा है। तो अब कन्यादान में क्या है, कहते हैं सोने का घड़ा लेकर वस्त्र तथा आभूषणों से शोभित भाग्यवती मेना हिमालय के बाईं ओर आकर खड़ी हो गई। माँ बाप करते हैं कन्यादान, और कन्यादान जो होता है वो थोड़ा सा विवल भाव विवल कर देने वाला क्षण होता है, क्योंकि माता पिता यही सोचते हैं कि चलो अब तो हम कन्या को दान दे दिए और कन्या पराई हो गई। कन्यादान के पहले पराई नहीं होती है, कन्यादान करने के बाद पराई होती है, क्योंकि कन्यादान को सबसे अधिक शुभ माना गया है कि आपने कन्या का दान किया तो आप के जीवन में मंगल ही मंगल है, कि क्योंकि कन्या बहुत प्रिय होती है हर किसी को, हर माँ बाप को। पर सबसे प्रिय वस्तु का दान जिसने कर दिया,
1: सबसे बड़ा दान,
0: ये सबसे बड़ा दान
1: कहलाता है।
0: तो अब कहते हैं कि हिमालय के पास मेना आकर के खड़ी हो गई। पाद्यादि भी ततः शैला प्रहिष्ठ स्वपुरोहित तम वरम वर्यामास वस्त्र चंदन भूषणे ततो हिमाद्रिना प्रोक्ता द्विजा तिथ्या दीकर कीर्तने प्रयोगो भन्यताम तावद विस्मयम समय आगते। अब कहते हैं कि तब पुरोहित सहित हिमालय ने प्रसन्न होकर पाद्यादि तथा वस्त्र चंदन आभूषणों से उस वर का वरण किया। तब हिमालय ने ब्राह्मणों से तिथि आदि सहित समय के आने पर कन्यादान संकल्प पढ़ने के लिए कहा। यह सुनते ही उन ज्योतिषी ब्राह्मणों ने निश्चिंत होकर तिथि आदि का उच्चारण किया। शिव जी द्वारा हृदय से प्रेरित हिमालय ने सृष्टिकर्ता शिव जी से हंसते हुए कहा, हे शिव जी, अपना गोत्र प्रवर कुल नाम वेद तथा शास्त्र कहिए, देर मत कीजिए। क्यों हंस रहे थे हिमालय, क्योंकि वो तो जानते थे कि शिव जी का ना कोई कुल है ना कोई गोत्र है। तो हंसते हुए कहते हैं कि स्वगोत्रम कथ्यताम संभो प्रवरश्च कुलम तथा नाम वेदम तथा शाखाम माँ कार्षी समयात्ययम। अब ब्रह्मोवाच इत्याकर्ण्य वचस्तस्य हिमाद्रे शंकरः तदा सुमुखो विमुख सद्यो अपि असोच्य सोच्यताम गतः एवं विधः सुरवरैः मुनिः मुनिभिः तदानीं गंधर्व यक्ष गण सिद्ध गणैस्तथैव दृष्टो निरुत्तर मुखो भगवान महेशो अकार्षी सदाय मथ तत्र स नारद त्वम। अब कहते हैं कि ब्रह्मा जी कहते हैं कि हिमालय के इस वचन को सुनकर सुमुख शिव जी उदास हो गए, अशोचनीय होने पर भी चिंतित हो गए। इस प्रकार उस समय देवता मुनि सिद्ध गंधर्व तथा यक्षगणों ने भगवान शिव जी को चुप हुए देखा तो तुमने हे नारद उनकी सहायता की। हे नारद, ब्रह्म तत्व को जानने वाले तुमने शिव जी से प्रेरित होकर उस समय वीणा बजाई, तब बुद्धिमान गिरिराज ने हट के साथ तुम्हें रोका और उसके बाद ब्रह्मा विष्णु देवता मुनि आदि ने भी रोका। शिव जी की इच्छा से जब तुम रुके नहीं तब हिमालय ने तुमसे कहा वीणा मत बजाओ। हे पंडित देवर्षि, जब तुम्हें हट से उन्होंने रोका तब तुमने शिव जी का स्मरण कर उनसे कहा। अब क्या कहे नारद जी, सुनने लायक बात है। नारद जी ने कहा कि तुम ही मूढ़त्वम आपन्नो न जानासी च किंचन वाच्ये महेश विषय अतिव असी तुम बहिर्मुख त्वया पृष्टो हरह साक्षात गोत्र कथनम प्रति समय स्मित ददंत्य उपहास करम वचः अस्य गोत्रम कुलम नाम नैव जानन्ति पर्वत विष्णु ब्रह्मा देव अपि परेशान का कथा स्मृता। अब नारद जी कहते हैं कि तुम महान मूर्ख हो जो उनके कुल और गोत्र को पूछ रहे हो, तुम कुछ भी नहीं जानते। शिव जी के बारे में तुम सर्वथा अनभिज्ञ हो। तुमने शिव जी से पूछा कि तुम्हारा क्या गोत्र है, इस समय तो यह पूछना उपहास करना है। इनके गोत्र कुल नाम को तो हे पर्वत ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्मा विष्णु आदि भी नहीं जानते, दूसरों की तो बात ही क्या है। हे शैल, जिनके एक दिन में करोड़ों ब्रह्मा लय हो जाते हैं, एक दिन में करोड़ों ब्रह्मा लय हो जाते हैं, उन्हीं शिव जी को आज तुम काली के तपोबल से देख रहे हो। तुम शिव जी को जो साक्षात देख रहे हो वो काली का तपोबल था इसलिए देख रहे हो, बहुत तो सुंदर देख नहीं पाते।
1: बहुत सुंदर विवाह का वर्णन आपने सुनाया लीना जी, हम सब की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद
1: दोस्तों, अब समय इजाज़त नहीं दे रहा है कि मैं इस एपिसोड को आगे बढ़ाऊं, तो आप कृपया मुझे भी इजाज़त दीजिए और अगली बार पुनः अगले एपिसोड में हम यहीं पर मिलेंगे मानव रचना रेडियो स्टेशन 107.8 FM पर। फील गुड, फील लाइफ।

0: रेडियो मनोरंजन 107.8 एफएम पर नमस्कार, मैं हूँ प्रकाश के साथ और शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मबोध। और हर बार की तरह हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं बीके ज्योति जी और बीके प्रिया जी। चलिए इनसे इनका हाल चाल जानते हैं। गुड मॉर्निंग,
1: ओम शांति। गुड मॉर्निंग, ओम शांति। और आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है और उम्मीद करते हैं कि आप सब भी बहुत स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे।
0: आप भी अपनी शुभकामनाओं के लिए हमें मैसेज करें, हमसे कांटेक्ट करें। नंबर है 8010781078। हर हफ्ते हम चले आते हैं गीता के ज्ञान को लेकर के, जहां हम बहुत सारी बातें आप लोगों से करते हैं। गीता के ज्ञान में इतना सब कुछ है ना कि हमारी जिंदगी बदल जाएगी। आप सभी जानते हैं कि कई लोग जिन्हें हम देखते हैं वो ये कहते हैं कि गीता के ज्ञान ने हमारी पूरी जिंदगी को बदल करके रख दिया। तो चलिए अब अपनी जिंदगी को बदलते हैं, खास तौर पे वो लोग जिनके पास वक्त नहीं है, इतने बिजी हैं कि क्या बताएं। उनसे कुछ पूछ होते हैं कि यार हमारे पास वक्त नहीं है, हम कैसे कुछ नया करें। तो रेडियो मानसृष्णा 107.8 एफएम पर हमने शुरू किया गीता का ज्ञान प्रोग्राम है आत्मबोध, और इसमें आपको गीता के ज्ञान के बारे में पता चलेगा। और इन सब के जानकारी के लिए हमारे साथ बीके प्रिया जी और बीके ज्योति।

0: जो होते हैं। दूसरे अध्याय पर है हम लोग, जिसका नाम है ज्ञान योग। ज्ञान योग के बारे में काफी सारी डिटेल में बातें बताई बीके प्रिया जी और ज्योति जी ने, लेकिन इसमें एक और है लेसन जिसका नाम है आप आत्मा है। आत्मा के बारे में काफी अच्छे से यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए हम ज्योति जी और प्रिया जी से जानते हैं और बढ़ते हैं ज्योति जी की तरफ। ज्योति जी, ये जो है इसमें लिखा है आप आत्मा है, ये तो हमें पता है, लेकिन किस तरह से, मतलब किस तरह से एक्सप्लेन किया गया है, आप अपने तरीके से समझाएं सभी लिसनर्स को।
1: जैसा कि दूसरा अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन से बात कर रहे हैं, और अर्जुन क्योंकि विषाद में है, तो सबसे पहले खुद का ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि जब हम कमजोर हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम स्वयं को भूल जाते हैं। और श्रीमद् भगवद गीता का जो दूसरा अध्याय है वो पूरा ही अपनी सेल्फ रियलाइजेशन पर ही फोकस कर रहा है कि हम कौन है और हम क्या बन करके चल रहे हैं। तो इसमें एक बहुत सुंदर श्लोक के द्वारा भी कहा गया है, न जायते मृयते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूये अजो नित्या शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यामानि शरीरे। अर्थात है कि यह आत्मा किसी काल में न जन्मती है न मरती है, बल्कि यह अजन्मी नित्य सनातन और पुरातन है। मानव शरीर के मारे जाने के बाद भी आत्मा का अस्तित्व खत्म नहीं होता, वह अमर अमर अविनाशी है। अगर हम साधारण शब्दों में कहें तो आत्मा को कोई भी मार नहीं सकता है। प्रथम अध्याय में भी इस चीज को बहुत अच्छे से बताया गया है। और उसका जो स्वधर्म है, उसका स्वधर्म क्या है, वो श्री कृष्ण जो है, परमात्मा जो है, वो अर्जुन को बता रहे हैं। अर्थात हम सब आत्माओं को बता रहे हैं कि किसी भी, अगर हम स्वधर्म में टिक जाएं, अर्थात आत्मिक धर्म में टिक जाएं, तो कभी भी हम डरेंगे नहीं, भयभीत नहीं होंगे। तो वहाँ उनको वो क्षत्रिय धर्म याद दिलाते हैं कि क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर दूसरा कुछ कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। अर्थात इसमें ये बताया गया कि स्वतंत्र आत्मा किसी भी तरह के बंधन में बंधी हुई नहीं है, वो फ्री है, वो अपने डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि वो राजा है और ये शरीर की जो कर्म इंद्रियां हैं वो उसकी प्रजा है, उससे उसे कार्य करना है और उसके वशीभूत ना हो जाए। आज हम क्या हो गए हैं, बाहर की जगत की बात बाद में करें, लेकिन हम अपनी ही इंद्रियों के वशीभूत हो गए हैं।
0: बिल्कुल,
1: हमारी ही इंद्रियां, हमारी आंख जो चीज देखती है, जो चीज पसंद करती है, बस मन वही भाग रहा है। और ऐसे ही अगर देखें तो हमारे कान जिन बातों को सुनना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो कहीं प्रवचन होंगे या कोई आपकी गली के अंदर भी आप देखें कि कोई कहीं कथा हो रही है, तो लोग पूछेंगे कि क्या वहाँ से इनविटेशन आया है, बुलाया गया है, तो ही हम जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाते हैं। और कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा हो तो कहने की जरूरत ही नहीं है, वहाँ पे पहुँचे चले जाते हैं बिन बुलाए, जबकि हर कोई चाहता नहीं है कि कोई वो चीजें सुने। तो मतलब कहीं ना कहीं हमारी कान की इंद्रियों को रस मिलने लगा है उस नेगेटिव बात में, तो हम इंद्रियों के वशीभूत हो गए हैं और मन भी उसी में रमने लगा है। तो यहाँ पर इस अध्याय में बहुत अच्छे से क्लियर किया गया कि आत्मा का स्वधर्म क्या है। आत्मा इस शरीर में राजा है और आत्मा की तीन सूक्ष्म शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। अब मन के ये तीन तो शक्तियां हैं, लेकिन आत्मा अपने स्वधर्म कौन कौन से गुण है, उसके मूलभूत गुण अगर कहें, क्योंकि आत्मा को सतोगुणी कहा गया है, लेकिन धीरे धीरे धीरे धीरे डे बाय डे में आत्मा तमोगुणी बन गई है। तो सतोगुणी क्यों कहा गया, क्योंकि आत्मा के सात गुण है। अगर हम इसको एक फॉर्मूले के रूप में दें तो कहा जाता है KP² LHBP, अर्थात के फॉर नॉलेज, हमारी जो ज्ञान है उसके लिए, पी फॉर प्योरिटी, जो हमारी पवित्रता है, हरेक को पवित्र चाहिए, पवित्रता चाहिए, फिर पी फॉर, क्योंकि स्क्वायर है, पी फॉर पीस, एल फॉर लव, एच फॉर हैप्पीनेस, बी फॉर ब्लिस और लास्ट पी पावर। तो ये सात गुण आत्मा में निहित है, इन जब सातों गुणों को आत्मा महसूस करती है उस पूरे ही अपनी चरम सीमा पर होते हैं वो गुण प्रैक्टिकल रूप में, तो आत्मा सतोगुणी कहलाती है। अब हम सब देखें अगर तो मनुष्य के मन में बहुत सारे संकल्प चलते हैं, विकल्प चलते हैं, लेकिन उनको चाहिए क्या, कहीं ना कहीं इसी धुरी में जाकर के टिक जाते हैं। आज इस ज्ञान की भी अज्ञानता हो गई है। ज्ञान को हम सब सोचते हैं शायद किताबी ज्ञान, लेकिन अपने प्रकृति का ज्ञान, खुद का ज्ञान होना मानव वही संपूर्ण ज्ञान है। खुद के बारे में जानना, आज हमें दूसरे के मन में क्या चल रहा है वो तो हमें पता है,
2: खुद के मन में क्या है
1: वो नहीं पता है ना, उससे हम दूर हैं। तो मन की अपने आत्मा के स्वरूप का ज्ञान होना, अपनी प्रकृति का ज्ञान होना, इसको कहा गया ज्ञान। प्योरिटी अर्थात पवित्रता, जो पवित्रता हमारे मन में किसी के लिए भी दुर्भावना ना है उसको कहा गया प्योरिटी। और शांति, शांति की अगर बात करते हैं तो शांति जो है वो क्या चीज है, शांति के लिए लोग सोचते हैं चुप बैठ जाना, है ना। इसके लिए बहुत अच्छी कहानी सुनाई जाती है कि एक बार एक राज्य के अंदर ऐलान किया गया कि चित्र बनाना है शांति के ऊपर। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे चित्र बनाए, लेकिन उसमें से दो चित्र डिसाइड किए गए, दो चित्र चुनाव करके आए। एक चित्र था जिसके अंदर बहुत सारी प्रकृति थी, ग्रीनरी थी, और एक चित्र था, अगर आपको भी बोला जाए तो आप क्या इमेज कर सकते हैं शांति के रूप में, अगर आपको कहा जाए तो आप क्या समझते हैं, आप क्या चित्र ड्रॉ करेंगे?
2: मैं अगर बोलूँ तो पेड़ पौधे, झरना, सूरज, यही होता है।
1: बिल्कुल, उन्होंने भी एक एक पिक्चर तो यही ड्रॉ की कि जहाँ पे बहुत सुंदर प्रकृति नेचर दिखाया हुआ था, और दूसरी तरफ एक पिक्चर बनाई जहाँ बहुत तूफान आ रहा है, बहुत ज्यादा वहाँ पे विनाशकारी दृश्य है, लेकिन उस दृश्य के अंदर एक चिड़िया पेड़ पर बैठी हुई बड़े प्यार से अपने बच्चों को दाना खिला रही है। तो राजा के सामने जब गया तो फिर से कौन सा चित्र डिसाइड किया गया होगा, आप क्या समझते हैं, क्या वो नेचर आ रहा है या फिर वो चीज जहाँ बहुत तूफान आ रहे हैं, बहुत ज्यादा बवंडर है, विनाशकारी दृश्य है, लेकिन उसमें फिर भी एक चिड़िया और अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर रही है, किसको आप कहेंगे?
2: मेरे हिसाब से मैं समझ पा रही हूँ, जिसमें तूफान है और चिड़िया आराम से, क्योंकि चारों तरफ तूफान है लेकिन उसके अंदर शांति है, शांति से अपने बच्चों को।
1: तो यही चीज जो है वहाँ पे उसी चित्र को ही वहाँ पे भी डिसाइड किया गया और फाइनली लिया गया, और उस चित्र में से यही, तो ये चित्र हमें क्या दृश्य दिखा है कि जब विपरीत परिस्थितियाँ आती है तब भी हम स्टेबल रहे उसको कहा जाता है शांति। हमारा मन स्थिर रहे, हमारे अंदर हलचल ना हो, हम सिचुएशन को हैंडल करने की ताकत रखते हैं, उसको कहा गया शांति। तो वो शांति की ताकत हमारे सबके अंदर है, लेकिन हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही प्रेम है, प्रेम का आज जो मीनिंग हो गया है वो बहुत विकृत हो गया है, जबकि प्रेम कहते हैं ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, माना हर एक आत्मा से, हर एक प्रकृति की जीवों से, पंछियों से, हम पेड़ पौधों से समान भाव से प्यार करें, उसको कहा गया प्रेम। फिर आती है बात सुख की, तो जीवन में जब शांति आती है, प्रेम आता है, तो सुख की अनुभूति होने लग जाती है, और फिर लास्ट आनंद है, और आनंद का कोई विपरीत आक्षेप नहीं है, आनंद अपने आप में ही बहुत परफेक्शन के साथ है, उसको ब्लिस कहा गया, और इसका कोई विलोम शब्द नहीं, क्योंकि पवित्रता का फिर भी अपवित्रता है, शांति का शांति है, प्रेम का क्रोध है, लेकिन आनंद माना जो परमानंद की अनुभूति का है। और लास्ट है, जब ये सारी चीजें आ जाती है तो हम पावरफुल बन जाते हैं, क्योंकि आत्मा अपने सारे गुणों में परफेक्ट हो जाती है, और इसी चीज को इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि आप वो प्योर सोल हो, आप वो प्योर आत्मा हो जिसके अंदर ये सारे गुण समाये हुए हैं, ये मैं और मेरा, मेरा जो कह रहे हैं वो विनाशी है, वो खत्म होने वाला है, लेकिन जो मैं है इसमें चेतन सत्ता है, उसको अगर हम पहचानेंगे तो हम अपनी परफेक्शन में आ जाएंगे और अपने कर्म पर ध्यान देंगे।
2: बिल्कुल, और ये जितनी भी सारी चीजें आपने बताई हैं, इसको कहीं बाहर से कमाना नहीं है, किसी से अर्जित नहीं करना है, ये सारी अपने अंदर है, बस इसको जानना है, इसको समझना है, बाकी भगवान ने इनबिल्ट हमारे लिए। बिल्कुल सही कहा। हम दूसरों को जानने की कोशिश करते हैं, हम कभी खुद को जानने की कोशिश नहीं करते हैं। वही आपने बड़ी खूबसूरती से बताया कि अगर आप खुद को जान लेते हैं बस वही एक आत्मा का पाठ है, वही जो है पूरा परफेक्ट है आप खुद में। बहुत सही बात बोली। गीता के ज्ञान की हम बात कर रहे हैं और अध्याय दो है, नाम है ज्ञान योग, और इसमें हम चर्चा कर रहे हैं कि हम एक आत्मा है के बारे में। ज्योतिष ने बहुत खूबसूरती से बताया और अब हम प्रिया जी की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस अध्याय में आगे क्या है। प्रिया जी बताइए।
1: आगे जैसा कि हम देखते हैं कि अर्जुन को वो बार बार याद दिला रहे हैं, समझा रहे हैं परमात्मा कि तुम्हें युद्ध करना ही है, जिसके लिए वो कहते हैं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम चित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। अर्थात पार्थ अर्थात जो उनका स्टूडेंट अर्थात अर्जुन को उन्होंने कहा कि तुम चाहे मर करके स्वर्ग पहुंचो या फिर जीवित रहकर युद्ध करके इस पूरी सृष्टि पर जीत प्राप्त कर सुख को भोगो, तो इसीलिए तुम्हारा बेस्ट यही है कि तुम युद्ध करो। तो क्योंकि सिंपल कुछ किए बिना जाना और कुछ करके जाना उसमें बहुत फर्क होता है, तो यहाँ उनको वो बार बार याद दिलाते हैं कि आपको युद्ध करना है। और युद्ध करने में हम कॉन्शियस ये नहीं हुए कि कौन जीतेगा या हारेगा, हमें कॉन्शियस होना है कि हमारी फाइट अच्छे से हो। तो फिर बात यहाँ आती है, स्पिरिचुअलिटी ये कहती है कि क्या हमें फिजिकल फाइट के लिए परमात्मा प्रेर रहा है, हमें वो गाइडलाइंस दे रहा है कि शुड वी गेट द वेपन्स की हमें हथियार उठाने हैं। पर यहाँ पर परमात्मा हमें हमारे गुणों के हथियारों की बात करता है कि जहाँ मेरा मेंटल फाइट है, जहाँ द्वंद है, जहाँ मैं कंफ्यूज हूँ, जहाँ डिलेमा स्टार्ट होते हैं, वहाँ मैं अपने फोकस करूं इंटरनल शक्तियों पर। जैसा कि ज्योतिष ने बताया कि ये सब चीजें मेरे पास, मुझे परमात्मा से आपने कहा इनबिल्ट है, गॉड गिफ्ट है, तो उस पर अगर मैं फोकस करता हूं तो मेरी ये फाइट मेरे लिए बहुत इजी हो जाती है। और फाइट मुझे करनी ही है, बिना फाइट किए मैं आगे बढ़ नहीं सकता। इसी योग को जो आपने कहा ज्ञान योग अध्याय का नाम है, तो यहाँ पर परमात्मा हमको संपूर्ण ज्ञान का परिभाषा डेफिनेशन वो ये कहते हैं कि आत्मा का ज्ञान ही संपूर्ण ज्ञान है। मीन्स अगर मैं अपने आप को नहीं जानता, अपने अस्तित्व को नहीं जानता, तो मैं अगर पूरी दुनिया का पूरा ज्ञान भी अर्जित कर लेता हूँ तो भी मैं इनकम्प्लीट हूँ। और दैट्स व्हाई देखा ये गया है कि जब हम हायर लेवल पर किसी बुलंदी पर किसी को देखते हैं तो एंड ऑफ द डे वो ये फील करते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ रह गया है। और वो क्या रह गया है कि खुद को जाना और खुद के बाद खुदा को पाना। ये चीज जो हमारी जिंदगी में रह जाती है उसी के लिए हमारे को परमात्मा या कृष्ण रूप में हमारे को बता रहे हैं। उसके बाद वो हमारे को याद दिलाते हैं कि हमारा जो मन बुद्धि संस्कार, जैसे कि ज्योतिष जी ने कहा, तो मन जो है वो कई तरह के थॉट्स को क्रिएट करने की एक फैक्ट्री है। बस इस फैक्ट्री में प्रॉब्लम ये है कि वो अपने प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस तो कर रहा है, यानी थॉट्स क्रिएट कर रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि कौन सा माल आर का माल है, मीन्स रिजेक्टेड है। तो जिसमें बुद्धि हमको हेल्प करती है कि क्या रिजेक्टेड है, क्या सही है, क्या गलत है। जैसे मन नेगेटिव थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स, नेसेसरी, वेस्ट, टॉक्सिक, एलिवेटेड, राइट थॉट्स, बहुत तरह के थॉट्स करता है, और हमारे को बुद्धि गाइड करती है कि एलिवेटेड मीन्स ऐसे थॉट्स जिसमें हम सिर्फ दूसरों के लिए दुआएं करते हैं, ठीक है, जबकि उसी के बिल्कुल उलट हम देखते हैं कि टॉक्सिक थॉट्स, यानी जहां हम सिर्फ अपने लिए या दूसरों के लिए नुकसान की बातें सोचते हैं, मरने मारने की बातें करते हैं, जैसे कि सुसाइड करना, यानी वो व्यक्ति कितना ही टॉक्सिक थॉट्स में भरा हुआ होगा तो इसीलिए उसे टॉक्सिक थॉट्स कहते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो लास्ट आता है संस्कार। संस्कार एक रिकॉर्डिंग बॉक्स है, जैसे कि प्लेन्स में भी एक बॉक्स होता है जिसमें रिकॉर्ड किया जाता है सब कुछ, उसी प्रकार से आत्मा में अपने आप एक रिकॉर्डिंग बॉक्स है। और ये जानकर आपको हैरानी होगी कि कहते हैं कि मरने के बाद ऊपर धर्मराज और चित्रगुप्त बैठे हैं सबका हिसाब करने पर, नहीं, ये इंटरनली ही हम सोल्स के साथ ही फीड है, बिल्ट है, कि जो हमारा बुद्धि है अगर उसकी पिक्चर अगर आप देखते हो तो एक तराजू के फॉर्म में होती है, वो धर्मराज का फॉर्म है, और जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारा रिकॉर्डिंग पार्ट है, वो चित्रगुप्त है। और चित्रगुप्त को अगर हम उल्टा कर देते हैं दोनों शब्दों को, तो बनता है गुप्त चित्र। अर्थात हम क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, देख रहे हैं, सोच रहे हैं, वो गुप्त रीति हर चीज सेकंड बाय सेकंड रिकॉर्ड हो रही है।

0: कि यावनार्थ उत्पादे सर्वतः संलुप्ते दुत्के तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। अर्थात जब एक ब्राह्मण को परमात्मा प्राप्त होता है, यानी हम मनुष्य अगर परमात्मा के टू क्लोज या पूरी उसकी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, तो हमारे लिए दूसरे शास्त्रों के ऊपर डिपेंडेंसी उस तरीके से है जैसे कि मैं समुद्र के पास पहुंच गया और एक ग्लास में समुद्र का पानी लेकर खड़ा हूं, तो उस ग्लास की समुद्र के आगे खड़े होने पर कोई वैल्यू नहीं रहती। तो उसी प्रकार से परमात्मा को अगर मैंने पा लिया है तो वो शास्त्रों का वहां पर वैल्यू उस ग्लास के लेवल पे ही होता है कि जब शास्त्रों का ज्ञाता सागर मिल गया तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। फिर परमात्मा अर्जुन को ये याद दिलाते हैं, जैसे कहा कि आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा क्योंकि क्षेत्र में आना, कुरुक्षेत्र जैसे बताया कि कर्म क्षेत्र, आप चाहे किचन में है या बेड पे सो रहे हैं, देन टू आप कुछ तो कर ही रहे हैं। अगर आप सिर्फ थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं तो भले वो एक्शन नहीं है, कर नहीं है, पर वही कर्म को कराने का एक हिस्सा जरूर है। तो इसीलिए वो भी काउंट होते हैं। तो हम कर्म के बिना तो रह ही नहीं सकते हैं, ये पक्का है। इनफैक्ट हम सोते वक्त भी संकल्प कर रहे होते हैं, 4 to 5 थॉट्स हमारे चलते ही हैं। तो इसीलिए परमात्मा कहता है जब कर्म करो तो ऐसे करो जैसे कि बिल्कुल न्यूट्रल, जिसके लिए उन्होंने स्पेशल कहा कर्मण्य वालिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूर्माते संगोस्त्व अकर्मणे। अर्थात जब आप कर्म करते हैं, हम कर्म करें तो फल के कॉन्शियसनेस में रह करके ना करें, जो कि आज बिल्कुल ही उल्टा हो रहा है। हम टू मच कॉन्शियस अबाउट द रिजल्ट्स होते हैं और इस वजह से शायद हमारा जो पुरुषार्थ है, एफर्ट्स, वो हमारे को कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि हम डर चुके होते हैं मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, मेरा ये काम बनेगा या नहीं बनेगा। हम फुल्ली उसमें कॉन्फिडेंट ना होने की वजह से भी, शेकिंग रहने की वजह से रिजल्ट्स अच्छे नहीं होते हैं। और फिर लास्ट में जो उन्होंने कहा कि कर्म जो करना है वो एकदम ऐसे, जैसे कि एक छोटी सी स्टोरी है जिसमें कहा कि ब्राह्मण ने एक व्यक्ति को कहा कि कर्म कैसे, मतलब उन्होंने पूछा कि कर्म कैसे करे, तो उन्होंने कहा कल जब आना तो कटहल लाना, चाकू लाना और तेल लेके आना। व्यक्ति नहीं समझ पाया कि क्यों। तो फिर जब वो व्यक्ति अगले दिन पहुंचा तो बोला कि अब तुम कटहल को काटो। तो जब उन्होंने कटहल काटा तो कटहल में से उसका एक व्हाइट मिल्क निकलता है जो बहुत स्टिकी होता है, तो उनका हाथ चिपक जाता है, वो अच्छे से वो काम नहीं कर पाते, हाथ में भी प्रॉब्लम होती है। तो कहता अब ब्राह्मण कहता है कि अब आप हाथ धो लीजिए और हाथ धोने के पश्चात तेल लगा के कटहल काटिए। अब जब वो इस चीज को करता है तो अब वो इजीली कटहल को छीलता भी है, काटता भी है और सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लेता है। तो बोलता है बस आपको इसी तरीके से अपने जीवन में कर्म करने हैं कि कर्म हमको अपनी तरफ खींचते हैं, मिल्क की तरह वो चिपकते हैं हमारे हाथों से, यानी हमारे को कॉन्शियस कर देते हैं। लेकिन हम अगर तेल अर्थात परमात्मा की याद को उसमें घोलने लगा लें तो हम कर्म कॉन्शियस नहीं होंगे, फल कॉन्शियस नहीं होंगे और हम बहुत अच्छे से कर्म कर पाएंगे।
1: कितने अच्छे से प्रिया जी ने कहानी बताई समझाने के लिए, बहुत मजा भी आया और काफी कुछ हमें समझ में आया। और साथ ही हम तो प्रिया जी ज्योतिष से जुड़े हैं, साथ ही आपसे भी जुड़े हैं, आपका कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं ज्योति जी या प्रिया जी से, हमारा नंबर है 8010781078। गीता का ज्ञान चल रहा है, अध्याय 2 है जिसका नाम है ज्ञान योग, हम एक आत्मा है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। काफी सारी नॉलेज, काफी अच्छी बातें ज्योति जी और प्रिया जी से जानने को मिल रही है। और अब इस अध्याय में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और उस वक्त अगर आपके ध्यान में कोई सवाल है या कोई ऐसी शंका है जो आप क्लियर करना चाहते हैं, नंबर है 8010781078, आप इस पर मैसेज कर सकते हैं और अपनी बात आप हम तक पहुंचा सकते हैं, अपना सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं ज्योति जी के पास और इस अध्याय में भी हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आगे की जो कहानी है, आगे जो बातें
2: हैं वो हम ज्योतिष से जानते हैं। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम तैव कवता मनीषिणे जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ते अनामयम। अर्थात इसका भावार्थ कहते हैं कि समतव बुद्धि वाले, जो जिनकी बुद्धि के अंदर कभी हलचल नहीं आती, जिसको कहें एक रस अवस्था, तो ऐसी बुद्धि वाले ज्ञानी जन कर्म फल को त्याग कर, माना कर्मों से अतीत होकर, कर्म की चिंता ना करके निर्विकारी परम पद को

प्राप्त करते हैं। बात यह है कि कर्मों के फल की आसक्ति स्थिति को ऊपर नीचे ले आती है, क्योंकि जैसे ही हमें ये पता चलता है कि अभी क्या होने वाला है, हम ये सोचने लग जाते हैं पता नहीं इसका क्या बेनिफिट होगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, तो हम कहीं ना कहीं उसमें हमारी स्थिति ऊपर नीचे होती है। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, वो अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति में स्थित होकर जीवन में रहते हैं, मुक्ति की अवस्था को प्राप्त कर देते हैं, जिसे कहा जाता है कर्मातीत स्थिति। इसमें दूसरा जो श्लोक कहा गया उसमें स्थित प्रगस्य का शब्द का यूज किया गया है। तो उसमें अर्जुन पूछते हैं कि हे केशव, परमात्मा से कहते हैं कि हे केशव, ये बताओ कि स्थिर प्रग, जो स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति हैं, उनके क्या लक्षण है, किसको कहेंगे हम जो स्थिर बुद्धि वाले हैं, जो एक रस स्थिति वाले हैं, जिनकी कर्मातीत अवस्था पहुंच गई है जिनकी, तो उनकी क्या क्या विचारधारा होगी। तो वहां श्री भगवान बोलते हैं कि अर्जुन, सभी कामनाओं का त्याग कर, जो व्यक्ति त्याग कर देता है और आत्मा से हमारा आत्मिक रूप में संतुष्ट हो जाता है, वो स्थिर प्रज्ञा है। तो वहां पे माना, क्योंकि हमारी जो दुख का कारण है वो कामनाएं है, जहाँ कामनाएं आएंगी और वो कामनाओं का एक भय आ जाता है, उसी कामनाओं की इच्छाओं में जब हम फंस जाते हैं तो वहां ना तो, और मनुष्य जो स्थिर प्रग होता है उसकी कोई भी तरह की कामना नहीं रखते, वो किसी प्रकार की लालसा नहीं रखेगा। इसको अगर हम सिंपल वे में बोले तो जो स्थिर प्रज्ञ व्यक्ति होता है उसके मन के अंदर, इसको आज की भाषा में कहें तो मन शांत, अर्थात मन में लगाए आइस फैक्ट्री, मुख में लगाए शुगर फैक्ट्री, अर्थात मिठास होगी उसके मुख में, दिल में लव फैक्ट्री, अर्थात सबके लिए प्यार होगा, तो जीवन उसका सेटिस्फैक्ट्री बन जाएगा, मन संतुष्ट हो जाएगा। तो ये तीनों चीजें मन की स्थिरता को शो करती है, हमारी वाणी में मिठास हो, हमारे मन में स्थिरता हो, शांति हो, और हमारे दिल में सबके प्रति एक समान भाव हो, तो कोई भी परिस्थिति आने पर हमारी स्थिति ऊपर नीचे नहीं होगी। और उसमें जो आगे चीजें बताई गई हैं कि जो व्यक्ति सहनशील है वही सुख दुख में समान अनुभव करता है उसका किसी भी व्यक्ति, क्योंकि जब हम शरीर से जुड़े हुए होते हैं तो शरीर की चीजों के प्रति हमारी आसक्तियां जागती हैं, और जब शरीर की चीजों के प्रति, देह की चीजों के प्रति आसक्ति जाग रही है तो हमारी खुद की स्थिति डाउनलोड हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ड्राफ्ट ड्रेस लेने जा रहे हैं और ड्रेस आप लेकर के आते हैं, लेकिन वो ड्रेस आपने अपनी पसंद से ली, आपने पहनी भी, लेकिन वो आपको कंफर्ट नहीं हो रही है तो आप उसमें कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे, चाहे वो दिखने में कितनी भी अच्छी है। इसी विधि से जब हम कोई चीज आकर्षण में तो आकर्षित हो जाते हैं, देह को देख रही है चीजें उसमें आकर्षित, लेकिन जब हम उसको अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो वो चीज हमारे लिए सुटेबल नहीं होती है, तो वो हमारे दुख का कारण हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे जो मन की स्थिति, एक बार एक व्यापारी थे और उनको, हीरो के व्यापारी थे, तो उनके एक व्यक्ति ने आकर के कहा कि आप जो है एक बहुत अमूल्य हीरा खो गया है। तो बैठे थे अपने सभी, कई साथ में साथी बैठे थे, वो दो मिनट के लिए कहा अच्छा ठीक है और आंख बंद की और शांत हो गए। थोड़ी देर के बाद फिर थोड़ी देर बाद फिर खबर मिली कि वो हीरा मिल गया है। उन्होंने फिर अपनी आंखें बंद की और एकदम शांत मुद्रा में बोले, बोला ठीक है। तो जितने भी साथी बैठे थे उन्होंने ये कहा कि एकदम से आप शांत हो गए, अगर शायद हम वहां हों प्रैक्टिकली सोच के देखें तो हम कितनी जल्दी अपनी स्थिति को हिला लेंगे, हम फटाफट किया, अरे इतना मुझे हिला हो गया, कहां खो गया। लेकिन जो सहनशील व्यक्ति है, जो स्थिर प्रज्ञ है, जिसकी बुद्धि स्थिर है, वहां पे वो शांत है। यही चीज उन्होंने पूछा भी, व्यापारी से भी जब पूछा तो वहां पे पूछने के बाद उन व्यापारियों ने बताया, व्यापारी ने उनको बताया कि मैं कुछ पलों के लिए चेक कर रहा था अपने मन की स्थिति को कि मेरे मन की स्थिति तो नहीं मिली, क्योंकि वो बहुत अमूल्य है, उस हीरे से भी अमूल्य,
मेरी मन की स्थिति है। तो जो स्थिर प्रज्ञ स्थिर बुद्धि व्यक्ति होते हैं वो अपने मन की स्थिति पर ध्यान देते हैं, वो किसी भी तरह के भय में आकर के भयभीत नहीं होते हैं, किसी भय से उनकी स्थिति पर प्रभाव नहीं आता है। आज अकई चीजों का भय लोगों को सता रहा है, अंधकार का भय है, चीजों को खोने का भय है, कहीं ना कहीं मृत्यु का भय है, तो ऐसी बहुत सारी चीजों से व्यक्ति भयभीत है और उसके निर्णय गलत हो जाते हैं। और फिर क्रोधी व्यक्ति जो होता है वो भी मन को स्थिर नहीं कर पाता है, क्योंकि क्रोध जो है वो अपने आप में थोड़े समय के लिए आया हुआ कहा जाता है पागलपन है जो बहुत कुछ विनाश कर देता है। तो यहाँ पर कहा भी गया एक बार एक बहुत सुंदर दृष्टांत दिया जाता है कि आदि शंकराचार्य जी थे और उनका एक व्यक्ति के साथ शास्त्रार्थ हो रहा था, मंडन मिश्र थे, उस शास्त्रार्थ के अंदर उनकी ही पत्नी निर्णायक के रूप में बैठी थी मंडन मिश्र की, और उस चीज में बहुत देर से शास्त्रार्थ चल रहा था और ये निर्णय नहीं लिया जा रहा था कि जीता कौन है। तो कुछ समय के लिए उनकी पत्नी को वहां से उठ के जाना पड़ा और उन्होंने उनके गले में दोनों के गले में फूलों की माला डाल दी, और फूलों की माला डाली तो उन्होंने कहा कि जब तक मैं नहीं आती हूँ तब तक ये फूल ये जो मालाएं हैं ये मेरी जगह लेकर के कार्य करेंगे। तो जब वो आई काफी देर के बाद और पूरी शास्त्रार्थ कंप्लीट हुआ तो उन्होंने बोला कि ये चीज, फिर उन्होंने निर्णय भी दिया, उन्होंने कहा आदि शंकराचार्य विजयी हैं। तो सबने पूछा उसकी आपने तो इस बीच में आप थे भी नहीं तो आपने कैसे निर्णय ले लिया, तो कहा कि इस शास्त्रार्थ के मध्य में मेरे जो पति हैं मंडन मिश्र जी हैं उनको क्रोध आया है और शंकराचार्य जी के फूलों की माला अभी तक ताजा है और जो उनके पति ने डाली हुई थी गले में वो मुरझा गए थे। कहा जब शास्त्रार्थ के मध्य में इनको जो क्रोध आया उस क्रोध ने ये निर्णय दिया है कि ये जो है क्रोध

0: मन की स्थिरता रखता है तो उसके अंदर किसी भी राग भय या क्रोध से वो मुक्त होता है, उसका उन चीजों की बुद्धि पर उसका प्रभाव नहीं आएगा। और इसका बहुत सुंदर जो एग्जांपल दिया गया है वो है कछुए की तरह हमें बनना है। कछुआ जो है वो कर्म क्षेत्र पर जब निकलता है तो वो अपनी इंद्रियों को फैला लेता है, और जैसे ही वो कछुआ अपना कार्य पूरा कर लेता है तो अपनी इंद्रियों को उस कवच के अंदर समेट लेता है। बाहर चाहे कितनी आंधी तूफान आ रहा हो, लोग चिल्ला रहे हो, लेकिन उसकी स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं होता जब तक कि वो खुद ना चाहे। इसी विधि से हमें भी अपने जीवन को ऐसा ही बनाना है कि जब हम चाहेंगे, जब मैं आत्मा अपने शरीर के द्वारा जिस कार्य को करना चाहूं उस समय ही मैं एक्टिव मोड में हूं। अदरवाइज मैं अपनी शांत स्थिति में, अपनी संपूर्ण स्थिति में अपने अंदर आनंद का अनुभव करें। और यही चीजें आप देखते जाएंगे, जो जो लोग ज्ञान को समझने लग जाते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, या जिन्होंने अपने जीवन के अंदर बहुत सी परिस्थितियां देखी भी है लेकिन बहुत बखूबी उनको निभाया है, तो वो धीरे धीरे बहुत काम डाउन हो जाते हैं और उनकी स्थिति एकदम शांत हो जाती है। और यही चीज श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय हमें देता है। लेकिन ये चीजें तब होंगी जब हम आत्मिक स्थिति में टिक जाएंगे। तो आत्मिक स्थिति में टिकने के लिए और स्थिर प्रज्ञ बनने के लिए, अर्थात अपने मन को स्थिर रखने के लिए, इन सारी चीजों से हमें पहले जरूरत है खुद खुद को रियलाइज करने की।
1: जी, और वही ना, जैसे आपने कहा कि अगर कुछ सीखना है तो उससे पहले जो आप हैं आपको बदलना पड़ेगा
0: जी।
1: आपको खुद को पहले समझना पड़ेगा आप क्या चाहते हैं, आप अपनी आत्मा को समझना पड़ेगा। जब आप खुद को समझ पाएंगे तभी आप उस आगे बढ़ते हुए ज्ञान को समझ पाएंगे, आप ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। समय के करीब आ रहे हैं, मतलब हम जाने के करीब आ रहे हैं, लेकिन बातें जो है वो खत्म नहीं हो रही है। एक बहुत ही प्यारा सा श्लोक ज्योति जी आपके सामने इसके बारे में सारी चीजें बताने वाली हूँ, और अध्याय दूसरा है ज्ञान योग है। इसमें बहुत सारे श्लोक और उसके जो भावार्थ प्रिया जी और ज्योति जी ने बताए हैं बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने हम तक पहुँचाए। और ज्योति जी के पास चलते हैं। ज्योति जी, अब आप जल्दी से इसके आगे के बारे में बताएं।
0: जैसा कि प्रिया जी ने बताया कि जब हम किसी एक चीज को बार बार फोकस करते हैं तो उसी आधार पे हमारी बुद्धि वैसे ही चलने लगती है। तो अगला जो श्लोक श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो नु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर नामम इवाम भस्सी। माना, अर्थात इसका अर्थ है कि जिस प्रकार नाव पानी में नाव तैरती है और नाव के प्रचंड वायु दूर बहाकर ले जाती है अगर बहुत तेज वायु चल रही है, तो इसी प्रकार जब विचारशील मन व्यक्ति होता है तो उसकी इंद्रियों पर, मतलब जो इंद्रियां हैं, अगर वो किसी एक चीज पर फोकस्ड हो गई है, बार बार उसी चीज को देख रही है, वही इंद्रिय एक ही चीज पर उसका ध्यान केंद्रित है, तो उसके वो प्रभाव में बहता चला जाता है और उसकी बुद्धि का नाश हो जाता है और वो विषय विकारों में फंस जाती है। भावार्थ ये है कि तूफानों में भटकते हुए भी जो अपने मन बुद्धि को स्थिर कर दे, मन बुद्धि को एकाग्र कर ले, उसको कहा जाएगा कि वो स्थिर प्रज्ञ है। क्योंकि यहाँ इस पूरे ही इसमें आत्मा का और स्थिति की ही बात की जा रही है। माना, कहने का अभिप्राय अगर हम इसको देखें, सिंपल वे में देखें, तो जो राजा की पोजीशन है वो राजा की पोजीशन एक है कि आपने पहन लिया, मुकुट पहन लिया, ड्रेस पहन ली और वो सारी चीजें आप रेडी होकर के सिंहासन पर बैठे, वो राजा नहीं है। राजा माना जिसके अंदर वो राजापन की क्वालिटीज हो, जो उसके लिए जरूरी नहीं कि हमें वो पोशाक ही पहननी है, जरूरी नहीं है हमें सर पर ताज ही लेना है, लेकिन वो राजा वाली जो डिसीजन वाली क्वालिटीज है वो चीज हमारे अंदर होनी चाहिए। और आज वही राजा जो आत्मा शरीर का राजा है, इंद्रियां उसकी कर्मचारी है, आज उसी राजा ने इंद्रियों की अधीनता ले ली। इसीलिए आज हम जो राज्य जिसको कहा गया स्वराज्य, उस स्थिति से हम बहुत दूर हो गए हैं और उसके लिए हमें चाहिए कि हम अपनी थोड़ी सी दिनचर्या पर फोकस करें। कहा जाता है, इसमें बहुत अच्छी एक श्लोक में कहा भी गया है कि या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। अर्थात संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि है वह आत्म संयमी के लिए जागने का समय है। माना जब लोग सो रहे हैं, सोने का मतलब ये नहीं कि रात्रि में, आज के समय में अगर आप देखें आज की जो सिचुएशन चल रही है, आज 3 बजे से लोगों को नींद आनी शुरू होती है, पूरी रात वो जागते रहते हैं, 3 बजे से उनकी नींद का समय शुरू होता है। और जो ज्ञानी होगा आत्म संयमी होगा वो उसके जागने का समय है। यहाँ रात्रि की बात उस 3 बजे के समय से कही गई है, 3:30 के टाइम से कही गई है, 4 बजे जिसको ब्रह्म मुहूर्त भी कहा गया है। तो अगर मुझे सेल्फ रियलाइजेशन करनी है, मुझे अपनी आत्मा अपनी आत्म स्वरूप में टिकना है और अपनी स्थिति को भरपूर बनाना है, उसके लिए सबसे अच्छा समय दिया गया अमृत वेले का। उस समय हम अपने आप को चेक कर सकते हैं क्योंकि उस समय हमारे पास कोई वर्कलोड नहीं है और हम डिसीजन ले सकते हैं कि मुझे आज पूरे दिन में हम अपना शेड्यूल बना सकते हैं, हम परमात्मा के साथ कनेक्ट होकर के, हम नेचर से कनेक्ट होकर के उस पीस को फील कर सकते हैं, लेकिन वो टाइम हम सोने में गवा लेते हैं। इसीलिए आज हम आत्म संयमी के बजाय हम कहीं ना कहीं दैहिक वृत्तियों में फंसते जा रहे हैं। और ये पूरा ही पाठ जो है हमें यही सिखाता है कि हमें अपने तन के जो तन का भान है उसको हमें भूलना है और आत्मिक स्थिति में आत्मा को राजा की सीट पर बैठाकर डिसीजन लेने हैं। तो वो व्यक्ति ही अपने गुणों को जान पाएगा, अपने आप को जान पाएगा और अपनी वीकनेसेस के ऊपर कंट्रोल कर पाएगा।
1: जी बहुत खूब कहा ज्योति जी ने। और इसी के साथ अब जो हमारा अध्याय है वो खत्म हो चुका है, यानी जो सेकंड अध्याय है वो खत्म हो गया है और अब हम बढ़ेंगे थर्ड अध्याय की तरफ जिसका नाम है कर्म योग। तो इससे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कर्म के बारे में बात होगी और ये सारी हम बातें करने के लिए अगले हफ्ते आएंगे। तो अभी सलाह दीजिए हमें इजाजत, हम जाते हैं, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप बाकी प्रोग्राम को एंजॉय करें और बने रहिए रेडियो मधुकृष्णा 107.8 एफएम पर। नमस्कार।
2: समुद्र के किनारे होते देखो जो बार बार हमारे करीब आकर जैसे कह रही हूं कि आओ हमारे कंधों पर बैठ जाओ ताकि हम तुम्हारे देश तुम्हारे घर ही चले। और मैं ऐसे कह रहा हूं कि सिर्फ 2 दिन और बेचारे बाप ने हमारे लिए किश्त तैयार करवाई है जिसे हम हमारे कंधों पर रखकर नाचते कूदते अपने घर चले जाएंगे।
3: और मैं
2: ये
3: कह रही हूँ भगवान ने हमें जन्म दिया है, नहीं धरती लाया घर दिया है, हम क्यों ना प्यार में घुसूं अपने सारे जन्म की जिंदगी गुजार दें जहां से हमें कोई अलग ना कर सके।
2: हमें कोई अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं।
3: तुम उस कमी दीवान को नहीं जानते भारत, और मेरे सीधे सादे पिताजी को भी नहीं जानते। वहां पहुंचते ही जबरदस्ती मेरी शादी दीवान से कर दी जाएगी।
2: ऐसा कभी नहीं हो सकता ज्वाला, मेरी जिंदगी कोई मुझसे छीन नहीं सकता।
3: तो फिर एक वादा करो,
2: मेरी जान मांग लो जान मेरी।
3: सिर्फ इतना वादा कि अपने देश पहुंचने के बाद तुम मुझे एक पल भी अपने से जुदा नहीं करोगे, इतना याद रखोगे कि राजकुमारी चंद्रलेखा मर चुकी है और तुम्हारी ज्वाला जिंदा है सिर्फ तुम्हारे लिए।
2: चला, ये मेरा वादा है।

0: नमस्कार एंड वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी ओम शांति।
1: आज बहुत सारी एवेन्यूज ओपन है, बाय द वे हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम चल रहा है, देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो बच्चे आज कर रहे हैं जो उनके पेरेंट्स को नहीं पता है, एंड दैट्स अनहेल्दी। इससे ज्यादा ये अच्छा है कि मैं आपको बता कर करूँ, इवन इफ यू आर नॉट रेडी फॉर इट। लेकिन जहाँ मुझे बार बार आपसे रेजिस्टेंस मिलेगा, आप नहीं बताएंगे, तो हाउ डिफिकल्ट फॉर मी इज इट टुडे टू लीव द हाउस वेयरिंग अ सलवार कमीज एंड जस्ट चेंज समवेयर एल्स। आपको क्या पता चलेगा? नथिंग। एंड मेजॉरिटी चिल्ड्रन आर डूइंग दैट। हाउ डिफिकल्ट इज इट कि बोलो कि मैं स्कूल जा रही हूँ और चले कोई मूवी जा। चिल्ड्रन आर डूइंग
0: दैट। आई थिंक इट्स हैपनिंग एवरी डे।
1: कितनी बार आप मूवी में चले जाओ, आप शॉपिंग मॉल में चले जाओ, बच्चे हैं वहाँ पे, क्या कर रहे हैं वो वहाँ पे?
0: यूनिफॉर्म्स में साफ दिखता है कि आप वो कहाँ से आ रहे हैं। डेफिनेटली।
1: तो जहाँ रेजिस्टेंस मिला, हमने अपना तरीका अपने आप ढूंढ लिया। अब जब हमने अपना तरीका अपने आप ढूंढ लिया, तब तो बहुत कुछ और हो सकता है जो पेरेंट को पता भी नहीं चलेगा। आज पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं, आज पेरेंट्स को पता ही नहीं है वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ दैट रेजिस्टेंस, एनर्जी ब्लॉकेज थी। अगर हमने उनको एक्सेप्ट कर लिया होता, तो वो उनको ये पता होता कि हम जो भी कर रहे हैं, वी कैन टेल आवर पेरेंट्स। हर पेरेंट आजकल ये पूछता है कि हम ऐसा क्या करें जिससे हमारे बच्चे हमारे को हर बात बता दें। दे वॉन्ट दैट। लेकिन उसके लिए फिर हर बात सुनना की पोटेंशियल तो होनी चाहिए ना। जैसे वो अपनी बात शेयर करेगा, बोलेगी यू रॉन्ग, ये रॉन्ग, ये रॉन्ग, तो बच्चा बोलेगा ठीक है, देन आई एम नॉट टेलिंग यू। सो अगर मुझे ये पता होगा कि आप मेरी, आई कैन कम एंड टेल यू सबसे अजीब चीज एंड यू विल स्टिल एक्सेप्ट, तो मैं आपके साथ हर बात आकर शेयर करूंगी। लेकिन अगर मुझे पता है कि हर छोटी छोटी बात पर आप बोलोगे ये गलत है, तुम छोटे हो, तुम्हें नहीं पता कैसी है दुनिया आउटसाइड, तो मुझे पता है दुनिया कैसी आउटसाइड। आई फाइंड माई वे एंड आई डू इट माई वे। तो ये जो बैरियर होता है, ये बहुत ज्यादा हमने ही क्रिएट किया होता है, क्योंकि बचपन से एक्चुअली बच्चे को आदत होती है अपने पेरेंट्स से हर बात शेयर करने। तो हमने बचपन में उनकी बातें सुनते गए, अगर वो संस्कार इतना स्ट्रांग होता है कि वो बड़े होकर भी शेयर करेंगे, लेकिन वो शेयर करना कब बंद करते हैं? आई हैव टू आस्क
0: मायसेल्फ। यस, वेरी ट्रू।
1: क्योंकि बहुत बार पेरेंट्स कहते हैं अब बच्चे मेरे से बात नहीं करते हैं, वो हर वाली जो पहले वाली करते हैं, अब बच्चे छुपाते हैं कुछ बातें। आई हैव टू आस्क मायसेल्फ। बहुत इजी है बोलना कि दे आर रॉन्ग, अब वो छुपाते हैं बातें। क्यों क्यों जरूरत पड़ी छुपाने की? क्योंकि उनको एक्सेप्टेंस नहीं मिला। बहुत सारे परिवारों में है, बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ एक बहुत ब्यूटीफुल रिलेशनशिप शेयर करते हैं, लेकिन हमेशा देखा जाता है कि उसका फाउंडेशन यही था, एक्सेप्टेंस। फिर जब वो शेयर करते हैं, तो फिर वो एक दूसरे की बात को एक्सेप्ट भी करते हैं, स्वीकार भी करते हैं, लेकिन शेयर करना ही बंद हो जाएगा, तो फिर तो बहुत ज्यादा दूरी आ जाएगी।
0: वंडरफुल। सो लेट बी एक्चुअली अगर हम,
1: इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपना डिसिप्लिनिंग कर रहे हैं, आप अपना रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन उसको एक कंट्रोलर की तरह नहीं, एक गाइड की तरह। एक गाइड गाइड करता है, लेकिन फिर उसके बाद थोड़ा सा उसको साक्षी होना ही पड़ता है। तो औरों की स्क्रिप्ट लिखना बंद करके अपनी स्क्रिप्ट लिखें, और बहुत ज्यादा लोगों की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करें। और अगर कोई हमें बुलाता है इंटरफेयर करने के लिए, यू नो पीपल ने साथ शेयर करते अपनी सारी बात, तो शेयर करें विदाउट गेटिंग इन्वॉल्व्ड इन दैट। तो उससे क्या होगा, हम उनको जो वो पूछ रहे हैं वो तो बता देंगे, लेकिन बहुत ज्यादा अगेन कंट्रोल नहीं करेंगे। नहीं, फिर आप मैंने जो बताया आप उस अनुसार करें, नहीं। लेट पीपल बी द वे दे वांट टू बी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो लेट बी शुड ऑलवेज बी इन माय माइंड कि जहां भी मैं किसी को कंट्रोल करने की कोशिश करूँ, स्टॉप, लेट देम बी, दे विल फाइंड देयर वे। यू नो इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज टू अंडरस्टैंड कि हर आत्मा अपनी रास्ता ढूंढ लेती है। हर आत्मा, हम ही सोचते हैं कि नहीं, हम जल्दी से उसको उस रास्ते पर ले जाए, वो पॉसिबल नहीं होता। एंड वेरी इम्पोर्टेंट जो है वो है एक्सेप्ट एवरीथिंग। जहाँ रेजिस्टेंस आ जाता है, अगेन इट्स वेरी वेल कनेक्टेड, लेकिन जहाँ रेजिस्टेंस आता है, तो जिसके भी प्रति या जिस सिचुएशन के प्रति मेरे अंदर रेजिस्टेंस होता है, तो मैं एक्चुअली उसको और शक्तिशाली बना देती हूँ। जैसे हम कहते हैं ना, और जिद्दी होते
0: हैं। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल।
1: उनके अंदर वो आदत और कड़क होती जाती है, तो वो रेजिस्टेंस। और फिर यहाँ रेजिस्टेंस, हम बहुत बार बाहर से एक्सेप्ट कर लेते हैं कहने के लिए, लेकिन अंदर रेजिस्टेंस है। तो ये रेजिस्टेंस सामने वाले को या सिचुएशन को और भी एम्पावर करता जाता है। तो वी नीड टू रिमूव दैट एंड एक्सेप्ट एवरीथिंग एज इट इज, क्योंकि हर चीज जो हो रही है वो परफेक्ट
0: फॉर दैट टाइम, फॉर दैट मिनट, फॉर दैट पूरा पर्सपेक्टिव में वो सही है।
1: तो उस क्षण में उसको एक्सेप्ट करें, अगले क्षण में फिर उसको जिस तरह से चेंज करना है वो कर सकते हैं. तो बी क्वाइट, लेट गो, लेट बी, एक्सेप्ट एवरीथिंग. एंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है पास ऑन. हमें जो कुछ मिलता है उसको हम पकड़ कर रख लेते हैं. हमें जो कुछ मिला है वो मिला है पास ऑन करने के लिए. जिन लोगों को भी हम सारा दिन में मिलते हैं, शेयर विद देम एवरीथिंग, अपनी नॉलेज, अपने स्किल्स, अपनी क्वालिटीज, हर चीज शेयर करें.
2: क्वालिटीज वो जो हम सचमुच में समझ चुके हैं अपनी, जो कि हर दूसरी आत्मा में भी.
1: अब तो क्वालिटीज तो बहुत सेकेंडरी बात हो जाती है, इवन नॉलेज एंड स्किल्स शेयर करने में हमें थोड़ा सा, क्योंकि हम कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में चलते हैं, तो हमें ये नहीं समझ में आता कि जो हमारे पास है अगर हम उसको पास ऑन नहीं करेंगे तो हमारे पास नया कहाँ से आएगा. हम बस उतने को ही लेकर पकड़ कर रख लेते हैं. जैसे एक नदी को हम देखते जो ऊपर से बहती हुई जाकर नीचे सागर में जाकर मिल जाती है. यू जस्ट हैव टू सी द जर्नी ऑफ द रिवर, क्योंकि माय लाइफ इज लाइक दैट जर्नी.
2: इट विल फ्लो, एक्चुअली यू नो एवरीथिंग हैज टू फ्लो,
1: एवरीथिंग हैज टू फ्लो. अब वो रिवर क्या करता है, जब वो नीचे फ्लो कर रहा है, एक तो वो अपनी यात्रा अपने आप कर रहा है, इट फाइंड्स इट्स वे. बीच में कितने ऑब्स्टिकल्स आते हैं, वो अपना रास्ता ढूंढता जाता है. वो जो नदी है, जो पानी की लहर जो फ्लो कर रही है, वो कितने सारे क्रीचर्स के लिए घर भी बन जाती है, कितने सारे उसके अंदर रहते हैं. लेकिन उस रिवर का जो सबसे इम्पोर्टेंट पर्पस है वो क्या,
2: जीवन.
1: किसको?
2: जीवन दायिनी मनुष्य को.
1: आपसे देख ले, सिर्फ मनुष्य को नहीं, उसकी यात्रा में जो कुछ आता है
2: उसको जीवन देते.
1: एक फूल, एक पत्ता, एक टहनी, एक जानवर, एक पशु, एक पक्षी, एंड ह्यूमन बींग. उसकी ऊपर से लेकर नीचे तक उसकी यात्रा में एवरीथिंग, एवरी लिविंग बीइंग जो आता है, इट नरिशेस दैट लिविंग बीइंग. दैट्स द जर्नी ऑफ द
2: लाइफ. वाओ, ब्यूटीफुल, दैट्स नाइस.
1: दैट्स माय जर्नी. मैं भी तो उसी तरह हूँ. आई एम फाइंडिंग माय वे, इट्स ओके. देयर आर ऑब्स्टिकल्स, आई एम फाइंडिंग माय वे. आई हैव गिवन शेल्टर टू अ फ्यू क्रिएचर्स, दैट्स आल्सो ओके. बट व्हाट इज माय मेन पर्पस इन लाइफ, बिकॉज What's my purpose in life? ये बहुत लोगों का question है. मेरे जीवन का लक्ष्य क्या? और वो समझते हैं कि कोई और उनको बता पाएगा कि what's my purpose in life? Purpose in life is कि you're flowing, stagnant water नहीं बन जाओ जो एक जगह रुक जाता है. Flow करो, और आपके flow होने में, आपके contact में जो भी आता है,
2: nourish.
1: और nourish करना अर्थात जो मेरे पास है वो सबको, क्योंकि जैसे ही उनके साथ शेयर किया उनको भी एम्पावरमेंट मिल जाते. इमेजिन गोइंग टुमारो मॉर्निंग टू वर्क विद दिस फीलिंग, देन वर्क इज नो लॉन्गर वर्क. एक है मुझे काम करने जाना है, पैसे कमाना है, घर
2: और वहाँ सफोकेट होना है, वहाँ पता नहीं क्या क्या होगा, क्या नहीं होगा.
1: एक है मुझे कल जाना है अपने जीवन के पर्पस को पूरा करने के लिए, और वो ये है कि कल सारा दिन में जितने लोग मुझे मिलेंगे उनको नरिश करना,
2: give them happiness, you know?
1: Yeah. ये मेरी responsibility है. तो imagine how the day will pass, and then I'm sharing and giving without expecting. At the end of the day मुझे कैसा लगेगा? Do I have to think satisfaction क्या होती है, contentment क्या होती है,
2: stress management क्या होती है? I think stress has gone somewhere up, you know. It's like in this whole conversation, I think हाँ, मुझे लगता है कि हमारे दर्शक भी जरूर इस बात को अनुभव कर पा रहे होंगे कि इस पूरी बातचीत में stress कहीं दिखा ही नहीं, कहीं था ही.
1: Stress के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बात करनी थी. Stress. This is more the solution. ये solution है, because a lot of people go to work very unwillingly. I have to go to work.
2: Work is a stress. इतनी बार ये कहा जाता है कि my work area is a stress area. The most stressing part of my life is my work.
1: तो हमारे जीवन का लक्ष्य, हर एक के जीवन का लक्ष्य ये है, एनर्जी एक्सचेंज विद एवरीबडी आई मीट. अब मेरा ये लक्ष्य होना चाहिए कि ये एनर्जी एक्सचेंज बहुत ब्यूटीफुल होना चाहिए. अब उसमें कई लोग बोलते हैं मैं तो देता हूँ अच्छी वाली, लेकिन औरों से मुझे नेगेटिव
2: मिलता है.
1: स्टॉप, माई रूल इज ओनली टू.
2: Wonderful, you know, we can always remember whenever we want कि हमें मिलना चाहिए. We can always remember this. ये उदाहरण, example को अगर हम याद कर लें, याद आए कर रहे हो, you know,
1: flow,
2: I am nourishing.
1: Flow, and just flow and pass on. क्योंकि आप flow करते करते कितनी चीजों को pass on करते जाएंगे, वो अपने आप nourish होते जाएंगे.
2: At times we stay.
1: रुका हुआ पानी रुका हुआ पानी कैसे हो जाता है।
2: कई बार अपने साथ लोग कई को ले चलते हैं, देखें भी फ्लैट हो गए
1: तो वो आपकी यात्रा का हिस्सा है, लेकिन हर एक को नरिश करें ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसको अगर हम अपने जीवन का लक्ष्य बना लेते हैं तो हमारी जीवन बहुत सुंदर हो जाती है, क्योंकि हर एक को नरिश करते करते वो नरिशमेंट तो
2: हमसे हो गई।
1: आई फील ब्यूटीफुल
2: एंड दैट रिवर इज हेल्दी रिवर व्हेन इट इज नरिशिंग एंड इट्स नॉट डाइंग, इट्स फ्लोइंग।
1: हीलिंग हो जाएगी उससे, कितनी हीलिंग। और थोड़ी देर के बाद साइलेंस में जब हम बैठते तो अपने इस अंदर की आवाज़ को ज़रूर सुने। कई बार हमें कुछ कर्म करने से पहले ऐसे लगता है कि आई थिंक समथिंग इज टेलिंग मी दिस इज रॉन्ग, लेकिन मैं कर देती हूँ, क्योंकि अगर मैं उस आवाज़ को सुनती हूँ तो वो मुझे उस टेम्प्ररी चीज़ों से जो मुझे अट्रैक्ट कर रही है, चाहे वो कोई डिपेंडेंसी है, चाहे वो कोई अटैचमेंट है, चाहे वो कोई एडिक्शन है, वो मुझे उससे दूर लेकर जा रही है। मुझे अंदर पता होता है कि लेकिन उस आवाज़ को सुनना मतलब इस टेम्प्ररी जो हैप्पीनेस की जो हमने चीज़ें ढूंढी हुई है इनसे दूर जाना। अब मैं इसको आवाज़ को अनसुना कर देती हूँ और उस तरफ चले जाती हूँ। ये जो बार बार अपने अंदर की जो आवाज़ आती है, क्योंकि विजडम इज ऑल इनसाइड, तो ये जब अंदर की आवाज़ आती है और हम इसको इग्नोर करते रहते हैं तो ये भी एक दिन
2: बात करना बंद कर देते हैं।
1: तो आई हैव टू बी वेरी केयरफुल कि साइलेंस में बैठकर वही लाइब्रेरी वाला सीन वापस क्रिएट करके एक्सटर्नल नॉइज को ख़त्म करके जो भी अपने पास कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, जैसे हम दूसरों को पूछने जाते हैं वैसे अपने आप के लिए वो क्वेश्चन छोड़ दो। तुरंत आंसर नहीं एक्सपेक्ट करो, बट आई शुड बी इन साइलेंस। साइलेंस में जाके क्वेश्चन वहाँ छोड़ दो, आंसर विल बी देयर बिकॉज द आंसर इज ऑलरेडी हियर। तो इसको हम कहते हैं लिसनिंग इनसाइड, कीप लिसनिंग टू द ट्यूटर इनसाइड इन ट्यूशन। अब हमें समझना चाहिए कि मेरी आंतरिक जो अंदर का विवेक है उसने वो आंसर दिया है वो मुझे, दैट्स गुड फॉर मी एंड आई शुड फॉलो दैट। तो बी क्वाइट, लेट गो, लेट बी, एक्सेप्ट एवरीथिंग, पास ऑन टू एवरीवन एज़ दे कम एंड लिसन इनसाइड। सिंपल सिंपल थिंग्स सुनने में इमीडिएटली लग रहा होगा नहीं सिंपल नहीं बहुत डिफिकल्ट, तो नहीं सिंपल सिंपल।
2: हाँ, और हर बार की तरह
1: डूइंग
2: हर बार की तरह हम एक्सपेरिमेंटेशन करके अपने अनुभव के आधार पर फिर हम इसको देखें कि कहाँ तक हम पहुँच पाते हैं। बट यस, अपना अनुभव मुझे फिर ये कह रहा है कि ये बिल्कुल सही बैठेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस स्ट्रेस से हम जिंदगी को भरा हुआ है वो कहीं उड़ जाएगा। इन दिनों हम बात कर रहे हैं एंगर की, वो गुस्सा जिसे हम जायज मान लेते थे, लगता था कि हमें कहीं ना कहीं शक्ति दे रहा है, अगर हम गुस्सा नहीं करेंगे तो हमारे काम नहीं निकलेंगे। लेकिन इस पूरी बातचीत में ये बात सामने आती है कि गुस्सा एक वो डिस्टर्बेंस है, वो इमोशन है जो कहीं ना कहीं हमें खुशी नहीं देता है, और उसका एटीट्यूड या वो फीलिंग जो उसको कम कर सकती है, उसको दूर कर सकती है, वो है पीस, शांति। लेकिन क्या है शांति? क्या जिसे हम शांति मानते हैं कहीं हम उससे बहुत इतने शांत तो नहीं हो जाएंगे कि हमारा एनर्जी लेवल ही कम हो जाएगा? ऐसी कई बातें अभी भी आपके मन में होंगी, मेरे पास भी ऐसे कई सवाल हैं। तो आज एक बार फिर ये सफ़र शुरू करते हैं, और हर बार की तरह इस सफ़र के हम सफ़र हमारे साथ हैं ब्रावा कुमारी, सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
2: सिस्टर शिवानी, पिछले दिनों हमने खूब गुस्से को खंगारा है, खूब अच्छी तरह से देखा है कि क्या क्या वो बातें हैं, क्या क्या वो चीज़ें हैं जो गुस्से को जनरेट करती हैं, और क्या कुछ हमारे अंदर होता है। लेकिन एक बार फिर हर बार की तरह एक रिकैप करते हैं और गुस्से के उन स्टेप्स के से दोबारा गुजर लेते हैं जो जब शुरू होता है पूरा प्रोसेस और कहाँ तक पहुँचता है।
1: सबसे पहले तो ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट होगा कि गुस्सा है क्या। गुस्सा एक इमोशनल डिस्टर्बेंस है हमारी कॉन्शियसनेस में, जो क्रिएट तब होता जब वो नहीं होता जो हमें चाहिए, या वो हो जाता जो हमें नहीं चाहिए। मतलब परिस्थितियाँ और लोग जब हमारे कंट्रोल से बाहर और हमारे कहे अनुसार नहीं चलते तो वो डिस्टर्बेंस हमारे अंदर क्रिएट होता है। और जनरली क्योंकि हम परिस्थिति और लोगों को उसका जिम्मेवार ठहरा देते हैं तो वी आर एबल टू जस्टिफाई आर एंगर कि वो गलत थे तो मुझे गुस्सा आया। तो आज दिन तक हमने अपने गुस्से को जस्टिफाई करते गए और इसीलिए परिवर्तन करने की आवश्यकता भी नहीं समझी कि ये सही है, दूसरे लोग बिगड़ जाएंगे अगर हम गुस्सा नहीं करेंगे, और उनकी है ही गलती तो मेरा गुस्सा करना जायज है। बट व्हाट वी डिडंट रियलाइज इज दैट एवरी टाइम वी आर इन्फ्लिक्टिंग सो मच ऑफ पेन ऑन आवरसेल्व्स। तो गुस्सा बार बार करना या कहें एक बार भी करना सारे दिन में, तो ये अपना ही नुकसान है, दूसरे का कम लेकिन अपना बहुत ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि यहाँ जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होते वो यहाँ पर भी उसका प्रभाव पड़ता और फिर पूरे शरीर पर भी पड़ता। सबसे इम्पोर्टेंट है ये रियलाइज करना कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है, इसको मैंने जनरेट किया और इसको मैं फिनिश कर सकती हूँ। तो उसको सबसे पहले उसको ओवरकम करने के लिए हम एक अवेयरनेस में चलते हैं कि जब थोड़ा सा भी अंदर चिड़चिड़ापन की फीलिंग आए, थोड़ा सा भी कहीं कुछ मेरे कहे अनुसार नहीं चल रहा, एंड आई कैन सी ओके आई एम नॉट लाइकिंग इट, यू नो मी नॉट लाइकिंग इट इज माय फर्स्ट स्टेज ऑफ इरिटेशन। इरिटेशन थोड़ा सा अंदर आना शुरू हो गया तो उसी टाइम फर्स्ट स्टेज है अवेयरनेस, जागृता कि मेरे अंदर क्या क्रिएट हो रहा है। तो अपनी क्रिएशन की शुरुआत में ही उसकी अवेयरनेस होती है। और दूसरा एक्नॉलेज करना कि यस आई एम क्रिएटिंग दिस, आपकी वजह से नहीं ये हो रहा है, आप भले जो बोल रहे हैं बोल रहे हैं, लेकिन ये मेरी अपनी क्रिएशन है, इसको मैं क्रिएट कर रही हूँ, और ये इसको एक्सेप्ट करना कि हाँ मुझे आ रहा है, उसके साथ युद्ध नहीं करना कि क्यों आ रहा है, आई विल हैव टू एक्सेप्ट इट क्योंकि मुझे अब उसको फिनिश करना है। तो एक्सेप्ट कर लेना कि हाँ मुझे थोड़ा थोड़ा सा आ रहा है और ये मेरी अपनी क्रिएशन है, लेकिन ये मेरे अपने हाथ में है। तो अवेयरनेस क्रिएट की, एक्नॉलेज किया कि हाँ ये आ रहा है, एक्सेप्ट किया कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है, और फिर उससे डिटैच हो जाए, अपने आप उस गुस्से के थॉट्स को देखना शुरू कर दे,
2: watch it
1: and see it. तो what happens कि एक है कि जैसे ही हम अपनी कॉन्शियसनेस की जो एनर्जी है उसको वहां से हटा देते हैं, और वहां से हटाकर उस थॉट्स को देखना शुरू करते हैं, तो जैसे ही हम वो एनर्जी को हटाते हैं वो जो इमोशन है वो फिनिश हो जाती है। अभी क्या है, हम उस इमोशन को एनर्जी देते हैं,
2: फ्यूल करते रहते हैं ना, वी ऑलवेज से दैट उसने हमारे एंगर को फ्यूल किया, बट आई थिंक इट्स आवर एनर्जी।
1: जैसे एक छोटा बच्चा होता है, अगर आप वो मस्ती कर रहे हो और आप भी उसके साथ मस्ती करो तो दोनों मस्ती कर रहे हैं, लेकिन अगर आप दूर से खड़े होकर उसको देखना शुरू कर दो तो वो कॉन्शियस हो जाता है और वो जो कर रहा था वो उसको छोड़ देता है। तो कॉन्शियसनेस की एनर्जी को उस थॉट से हटा के देखना शुरू करते हैं, वो इमोशन फिनिश हो जाती है। अभी हम क्या करते थे, उसको एनर्जी देते, क्यों बोला, ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, अगली बार मैं ये देखूंगी, सो वी आर गिविंग एनर्जी टू दैट इमोशन, it builds up more and more and it can stay with me till a very very long time. So usse detach ho jayenge and then come back to my stage, the center ki main kaun, om shanti, ye bhi agar yaad rahe to it means main ek shant swarup atma hu. So I come back to my stage that I am a peaceful being. The awareness, acknowledge, accept ke ha aa raha hai, फिर उसे डिटैच हो जाए और देन कम बैक टू माय ओरिजिनल स्टेज। तो कभी भी दिन में ये चिड़चिड़ापन गुस्सा अगर आए तो लेट्स गो थ्रू दिस 4-5 स्टेजेस, और अगर उस टाइम नहीं कर पाते हैं तो गुस्सा करने के बाद भी भले कर लीजिए कि आज मुझे गुस्सा आया था, क्या हुआ था, तो क्या होगा, एक दो बार गुस्सा करने के बाद करेंगे तो अगली बार
2: हमें गुस्सा इतनी आदत में घुल चुका था कि हमें एहसास ही नहीं होता था कि हमने गुस्सा किया है, और अब क्योंकि जब पता है कि इतनी बात गुस्से की सुन चुके हैं, हम दूसरों को कहते थे मैं तो गुस्सा नहीं करता, मुझे तो गुस्सा नहीं आता, नो I'm very peaceful person. But वो जो अंदर का चिड़चिड़ापन है, जो internalized anger जिसकी हमने पहले बात की थी, so this all stays with us. So again, it may not go completely in one day, but the moment we start watching and going through these 5 steps, I think gradually we should be able
1: it is not going to go in one day. See, because why it will not go in one day? क्योंकि वो belief systems एक दिन में नहीं जाते हैं. अगर belief सारे एक दिन में टूटते हैं कि गुस्से के बिना काम हो सकता है, गुस्से से कोई result, तो एक दिन में चल जाएगा, लेकिन वो एक एक belief को finish करने में थोड़ा सा time लगता है. लेकिन the journey is very simple. You know, don't give up on yourself. चाहे आपका कितना भी कड़क संस्कार हो क्रोध का, it can go. और वो पूरी तरह से जाएगा, क्योंकि awareness जाएगी. You know, awareness चाहिए, बस गुस्सा आ रहा है, and then it will go. And ये justification खत्म करनी है कि दूसरों की वजह से. जब तक वो belief system सबसे strong है कि औरों की वजह से गुस्सा है, then I will not change. Then I will keep waiting for you to change.
2: Yes, you know, we've always been saying it's just a thought way. So again, the thought that I am responsible, ये एक संकल्प, ये एक सोच कि मैं जिम्मेदार हूँ,
3: इवन इफ उसके लिए अपने आप को दोषी ना ठहरा, ठीक है गुस्सा है भी तो कोई बात नहीं, मुझे ये कि इतने गिल्ट और रैंक मतलब अपने आप से गुस्से में चले जाते हैं कि
1: मैं क्यों नुकसान हो जाता है, पहले गुस्सा डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई, अब गिल्ट क्रिएट हो जाता है, फिर शेम हो जाती है एंड फिर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको छुपाने के लिए और उसे और गुस्सा कर, यू नो मतलब पहले गुस्सा कर देंगे, अंदर लगेगा कि मुझे करना नहीं चाहिए था, फिर और जोर से बोलेंगे क्यों नहीं करना चाहिए था, मुझे तो करना चाहिए था आपने, यू नो इट इज जस्ट बिकम्स अ वेरी साइकिल प्रोसेस एंड इट जस्ट डजंट ब्रेक एनीवेयर.
3: एंड डेफिनेटली सर शिवानी, ये हम इस पर कितनी बातचीत कर चुके हैं और इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि इट कैन चेंज. लेकिन अब हम आते हैं कि हमने बात की थी इमोशन और फीलिंग की, यू नो कि हर एक इमोशन, क्योंकि इमोशन कहीं ना कहीं हम अभी तक से अपनी ताकत मानते थे और हम कहते थे पॉजिटिव इमोशन और नेगेटिव इमोशन, इमोशन एक्चुअली इज यू नो ऑल दैट डिस्टर्बेंस जो यहाँ क्रिएट होती है, तो उसका एंटीडोट या उसका जो एक

0: फीलिंग है जो उसके एवज में कन्वर्ट होती है या आती है वो पीस जुड़ता है उसके साथ. लेकिन पीस से जुड़ी हुई भी बहुत भ्रांतियाँ हैं. बहुत सी ऐसे बिलीफ कह सकते हैं हम, ये बहुत से ऐसे मान्यताएँ कह सकते हैं कि पीस जो है वो बहुत एनर्जी लेस हो जाता है. तो एक्चुअली बहुत सी बातें हम जानेंगे कि क्या मान्यताएँ जुड़ी हैं. मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या है, व्हाट इज रियली मेंट बाय शांति या पीस.
1: Peace is a word which we use very often but rarely understood. You know, we are all looking for peace. Hame shanti chahiye, hame shanti chahiye. But we are not aware ki what are we looking for. To kya hoga, wo hogi bhi to pata nahi chalega ki wo hai. Actually, agar dekha jaye to hum log sab shanti anubhav karte hain sara din mein. Lekin wo ek natural sthiti hai. लेकिन उसको हम तब रियलाइज नहीं कर पाते. हम रियलाइज किसको करते हैं, जब हम स्ट्रेस में या टेंशन में होते हैं, क्योंकि वो अननेचुरल है. एंड एट दैट टाइम वी से आई वांट पीस. पीस इज बेसिकली अ स्टेट ऑफ द बीइंग. ये सिर्फ एक स्थिति है, मुझ आत्मा की एक स्थिति है, जिसका रिजल्ट क्या होगा कि जो मेरी थॉट्स होंगे वो बहुत पॉजिटिव और फोकस्ड होंगे. अंदर एक साइलेंस होगा. एक है साइलेंस, एक है नॉइज. तो पीस डजंट मीन कि कोई बोले नहीं, कुछ करे नहीं. बाहर से हो सकता है कि बहुत पीसफुल है, अंदर बहुत नॉइज है. और नॉइज क्या है, ये सब डिस्टर्बेंसेस. ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था. सो पीस इज बेसिकली साइलेंस ऑफ द माइंड. साइलेंस ऑफ द माइंड में ये मतलब नहीं है कि जीरो थॉट्स. सम पीपल थिंक पीस साइलेंस मतलब नो थॉट्स. नो थॉट्स, फोकस्ड. आपको जिस चीज के बारे में जिस क्षण सोचना है और जितना सोचना है और जिस रूप से सोचना है, बस उतना ही करना है. हमें ये प्रोग्राम अभी करना है. वन थॉट, होगा नहीं होगा, ठीक होगा नहीं होगा, कहीं कुछ प्रॉब्लम तो ना हो जाए.
0: तो ये पॉजिटिविटी के साथ, यू नो, जो फोकस जो थॉट्स की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पॉजिटिव रहे.
1: पॉजिटिव, दे विल ऑलवेज बी पॉजिटिव. जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं वो बहुत फास्ट चलते हैं. And they will be more towards worry, anxiety, tension, fear. The positive thoughts बहुत focused होंगे और उसका result आपके attitude में आएगा, आपके behavior में आएगा. अगर normal practical में भी हम देखें तो peace is actually acceptance, स्वीकार कर लेना. अभी जो चीज जैसी है वैसी बिल्कुल ठीक है, but with the working इसको आगे और ठीक किया जा सकता है. तो अभी क्या होगा, पीस शांति मेरे मन में तब होगी जब मैं एक्सेप्ट कर लूं कि आप अभी जो हैं जैसे हैं बिल्कुल ठीक. तो ये क्षण शांति, और फिर मैं आपको अगले क्षण के लिए आपके साथ ये डिस्कस भी कर सकती हूँ कि आप क्या क्या चेंज कर सकते हैं. लेकिन अगर मेरे अंदर ये चल रहा है, नहीं इसको ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये क्या पहना हुआ, ये नहीं पहनना चाहिए, ऐसे नहीं बैठना चाहिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, दिस इज पीसलेसनेस. I am not accepting you as you are. The peace is ke situation jaisi hai accept karna, lekin saath mein bhavishya ke liye usko change bhi karna. Peace matlab aap jo hain jaise hain aapko swikar karna, even agar aapka opinion
0: mere
1: opinion se.
0: This is what I wanted to ask ki when you say ki aap accept karo, main aapko accept karu jaise aap hain, to main kya ye soch ke accept karu ki aap sahi hain abhi jaisi hain अपने परिपेक्ष में, अपने लिए या मेरे लिए भी सही है.
1: आप अपने परिपेक्ष में, अपने दृष्टिकोण से, आप जिस सिचुएशन में अभी हैं, आप बिल्कुल ठीक है
0: उसके लिए.
1: Absolutely.
0: ना, लेकिन मेरे पास अगर कॉन्फ्लिक्ट है या मेरे विचार या मेरा परसेप्शन डिफरेंट है, तो वो मेरा है, मैं एक्सेप्ट उसको भी कर रही हूँ. क्या यहाँ ये आ जाता है कि देन गिव इन हो गया?
1: नहीं, गिव इन नहीं हुआ, क्योंकि मैंने ये भी एक्सेप्ट किया कि आप जो है वैसे भी ठीक है. मैंने ये भी पहले तो, अब देखो औरों को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते जब तक हम अपने आप को.
0: आज की इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. ओम शांति. पूरे कॉन्फिडेंस से अपने कह सकते
1: हैं ओम शांति.

गुड मॉर्निंग रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके साथ रहती हूँ, मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के सातों दिन बहुत सारी होती है बातें। इसी के साथ आज है संडे का दिन, और संडे वाले दिन ना मैं आपके साथ ढेर सारी बातें करती हूँ। अच्छा, आज भी ढेर सारी बातें लेकर के आई हूँ, और अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं, अपने दिल की बात हम तक पहुँचाना चाहते हैं, कोई गाना सुनना चाहते हैं, तो जल्दी से फरमाइश कर सकते हैं। नंबर बहुत ही आसान है, 8010781078 यह हमारा नंबर है। तो फटाफट से वही देरी इस बात की, जल्दी से अपना मोबाइल फोन उठाइए और कॉल कीजिए हमें, और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के सातों दिन बहुत सारी होती है बातें। आज है संडे का दिन और अगर आप संडे वाले दिन कहीं बाहर का प्लान बना रहे हो और ये सोच रहे हैं कि रेडियो मानव रचना के साथ कैसे जुड़ना है, तो बस आपको क्या करना है, आपको अपना एंड्रॉइड या मोबाइल फोन लेना है, प्ले स्टोर ऐप स्टोर पर जाना है, सर्च बॉक्स में लिखना है रेडियो मानव रचना, जिसके बाद ढेर सारी देखिए आपको क्या करना है ना, जैसे आप ऐप को डाउनलोड करेंगे ढेर सारे पॉडकास्ट एक्सपर्ट की एडवाइस और बहुत ही खूबसूरत एवरग्रीन सॉन्ग्स आप सुन सकते हैं वर्ल्ड में कभी भी कहीं से भी। तो बस जल्दी से डाउनलोड कीजिए ऐप और आप हमारे साथ सोशल मीडिया के थ्रू भी कनेक्ट हो सकते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम और यूट्यूब के साथ, इन प्लेटफॉर्म्स के साथ आप रेडियो मानव रचना के साथ जुड़ सकते हैं और ढेर सारे एंटरटेनमेंट

वेलकम बैक रेडियो हमारे रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप. मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं रिचार्ज मॉर्निंग. और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूं सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूं मंडे टू संडे यानी कि हफ्ते के सातों दिन बहुत सारी होती हैं बातें. और इसी के साथ देखिए बातें हमारी जो है वो चल रही हैं और एक बहुत ही खास जानकारी आपको बताती हूँ, जानकारी देती हूँ. ये हमारा जो काफी टाइम है ना, काफी सारा जो टाइम है वो ऑफिस में बीतता है जो काफी ज्यादा बिजी और स्ट्रेस से भरा भी होता है. इसके पीछे ज्यादातर होता है कि हमारा वर्कलोड हो गया या फिर देखिए ये भी होता है कि किसी अगर आपका कोई कलीग है उससे आपकी थोड़ी सी अनबन हो गई या फिर वर्क प्लेस का ये जो कभी कभी होता है कि आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं तो ये भी प्रॉब्लम आती है. या वहाँ पर कुछ जगहें देखिए ऐसी भी होती हैं, कुछ अगर हम वहाँ के ऑफिस के वातावरण की बात करें तो वो भी कुछ ना कुछ कभी होता है कि वाइब्स मैच नहीं हो पा रही है. और अगर आपके साथ भी ऐसा है, आप भी मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं और ये सोच रहे हैं कि कैसे आप इस स्ट्रेस को कम करें, क्योंकि जैसे ही अगर मेंटल हेल्थ जो है आपकी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित इससे होती है और आगे चलकर स्ट्रेस, एंजाइटी, यहाँ तक कि डिप्रेशन की वजह भी बन सकती है. तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप ऑफिस से घर लौटकर अपने तनाव को कम करें और रिलैक्स हो जाएं. दिमाग को आप रिलैक्स करने के लिए कुछ देखिए आप टिप्स की मदद ले सकते हैं जो कि आरजे साक्षी आज आपके लिए लेकर के आई है, जिनसे आपके दिन भर की थकान दूर की जा सकती है. बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा इंतजार करना है क्योंकि मैं ये टिप्स आपके लिए लेकर के आई हूँ, आपको जरूर दूंगी कि कैसे आप स्ट्रेस से डी स्ट्रेस हो जाएंगे. बस कुछ ही देर में बताती हूँ, फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. Feel good, feel live.

वेलकम बैक, रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूं सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूं मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के सातों दिन बहुत सारी होती हैं बातें। और इसी के साथ देखिए मेरे पास कई सारे मैसेजेस तो आ ही रहे हैं। गुड मॉर्निंग के भाई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और संडे का दिन है, जल्दी जल्दी सबकी सुबह हो जाती है ना। अच्छा, मैं ना बात कर रही हूँ आपके स्ट्रेस की, जब भी ऑफिस में होते हैं, चाहे वो सिर्फ ऑफिस का नहीं मैं कहूँगी यहाँ पर, चाहे ऑफिस में, घर पर भी कभी कभार ना ये होता है कि हम हर काम को ना बहुत स्ट्रेसफुली जो है, कुछ काम ऐसे होते हैं स्ट्रेसफुल जो है हमारे लिए हो रहा है, चाहे वो आपका बिजनेस है, आपको कोई भी तकलीफ हो रही है, हम स्ट्रेस बहुत जल्दी ले लेते हैं। और आजकल स्ट्रेस जो है ना, आप किसी भी उम्र के लोगों को आप देख लीजिए, चाहे एक छोटा बच्चा है वो स्ट्रेस ले रहा है, उसका होमवर्क कैसे होगा, आपकी पढ़ाई जो है, कॉम्पिटिशन बढ़ गया है, तो सब उसकी वजह से भी स्ट्रेस जो है वो हो जाता है। अब बात आती है कि स्ट्रेस से खुद को डिस्ट्रेस कैसे करें, यानी कि स्ट्रेस को खत्म कैसे करना है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि किताबों की दुनिया में आप खो जाइए, यानी कि किताबें पढ़ना एक कला है जिससे धीरे धीरे हम जो है वो दूर होते जा रहे हैं आजकल के टाइम में। लेकिन हमारी लाइफ में ना मोबाइल फोन और लैपटॉप का ऐसा दबाव जो है ये आ चुका है, दबदबा पड़ चुका है, जिससे ज्यादातर टाइम जो है हम स्क्रीन पर देने लग गए हैं। और इसीलिए जरूरी है कि आप इससे ब्रेक लें और अपने स्क्रीन टाइम को कम से कम आप करें, दिमाग को आप रिफ्रेश करने का मौका दें। और इसमें कोई देखिए, आप किताब जो है, जो भी आपको पसंद हो वो आप पढ़ सकते हैं, कोई भी किताब आप ले सकते हैं जिससे आपको जरूरी कुछ जानकारी भी मिले, आपका एंटरटेनमेंट भी हो। तो आप डिपेंड करता है, कोई अगर उसमें स्टोरी है या कहीं से आपको कोई जानकारी मिल रही है, कुछ भी आप ले सकते हैं। अगर आपको किताब अगर आपको लग रही है, या फिर आप मैगजीन पढ़ना चाहते हैं, आप मैगजीन पढ़िए, लेकिन आप पढ़िए, स्क्रीन को बंद कीजिए। इतिहास या विज्ञान की किताब भी आप पढ़ सकते हैं, यानी कि हिस्ट्री साइंस की आप किताबें पढ़ सकते हैं। आप अपने पसंद के अनुसार कोई भी किताब आप पढ़ें तो वो आपको बेहतर ही आपके लिए रहेगी, आपके दिमाग को एक रिफ्रेशिंग जो है आपके दिमाग के लिए होगा। और इसी के साथ आप क्या कर सकते हैं, अपने स्ट्रेस को खत्म करने के लिए आप वॉक कर सकते हैं। ऑफिस में लंबे टाइम बैठने रहने के बाद, या फिर आप कोई भी अपना डेस्क जॉब है आपकी, कोई भी काम आप कर रहे हैं, अगर आपकी बॉडी बैठी रहती है, आप बैठे रहते हैं, तो आप वॉक कीजिए। आपकी बॉडी और माइंड दोनों के लिए बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी है। इस थकान को दूर करने के लिए आप वॉक पर जब जाएंगे ना, आपकी मेंटली थकान को ख़त्म करने के लिए वॉक करने की ज़रूरत है। बॉडी इससे एक्टिव रहती है और आपका दिमाग भी रिलैक्स रहता है। और वॉक करने के लिए आप किसी पार्क में जा सकते हैं या घर की छत पर आप घूम सकते हैं, जहाँ भी आपका मन करे थोड़ी वॉक, आपके स्टेप्स पूरे हो रहे हैं, घूमिए, 10,000 स्टेप्स पूरे कीजिए। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी कि आप शुरुआत में ही 10,000 स्टेप पूरे करने पे लगे रहिए। शुरुआत में देखिए, मैं ये कहूंगी कि आप पहले स्टार्ट कीजिए सिर्फ 2,000 स्टेप से, 2,000 से सीधा आइए 5,000 स्टेप पे, 5 से सीधा आइए आप 8,000 स्टेप पे, और 8 से सीधा

10,000 स्टेप्स पे आ जाइए और देखिए कैसे धीरे धीरे करके आप 10K स्टेप्स आपके पूरे आप कर सकते हैं। आजकल ट्रेंड है तो आप ट्रेंड के साथ भी आप चलेंगे और आपको काफी ज्यादा अच्छा भी लगेगा। चलिए इसी के साथ लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, जिसके बाद होंगी और भी बहुत सारी बातें। कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड फील।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ, मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती है बातें। इसी के साथ मैं बात कर रही हूँ स्ट्रेस की, जो यार जो कि इतना ज्यादा आप स्ट्रेस ले रहे हैं ना हर चीज का, इसको डी स्ट्रेस करने का आपको टिप्स दे रही हूँ। मेडिटेट कीजिए, काम के स्ट्रेस को कम करने के लिए आप मेडिटेट कर सकते हैं। मेडिटेशन आपकी मेंटल हेल्थ के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकती है और इससे आपका तनाव भी कम होगा और आपकी सेहत के लिए भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। इसके लिए आपको किसी शांत जगह पर बैठकर अपनी श्वासों पर, अपनी सांसों पर ध्यान आप लगा सकते हैं और आपका जो दिमाग है ये भी रिलैक्स होगा और स्ट्रेस खुद ब खुद ही कम हो जाएगा। इसी के साथ आप अपना फेवरेट खाना बना सकते हैं। देखिए, खाना बनाना ना एक कला है, खाना बनाना पेशेंस का गेम है, खाना बनाना प्यार से आप बनाइए। तो अगर आप खाना बना रहे हैं, अपने मनपसंद कोई भी डिश बनाइए जिससे आपको खुशी मिले और मज़ेदार ये खाना तो रहेगा ही, आपको अच्छा भी लगेगा। उसके बाद ये फेवरेट डिश अपने ऑफिस लेके जाइए, आपको उसमें मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा। काम से आपका जो देखिए थोड़ा जो स्ट्रेस आ जाता है ना, उससे जो स्ट्रेस है, आप जब ये खाना खाएंगे ना आपको खुद ब खुद अच्छा लगेगा, खाना हमने बनाया, अपनी पसंदीदा डिश बनाइए, इससे आपका मूड भी बेहतर होगा। और सबसे आखिरी में लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है, म्यूजिक सुने, क्योंकि म्यूजिक एक थेरेपी है। म्यूजिक आपकी मेंटल हेल्थ के लिए काफी ज्यादा लाभदायक हो सकती है। अपने घर में अपनी पसंद का म्यूजिक प्ले जरूर करें। आप अपनी मनपसंद धुनों पर देखिए आप डांस कीजिए, उसे गुनगुनाइए, मनपसंद आपका कोई भी आपके धुनों, जैसा भी आपको मजा लगे, आपको अच्छा लगे, उससे जो है ये फायदा है कि आपको आपका स्ट्रेस जो है धीरे धीरे अपने आप ही कम हो जाएगा, डी स्ट्रेस आप हो जाएंगे, एंजाइटी कम करने में मदद मिलती है और काफी आपको अच्छा लगेगा, काफी अच्छा महसूस होगा। इसीलिए म्यूजिक सुनना डी स्ट्रेस करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। चलिए इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जिसके बाद होंगी और भी बहुत सारी बातें। कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुन रहिए रेडियो मानव रेस्टा 107.8 FM। फील गुड, फील

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप, मैं हूँ साक्षी आपके साथ। प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग, और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके साथ रहती हूँ, मंडे टू संडे यानी कि हफ्ते के 7 दिन। बहुत सारी होती हैं बातें, जैसे ही मैंने कहा था आज हमारे साथ खास एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर राजेश, जो कि एक योग गुरु है, हेल्थ एक्सपर्ट हैं और साथ ही साथ हैप्पीनेस कोच भी हैं। बहुत सारी आज हम बात जो है वो हमारे आज के एक्सपर्ट से करने वाले हैं। उससे पहले भाई, सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं डॉक्टर राजेश हमारे इस कार्यक्रम में।
1: नमस्कार साक्षी, नमस्कार रेडियो मानव रचना के श्रोतागण, आप लोगों से मिलकर के बहुत ही अच्छा लगता है।
0: डॉक्टर राजेश, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, कुछ चुनिंदा सवाल है हमारे पास और ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ। आज संडे का दिन है, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि संडे वाले दिन आप हमारे स्टूडियो आते हैं और इतनी सारी जानकारी देते हैं, क्योंकि बड़ा मुश्किल हो जाता है वर्किंग होना और काफ़ी सारा, क्योंकि पूरा हफ्ता जो हम काम कर रहे हैं, लेकिन संडे भी आप हमारे साथ जुड़े हैं, तो मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ आने के लिए।
1: बहुत अच्छा लगता है रेडियो मानव रचना पर आकर के आप लोगों से मिल करके, लोगों से मिल करके बड़ा अच्छा लगता है।
0: जी जी डॉक्टर राजेश, मैं जो सवाल आपसे जानना चाहती हूँ, जो आज हम टॉपिक जिस पर हम बात करने वाले हैं, वो है टाइप्स ऑफ थेरेपीज। और अलग अलग तरीके की थेरेपीज होती हैं जिनका सहारा हम ले सकते हैं, बस इन थेरेपीज के बारे में थोड़ा सा मैं आपसे डिटेल में जानना चाहती हूँ। हम एक एक करके सारी थेरेपीज की बात करेंगे। तो हमारी आज की पहली थेरेपी है, वो है म्यूजिक थेरेपी। तो म्यूजिक थेरेपी का इस्तेमाल क्यों होता है और कितना ज्यादा ये बेनिफिशियल हो सकता है?
1: देखिए, संगीत जो है ना, प्राचीन परंपरा से, सभ्यता की शुरुआत से ही संगीत को लोगों ने समझा, अनुभव किया और उसमें आनंद की प्राप्ति हुई, आनंद की उपलब्धि हुई है।
0: जी।
1: संगीत एक माध्यम है अपने आप से जुड़ने का, अपने आप को पहचानने का, और संगीत ही आपको परमात्मा से भी जोड़ता है, जिसको हम परमपिता परमेश्वर के रूप में जानते हैं।
0: जी।
1: तो संगीत एक डिवाइन लैंग्वेज है, कम्युनिकेशन बिटवीन योर इंडिविजुअल एंड द कॉस्मस। तो ये जो संगीत जो धुन है ना, आपके मन मस्तिष्क में अल्फा तरंग पैदा करता है, और जिससे आपकी बहुत सारी थकान, तनाव, स्ट्रेस, इमोशनल फटीग, ये सारे न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। इसलिए संगीत तो आपके जीवन का एक अंग होना चाहिए।
0: बिल्कुल डॉक्टर राजेश, मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि क्या ये जो संगीत है, ये जो म्यूजिक थेरेपी है, ये सभी के लिए वैसे ही काम करती है? यानी कि जैसे जो लोग जो हैं, जैसे डॉक्टर जो हैं, वो रिकमेंड करते हैं कुछ लोगों को, तो अलग अलग तरीके की थेरेपी होती है, तो क्या म्यूजिक थेरेपी सबको रिकमेंड की जाती है?
1: संगीत तो आनंद का माध्यम है, फाइनली सभी को जरूरत है आनंद, हैप्पीनेस, जो ब्लिसफुल मोमेंट, जो संगीत जो गाता भी नहीं है, गुनगुनाता भी नहीं है लोगों के सामने, वो भी बाथरूम में जाकर के वो गुनगुनाने लगता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और कभी कभी वो अपनी आवाज में लगाते हैं, यानी वो रिलैक्स हो चुका है।
0: बिल्कुल।
1: ये तो रिलैक्सेशन का एक माध्यम है।
0: जी, जी।
1: और ये डीप इन्वॉल्वमेंट होता है, और खास करके जो लोग क्लासिक म्यूजिक का अभ्यास करते हैं, वो तो अपने आप में सारे चक्रों को खोल देता है।
0: बिल्कुल।
1: ये जो 7 सुर जो है ना, आपके 7 चक्रों का धुन है।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: जिसको हम कहते हैं बीज मंत्र।
0: जी जी डॉक्टर राजेश, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जिसके बाद और भी बहुत सारी होंगी बातें, क्योंकि अब अगली थेरेपी के बारे में भी मैं आपसे बात करूंगी। लेकिन उससे पहले अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

0: वेलकम बैक रेडियो मैन रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में संडे का आज दिन है और हम बात कर रहे हैं हमारे आज के एक्सपर्ट डॉक्टर राजेश से। डॉक्टर राजेश, मैं अगली थेरेपी के बारे में आपसे जानना चाहूंगी और वो है पेट थेरेपी। अब ये जो पेट थेरेपी है वो किस तरह से जो है हेल्प करती है और क्या जो एक जो है बेनिफिट है वो हमें मिलता है और हमारी मेंटल हेल्थ के लिए ये कितनी ज्यादा अच्छी है।
1: देखिए, जब आप अपने घर में पेट रखते हैं ना तो आपका एक इमोशनल टाइड अप होता है
0: जी।
1: इमोशनल आपने एग्रीमेंट किया है
0: जी जी,
1: और वो आपकी भाषा आपके इमोशन को समझता है और आप कम्युनिकेट करते हो, उससे एक्सप्रेस करते हो लव, सारे जो जॉय सारा हैप्पीनेस वो आपको देता है। जब आप दरवाजा खोलते हो, जिनके घर में डॉग हैं, जैसे दरवाजा खोलते हो वो बेचारा आता है, अनकंडीशनल लव देता है, तो वो आपको हील कर देता है, सारे तनाव को इमीडिएट न्यूट्रलाइज कर देता है।
0: जी जी जी बिल्कुल। और डॉक्टर, मैं यहाँ पर अब ड्रामा थेरेपी के बारे में भी आपसे जानना चाहूंगी कि ड्रामा थेरेपी क्या है और किस तरह से ये मदद करती है।
1: देखिए, यहाँ ड्रामा थेरेपी का जो एग्जैक्ट वर्ड है जो यूरोप में बहुत पहले शुरू हुआ है, साइकोड्रामा। साइकोड्रामा थेरेपिस्ट जो लोग काम करते हैं इस पर, वो आपके साथ उस माहौल में लेकर के चले जाते हैं एक्टिंग के थ्रू, सीन के थ्रू, और उस सिचुएशन में आपको खड़ा कर देते हैं और वहां से आपके सबकॉन्शियस के जो स्ट्रेस हैं, अनकॉन्शियस माइंड के जो स्ट्रेस हैं, उसको साइकोथेरेपिस्ट निकालता है। तो अभी तो बहुत पॉपुलर है, लेकिन ये बहुत पुरानी परंपरा है साइकोड्रामा, इंडिया में अब शुरू हुआ है।
0: जी जी जी बिल्कुल। और साथ ही हम अगली थेरेपी के बारे में भी मैं आपसे जानना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले अभी एक छोटा सा ब्रेक, जिसके बाद होंगी और भी बहुत सारी बातें। फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइक।

0: ज्वाला, समुंदर की लहरों को देखो जो बार बार हमारे करीब आकर जैसे कह रही हूं कि आओ हमारे कंधों पर बैठ जाओ ताकि हम तुम्हें तुम्हारे देश तुम्हारे घर ले चलें। और मैं इनसे कह रहा हूं कि सिर्फ दो दिन और, बेचारे डॉक्टर ने हमारे लिए किश्ती तैयार करवाई है जिसे हम तुम्हारे कंधों पर रखकर नाचते कूदते अपने घर चले जाएंगे।
1: और मैं ये कह रही हूं, भगवान ने हमें नया जन्म दिया है, नई धरती नया घर दिया है, हम क्यों ना प्यार में गुमसुम अपने सारे जन्म इसी जजीरे पे गुजार दें जहां से हमें कोई अलग ना कर सके।
0: ज्वाला, हमें कोई अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं।
1: तुम उस कमीने दीवान को नहीं जानते भारत, और मेरे सीधे साधे पिताजी को भी नहीं जानते। वहां पहुंचते ही जबरदस्ती मेरी शादी दीवान से कर दी जाएगी।
0: ऐसा कभी नहीं हो सकता ज्वाला, मेरी जिंदगी कोई मुझसे छीन नहीं सकता।
1: तो फिर एक वादा करो।
0: मेरी जान मांग लो, जान मेरी।
1: सिर्फ इतना वादा कि अपने देश पहुंचने के बाद तुम मुझे एक पल भी अपने से जुदा नहीं करोगे। इतना याद रखोगे कि राजकुमारी चित्रलेखा मर चुकी है और तुम्हारी ज्वाला जिंदा है, सिर्फ तुम्हारे लिए।
0: ज्वाला, ये मेरा वादा है। ज्वाला।

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे आप, मैं हूँ साक्षी आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के सातों दिन बहुत सारी होती हैं बातें। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर राजेश। डॉक्टर राजेश, मैं आपसे अगला सवाल जानना चाहूँगी। अब बात करते हैं, अगर हम किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं या किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, तो वो हमें एक चीज़ ज़रूर कहते हैं कि आप जर्नल लिखना शुरू कीजिए। अब ये जो राइटिंग थेरेपी है, इसके पीछे का राज क्या है? और ज़्यादातर जो हमारे जो साइकेट्रिस्ट होते हैं या फिर हमारे जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो हमें यही क्यों रिकमेंड करते हैं कि आप लिखिए? इतना फोर्स लिखने पे क्यों है? इसका क्या फ़ायदा जो है जो हमें मिलता है?
1: देखिए, जब आप लिखते हैं ना, तो आपका अपने आप से आप जुड़ते हैं और आपके अंदर जो भी स्टोर है, जो भी आपका कलेक्शन है, आपका सबकॉन्शियस माइंड खुलता है और आप एक्सप्रेस करते हैं पेपर पर। और ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है और ये प्राचीन परंपरा है। ये तो थेरेपी का हम देख रहे हैं कि साइकोलॉजिस्ट का। अगर आप थोड़ा और जाएंगे डीप में, तो डीप में क्या था, भगवान के नाम लिखने की परंपरा हमारे यहाँ थी।
0: हाँ हाँ, करेक्ट।
1: और पेपर में अभी भी जिसको हम कहते हैं लिखित जप, लिखने सिर्फ नाम लिखते रहो, नाम जप करते रहो और लिखते रहो। इससे क्या होती है, आपके मन और मस्तिष्क में जो तरंगे पैदा होती है, वो आपके के हेल्थ के लिए कंप्लीट है, आपके हेल्थ के लिए कंप्लीट है, पूर्ण स्वास्थ्य प्रदान करता है, मानसिक तनाव को खत्म कर देता है आराम से। इसलिए जर्नल लिखना तो चाहिए ही। और जब आप अपने से जुड़ते हैं, कुछ अच्छी चीजों को याद करते हैं, तो जॉय भी होता है, दुख भी होता है। तो कहीं आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, तो आप अपने पेपर पर तो एक्सप्रेस कर रहे, तो आप लाइट फील करने लगेंगी।
0: बिल्कुल डॉक्टर राजेश, लेकिन कभी कभी ये भी होता है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको लिखने का इतना शौक नहीं होता है, पढ़ने का शौक नहीं है, या फिर उनको गाने गुनगुनाने का शौक नहीं है, और ना ही वो पेट लवर हैं। तो फिर अगर आप उन्हें रेकमेंड करें, तो वो कौन सी थेरेपी होगी जो कि उनके लिए बेनिफिशियल हो सकती है और मदद कर सकती है?
1: मैं तो कहूँगा कैथारसिस करो।
0: आप इसे स्पष्ट भाषा में हमें बताएं।
1: ये कैथारसिस जो लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज को हम समझ भी नहीं सकते हैं, जान भी नहीं सकते हैं
0: जी,
1: और उसके कोई अर्थ नहीं है, एक ऐसी भाषा जिब्रिस
0: जी,
1: उसमें आप आ जाइए, रूम को बंद कीजिए और जो मन में आता है निकालिए, पैर हाथ को हिलाइए। और कैथारसिस और जिब्रिस का प्रयोग तो आचार्य रजनीश ने बहुत बड़े पैमाने पर किया और बहुत सारे लोगों को फायदा मिलता था। क्योंकि तनाव मुक्ति एंड एक्सप्रेशन, उसमें आपके एंगर, फ्रस्ट्रेशन, हेट सब निकलते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बहुत सारी आज हमारी बातें जो हैं वो डॉक्टर राजेश के साथ चल रही हैं। डॉक्टर राजेश, कई सारे थेरेपीज़ के बारे में आज हम बात कर रहे हैं और इनका क्या जो है प्रभाव पड़ता है हमारी मेंटल हेल्थ पर, क्या अच्छा, क्या बेनिफिट्स हमें मिलते हैं, ये सारी बातें भी हम कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले एक छोटा सा और मैं ब्रेक लूँगी, जिसके बाद होंगी और भी बहुत सारी बातें। आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड फील
2: ज्वाला। समंदर की लहरों को देखो, जो बार बार हमारे करीब आकर जैसे कह रही हूं कि आओ हमारे कंधों पर बैठ जाओ, ताकि हम तुम्हें तुम्हारे देश, तुम्हारे घर ले चलें। और मैं इनसे कह रहा हूं कि सिर्फ 2 दिन और, बेचारे डॉक्टर ने हमारे लिए किश्ती तैयार करवाई है, जिसे हम तुम्हारे कंधों पर रखकर नाचते कूदते अपने घर चले जाएंगे।
3: और मैं ये कह रही हूं, भगवान ने हमें नया जन्म दिया है, नई धरती, नया घर दिया है, हम क्यों ना प्यार में गुमसुम अपने सारे जन्म इसी जजीरे पे गुजार दें, जहां से हमें कोई अलग ना कर सके।
2: ज्वाला, हमें कोई अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं।
3: तुम उस कमीने दीवान को नहीं जानते भारत, और मेरे सीधे साधे पिताजी को भी नहीं जानते। वहां पहुंचते ही जबरदस्ती मेरी शादी दीवान से कर दी जाएगी।
2: ऐसा कभी नहीं हो सकता ज्वाला, मेरी जिंदगी कोई मुझसे छीन नहीं सकता।
3: तो फिर एक वादा करो,
2: मेरी जान मांग लो, जान मेरी।
3: सिर्फ इतना वादा कि अपने देश पहुंचने के बाद तुम मुझे एक पल भी अपने से जुदा नहीं करोगे। इतना याद रखोगे कि राजकुमारी चित्रलेखा मर चुकी है और तुम्हारी ज्वाला जिंदा है, सिर्फ तुम्हारे लिए।
2: ज्वाला, ये मेरा वादा है।

0: वेलकम बैक रेडियो मैंने रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ, मंडे टू संडे यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती है बातें। आज संडे का दिन है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर राजेश। डॉक्टर राजेश, थेरेपीज के बारे में हम बात कर रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आर्ट थेरेपी भी होती है, म्यूजिक थेरेपी होती है, या फिर ड्रामा थेरेपी की भी हमने आज बात करी है, अलग अलग थेरेपीज हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जो लोग अब इन थेरेपीज के बारे में इतना नहीं जानते हैं लेकिन रूटीन से स्पोर्ट्स में जो है इन्वॉल्व हैं, स्पोर्ट्स जो है उसका एक्टिविटी जो है वो कर रहे हैं या फिर जिम जा रहे हैं, तो ये जो रूटीन है इसे फॉलो करना कितना ज़्यादा अच्छा है, बेनिफिट जो है उनको देगा, और क्यों ये जो है वो इतना इम्पॉर्टेंट है सभी के लिए, एक कोई ना कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना ये ज़रूरी है।
1: देखिए, तनाव तो आपके जीवन का एक अंग है, इससे आप और हम बच नहीं सकते हैं। तनाव तो रहेगा जीवन में, कभी प्रोफेशनल रहेगा, कभी फाइनेंशियल रहेगा, कभी फैमिली का रहेगा, कभी बच्चों का रहेगा, कभी हेल्थ का रहेगा, कभी पेरेंट्स के रहेंगे, ये सारा अंग है। लेकिन अपने आप को मजबूत बनाना है, इसके लिए आपको फिजिकल एफर्ट करना चाहिए। फिजिकल एफर्ट में जाइए, एक्सरसाइज कीजिए, जिम अगर पसंद करते जिम कीजिए, योगा पसंद करते योगा इज अ वेरी गुड अप्रोच फॉर द स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्विमिंग कीजिए, बैडमिंटन खेलिए, स्पोर्ट्स में जाइए, 1 घंटे तक आप बर्नआउट कीजिए अपने आप को, दोनों फायदा है, कैलोरी भी बर्न होगा, स्ट्रेस भी होगा रिलीज। और एक चीज जरूर कीजिए
0: जी,
1: मेडिटेशन थोड़ा सा जरूर कीजिए, 5 मिनट से ही अपने जीवन का एक अंग बनाइए। 5 मिनट के लिए किसी साइलेंस जगह पर बैठ के सिर्फ अपने श्वासों का ख्याल कीजिए। जब आप अपने श्वासों के प्रति आप सजग बनेंगे, दृष्टा बनेंगे, साक्षी बनेंगे, तो आपके इंडोक्राइन में जो कॉर्टिजोल लेवल हाई अमाउंट में है वो न्यूट्रलाइज होगा। इसलिए शवासन कीजिए, शवासन भी एक तरीका है, शरीर को मुर्दे की तरह आके फर्श पर 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, श्वासों का ख्याल कीजिए, आपको तो नींद आ जाएगी। और नहीं तो मेडिटेशन कीजिए सोने के पहले
0: जी,
1: 10 मिनट के लिए निकालिए समय। ये आपके जीवन का एक

0: अंग है जो आपको शारीरिक स्वास्थ्य के साथ मानसिक स्वास्थ्य देता है, भावनात्मक असंतुलन को वो मैनेज कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है और आपको एक नया जीवन देता है।
1: बिल्कुल डॉक्टर राजेश, आज बहुत सारी आपसे बातें हुई हैं। मैं ये बस जाते जाते आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगी, कुछ टिप्स अगर आप दें हमारे सभी लिसनर्स को कि किस तरह से जो है स्ट्रेस को बर्स्ट करना चाहिए, स्ट्रेस को ख़त्म करना चाहिए और ख़ुद को डी स्ट्रेस कर रहे हैं, तो वो टिप्स क्या रहेंगी आपकी ओर से?
0: जो मैं करता हूँ वही मैं बताना चाहता हूँ। सोने के पहले मुस्कुराइए 2 मिनट के लिए अपने आप के लिए और ग्रेटिट्यूड दीजिए परमात्मा को कि आज का दिन हमारे लिए अच्छा था, विशेष रूप से था और उसकी कृपा है हमारे ऊपर।
1: बिल्कुल।
0: और सुबह उठिए तो फिर परमात्मा को याद कीजिए और मुस्कुराइए अपने लिए। आंखों को बंद कर लीजिए, रीढ़ की हड्डी सीधी कर लीजिए और मुस्कुराइए हल्का सा, किसी दूसरे के लिए नहीं, अपने आप के लिए। इससे जो आपका कनेक्शन बनेगा आपका वो कमाल का बनता है।
1: बिल्कुल।
0: और आपकी चीजें सुलझ जाती है जब आप मुस्कुराएंगे। इसके पीछे विज्ञान है। तो जब मैं हैप्पीनेस का कोर्स कंडक्ट करता हूँ तो मुझे लगता था कि मैं ऐसा कौन सा टिप्स बताऊं जो लोग आराम से कर सकते हैं। तो मैंने ये 3 मिनट का स्माइलिंग मेडिटेशन ध्यान तैयार किया जिसमें 1 मिनट के लिए आप बिल्कुल स्थिर होकर बैठ जाइए, 1 मिनट के लिए श्वासों पर केंद्रित कीजिए अपनी चेतना को, एकाग्रता लाइए और फिर मुस्कुराइए अपने लिए।
1: बिल्कुल।
0: जब आप मुस्कुराएंगे ना आपके सारे इंटरनल ऑर्गन, एक एक सेल आपका रिलैक्स होता है। और आपके जो 4 हार्मोन है ना, डोपामीन, इंडोमॉर्फिन, सेरोटोनिन एंड ऑक्सीटोसिन, ये चारों आपने मॉर्निंग में स्टिमुलेट कर लिया और रात में सोने के पहले, तो आपका तो कहीं अब टॉक्सिक एक्यूमुलेशन है ही नहीं।
1: बिल्कुल।
0: ये सिंपल मेडिटेशन है, स्माइलिंग मेडिटेशन, और ये कॉपीराइट हमारा है स्माइलिंग मेडिटेशन का।
1: बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर राजेश कि आप हमारे स्टूडियो आए, इतनी सारी जानकारी दी, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ।
0: बहुत ही अच्छा लगता है साक्षी, और आपका ये प्रोग्राम तो बहुत ही अच्छा है।
1: थैंक यू सो मच डॉक्टर राजेश, और आप आए हमारे साथ जुड़े, और तहे दिल से मेरा धन्यवाद रहेगा। और इसी के साथ वक्त हो गया है आपसे एक छोटे से ब्रेक की इजाजत लेने का, तो आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग. और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के सातों दिन बहुत सारी होती है बातें. और इसी के साथ वक्त जो है ये हो चला है हमारे आज के एक्सपर्ट को बुला लेने का, यानी कि हमारे साथ आज जुड़ने वाले हैं डॉक्टर राजेश जो कि एक हेल्थ एक्सपर्ट हैं, योग गुरु हैं और साथ ही साथ हैप्पीनेस कोच भी हैं. बहुत सारी इनसे बातें होने वाली हैं और अगर आपके भी कुछ सवाल हैं तो जरूर जान सकते हैं. नंबर बहुत ही आसान है 8010781078. संडे का दिन है आज और आप आज के दिन क्या क्या कर रहे हैं वही जल्दी से हमें बताइएगा, क्योंकि अगले दिन से ना यानी कि अब मंडे से ना पूरा आपका वीक फिर से वही शुरू हो जाएगा. इसमें बहुत सारा काम, बहुत सारी चीजें, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि अब वो जो फेस्टिवल्स का टाइम है ना ये आ चुका है. कुछ ना कुछ लगा रहता है भाई. अभी जन्माष्टमी खत्म हुई है और अब देखिए कुछ दिन में आ जाएगी गणेश चतुर्थी और उसके बाद नवरात्रे और बस दिवाली वाली सब कुछ आने वाली है. तो भाई बहुत ज्यादा मजेदार रहने वाले हैं ये पूरे महीने, चाहे हम सितंबर की बात करें, अक्टूबर की, नवंबर की, दिसंबर की, अब तो 4 महीने बचे हैं, 4 महीने मजे आने वाले हैं. तो देखिए आप किस तरह से जो है इस दिन को यानी कि आज क्या क्या कर रहे हैं जल्दी से मुझे बताइएगा, कि कोई बाहर जाने का प्लान है या फिर क्या प्लान कर रहे हैं कि आज बस घर पर सोना है, तो जल्दी से मुझे मैसेज करके बताइए. नंबर बहुत ही आसान है 8010781078. फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड, फील लाइफ.

वेलकम बैक रेडियो मैंने रचना 107.8 एफएम सुन रहे आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती हैं बातें। और इसी के साथ वक्त जो है ये हो चला है अब आपसे इजाजत लेने का। आज डॉक्टर राजेश के साथ हमने ढेर सारी बातें करी है।

लेकिन अब देखिए मैं आपसे इजाजत लूंगी, कल होगी मुलाकात क्योंकि कल है मंडे का दिन। आज रहूंगी सुबह सुबह आपके पास 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके साथ रहूंगी, तो आप मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप कहीं मत जाइए, खूबसूरत गाने सुनिए, एंजॉय कीजिए, ओनली ऑन रेडियो मानवरत्न 107.8 FM, फील गुड फील लाइफ, बाय बाय, टेक केयर।

0: योर सिटी योर रेडियो फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन रेडियो मानोरंजना 107.8 एफएम।
1: वेल हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार सत श्री अकाल राम राम जय माता दी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं आरजे सागर आया हूं लेकर के शो आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की। इस वक्त आप लोग सुन रहे हैं रेडियो मानवश्ना 107.8 एफएम और ये जो शो है हमारा ये बहुत स्पेशल होता है। रीजन बीइंग मैं हर बार ये बात आपको बोलता हूं कि एक एजुकेशनल शो के तौर पे आपको ये शो सर्व करता है। आपको प्रोसेस के बारे में पता लगता है, आपको पूरे स्टार्टअप के बारे में पता लगता है, एक स्टार्टअप कैसे शुरू होता है, इंडस्ट्री के बारे में आपको पता लगता है, आपको पता लगता है फाउंडर्स कौन है, उनका बैकग्राउंड क्या है, आपको पता लगता है कि जिस कंपनी की बात हो रही है उसने अलग क्या किया। सो आज वापस से लेकर के आए एक और शो, करेंगे डिस्कस कौन सी कंपनी है, किस इंडस्ट्री में डील करती है। सो मेनी थिंग्स आर देयर, जस्ट स्टे ट्यून्ड विद अस क्योंकि अभी लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक। फील गुड फील लव।

पुरसरार चंदन का दिन में आज भी कितना हसीन दिखाई दे रहा है। हर तरफ बहार ही बहार छाई हुई है।

बिना किसी देरी के अपने शो को यहाँ से हम आगे लेकर चल रहे हैं। दोस्तों मैं हूँ सागर, शो चल रहा है आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। आप लोग जुड़े हुए रेडियो मधुबनी 107.8 FM के साथ, फील गुड फील लाइव। तो आज की जो हमारी इंडस्ट्री है भैया, उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं पहले। मतलब कंपनी की तरफ तो बहुत बाद में हम लोग चलने वाले हैं, पहले आपको इंडस्ट्री समझाते हैं। दिस इंडस्ट्री इज इन शॉर्ट टेक, सिंपल पॉइंट है, इंश्योरेंस प्लस टेक्नोलॉजी इक्वल्स टू इंश्योर टेक। अभी देखिए, टेक्नोलॉजी लगभग लगभग हर एक इंडस्ट्री के साथ जुड़ चुका है। अब चाहे आप फाइनेंस की बात करें, आप चाहे हेल्थ केयर की बात करें, आप चाहे फैशन की बात करें, आप चाहे मेडिकल की बात करें, हर जगह पर आपको टेक वर्ड सुनाई देता है। उसकी वजह हम सब लोग समझते हैं कि टेक्नोलॉजी की वजह से ये सारी चीज़ें जो है डिजिटलाइज हो पाई है। तो वैसे ही हमारी आज की जो कंपनी है वो डील करती है इंश्योर टेक में। बेसिकली इंश्योरेंस कंपनी है लेकिन डील करती है इंश्योरेंस प्लस टेक्नोलॉजी वाले एरा में, तो इंश्योरटेक में आ जाती है। पहले इंडस्ट्री को यहाँ पर हम लोग आपको समझाएंगे बहुत अच्छे से। तो इंश्योरटेक में जो कंपनीज डील करती हैं, दीज कंपनीज आर हैविंग अ सेट ऑफ टूल्स जो यूज करते हैं सॉफ्टवेयर, डेटा ऑटोमेशन, API बोले तो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है, इनका इस्तेमाल करते हैं टू क्रिएट इंश्योरेंस, टू सेल इंश्योरेंस, टू गिव यू द सर्विसेज, टू सेटल इंश्योरेंस, ठीक है, जो ज़्यादा फास्ट हो सकता है, कॉस्ट इफेक्टिव थोड़ा होता है ये, प्लस ज़्यादा कस्टमर्स तक पहुँच सकते हो आप। इसको आप ऐसे समझिए कि एक दुकान है जो एक लोकल मार्केट में खुली हुई है, अब वो दुकान कितने लोगों तक पहुँच सकती है एक लोकल मार्केट में, हद से हद क्या होगा, वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू अब दुनिया जहां में वो खबर पहुंचा देंगे कि वहां पर एक दुकान है सबसे अच्छा सामान देती है, बट स्टिल देयर आर लिमिटेशंस। वही सेम चीज अगर वही दुकान ऑनलाइन हो जाए, वही दुकान अगर टेक्नोलॉजी के ऊपर आ जाए, किसी तरीके से ग्लोबल एक्सेस उस दुकान का मिल जाए, तो उसके कस्टमर बाई डिफॉल्ट ज्यादा बढ़ चुके होंगे। ऐसा नहीं है, चीज़ों के ड्रॉबैक नहीं होते, हर चीज़ के होते हैं, लेकिन यहाँ पर फिलहाल हम इंडस्ट्री को समझ रहे हैं। और क्योंकि हम लोग इंश्योरटेक की बात कर रहे हैं तो टेक्नोलॉजी के एरा में इंश्योरेंस कैसे ऑपरेट कर रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। सो दिस इज द इंडस्ट्री, ठीक है, यहाँ पर चाहे इंश्योरेंस को सेटल करना हो, चाहे इंश्योरेंस जो है बनाना हो, बेचना हो, खरीदना हो, सब कुछ जो है डिजिटली होता है। यहाँ पर ऑटोमेटेड अंडर

कनेक्टिंग होती है विद डेटा, एम्बेडेड इंश्योरेंस होता है वाया API, ठीक है, माइक्रो जो है प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं, मोटर प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं, हेल्थ प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं, सब कुछ बेचा जाता है थ्रू एप्लीकेशंस और आई वुड से मार्केट प्लेसेस। जी हाँ, मार्केट प्लेसेस भी हैं, जैसे पॉलिसी बाजार है वो एक मार्केट प्लेस है जहां पर आपको सारे इंश्योरेंस मिल जाते हैं एक ही जगह पर। So this is the overview of this industry. We are addressing it. The name of this industry is InsurTech. लेंगे एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद बताएंगे आपको इंडिया में कैसे ये काम कर रहा है। लेकिन फिलहाल मजा लीजिए इन गानों को और जुड़े रहिए हमारे साथ। फील गुड फील लाइफ।

वेलकम बैक। आशा करता हूँ म्यूजिकल वाइब आपको पसंद आई है। फिलहाल इसी के साथ अपने शो को आगे लेकर चलेंगे। मैं हूँ सागर। शो चल रहा है यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। पहले इंडस्ट्री को हम आपको समझा रहे हैं यहाँ पर, जो कि है इंश्योरटेक, यानी कि इंश्योरेंस एंड टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पर बात करेंगे इंश्योरटेक इंडिया में कैसे काम कर रहा है, मतलब करंट रियलिटी क्या है इंश्योरटेक की इंडिया में। और यहाँ पर देखिए, हम बिल्कुल ऐसी बातें करते हैं जो आपके लिए वाकई में काम आ सकती हैं, जो वाकई में आपके जीवन में कुछ मूल्य जोड़ सकती हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ग्रोथ बहुत तेजी से हो रही है, बट अभी भी हमें बात एक्सेप्ट करनी होगी कि हम अर्ली स्टेज में हैं। उसका रीजन ये है कि बहुत सारे नए नए स्टार्टअप्स जो हैं वो आए हैं और बहुत ज़्यादा पुराने नहीं हुए हैं, ठीक है। मल्टीपल रिसर्च हाउसेज हैं ऐसे जो प्रोजेक्ट करते हैं मल्टी बिलियन डॉलर ग्रोथ इन द कमिंग 5 to 10 years, ठीक है, जो मतलब लिटरली काफ़ी अच्छा खासा आपको जो है दिखाई देगा। और यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं कि जो प्रोजेक्ट्स हैं वो डबल डिजिट में कन्वर्ट होने वाले हैं। जैसे 2024 की बात करते हैं, 0.9 billion US dollars, ये एक आप कह सकते हैं कि मार्केट वैल्यू था। 2030 तक ये डबल डिजिट में हो सकता है। इससे पता लगता है कि भैया बहुत तेजी से मार्केट जो है वो ग्रो कर रही है। यहाँ पर 3 ऑपरेटिंग मॉडल जो हैं वो डोमिनेट करते हैं इंडियन मार्केट को। पहला है डिजिटल इंश्योरेंस, जिसको आप कह सकते हैं जो न्यू एज जनरल इंश्योरेंस है, जैसे एको है, डिजिट है, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स आपको ऐसे नजर आएंगे जो डिजिटली आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सेकंड जो यहाँ पर मॉडल है वो है मार्केट प्लेसेस, या फिर आप उनको एग्रीगेटर बुला सकते हैं, या फिर आप उनको ब्रोकर्स भी बुला सकते हैं। इसमें पॉलिसी बाजार बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है जिसके नाम हम सब ने सुना है। उसके बाद दूसरा नाम है रिन्यू बाय, तीसरा नाम है टर्टलमेंट, ठीक है। ये वो कह सकते हैं कि आप मॉडल्स हैं जो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मल्टीपल ब्रांड्स के जो हैं इंश्योरेंस दिखा सकते हैं, जिनको आप कंपेयर कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली आप उनको बाय कर सकते हैं। तीसरा यहाँ पर जो मॉडल डोमिनेट करता है वो है B2B टेक प्रोवाइडर। तो इंडिया में जो B2B टेक इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स हैं वो आप एक तरीके से समझ सकते हैं कि एक ऐसा लैंडस्केप है जो प्राइमरीली काम करता है बाय इंश्योर टेक कंपनी, लेकिन इनका काम होता है कि टेक्नोलॉजिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म्स हैं, वो बनाना तैयार करना इंश्योरर्स के लिए। यानी कि जो इंश्योरेंस में डील करती हैं कंपनी, जो डायरेक्ट आपको इंश्योरेंस सेल करती हैं, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, डिस्ट्रीब्यूशन के प्लेटफॉर्म तैयार करना, वो सारी चीजें यहाँ पर जो है ध्यान में रखी जाती हैं। मतलब ये डायरेक्ट अंडरराइटिंग नहीं करते हैं पॉलिसीज की, बट जो फर्म्स हैं उनको एम्पावर करते हैं, ठीक है, बाय सिंपली यू नो सिंप्लीफाइंग देयर प्रोजेक्ट्स। यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि रिस्क कवरी भी आपको नजर आता है, जिसमें एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म है विद API जो बैंक्स, NBFCs एंड बाकी अदर कंपनीज को इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स जो है ऑफर करता है डिजिटली। तो ये एक आप तरीके से समझ सकते हैं कि बिजनेसेस के लिए ज्यादा काम करता है, मतलब रेदर देन बीइंग डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विद अ कस्टमर, जो एंड कस्टमर है उसके ऊपर ना जा करके इंश्योरेंस कंपनीज को ये जो कैटेगरी है वो टारगेट करती है। तो ये मेजरली 3 मॉडल्स हैं जो इंडियन मार्केट में डोमिनेट करते हैं, जो मैंने अभी यहाँ पर आपको बताया। एक है डिजिटल इंश्योरेंस, दूसरा है मार्केट प्लेसेस, और तीसरा है B2B टेक प्रोवाइडर्स। अब लेंगे एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद अगले पॉइंट्स की तरफ चलेंगे। फिलहाल जो हमारा पॉइंट है वो है इंडिया में जो करंट रियलिटी है इंश्योरटेक की, उसको हमने आपको समझाने की कोशिश करी थोड़ी थोड़ी। फिलहाल जुड़े रहिए हमारे साथ, खिंच जाइएगा मत। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक। उम्मीद कर रहा हूँ आपकी म्यूजिकल वाइब पसंद आई। बिना किसी देरी के शो को आगे लेकर चलेंगे। मैं सागर, शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दोस्तों, इंडिया में जो करंट सिनेरियो है, जो करंट रियलिटी है इन शॉर्ट टेक कंपनीज की, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक हमने आपको एक ओवरव्यू दिया, मार्केट ग्रोथ बताई और जो मेन डोमिनेटिंग मॉडल्स हैं इंडिया में जो ऑपरेट करते हैं वो आपको बताए। एक और पॉइंट यहाँ पर आपको जानना होगा कि हमारे यहाँ पर रेगुलेटरी एनवायरनमेंट है जो फ्रेंडली तो है बट बहुत स्ट्रिक्ट है, जिसको हम जानते हैं IRDAI के नाम से, जो एक गवर्निंग बॉडी है, एक रेगुलेटरी बॉडी है जो सारी इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं उनको ये कह सकते हैं आपकी देखती है, उनको लुक आफ्टर करती है। इसका पूरा नाम है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एक ऐसा प्रोसेस है जो ये इंश्योर करता है किसी कस्टमर के साथ गलत ना हो और कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस यहाँ पर फॉलो ना की जाए। ठीक है, टाइम टू टाइम यहाँ से हमें गाइडलाइंस भी मिलती हैं, सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स को भी यहाँ पर डिफाइन किया जाता है। मतलब एक्सपेरिमेंटेशन अलाउड तो है बट कंप्लायंस बहुत हैवी है। डेटा सिक्योरिटी बहुत जो है अच्छे से यहाँ पर देखा जाता है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है, बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो सेलिंग इंश्योरेंस वर्सेस बीइंग अ टेक पार्टनर, ये दो अलग चीजें हो जाती हैं, लेकिन रेगुलेटरी बॉडी हमारे पास है लकीली जो इन सारी चीजों को लुक आफ्टर करती है। सो दैट्स हाउ थिंग्स आर यू नो वर्किंग इन इंडिया। प्लस फंडिंग एंड कंसोलिडेशन जो है वो भी इंडिया में अच्छा खासा हमें नजर आया है बीते कुछ सालों में। बट अगेन दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ आर डिस्कशन बिकॉज ये बहुत अलग हो जाता है। बट इतना कह सकते हैं कि इन्वेस्टर्स अभी बहुत हैं जो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। इनफैक्ट बहुत सारी फॉरेन ऐसे ब्रांड्स हैं फॉरेन के जो यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं और यहाँ के जो स्टार्टअप्स हैं उनको एम्पावर करते हैं। आइए बात करते हैं की इनसाइट्स की एंड डिमांड ड्राइवर्स की, लाइक एग्जैक्टली कौन सा वो पैटर्न है, कौन सी वो चीज़ है जो इस इंडस्ट्री को आगे लेकर के जा रहा है। देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है स्मार्टफोन प्लस डिजिटल पेमेंट एंड प्लस KYC। मतलब ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। इंश्योरेंस जब आप खरीदते हैं तो पहले हुआ करता था आपको फॉर्म भरना होता था, फिर आपको पैसे पे करने होते थे, आपको अपना जो आईडी प्रूफ है वो जमा कराना होता था। अब ऑनबोर्डिंग बहुत ईजी हो गई है, लो कॉस्ट पेमेंट जो है यहाँ पर आपको दिखाई देती है, स्मॉल टिकट्स जो है वो आप यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से इंश्योरेंस एक्सेसिबल हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दिस आप अपने फोन से खरीद सकते हैं, आपके पास फोन है, एक इंटरनेट का कनेक्शन आपके पास है, दैट्स ऑल यू नीड। आधार हमारे पास ई आधार जैसी ऑप्शंस अभी अवेलेबल हैं, प्लस हम सबके पास इतना होता है कि हम ऑनलाइन जाकर के महज कुछ बॉक्सेस जो है वो हमें टिक करने होते हैं, इन्फॉर्मेशन डालनी होती है एंड वी आर डन। तो ये एक आपको मेजर समझना होगा कि डिमांड ड्राइवर है। सेकंड है एम्बेडेड इंश्योरेंस इज ह्यूज, ट्रैवल, ई कॉमर्स, मोबिलिटी एंड जो फिनटेक प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी दोस्तों कंटेक्चुअल जो इंश्योरेंस है वो बेच सकते हैं एट पॉइंट ऑफ नीड। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि मल्टीपल पार्टनरशिप्स आपको मिल जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा आपने बस की टिकट बुक करी है, अब बस की टिकट के साथ वो 10 रुपये या 20 रुपये एक्स्ट्रा लेते हैं और वहां पर आपको एक इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं आपकी ट्रैवल जो जर्नी है उसके लिए, होता है ना ऐसे। ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसी बहुत सारी और चीजें हैं। तो ये क्या हुआ, एक और पार्टनर हमने वहां पर जोड़ लिया। तो ऐसे करके ज्यादा तेजी से वो जो है एक तरीके से आप समझ सकते हैं मल्टीप्लाई हुई है ये मार्केट इंडिया में, क्योंकि मल्टीपल पार्टनर्स आ गए हैं अभी हमारे पास। सो दैट्स हाउ थिंग्स आर वर्किंग। वक्त एक और म्यूजिकल ब्रेक का, उसके बाद फर्दर और कुछ की इनसाइट्स और डिमांड ड्राइवर्स हैं जो हम आपको बताएंगे, लेकिन ये सब बातें होंगी इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद। जुड़े रहिए हमारे साथ, फील गुड फील लाइफ।

वेलकम बैक, मेरा नाम सागर, शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। आप लोग जुड़े हुए रेडियो मार्वेस्टा 107.8 एफएम के साथ। दोस्तों, हम यहां पर इंश्योर टेक जो इंडस्ट्री है उसको आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें अगला पॉइंट आता है डेटा एंड मशीन लर्निंग, जो एक और की ड्राइवर के तौर पर आप उसको समझ सकते हैं। स्टार्टअप्स जो हैं अभी डेटा यूज करते हैं, और टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं, जब भी कोई टेक प्लेटफॉर्म बनाया जाता है, वहां पर डेटा, मशीन लर्निंग, इन चीजों का ही मेन रोल होता है, जिसकी बदौलत ये प्लेटफॉर्म्स जो हैं खड़े हो पाते हैं और लोगों की प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर पाते हैं। सो या दैट इज अनदर थिंग। बट हाँ, यहाँ पर यह है कि एडवांटेज है तो एट द सेम टाइम डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि डेटा प्राइवेसी को लेकर बहुत सारे कंसर्न्स भी बने होते हैं। आपने देखा होगा, एक इंश्योरेंस कंपनी को अगर आप कॉल करेंगे तो आपके पास 4-5 इंश्योरेंस कंपनीज की तरफ से कॉल आने शुरू हो जाते हैं। सो इट शोज कि हमारा डेटा कैसे ट्रेवल होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कस्टमर ट्रस्ट एंड क्लेम एक्सपीरियंस। ठीक है, जो एक और इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब मार्केट में वो प्लेयर रुकेगा जो कस्टमर के ट्रस्ट को गेन करेगा, और जब क्लेम की बारी आएगी तो वहां पर क्लेम जो है टाइमली प्रोसेस कर दिया जाएगा, बेवजह उसको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, सारे ग्राउंड चेक किए जाएंगे। इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी टीम कितनी स्ट्रांग है, कितना आप जो है वहां पर बैकएंड पर काम करके चल रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर बैड हैंडलिंग जो है वो अफोर्ड नहीं की जा सकती है किसी भी कंपनी के द्वारा, क्योंकि अगेन मैं पहले भी बात बताई थी कि हमारे पास IRDA है जो पूरे इंश्योरेंस को रेगुलेट करती है, गवर्निंग बॉडी है हमारे पास। सो देर आर मल्टीपल थिंग्स, मतलब इंश्योरेंस में ओम्बड्समैन होता है जिनको आप रीच आउट कर सकते हैं अगर कोई चीज़ ऐसी प्रॉब्लमेटिक है जो आपको तंग कर रही है, या आपको लग रहा है कि आपके राइट्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, यू कैन गो टू ओम्बड्समैन। वहां से आप सेटिस्फाई नहीं है, यू कैन गो टू IRDA। सो देर आर प्रोसेसेस जो यहाँ पर बनाए गए हैं इसलिए कि चीजें स्मूथली यहाँ पर रन कर पाए। इसलिए कस्टमर का ट्रस्ट गेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और सही तरीके से हैंडल करना ये बहुत जरूरी है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को टॉलरेट नहीं किया जाता है। रेगुलेशन शेप्स प्रोडक्ट चॉइसेस। जो भी इंश्योरर्स को लाइसेंस मिलता है, ठीक है, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस है या वो हेल्थ इंश्योरेंस है, वहाँ पर कैपिटल की ज़रूरत होती है, टाइम की ज़रूरत होती है। बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो सक्सीड हुए हैं एज डिस्ट्रीब्यूशन, एज ब्रोकिंग, एज टैक्स सर्विस, जो बहुत अलग अलग तरीके से आपको नज़र आती हैं चीज़ें, कि मल्टीपल कैटेगरीज में इंश्योरेंस कंपनीज डील करती हैं। मतलब ये बहुत टेक्निकल हो जाता है, बट अल्टीमेटली डिपेंड्स कि आपके पास कैपिटल कितनी है, कितना टाइम है, क्या क्या प्रोडक्ट आप बना रहे हैं। वो अच्छी बात ये है कि अभी इतनी सारी हमने वर्टिकल्स बना दिए हैं, इतनी सारी चीज़ें आ गई हैं बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, तो छोटे लेवल पर भी प्लेयर जो है ऑपरेट कर सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि आपको बहुत बड़ा एक ऐसा ही ब्रांड ओपन करना है जो इंश्योरेंस ही कवर कर रहा है, आप एक ऐसा ब्रांड भी ओपन कर सकते हैं जो मार्केट प्लेस के तौर पर सर्व कर रहा है, या जो एक ब्रोकरेज फर्म है जो यहाँ पर वाजिब एक बिजनेस है। ऑल डिपेंड्स कि आपके पास कितना कैपिटल है। So yeah, वो है कि एक लाइसेंस मिलता है, उसके बाद एक जो कंपनी है वो यहाँ पर काम कर सकती है। वक्त एक और म्यूजिकल ब्रेक का, स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।

हूँ आपको ये गाने पसंद आए। फिलहाल इसी के साथ शो को आगे लेकर चलेंगे। मैं हूँ सागर। शो चल रहा है यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत, और जो हमारी आज की इंडस्ट्री है वो है इंश्योरटेक, जिसको यहाँ पर समझ रहे हैं। अभी तक हमने बात करी दोस्तों कि क्या है ये इंश्योरटेक, कैसे काम कर रहा है ये इंडिया में, की इनसाइट्स क्या है, डिमांड ड्राइवर्स क्या है। आइए बात करते हैं एक प्रैक्टिकल रोड मैप की, जो अगर आप अपना कुछ स्टार्ट करने का सोच रहे हैं सो इट माइट हेल्प यू आउट। तो यहाँ पर जो है भैया 12 से 18 महीने का एक जो है प्लान बनाना होगा फॉर अ स्टार्टअप, अगर आप इंडिया में इंश्योरेंस में कोई अपना ब्रांड ओपन करना चाहते हैं। और यहाँ पर एक बहुत स्मॉल फाउंडिंग टीम को जो है हम यहाँ पर अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। आपके पास लिमिटेड इनिशियल फंडिंग है, और उसके बाद क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे फेजेज आते हैं वो मैं समझा रहा हूँ। लेकिन पहले ही मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये कोई गारंटीड रोड मैप नहीं है, ये बस एक रेफरेंस के तौर पर है टू गिव यू मोर क्लैरिटी, मोर स्पेसिफिक क्लैरिटी ऑन दिस पार्ट, कि अगर आपको अपना कुछ स्टार्ट करना है सो हाउ कैन यू एंटर इन दिस इंडस्ट्री। पहला है चूज योर बिजनेस मॉडल। आपको डिजिटल इंश्योरर बनना है, आपको B2C एग्रीगेटर बनना है, मार्केट प्लेस बनना है, या ब्रोकर बनना है जो बहुत फास्टली आप लॉन्च कर सकते हैं, कमीशंस के द्वारा जो है आपको यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट होता है। फिर है B2B2C टेक API प्रोवाइडर, जिसको आप IaaS के तौर पे जानते हैं, यानी कि इंश्योरेंस एज अ सर्विस, जो है प्लेटफॉर्म्स बनाता है, तैयार करता है नए जो स्टार्टअप्स होते हैं उनके लिए, जो हमने पहले बात भी करी थी, ठीक है। या फिर आप एक एम्बेडेड प्रोडक्ट पार्टनर के तौर पर भी यहाँ पर आ सकते हैं, अगर स्पीड चाहिए आपको, आपको मॉडरेट रेगुलेटरी बर्डन चाहिए। कुल मिलाकर के भैया बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे वर्टिकल्स हैं। लेकिन एक चीज यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ, एक जो एक ब्रूटल ऑनेस्ट चीज है यहाँ पर वो ये है कि अगर आपके पास कैपिटल नहीं है और कोई भी रेगुलेटर एक्सपीरियंस नहीं है तो एज अ इंश्योरेंस आपको स्टार्ट नहीं करना चाहिए, स्टार्ट एज B2B और एग्रीगेटर, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो पहला जो काम है आपका वो है प्रॉब्लम वैलिडेशन एंड कस्टमर डिस्कवरी। एक आपको टाइट वर्टिकल और चैनल को जो है समझना होगा, उसको आइडेंटिफाई करना होगा, जैसे माइक्रो हेल्थ इंश्योरेंस फॉर गिग वर्कर्स जो अभी नहीं है एग्जैक्टली, ठीक है। यूज्ड कार मार्केट प्लेसेस में बहुत ज्यादा वो नहीं हुई है अभी कि उनका इंश्योरेंस कैसे होगा, तो ऐसी बहुत सारी और चीजें हैं जो अभी कवर की जानी है, ठीक है। ट्रेवल इंश्योरेंस, जिसको और अच्छे से जो है कवर किया जा सकता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको आइडेंटिफाई करनी होगी कि किस प्रॉब्लम को आप टारगेट कर रहे हो। सेकंड आता है फिर टेक्निकल कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होंगी, प्लस जो लीगल डिजाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक मिनिमल प्रोडक्ट आपको बनाना होगा, चेकआउट फ्लो जिसमें बहुत आसान होगा, कोट इंजन जो है बहुत ईजी होगा, यूजर इंटरफेस बहुत आसान होगी, कोई भी इंसान अगर आए तो वो ईजिली खुद से नेविगेट उसको कर पाए। पॉलिसी डॉक्यूमेंट जनरेटर जो है वो आपको यहाँ पर क्रिएट करना होगा, एक बैकएंड पर प्रोसेस आपको बनाना होगा जो डायरेक्ट कस्टमर का डाटा लेगा और जनरेट कर देगा उसके लिए पॉलिसी क्या ठीक रहेगी, ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। आपको टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो ड्राफ्ट करनी होंगी, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ताकि कंप्लायंस इश्यूज ना हो यहाँ पर, और IRDA जो है वो आपको तंग ना करे, इसके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि IRDA का काम ये है कि अच्छे से यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी जो है ऑपरेट करें, ये देखना। उसके बाद आता है रेगुलेटरी सैंडबॉक्स इफ एप्लीकेबल, जहाँ पर आपको जो है क्लेम की फ्रीक्वेंसी, टाइम टू सेटलमेंट, वो टेक्निकल चीज़ें हो जाती है, उसकी तरफ ना जाएं तो ही बेटर है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है स्केल डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑटोमेट ऑपरेशंस। आपको अंडरराइटिंग को ऑटोमेट करना होगा जहाँ पर पॉसिबल हो सकता है, जैसे मशीन लर्निंग है, पेमेंट्स का आपको इंटीग्रेट करना होगा, आपको KYC के ऊपर जो है मास्टरी हासिल करनी होगी, जिसकी वजह से आप इस चीज़ को जो है और अच्छा बना सकते हैं। उसके बाद फिर आपको फंड रेजिंग एंड ग्रोथ की तरफ जाना होगा, मतलब क्योंकि मैंने बताया कि इन्वेस्टर्स बहुत सारे हैं जिनकी तरफ आपको जाना होगा। सो इंश्योरेंस एक ऐसी कैटेगरी है दोस्तों जो

फील गुड, फील लाइव। उम्मीद कर रहा हूँ आपको अभी तक इंडस्ट्री समझ आ गई है। लेट्स टॉक अबाउट द कंपनी। फाइनली जो आज की हमारी कंपनी है वो है आर्टिवेटिक। आर्टिवेटिक.ai इसका पूरा नाम है। ओके, ये अपने आप में बहुत खास हो जाती है क्योंकि इंश्योर टेक में डील करती है, हेल्थ टेक में डील करती है। इन दो सेगमेंट्स को आप मर्ज कर सकते हैं यहाँ पर। सो बेसिकली व्हाट दिस कंपनी डज, दिस कंपनी इज सिंपली यूजिंग AI, मशीन लर्निंग एंड डेटा, और यहाँ पर ये इंश्योरेंस प्रोसेस को जो है ऑटोमेट करते हैं। सो बेसिकली इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो इंश्योरर्स की हेल्प करता है विद अंडरराइटिंग, रिस्क असेसमेंट, क्लेम्स, फ्रॉड डिटेक्शन, कस्टमर ऑनबोर्डिंग एंड पर्सनलाइज्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। सो इन सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं, आर्टिवेटिक एक आप कह सकते हो एक ऐसी कंपनी है जो ये कोशिश कर रही है टू मेक इंश्योरेंस फास्टर, स्मार्टर एंड लेस डिपेंडेंट ऑन मैनुअल पेपर वर्क। अच्छा, ये काम कैसे करता है? सिंपल सा तरीका है, जब आप इंश्योरेंस कोई खरीदने जाते हो तो उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे प्रोसेस हैं जो इन्वॉल्व होते हैं। आपको इंश्योरेंस मिलेगा किस ग्राउंड पे आपको मिलेगा? आप बोलते हो कि मेरे को 5 करोड़ रुपए का सम अश्योर्ड चाहिए, तो देखा जाएगा कि आप उतना प्रीमियम पे कर सकते हो। कोई फ्रॉड वाला एंगल तो नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं है मल्टीपल कंपनीज से आपका इंश्योरेंस चल रहा हो और आप यहाँ पर आ गए हैं? तो ये तमाम चीज़ें डिटेक्ट की जाती हैं, इसके लिए प्रोसेस होता है। फिर अंडरराइटिंग होती है, रिस्क मैनेजमेंट होता है, देखा जाता है कि कितना रिस्क है। लेट्स से एक इंसान है स्मोकर है और एक इंसान है नॉन स्मोकर है, अब दोनों का रिस्क असेसमेंट बहुत अलग तरीके से किया जाएगा। ये तमाम चीज़ें जो है बैकएंड प्रोसेस का पार्ट होती है। तो ये जो कंपनी है जिसकी आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आर्टिवेटिक, ये AI टूल बना दी है जो AI टूल हेल्प करता है इंश्योरेंस की कि वो इन तमाम चीज़ों को विदाउट रिलाइंग ऑन मैनुअल वर्क वो असेस कर सके। हालांकि बहुत सारी डाटा की वहाँ पर जरूरत होती है, बट द बॉटम लाइन इज की दैट दिस कंपनी इज हेल्पिंग अदर कंपनीज इन इन यू नो इशूइंग इंश्योरेंस एंड असेसिंग द रिस्क एंड डूइंग द अंडरराइटिंग पार्ट एंड डिटेक्टिंग द फ्रॉड्स एंड जस्ट हेल्पिंग कस्टमर्स इन प्रोसेसिंग विद द क्लेम्स। दैट इज द ओवरव्यू। फिलहाल लेंगे एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।

feel good, feel live. Okay, what was the idea behind it? Artivatic start हुई थी 2017 में. Operation 2017 में start हुआ था. इसको start किया था लायक सिंह एंड पुनीत टंडन ने. इन दो founders को जो है ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट करते थे बिफोर Artivatic. इनका एक्सपीरियंस रहा है अच्छा खासा, एक्सपेरिमेंटल काफी जो है ये लोग रहे हैं. इनका इनसाइट बहुत सटीक था कि इंश्योरेंस में ना बहुत ज्यादा स्लो वर्क है, बहुत ज्यादा मैनुअल वर्क है, ह्यूमन डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है, डिसीजन मेकिंग में बहुत ज्यादा प्रोसेस जो है वहां पर इन्वॉल्व होते हैं. सो दे बिलीव्ड इन दिस थिंग कि AI जो है बड़े डेटाबेस को एनालाइज कर सकता है, इवेल्युएट कर सकता है, डिसीजंस फास्ट जो है लिया जा सकता है, ज्यादा एक्यूरेसी के साथ लिया जा सकता है. सो द कंपनी इनिशियली एक्सप्लोर्ड डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ इट्स टेक्नोलॉजी, बट इवेंचुअली उन्होंने इंश्योरेंस में लेकर के आ गए और इंश्योरेंस में अच्छा काम कर रही है कंपनी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फाउंडर्स, जो नाम मैं यहाँ पर आपको बता चुका हूँ, लायक सिंह एंड पुनीत टंडन. लायक सिंह इज एन IIT खड़गपुर एलुमनस और एक सीरियल एंटरप्रेन्योर हैं. बिफोर Artivatic उन्होंने काफ़ी वेंचर्स जो हैं वो बिल्ड किए, जिसमें एजुकेशन, लाइफस्टाइल, डेटिंग एंड एक कॉगशियो बहुत फेमस एक प्लेटफॉर्म है जो इनका एक अच्छा खासा आप कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस रहा है. जहाँ पर दूसरा नाम है पुनीत टंडन. पुनीत का बैकग्राउंड रहा है टेक का और प्रोडक्ट का. पुनीत ये बैकग्राउंड लेकर के आते हैं. इनका भी मल्टीपल जो है कंपनीज के साथ एक्सपीरियंस रहा है, जैसे कि स्कॉलास्टिक एंड मैग्नासॉफ्ट एंड कॉगजियो, साथ साथ MS फ्रॉम न्यू जर्सी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी. प्रीवियस स्टार्टअप इन्होंने आप कह सकते हैं कि दोनों का ही अच्छा खासा यहाँ पर काम आया, जहाँ पर प्रीवियस स्टार्टअप से इनको जो एक्सपीरियंस मिला, जो एजुकेशन मिली, जो लर्निंग्स इनकी रही वहाँ पर. तो ये चीज़ें हैं इनकी जो यहाँ तक लेकर के आई और इस कंपनी को स्टार्ट किया. तो बॉटम लाइन ये है कि कोई भी चीज़ आप आज कर रहे हो वो आपकी कभी वेस्ट नहीं होगी, कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपके काम वो चीज़ ज़रूर आएगी, जो यहाँ पर इस केस में भी हम लोग देख पा रहे हैं कि इन दोनों ने अलग अलग जगहों पर काम किया, डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स में काम किया, बहुत ही अलग अलग एक्सपीरियंसेस रहे एंड एग्जैक्टली वो सब आकर के काम आया इनकी इस कंपनी में, विच इज Artivatic. आप मुझे बताइए कोई इसमें आपको डाउट है या कुछ पूछना चाहते हैं तो 8010781078 पर. फिलहाल लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात करेंगे. स्टे ट्यून्ड. बिल्कुल

गुड फील लाइव। मैं सागर, शो चल रहा है पर आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की। दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं जिस कंपनी की, उसका नाम है आर्टिवेटिक। और यहाँ पर अभी तक हमने जाना है कंपनी के ओवरव्यू के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में हमने जाना है, फाउंडर्स के बारे में, उनके बैकग्राउंड के बारे में, ये कंपनी अलग क्या करती है या इस कंपनी ने अलग से क्या किया। तो ओवरव्यू में हालांकि मैं बात क्लैरिफाई कर चुका हूँ, बट स्टिल ट्रेडिशनली जो चीज़ें होती थी, जो इंश्योरेंस हम लोग इशू करते थे, उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा होता था, इंसानों के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी थी। सो बेसिकली मेडिकल रिकॉर्ड्स को चेक करना, KYC करना, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट्स, क्लेम हिस्ट्री, तमाम जो डेटा सेट है उसको एक सॉफ्टवेयर में कंपाइल किया जाता है, वहाँ पर फिर उसको कंपाइल करके रिस्क डिसाइड किया जाता है। आर्टिवर्टिक ने जो है ये चीज़ थोड़ी सी अलग तरीके से करी। उन्होंने बेसिकली सारे प्रोसेस को कंपाइल करके एक AI टूल बनाया। हालांकि ओवरनाइट नहीं हुआ है, मैं ये भी कहूंगा कि बहुत सारे प्रोसेस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ होती है, क्योंकि बहुत बारीक बारीक चीज़ें होती हैं जब आप इंश्योरेंस की बात करते हो। एक कस्टमर को समझना, रिस्क फैक्टर समझना कि वो कस्टमर इतना जो उसने सम अश्योर्ड लिया है कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली कंपनी का पॉइंट ये है कि उनको अपना रिस्क मिनिमाइज करना है। तो ये तमाम चीज़ें जो है अंडरराइटिंग का पार्ट होती है। तो आर्टिवर्टिक का जो सिस्टम है वो तमाम इंफॉर्मेशन लेकर के आता है, AI का या मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करता है, उसको एनालाइज करता है, रिस्क को स्कोर करता है, उसकी स्कोरिंग की जाती है, डिसीजंस जो हैं वो रेकमेंड किए जाते हैं। और इनका एक फ्लैगशिप अंडरराइटिंग प्लेटफॉर्म है जो बहुत ज़्यादा चलन में है, इंश्योरेंस कंपनीज जिसको आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं, उसका नाम है ऑसिस, AUSIS। तो यहाँ पर 1200 से ज़्यादा पैरामीटर्स हैं जिनके ऊपर जो है इवैल्यूएशन किया जाता है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स अंडरराइटिंग डिसीजन जो है विद इन 60 सेकेंड्स वहाँ पर वो दिया जाता है, 60 सेकंड के अंदर अंदर डिसीजन मेकिंग यहाँ पर कर ली जाती है और कंपनी को बता दिया जाता है वेदर यू शुड इशू दिस पॉलिसी और नॉट। तो बहुत उम्दा है, जिसमें कंपनीज की बहुत हेल्प होती है, क्योंकि रिस्क असेसमेंट विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन यहाँ पर हो पा रहा है। ये इस कंपनी ने किया अलग। फिलहाल लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड, फील लाइव।

वेलकम बैक, मैं हूं सागर। शो चल रहा है आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की। आज की हमारी जो कंपनी है उसका नाम है आर्टिवर्टिक, और यहां पर हम अब बात करेंगे अपनी कंपनी के यूएसपी की। इस कंपनी की यूएसपी सिंपली ये नहीं हो सकती है वी यूज एआई। द रियल यूएसपी इज एआई पावर्ड इंश्योरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, और इन दो चीजों में बहुत फर्क है। एआई को आप बहुत वेग तरीके से समझ सकते हैं, ब्रॉड कैटेगरी के तौर पर समझ सकते हैं, लेकिन एआई पावर्ड इंश्योरेंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, क्योंकि बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिनको एवेल्युएट करना, जहां पर मॉड्यूलर एपीआई बेस्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, किसी भी कंपनी के एग्जिस्टिंग सिस्टम के साथ जो है उसको अलाइन करना, और सब कुछ स्क्रैच से रीबिल्ड करना। इसमें मल्टीपल स्टेजेस जो है उनको कवर किया जा सकता है, जैसे कि प्रोडक्ट डिजाइन, डिस्ट्रीब्यूशन, अंडरराइटिंग, क्लेम्स, फ्रॉड एंड सर्विसिंग। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। अगर आप कभी किसी इंश्योरेंस कंपनी के ऑफिस में एंटर करेंगे, जो हेड ऑफिस होता है, तो आपको समझ में आएगा कि हर एक डिपार्टमेंट में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं विद इन अ डिपार्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अंडरराइटिंग में भी मल्टीपल होते हैं। एक मेडिकल अंडरराइटिंग होता है, एक नॉन मेडिकल अंडरराइटिंग होता है, फाइनेंशियल अंडरराइटिंग होता है। तो ये तमाम चीज़ें अंडरराइटिंग में आती हैं, लेकिन इतने सारे प्रोसेस होते हैं, सबको ब्रेकडाउन किया जाता है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन होता है, प्रोडक्ट डिजाइनिंग जो बहुत क्रूशियल पार्ट होता है। एक्चुअरीज एक डिपार्टमेंट होता है जो एक इंश्योरेंस पॉलिसी डिजाइन करता है, जिसमें सारी चीजें देखी जाती हैं कि इंश्योरेंस पॉलिसी जो है बनानी चाहिए नहीं बनानी चाहिए, रिस्क फैक्टर क्या होगा, किसको केटर करेंगे, किसको टारगेट करेंगे, बेनिफिट्स क्या होंगे, व्हाट इफ दिस गोज रॉन्ग, व्हाट इफ दिस गोज इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, अगर पॉलिसी कंपनी के लिए घाटा लेकर के आई तो क्या होगा। तो ये तमाम चीजें एक्चुअरीज में आती है, जहां पर रिस्क इवैल्यूएशन किया जाता है, और ये सारी चीजें हमारी जो आज की कंपनी है आर्टिवर्टिक, ये अच्छे से इसको कर पा रही है। एंड आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट यूएसपी ऑफ दिस कंपनी, कि ये तमाम चीजें अलग तरीके से कर रही है। तो ये है जी इस कंपनी की यूएसपी, कि सिंपली एआई नहीं बनाया, एआई बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है जो हेल्प करता है बाकी इंश्योरेंस कंपनीज को, यू नो, पॉलिसी डिसाइड करने में, इशू करनी या नहीं करनी, रिस्क इवेल्युएट करने में, एनालाइज करने में, तमाम चीजें आती है वहां पे। दिस इज आर्टिवर्टिक फॉर यू। Let's take another musical break, then we'll continue the show. Stay tuned with us. Feel good, feel live.

सफर हो। वी गुड वी लाइव, मैं सागर, शो चल रहा है आत्मनिर्भर भारत कहानी कामयाबी की। अब बात करते हैं कंपनी के ग्रोथ ड्राइवर्स की। क्यों ग्रो कर रही है कंपनी? सिंपल सा तरीका है, इंश्योरेंस बहुत ज्यादा मैनुअल था तो यहाँ पर ऑटोमेशन लेकर के आ गई ये कंपनी। तो एक अपॉर्चुनिटी इनको नजर आई कि इनिशियल स्टेज में, अर्ली डेज में, कि एआई कर सकता है कुछ ऐसा। यस, कर सकता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दिया, डिजिटल डाटा इनके पास है, एआई कुड यूज मेडिकल, फाइनेंशियल, बिहेवियरल एंड अदर डाटा फॉर रिस्क असेसमेंट। इंस्टेंट इंश्योरेंस की डिमांड जो है वो ज्यादा बढ़ने लगी है। लोगों को चाहिए पर्सनलाइज एक्सपीरियंस, फटाफट से हमारा इंश्योरेंस इश्यू हो सकता है क्या? अब फटाफट इंश्योरेंस इश्यू का मतलब है कि सारे प्रोसेस इतने तेज करने पड़ेंगे आपको कि मैनुअल वर्क जो इसके पहले था ट्रेडिशनली, उसको इतना फास्ट करना पड़ेगा। फटाफट इवैल्यूएशन हो जाए, अंडरराइटिंग हो जाए, रिस्क असेसमेंट हो जाए, पॉलिसी डिजाइनिंग हो जाए, एक इंसान के लिए कौन सी पॉलिसी ठीक होगी, ये तमाम चीजें कितना जल्दी किया जा सकता है वो कंपनी जीत सकती है जो इसको एक्सेल कर लेगी। क्योंकि हम उस जमाने में जीते हैं जहां पर हर चीज क्विक कॉमर्स के थ्रू हम लोग मंगाने लग गए हैं। तो क्विक कॉमर्स के जमाने में आप कस्टमर को ये नहीं बोल सकते हो कि आप कई महीनों तक वेट करिए या 15 दिन तक वेट करिए तब जाकर के एक डिसीजन लिया जाएगा। हाँ, पहले चीजें चलती थी क्योंकि इतना ज्यादा टेक हमारे पास नहीं था, बट नॉट एनी मोर। और यही बात समझ में आ गई हमारी कंपनी को, विच इज आर्टिवेटिक। एंड नेक्स्ट यहाँ पर आता है कि रिन्यू बाय ने, जो एक और कंपनी है इंश्योरेंस टेक में ही डील करती है, 2022 में एक्विजिशन किया, इस कंपनी का एक्वायर कर लिया। और बहुत ही स्ट्रेटेजिक था क्योंकि वो ऑलरेडी काम कर रहे थे, इंश्योरेंस में अच्छा खासा अनुभव था इनका, आर्टिवर्टिक एक बिल्कुल नया टूल आया था, तो उन दोनों का मर्जर हुआ, तो जिससे आप कह सकते हो कि और ज्यादा एम्पलीफाई हुई चीजें। तो ये है जी हमारी आज की कंपनी, इसके बारे में सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। आई मीन व्हाट एग्जैक्टली दिस कंपनी डज, क्या इन्होंने अलग किया, क्या यूएसपी है, फाउंडर्स कौन है, बैकग्राउंड क्या रहा है, स्टार्टअप स्टोरी क्या रही है, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस ग्रो ड्राइवर्स क्या है। अब आप मुझे बताइए आपको आज की स्टडी कैसी लगी। फिलहाल इसी नोट पर मेरा वक्त है शो को यहाँ पर कंक्लूड करने का। आशा करता हूँ शो आपको पसंद आया होगा। कोई फीडबैक है तो 8017

0: क्या कोई इंसान बंजर पर्वत पे हरियाली ला सकता है, वो भी बिना पैरों के? 70 साल के एक चीनी बुजुर्ग ने बीमारी में दोनों पैर गंवाने के बावजूद एक बंजर पर्वत पे 17,000 पेड़ लगाकर उसे एक हरा भरा जंगल बना दिया।
1: लेकिन हमें किसी पर्वत पर नहीं जाना है, हमें अपने आसपास पेड़ लगाना है।
2: अरे कहाँ पर अटक गए यार?
3: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 FM है, हूं दीक्षा आपके साथ। और आज हम जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात कराने वाले हैं, वो ना केवल फरीदाबाद के निवासी हैं, बल्कि फरीदाबाद हरियाणा को पूरे देश में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और रिप्रेजेंट भी ऐसे मंच पर कर रहे हैं, ऐसे काम में कर रहे हैं जिसकी बहुत बड़ी अहमियत होती है। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और साथ ही मीडिया एडवाइजर टू द CM ऑफ हरियाणा, ऑनरेबल CM ऑफ हरियाणा नायब सिंह सैनी जी के मीडिया एडवाइजर हमारे बीच में हैं आज राजीव जेटली जी, जिनको आपने बहुत सारी टीवी डिबेट्स में देखा होगा, बहुत बार इनको मुख्यमंत्री साहब के साथ देखा होगा, बहुत बार सोशल मीडिया पर चर्चाएं करते हुए देखा होगा, डिबेट्स में पार्ट लेते देखा होगा। लेकिन आज हम इनसे जो बातें करने वाले हैं वो पॉलिटिकल नहीं है, बिल्कुल भी पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई बातें नहीं करने वाले हैं। हम बातें करने वाले हैं इनके जीवन की, इनके फिटनेस की और कुछ मोटिवेशन की, वो भी युवाओं के लिए। तो बातों का सिलसिला दोस्तों जारी है, आइए मुलाकात करते हैं राजीव जेटली जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो मानव रचना।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: और दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, इससे पहले कि हम बहुत फॉर्मल या इनके बारे में आपको कुछ बताएं, मैं आपको ये बताते हुए बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ कि लगभग 10 से 12 साल पहले ये हमारी बहुत सी डिबेट्स और बहुत सारे डिस्कशंस का हिस्सा रहा करते थे।
1: यस,
0: हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि राजीव जी आज भी हमसे बात करने के लिए अलग से समय निकाल कर तुरंत आ जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।
1: माय प्लेजर, थैंक यू सो मच।
0: सो राजीव जी, बहुत सारी बातें हम एक पॉलिटिकल डिबेट की तरह नहीं करेंगे, क्योंकि हम रेडियो मानव रचना है, कम्युनिटी रेडियो है और युवाओं के साथ जुड़े हुए हैं। तो बहुत सिंपल सा सवाल जो आपसे बहुत लोगों ने पूछा होगा, लेकिन शायद हमारे श्रोताओं और दर्शकों को नहीं पता होगा, पॉलिटिक्स में आना कैसे हुआ? क्योंकि अब आपको काफी साल हो गए हैं, पर कमाल की बात यह है आप अभी भी युवा हैं।
1: नहीं, अब युवा नहीं रह गए हम, लेकिन यह है कि पॉलिटिक्स बड़ा, कई बार मैं खुद सोचता हूँ कि मैं कैसे आया।
0: जी,
1: मुझे मेरे बड़े सीनियर एक ब्यूरोक्रेट थे
0: जी,
1: मतलब ये बात IFS, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में थे, तो वो मुझे किसी एक लीडर से मिलवाने के लिए ले गए, बिकॉज वो लीडर जो है उनके जब भी वो किसी जगह पे उनकी ट्रांसफर होती थी, किसी कंट्री में होते थे
0: जी,
1: तो वो लीडर उनके घर पे रहते थे जाकर।
0: अच्छा।
1: तो उन्होंने मुझे कहा कि हम तुम्हारे को किसी से आज मिलवाते हैं, तो मैं चला गया उनके साथ रूटीन में। अच्छा, वहां जाके डिस्कशन शुरू हुई है, I was purely marketing guy.
0: अच्छा।
1: तो अब क्योंकि marketing का था, sales का था, तो बोलने की आदत थी,
0: बातचीत अच्छी हो जाती
1: थी। जब वो discussion कर रहे थे, तो हमने भी अपने views देने शुरू कर दिए। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप वर्डन जो ज्वाइन हमारी पार्टी, आप हमारी पार्टी क्यों नहीं ज्वाइन करते? और मुझे तो ये भी नहीं पता था कि पार्टी में क्या होता है। तो उन्होंने कहा हमारी, ऐसे कि मैं ज्वाइन कर लूंगा कोई बात नहीं, तो उन्होंने कहा हमारी पार्टी में कोई पद ले लो। तो बिलीव में मेरे को पद भी नहीं पता था क्या होते हैं। तो मैंने उनसे कहा जी आप क्या बनाओगे, मुझे MP बनाओगे या MLA बनाओगे? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ये नहीं, एक और पद होते हैं संगठन के
0: जी,
1: फिर वो क्या होते हैं? तो उन्होंने कहा पहले थोड़ा सीख के आओ, फिर दोबारा आना। अच्छा, मैं भूल गया उस बात को। कुछ दिनों के बाद फिर उनका फोन आया कि भाई तुमने विचार किया?
0: अच्छा।
1: तो मैंने कहा जी हाँ किया। तो ऐसे करते करते किसी के रेफरेंस से मैं गया, और बस एक प्रॉब्लम है, इसको प्रॉब्लम कह लो, मेरी USP कह लो, या मेरी अच्छी बात कह लो, या बुरी बात कह लो, या तो मैं कोई काम करता हूँ या करता ही नहीं।
0: अच्छा।
1: तो उसमें ऐसा हम एंगेज हुए कि सब कुछ छूटता चला गया, फिर उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते ही चले गए, और रिसर्च करनी शुरू कर दी, और मेहनत करनी शुरू कर दी, बहुत धक्के भी खाए रैलीज में, या वहाँ बहुत मेहनत करी।
0: बिल्कुल।
1: और मुझे लगता है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने खुद देखा है प्रैक्टिकली कि मेरे पास तो कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी नहीं था।
0: बिल्कुल।
1: मेरा कोई फैमिली पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, किसी लीडर्स का मेरे सिर पे हाथ नहीं था, तो मेरे लिए वो रास्ता था वो थोड़ा ज्यादा लंबा रहा, कि जिसे कहा जा सकता है कि कहीं पे हम 1 किलोमीटर आसानी से सीधा जा सकते हैं, तो उस 1 किलोमीटर के लिए मुझे 15 किलोमीटर चलना पड़ा।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: तो ये चैलेंजेस थे मेरे साथ, लेकिन मुझे कई बार ऐसा भी लगता है कि वो चैलेंज ना होते तो शायद मैं आज इतनी गहराई तक उन चीजों को सीख करके आगे ना आता, फिर आज मेरे लिए चैलेंज बन जाते। वो कहते हैं ना, सिस्टम्स आर पेनफुल बट फ्रूटफुल।
0: एब्सोल्युटली।
1: तो हमने नियम को पकड़ के रखा, तो आज थोड़े से फलदायी नजर आ रहे हैं, पहले तो कष्टदायी थे, इसमें कोई डाउट नहीं है।
0: जी बिल्कुल। यानी जो रास्ता आसानी से बहुत सारे लोग ऐसे तय कर जाते हैं, जो जनरली कहा जाता है पॉलिटिक्स में, अगर आप खानदानी पॉलिटिशियन है तो बहुत आसानी से आप आगे बढ़ जाते हैं।
1: थोड़ा सा नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। जिसको हम आसानी से कहते हैं, इसीलिए मैंने बोला जिसे जो आसानी से चीज मिलती है वो बाद में जाके पेन देती है।
0: शुरुआत में तो
1: आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जिसमें स्ट्रगल्स ज्यादा होते हैं वो आपको बाद में जाकर बहुत मजबूती देती है। तो इसलिए आप प्रिपेयर होते हैं, आप लूज नहीं कर रहे होते कुछ भी, और आपको क्योंकि आपने वो सारे रास्ते देखे हैं और उन रास्तों पे वापस भी चलना पड़े तो आपके लिए वो नए नहीं होंगे, आपके पहचाने भी होंगे, तो आप विल बी कंफर्टेबल ऑल द टाइम।
0: तो मुश्किल रास्तों पर चलना सबसे ज्यादा आसान हो जाता है जब आप बहुत कुछ सीख जाते हैं। अक्सर आसान रास्ते आपको काफी दूर तक नहीं ले जा पाते, लेकिन मुश्किल रास्ते आपकी दूरियां और आपकी मंजिल को और ज्यादा मजबूत बना देते हैं। दूरियां छोटी कर देते हैं लेकिन मंजिल बहुत कमाल की हो जाती है। राजीव जेटली हमारे सामने एक लाइव एग्जांपल है इस चीज का। तो दोस्तों बातें और भी जारी रहेंगी, कुछ खास, कुछ मोटिवेटेड, कुछ पॉजिटिव बातें, लेकिन अभी वक्त है छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लग रही है, ये इंटरव्यू अच्छा लग रहा है, तो जरूर अपने मैसेजेस के जरिए हमें बता सकते हैं आप अपनी राय 8010781078 पर। बातों का सिलसिला जारी रहेगा छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। मैं हूँ दीक्षा आपके साथ।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम में दीक्षा आपके साथ। और आज हम जिनसे बात करें हैं वो है मीडिया एडवाइजर टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, साथ ही राष्ट्रीय प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। और बहुत सी अलग अलग प्लानिंग्स जो कि स्ट्रैटेजिक मीडिया प्लानिंग्स होती हैं, सरकारी कम्युनिकेशंस होते हैं, पब्लिक आउटरीच इनिशिएटिव्स होते हैं, और चीफ मिनिस्टर साहब की कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी क्या होगी, किस तरीके से वो मीडिया से रूबरू होंगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन, ये सारी प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, ये सब कुछ करते हैं राजीव जेटली जी हमारे बीच में हैं, जो कि मीडिया एडवाइजर टू द ऑनरेबल सीएम ऑफ हरियाणा हैं। और इनसे आज हम कुछ हट के बात करें, यानी राजनीति के बारे में बात नहीं करें, लेकिन हाँ राजनीति में कैसे पहुंचे ये तो इन्होंने बता दिया है, लेकिन आगे भी और भी बहुत सी बातें जान रहे हैं। राजीव जी, कोई ऐसा अनुभव, अभी आपने बताया कि आप पॉलिटिक्स में आ गए, बस आपको किसी ने परखा, शायद तराश लिया और आप यहाँ पर आ गए, क्योंकि एक जौहरी की नजर ही होती है जो हीरे को देख के समझ जाती है कि कितना चमकदार है, तो आप उस फील्ड में एंटर कर गए। लेकिन ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें वाकई बहुत स्ट्रगल होती है, शायद लोगों को लगता होगा सब कुछ प्लेटर पे आ जाता है,

0: भी ज्यादा प्रभाव दे रही है, तो आजकल कुछ हद तक है भी सही। सो कुछ वो स्ट्रगल के दिन हमें जरूर बताएं, कुछ ऐसा अनुभव जो आप सबके साथ शेयर करना चाहें।
1: इसमें दो बातें आती हैं, मैंने क्या स्ट्रगल किया मैं उस पर ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये मैं कई बार, ये एक जनरेशन गैप भी रहता है हमारा, हमें भी ऐसे ही बोला जाता था कि हमने कितना स्ट्रगल किया, आज तुम्हारे पास उतना नहीं है। हमारे वक्त में लाइट नहीं होती थी, हम ऐसे पढ़ते थे, हमारे वक्त में पंखे नहीं होते थे, हमारे वक्त में पानी ऐसे आता था, दिस दैट, बहुत सारी चीजें बताई जाती है। उसके बाद जब हम आए तो हमें लगता था कि ये मेरा स्ट्रगल है, इसको वो समझ नहीं पा रहे हैं। आने वाली पीढ़ी के भी अपने अपने स्ट्रगल हैं, लेकिन हम उनसे अपना कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं। हम सोचते हैं कि ये मेरी जैसी बात क्यों नहीं कर रहा।
0: हाँ।
1: हमें ये नहीं पता कि उसके स्ट्रगल्स किस लेवल के हैं, वो किस तरीके से उसको देख रहा है, किस तरीके से उसको फेस कर रहा है। तो हम ये जो गैप है ना, ये गैप कहीं ना कहीं पर, अच्छा पहले क्या होता था, ये ट्रांजिशन बहुत स्लो था, टेक्नोलॉजी तो आ रही थी लेकिन काफी स्लो था। तो एक सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन जो पिछली पीढ़ी गई थी और जो अगली पीढ़ी आई थी, उनके बीच में सिंक्रोनाइजेशन थोड़ा अच्छा था। अभी क्या हुआ, जो पिछले 10-20 सालों में देखेंगे, 10-20 वाले में नहीं, 15-1 सालों में देखेंगे, 15 सालों में इतना ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, इतनी चेंज हुआ कि हम भी हैरान हो गए कि ये क्या हो गया। अब कई बार हम क्या कि हम अपने एक कुछ टेक्नोलॉजी के साथ जितनी हमें अंडरस्टैंडिंग होती है हम उसको लेकर के काम करना शुरू कर देते हैं, अपने बच्चों को देखते हैं फिर वो हमें बताते हैं, अब तो टेक्नोलॉजी तो बहुत दूर की बात हो गई, उनके तो वर्ड्स भी डिफरेंट है। मैं बहुत हैरान होऊंगा आपको कि मैं अपने ही बच्चों से बात करता हूँ तो मैं उनको बोलता हूँ थोड़ा धीरे बोल, समझ नहीं आ रही मुझे, क्योंकि वो कार्टून की तरह बोलते हैं, उनकी स्पीड इतनी तेज हो चुकी है, वो वीडियो देखते हैं तो फास्ट स्पीड पे देखते हैं, बोलते हैं तो फास्ट स्पीड पे बोलते हैं। तो मैं कई बार सोचता हूँ कि भाई मैं तेरी बात नहीं समझ आ रही, तू मेरा ही बच्चा है, मैं तेरे को ही नहीं समझ पा रहा, तो सोचो कि कितना बड़ा गैप आ चुका है हमारे बीच में, और वो आपस में समझ पा रहे हैं एक दूसरे को। तो ये एक चुनौती इसलिए हो गई क्योंकि हम अपने से बाहर निकले नहीं और वो बहुत फॉरवर्ड हो गए। तो ये आज देखिए, मैं तो आई सैल्यूट दिस पीपल, दिस यंग्स, क्योंकि हम जिस लेवल पे शायद हम अपनी ग्रेजुएशन करने के बाद भी नहीं सीख पाए थे, उतनी बात कोई आपको 5th क्लास का बच्चा बता सकता है।
0: बिल्कुल,
1: जिस तरह की वोकैबुलरी उनकी है, जिस तरीके के नॉलेज उनके पास है, मुझे नहीं लगता कि हमारे दौर में शायद कोई आदमी ने किसी एक सब्जेक्ट में PhD भी करी हो तो उतनी नॉलेज नहीं रखता होगा। हम कहते तो हैं पहले एजुकेशन हाई लेवल की थी, मैं नहीं मानता इस बात को। जिस लेवल पे आज बच्चे खड़े हैं, हाँ ये थोड़ा सा मेरे को कई बार डाउट होता है कि जिस लेवल पे वो, जिस फास्ट स्पीड से वो आगे चल रहे हैं, अपनी एज से जो आगे आगे चलते चले जा रहे हैं नॉलेज को लेकर के, वो भी कहीं ना कहीं एक बड़ी दिक्कत ना लेकर के, अगर ये, हाँ क्योंकि अगर ये ऐसा ही चलता रहा और वो अपग्रेड होते रहे तब तक तो ठीक है, लेकिन कहीं सैचुरेशन स्टेज ना आ जाए, क्योंकि सैचुरेशन स्टेज बहुत बुरी चीज होती है। जब वो आती है तो उसके बाद देखा आपने कि ये जो कई बार आपने देखा होगा कि हर आदमी जो बहुत कुछ बहुत जल्दी अचीव कर लेता है, फिर ही वांट टू गेट इनटू समथिंग न्यू, और वो न्यू जो उनसे होता है कई बार उसको दूसरे रास्ते पे ले जाता है, कई बार नशे में ले जाता है, क्योंकि उसको हर नई चीज एक्सपीरियंस कर रही है। तो ये नुकसान तो कई बार होते हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ और ये अपनी दिशा में आगे बढ़ते चले गए, मैं अभी एक स्टोरी पढ़ रहा था एक न्यूज़पेपर में कि लिकर की सेल डाउन हो गई है, शराब की सेल कम हो गई है, तो उसके पीछे की जो वजह बताई कि अब बच्चों को नशा टेक्नोलॉजी का हो गया है, तो शराब की नशे की तरफ नहीं जा रहे हैं। तो आप ये सोचिए, इससे एक बात का अंदाजा लगता है कि इसका नशा कितना बड़ा है।
0: एब्सोल्युटली, मुझे लगता है बच्चों में क्या, आप बड़ों में देखिए, हम बुजुर्गों को देखते हैं पार्क में सुबह सैर करते
1: हुए, सुबह
0: जैसे ही वो बैठते हैं बेंच में, सबकी जेब से फोन निकल आते हैं, चाहे वो भजन सुन रहे हो, चाहे वो कोई कथा सुन रहे हो, कुछ भी सुन रहे हो, बट एक वो नशा रहता है, आपका एडिक्शन है। आप चाहे रात को सो रहे हो, सोते सोते आप फोन देख के सोते हैं, पहले हम एक दूसरे से मिलके गुड नाइट बोल के सोते थे, अब हम फोन देख के सोते हैं और सबसे पहले फोन को उठाते हैं उठते ही। तो ये तो एक एडिक्शन
1: मुझको लगता है, ये भी अच्छे के लिए। आपने देखा पीछे कई, मैंने ऐसी मूवीज देखी, आपने भी देखी होंगी, अवतार जैसी मूवीज आई, उसमें क्या प्रॉब्लम क्या होती है कि मेरे बच्चे मुझे टाइम नहीं दे रहे। असली प्रॉब्लम ये थी, और ये भी कहते थे कि भाई मुझे सब कुछ तो मिल गया लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है,
0: टाइम नहीं है,
1: ठीक है, बच्चों के पास टाइम नहीं है। आज वो इतने बिजी हैं अपने मोबाइल के साथ कि उनको लगता है कि मेरे को कोई टाइम देने वाला है। मैं आज कोई व्यक्ति अगर किसी को वेट करना है किसी के लिए, और मैं तो रेड लाइट पे देखता हूँ, ये जो सिग्नल्स पे लोग 2 मिनट के लिए गाड़ी रुकती है, 2 मिनट भी अपना मोबाइल खोल के बैठ जाते हैं देखने के लिए, तो उन्होंने पहले तो लगाया था टाइमर, कि सिग्नल पे कि इतने मिनट के बाद, ताकि आदमी बोर ना हो, ही शुड बी प्रिपेयर कि इतनी देर में गाड़ी चलेगी। लेकिन अब मैंने देखा है कि कई बार लोग अपना मोबाइल खोलते हैं, उसमें लगा लेते हैं, वीडियो देख रहे होते हैं, वो ग्रीन हो जाता है, उसके बाद उनका ध्यान होता है पीछे हॉर्न बजता है, तब जाके आगे चलते हैं। तो सोचिए कि

0: कुछ चीजें तो बहुत अच्छी हो रही हैं, कुछ कुछ नुकसान तो होते ही हैं, वो कब होंगे कैसे होंगे मुझे लगता है नहीं होना चाहिए, लेकिन जो होंगे उसके लिए भी हम तैयार रहेंगे आगे।
1: जी बिल्कुल। अब जब फोन की बात चली है तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि हम आपके बारे में भी बहुत कुछ जानना चाहते हैं, आप कितना समय फोन पे बिताते हैं, क्योंकि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको जाननी है, एक शहर के बारे में नहीं पूरे राज्य के बारे में, और कुछ मामलों में तो आपको देश के बारे में जानकारी चाहिए, और एक प्रवक्ता के तौर पर जब आप डिबेट के लिए जाते हैं कैसी तैयारी करते हैं, क्योंकि हमने जब प्रवक्ताओं को देखा है स्क्रीन पर, एक तो गुस्सा बहुत जल्दी कर जाते हैं और दूसरी सबसे कमाल की चीज ये होती है हर एक चीज के बारे में बहुत जानकारी होती है, मतलब आपको पढ़ना पड़ता है, तैयारी करनी पड़ती है, बट जब आप इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी के साथ रहते हैं तो चीजें भूल भी जाते हैं और आप लाइव डिबेट में ये रिस्क नहीं ले सकते।
0: मुझे याद है कि जब मैं पहले डेली मेरे पास एक डायरी होती थी और कहीं कोई कुछ कहता था, कहीं कुछ बोलता था, या मैं कुछ न्यूज़पेपर में पढ़ता था या न्यूज़ में सुनता था, तो मैं डायरी में उसको नोट कर लेता था।
1: अच्छा।
0: और उसका मैंने एक इंडेक्स भी बना रखा था और मैंने कुछ पेजेस बनाए हुए थे, कुछ मैंने लॉ एंड ऑर्डर पे बना रखे थे,
1: तो
0: उसमें जो भी लॉ एंड ऑर्डर टू रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती थी, ये मेरे बिगनिंग जो मेरे इनिशियल डेज थे जब मैंने शुरुआत करी थी तब की बात है, इसी तरीके से अलग अलग मैंने बना रखे थे। तो जब भी मुझे कोई डिबेट आती थी मैं उस दिन उसको पढ़ता था कि अगर मुझे कौन सा कंटेंट कहाँ यूज करना पड़ जाए वो मैं देखूंगा। लेकिन फ्रेंकली आज शायद मैंने अब कोई नोट नहीं बनाना होता, क्योंकि अभी इतना कुछ अंडरस्टैंडिंग आ चुकी है कि अब हमें कई बार 15 मिनट का टाइम मिलता है जी इस सब्जेक्ट पे डिबेट है, कंटेंट अभी नहीं, अपने आप हैंडल कर लेना,
1: ठीक है, इतना एक्सपीरियंस हो गया,
0: वो होता है, फिर उसके बाद वो आ जाता है। लेकिन नो डाउट ये हम पहले न्यूज़पेपर का वेट करते थे नेक्स्ट डे, आज हमारे पास कोई भी खबर होती है इतनी फास्ट आती है कि न्यूज चैनल उसको कवर नहीं कर पाता, उससे पहले हम इंस्टाग्राम पे देख लेते हैं उसको।
1: बिल्कुल।
0: इतनी फास्ट न्यूज आती है और वो इतना अपडेट कर जाती है आपको कि आपको सब कुछ पता ही होता है। कई बार आपको ऐसा लगता है आधे घंटा पुरानी खबर भी आपको बोरिंग लगनी शुरू हो जाती है, मतलब इतनी पुरानी और बासी लगती
1: है,
0: इतनी बार वो आ चुकी है। तो ये नो डाउट अब कोई भी चीज के लिए, मैं थोड़ा सा एक बार बात बता दूं कि ठीक है हम प्रवक्ता हैं, हमारे को अपनी पार्टी की लाइन रखनी है और पार्टी का विचार रखना है, लेकिन नो डाउट कि अब क्योंकि हर आदमी के पास इतने कंटेंट हैं देखने के लिए कि शायद वो हमें सुनता भी है कि नहीं सुनता। मैं एक दिन मैं अपने बॉस से हंस रहा था तो उन्होंने कहा कि भाई माइलेज मिलता है आपको टीवी पे जाते हो तो डिबेट में जाते हो, तो मैंने कहा सर मुझे तो एक चीज तो मेरे को है एक जगह पे, पहले तो मैं फ्लाइट में जाता था तो हर आदमी पहचानता था, ट्रेन में कभी गया तो उधर भी सब लोग पहचान लेते थे, कोई सेल्फी भी खिंचवा के चले जाते थे, लेकिन अब मैंने कहते हैं अब आजकल, मैंने कहा आजकल एटीएम में जो हमारे सिक्योरिटी वाले बैठे होते हैं वो पहचान लेते हैं, क्योंकि वो एटीएम के अंदर बैठते हैं, कोई काम होता नहीं, वो सारा दिन रील देखते रहते हैं, तो हम कहीं ना कहीं उनको दिख जाते हैं सुबह से शाम तक। तो मैंने कहा अब हमारी पहचान यहाँ तक रहेगी, क्योंकि अब इतनी टेक्नोलॉजी फॉरवर्ड हो गई, सब बहुत सारे सोर्सेस हैं। और वो जो गाना नहीं है अमिताभ बच्चन का, मुझसे बेहतर कहने वाले, मुझसे बेहतर सुनने वाले, तो वो गाना मैं आज कल दो दिन पहले सुन रहा था वो, कि कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, तो उसमें बहुत बात वही थी कि भाई हर रोज चीजें बदल रही हैं, रोज टेस्ट भी बदल रहे हैं, सिस्टम भी बदल रहे हैं, थॉट्स भी बदल रहे हैं, इंटरेस्ट भी बदल रहे हैं, तो या तो हमें अपने आप को बदलना है उनके साथ साथ।
1: बिल्कुल।
0: हम नहीं बदलेंगे तो फिर हम ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएंगे और वो कलर हो जाएंगे।
1: बिल्कुल। और बदलना एक प्रकृति का नियम भी है, लेकिन समय के साथ बदलाव हो तो अच्छा लगता है, पर बदलाव थोड़ा तेजी से आ रहा है आजकल के समय में, तो बहुत सारी बातों का सिलसिला जारी रहेगा दोस्तों। लेकिन अभी वक्त एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, राजीव जेटली जी से बातों का सिलसिला जारी है और इस सिलसिले में बहुत सी बातों के साथ साथ कुछ मीठे मीठे गाने भी, यानी म्यूजिकल ब्रेक भी, तो कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। मैं हूं दीक्षा आपके साथ।

0: फील गुड फील लाइव रेडियो मानव रचना 107.8 FM, मैं हूं दीक्षा आपके साथ। बहुत सी बातें चल रही हैं आज हमारे खास मेहमान राजीव जेटली जी से, जो कि मीडिया एडवाइजर हैं टू द ऑनरेबल CM ऑफ हरियाणा और साथ ही नेशनल स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के। इलेक्शन की स्ट्रैटेजीज, मीडिया की स्ट्रैटेजी क्या होंगी, किस तरीके से इलेक्शंस के लिए कैंपेनिंग होगी, किस तरीके से प्रेस आउटरीच होगा, पॉलिटिकल नैरेटिव क्या होते हैं, उसमें डेवलपमेंट्स क्या होती हैं, इलेक्शन वॉर रूम कम्युनिकेशन सपोर्ट कैसे दिया जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो शायद एक आम इंसान को नहीं पता होती, लेकिन ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। और ऐसे ही शख्स हमारे बीच हैं राजीव जेटली जी, जो कि मीडिया एडवाइजर हैं ऑनरेबल CM ऑफ हरियाणा, और इनसे कुछ खास बातों का सिलसिला जारी है। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, क्योंकि जब आप पॉलिटिक्स में होते हैं और स्पोक्स पर्सन की प्रोफाइल पर हैं नेशनल लेवल पर, और इसके साथ साथ आप मीडिया एडवाइजर हैं माननीय मुख्यमंत्री के, सो यहाँ पर कैसी तैयारी आपकी रहती, क्योंकि मीडिया आजकल के समय में फोन में आ गया है, ये छोटी सी स्क्रीन आपको पूरी दुनिया दिखा देती है। जैसा आपने कहा कि एक के बाद एक रील्स आती रहती हैं, एल्गोरिथम के थ्रू आप जो है दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन 5 मिनट में ले लेते हैं, तो ऐसे में आपकी तैयारी कैसे होती है, आप अपनी तैयारी कैसे रखते हैं और मेंटली कैसे स्ट्रांग रहते हैं, क्योंकि इतनी ट्रोलिंग भी होती है।
1: ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने उठाया है। मुझे ऐसा लगता है कि पहले मीडिया मैनेजमेंट बहुत आसान होता था, और इतना आसान होता था किसी भी एडवाइजर के लिए, क्योंकि उसे पता है कि इतने न्यूज़पेपर, इतने न्यूज़ चैनल,
0: इतने चैनल जी।
1: आज की डेट में इतने न्यूज़पेपर तो है ही हैं, उतने चैनल भी हैं, लेकिन साथ में हजारों ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं न्यूज़ के, जिसको आपको मैनेज करना बहुत चैलेंजिंग होता है, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, और कई बार तो क्योंकि वो गवर्नमेंट नॉर्म्स में भी नहीं आते हैं, तो उन किसी भी डायरेक्शन में चले जाते हैं, एथिक्स की भी कई बार कमी हो जाती है, क्रेडिबिलिटी की भी कई बार कमी हो जाती है। तो ऐसे में 3-4 हज़ार लोगों को एक साथ देखना, ये मेरे लिए, हमारे लिए नो डाउट बहुत बड़ा चैलेंज होता है, बहुत बड़ा चैलेंज होता है, लेकिन कोशिश होती है। फिर कुछ कुछ फार्मूलेस बनाने पड़ते हैं, मन में सोचने होते हैं कि इनको एक साथ कैसे करा जाए या कैसे कैसे करा जाए, ये असली चैलेंज है आज की डेट में। देर आर वेरियस, बहुत सारे टूल्स भी आते हैं इन चीजों के, लेकिन वो टूल्स किसी को डाउन करने के लिए, किसी को उठाने के लिए हो सकते हैं। अगर फिजिकली आप सोचते हैं कि आपको चीजों को मैनेज करना है, तो फिर आपको फॉर्मूला, फिर आते हैं ना वहीं पे घूम फिर के पाइथागोरस का फॉर्मूला आ जाता है कि आपको उसी को फॉलो करना पड़ेगा। टूल्स को यूज करोगे तो किसी का नुकसान होगा, किसी का फायदा होगा, लेकिन इवेंचुअली इतनी चीजें टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो जाती है कि वो टूल्स भी शायद कल काम करने बंद कर देंगे,
0: बिल्कुल,
1: फिर आपकी मैनेजमेंट फेल हो जाएगी।
0: और ऐसे में मुझे लगता है एथिक्स की बात आपने कही, एथिक्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, जब हम मीडिया के बारे में पढ़ाई कर रहे होते हैं, जब स्टूडेंट्स होते हैं मीडिया के, तो सबसे पहले ये बताया जाता है कि आपको एथिकल काम करना होगा, मतलब आपको वो काम करना होगा जो सही है। लेकिन आजकल के समय में मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, छोटे छोटे यूट्यूब चैनल्स होते हैं, इंस्टाग्राम पेजेस होते हैं, बहुत सारे तो सही काम कर रहे हैं, अच्छे भी हैं, आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, लेकिन बहुत सारे जो हैं वो कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिविटी भी लेकर आ रहे हैं, या फिर कुछ कह सकते हैं कि आपको जेन्युइन सोर्स नहीं होते हैं। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, दूसरा AI की वजह से बहुत सारा कॉन्टेंट ऐसा है जो ठीक नहीं है, या जिसको आप बुजुर्ग देख रहे हैं उनको लग रहा है अरे ये तो सच में हो गया, और वो उसको सच मान बैठे हैं और डिप्रेशन में भी आ जाते हैं, बच्चे बहुत घबरा जाते हैं देख के कि ये AI कंटेंट और नहीं है, ये नहीं समझ पाते। सो एथिक्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे,
1: ये कैसे लागू करता हूँ, ये एथिक्स कोई आज का शब्द नहीं है, एथिक्स तो हमारे ग्रंथों में ही आ गया था
0: जी,
1: ऋषि मुनियों ने भी बता दिया था, तो एथिक्स आज का शब्द नहीं है। थोड़ा सा इसको रिफाइंड तरीके से जब मल्टीनेशनल इंडिया में आई, तब उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट एक अलग एथिकल डिपार्टमेंट बनाया कि कंपनी के में काम करने के एथिक्स क्या होंगे। एथिक्स तो बहुत सिंपल एक शब्द है, देखिए आपको एक प्लेटफॉर्म मिला है, आपको मौका मिला है, आज आप जल्दी जल्दी से, हम वहीं चलते हैं वापस जहां से हमने शुरुआत करी थी, कि अगर आपकी बिगिनिंग में स्ट्रगल कम होगी तो बाद में आपको तकलीफ आएगी। ये सस्ती TRP और नंबर ऑफ व्यूज बढ़ाने के लिए जो आप ये रास्ता चूज करते हैं, वो रास्ता आपको कल ना कहीं पे डेड कर देता है, खत्म कर देता है। मैं किसी एक्टर के एक्ट्रेस के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, मैं I'm sorry to say, अभी आपको डिसाइड करना है कि आपको राखी सावंत बनना है या सुमिता पाटिल बनना है, क्योंकि देखिए जल्दी TRP आपको मिलेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको जो बेनिफिट देगी चीज,
0: जो लोग याद करेंगे,
1: तो आपकी कला होगी, वो आपका काम होगा, वो आपकी मैच्योरिटी होगी, वो आपकी डिलीवरी होगी, बहुत सारी चीजें मिलकर के तब आप एक मुकाम पा सकते हैं जहाँ पर जाकर के आप कहें कि आज लोग मुझे पहचानते हैं, मुझे जानते हैं, मेरी क्रेडिबिलिटी है। क्रेडिबल शब्द जो है ना वो अपने आप में सब कुछ प्रूव कर देते हैं। तो अगर मैं भी देखूंगा कि भाई आज इसने खबर डाली है या न्यूज चलाई है, मुझे पता कल को पता चला ये तो फेक थी, ये तो बनावटी थी, कल से मेरे उसके प्लेटफॉर्म के प्रति मेरे जो उनसा
0: नेगेटिव हो जाए,
1: वो अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुका होगा। वो आप कुछ भी लिखता चला जाए, कुछ भी बोलता चला जाए, उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो ऐसी अगर कोई आज नहीं चल रहा है, किसी को आज 200 व्यू मिल रहे हैं, किसी दूसरे को 10,000 व्यू मिल रहे हैं, आज उसको 200 मिल रहे हैं, लेकिन जब लोगों को पता चलेगा ही इज द क्रेडिबल, इसकी न्यूज क्रेडिबल है, तो कल को अपने आप वो ग्रो करना शुरू करेगा। तो मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ सिस्टम्स आर पेनफुल बट फ्रूटफुल। तो आपको ये फॉलो करके चलना, ये निर्भर आप पर करता है आप उसको फॉलो करना चाहते हैं नहीं करना चाहते, चॉइस आपकी है। प्लेटफॉर्म वही रहेगा लेकिन सर्वाइव वो करेगा जो अपनी पेशेंस बना के एथिकल ग्राउंड पे क्रेडिबल के साथ अपनी डिलीवरी देके आएगा।
0: जी बिल्कुल। और सक्सेस की बात करते हैं, आजकल जब हम बात करते हैं सक्सेस की, तो बच्चों से जब हम बात करते हैं, क्योंकि हम युवाओं के बीच ज्यादा रहते हैं, तो ज्यादातर बच्चों का जो एम होता है ना वो करियर में होता है कि हमें यूट्यूबर बनना है, इन्फ्लुएंसर बनना है। और हमारे कैंपस में बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, मतलब लाखों की फैन फॉलोइंग है बहुत सारे बच्चों की। सो क्या सिर्फ ये रास्ता चुनना सही है कि हाँ सोशल मीडिया पे आप अपनी पहचान बना लें तो आप आगे बढ़ जाएंगे, या अपनी फील्ड में पकड़ बनानी भी जरूरी है जो बच्चों को शायद अभी नहीं समझ आ रही? या तो हमारे पास वो बच्चे हैं जो 10 साल की उम्र में जानते हैं कि हमें म्यूजिशियन बनना है या आर्किटेक्ट बनना है या डॉक्टर बनना है, या फिर कुछ युवा ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पर जाके ही अपनी पहचान बना के खुश हैं।
1: मैं तो एक रिक्वेस्ट करूंगा, आपने सोल्यूशन दे दिया, ये प्रॉब्लम नहीं है जो बात आपने करी है। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप बनिए इन्फ्लुएंसर्स, आप सोशल मीडिया पे आइए। मुझे ऐसा लगता है कि आपको वो सब्जेक्ट चूज कर लेना चाहिए जिस सब्जेक्ट पे आप की दूसरी वर्किंग चल रही है, आपकी पढ़ाई चल रही है या आपका कोर्स चल रहा है, आप उसमें बनिए ना। आपके पास भी एक बड़ा व्यूअर होगा जो आपको देखेगा। मान लीजिए मैं मेडिकल की पढ़ाई कर रहा हूँ और मैं मेडिकल के ऊपर ही कोई ना कोई नई रिसर्च के ऊपर डिस्कशन कर रहा हूँ, मैं इन्वाइट करता हूँ कि भाई मैंने आज साइंस मैगजीन में पढ़ा और उसमें इस तरीके का फाइंडिंग्स आई है और एक क्लिनिकल ट्रायल 1, 2, 3, 4 पे चल रहा है और FDA में अप्रूवल मिली है कि नहीं मिली है, दिस दैट। देखिए आपको क्यों नहीं चलेगा,
0: अगर आप फील्ड की इन्फॉर्मेशन,
1: अपनी फील्ड की इन्फॉर्मेशन दीजिए ना। अब मान लीजिए आप एक डॉक्टर है, फिर भी आपने बैग उठाया और चल पड़े कि मैं आज आपको हिमाचल घुमा के लाऊंगा, ठीक है, तो क्योंकि चल रहा है, आप फूडी बन गए, फूड के ऊपर बोल रहे हैं। तो मैं कहता हूँ अगर उसमें भी करना है तो आपको यू शुड चूज योर ओन फील्ड।
0: बिल्कुल,
1: वो आपको देगी, पे करके जाएगी वो आपको।
0: आप अपनी फील्ड को भी समझ पाएंगे और अच्छे उसकी रिसर्च भी कर पाएंगे,
1: उसके भी व्यूवर्स होंगे अपने, उसके भी अपने रिसर्च करके। कोई साइंटिस्ट है, कोई इंजीनियर है, कोई किसी भी फील्ड से आता है, वो उस चीज पर डिस्कस करेगा, उसके जैसे लोग उसकी उसकी बात को समझने वाले लोग नहीं आएंगे क्या? जैसे लोग कोई महात्मा होता है, संत जिसे कहते हैं हम, उन्होंने सत्संग करना शुरू किया, अब इतने सारे लोग होते हैं उसमें से जिनको उनकी बात अच्छी लगी उनके फॉलोअर बन गए, जिनको नहीं लगी वो दूसरी जगह चले गए।
0: बिल्कुल,
1: तो ये ओपन है मार्केट,
0: बिल्कुल मार्केट ओपन है, बस आपको सेलेक्ट करना है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं उस मार्केट में। तो दोस्तों बातें जारी रहेंगी, लेकिन अभी वक्त है छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। अगर आपको ये बातचीत अच्छी लग रही है और आप किसी के साथ शेयर करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। आप हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए, इंटरनेट रेडियो मानव रचना प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से जाकर, और इस ऐप में आरजे दीक्षा के फोल्डर में पॉडकास्ट सेक्शन में जाकर आपको राजीव जेटली जी से ये सारी बातचीत मिल जाएगी, जिसको आप दुनिया के किसी भी कोने में कहीं भी शेयर कर सकते हैं। और साथ ही इस बातचीत को आप हमारे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, रील्स और पॉडकास्ट के माध्यम से। रेडियो मानव रचना का इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक पेज और यूट्यूब पेज जरूर लाइक कीजिए।

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM. मैं हूं दीक्षा आपके साथ. बहुत सारी बातें और कुछ खास जानकारी. आपके अपने शहर के निवासी हैं जो कि राष्ट्र पटल पर बहुत कुछ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हरियाणा को भी, फरीदाबाद को भी. हमारे साथ एक ऐसी हस्ती हैं जिन्होंने शुरुआत करी थी एक आम आदमी के रूप में, लेकिन राजनीति में एक बड़ा मकाम हासिल किया है. राजीव जेटली जी, जो कि मीडिया एडवाइजर हैं ऑनरेबल सीएम ऑफ हरियाणा नायब सिंह सैनी जी के. और सबसे कमाल की बात है ये खट्टर साहब जो पूर्व मुख्यमंत्री थे हरियाणा के, उनके भी मीडिया एडवाइजर रह चुके हैं. तो बहुत सारी बातें हम जान रहे हैं राजीव जेटली जी से. लेकिन आज राजनीति की बातें नहीं हो रही है, बातें हो रही है युवाओं की, जेंजी की, मोटिवेशन की और राजीव जेटली की अपने पर्सनल लाइफ की. राजीव जी, बहुत सारे युवाओं की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आजकल के समय में युवा ताकत हम अपने आप को बोलते हैं, युवा देश है. बाकी अगर देशों की तुलना में बात करें तो सबसे ज्यादा युवा हमारे देश में है और युवाओं की अपनी बहुत जबरदस्त ताकत है, लेकिन एक्सपोजर बहुत ज्यादा है. ऐसे में बच्चे डिप्रेशन में भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं, स्ट्रेस में आ रहे हैं क्योंकि घबरा जाते हैं. अगर कोई चीज उनको नहीं मिली तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, हताश हो जाते हैं. पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे को सब कुछ मिले, हर माता पिता चाहते हैं कि बच्चों को सब कुछ दे दें और वो समय से पहले दे भी देते हैं. तो ऐसी परिस्थिति में बच्चों को क्या करना चाहिए और पेरेंट्स को कैसे हैंडल करना चाहिए, ये मैं आपसे जानना
1: बहुत इंपॉर्टेंट है. कि देखिए, मैं ये कहता हूँ कि मैंने जहाँ से शुरुआत करी थी कि बच्चों को पूरी इंडिपेंडेंस मिलनी चाहिए टेक्नोलॉजी को सीखने की, आगे बढ़ने की, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लगता है जहाँ पर आती है, जैसे आपने स्ट्रेस की बात करी, एंजाइटी आजकल सबसे बड़ा बीमारी चल रही है, ये तभी शुरू होती है. अगर बचपन तो आपके कंट्रोल में रहता है, थोड़े से बड़े होने के बाद वो आपके कंट्रोल से बाहर हो सकता है, लेकिन आप मैंडेटरी उनके लिए फिजिकल एक्सरसाइज करवा दें, उनको खेलना शुरू करवा दें, एक आदत डाल दें उनको कि आपको इतनी एक्सरसाइज तो करनी ही करनी है, इतनी देर तो खेलना ही खेलना है. तो देखो, सबसे बड़ा एंजाइटी किलर तो आप कहते हैं एक्सरसाइज ही होती है, स्पोर्ट्स ही होती है, या स्ट्रेस किलर भी जो उन सब स्पोर्ट्स और एक्टिविटीज ही है हमारी. तो ये काम मुझे लगता है पेरेंट्स को करना चाहिए. बाकी लेट देम लिव, जैसे वो कर रहे हैं उनको करने दीजिए, फिजिकली उसको मजबूत रखिए. क्योंकि आज की डेट में देखिए, पढ़ाई वढ़ाई पे तो बहुत जोर देने का मुझे लगता नहीं कि जरूरत है. हाँ. क्योंकि वो आपसे ज्यादा पढ़ते हैं और आपसे अच्छा, उनके पैरामीटर्स ही बहुत हाई हो गया. हम देखिए, जब मैं स्कूल में 10th का रिजल्ट आता था या बोर्ड के एग्जाम होते थे, हम जब अपना रिजल्ट उस टाइम दुकान नहीं न्यूज पेपर और स्टेशनरी की शॉप पे आता था, वो तो स्टेशनरी की शॉप पे आता था, जैसे ही हम उससे पूछते थे रोल नंबर दिस, तो वो ये कहता था पास हो गए. हम पीछे मुड़ के नहीं देखते थे, दोबारा बुला के ना बोलते फेल हो गए. तो पास हो गई बहुत बड़ी बात थी. और आज बच्चे जो उनसे हैं वो 98% लेने के बाद इस बात को रो रहे होते हैं 2% मेरे कहाँ कटे हैं. तो यहाँ इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अब बच्चों की पढ़ाई की चिंता शायद हमें नहीं करनी है, अब उनकी फिजिकल एक्टिविटीज की चिंता करनी है, कितने मजबूत हो रहे हैं, उनके इम्यून सिस्टम की चिंता करनी है, उनके बेसिकली ये है कि अब हमारे को उनको फिट रखना है, बाकी तो उनको आपको समझाने की जरूरत नहीं, वो अपने आप में ही बहुत बड़े ट्रेंड है.
0: बिल्कुल, यानी पढ़ाई जो है वो हर बच्चा कर ही लेता है. देखिए, स्कूल जाता है, 6-7 घंटे वहाँ बैठता है, किताबें पढ़ रहा है, और अगर उसको नहीं समझ में आ रहा तो मुझे लगता है सोशल मीडिया का वो आप उसको यूज करवाइए कि अपने सब्जेक्ट की वीडियोस देखो.
1: वो अपने आप, वो दे आर कैपेबल एनफ टू हैंडल दिस सिचुएशन, बिकॉज़ मैंने देखा उसको कि आजकल तो हम तो स्कूल में छुट्टी होती हो जाए तो हम इतने खुश होते थे. सुबह हम कई बार बीमारी का बहाना भी करते थे कि मुझे स्कूल नहीं जाना, लेकिन अब तुम बच्चे को खुद बोलोगे कि नहीं आज छुट्टी कर ले तो छुट्टी करने को तैयार नहीं है,
0: उसको ज्यादा मजा स्कूल में. स्कूलों का सिस्टम बदल गया. लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ आपका राज, कि इतने सारे कामों के बीच, इतने प्रोफाइल संभालने के बाद अपने लेवल पे आप स्ट्रेस को कैसे दूर रखते हैं, क्या करते हैं, आपका रूटीन क्या होता है?
1: देखिए, मैं तो एक बात के लिए बहुत मैं एक्सरसाइज से कोई कंप्रोमाइज नहीं करता.
0: अच्छा.
1: और मैं मेडिटेशन भी डेली करता हूँ.
0: टाइम कैसे मिलता है, मैं टाइम मैनेजमेंट जानना चाह रही हूँ. क्योंकि
1: सुबह सुबह आप वॉक करिए, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करिए और मेडिटेशन करिए, 3-4 चीजें नहीं करोगे तो मर जाओगे आप. ये जरूरी है, ये करनी ही पड़ेंगी आपको. और सबसे मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट जो है वो एक्सरसाइज जरूरी है और मेडिटेशन उससे भी ज्यादा जरूरी हो गया आजकल मेंटल हेल्थ के लिए हमारी. तो आपको मेडिटेशन बहुत जरूरी है और करनी, अच्छे टेक्निक के साथ आप करेंगे तो काफी आपको स्ट्रेस कम होगा. मैं एक एंजाइटी प्रॉब्लम से निकला हूँ.
0: अच्छा.
1: उसके बाद भी मैं इन चीजों की तरफ गया हूँ, नहीं तो मुझे पहले नहीं पता था कि इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं मेडिटेशन के, योग के बेनिफिट्स क्या होते हैं,
0: बिल्कुल
1: स्ट्रेचिंग के और एक्सरसाइज के बेनिफिट्स क्या होते हैं. मैं एक बार मुझे आई हैड सम प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम तो थी नहीं, लेकिन किसी डॉक्टर ने मुझे बोल दिया कि भाई आपको ऐसा लगता है इरिटेटिंग बॉल सिंड्रोम है, IBS है. तो और डॉक्टर ने बोला डायग्नोस तो नहीं किया था उसने, तो मैंने उससे पूछा कि इसका आईबीएस का ट्रीटमेंट कैसे है, कोई देयर इज नो नोन क्योर फॉर द आईबीएस। तो मैंने फिर भी क्या है, कहते या तो आप गोली खाओ या 45 मिनट्स की एक्सरसाइज करो। जिस दिन उसने मुझे बोला 45 मिनट्स की एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज तो मैं पहले भी करता था, स्पोर्ट्स में हम पूरी तरह से एक्टिव रहते थे, लेकिन फिर मैं और ज्यादा सीरियसली उसको काम को करना शुरू किया, मुझे आज तक वो प्रॉब्लम नहीं आई। आज 15 साल हुए, तो मैंने सोचा कितनी प्रॉब्लम्स को फिक्स कर रही है एक ही बात, और हमारी बॉडी को फिक्स कर रही है, उसी को अवॉइड कर रहे हैं। तो मैं तो सबको एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई आप यू शुड गो फॉर एक्सरसाइज,
0: बिल्कुल
1: योग जरूर करें, मेडिटेशन जरूर करें।
0: बिल्कुल, और हमारे देश में तो मतलब योग इतना खूबसूरती से सिखाया जाता है, यहाँ पे आप कुछ नहीं कहीं नहीं जा सकते, तो मुझे लगता है आप अपने इसी फोन पे सीख लीजिए, देख लीजिए कुछ अच्छे।
1: जो करने वाला होता है
0: वो कहीं से भी
1: नहीं, जो करने वाला होता है, जो कर रहा होता है वो दूसरी की नजर में बेवकूफ होता है, ये क्या कर रहा है, लेकिन जो महसूस कर रहा होता है उसे लगता है ये बेवकूफ है।
0: बिल्कुल,
1: दूसरे ये कर क्यों नहीं पा रहे हैं, इनको पता ही नहीं कि क्या चमत्कार मेरे अंदर हो रहे हैं इस टाइम।
0: बिल्कुल, तो योग करने से, क्योंकि मैं ये एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, योग करने से आपका सिर्फ शरीर ठीक नहीं रहता, आपका मन भी अच्छा रहता है,
1: मन भी, यस,
0: आप ज्यादा ध्यान लगा पाते हैं चीजों पे, आप ज्यादा अच्छी बात कर पाते हैं, आप में संयम आ जाता है, ठहराव आ जाता है, ये चीजें मुझे पर्सनली
1: बिल्कुल बिल्कुल। आप इंसाइक्लोपीडिया हो जाते हैं, आप आर्टिकुलेट हो जाते हैं, और आपकी मेमोरी अच्छी रहती है, आपके ऊपर स्ट्रेस नहीं होता, कोई कितना भी लोड डाल दे आपके पास फार्मूलास होते हैं हर बात से बाहर निकलने के।
0: युवाओं की बात कर रहे हैं राजीव जी, तो मैं ये भी जानना चाहूंगी आजकल के बच्चों में, बच्चों की भी बात नहीं कर रही हूं मैं, आजकल के लोगों की ही बात करूंगी, चाहे उम्र आप 25 साल की लगा लें चाहे 50 की लगा लें, पेशेंस बहुत कम हो गया है लोगों में। रोज आप न्यूज़पेपर उठाते हैं, कि आप तो पढ़ते ही होंगे न्यूज़पेपर जब भी सुबह वह देखते हैं, तो उस न्यूज़पेपर को अक्सर लोग मना कर देते हैं पढ़ने से, बच्चों को बोले न्यूज़पेपर पढ़ो तो कह रहे हैं अरे मैम शुरू के 3 पेजेस में तो सिर्फ क्राइम ही होता, ये पढ़ के सुबह सुबह मूड खराब हो जाता है, तो क्यों पढ़ें। अब ये क्राइम जो हो रहा है, ये कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि आपके मन में, आपके दिमाग में पेशेंस नहीं है, आप इरिटेट बहुत जल्दी हो जाते हैं। हम योग की बात करें, लेकिन आपको क्या लगता है ये पेशेंस कैसे आएगी, क्योंकि हम 20-25 साल पहले ये चीजें लगाए तो कोई एक हादसा होता था जो न्यूज़पेपर में आता था कि हाँ उस शहर में मर्डर हो गया या वहां पर रोड रेज हो गया, आजकल भरा पड़ा रहता है न्यूज़पेपर और रील्स भरी हुई
1: है। ये सारा प्रॉब्लम जो है, क्योंकि जब कोई आदमी यंग है तो उसके अंदर एनर्जी तो है, ऊर्जा तो पूरी है, लेकिन ऊर्जा अगर वो एक्सरसाइज नहीं कर रहा, उसको वेस्ट नहीं कर रहा, तो कहीं तो यूज होनी है, वो ब्रेन में भी जाएगी, कहीं ना कहीं वो एग्रेशन की फॉर्म में बाहर भी निकलेगी। तो मैं, मुझे ऐसा लगता है सारी बीमारियों की जड़ केवल इतनी ही है कि अगर हम कहीं पर फिजिकल एक्सरसाइज से दूर जा रहे हैं तो हम इम्पेशेंट हो रहे हैं, हम सड़कों पर अपनी उस पावर को दिखाना चाह रहे हैं, हम दूसरे के ऊपर जल्दी से अग्रेशन में आ जाते हैं, उस पर अटैक कर देते हैं, और आपने देखा अब तो ये अपना आपा खो देते हैं, अगर किसी के पास कोई वेपन है तो वो वेपन को इजीली यूज कर रहा है, उसको इसको ये भी नहीं पता कि इसके रिजल्ट्स क्या होने वाले हैं, उसको उसके उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं उसके बारे में अंदाजा ही नहीं है, तो वहां अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को भी लूज कर रहे हैं आप। तो मुझे लगता है यहाँ पे सिर्फ जो रोल रहने वाला है वो माँ बाप का ही रहने वाला है, पेरेंट्स का रहने वाला है। एक एक बात को सोच के बैठ जाएं, मेरा बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा, दैट इज एंटायरली डिफरेंट थिंग, लेकिन वो फिजिकली फिट है कि नहीं है इस बात को इंश्योर कर लें, क्योंकि पढ़ाना और लिखाना, पढ़ना और लिखना ये सोसाइटी का एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं अंग बन चुका है, और उन्होंने पढ़ना ही पढ़ना है, उनको पता है कि अगर मुझे इस सोसाइटी में रहना है तो मुझे हैव टू बी इक्वल टू ऑल दीज पीपल, तो वो तो करेगा ही करेगा, उसको आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उसको देखो, ज्यादा लाड़ प्यार भी कहीं ऐसा ना हो कि आप उसको चॉकलेट खिला के और मैगी खिला के लास्ट में इस नौबत पे ला दो कि फिर वो इस तरीके से अग्रेशन दिखाना शुरू कर दे।
0: बिल्कुल, तो फिजिकल यानी एनर्जी को डाइवर्ट करने की जरूरत है, जो एनर्जी आप घर पे रहकर सिर्फ फोन के आगे या किताबों के आगे, फॉर दैट मैटर मैं ये भी कहना चाहूंगी कि कई बच्चे होते हैं जो खेलने नहीं जाते, सिर्फ किताबें पढ़ते रहते हैं, उन बच्चों के लिए भी खेलना जरूरी है, उन युवाओं के लिए भी फिजिकल एक्सरसाइज जरूरी है, क्योंकि आपकी जो एनर्जी सारा दिन शरीर में जा रही है, एनर्जी तो है, तो उसको कहीं डाइवर्ट कीजिए ताकि गलत चीज के लिए समय ही ना बचे। बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा दोस्तों, लेकिन अभी वक्त एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, कुछ खास बताना चाहें, कुछ खास कहना चाहें तो कह सकते हैं आप 8010781078 पर। फिलहाल वक्त एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, मैं हूं दीक्षा आपके साथ।

0: खास इन्फॉर्मेशन, कुछ खास बातचीत रूबरू है आज हमारे खास मेहमान राजीव जेटली जी के साथ, मीडिया एडवाइजर टू द सीएम ऑफ हरियाणा, बीजेपी नेशनल स्पोक्स पर्सन, इलेक्शन कम्युनिकेशन और मीडिया स्ट्रेटजी एक्सपर्ट। और राजीव जेटली जी से बहुत सारी बातें हम कर रहे हैं। मैंने पहले भी आपको बताया है कि रेडियो मानव रचना के साथ इनका सफर बहुत पुराना है, लगभग 10-12 साल पहले से ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सारी डिस्कशंस का हिस्सा रह चुके हैं एज एन एक्सपर्ट, और आज ये हमारे सिर्फ एक बुलावे पर यहाँ आए हैं, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो राजीव जी से बातचीत का सिलसिला जारी है। सर, ये भी जानना चाहूंगी आपसे, आप पॉलिटिक्स में आए और आज आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहती हूँ आजकल का युवा पॉलिटिक्स में आना चाहता है, उसे शौक है आने का लेकिन उसे रास्ते नहीं पता, उसे समझ नहीं आता, वो आना चाहता है, रिप्रेजेंट करना चाहता है, अपने शहर को अपने देश को एक बड़े स्तर पर ले जाना चाहता है, पर उसे तरीके नहीं पता क्योंकि इसका कोई कोर्स नहीं होता।
1: मैं एक बात बताता हूँ आपको, आजकल क्या हुआ है कि हमने जो स्टार्टअप्स लेकर के आए हैं, मेरी क्रिएटिविटी के लिए मुझको सरकार ने एक प्लेटफॉर्म दिया है, इसको मैं अपना पॉजिटिव पॉइंट कह लूं या नेगेटिव पॉइंट कह लूं गवर्नमेंट का, तो दोनों ही इसमें एंगल है। इसमें हमें हमारे पास कार्यकर्ताओं की शॉर्टेज हो जाती है, जैसे बीजेपी एक पार्टी है, बीजेपी अलग अलग डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ से लोग आते हैं, वो बीजेपी के अंदर आते हैं, काम करते हैं और एक विचार के साथ चलते हैं, लेकिन अगर कहीं हमें कमी महसूस होती है, हमारी ही दिए हुए जो प्लेटफॉर्म्स हैं उसी में हमारे पास कार्यकर्ताओं का अभाव हो जाता है, क्योंकि हमने उनको दिया है स्टार्टअप्स के मौके, हमने उनको दिया फाइनेंशियल
0: स्टेबिलिटी
1: का मतलब उसको किस तरीके से आपको लोन लेना है, कैसे आपको स्टार्ट करना है, तो उसे लगता है कि मैं जितने एफर्ट्स अब मेरी अपनी क्रिएटिविटी के लिए जो मेरे पास थॉट्स हैं, जो थॉट्स पहले कहीं ना कहीं किसी और के लिए यूज करते थे, उन्होंने अपनी थॉट्स को अपनी इंडस्ट्री का एक सबसे बड़ा आम बना करके अपनी ग्रोथ के लिए एक जैसे कहते हैं इंजन है उनका जो प्रोपेल कर रहा है उसको, तो वो आज उस दिशा में ज्यादा जा रहे हैं। और ये चैलेंजेस सबके साथ हैं और यूथ जो आना चाहता है सबके लिए, मुझे लगता है आज की डेट में तो आप बहुत संभावनाएं हैं, क्योंकि अब पॉलिटिकल पार्टियां भी देख रही हैं कि किसमें कितना टैलेंट है। आप देखिए आईटी विंग्स में जो लोग आते हैं कई बार वो, और इतने आगे जा रहे हैं वो, मैंने देखा बहुत अर्ली स्टेज पे वो मेंबर पार्लियामेंट बन जाते हैं, राज्यसभा से मेंबर पार्लियामेंट बन जाते हैं, जिसको हम एल्डर हाउस कहते हैं उसमें यंग जा रहे हैं, तो अपने टैलेंट की वजह से जा रहे हैं, अपने यूएसपी की वजह से जा रहे हैं जो उन्होंने पार्टी के लिए किया है। अब तो पार्टी नहीं करेगी आप झंडा उठा करके सड़कों पर जाइए, वो तो कहते हैं कि कुछ ऐसा करके दिखाइए जिससे हमारी पार्टी भी आगे बढ़े, देश भी आगे बढ़े, डेवलपमेंट भी हो, मल्टीपल्स एंगल आपको वही आ गई। इवेंचुअली बात तो आपकी टेक्नोलॉजी पे ही आ गई,
0: बिल्कुल,
1: तकनीक को मतलब स्ट्रक्चर अगर आप अच्छा बना लेंगे, थोड़ी मेहनत जरूर लगती है, अब घर को आप खुद बनाए, आर्किटेक्ट से बनवाएं, तो आर्किटेक्ट से बनवाएंगे तो नो डाउट कुछ चीजें आपकी समझ में नहीं आएंगी, लेकिन फाइनली जब आप देखेंगे टेक्निकली वो साउंड होगा,
0: बिल्कुल।
1: तो इसी तरीके से टेक्निकली जो बच्चे ज्यादा अच्छा कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी में, उनको बहुत सारी ऐसी संभावनाएं हैं। हम जैसे लोग तो मर गए बीच में, क्योंकि हमने अपना पूरा टाइम निकाल दिया, तब बोलते थे आप मैच्योर नहीं हो, जब आप बड़े हो गए तो आप बड़े बनोगे, जब हमारा वक्त आया तो पहले जेंजी का टाइम आ गया, तो हमारा तो टाइम ही बीच में से निकल गया।
0: लेकिन देखिए ये टाइम निकलने के बाद ये मुख्यमंत्री साहब को मीडिया की सलाह दे रहे हैं और चैनल्स पे दिखाई देते हैं, तो सर आपका टाइम बहुत अच्छा चल रहा है। कुछ बातें कर लेते हैं सक्सेस के बारे में। सक्सेस बच्चों को, यंगस्टर्स को आज के समय में चाहिए और जल्दी चाहिए, लेकिन स्लो सक्सेस से घबराते हैं जब समय लगता है। जैसे आप सिविल सर्विसेज का एग्जाम ले लें, क्योंकि वो अब तक हमारे देश का एक ऐसा एग्जाम है, चाहे सिविल सर्विसेज हो या फिर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो बड़ा, जिसमें अगर सक्सेस नहीं मिलती दो अटेम्प्ट तक, तो तीसरे में एक व्यक्ति हिम्मत हार जाता है। लेकिन कई ऐसे भी होते हैं जो 5-5 अटेम्प्ट के बाद छठे में सक्सेसफुल हुए हैं। सो वो स्लो सक्सेस से घबराने वाले बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
1: मैं इससे भी इम्पोर्टेंट बताता हूँ आपको। हम कहते हैं कि सक्सेस, अभी आप देखिए कि सिविल एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, नहीं कर पाते हैं, उसी के अंदर फिर उसको दोबारा अटेम्प्ट करते हैं, तीसरी बार करते हैं, चौथी बार करते हैं। एक तो ये पार्ट है सक्सेस को देखने का। एक मैं उनकी बात बता रहा हूँ जो यूपीएससी पास कर चुके हैं। मैं ऐसे पर्सनली ऐसे लोगों को जानता हूँ जो मेरे दोस्त रहे हैं, जो आईएएस टॉपर रहे हैं, और उन्होंने 1.5 साल भी जॉब नहीं करी,
0: छोड़ दिया
1: यूपीएससी पास करने के बाद। और ये जो जॉब छोड़ने वाला रेशियो है ये और बढ़ता चला जा रहा है,
0: आजकल काफी
1: बहुत बढ़ रहा है, जो आईएएस जॉब छोड़ के जा रहे हैं वो बहुत बढ़ रहा है। तीसरी एक सबसे बड़ा चैलेंज, ये मैं पर्सनल मेरी अपनी राय है ये, कि मैक्सिमम देखिए आईआईटीएन डॉक्टर्स यूपीएससी करते हैं, यूपीएससी पास करते हैं, आ जाते हैं। मैं कल किसी एक मेरे एक अच्छे बड़े अच्छे दोस्त हैं, सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं, और तीन चार बैठे थे, तीनों चारों ही एमबीबीएस थे।
0: अच्छा।
1: तो मैंने सबसे पूछा कि आपने कितने लोगों का अधिकार मारा, आपने पहले एमबीबीएस करा, उसके बाद आपने यूपीएससी करा, वहां आपने एमबीबीएस की सीट ली, वो आईआईटीएन जिसको एक बड़ा अच्छा इंजीनियर बनना था, वो भी आज एक क्लरिकल प्रशासनिक सेवा में काम कर रहा है। तो मैंने तब कहा कि यार हमारे, मेरे तो पर्सनल सोच है कि आप यूपीएससी करके आए, लेकिन जिस फील्ड में आए हैं उसी फील्ड में जाएं। अगर आप डॉक्टर हैं तो आपको हेल्थ में ही जाना चाहिए, कुछ कंट्रीब्यूट तो करेंगे, बिकॉज आपकी जो पिछली एजुकेशन थी वो भी उसमें ऐड करेगी। अगर आप इंजीनियर हैं तो आपको टेक्निकल फील्ड में जाना चाहिए। ये मेरी पर्सनल सोच है, इसमें सरकार कब क्या करेगी मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है ये बहुत लंबे टाइम से 31 साल से इस बात चलती आ रही है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। जो लोग ड्रॉप कर रहे हैं, ड्रॉप जो जो जॉब छोड़ के जा रहे हैं, मैं उनकी बात बता रहा हूँ। तो लेकिन इतनी अनंत संभावनाएं हैं, जो यूपीएससी भी कर रहे हैं उनके पास भी है। देखिए कई बार आदमी अच्छा खिलाड़ी नहीं बन पाता, लेकिन मैंने नोटिस किया है हमेशा जो अच्छा खिलाड़ी होता कभी अच्छा कोच नहीं बन पाया वो। आप उठा के रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, और जो कभी अच्छा नहीं खेल पाया उनसे बेस्ट कोच नहीं बनेगा। तो जरूरी नहीं है कि आपको आईएएस पास करने है, हो सकता है आपकी पढ़ाई से दूसरे लोग आईएएस बन के आ
0: जाएं। और बहुत सारे ऐसे टीचर्स होते हैं सिविल सर्विसेज के जो नहीं पास कर पाए, लेकिन वो कोचिंग में आ गए,
1: कोचिंग,
0: और कोचिंग में वो शायद उनसे भी बहुत आगे,
1: उनसे भी बेस्ट
0: निकल गए।
1: और दूसरी बात, आपकी प्रिपरेशन इस लेवल की होती है कि आप जहाँ पे भी जाएंगे उस फील्ड में कोई भी आपको डिनाई नहीं कर सकता, इग्नोर नहीं कर सकता।
0: बिल्कुल, इतनी जानकारी आ जाती है आपके दिमाग में, आपका दिमाग इतना खुल जाता है और इतना कुछ हो जाता है उसमें कि आप कभी भी, मुझे तो नहीं लगता कोई वाद संवाद कभी ये हार सकते हैं किसी से।
1: नहीं हार सकते।
0: बिल्कुल। राजीव जी, मीडिया की फील्ड से आप ताल्लुक रख रहे हैं, और हरियाणा का मीडिया जो है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए मैं ये सवाल जानना चाह रही हूँ। आज के समय में बहुत सारे लोग, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले बात करी कि मीडिया पे कंट्रोल सोशल मीडिया पे नहीं है, कोई भी माइक उठा के आसानी से मीडिया का चैनल खोल के और अपने आप को रिप्रेजेंट कर लेता है, लेकिन हाँ रजिस्ट्रेशन वगैरह प्रोसेस अलग होते हैं, लेकिन आपके फैन फॉलोइंग बढ़ जाती है तो आप अपने तर्क कर रखने लग जाते हैं। पर जो एक सही चैनल से मीडिया में जाना चाहते हैं युवा, प्रॉपर जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन पढ़ के, जो आज से 20 साल पहले नहीं इतना पॉपुलर था, उनके लिए क्या सलाह देना चाहेंगे, कैसे मीडिया की फील्ड में जाएं, क्या कुछ ऐसे चीजें हैं जो उनको अपने अंदर लानी चाहिए?
1: बहुत लोग एग्जाम देते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, एक ही कॉलेज से करते हैं, लेकिन कुछ लोग आपने देखे कि वहां पे इनोवेशन करके दिखाते हैं। और डॉक्टर सभी होते हैं, एक ही कॉलेज से निकल के आते हैं
0: जी।
1: लेकिन कई लोग डायग्नोस बेटर करते हैं, बाकी ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये आपकी के ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना आगे और कैसे जाना चाहते हैं। देखिए, स्कूल भी एक होता है, सिलेबस भी एक होता है, कॉलेज भी एक होता है, लेकिन आपने किस तरीके से उस पढ़ाई को किया है। मैंने जहाँ थोड़ी देर पहले भी आपको एक बात बताई थी कि अगर एथिकल पेशेंस के साथ आप काम करते हैं तो रिजल्ट्स बहुत बेहतर नजर आते हैं। मैं एक सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ बैठा था एम्स के, तो उन्होंने मुझे एक बात बताई कि कितने ही पेशेंट्स इस दुनिया से चले जाते हैं, उसकी वजह ये नहीं होती कि उनको ट्रीटमेंट नहीं दिया जा सकता था, ट्रीटमेंट भी मिलता है, लेकिन वजह ये होती है कि वो डायग्नोस नहीं हो पाते। और नंबर्स ऑफ पेशेंट इतने ज्यादा होते हैं कि आज की डेट में डायग्नोसिस फिजिकली किसी का कर पाना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। तो मैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, मैं तो ये कहूंगा कि जो भी बच्चा जाना चाहता है एक प्रॉपर एजुकेशन ले करके और अच्छी तरीके से सोच करके, अगर उसको जर्नलिस्ट ही बनना है तो बहुत सोच करके जाए। देखिए, अगर वो एक लुक्रेटिव लाइफ चाहता है तो शायद
0: वो नहीं होती है, जर्नलिज्म
1: मुश्किल है, मुश्किल है वो। और फिर उसके बाद अगर आपको उस लुक्रेटिव लाइफ के लिए, जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं, एथिक्स को दांव पे रखना है, तो फिर आप एक बेटर जर्नलिस्ट बन नहीं पाते। तो ये पहले आपको डिसाइड करना है कि आपको बनना क्या है। तो ये तक जुनून है, ये आपका प्रोफेशन नहीं हो सकता।
0: बिल्कुल, यानी आप अगर सोच रहे हैं कि जर्नलिस्ट बनने के बाद आपको सैटरडे संडे की छुट्टी मिलेगी, या आप बहुत ज्यादा भागदौड़ नहीं करेंगे, आप इसी स्टूडियो में बैठे रहेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। इस स्टूडियो से बाहर बहुत बड़ी दुनिया है जिसको कवर करके आपको लाना है और कुछ मिनटों में दुनिया को बताना है। सो वो जो बैक स्टोरी होती है, बैक स्टेज, वो बहुत बड़ी और बहुत थका देने वाली भी होती है, जिससे लोग बहुत ज्यादा थक भी जाते हैं, परेशान भी हो जाते हैं, तो वो चीज के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा।
1: यस
0: राजीव जी, अब चलते चलते बस मैं चाहूंगी कुछ शब्द आप हमारे माता पिता, बच्चों और जितने हमारे श्रोता और ऑडियंस आपको देख रही है, सुन रही है, उनके लिए लेकर आए, क्योंकि आप कैसे खुद को काम रख पाते हैं, कैसे खुद को स्ट्रेस फ्री रख पाते हैं, फिजिकल फिट भी आप, मुझे लग रहा है कि आप 10 साल बाद स्टूडियो में आए हैं, पर वैसे के वैसे ही लग रहे हैं अगर हम पुरानी वीडियोस उठाएं तो।
1: मैं रेडियो मानव रचना के बिहाफ पे आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मैंने, वैसे तो हमने सारी बातें कर चुके हैं
0: जी,
1: तीन चीजों का ध्यान रखिए, आपके बच्चे कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, ठीक ही कर रहे हैं, वो जो भी कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, फिजिकली फिट रखिए, हमने सारी प्रॉब्लम्स आपकी वहां पे खत्म हो जाती है। दूसरी बात, उन पर ट्रस्ट रखिए, मैंने बताया था कि लिखकर की सेल डाउन हो गई है एक आपको उस प्रॉब्लम से बाहर निकालती है। तीसरी बात यह है कि जो गैप है वो गैप ना आ जाएगा, सिंक्रोनाइजेशन, सिंक होना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल,
1: आपको यू नीड टू बी वेल प्रिपेयर्ड कि भाई वो जो कर रहा है, इंस्टेड ऑफ दैट कि तुम ये कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, इससे ज्यादा अच्छा है कि तुम जाकर उसके साथ ही बैठकर उसको सीख लो, शायद आप भी एंजॉय करने लग पड़ोगे उस बात को,
0: आप भी टेक्नोलॉजी को सीख जाओगे, टेक्निकली स्टेबल हो जाओगे,
1: तो आप भी एंजॉय कर ले,
0: यानी दोस्त बनना पड़ेगा
1: नेचुरली।
0: वो माता पिता वाला आप जो एक सिस्टम होता था जो 90s और 80s में होता था,
1: हाँ,
0: वो वाला सिस्टम अब
1: माता पिता टाइप के रहे भी नहीं गए वैसे, हाँ, अब तो सब लोग दोस्त जैसे ही हैं,
0: हाँ,
1: तो वो जो छोटी मोटा गैप है उसको भी फिल कर देना चाहिए मुझे
0: जी, बिल्कुल, यानी बच्चों के साथ दोस्ती करके चलेंगे तो बच्चे भी आपके अच्छे दोस्त बन जाएंगे। राजीव जी बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए और इतने दिल खोल कर पॉजिटिव बातें करने के लिए हमारे साथ, क्योंकि राजनेता के साथ राजनीति के अलावा अगर कोई बात करनी है तो आपको बहुत सारी बातें चाहिए होती हैं, क्योंकि इस पूरी कॉन्वर्सेशन में हम पॉलिटिक्स को कहीं कवर नहीं कर रहे हैं और हमारा पर्पस सिर्फ और सिर्फ इतना रहा है कि आप तक एक पॉजिटिव जानकारी और एक पॉजिटिव कॉन्वर्सेशन पहुंचाई जाए। बहुत बहुत शुक्रिया,
1: थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।
0: तो बहुत सारी बातें हम कर चुके हैं, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, ये सारी कॉन्वर्सेशन, ये पॉडकास्ट सुनने के लिए आप हमारी ऐप रेडियो मानव रचना डाउनलोड कर सकते हैं, इंटरनेट रेडियो जो आपको प्ले स्टोर ऐप स्टोर से मिल जाएगा, और ये सारी कॉन्वर्सेशन आप कभी भी कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में शेयर कर सकते हैं। साथ ही हमारे इंस्टाग्राम पेज और हमारे सोशल मीडिया पर फेसबुक और यूट्यूब को भी जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर ये जानकारी अच्छी लगे तो अपने कमेंट भी जरूर शेयर करें। फिलहाल मुझे यानी दीक्षा को दीजिए इजाजत और जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 के साथ। फील गुड, फील लाइव, दिस इज दीक्षा साइनिंग ऑफ।
2: नमस्कार, मैं बोल रहा हूँ सिंगराज धाना, टोक्यो 2020 पैरोलंपिक सिल्वर ब्राउन मेडलिस्ट इन शूटिंग, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8, फील गुड फील लाइफ।
3: वेल हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, जय माता दी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आरजे सागर, आ चुका हूं लेकर के शो वॉइस ऑफ यूथ, एंड राइट नाउ यू आर लिसनिंग टू रेडियो मानव रचना 107.8 FM, फील गुड फील लाइव। Now this show is really special, reason being कि यहाँ पर हर बार हमारे साथ एक expert होते हैं जिनसे हम उनके domain की बात करते हैं, and we try to make sure कि जब तक हमारा show खत्म हो तब तक आपके पास कुछ एक skill set पहुँच चुका हो। आज हमारे साथ है मिस्टर पवन, पवन का थोड़ा सा मैं आपको introduction देना चाहूँगा। पवन is a banker, at the same time he is a content creator, so we're gonna talk about banking part and content creation part and fitness part, तो ये तीन हिस्सों में हमारा show आज का रहने वाला है। कोशिश करेंगे यहाँ पर आपको ये बता पाएं कि एग्जैक्टली जो बबल हमारे सामने की बैंक की लाइफ बहुत अच्छी होती है उसको डिकोड कर पाएं, एट द सेम टाइम कंटेंट की दुनिया की भी थोड़ी सी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले पवन भाई स्वागत है आपका।
4: नमस्कार, वेलकम।
3: पहले अपने बारे में थोड़ा सा बताइए हमारे श्रोताओं को जो आपको नहीं जानते हैं कि आप कौन हैं, क्या करते हैं।
4: मेरा नाम पवन है और मैं एक बैंकर हूँ। जैसे कि आज हम देख रहे हैं अपने समाज में या फिर अपने आसपास एनवायरनमेंट में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम काम करते हैं वहाँ सभी देखते हैं हमारे आसपास के जो हमारे कलीग हैं या फिर हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, उनको हम मोस्टली देखते हैं कि थोड़ा अनफिट हैं और लोगों के अंदर भी फिटनेस के रिगार्डिंग जागरूकता थोड़ी सी कम है। मैं एक बैंकर हूँ और मुझे बैंक में रहते सर्विस को मेरे 10 से 12 साल हो चुके हैं, तो मैं देखता हूं कि जो रिटायरमेंट में मैंने काफ़ी स्टाफ को देख लिया है और रिटायरमेंट में जब मैं उनको देखता हूं कि वो रिटायरमेंट के समय वो कुछ नहीं लेके जाते हैं, उनकी हेल्थ जो है बिल्कुल एक नेगेटिव हेल्थ होती है, मोस्टली हेल्थ उनके चश्मे लगे रहते हैं, हेल्थ जो है उनका शुगर हाई रहता है, किसी का थायराइड रहता है, क्योंकि उसका एक मेन रीज़न ये है क्योंकि वो अपने फिटनेस को बॉडी को टाइम नहीं दे पाते, दिन का 9 to 5 की जॉब, उसके बाद शाम को फैमिली, फैमिली के बाद फिर सुबह अपना जॉब, मतलब बैंक का बैंकर है जो मोस्टली स्ट्रगल है थोड़ा सा लाइफ में, लेकिन अपने फिटनेस में लाइफ में बिल्कुल टाइम नहीं दे पाता है। मेरा मोटो ये है कि जितनी भी हमारे यूथ हैं या फिर एल्डर्स हैं, हमारे बड़े भाई हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, जितने भी हैं जो रिटायरमेंट भी हो चुके हैं, वो सभी अपना हेल्थ में थोड़ा ध्यान लगाएं। जो जिम नहीं जा सकते हैं वो रनिंग करें, घर के अंदर अपना कार्डियो सेक्शन कर सकते हैं, अच्छी डाइट लें, ऑफिस में रह के या फिर स्टूडेंट भी हैं और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है वो अपना एक छोटे छोटे से स्नैक्स वगैरह आइटम बना लें हेल्थी फूड के, जो अपने टाइम टू टाइम अपना वेरी करते रहें, अपना ईट लें, तो ताकि बॉडी के लिए प्रॉपर प्रोटीन कार्ब्स एंड जो भी न्यूट्रिशन बॉडी को चाहिए होते हैं वो सारे सप्लीमेंट भी की ज़रूरत पड़ती है, तो अपना बीच बीच में लेते रहें जिससे कि हेल्थ जो है इंसान अपने फिट रह सके। और फिटनेस एक छोटी चीज़ नहीं है कि आज हम ज्वाइन करेंगे तो हमें कल मिल जाएगी, फिटनेस एक बहुत लंबी जर्नी है जिसे अचीव करने के लिए हमें रोज़ छोटा थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। ये प्रयास जो है हमें अभी रिजल्ट नहीं देगा, लेकिन जिस समय हम रिटायरमेंट पे होंगे, जैसे हम बैंकर्स हैं या फिर किसी और ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं, सभी बैंक में होते हैं या फिर डिपार्टमेंट में होते हैं, कुछ स्टूडेंट होते हैं, सीनियर सिटीजन भी होते हैं, अब स्टूडेंट हैं आज के टाइम पे, हम देखते हैं बच्चे ऐसे ही खा रहे हैं, जंक फूड फास्ट फूड खाते हैं, हेल्थी चीज़ कुछ नहीं खाते, कोक कोल्ड ड्रिंक्स ये सब चीज़ें हैं। मेरा तो ये बेसिकली कहने का मतलब ये है कि इन सब चीज़ों को लोग अवॉइड करें, थोड़ा सा कम करें और अपना खान पान जो है अच्छा रखें। अगर आदमी फिटनेस पे नहीं ध्यान दे पाता है, कम से कम अपना अच्छे फूड पे ध्यान लगाए, ये इनका रिजल्ट तो है। इन फ्यूचर जब आप पहुंचोगे अपने एज पे 50-60 पे पहुंचोगे, तब आपको ये फील होगा कि हमारी बॉडी में क्या प्रॉब्लम है। और हमारा कहना यह है, हम भारत से हैं तो हमारे भारत की पहली कहावत यह है कि पहला सुख जो है निरोगी का आया है। अगर सुख रहना है जीवन में तो सबसे पहले आदमी को अपना शरीर को स्वस्थ रहना चाहिए। अगर खुद का शरीर स्वस्थ है तो ही हम जीवन में आगे कुछ और करने का प्लान करते हैं। हम स्वस्थ हैं तो अपने परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं, हम स्वस्थ हैं तो हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट को स्वस्थ रख सकते हैं, अपने स्टाफ को स्वस्थ रख सकते हैं। और अच्छे खाना खाते हैं तो साथ वाला पर्सन भी अच्छा ही खाएगा आपको देख करके, क्योंकि आदमी जैसा देखता है वैसा ही सीखता है, आसपास का माहौल जैसे ही होता है। अगर साथ में कुछ हमारी संगत खराब होगी तो हम संगत खराब ही सीखेगा, अगर हम अच्छा खाएंगे तो साथ वाला भी अच्छा ही खाएगा, अच्छा खाएगा तो उसकी अच्छी स्वस्थ रहेगी, अच्छी स्वस्थ रहेगी तो वो अपनी फिटनेस पे भी थोड़ा ध्यान लगाएगा कि सोचेगा व्यक्ति की अपनी फिटनेस को शारीरिक।
3: तो बेसिकली आप फिटनेस को प्रमोट करते हो एंड आप ये चाहते हो कि लोग हेल्दी रहें, अच्छा खाना खाएं, अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो करें।
4: जी जी।
3: और आप एक बैंकर हैं। ऑलराइट, सो अमेजिंग। पवन भाई ने बताया यहाँ पर कि किस तरीके से उनका जो थॉट प्रोसेस है वो फिटनेस को कैसे प्रमोट करते हैं एंड द वे हाउ वी शुड लिव आवर लाइफ्स, एंड बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, रीजन बीइंग कि ही इज़ करेक्ट कि उनकी आंखों के सामने जब लोग रिटायर होके जाते हैं तो वो फिट नहीं होते हैं एंड ही सी इट एज इफ कि आप अपने ओल्ड एज में एग्जैक्टली आपकी बॉडी को सबसे ज़्यादा फिटनेस की जरूरत होती है एंड एट दैट टाइम यू आर नॉट बीइंग फिट, दैट इज गोना अफेक्ट योर लाइफ। वी गोना टॉक अबाउट हाउ इज द लाइफ ऑफ अ बैंकर, बट उसके लिए हम बात करेंगे इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद। तो फिलहाल मजा लीजिए इन गानों का, जुड़ रही है हमारे साथ क्योंकि वक्त है म्यूजिकल ब्रेक का। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक, मैं हूं सागर। शो यहां पर चल रहा है वॉइस ऑफ यूथ। हमारे साथ यहां पर आज के जो मेहमान हैं वो है मिस्टर पवन। और अभी तक हमने जाना पवन के बारे में, पवन भाई ने बताया कि एग्जैक्टली वो फिटनेस को प्रमोट करते हैं बीइंग अ बैंकर। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। पवन जी, मेरा अगला प्रश्न आपसे रहेगा कि बैंकर की लाइफ कैसी होती है? रीजन बीइंग कि बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए बैंकिंग एक ड्रीम जॉब होती है, तो मैं जानना चाहूंगा आपके शब्दों में कि एक बैंक की जिंदगी, एक बैंकर की जिंदगी कैसी होती है, कैसा होता है बैंक का माहौल?
1: बैंक की जॉब 9 to 5 की बहुत ही ज़्यादा अच्छी जॉब है, कोई बुरी जॉब नहीं है। लेकिन आज के इस टाइम में देख के, प्राइवेटाइजेशन को देख के, और इतने सारे बैंक हैं, कंपटीशन इतना है जॉब में कि स्ट्रगल हो गई है लाइफ। अब जो बैंकर्स की लाइफ है 9 to 5 नहीं, अब बैंकर्स जो है 8-8 बजे तक भी बैंक में जॉब करता है, और उसके पास वर्कलोड बहुत ज़्यादा है वैसे। लेकिन ये सब जगह नहीं है। आदमी अपना काम को अगर इन्जॉय से करे तो बैंकर जो है अच्छे से अपनी जॉब को कर सकता है, 9 to 5 भी कर सकता है अपने वर्कलोड को। बैंक में लोगों का ड्रीम रहता है, जो स्टूडेंट होते हैं अपना 12th पास करते हैं, उसके बाद अपनी ग्रेजुएशन करते हैं और IBPS का एग्ज़ाम देके अपना बैंकर सिलेक्ट करके बैंक में लग सकते हैं, जिसकी अपना ड्रीम रहता है बैंकर्स की जॉब। बैंक में अलग अलग पोस्टेड हैं, सबकी पोस्ट का अलग अलग गवर्नमेंट पे स्केल है, सबका अलग अलग अपना फैसिलिटी है, सबकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबकी अलग अलग पावर हैं, वो उसी हिसाब से उसी लिमिट में अपना काम करता है। स्ट्रगल इसलिए है क्योंकि बैंकर्स की जो जॉब है वो अब गवर्नमेंट जॉब है। जैसे मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, तो फेस ये करना होता है कि हमको कहीं भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है, इंटर सर्कल ट्रांसफ़र या फिर अंटर स्टेट ट्रांसफ़र हो सकता है, जिसमें हमें ये फेस करना पड़ता है कि हम अपने फैमिली को टाइम नहीं दे पाते, अपने बच्चों को, माता पिता को टाइम नहीं दे पाते। और बाहर जाने के बाद हमको बहुत सारे खाने की समस्या होती है, जो चीज़ हमारा रेगुलर फूड होता है, हमारा लोकल फूड, वो हमें वहाँ नहीं मिलता। या फिर हमें रहने की समस्या होती है, हमें देखना पड़ता है यहाँ हमारा इन्वायरमेंट है या नहीं है,

0: और सबसे ज़्यादा समस्या तो होती है अपने फैमिली देने के लिए, या बैंकर्स जो हैं जिनका भार ट्रांसफ़र हो जाता है उनको घर आने के लिए दूर, जैसे फ्राइडे होता है तो सैटरडे को छुट्टी लेकर के अपने घर आते हैं, और संडे को फिर मंडे को फिर सुबह बैंकर्स आते हैं। ये थोड़ा सा स्ट्रगल है बैंकर्स के लिए कि लाइफ में वो जॉब भी करना है और दूर रहता है, जबकि मेरा मानना ये है कि कोई भी बैंकर है सभी बैंकों उनको अपने ही सर्कल में ट्रांसफ़र हो तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि कोई भी एम्प्लॉई है, कोई भी वर्कर कहीं पे काम करता है वो अपने काम को अपनी जगह पे ज़्यादा अच्छा करेगा, क्योंकि वो फ्रेश मूड में रहेगा तो वो अच्छा काम करेगा। क्योंकि कोई भी आदमी सुबह सुबह भागता है, भाग के अपने जॉब पे जाएगा, सीट संभालेगा, आधे से ज़्यादा उसको अपना माइंड फ्रेश करने में लगा रहता है कि मैं अब सीट संभालूंगा, फिर शाम को उसे ये लगा रहता है कि मैं अपने घर जाऊँगा अभी। तो थोड़ा स्ट्रगल है इस चीज़ में बैंकर्स में।
1: सो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि बैंकर की लाइफ बहुत हेक्टिक होती है, और जो ये ड्रीम होता है आपका कि आपको बैंकिंग की लाइफ चाहिए उसको ज़रूर पूरा करना चाहिए, लेकिन आपको अदर साइड ऑफ द स्टोरी ज़रूर पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली वहाँ पर जाकर के बहुत सारा बिजी आपकी लाइफ हो जाती है, हेक्टिक हो जाती है, जिसकी वजह से ट्रांसफ़र भी आपका कहीं और हो सकता है, परिवार से भी आप दूर हो सकते हैं। उन तमाम चैलेंजेस के लिए आपको तैयार होना चाहिए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या सच में बैंक की लाइफ ऐसी होती है कि 9 बजे गए 5 बजे छुट्टी हो गई, या उसके बियॉन्ड भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लोगों को नहीं पता है, अमूमन जो नहीं दिखाई देती हैं।
0: आप सही कह रहे हैं कि 9 to 5 जो है बैंक की जॉब है, वैसे वर्किंग आवर सभी बैंकों का 10 बजे स्टार्ट होता है, चाहे वो प्राइवेट हो या फिर PSU बैंक हो, बट डिपेंड करता है कि हमारा काम करने की जो है क्वालिटी कैसी है, हमारी अपनी एफिशिएंसी हम कितना दे सकते हैं अपने वर्क में, कि हमें अपना काम कितने बजे तक ख़त्म करना है। अपना स्टाफ में एक बॉन्डिंग होनी चाहिए आपस में, सब कोलैब करके, किसी भी आप ब्रांच में जाके देखेंगे, अलग अलग बैंकों में जाके देखेंगे कि रस इतना ज़्यादा रहता है कि किसी काउंटर पे भीड़ बहुत ज़्यादा है, किसी पे बहुत भीड़ कम है। अगर ये सब मिल के बैंकर्स एक दूसरा एम्प्लॉय सपोर्ट करता है तो सब 9 to 5 में अपना घर जा सकता है, 6 बजे भी जा सकता है ताकि आदमी अपना घर पहुँच जाए। लेकिन अब वो नहीं रहा है, क्योंकि ज़्यादातर वर्कलोड इतना ज़्यादा है, कस्टमर डीलिंग ज़्यादा है बैंकर्स में, तो थोड़ा सा जो बैंक का एम्प्लॉई है वो टाइमली फ्री नहीं हो पाता है वैसे। लेकिन मिलके करे और हंसते रहे, अपना खुल के काम करे तो आदमी सारा काम आता है तो फ्री हो सकता है वैसे।
1: सो इट्स ऑल अबाउट हाउ यू मैनेज योर टाइम, हाउ यू मैनेज योर वर्क, एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स। सो बहुत सुंदर बात बोली पवन भाई ने यहाँ पर। एक और म्यूजिकल ब्रेक का, उसके बाद अपने शो में आगे बात करेंगे, एंड वी गोना टैप इन द कंटेंट क्रिएशन पार्ट की एग्जैक्टली कंटेंट क्रिएशन कैसा चल रहा है उनका, कैसे किया जाता है, उस एक एस्पेक्ट को समझने की कोशिश करेंगे। इनके 1 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, उस एक पर्टिकुलर पहलू को हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे, बट कहीं चाहिए कमेंट, जुड़ रहे हैं हमारे साथ। फील गुड, फील लाइव।

0: वंस अगेन आई एम होपिंग आपको मजा आ रहा होगा। अगर आपके पास कोई फीडबैक है मेरे लिए पवन के लिए तो 8010781078 इस कॉन्टैक्ट नंबर तक अपनी बात जरूर पहुंचाएं। फिलहाल यहाँ पर शो को आगे लेकर के चलेंगे। मैं हूँ सागर, शो चल रहा है पर वॉइस ऑफ यूथ, और एक बैंकर की जुबानी हम ये तमाम चीज़ें समझ रहे हैं। अभी तक हमने जानू की लाइफ के बारे में, अभी तक हमने समझा कि एक्जैक्टली लाइफ स्टाइल कैसा होता है एक बैंकर की लाइफ का, एक्जैक्टली डेली का जो दिन होता है काम कैसे रैप होता है, एंड बहुत सारी चीज़ें हमें जानने को मिली एक्जैक्टली इनसाइट्स की। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर कि एक बैंक में भी BTS होता है बिहाइंड द सीन्स, जो हमें कई बार नहीं दिखाई देता है। अब शो को आगे बढ़ाएंगे और मैं बात करना चाहूँगा कंटेंट क्रिएशन की। पहला प्रश्न तो मेरा ये है कि कंटेंट क्रिएशन आपने क्यों स्टार्ट किया, आपको क्यों लगा कि ये करना चाहिए?
1: मैंने बैंक जो है अपना 2015 में ज्वाइन किया था। उस समय मेरा ट्रांसफ़र घर से लगभग 60 किलोमीटर दूर था, तो मैं जो ट्रैवल करता था रोज़ ट्रेन से, बस से या फिर ऐसे करता था, तो सुबह 7 बजे निकल के 2 घंटे में ऑफिस पहुंच गए 9 बजे, उसके बाद अपना वर्किंग आवर स्टार्ट करके शाम को वहां से 5-6 बजे फ्री होके फिर 2 घंटे रात को घर आके, तो 8 बजे घर आने के बाद ये लाइफ स्ट्रगल चलता ही रहता था। तो लगभग 5-6 महीने के बाद मेरे को ये फील हुआ कि इस तरीके से तो मैं अभी यूथ हूँ, अगर मैं यंग हूँ, ये अगर ऐसा चलता रहेगा तो मेरी हेल्थ बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। और हम मैं देख रहा हूँ कि यहाँ मोस्टली हैं बैंकर्स में, हम आसपास में भी देखते हैं सब फिट नहीं है, फिर मेरे को लगा कि हमें फ़िटनेस पर थोड़ा ध्यान लगाना चाहिए। उसके बाद फिर मैंने अपना फिटनेस में थोड़ा लाइन ली लगाई, उसमें सुबह फिर मैं अपना उठ के जहाँ पे मेरे को ऑटो लेना पड़ता था, मैं वहाँ पे पहले अपना पैदल वॉक करना स्टार्ट करा ऑटो की जगह पे, ताकि उस समय मेरी एक्सरसाइज हो जाती थी और मेरा टाइम भी थोड़ा अच्छा रहता था। शाम को अगर ऑफिस में कभी लेट होते थे तो शाम को ऑफिस में बैग रख के अपना आसपास की मैंने कोई जिम ज्वाइन करके वहाँ पे अपना वर्कआउट स्टार्ट किया। और फिटनेस को फिर मैंने तब से ही अपना एक ये ले लिया कि ये फिटनेस ये ड्रीम नहीं है, एक एम है जो कि मुझे आगे तक मुझे हमेशा ही सुख ही देगा। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर आप फिट रहोगे तो ही आप आगे की लाइफ और अच्छी जी पाओगे। बैंकर्स में फिर होने के बाद फिर मैं जगह जगह ट्रांसफ़र हुआ, जगह जगह देखा, कहीं हमें कुछ चेंजेस मिलते हैं, कभी कुछ फूड की चेंजेस, कभी ट्रैवल की चेंजेस, लेकिन फ़िटनेस को मैंने हमेशा अपनी प्रायोरिटी पे रखा। मैंने ऑल टाइम सुबह ही रनिंग के रख के शाम को जिम रखी। जिम आदमी को वर्कआउट करना चाहिए, और रनिंग में आदमी को हर व्यक्ति को अपनी रनिंग जब भी टाइम मिले, अगर वर्कआउट नहीं कर पाता है वो अपनी रनिंग रखे।
0: तो आपने बेसिकली फिट रहने के लिए कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया। इंस्टाग्राम पर ग्रो कैसे किया जाता है?
1: इंस्टाग्राम पर ग्रो करने के लिए कंटेंट आपका जो है फिटनेस के रिलेटेड, आप रेगुलर उसमें अपना पोस्ट डालें, रेगुलर आप अपना जो भी वर्कआउट शेड्यूल है, मैं अपना रेगुलर वर्कआउट शेड्यूल डालता हूँ उसमें, जो भी अपना डाइट प्लान है मैं अपना वो सब उसमें डालता हूँ। कंटेंट ये है कि आप लोगों को ये गाइड कर सकते हैं आपको किस तरीके से अपना डाइट प्लान जो है वो रख रहे हैं, आप अपना क्या खा रहे हैं, कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप जो भी वर्कआउट कर रहे हैं रनिंग का, तो वो सब अपना कंटेंट जो बना के अपना उसमें डाल लें इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पे या फिर आप यूट्यूब चैनल जो भी है उसमें।
0: बहुत सारे लोग हैं जो कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना चाहते हैं, जिनको कंटेंट बनाना है, शुरू करना है, वो अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं कंटेंट की?
1: अगर किसी भी फ्रेंड्स को अपने कंटेंट स्टार्ट करना है, सबसे पहले वो सिलेक्ट कर ले कि उसको करना क्या है। अगर फिटनेस में सिर्फ रनिंग ही करनी है तो अपना रनिंग का स्टार्ट धीरे धीरे से कर सकता है, अपने अपने जो भी शेड्यूल है उसका डेली का, सुबह मॉर्निंग में जगने का और नाइट में कितने बजे वो फ्री होता है स्लीप का। वैसे अपने फिटनेस को लेने के लिए सबसे पहले मेन चीज़ तो ये है कि यही है इसका मोटो लोगों तो, कि ईट रिपीट एंड स्लीप, अपना अच्छा खाना और उसको रिलैक्स करना और अच्छी नींद लेना, फिट रहने के लिए तो यही है। कंटेंट स्टार्ट करने के लिए सभी फ्रेंड्स को सबसे पहले अपना वर्कआउट जो भी शेड्यूल है अपने वर्कआउट को अपना ठीक रखे, अपना रेगुलर पोस्ट डाले, जो भी वर्कआउट कर रहे हैं अपनी कंसिस्टेंसी रखे और रेगुलर पोस्ट रखे, अवॉइड करे अल्कोहल, अवॉइड करे जंक फूड और अवॉइड करे बहुत सी चीज़ें हैं जो बच्चे अवॉइड कर सकते हैं।
0: तो बेसिकली अवॉइड ऑल दोस थिंग्स जो आपकी बॉडी को नेगेटिव अफेक्ट करती हैं एंड द थिंग्स दैट एक्चुअली पुट योर लाइफ एट स्टेक। सो अवॉइड ऑल दीज थिंग्स एंड जस्ट स्टार्ट डूइंग इट, जो भी आप करना चाहते हैं, बीट फिटनेस, कॉमेडी, टेक या जो भी आपका डोमेन हो सकता है, इस भी इशू आप पकड़ना चाहते हैं, जस्ट गेट स्टार्टेड। सो दैट इज द बॉटम लाइन ऑफ दिस। मेरे सवाल यहाँ पर खत्म होते हैं पवन भाई, कोई भी ऐसी चीज़ जो मैं ना पूछ पाए हूँ और आप अपने मन में लेकर आए हों तो प्लीज़ फील फ्री।
1: सबसे मेन चीज तो यह है, मेरा तो ड्रीम यह है इंडिया के अंदर हो या इंडिया से बाहर, सब लोग किसी भी एज से लेकर के अब अवेज तक अपने हेल्थ को फिट रखे। फिट का मतलब ये नहीं है कि हमने आज वर्कआउट कर लिया, शाम को सो गए, हम फिट हो गए। एक लंबी जर्नी है, सबको अपने अच्छे खान पान से लेके, अपना अच्छा सोने से लेके, अपनी शारीरिक कसरत, घर के अंदर भी कोई काम भी एक फिटनेस ही है। लेकिन एक रेगुलर रूटीन में जो अपने फिटनेस को, बॉडी को, अपने मानसिक मेंटलिटी को फिट रखता है, वो फिट रखे वो ज़्यादा ठीक है। मेरा तो यही है, मैं सब में और आपके साथ मिलके बहुत अच्छा लगा सर।
0: थैंक यू सो मच। और दोस्तों, आज हमने बात करी एक बैंकर से और एक कंटेंट क्रिएटर से, इन्होंने हमें बताया कि एग्जैक्टली बैंकिंग लाइफ कैसी होती है, हमें बताया कि कंटेंट को कैसे स्टार्ट किया जाता है, बताया एग्जैक्टली कि कंटेंट को ग्रो कैसे करना होता है, एट द सेम टाइम फिटनेस को बहुत प्रमोट करते हैं। आपने अभी तक ये अगर पूरा संवाद सुना है तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि थ्रू आउट ऑल द क्वेश्चंस, ऑल द आंसर्स, ये फिटनेस को ही टॉप पे रख के बात कर रहे थे। सो आई थिंक दैट्स मोर देन इनफ टू लेट अस नो कि एग्जैक्टली फिटनेस आपके पास एक ऑप्शन नहीं है, कोई चॉइस नहीं है, दैट इज़ द मैंडेटरी थिंग जो आपको करनी ही चाहिए एंड दैट इज नॉन नेगोशिएबल, जो हम सबको फॉलो करना चाहिए। ऑलराइट, ऑन दिस नोट वक्त है अपने शो के यहाँ पर कंक्लूड करने का। उम्मीद कर रहा हूँ आज का शो आपको पसंद आया होगा, आज के शो से कुछ मूल्य आप लोगों तक पहुँच पाए होंगे। फिलहाल इसी नोट पर इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच पवन भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए, इट मीन्स अ लॉट टू अस।
1: थैंक यू सर।
0: ऑलराइट दोस्तों, नाउ ऑन दिस नोट, दिस इज योर दोस्त एंड होस्ट आरजे सागर।

नमस्कार, मैं वरुण सिंगला जहाना, टोक्यो 2020 पैरालंपिक सिल्वर ब्राउन मेडलिस्ट इन शूटिंग। आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 फील गुड फील लाइफ।

मिट्टी से गहरा रिश्ता रखता हूँ, अरे भाई किसान का बेटा हूँ ये गर्व से कहता हूँ। किसान भाइयों, ककड़ी के बारे में आज आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन आप जानते हैं मैं किसी भी फसल की बात करता हूँ तो उसकी किस्में कौन कौन सी होनी चाहिए ये जानकारी आपको जरूर देता हूँ। ककड़ी की जब बात आती है तो इसकी एक किस्म होती है जिसका नाम है पंजाब लॉन्ग मिलोन वन। ये किस्म 1995 में तैयार की गई थी और ये जल्दी पकने वाली किस्म है। इसकी बेलें जो हैं लंबी होती हैं, हल्के रंग का तना, पतला और लंबा फल होता है। इसकी औसतन पैदावार 86 क्विंटल प्रति एकड़ होती है, लेकिन अगर दूसरे राज्यों की किस्मों की बात करें तो एक किस्म है करनाल सेलेक्शन। ये किस्म ज्यादा मात्रा में फल पैदा करती है। इसके फल हल्के हरे रंग के और कद में लंबे और गुद्दा कुरकुरा और अच्छी स्वाद वाला होता है। इसके अलावा एक और नस्ल है जिसका नाम है अर्का शीतल। ये किस्म IIHR लखनऊ द्वारा विकसित की गई है। इसके फल हरे रंग के होते हैं जो कि मध्यम आकार के होते हैं। इसका गुद्दा कुरकुरा और अच्छी स्वाद वाला होता है। 90 या 100 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। लेकिन इस फसल को उगाने के लिए जमीन की तैयारी कैसे की जाए ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। ककड़ी की खेती के लिए अच्छी तरह से तैयार जमीन की आवश्यकता होती है। मिट्टी को भुरभुरा करने के लिए हैरो से 2 या 3 बार जुताई करना जरूरी होता है, तब जाकर के ककड़ी की फसल बेहतरीन हो सकती है। लेकिन जब बात आती है बिजाई की तो बिजाई के बारे में भी आपको बताऊंगा और बीज के बारे में भी आपसे बहुत सारी बातें करूंगा, जैसे बीज की मात्रा क्या होनी चाहिए या बीज का उपचार कितना जरूरी होता है, ये सारी जानकारियां आपको दूंगा, लेकिन सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर।

दोस्तों, हम कितने भी मॉडर्न क्यों ना हो जाएं, लेकिन बिना किसान की मेहनत के जिंदा नहीं रह सकते। किसान भाइयों, बात हो रही है ककड़ी के बारे में, आइए बात कर लेते हैं बिजाई की या बिजाई के समय की। देखिए, बीजों की बिजाई के लिए फरवरी मार्च का महीना अनुकूल होता है, लेकिन जब बात आती है फासले की तो इसका भी हमें ध्यान रखना जरूरी है। खालियों के बीच 200 से 250 सेंटीमीटर और मेड़ों के बीच 60 से 90 सेंटीमीटर फासले का प्रयोग करें। फसल के अच्छे विकास के लिए दो बीजों को एक जगह पर ही बोएं। और अगर बीज की गहराई की बात आती है तो बीजों को 2.5 से 4 सेंटीमीटर यानी कि इतनी गहराई में बोना चाहिए। लेकिन बिजाई का अपना एक ढंग भी होता है। बीजों को बेड या मेड़ पर सीधे बोया जाता है। लेकिन किसान भाइयों, आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे जो बीज होते हैं उसमें बहुत सारे रोग भी लग जाते हैं। और सवाल एक ये है कि बीज की जो मात्रा है वो कितनी होनी चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रति एकड़ में 1 किलो बीज का प्रयोग करें। और उपचार की बात आती है तो मिट्टी से होने वाली बीमारी

से बचने के लिए बेनलेट या बविस्टीन 2.5 ग्राम से प्रति किलो बीजों का उपचार करें। इससे क्या होगा, बीज को जो रोग लगने वाले थे वो रोग लगेंगे नहीं, और जब बीज को कोई रोग नहीं लगेगा तो आपकी फसल बेहतर होगी, स्वस्थ होगी और इसका दाम भी आपको अच्छा ही मिलेगा। करते हैं कुछ और भी बातें, करते हैं ककड़ी के बारे में, जैसे खाद कैसे लगाएं या खाद कौन सी होनी चाहिए, खरपतवार का कैसे ध्यान रखें, ये सारी बातें भी आपके साथ साझा करूंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर अन्नदाता।

दोस्तों, किसान वो भगवान है जो खुद का पेट खाली रखकर दूसरों का पेट भरता है। तो आइए किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं खाद की। अगर आप ककड़ी की फसल अच्छी तरह से उगाना चाहते हैं तो आपको नर्सरी बेड से 15 सेंटीमीटर दूरी पर फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा और नाइट्रोजन का 1/3 भाग बिजाई के समय डालें। बाकी की बची हुई नाइट्रोजन बिजाई से 1 महीने के बाद में डालें। अब बात आती है खरपतवार की, क्योंकि जो खरपतवार होती है ना, वो फसल को एकदम बर्बाद कर देती है। तो इसके लिए क्या करना है, नदीनों की रोकथाम के लिए बेलों के फैलने से पहले इनकी ऊपरी परत की कसी से हल्की गुड़ाई कर दें। इससे जो खरपतवार है वो कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन जब बात सिंचाई की आती है तो ध्यान रखना बहुत जरूरी है। किसान भाइयों, बिजाई के बाद तुरंत सिंचाई करना आवश्यक है और गर्मियों में 4 से 5 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। और बारिश की बात करें तो बारिश के मौसम में सिंचाई आवश्यकता अनुसार करें, वरना आपकी फसल पर प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा दोस्तों, बहुत सारे ऐसे कीट होते हैं जो कि बड़े खतरनाक होते हैं हमारी फसल के लिए। ऐसा ही एक कीट होता है जिसका नाम है चेपा और थ्रिप्स। ये कीट पत्तों का रस चूसते हैं जिससे पत्ते पीले पड़ जाते हैं और फिर गिर जाते हैं। थ्रिप्स के कारण पत्ते मुड़ जाते हैं जिससे पत्ते कप के आकार के और ऊपर की तरफ मुड़े हुए होते हैं। जब भी आपको इसका हमला फसल पर दिखाई दे तो थायामेथोकस्म 5 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी की स्प्रे फसल पर कर दें। इससे ये जो कीट है चेपा और थ्रिप्स, ये हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे और आपकी जो फसल है वो फसल एकदम स्वस्थ और सुरक्षित रहेगी। लेकिन बात अभी खत्म नहीं हुई है, और भी कीट हैं जो कि आपकी फसल के लिए बहुत हानिकारक हैं, उनके बारे में भी आपसे बात करूंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर अन्नदाता।

एक दिन जीकर देखो जिंदगी किसान की, कैसे वो मिट्टी से सजा देता है थालियां हिंदुस्तान की। किसान भाइयों, ककड़ी के बारे में आज आपसे बात हो रही है और पीछे मैंने एक कीट का जिक्र किया था जो कि हमारी फसल के लिए बहुत ही हानिकारक होता है, चेपा और थ्रिप्स। इनके बारे में तो आपको बता दिया था। इसके अलावा एक और कीट होता है जो जाना जाता है भुंडी के नाम से। इनके कारण फूल, पत्ते और तने नष्ट हो जाते हैं। अगर इसका हमला दिखाई दे तो मेलाथियोन 2 मिलीलीटर या कार्बोरिल 4 ग्राम को प्रति लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। ये भुंडी की रोकथाम में सहायक है। इसके अलावा एक होती है मक्खी जो कहलाती है फल की मक्खी। ये ककड़ी की फसल का गंभीर कीट है। किसान भाइयों, नर मक्खी फल की बाहरी परत के नीचे अंडे देती है और उसके बाद ये छोटे कीट फल के गुद्दे को अपना भोजन बनाते हैं। उसके बाद क्या होता है, ये जो हमारा फल है वो फल गलना शुरू हो जाता है और फिर गिर जाता है। अब इसका उपचार सुन लीजिए। फसल को फल की मक्खी से बचाने के लिए नीम के तेल 3.0% फोलियर स्प्रे करें। इससे इस मक्खी यानी फल की मक्खी को कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा इसकी कुछ बीमारियां भी हैं, जैसे सफ़ेद फफूंद लग जाती है। इसकी रोकथाम कैसे करनी चाहिए इसकी जानकारी भी आपको दूंगा। आप मेरे साथ बने रहिए और सुनते रहिए अन्नदाता।

दोस्तों, छत टपकती है उसके कच्चे घर की, फिर भी वो किसान करता है दुआ बारिश की। किसान भाइयों, ककड़ी की फसल के बारे में आज आपसे बहुत सारी बातें साझा कर रहा हूं, लेकिन बात चल रही थी कुछ कीटों के बारे में जो कि फसल के लिए हानिकारक होते हैं। कुछ बीमारियां भी होती हैं जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती हैं, जैसे सफेद फफूंदी। पत्तों के ऊपरी सतह पर सफेद रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। ये जो धब्बे है ना किसान भाइयों, प्रभावित पौधे के मुख्य तने पर भी दिखाई देते हैं। इसके कीट पौधे को अपने भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं और इनका हमला होने पर पत्ते गिरते हैं और फल पकने से पहले ही गिर जाते हैं। अगर इसका हमला खेत में नजर आए तो पानी में घुलनशील सल्फर 20 ग्राम को 10 लीटर पानी में डालकर 10 दिनों के अंतराल पर 2 से 3 बार स्प्रे करें। इस तरह से इस बीमारी पे कंट्रोल पाया जा सकता है। इसके अलावा एक और बीमारी है जिसका नाम है एंथ्राक्नोस। ये पत्तों पर अपना हमला करती है जिसके कारण पत्ते झुलसे हुए दिखाई देते हैं। इसकी रोकथाम के लिए कार्बन डाइऑक्साइड 2 ग्राम से प्रति किलो बीजों का उपचार करें। अगर इसका हमला खेत में दिखाई दे तो मैन को जेब 2 ग्राम या कार्बन डाइऑक्साइड 2 ग्राम को प्रति लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर देना चाहिए। तो इस तरह से आप अपनी फसल को इन बीमारियों से बचा सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों, जब बात आती है फसल की कटाई की या बीज उत्पादन की, वो कैसे होना चाहिए उसके बारे में भी बात होगी, लेकिन सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर।

0: एक दरिया मोड़ा उसने, एक समंदर बांध रखा है, किसान के एक टूटे हल ने पूरे देश को संभाल रखा है।
1: किसान भाइयों, ककड़ी के बारे में आपसे बहुत सारी बातें कर ली हैं, लेकिन अब समय है फसल की कटाई का। देखिए किसान भाइयों, इसके जो फल है ना, 60 से 70 दिनों में कटाई के लिए तैयार हो जाते हैं, और कटाई मुख्य तौर पर फल के पूरी तरह विकसित होने और नर्म होने पर ही की जाती है। कटाई मुख्य रूप से फूल निकलने के मौसम में 3 से 4 दिनों के अंतराल पर की जाती है, लेकिन जब बात आती है बीज उत्पादन की, तो इस बात को भी जरा ध्यान से सुनिएगा। ककड़ी को अन्य किस्मों जैसे वाइल्ड मेलन, खरबूजा, स्नैप मेलन, यानी इनसे 1000 मीटर के फासले पर रखें। खेत में से प्रभावित पौधों को हटा दें। जब फल पक जाएं, यानी जैसे उनका रंग बदल कर हल्का हो जाए, तब उन्हें ताजे पानी में रखकर हाथों से तोड़ें और गूदे से बीजों को अलग कर लें। बीज जो नीचे स्तर पर बैठ जाते हैं, उन्हें बीज उद्देश्य के लिए इकट्ठा किया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों, बीज उत्पादन के बारे में भी आपसे बात हो गई, फसल की कटाई कैसे की जाए ये भी बता दिया, और कौन कौन सी बीमारियां हैं, कौन कौन से कीट हैं जो कि हमारी फसल को नेस्तनाबूद कर देते हैं, उनसे रोकथाम कैसे की जा सकती है, ये सारी बातें विस्तार से आपको बता दी हैं। पर अब वक्त है आपसे आज्ञा लेने का। चलता हूँ, और चलते चलते सभी किसान भाइयों को करता हूँ राम राम सलाम।
2: अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, हिरला पान चबाए, अरे ऐसा झटका लगे जिया पे, पुनर्जन्म हो जाए। ओ खई के पान बनारस वाला, ओ खई के पान बनारस वाला, खुली जाए बंद अकल का ताला। ओ खई के पान बनारस वाला, खुली जाए बंद अकल का ताला।

0: ना तो याद है मुझे,
1: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर हाजिर है आपका दोस्त फहीम लेकर यादों का सफर। दोस्तों, आधुनिकता के दौर में ज्ञान विज्ञान के विकास से समाज और व्यक्ति में कई भौतिक एवं वैचारिक प्रकट हुए हैं। इन परिवर्तनों से उत्पन्न मानवीय संवेदना से आठवें दशक की प्रमुख रचनाकार यानी मधु कांकरिया का साहित्य जुड़ा हुआ है। तो आज मैं आपसे बात करूंगा रचनाकार मधु कांकरिया के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में और संघर्षों का भी जिक्र होगा। फिलहाल आवाज की दुनिया के सभी दोस्तों को फहीम का नमस्ते, सलाम।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, आज बात हो रही है रचनाकार मधु कांकरिया के बारे में। उनका अध्ययन, चिंतन और लेखन न केवल साहित्य, संस्कृति और शिक्षा तक व्यापक है, बल्कि आज की राजनीति, मीडिया और समाज व्यवस्था के सूक्ष्मतम अंतर्ध्वनियां भी उनके मानस पटल में पूरी तरह से रची बसी हैं। उन्होंने कहानी, उपन्यास, यात्रा वृतांत, संस्मरण यानी कि इस तरह के साहित्यिक रूपों में अपनी अनुभूति की प्रामाणिकता और बोध प्रवणता को अभिव्यक्त किया है। अब तक उनके द्वारा रचित चारों कहानी संग्रहों बेताते हुए 2004 और अंत में ईशु 2008, युद्ध और बुद्ध 2014, जलकुंभी 2020 में भाषा, धर्म, रूढ़ी, दरिद्रता, उजड़ते गांव, स्त्री समस्या, नक्सलवाद की समस्या, बुद्धिजीवी वर्ग, पीढ़ियों के बीच के अंतर यानी कि इनसे जुड़े अनेक ज्वलंत सवालों को प्रकट किया है। ये कहानियां आज के समाज की प्रतिच्छवि हैं और इनसे झांकती आम आदमी के मानव अधिकारों के प्रति प्रतिबद्धता मधु कांकरिया की पहचान है। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, साहित्य के विकास और समाज की पहचान को समझने में युग बोध महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये एक

सामाजिक, धार्मिक, व्यवसायिक घटनाओं को यथार्थ रूप में केंद्रीभूत रखता है। युगबोध वास्तविकता से परिचित कराता है। इसका न वर्तमान के साथ कोई संबंध है और न भविष्य से कोई ताल्लुक है। ये समय सामायिकता पर जोर देता है। एक ही युग में प्रत्येक व्यक्तियों का चेतन अलग अलग होने के कारण हर किसी की युगबोध को लेकर धारणा अलग अलग हो सकती है और उसका प्रभाव भी अलग अलग पाया जा सकता है। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर सुनते रहिए फहीम के साथ यादों का सफर।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, बात हो रही है मधु कांकरिया के बारे में, जो एक बड़े ही प्रसिद्ध रचनाकार हैं। उनका कहना है, युगबोध को किसी एक विशेष परिभाषा में परिभाषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि समय के साथ साथ उसका स्वरूप बदल जाता है। समाज का संपूर्ण रूप साहित्य में समाहित है और युगबोध का पूर्ण रूप रचना में देखने को मिलता है। अतएव युगीन परिवेश को रेखांकित करने के लिए एक रचनाकार को संपूर्ण युग का ज्ञान होना चाहिए। महान कलाकार अपने युग का पूर्ण प्रतिनिधि, पूर्ण व्याख्याता होता है। उसकी वाणी में युग के सारे संघर्ष, सारे राग विराग, समस्त प्रश्न और संदेह मूर्तिमान होकर बोलते या ध्वनित होते हैं। एक समय सापेक्ष होने के कारण कुछ विशेष समय अवधि तक युग बोध का महत्व तेजी से बढ़ता है, लेकिन परवर्ती युग में उसे महत्व मिल भी सकता है और नहीं भी। इसके अलावा वो और क्या कहना चाहती हैं अपने शब्दों के माध्यम से आपके साथ साझा जरूर करूंगा, लेकिन सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर।
1: दोस्तों, रचनाकार मधु कांकरिया का कहना है कि किसी भी रचना को पूरी तरह समझने, उसका मूल्यांकन करने के लिए वो रचना कब लिखी गई थी, उस समय का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश किस तरह का था, यानी कि इन सारी बातों का ज्ञान होना आवश्यक है, जिसे युग बोध कहा जाता है। युग बोध को सिर्फ आधुनिकता, समसामायिकता ही प्रभावित नहीं करती। आधुनिकता के साथ साथ इतिहास, संस्कृति, परंपरा भी उसे प्रभावित करते हैं, क्योंकि प्रत्येक युग के पीछे उसकी पृष्ठभूमि रहती है। इतिहास के किसी भी युग का साहित्य उठाकर देख लिया जाए तो उस युग की तत्कालीन परिस्थितियों का चित्रण अवश्य देखने को मिलता है, जिसकी भावधारा मनुष्य चेतना, समाज और उसके परिवेश से बंधी हुई है। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं फहीम के साथ यादों का सफर।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, मधु कांकरिया का कहना है कि साहित्य जीवन का दूसरा नाम है। साहित्य समाज की चेतना में सांस लेता है। समाज का वो परिधान है जिसमें समाज के सुख दुख, आशा निराशा, हर्ष विषाद, आकर्षक विकर्षक यानी कि सारे ताने बाने बुने जाते हैं। उसमें मानव जाति की आत्मा का स्पंदन होता है। और दूसरी बात, समाज के बिना साहित्य की कल्पना नहीं की जा सकती है और साहित्य से परिचित हुए बिना हम समाज को समझ नहीं पाते हैं। साहित्य सृजन के लिए जो भाव विचार चाहिए वो सब समाज से ही मिलते हैं, जिसे युग बोध कहा जाता है। मानव जीवन के तमाम पहलुओं को आत्मसात करके उसे अभिव्यक्त करने का काम साहित्य के द्वारा ही होता है, ऐसा कहना है रचनाकार मधु कांकरिया का। लेकिन इसके अलावा वो कुछ और भी कहना चाहती हैं। उन सारी बातों को आपके साथ साझा करता रहूंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर यादों का सफर।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर।
1: दोस्तों, जैसा कि मैं आपसे बात कर रहा था मधु कांकरिया के बारे में, उनका कहना है कि मानव जीवन के तमाम पहलुओं को आत्मसात करके उसे अभिव्यक्त करने का काम साहित्य द्वारा होता है। इसी के साथ साथ वो ये भी कहती हैं कि युग बोध साहित्य का धर्म है। बोध एक आंतरिक प्रक्रिया होने के कारण किसी विषय, परिवेश, परिस्थिति के प्रति हमारी धारणा का निर्माण करता है। बोध हमेशा एक जैसा नहीं रहता, समय के मुताबिक ये बदलता रहता है। अपनी बोध शक्ति के मुताबिक हर एक व्यक्ति दूसरे से अलग होता है। ये एक प्रकार का अनुभव है जो हमें अपने जीवन को सहज करने के लिए सहायक होता है। हर एक देश का, समाज का अपना स्वतंत्र बोध होता है और युग बदलने के साथ साथ उसका बोध भी बदलता रहता है, जिसका रूप साहित्य में देखने को मिलता है। जिस प्रकार व्यक्ति और समाज एक दूसरे के परिपूरक हैं, ठीक उसी तरह साहित्य और युग बोध भी अनुपूरक हैं। एक के बिना अन्य की कल्पना असंभव है, ऐसा कहना है रचनाकार मधु कांकरिया का। लेकिन दोस्तों, मधु कांकरिया के बारे में और भी बहुत सारी बातें थी, आपके साथ साझा कर सकता था, पर समय इजाजत नहीं देता, इसलिए आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में इन्हीं के बारे में आपसे और भी बातें साझा करूंगा। फिलहाल इजाजत चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिए, आसपास सफाई का ख्याल रखिए, आसपास पेड़ पौधे लगाएं और सुनते रहें रेडियो मानव रचना 107.8 FM। चलता हूं, फिर मुलाकात करूंगा। अपना ख्याल रखना। नमस्ते, खुदा हाफिज़।

0: खैनी गुटका जर्दा पान ले रहा है सबकी जान। उठता है जब धुआं सिगरेट का, मंजर होता है वो मौत का। कैंसर की बीमारी लाता, फेफड़ों में धुआं भर जाता। परिवार वाले होते चिंतित, नहीं लगता नशे बिना कहीं चित।
1: समय रहते नशे को खत्म कर दो, वरना समय आने पर नशा तुम्हें खत्म कर देगा। रेडियो मानव रचना 107.8 देता है ये संदेश, नशे से रहे दूर, बनाए स्वस्थ देश। हेलो फरीदाबाद, स्वागत है आपका आपके अपने रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, और मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजी स्नेहा, और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम ट्रेंडिंग तड़का, जहाँ पर हर बात होती है ट्रेंड वाली। जी हाँ, हर हफ्ते संडे शाम 4 से 5 लेकर आ जाती हूँ आपके लिए कुछ खास ट्रेंडिंग टॉपिक, और इसी के साथ लेकर आती हूँ आपके लिए बेहद ही खूबसूरत से गाने भी। और यहाँ पर हम बात करते हैं उन टॉपिक्स की जो हमारी रोज़मर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई है, हम सबसे जुड़ी हुई है। जी हाँ, कभी हमें कुछ टॉपिक्स ऐसे भी होते हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं, तो कभी कभी हमारा पर्सपेक्टिव ही चेंज कर देते हैं। मैं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे स्नेहा, और आज फिर से आ गई हूँ लेकर एक और ऐसा टॉपिक जो शायद हम सबकी डेली लाइफ का हिस्सा भी है। जी हाँ, लेकिन इसके बारे में हम उतना सीरियसली लेते ही नहीं है, हम इसके बारे में ज़्यादा सोचते ही नहीं है। दोस्तों, एक सवाल आपसे कि आज आपने क्या खाया? हो सकता है कि शायद आपने ब्रेड या फिर पोहा खाया हो, या लंच में दाल चावल या फिर रोटी सब्जी खाई हो, और शाम को चाय के साथ कुछ ना कुछ स्नैक्स तो हो ही जाते हैं, और अगर बाहर निकल गए तो स्ट्रीट फूड का टेम्पटेशन तो अलग ही लेवल का होता है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि जो फूड हम खा रहे हैं वो सेफ है या नहीं, उसकी क्वालिटी कैसी है, उसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ हो रहे हैं वो सेफ हैं हमारे लिए या फिर नहीं, और पैकेट्स पर जो इंफॉर्मेशन लिखी होती है क्या हम उसे कभी प्रॉपरली चेक करते हैं। बस इसी कनेक्शन से आज का हमारा टॉपिक जो मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए वो है FSSAI। जी हाँ, आपने FSSAI का नाम ज़रूर सुना होगा। हम सब कहते हैं कि जो भी हम पैकेट बाहर से खरीदते हैं उस पर हम एक बार चेक करते हैं कि उस पर FSSAI का मार्क है या नहीं। पैकेज फूड के पैकेट पर एक लोगो आता है और लाइसेंस नंबर भी देखा होगा आपने, लेकिन क्या आपको एक्चुअली पता है कि FSSAI क्या करता है, ये फूड इंडस्ट्री के लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, और एक कंज्यूमर के रूप में इसका हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस हो सकता है। FSSAI का फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जी हाँ, सिंपल वर्ड्स में समझे तो इसका मेन फोकस है कि जो हम फूड हम तक जो पहुंच रहा है वो सेफली और क्वालिटी स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए हमारे पास आए, और यहीं से आज की कॉन्वर्जेशन और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि फूड सेफ्टी सिर्फ रेस्टोरेंट्स या फिर कहीं तो फूड कंपनीज या फिर शॉपकीपर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। एज कंज्यूमर हमें भी ये देखना चाहिए, हमें भी इसके लिए अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। तो आज का ये ट्रेंडिंग टॉपिक जिसमें हम FSSAI को सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर ही नहीं बल्कि अपनी डेली फूड चॉइस के कनेक्शन से भी समझने वाले हैं। पैकेट पर FSSAI नंबर का मतलब क्या होता है, फूड लेवल पढ़ना क्यों ज़रूरी है, स्ट्रीट फूड खाते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है हमें, और हम किसी फूड प्रोडक्ट को लेकर कंप्लेंट कर सकते हैं या नहीं, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम इस प्रोग्राम में जानने वाले हैं। बहुत सारी बातें होने वाली है। जी हाँ, और आपको क्या करना है, आपको ना जुड़ जाना है हमारे साथ इस टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए। और आपको अभी मैं सुनाने वाली हूँ बहुत ही प्यार सा गाना, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि यहाँ पर बातों के साथ में प्यारे प्यार से गाने भी आते हैं, तो सुने बहुत ही प्यार सा गाना सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। Feel good, feel light.

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूँ आरजे स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम ट्रेंडिंग तड़का, जहाँ पर हर बात होती है ट्रेंड वाली। और इस हफ्ते फिर से आ गई हूँ मैं लेकर आपके लिए कुछ खास ट्रेंडिंग टॉपिक। जी हाँ, आज का हमारा ट्रेंडिंग टॉपिक है FSSAI। जी हाँ, हम इसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, आज हम फूड सेफ्टी के बारे में बात कर रहे हैं। अभी तक हमने बात की कि FSSAI क्या है और फूड सेफ्टी में इसका क्या रोल होता है, लेकिन अब एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है कि जब हम मार्केट से कोई पैकेज फूड खरीदते हैं तो क्या हम पैकेट को सिर्फ फ्रंट साइड से देख कर ही डिसाइड कर लेते हैं कि हमें यही चाहिए। यूजुअली क्या होता है कि पैकेट देखा, ब्रांड पसंद आया, फ्लेवर देखा, प्राइस देखा और बस शॉपिंग बकेट में वो चला गया। लेकिन दोस्तों, फूड पैकेट के फ्रंट के साथ साथ उसकी बैक साइड भी इंपॉर्टेंट होती है। जी हाँ, क्योंकि वहीं पर ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो हमें प्रोडक्ट को बेटर अंडरस्टैंड करने में हमारी हेल्प करती है। सबसे पहले बात करते हैं कि FSSAI लाइसेंस नंबर की। जी हाँ, पैकेज जो फूड होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, उस पर FSSAI से रिलेटेड लाइसेंसिंग इंफॉर्मेशन दी जाती है। इसका पर्पस ये बताना होता है कि फूड बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंडर है। उसके बाद देखिए इंग्रेडिएंट्स लिस्ट होती है, ये बहुत यूजफुल होती है कि प्रोडक्ट में क्या क्या चीजें यूज हो रही है, ये इंग्रेडिएंट्स लिस्ट का पता चलता है हमें इससे। अगर आप किसी पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट को अवॉइड करना चाहते हैं तो ये लिस्ट आपके लिए स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। फिर आती है डेट इंफॉर्मेशन। जी हाँ, मैन्युफैक्चरिंग और पैकेजिंग डिटेल्स और बेस्ट बिफोर और एक्सपायरी जैसे इंफॉर्मेशन इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। सिर्फ पैकेट देखकर प्रोडक्ट फ्रेश अज्यूम कर लेना ये सही हैबिट नहीं है। एक और इम्पॉर्टेंट सेक्शन होता है, वो है न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन, जिसमें कैलोरीज, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, शुगर, सोडियम जैसे न्यूट्रिएंट्स की इंफॉर्मेशन भी हो सकती है। अगर आप अपनी डाइट को लेकर कॉन्शियस हैं तो ये सेक्शन आपको इन्फॉर्म चॉइस लेने में हेल्प कर सकता है। और हाँ, वेजिटेरियन या फिर नॉन वेजिटेरियन सिंबल भी चेक करना यूजफुल होता है, अगर आपकी फूड प्रेजेंस स्पेसिफिक है तो। अब छोटी सी एक चैलेंज वाली बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब आप सुपरमार्केट जाएं तो किसी एक पैकेज्ड फूड को उठाइए और उसकी बैक साइड को 30 सेकंड प्रॉपरली पढ़िए। हो सकता है कि आपको कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिले जो आपने पहले कभी नोटिस ही ना की हो। दोस्तों, फूड लेवल पढ़ना कोई डिफिकल्ट काम तो नहीं है, बस थोड़ी सी हैबिट को डेवलप करना हमें पड़ेगा, क्योंकि स्मार्ट कंज्यूमर वो नहीं है जो अच्छा लुकिंग पैकेज देखकर उठा लेते हैं, बल्कि स्मार्ट कंज्यूमर वो होते हैं जो लेबल पढ़कर इन्फॉर्म चॉइस करते हैं। तो अगली बार शॉपिंग करने वक्त फ्रंट देखिए, लेकिन डिसीजन लेने से पहले बैक पर, उसके बैक साइड के प्रिंट पर भी एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। मैं हूँ आरजे स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम ट्रेंडिंग तड़का, जहाँ पर हर बात होती है ट्रेंड वाली। जी हाँ, इस हफ्ते फिर से आ गए हैं लेकर आपके लिए कुछ खास ट्रेंडिंग टॉपिक। और आज बात हो रही है हमसे जुड़ी हुई। जी हाँ, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम क्या चीजें यूज करते हैं, क्या प्रोडक्ट यूज करते हैं, नॉट प्रोडक्ट बट क्या क्या चीज़ें हम लेते हैं, उन सभी चीज़ों के ऊपर आज हम बात कर रहे हैं। फूड सेफ्टी के ऊपर बात कर रहे हैं कि क्या हमारे लिए सही है और क्या नहीं है, क्या आप उस पर FSSAI का जो मार्क है वो चेक करते हैं, लाइसेंस नंबर चेक करते हैं या नहीं। अब तक हमने जैसे कि जाना कि FSSAI क्या है और पैकेज्ड फूड खरीदते वक्त हमें लेबल पर क्या क्या चेक करना चाहिए, लेकिन अब बात करते हैं उस फूड की जिसके लिए हम प्रोडक्ट लेबल को चेक नहीं करते, क्योंकि सामने होता है एक गर्मा गर्म प्लेट और उसकी अमेजिंग सी स्मेल। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ स्ट्रीट फूड की, जो हम गोल गप्पे खाते हैं, मोमो खाते हैं, चाट, चौमिन, समोसे, रोल्स। देखो ये नाम ही ऐसे ना, इन्हें सुनते ही मुंह में पानी आ गया है ना। स्ट्रीट फूड हमारी फूड कल्चर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, अफोर्डेबल भी है और टेस्टी भी है, और वैरायटी तो इतनी है कि हर गली में कुछ ना कुछ नया मिल रहा होता है। लेकिन टेस्ट के साथ एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, वो है हाइजीन। जी हाँ, जब भी आप स्ट्रीट फूड खा रहे हो तो सबसे पहले एक बार आप अपने आसपास का एनवायरनमेंट नोटिस ज़रूर कीजिएगा। क्या फूड प्रॉपरली कवर्ड है, क्या वेंडर इंग्रेडिएंट्स को क्लीन और हाइजीनिक कंडीशन में रख रहा है या नहीं, क्या जो सर्व करने के लिए चीज़ें यूज़ हो रही है वो रीजनली क्लीन है या नहीं है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो है पानी। जी हाँ, चाट हो गया, गोलगप्पे हो गए या फिर ड्रिंक में जो वाटर यूज होता है उसकी क्लीनिनेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपको पानी की क्वालिटी पर डाउट लग रहा है तो बेटर है कि आप उस फूड को अवॉइड करें। फिर आती है रॉ और कुक्ड फूड का हैंडलिंग। जी हाँ, अगर वेजिटेबल्स, सॉसेस या फिर कुक्ड फूड ओपन में बहुत देर तक रखा गया है तो कॉशन जरूरी है। और दोस्तों, एक चीज़ जो हम अक्सर देखते हैं वो है सेम ऑयल का बार बार यूज़ होना। जी हाँ, अगर ऑयल का कलर, स्मेल अनयूजुअल लग रहा है या फिर ऑयल बहुत ज़्यादा डार्क दिख रहा है तो वहाँ फूड चूज़ करते वक्त थोड़ा सा केयरफुल रहना बेटर रहेगा आपके लिए। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप स्ट्रीट फूड खाना ही बंद कर दें, बिल्कुल नहीं। पॉइंट सिर्फ इतना है कि स्ट्रीट फूड को आप इंजॉय कीजिए लेकिन थोड़ी सी अवेयरनेस के साथ। एक सिंपल रूल याद रखिए, जहाँ पर क्लीनिनेस दिखे वहाँ कॉन्फिडेंस से खाइए, जहाँ हाइजीन डाउटफुल लगे वहाँ थोड़ा सा रुक जाइए, एक बार देख लीजिए उसके बाद खाइएगा। और अगर आप किसी फूड वेंडर को चूज़ करते हैं तो ओवरऑल क्लीनिनेस को देखिए, वेंडर का हाइजीन, फूड की स्टोरेज और उस वो जो चीज़ें यूज़ कर रहा है उन सबको और उसके सराउंडिंग का एरिया सारा आप देखिए, उसके बाद जा करके वहाँ पर कुछ खाइए। क्योंकि फूड का टेस्ट तो कुछ मिनट के लिए होता है लेकिन फूड सेफ्टी को इग्नोर करने का इम्पैक्ट ज़्यादा सीरियस हो सकता है, शायद हमारी जो हेल्थ है उस पर भी बात आ जाए। तो इसलिए नेक्स्ट टाइम जब आपका मन करे ना कि प्लेट में टेस्टी सा स्ट्रीट फूड हो तो टेस्ट के साथ हाइजीन का तड़का होना भी बहुत जरूरी होता है, उसे भी चेक कर लीजिएगा। इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड फील

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूँ आरजे स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम ट्रेंडिंग तड़का। और आज हम बात कर रहे हैं ट्रेंडिंग तड़का में एक ऐसे टॉपिक की जो हमारी प्लेट से लेकर सोशल मीडिया की फीड तक पहुंच चुका है और वो है फूड ट्रेंड्स। जी हाँ, आजकल इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब खोलते ही हमें क्या दिखता है, तो वहाँ पर दिखता है हमें फूड के नए नए ट्रेंड्स जो रोज देखने को मिलते हैं। कभी कोई एक्स्ट्रा चीजी फूड वायरल हो रहा है, तो कभी कोई कलरफुल ड्रिंक्स, कभी गेंस साइज डिशेस होती हैं, तो कभी कोई एक्सट्रीमली स्पाइसी फूड चैलेंज करता है। और हम भी क्या करते हैं, वीडियो देखी, इंटरेस्टिंग लगी और सोचा यार ये तो ट्राई करना बनता है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, जो फूड सोशल मीडिया पर वायरल है क्या वो ऑटोमेटिकली सेफ भी है या नहीं? इसका आंसर है ये ज़रूरी नहीं है। सोशल मीडिया पर किसी फूड का वायरल होना उसकी सेफ्टी या फिर क्वालिटी का सर्टिफिकेट नहीं होता है। हमें ये समझना ज़रूरी है कि अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन और फूड सेफ्टी दोनों अलग चीज़ें हैं। फॉर एग्जाम्पल, कलरफुल फूड को ही ले लीजिए, ब्राइट कलर्स देखकर फूड अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन फूड में यूज होने वाला जो कलर है और इंग्रेडिएंट्स है वो परमिटेड है या नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। इसी तरह नेचुरल, हेल्दी, ऑर्गेनिक, शुगर फ्री या फिर हाई प्रोटीन जैसे वर्ड दिखाकर भी प्रोडक्ट को ऑटोमेटिकली हेल्दी अज्यूम नहीं करना चाहिए। लेबल को समझना उससे भी ज्यादा जरूरी है। आजकल फूड चैलेंजेस भी काफी पॉपुलर है कि एक्स्ट्रा स्पाइसी नूडल्स, ह्यूज पोर्शंस या फिर अनयूजुअल कॉम्बिनेशन, चैलेंजेस देखने में फन लग सकता है, लेकिन हर ट्रेंड हर पर्सन के लिए सुटेबल हो ये जरूरी नहीं है। और एक और ट्रेंड है कि वायरल फूड हैक्स। जी हाँ, सोशल मीडिया पर कुछ लोग घर पर नए नए फूड एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो और शायद वो इंस्टेंटली वायरल भी हो जाए, लेकिन हर वायरल हैक साइंटिफिकली टेस्टेड या फिर फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हो ये अज्यूम नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, इसका सिंपल सा सॉल्यूशन क्या है कि आप ट्रेंड को फॉलो करिए लेकिन ब्लाइंडली मत करिए। कोई फूड प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो लेबल चेक कीजिए, रेस्टोरेंट या फिर फूड आउटलेट पर हैं तो हाइजीन देखिए, और अगर कोई फूड ट्रेंड अननेसेसरली रिस्की लग रहा है तो सिर्फ व्यूज या फिर लाइक्स के लिए उसे ट्राई करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया पर एक फूड ट्रेंड कुछ दिन का होता है लेकिन फूड सेफ्टी की इंपॉर्टेंस हमेशा के लिए। तो इसलिए अगली बार जब भी आपकी फीड में कोई टेम्पटिंग सी फूड वीडियो आ जाए तो एक सेकेंड रुककर सोचिएगा कि लुक्स टेस्टी बट इट इज़ सेफ और नॉट, तो सोचिएगा जरूर। इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड फील।

वेलकम बैक साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूँ आरजी स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम ट्रेंडिंग तड़का। और आज ट्रेंडिंग तड़का में हम बात कर रहे हैं हमारी फूड सेफ्टी की। जी हाँ, हम आज FSSAI के ऊपर बात कर रहे हैं, उसकी जो खास जानकारी है आपकी जो फूड से जुड़ी हुई, आपके प्रोडक्ट से जुड़ी हुई, उसके बारे में आज हम बता रहे हैं। और अब तक हमने पैकेज्ड फूड के लेबल से लेकर स्ट्रीट फूड और वायरल फूड ट्रेंड्स तक काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें कर ली है, बहुत कुछ जाना हमने इसके बारे में। लेकिन फूड सेफ्टी की बात हो रही है और मिलावट का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? मिलावट, ये वर्ड सुनते ही हमारे माइंड में सबसे पहले क्या आता है कि दूध में कुछ मिलाया गया है, मसालों का कलर अनयूजुअल है, मिठाई की क्वालिटी थोड़ी डाउटफुल लग रही है। और फिर हम सोचते हैं कि आखिर असली और मिलावटी फूड को पहचाने कैसे। सबसे पहले समझते हैं कि फूड एडल्ट्रेशन होती क्या है। सिंपल वर्ड्स में, जब किसी फूड प्रोडक्ट की क्वालिटी या फिर कंपोजिशन को गलत तरीके से बदला जाता है, जैसे किसी अनवांटेड या फिर अनसेफ सब्सटेंस को ऐड करना या किसी इंग्रेडिएंट को चीपर सब्सटीट्यूट से रिप्लेस करना या फिर उसे यूज ब्रॉडली, मिलावट के कॉन्टेक्स्ट में समझा जा सकता है। अब प्रॉब्लम यह है कि हर मिलावट आंखों से आइडेंटिफाई करना पॉसिबल नहीं होता। सिर्फ कलर या फिर स्मेल या फिर टेस्ट को देखकर ये कंफर्म नहीं किया जा सकता कि फूड सेफ है या नहीं। इसलिए सोशल मीडिया पर चलने वाले रैंडम होम टेस्ट को भी फाइनल प्रूफ नहीं समझना चाहिए। इंटरनेट पर आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो आपको बताएंगी कि दूध में ये डालो, मसाले में पानी डालो या फिर कुछ डालो, मिठाई को कुछ इस तरीके से चेक करो और पनीर के ऊपर कोई केमिकल डालो तो आपको पता चल जाएगा कि ये सही है या नहीं है, रियल है या फिर फेक है। लेकिन हर वायरल टेस्ट साइंटिफिकली रिलायबल हो, ये जरूरी नहीं है। जी हाँ, तो कंज्यूमर के तौर पर हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो जो ट्रस्टेड सोर्स है उसी से फूड प्रोडक्ट्स परचेज करिए। पैकेज प्रोडक्ट में लेबल, इंग्रेडिएंट्स, डेट और लाइसेंसिंग इन्फॉर्मेशन चेक करें। फ्रेश फूड खरीदते वक्त प्रोडक्ट की ओवरऑल अपीयरेंस और हाइजीन पर ध्यान दें। और फूड का कलर, स्मेल और टेक्सचर क्लियरली अनयूजुअल लगे तो उसे कंज्यूम करने से पहले कॉशन जरूर रखें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपको किसी फूड प्रोडक्ट के अनसेफ या फिर सस्पिशियस होने का स्ट्रॉन्गली ऐसा कोई डाउट आए ना आपके मन में, तो उसे इग्नोर करके कंज्यूम करना जरूरी नहीं है। कंसर्न को रिपोर्ट करना भी एक रिस्पॉन्सिबल स्टेप हो सकता है। यहाँ पर FSSAI का रोल इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बनाने और फूड बिजनेस के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को सपोर्ट करने में FSSAI की इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन दोस्तों, कंज्यूमर अवेयरनेस भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। हमें हर वायरल वीडियो पर बिलीव नहीं करना चाहिए, बल्कि उसकी बजाय हम वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन पर ट्रस्ट ज्यादा करें तो वो हमारे लिए ज्यादा सही रहेगा। तो याद रखिएगा कि सस्ता या अट्रैक्टिव फूड हमेशा बेटर चॉइस नहीं होता है, सेफ और क्वालिटी फूड चूज करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हमारे लिए बहुत सही रहेगा और हमारी फैमिली के लिए भी। तो अगर आपको किसी फूड की क्वालिटी पर डाउट है तो एक सिंपल सा रूल फॉलो कीजिए कि डाउट हो तो चेक करिए, उसे इग्नोर मत कीजिए। वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूँ आरजे सिंह आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम ट्रेंडिंग तड़का। और आज का हमारा टॉपिक है ट्रेंडिंग तड़का में, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं FSSAI के बारे में और फूड सेफ्टी के बारे में। अब तक हमने फूड लेबल्स, स्ट्रीट फूड, वायरल फूड ट्रेंड्स और मिलावट जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर बात कर ली है, लेकिन अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल कि अगर हमें किसी फूड प्रोडक्ट की क्वालिटी या फिर सेफ्टी को लेकर जेन्युइनली कंसर्न हो तो हम क्या कर सकते हैं? क्या आप बस अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को बता देंगे वो आपके लिए इनफ होगा, या फिर इसकी प्रॉपर कंप्लेंट भी की जा सकती है? तो इसका जवाब ये है कि दोस्तों, एज अ कंज्यूमर अवेयर होना इंपॉर्टेंट है, लेकिन अपनी कंसर्न को राइट चैनल तक पहुंचाना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, फूड सेफ्टी से रिलेटेड कॉर्नर्स के लिए FSSAI फूड सेफ्टी कनेक्ट प्लेटफॉर्म एक ऑप्शन है। इसके थ्रू कंज्यूमर्स फूड सेफ्टी से रिलेटेड कंप्लेंट्स या फिर कंसर्न अथॉरिटी तक रिपोर्ट कर सकता है। मान लीजिए आपको कोई पैकेज्ड फूड प्रोडक्ट मिला जिसका लेबल सस्पिशियस लग रहा है और प्रोडक्ट डैमेज कंडीशन में है, या आपको फूड क्वालिटी या फिर हाइजीन को लेकर सीरियस कंसर्न है। ऐसे केस में कंप्लेंट करते वक्त जितनी क्लियर इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी उतना बेटर होगा। और फॉर एग्जांपल, प्रोडक्ट का नेम, ब्रांड, बैच या फिर लॉट नंबर, डेट इन्फॉर्मेशन, परचेज डिटेल और अगर पॉसिबल हो तो बिल या फिर प्रोडक्ट के फोटोग्राफ्स जैसे डिटेल्स यूजफुल हो सकती है। लेकिन यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कंप्लेंट रिस्पॉन्सिबली करें। जी हाँ, सिर्फ सोशल मीडिया पर किसी ब्रांड के अगेंस्ट पोस्ट कर देना बिना वेरिफिकेशन के एलिगेशन लगा देना सॉल्यूशन नहीं है। अगर जेन्युइन कंसर्न है तो प्रॉपर प्लेटफॉर्म पर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन के साथ रिपोर्ट करना बेटर अप्रोच है। और फूड आउटलेट्स की बात करें तो हाइजीन इशू देखने पर आप पहले अपनी सेफ्टी को प्रायोरिटी दें। अगर कंसर्न सीरियस है तो उसे एप्रोप्रिएट फूड सेफ्टी अथॉरिटी तक रिपोर्ट किया जा सकता है। दोस्तों, कंज्यूमर का रोल सिर्फ प्रोडक्ट खरीदने तक ही लिमिटेड नहीं होता है, बल्कि कंज्यूमर अवेयरनेस फूड सेफ्टी सिस्टम का इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक और इंटरेस्टिंग बात है कि हम अक्सर सोचते हैं कि कंप्लेंट करने से क्या होगा, लेकिन जब कंज्यूमर जेन्युइनली प्रोडक्ट को रिपोर्ट करते हैं तो अथॉरिटीज को पोटेंशियल फूड सेफ्टी इश्यूज आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिल सकती है। तो अगर आपको कभी ऐसा फूड सेफ्टी से रिलेटेड कोई जेन्युइन प्रॉब्लम फेस कर रहे हो आप, और अगर आपको सच में प्रॉब्लम लग रही है तो पैनिक मत कीजिए और ना ही बिना वेरिफिकेशन के उसे सोशल मीडिया पर स्प्रेड कीजिए। इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कीजिए, राइट प्लेटफॉर्म को चूज कीजिए और रिस्पॉन्सिबल वे में कंप्लेंट कीजिए, क्योंकि एक अवेयर कंज्यूमर सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की सेफ्टी के लिए भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसी थॉट के साथ हम बढ़ते हैं आज के ट्रेंडिंग तड़का के लास्ट सेगमेंट पे। जी हाँ, लास्ट सेगमेंट की तरफ हम चल रहे हैं, जिसमें मैं आपको फूड सेफ्टी चेकलिस्ट के बारे में बताऊंगी, पर उससे पहले लूंगी मैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। आप जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूं आपकी होस्ट आपकी दोस्त आरजे स्नेहा और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम ट्रेंडिंग तड़का। और आज हम ट्रेंडिंग तड़का में बात कर रहे हैं FSSAI और फूड सेफ्टी के बारे में। और अब हम आ गए हैं हमारे आज के आखिरी फाइनल सेगमेंट में। जी हाँ, आज का पूरा एपिसोड हमने डेडिकेट किया FSSAI के ऊपर और फूड सेफ्टी के बारे में जाना। हमने जाना कि FSSAI क्या है, पैकेज्ड फूड के लेबल पढ़ना क्यों ज़रूरी है, स्ट्रीट फूड खाते वक्त हाइजीन कैसे चेक करनी चाहिए और वायरल फूड ट्रेंड्स को ब्लाइंडली फॉलो क्यों नहीं करना चाहिए, मिलावट को लेकर क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए और अगर कोई जेन्युइन फूड सेफ्टी कंसर्न हो तो उसे रिपोर्ट करना भी ज़रूरी है, उसे भी हम कर सकते हैं। तो अब इन सब बातों में एक सिंपल सी फूड सेफ्टी चेकलिस्ट इसमें कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए, आप इसे याद रखिएगा कि 5 सेकेंड फूड सेफ्टी चेक। सबसे पहला लेबल चेक कीजिए। जी हाँ, जब भी पैकेज्ड फूड खरीदने जाएं एक बार उसका लेबल ज़रूर पढ़िए। प्रोडक्ट का नाम, इंग्रेडिएंट्स और दूसरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को ज़रूर देखिएगा। सिर्फ अट्रैक्टिव पैकेजिंग देखकर डिसीजन को मत लीजिएगा। दूसरा है डेट चेक। जी हाँ, प्रोडक्ट की डेट इन्फॉर्मेशन को इग्नोर ना करें। पैकेट खोलने से पहले ही एक क्विक चेक कर लेना एक इम्पॉर्टेंट और यूजफुल हैबिट है। तीसरा है सील पैकेट और पैकेजिंग चेक। जी हाँ, अगर पैकेट डैमेज है या फिर लीकिंग है या फिर टैम्पर्ड या फिर अनयूजुअल कंडीशन में लगे तो उसे परचेज या फिर कंज्यूम करने से पहले कॉशन जरूर रखें। चौथा है हाइजीन चेक। जी हाँ, रेस्टोरेंट हो या फिर स्ट्रीट फूड स्टॉल क्यों ना हो, एक बार सराउंडिंग अपनी क्लीनिनेस, फूड हैंडलिंग और वहाँ जो यूज हो रही हैं चीज़ें और सभी चीज़ों को ऑब्जर्व करना एक अच्छी हैबिट हो सकती है। और पांचवा है थिंक बिफोर यू ईट। जी हाँ, अगर फूड का स्मेल, उसकी अपीयरेंस या फिर कंडीशन क्लियरली अनयूजुअल लग रही है तो सिर्फ वेस्ट ना करने के थॉट से उसे कंज्यूम करना ज़रूरी नहीं है, बल्कि अपनी सेफ्टी को प्रायोरिटी रखिए। दोस्तों, फूड सेफ्टी का मतलब ये नहीं है कि हम फूड को लेकर स्केयर्ड हो जाए, या इसका मतलब है कि अवेयर और रिस्पॉन्सिबल चॉइस को हम अपनाएं। और FSSAI का रोल अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम कंज्यूमर्स का अवेयरनेस भी इक्वली वैल्यूएबल है। तो आज के एपिसोड का एक सिंपल सी लाइन याद रखिएगा कि फूड टेस्टी हो ये ज़रूरी है, लेकिन फूड सेफ हो ये उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। अगली बार जब भी आप कुछ खरीदें या फिर खाएं तो बस कुछ सेकंड रुककर सोचिएगा, उसका लेबल चेक कीजिएगा, डेट चेक कीजिएगा और हाइजीन देखिएगा। इसी अवेयरनेस के साथ आज के ट्रेंडिंग तड़का को यहीं पर एक फुल स्टॉप देते हैं। मैं हूँ आपकी होस्ट आपकी दोस्त आरजे स्नेहा और मिलूंगी आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। जी हाँ, तब तक के लिए मैं ले रही हूँ आपसे इजाज़त। मेरा वक्त हो गया है आप सभी से इजाजत लेने का। मिलूंगी अगले एपिसोड में किसी और नए ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ, किसी और नए ट्रेंड के साथ और थोड़े से और तड़के के साथ। तब तक के लिए हेल्दी रहिए, अवेयर रहिए और खाइए जरूर, पर सेफ्टी के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। कीप लिसनिंग, कीप स्माइलिंग एंड स्टे अवेयर। और हम क्या कहते हैं, फील गुड फील लाइफ।

0: मात्र इन्हें ना इमारत समझो, संस्कृति की ये धरोहर है। ये इतिहास की गौरव गाथा, कला शिल्प की छवि मनोहर है। अतीत के उम्दा तजुर्बों का भरा हुआ सरोवर है ये हमारे देश की धरोहर, इन्हें सहेजना हमारी जरूरत है।
1: तो आइए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के संग लेक वादा,
0: अपने देश की धरोहर को बचाएंगे और अपने देश को सम्मान दिलाएंगे।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम उल्लेख आपके साथ और प्रोग्राम है सुरक्षा संवाद, जिसे हम आपके साथ लेकर आते हैं खासतौर पर से फरीदाबाद पुलिस के साथ। एक ऐसा प्रोग्राम जहां पर कभी महिला सुरक्षा की बात होती है तो कभी साइबर फ्रॉड की तो कभी ट्रैफिक की। लेकिन आज इसी कड़ी में हम जो बात करने वाले हैं वो बात हम सभी से जुड़ी हुई है, हर किसी के घर से जुड़ी हुई है, हर किसी के लाइफस्टाइल से भी जुड़ी हुई है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं वेरिफिकेशन के बारे में, हम बात करने वाले हैं ड्रग्स के बारे में, नशा मुक्ति के बारे में, और साथ ही थोड़ी सी बात करेंगे सड़क पर चलते हुए लोगों के बारे में जो गाड़ियां चला रहे हैं पर पेशेंस खो चुके हैं, यानी कुछ हद तक ट्रैफिक के बारे में। तो बहुत सारी बातें आज हम करने वाले हैं, किसी एक टॉपिक पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये सारे मुद्दे, ये सारे टॉपिक हम सबसे और आप सबसे जुड़े हुए हैं। आज इसी कड़ी में हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं एसीपी अर्जुन जी, जो कि भटकल के एसीपी हैं और फरीदाबाद पुलिस से जुड़े रहे हैं और काफी समय से पुलिस सेवाओं से जुड़े हुए हैं। तो अर्जुन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मानव रचना में।
1: धन्यवाद।
0: सबसे पहले सर आपसे जानना चाहती हूँ, हम वेरिफिकेशन के प्रोसेस के बारे में आज हम बात करेंगे, नशा मुक्ति के भी बारे में बात करेंगे और ट्रैफिक के भी बारे में बात करेंगे। तीनों चीजें एक आम इंसान से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि हम सड़क पर जाते हैं लेकिन हम देखते हैं कि ट्रैफिक में लोग अपना आपा खो देते हैं, लड़ने लग जाते हैं अगर जरा सी गाड़ी कहीं टच हो जाती है, या अगर कोई आपसे तेज चला लेता है तो रोड रेज हो जाती है, या फिर अगर कहीं पर थोड़ा सा भी कट मिला तो रॉन्ग साइड भी गाड़ी निकाल लेते हैं। तो ये एक कंट्रोल लोगों का जो है खुद पर से जाता जा रहा है। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है नशा, ड्रग्स। बच्चे खास तौर पर से इसमें बहुत छोटी उम्र से इन्वॉल्व होने लगते हैं, लेकिन पुलिस हमसे ज्यादा जानती है कि कहाँ कहाँ क्या क्या होता है। और तीसरी जो सबसे जरूरी चीज है जो अपराध को रोकने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, वो है वेरिफिकेशन। खासतौर पर से वेरिफिकेशन, अगर आप अपने घर में कोई डोमेस्टिक हेल्प लगा रहे हैं या फिर आप किसी व्यक्ति को अपना मकान या दुकान किराए पर दे रहे हैं। तो सर सबसे पहले वेरिफिकेशन से शुरू करते हैं, वेरिफिकेशन कितनी जरूरी है ये मैं आपसे जानना चाहूंगी, विस्तार से समझाओ, फिर उसके प्रोसेस के बारे में आपसे सवाल पूछूंगी।
1: वेरिफिकेशन आम आदमी की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है, टेनेंट के लिए भी जरूरी है और लैंडलॉर्ड के भी जरूरी है। आजकल हर घर में कोई ना कोई टेनेंट है, हर घर में कोई ना कोई एक या दो नौकर है, और उनकी वेरिफिकेशन होती है तो आइडेंटिफिकेशन हो जाती है, आइडेंटिफाई होते हैं। अगर उनसे कोई गलती होती है या वो गलती करते हैं जानबूझ के, छुपने की कोशिश करते हैं, अपराध की नीयत से कोई काम करते हैं, बहुत लोग नाम बदल के यहाँ रहते हो, अगर उनकी वेरिफिकेशन समय पे हो जाए तो उनको आइडेंटिफाई करना, उनको ट्रेस करना बड़ा आसान हो जाता है। अब पश्चिम बंगाल का आदमी कोई यहाँ के रह रहा है, काम कर रहा है फरीदाबाद, गुड़गांव, NCR में, महानगर में अगर कोई काम कर रहा है तो उनको, क्योंकि मानव मात्र की गिनती में बड़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि भारत में कोई कहीं जा सकता है और एक यूनिक आईडी ना होने की वजह से हम उसको हर जगह आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो ये बहुत जरूरी है कि हर एक की वेरिफिकेशन हो। वेरिफिकेशन के लिए सबसे बढ़िया बात यह है कि वेरिफिकेशन अगर करवाते हैं तो लैंडलॉर्ड है उसके लिए एक बहुत सुरक्षा का, मान लिया उनके साथ नहीं करे, अड़ोस पड़ोस में कहीं रात में दिन में कहीं भी अगर कोई वो क्राइम करता है तो आइडेंटिफाई हो जाएगा और ट्रेस हो जाएगा।
0: जी,
1: इसलिए बहुत जरूरी है। सुरक्षा की दृष्टि से हम देखते हैं तो राष्ट्रीय सुरक्षा कहिए, आंतरिक सुरक्षा कहिए, इसमें वेरिफिकेशन प्रति व्यक्ति बहुत जरूरी है।
0: जी अर्जुन जी, बहुत सारी जगहों पर हमने देखा है जो स्लम एरियाज होते हैं या जो छोटी कॉलोनीज हैं, फरीदाबाद में काफी ऐसी कॉलोनीज हैं, और यहाँ पर किराएदार रखना बहुत कॉमन है, या फिर जो गांव बने हुए हैं अर्बन विलेजेस जिनको आप कह लेते हैं, उनमें लोगों ने एक एक घर में 10-10 कमरे बना रखे हैं, उन 10-10 कमरों में बहुत सारे लोग जो हैं वो डोमेस्टिक हेल्प के तौर पर जो काम करते हैं वो रहते हैं, बहुत सारे लेबर वहां पर रहते हैं, इनकी वेरिफिकेशन कराना उनके लिए मुश्किल काम होता है। सो क्या कोई ऐसा प्रोसेस या तरीका है, एक तो मैं पहले आपसे पूछना चाहूंगी प्रॉपर वेरिफिकेशन का क्या प्रोसेस है, और बाकी इस तरीके से जहां पर ज्यादा टेनेंट्स रह रहे हैं जो 2-2, 3-3 हज़ार रुपए किराया दे रहे हैं, वहां पर एक व्यक्ति को लगता है कि इतना तो दिन उसने रहना भी नहीं जितना मैं वेरिफिकेशन
1: के लिए। मैम बड़ी सी बात यह है कि हम समय समय पे अभियान चलाते हैं, जागरूकता अभियान चलाते हैं लोगों को, आपके FM के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, हम जगह जगह पे अभियान चला के के लोगों को जागरूक करते हैं कि आप अपनी वेरिफिकेशन करवाएं, टेनेंट वेरिफिकेशन करवाएं, सर्वेंट वेरिफिकेशन करवाएं। उन स्लम एरियाज के लिए तो हमने यही ध्यान रखा हुआ है कि जब जब मौका मिलता है, जब जब पुलिस राइडर्स जाती है, पीसीआर जाती है, ईआरवी जाती है, फिजिकली जाके लोगों को बताते हैं। और कभी कभी हम एक कॉम्बिंग अभियान चलाते हैं। कॉम्बिंग अभियान में हम एक साइड से ले लेते हैं एक बस्ती को, उसको पूर्व कॉम्ब की तरह छानते हैं, कौन वेरिफिकेशन है दिखाइए, वेरिफिकेशन नहीं होती उनको उस दिन पकड़ के वेरिफिकेशन करवाते हैं, वेरीफाई करते हैं उनको। एक तो ये है। दूसरा जो आपने प्रावधान पूछा, प्रोसीजर पूछा, उसके लिए हमें दो सिस्टम रखे हुए हैं, एक तो है मैनुअल और एक है ऑनलाइन। ऑनलाइन के लिए ये है कि आपके पास किसी भी व्यक्ति ने जो वेरिफिकेशन करवानी है, हमारा हर समय पोर्टल है, उस पोर्टल पे जाएंगे, उस पे वेरिफिकेशन लिख के आएगी, टेनेंट वेरिफिकेशन, सर्वेंट वेरिफिकेशन, सर्विस वेरिफिकेशन और पांच चार वेरिफिकेशन और है उनमें। तो जैसे मोस्टली हम जब देखते हैं तो टेनेंट वेरिफिकेशन और सर्वेंट वेरिफिकेशन है, उनके लिए जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो उन पे अपलोड कर देंगे, उनके अपलोड करने के बाद वो पोर्टल के माध्यम से हमारे पुलिस स्टेशन में पहुंच जाएंगे, पुलिस स्टेशन के लोग उसको देख के उस जगह पे वेरीफाई करके, उस आदमी को वेरीफाई करके, दो लोगों को वेरीफाई करवा के वापस अपलोड कर देंगे और वो वहाँ के वापस उसी पोर्टल पे आके जैसे आप क्लिक होगा आपके पास इन्फॉर्मेशन आएगी और आप उस सर्टिफिकेट निकाल लेंगे। एक प्रोसीजर तो ये है। दूसरा ये है कि अगर कहीं कुछ दिक्कत आती है, नहीं करवा पाता कोई आदमी, तो वो एक हमारा चैम्बर बना हुआ, उस चैम्बर में वो जाए और वहाँ 9 to 5 चलता है, वो सीपी ऑफिस में है हमारे यहाँ
0: जी,
1: और वहाँ पे रसीद काटती है, वो आपको डॉक्यूमेंट लेके रसीद काट के दे देंगे, वो फिजिकली कंसर्न पुलिस स्टेशन में चला जाएगा, वो लोग उसी तरह वेरिफिकेशन करवा के वापस वहाँ जमा करवा देंगे और उनको वो सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ये प्रोसीजर है।
0: यानी पुलिस कमिश्नर ऑफिस में आकर वेरिफिकेशन के लिए जो है आपको डॉक्यूमेंट्स देने होंगे
1: जी।
0: इसमें सर मैं आपसे जानना चाहूंगी डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं जो जरूरी होते हैं। एक आधार कार्ड जो है वो तो अब सभी के पास होता है।
1: हम दो डॉक्यूमेंट, दो आईडी रिक्वायर रखते हैं, एक आधार प्लस एक आईडी कोई और जो फोटो वाली आईडी रहे, जैसे डीएल है, कोई पासपोर्ट है, कोई और है, जो भी फोटो वाली दो आईडी को देखते हैं ताकि उनको मैच करवाने में, उनको वेरीफाई करने में दिक्कत ना हो, एक पे भरोसा ना रखें
0: जी, जी
1: दो आईडी में,
0: यानी जिन पे आपकी फोटो लगी हुई हो सिर्फ
1: दो चीज़, दो आईडी
0: मांगी जाती हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं कार्यक्रम सुरक्षा संवाद में एसीबी बटकर श्री अर्जुन जी से, बहुत सी बातें और भी जारी रहेंगी। अभी हमने जाना वेरिफिकेशन के बारे में, आगे भी हम बहुत से ऐसे मुद्दों पर बात करने वाले हैं जो आम इंसान से जुड़े होते हैं। खास तौर पर से हम बात करेंगे नशा मुक्ति अभियान जो फरीदाबाद पुलिस चला रही है और साथ ही ट्रैफिक को लेकर क्या कर रही है ट्रैफिक पुलिस। लेकिन अभी वक्त है छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। मैं हूं दीक्षा, आपके साथ सुन रहे हैं प्रोग्राम सुरक्षा।

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम में दीक्षा आपके साथ कार्यक्रम सुरक्षा संवाद जिसे आपके बीच लेकर आता है फरीदाबाद पुलिस। और आज इसी कड़ी में हम बात कर रहे हैं नशा मुक्ति अभियान वेरिफिकेशन और फरीदाबाद के ट्रैफिक के बारे में। हमारे साथ हमारे आज के मेहमान स्टूडियो में मौजूद है ACP भटकल श्री अर्जुन।
1: मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी फरीदाबाद में क्या वाकई लोग वेरिफिकेशन कराते हैं बहुत ज्यादा या कम ही है?
2: नहीं, बहुत लोग ऐसे हैं जो वेरिफिकेशन करवाते हैं खुद से, फिर अभियान चलाते हैं, फिर हम रेडियो के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से और खुद जाके लोगों को जागरूक करते हैं। तो बहुत लोग करवाते हैं, विशेष अभियान में बहुत ज्यादा वेरिफिकेशन होती है, बहुत ज्यादा। एक डाटा बन जाता है पुलिस के पास, कोई गड़बड़ करता है, कोई क्राइम करके भागता है, या यहाँ दिन में कोई क्राइम कर रहा है, रात में क्राइम कर रहा है, कहीं रात में काम कर रहा है, कहीं दिन में काम, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए सेफ्टी की दृष्टि से वो ठीक ठाक एनालाइज कर लेते हैं।
1: दिल्ली NCR में बहुत प्रचलन है कि यहाँ पर डोमेस्टिक हेल्प जो है वो फुल टाइम होती है काफी ज्यादा, और मेट्रो सिटीज में कल्चर आ गया है सपोर्ट के लिए क्योंकि हस्बैंड वाइफ वर्किंग है। ऐसे में सर एहतियात के तौर पर आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि आप डोमेस्टिक हेल्प रख रहे हैं सुबह से रात तक या फुल टाइम है आपके पास 24 घंटे? अब कई बार ना लोग विश्वास में आ जाते हैं कि ये हमारी डोमेस्टिक हेल्प थी, उसकी बेटी है या बेटा है, वो हमारे घर में रह रहा है, हम उसे 10 साल से जानते हैं, तो इतना वेरिफिकेशन नहीं कराएंगे, शायद उसे बुरा ना लग जाए।
2: लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है, अगर कोई विश्वास पात्र आपके पास सर्विस दे रहा है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, बट वो डॉक्यूमेंटेशन पूरा करवा ले अपना, देर सवेर कहीं ना कहीं जिस दिन दिक्कत आती है उस दिन वो विश्वास रखा रह जाता है और कागज आपके पास होता नहीं है। तो ये हमारी राय ये है, हमारी प्रार्थना भी है आम जन से कि वो मैक्सिमम अपनी वेरिफिकेशन करवाएं टेनेंट की और सर्वेंट की।
1: आजकल सर काफी ट्रेंड चल गया है कि लोगों ने अपने जो घर हैं वो टूरिस्ट प्लेसेस पे खास तौर पर से छोटे छोटे समय के लिए रेंट पे देना शुरू कर दिया है। अगर हम बात करें कुछ ऐसे शहरों की जहाँ पर टूरिस्ट अब ज्यादा जाने लग गया है, पहाड़ी एरिया हो गए या लोग वैसे ही घूमने के लिए चले जाते हैं कि वीकेंड आ रहा है, पर वो ऑफिशियली होम स्टे नहीं होते हैं या फिर ऐसा कहें कि होटल्स नहीं होते हैं, छोटे छोटे से घर हैं और घर में एक कमरा दे दिया कि यंगस्टर्स आ गए, उनको कितना ध्यान रखना चाहिए?
2: उनको स्पेशली गाइडलाइन जारी की गई है कि जिसको भी आप किराए पर रखेंगे, वो चाहे परमानेंट टेंट रखें, 2 दिन के लिए रखें, होम स्टे में रखें, होटल्स में रखें, होयो में रखें, जैसी जिसकी सुविधा बनती है, ये सेकेंडरी मैटर है कि वो रजिस्टर्ड है कि नहीं, बट जिस आदमी को आप रख रहे हैं तो कम से कम उसका रजिस्ट्रेशन जरूर चेक कर लें, उसका रजिस्ट्रेशन जरूर कर लें कि आपके पास प्रॉपर आईडी फोटोस्टेट की हुई हो, आपने आईडी मैच करवा रखी हो कि जो आईडी दे रहा है, क्योंकि आधार पे, पैन पे, इन पे कई बार फोटो ऐसी होती है वो मिसमैच ही लगती है, तो अच्छे से वेरिफिकेशन करके अपने पास अपना रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। और रजिस्टर हम हर महीने लगभग चेक करते हैं कि आपके पास कितने लोग आए हैं किराए पे, ऐसी सबकी लिस्ट होती है, तो सबको चेक किया जाता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, यानी अगर आप अपने घर को किसी भी फॉर्म में किराए पर दे रहे हैं, चाहे आप 10 दिन के लिए दे रहे हैं, चाहे आप होटल बना रहे हैं, चाहे आप होम स्टे कर रहे हैं, चाहे आप वैसे ही किराए पर दे रहे हैं, आपको जरूर वेरिफिकेशन कराना चाहिए। मुझे बहुत सारे लोग सर एक शहर में रहते हैं और दूसरे शहर में घर किराए पे होता है, अब यहाँ पे क्या होता है कि आपने घर किराए पे दे दिया, आप 2-3 साल वहां जाते ही हैं और वहां पर क्या गतिविधियां हो रही है कुछ नहीं पता होता। अब आजकल समय ऐसा है कि आसपास वाले भी ज्यादा मेलजोल नहीं रहते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए, कितने कितने समय में क्या एहतियात बरतना?
2: ऐसी परिस्थिति में 89 डेज का प्रावधान है कि 90 दिन किसी टेनेंट को ना होने दे, किराएदार जहाँ बैठे हैं आपके, आप किसी शहर में रह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, बट 90 दिन से पहले एक बार उनको चेक कर लें कि जिसको आपने किराए पे दिए क्या वही वाकई रह रहा है, जिसकी वेरिफिकेशन आपने करवाई वही रह रहा है, ऐसा तो नहीं है कि वेरिफिकेशन करवाने के बाद आप जा नहीं रहे 6 महीने, 6 महीने बीच में कोई और लोग घुस गए उसमें, ताकि वो वेरीफाइड भी ना हो और आपके साथ भी कोई गड़बड़ हो जाए तो पता चले आपको। तो इसलिए हर 3 महीने में 89 डेज में हर जो ऑनर है जिसने किराए पे दे रखा है तो उससे यही अपील करते हैं बार बार कि वो अपने टेनेंट्स को चेक करता रहे कि यही टेनेंट है जिनके हमने वेरिफिकेशन करवाई थी।
1: जी, और ये मुझे लगता है लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं है क्योंकि आप दिल्ली में रह रहे हैं, आपका घर कहीं बम्बई में है या लखनऊ में है और वहाँ पर आपने वो किराए पर दे रखा है, तो आप कहाँ जा पाते हैं, लोगों के पास समय होता है, बट एक्चुअली में 90 दिन में अगर जा रहे हैं तो आप चेक रख पाते हैं कि वाकई वही लोग रह रहे हैं या कुछ और गतिविधियाँ चल रही हैं, तो घर के अंदर जाके एक बार जरूर देखें, आपका घर है, कोई रोकेगा नहीं आपको, आप फोन करके जाएं चाहे वैसे जाएं, बट जाना जरूर चाहिए।
0: बातों का सिलसिला जारी रहेगा। दोस्तों अगर आपके मन में भी कुछ सवाल है तो बिल्कुल भेज सकते हैं हमें 8010781078 पर। और साथ ही अगर आप ये कॉन्वर्सेशन इस पॉडकास्ट को किसी के साथ शेयर करना चाहें या सुनना चाहें तो फिर आप हमारी इंटरनेट रेडियो ऐप रेडियो मानवरचना डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से, और आरजे दीक्षा के फोल्डर में जाकर आपको सुरक्षा संवाद के नाम से ACP श्री अर्जुन के साथ ये सारी बातचीत मिल जाएगी जिसे आप दुनिया के किसी भी कोने में कभी भी शेयर कर सकते हैं। वक्त है अभी एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का।

0: फील लाइव रेडियो मानव रचना 107.8 FM में दीक्षा आपके साथ। बहुत सारी बातें जारी हैं कार्यक्रम सुरक्षा संवाद में। एसीपी अर्जुन हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एसीपी हैं बटखल क्षेत्र के फरीदाबाद में, और इस कार्य को करते हुए बहुत से वक्त हो गया है इनको, और ये आज जिस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए आए हैं वो है वेरिफिकेशन। जी हाँ, वेरिफिकेशन के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन नशा मुक्ति और फरीदाबाद के ट्रैफिक को लेकर चर्चा अभी भी जारी है। आइए करते हैं और विस्तार से बात। अब सर बात करते हैं एक ऐसी परेशानी की, जो एक ऐसा मुद्दा है जो सिर्फ देश में नहीं पूरी दुनिया में कह रहा है, और वो है नशा। अब नशा एक तो होता है अल्कोहल, जो आम तौर पर लोग लेते हैं, बड़ी उम्र के भी लेते हैं और कुछ यंगस्टर्स भी लेते हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक नशा होता है ड्रग्स का, जिसके बारे में वर्ल्ड वाइड बहुत से अभियान चलाए जाते हैं। हर देश कोशिश करता है कि ड्रग्स के सर्कुलेशन को लोगों तक पहुंचाने में रोका जाए, पर फिर भी ये खुलकर बिकता है और खुलकर युवा जो है इसको कंज्यूम करते हैं। तो मेरा सवाल आपसे अब इस मुद्दे पर ये है कि हम अपने आसपास आजकल बहुत सारी फिल्में देख रहे हैं, बहुत सारे गाने देख रहे हैं, जिसमें गन कल्चर, ड्रग्स कल्चर, वीड की बात, इस तरीके के बहुत से शब्दों का इस्तेमाल होता है और खुल के होता है। रोक भी लगी है, एक बीप लगाने से सबको समझ आ जाता है कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन क्या है वो दिख जाता है, पता चल जाता है। अब इससे युवा कितने प्रभावित हो रहे हैं, कितना फर्क पड़ रहा है, क्योंकि आप खुद इस प्रोफेशन में है कि आप युवाओं के पूरे आंकड़े या फिर कुछ जानकारियां ज्यादा, हम एक आम आदमी से ज्यादा रखते हैं।
1: मैं बिल्कुल सही सवाल है आपका। नशे से सरकार नशे के प्रति बहुत बड़े अभियान चला रही है। सरकार के जितने भी डिपार्टमेंट्स है, लगभग हम फरीदाबाद में कहें तो 36-37 डिपार्टमेंट है, सभी डिपार्टमेंट्स के लिए सरकार की हिदायत है कि नशे को बिल्कुल बंद करना है, नशे को नो कहना है, किसी सूरत में नशे को यस नहीं कहना है। और नशे की वजह से हमारी पीढ़ी समाप्त हो रही है, खासकर युवा पीढ़ी जिसको पता नहीं है, बच्चे जिनको अंदाज़ा ही नहीं है जीवन में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, वो कोई सीरीज देख के कहिए या कोई

0: का कोई आदमी के सरकार का आदमी कोई इस काम में हो, तो आमजन का आदमी उनको सपोर्ट करना पड़ेगा इस बात के लिए कि आइडेंटिफाई किया है हमने, ये आदमी ऐसा भेजते हैं, यहाँ ये एक्टिविटी हो रही है, ये प्रशासन को बताना पड़ेगा, तभी एक्शन हो पाएगा। मान लिया कोई पीसीआर राइडर गश्त पे है तो पेट्रोलिंग कर रही है, उनके सामने से हट गया, तो आमजन जिसने देखा वो रिपोर्ट करे, उस पे एक्शन होगा।
1: तो लोग क्यों नहीं रिपोर्ट करते हैं, अभी भी डरते हैं पुलिस से?
0: पुलिस से नहीं डर रहे हैं, दिक्कत कई तरह की है। कुछ लोग तो इस बात के लिए अवेयर नहीं है कि हम क्यों करें,
1: एक जागरूकता नहीं है।
0: हम जागरूकता अभियान इसलिए चला रहे हैं, सरकार ने एक विशेष टीमें बना के एक डिपार्टमेंट को बोला है कि रोज कोई ना कोई जागरूकता अभियान चलाएंगे। आप पेपर देखेंगे तो रोज पुलिस भी कर रही है और डिपार्टमेंट भी नशा मुक्ति अभियान चला रहे हैं और बहुत काम कर रहे हैं और वो ठीक ठाक काम कर रहे हैं।
1: जी, तो नशा मुक्ति की जब हम बात करते हैं सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी किस किस तरीके के नशे जो हैं आते हैं। हमने पहले देखा था कि दवाइयां बहुत ऐसी होती हैं जो प्रतिबंधित होती हैं पर वो मिल जाती हैं इजीली, दवाइयां जो होती हैं वो कितना इफेक्ट करती हैं, कैसे बच्चों को फंसाती हैं, और इसके अलावा क्या क्या होते हैं, क्योंकि पेरेंट्स को जनरली नहीं पता होता, ये सिर्फ यंगस्टर्स को पता होता है कि किस किस तरीके के नशे जो हैं वो मिल रहे हैं, किस किस फॉर्म में मिल रहे हैं, क्या उनका कलर होता है, क्या वो लिक्विड हैं, इंजेक्टेबल हैं, या पाउडर्स हैं, या टैबलेट्स हैं, क्या है?
0: बच्चे को जो सबसे पहले नशे की तरफ लेके जाते हैं, कहीं कहीं से शराब का सेवन बहुत कम रह गया है, उससे पहले सिगरेट में कुछ मिला के पिला दिया, एक बार उसने सुट्टा लगा लिया, सुट्टे के नाम पे बहुत रील्स आती हैं, बहुत सीरीज आती हैं, तो उनको वो देखता है बच्चा, वो सुट्टा लगा लिया उसने, जब एक बार लगा लिया तो उसी में कुछ कुछ कुछ देते जाते हैं। वो इंजेक्ट की स्टेज जो आती है वो तो थर्ड फोर्थ स्टेज है,
1: काफ़ी बाद में,
0: उससे पहले तो कुछ और चीज़ें हैं, उनको कुछ मिला के खिला दिया, कुछ पिला दिया, सिगरेट में पिला दिया या कोल्ड ड्रिंक में पिला दिया, इस चीज़ कहते हैं। इंजेक्ट वाले स्टेज तो लास्ट में आते हैं, इंजेक्ट वाले स्टेज के बाद संभलना बड़ा भारी काम है, बहुत भारी काम है, वो तो ड्रग एडिक्शन सेंटर में भी बात बन सकती है, अदरवाइज बाहर नहीं पेरेंट्स रोक पाए
1: नहीं,
0: क्योंकि जैसे ही वो नशे की तरफ घुसेगा तो वो घर से परिवार से कटने लगेगा, चोरियां करने लगेगा बच्चा, तो क्राइम की दुनिया में इसी रास्ते से इंटर करते हैं लोग। तो नशा बहुत बुराई मानेंगे हम तो, कि नशा किसी सूरत में नहीं होना चाहिए।
1: बिल्कुल, यानी इतनी सारी चीजें जो दुनिया भर में मिल रही हैं वो बहुत खतरनाक हैं, और अगर आपके घर में बच्चे हैं जिनकी 12-13 साल की उम्र है और इन टीनेजर्स को आप एकदम सही जीवन देना चाहते हैं तो इनके साथ थोड़ा समय बिताना जरूरी है, इनकी थोड़ा सा चेक रखना भी जरूरी है।
0: हम तो ये कहेंगे कि बच्चे को दोस्त की जरूरत होती है और वो दोस्त घर से बाहर तलाशता है, हम पेरेंट्स से प्रार्थना करेंगे कि वो दोस्त अपने आप को मोल्ड करके अपने आप को तरीके से उसके दोस्त बन जाए, ताकि उसको दोस्ती के लिए बाहर ना जाना पड़े। आप पेरेंट्स का हिटलरशिप ना चला के मित्रतापूर्ण उनके साथ रहिए, ताकि वो
1: की बात करें।
0: हाँ, ताकि वो 70% कम से कम 80% 70% आपके साथ बात कर ले, तो उससे जरूरत ही नहीं पड़ेगी उसको उनके पास जाने की। वो दिक्कत का बात यह है कि हम पेरेंटिंग करते करते भूल जाते हैं कि बच्चे की कुछ रिक्वायरमेंट होती है, कुछ चेंजेस आते हैं बच्चे में, ऐसे हार्मोनल चेंजेस आती हैं, कुछ बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, तो उन चेंजेस को वो आपसे शेयर ना करके कहीं और शेयर करें, इससे अच्छा तो आप एजुकेट करें बच्चे को, फ्रेंडशिप रखें उसके साथ, ताकि वो आपसे शेयर कर ले तो नौबत नहीं आए।
1: बिल्कुल। तो दोस्तों, सुरक्षा संवाद में बातचीत जारी रहेगी, वक्त एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, मैं हूं दीक्षा के साथ।

0: फील लाइव रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम में दीक्षा आपके साथ बातचीत का सिलसिला जारी है। हमारे खास मेहमान एसीपी बटकल अर्जुन जी जो कि फरीदाबाद पुलिस में हैं और साथ ही हमारे साथ इस कार्यक्रम के आज गेस्ट भी हैं। हम इस कार्यक्रम को आपके बीच लेकर आते हैं फरीदाबाद पुलिस के सहयोग से और बहुत सी अलग अलग विषयों पर हम चर्चा करते हैं। आज जिन विषयों पर हमने बातचीत करी है वो है वेरिफिकेशन, यानी आप अपने घर में अगर कोई हाउस हेल्प रखते हैं, ड्राइवर रखते हैं या फिर आप अपना घर या दुकान किसी को रेंट पर देते हैं तो वेरिफिकेशन कराना, यानी पुलिस वेरिफिकेशन का क्या प्रक्रिया होती है, किस तरीके से वेरिफिकेशन कराना लाभदायी साबित हो सकता है, इस पर चर्चा करी है। साथ ही हमने नशा मुक्ति पर बात करी है और फरीदाबाद ट्रैफिक के बारे में भी बात कर रहे हैं। सर, ये भी जानना चाहूंगी आपसे कि बहुत सारे, अभी आपने कहा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो देख कर भी अनदेखा कर देते हैं, पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करते, तो क्या ऐसा प्रावधान है कि अगर कोई इन्फॉर्म कर रहा है तो उसकी पहचान, उसका नाम जो है वो एकदम छुपा के रखा जाएगा, रिवील नहीं किया जाएगा?
1: बिल्कुल ऐसा प्रावधान किया हुआ है कि जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी, हमने नीचे कांस्टेबल लेवल तक ये कहा हुआ है कि आपके पास इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए और इन्फॉर्मेशन आने के बाद उस पर एक्शन होना चाहिए। जो लोग कंप्लेंट कर रहे हैं उनका नाम, बेशक उनकी झूठी कंप्लेंट रही हो या कामयाबी ना मिली हो, उनका नाम ना पब्लिश करेंगे ना किसी को बताएंगे। वो हमारे लिए एक सोर्स है, अच्छा सोर्स है, आज नहीं तो कल वो हेल्प ही कर रहे हैं हमारी। तो पहले ऐसा था, कुछ साल पहले, 15 साल पहले कहेंगे तो पुलिस के पास जाने से लोग कतराते थे, पुलिस को बताने से कतराते थे, हम लफड़े में क्यों पड़े। अभी ऐसा नहीं है, अगर आदमी कोई बताता है, इंसान बताता है तो उसकी आइडेंटिटी बिल्कुल सीक्रेट रखी जाती है और उस पर एक्शन होता है।
0: जी बिल्कुल, यानी सीक्रेट आइडेंटिटी का प्रावधान है, तो किसी भी व्यक्ति को अगर कोई कंप्लेंट करनी है तो वो इजीली कंप्लेंट कर सकता है। अब सर बात करते हैं ट्रैफिक, क्योंकि दो मुद्दे ऐसे रहे जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आम इंसान के, उन पे हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन अब ट्रैफिक के बारे में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ट्रैफिक हर किसी की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। जो घर से बाहर निकलेगा वो ट्रैफिक का सामना करेगा, और गाड़ी भी चलाएगा, बाइक भी चलाएगा, स्कूटर, साइकिल, नहीं तो पैदल तो चल ही रहा है। तो इन सड़कों पर जो रोड सेफ्टी की जब हम बात करते हैं तो आजकल के समय में क्यों लोगों में सब्र नहीं है सड़क पर चलते हुए, क्योंकि एक्सप्रेस वे पर आप चल रहे हैं, अगर लिमिट 100 की है तो 120, 130 से नीचे कोई नहीं चलाना चाहता और ऐसे में एक्सीडेंट होना लाजमी होता है। दूसरी चीज़ जो सुबह के वक्त होती है या शाम के वक्त होती है, सुबह ऑफिस पहुंचने की जल्दी होती है, आप लेट निकलते हैं घर से, ट्रैफिक हल्का सा मिलता है तो आप रॉन्ग साइड लेते हैं, शाम को आपको वैसे ही घर जल्दी पहुंचना होता है क्योंकि आप थक चुके होते हैं तो लोग रॉन्ग साइड बहुत लेते हैं। फिर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कोई सड़क पर चल रहा है, उसने ज़रा सा आपसे तेज़ गाड़ी निकाल ली तो आप रोड रेज में आ जाते हैं, और इसकी वजह से सिर्फ एक्सीडेंट नहीं होते, हमने ये देखा है कि मार पिटाई से लेकर खून खराबे तक की बात आ जाती है।
1: बिल्कुल सही बात है। आजकल हम देख रहे हैं कि जैसे सोशल मीडिया का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, तो लोगों की फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है। फिजिकल एक्टिविटी कम होने की वजह से पेशेंस लूज हो गया है। पेशेंस लूज हो गया तो वो ना तो रोड रेज से चूकता है, वहाँ पे भी बिल्कुल तुरंत से एक्शन करके लड़ना पसंद करता है, और ना ही ट्रैफिक के जो प्रेशर है ट्रैफिक का उसको सहन कर पाता है। अब छोटा सा उदाहरण NCR का, हम यहाँ से फरीदाबाद से गुड़गांव का लेते हैं जी। गुड़गांव से फरीदाबाद जाने के लिए एक सड़क जाने की है और एक सड़क आने की है। एक सड़क पे जाते वक्त दो व्हीकल साथ निकल सकते हैं। ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है, थोड़ा सा समय होता है जो ट्रैफिक रश होता है, क्रॉल करके चलता है, उसमें लोग पेशेंस करने के बजाय ओवरटेक करके आ जाएंगे, रॉन्ग साइड चले जाएंगे, तो आपकी ट्रैफिक बिल्कुल स्मूथ चल रही, स्लो चल रही है, इतना ही है थोड़ी देर, क्योंकि प्रेशर है सुबह शाम का तो स्लो चलेगी। आप उसको थोड़ा जज्ब कर लें, अंदाजा लगाएं कि हमारी वजह से दूसरों को दिक्कत ना हो। जो सामने से आने वाला है उसने कोई गलती थोड़ी की है, हम दूसरी साइड रॉन्ग साइड चले जाएंगे, जाम लग जाएगा, वो सब लोग ओवर फंस जाएंगे, इससे अच्छा तो अपनी रॉ में चले, थोड़ा सा पेशेंस रखें, जहाँ 15 मिनट लगने थे वहाँ 17 मिनट लग जाएंगे, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता 2 मिनट से। फालतू लॉन्ग ड्राइव तो आप कहीं 100 की स्पीड पे जा रहे हैं और उसी स्पीड को आप 120 कर दें तो 300 किलोमीटर पे जाके 12 मिनट का फर्क पड़ता है। 300 किलोमीटर सफर करने पे 12 मिनट का फर्क पड़ेगा, 12 मिनट के लिए आप अपनी, दूसरों की, परिवार की जिंदगी दांव पे लगा देते हैं। और NCR में तो इसलिए कि सब आदमी काम करने के लिए निकलते हैं, सुबह निकलते हैं, शाम को आते हैं, तो प्रेशर होता है, मन बनाना पड़ेगा लोगों को भी इस वक्त ट्रैफिक का प्रेशर है, ना कोई जाम है, ना कोई देर है। अब एकदम से टोल पे चले जाएंगे तो टोल की लंबी लाइन हो जाती है, लंबी लाइन में थोड़ा पेशेंस करना पड़ेगा, उसको भी टाइम लगता है जी। हाँ। वो रीड करेगा, सर्च करेगा, निकालेगा, इतना
0: और कभी टेक्निकल एरर्स भी हो
1: जाते हैं। तो हमें पेशेंस की जरूरत है, और सड़क पे जो घर से निकलता है वो अपने काम से निकलता है, कोई लड़ने के लिए, कोई एक्सीडेंट करने के लिए नहीं निकलता। एक्सीडेंट बाई चांस हो जाता है, तो हमें पेशेंस की जरूरत है। और दूसरी बात मैं तो ये भी कहूँगा, एक्सीडेंट चलो हो गया तो हम जो लाखों रुपए इंश्योरेंस के देते हैं वो इसीलिए देते हैं कि वो ठीक करवा लेना, कि इसलिए देते हैं कि हम लड़ लें।
0: बिल्कुल, लड़ने की आदत बहुत दिल्ली एनसीआर में बहुत ज्यादा है।
1: वो अग्रेसिव इसलिए हो गए हैं कि उनके फिजिकल वर्कआउट नहीं रहा। अगर कोई इंसान फिजिकल वर्कआउट, योग, प्राणायाम करेगा, कोई फिजिकल एक्सरसाइज करेगा, जिम जाएगा और जाएगा, तो उससे उसका स्ट्रेस फ्री हो जाएगा, तो उससे फिर वो लड़ने की तरफ नहीं जाएगा, काम की तरफ फोकस करेगा। जो आदमी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेगा उसके दिमाग में एक्स्ट्रा स्ट्रेस है, वो स्ट्रेस के चक्कर में लड़ भी पड़ता है।
0: बिल्कुल, यानी कहीं का गुस्सा
1: कहीं निकलता है। बिल्कुल सही कहा।
0: और हमेशा में हमने ये देखा है कि जो भी स्ट्रांग होता है वो अपने से कमजोर वाले को गुस्सा निकालता है, तो वही चीज हो जाती है कि आपकी गाड़ी बड़ी है, आप छोटी गाड़ी वाले से लड़ लेते हैं या ऑटो वाले से लड़ लेते हैं।
1: बड़ी गाड़ी रखी है, इंश्योरेंस की गाड़ी रखी है, इंश्योरेंस पे कर रहे हैं समय पे, तो ये हमें बड़ा डील करना पड़ेगा कि वो इंश्योरेंस इसी दिन के लिए पे किया था हमने, कि अगर कोई छोटी मोटी बात गलती से ना गलती से एक्सीडेंट हो गया तो उसके कवर करने के लिए हमने इंश्योरेंस करवाया था, ना कि लड़ने के लिए करवाया था। ये पैसेंस हमें बड़ा डील करके करना ही पड़ेगा।
0: अब उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे जो बिल्कुल अपने दो मिनट बचाने के लिए रॉन्ग साइड लेते हैं? और खासतौर पर से मैंने ये देखा है कि फरीदाबाद में रॉन्ग साइड का कल्चर जो है वो बहुत ज्यादा है। आप दिल्ली जाएं चालान से डर लगता है, लेकिन फरीदाबाद में लोगों को शायद चालान से डर ही नहीं लगता है। हालांकि हम बहुत ट्रैफिक ऑफिसर से बात कर चुके हैं और उन सब के बाद चीजें ये निकल के आती है कि चालान तो बहुत हो रहे हैं, अभियान तो बहुत है, लेकिन फिर भी लोग सुधर नहीं रहे।
1: अभी इसमें दो बातें कहेंगे हम। एक तो NPR कैमरेज लगा रखे हैं, हर एक जगह कैमराज हैं, उनमें बहुत लोगों को तो पता ही नहीं है कि हमारा चालान हो कहाँ है। वो रॉन्ग साइड जाएंगे और उनका हो जाएगा। पीछे एक किसी ने आके बताया, जी मेरा 1,12,000 का चालान हो गया स्कूटी का।
0: अच्छा,
1: हम बहुत हैरान थे इस बात के लिए कैसे हो। पता चला कि वो श्रीमान जी घर से निकलते हैं विदाउट हेलमेट होते हैं, रॉन्ग साइड

0: जाते हैं और सिग्नल जंप करते हैं, तो तीन चालान जाती वक्त तीन चालान आते वक्त हर रोज
1: छह चालान
0: डेली कर लेते हैं, तो उनको पता ही नहीं चला तीन महीने में लगभग 1,00,000 कुछ के पार निकल गए।
1: अच्छा।
0: उसके बाद उनको दिमाग में आया, वो खुद अब 2-3 जगह हमें पता चला कि वो खुद लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि ऐसा नहीं करना, आप इधर चालान पहुंचे।
1: ये फरीदाबाद के हैं।
0: दूसरा एक अभियान और चलाया फरीदाबाद पुलिस ने कि रॉन्ग साइड जाने वालों को कोशिश करें, हम कंट्रोल करें, फिर भी ना हो तो रॉन्ग साइड जब एक जहां बीच में डिवाइडर बना हुआ है, एक सड़क जाने की है एक आने की है, अगर उस पर रॉन्ग साइड है तो उसका चालान की बजाय व्हीकल जब्त करके पैदल जाए।
1: जी
0: स्पष्ट पता है कि हमें ये सड़क जाने की और आने की फिर भी धक्का कर रहे हैं, तो उनके व्हीकल जब्त कर लिया जाए, वो पैदल टैक्सी से निकल जाए, वो एक बार जाएंगे दोबारा नहीं जाएंगे।
1: तो जरूरी है
0: ये लास्ट में आके तब करनी पड़ी जब जागरूक अभियान चला दिए हमने, सब कुछ कर दिया फिर भी समझ नहीं आ रहा, तो मन मना के चला है, तो मन मना के पुलिस ने मन मना लिया है कि जैसे जो करेंगे उनका व्हीकल जब्त कर लिया जाए, उनको पैदल भेजा जाए
1: और जब्त करते हैं।
0: हाँ करते हैं, शुरू कर दिया काम,
1: कर दिया है। तो शुरू जो लोग समय सुन रहे हैं और वो रॉन्ग साइड के आदि हो चुके हैं, तो आपको हम ये बता दें कि गाड़ियां जब्त करने का जो ट्रेंड है वो फरीदाबाद पुलिस का शुरू हो चुका है। तो अगर आपको लग रहा है आप रॉन्ग साइड लेके आसानी से निकल जाएंगे, कभी एक आध बार निकल सकते हैं, पर जनरली अब आप पकड़ में भी आ जाएंगे।
0: जी।
1: तो सर बहुत सारी बातें आपने कही हैं और बहुत सारी जानकारी दी है, चलते चलते एक छोटा सा मैसेज हमारे लिसनर्स के लिए जरूर कही।
0: हम सभी से प्रार्थना करेंगे, आग्रह करेंगे कि नशे के खिलाफ एकजुट होके जैसे स्वतंत्रता संग्राम चलाया था, स्वतंत्रता की लड़ाई चलाई थी, हर घर से इंसान स्वतंत्रता के लिए निकला था, इसी तरह अपील करें कि नशे के खिलाफ भी हर घर से हर इंसान जागरूक हो, जागरूक करे और नशे को बाय बाय कहे। ट्रैफिक के बारे में ये भी प्रार्थना करेंगे कि ट्रैफिक के नियमों का पालन करें, जहाँ जहाँ बंद पड़ता है हर एक जगह पुलिस व्यवस्था के लिए लगाई हुई है, लेकिन हर आदमी के लिए हर जगह पुलिस लगाना संभव नहीं है, जब तक लोग सहयोग नहीं करेंगे ट्रैफिक स्मूथ नहीं चल पाएगी, सबकी व्यवस्था के लिए सब लोग सहयोग करें। और तीसरा हमारा वेरिफिकेशन के लिए था, वेरिफिकेशन आपकी, आपके नगर की, आपके देश की सुरक्षा के लिए है, कोई इसमें बुराई नहीं है, समय पे कराने पे कोई फालतू लफड़ा नहीं है, आजकल ऑनलाइन सब कुछ हो रहा है, बिल्कुल ठीक स्मूथ हो जाएगा, यही हमारी प्रार्थना, यही इंतजार है।
1: जी तो बहुत सारी बातें आज हमने सुरक्षा संवाद में जानी है। हमारे साथ जुड़े रहे भटकल के ACP श्री अर्जुन जी, और जिन्होंने बहुत सारी डिटेल में बातें बताई हैं कि वेरिफिकेशन कितनी जरूरी होती है, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना कितना जरूरी है, नहीं करेंगे तो आपकी गाड़ी तक जब्त हो सकती है, और सबसे जरूरी चीज नशे के खिलाफ जंग छेड़नी पड़ेगी, आपको जागरूक होना पड़ेगा और अपने बच्चों को इस नशे से बचाना पड़ेगा। फिलहाल सुरक्षा संवाद में बस इतना ही, अगले हफ्ते फिर से करेंगे मुलाकात एक नए अधिकारी के साथ। उम्मीद है आप सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपने सवाल हमें 8010781078 पर भेजते रहें। फिलहाल मुझे यानी दीक्षा को दीजिए इजाजत।

0: सभी को प्यारे हैं अपने प्राण, फिर कोई और प्राणी हो या हो इंसान। वन्य जीव है प्रकृति का आधार, नहीं रहेंगे ये तो हम इंसान हो जाएंगे लाचार। आओ रेडियो मानवरचना 107.8 के साथ मिलकर ले ये संकल्प, वन्य प्राणियों को बचाएंगे, पृथ्वी पर जीवन को संतुलित बनाएंगे, संतुलित बनाएंगे।
1: हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानवरचना 107.8 FM। मैं हूँ आरजे भावना और मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर एक खास कार्यक्रम जिसमें मैं आपको ऐसे लोगों से मिलवाती हूँ जो मानवता की राह पर चलते हैं, ऐसे काम करते हैं जो ना सिर्फ लोगों के जीवन को बदल देते हैं लेकिन जीवन को एक नई राह भी देते हैं। आज इस कड़ी में हम जिनसे बात करने वाले हैं वो हैं रोटेरियन शेखर मेहता, फाउंडर इंडिया ह्यूमैनिटी फाउंडेशन और पास्ट रोटरी इंटरनेशनल के प्रेसिडेंट। सो करेंगे इनका स्वागत रेडियो मानवरचना 107.8 FM के स्टूडियो में। अगर मैं आपसे सबसे पहला सवाल पूछूं, इंडिया ह्यूमैनिटी फाउंडेशन, तो क्या कहेंगे आप? इंडिया ह्यूमैनिटी फाउंडेशन की शुरुआत कैसे हुई और इसके पीछे क्या कहानी थी?
2: शुरुआत हुई 2010 में
1: जी,
2: और तब मैं रोटरी इंटरनेशनल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सिलेक्ट हुआ था
1: जी।
2: तो विश्व भर से 17 लोग इकट्ठे होते हैं उस बोर्ड पे, तो इंडिया से मैं हुआ था। तो मुझे लगा कि मैं इंडिया में, जब मुझे इस मौका मिल गया कि इंडिया में करीब 1.5 लाख रोटरी के मेंबर्स होते हैं, वर्ल्ड वाइड 14 लाख मेंबर्स हैं, तो हम जो काम कर रहे थे उसे और बड़ा काम किया जा सकता है। सो एक फाउंडेशन अलग से बना लिया था
1: जी।
2: तब इसका नाम रोटरी इंडिया ह्यूमैनिटी फाउंडेशन हुआ करता था
1: जी।
2: एंड तो हमने कुछ गोल सेट किए थे, जैसे कि हम 5,000 बच्चों की हार्ट सर्जरीज कराएंगे, हम इंडिया को टोटली लिटरेसी की तरफ, टोटल लिटरेसी की तरफ ले जाएंगे, देन एक शेल्टर किट प्रोग्राम था डिजास्टर मैनेजमेंट का, वो करेंगे, आई हॉस्पिटल सेटअप करेंगे। सो यही कुछ इंडिया लेवल के प्रोग्राम्स हमने सेटअप किए थे और आज अब 16 साल हो गए हैं, रीजनेबल सक्सेस मिली। 5,000 हार्ट सर्जरी सोची थी, ये नहीं कि हमको ही करनी थी
1: जी।
2: हमको ये बात को फैलाना था चारों तरफ में, लोग और जुड़े, लोग भी करें, हम भी करें। हमने करीब 2,500 हार्ट सर्जरी खुद करी होंगी, लेकिन इंडिया भर के अंदर में रोटरी दूसरे संस्थाओं को जोड़ के 25,000 से ज्यादा हार्ट सर्जरी हो गई है अभी तक।
1: वाओ, सो ये तो एक बहुत बड़ा नंबर है। और देखिए दोस्तों, हम कई बार ना ऐसा सोचते हैं कि हम मानवता के काम करने के लिए अगर आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास पैसे नहीं होंगे या हमारे पास मदद नहीं होगी। दरअसल मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छे कन्विक्शन की ज़रूरत होती है। आप एक अच्छे कन्विक्शन से शुरू करिए, मदद और साथ के साथ रिसोर्सेज कहीं ना कहीं से आपके पास पहुंच ही जाते हैं, बस एक जज्बे की ज़रूरत है। जुड़े रहिएगा रेडियो मानवरचना 107.8 FM के साथ। वक्त एक छोटे से प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक का। फील गुड, फील लाइक।

0: बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूँ आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। आज मानवता की राह पर हम चल रहे हैं रोटेरियन शेखर मेहता जी के साथ, जो कि फाउंडर हैं इंडिया ह्यूमैनिटी फाउंडेशन के और पास्ट रोटरी इंटरनेशनल के प्रेसिडेंट भी रहे हैं।
1: शेखर जी, अब अगला अहम सवाल, अगर मैं लिटरेसी की बात करूं तो भारत आज भी, मैं ये नहीं कह सकती हूं कि 100% एक लिटरेट कंट्री है। सो आप लिटरेसी फैलाने के लिए इंडिया ह्यूमैनिटी फाउंडेशन को किस तरीके से एम्पावर कर रहे हैं?
2: बहुत सही बात कही आपने, कुछ तो आपने पहले जो कही, मैं एकदम सहमत हूँ उस बात से कि आदमी को एक ख्वाब होने की जरूरत है, फिर जज्बा होने की जरूरत है। गांधी जी ने कहा था, फाइंड द गोल एंड द मींस विल फॉलो।
1: यस,
2: और ये हमेशा होता है, अगर इफ यू फाउंड द राइट गोल। सो द नेक्स्ट गोल दैट इंडिया ह्यूमैनिटी फाउंडेशन, उनका जो नेक्स्ट गोल है वो है टूवर्ड्स अ टोटली लिटरेट इंडिया। इंडिया की लिटरेसी रेट अभी भी 80% से ज्यादा नहीं है। हम 80th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस मनाया हमने, लेकिन 80% से ज्यादा नहीं है। लास्ट सेंसस में तो वो 74% थी, लेकिन वो सेंसस 2011 में हुआ। अभी का सेंसस, हालांकि मेरे पास में आया सेंसस का कागज, उसमें नहीं पूछा जा रहा है मैं लिटरेट हूं कि नहीं, तो मुझे नहीं पता कि इस सेंसस के अंदर में वो फिगर्स आएंगे कि नहीं। बट वी डिसाइडेड कि नहीं, हमको इंडिया को टोटली लिटरेट बनाना है, और उसके लिए हमने एक प्रोग्राम शुरू किया, अक्षर ज्योति। अक्षर ज्योति में हम उस प्रोग्राम को दो भाग में डिवाइड करते हैं। एक है बड़ा इंटरेस्टिंग, ईच वन टीच वन, जो कि जिस प्रोग्राम का नाम है दीक्षा। तो हम स्कूल के बच्चों को बोलते हैं कि आप एक एडल्ट को पढ़ाइए। भारत में 20 करोड़ एडल्ट इलिटरेट है आज के दिन, 20 करोड़, और हमारे एजुकेशन सिस्टम में 25 करोड़ से ज्यादा बच्चे हैं। अगर ये बच्चे सब, हर कोई तो पढ़ा नहीं पाएगा, लेकिन अगर हम क्लास 7-8 के बच्चे, 7-8-9-10-11-12 तक के बच्चों में, 12 को छोड़ दिया हमने, 10 को छोड़ दिया, उनके एग्जाम्स रहते हैं, लेकिन बाकी सब पढ़ा सकते हैं। एंड मैंने हजारों हजारों बच्चों से मिला हूं मैं, हर कोई रेडी है एक एडल्ट को बनाने के लिए। आप उनसे किसी क्लासरूम में जाके आप बोलिए इंडिया टोटली लिटरेट नहीं है,

0: तुमको उसमें मदद करनी है, आप देखिएगा सारे बच्चे अपने हाथ उठाएंगे। फिर हमने कुछ किताबें, दो किताबें डेवलप करी है, एक स्पेशल टूल किट डेवलप किया है इंडिया की वेरियस लैंग्वेजेस के अंदर में। हम स्कूलों में जाते हैं, बच्चों को समझाते हैं, वो वॉलंटियर करते हैं, उनको वो किताबें देते हैं, वो 60 दिन तक 45 मिनट से एक घंटा अगर एक एडल्ट को पढ़ाएंगे तो 60 दिन के बाद वो एडल्ट लिटरेट इतना हो जाएगा कि वो पढ़ सकेगा, लिख सकेगा और बेसिक अरिथमेटिक कर सकेगा। अगली जनगणना में उसका नाम लिटरेट में होगा। और अगर हम इस प्रोग्राम को बढ़ा, और जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में अप्रूव्ड है, इनफैक्ट मेरा ही डिस्कशन हुआ था प्रकाश जावड़ेकर जी, जब एजुकेशन मिनिस्टर थे, उनको मैंने ये आइडिया दिया था, उनको बहुत समझ में आई ये बात, वो मिनिस्टर थे एजुकेशन के, हम लोग गए, डिस्कशंस हुए, एंड डिस्कशंस होते होते ये हुआ। और मैंने एक और सजेशन दिया था कि इन बच्चों को हर स्कूल से 15 से 20 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलने चाहिए देश का इस काम को करने के लिए। कुछ पैसे नहीं लग रहे, एक किताब बच्चे को हाथ में पकड़ानी है, उसे फॉलो अप कर लेना है और उसे एट द एंड एक मेडल दे दीजिए, एक सर्टिफिकेट दे दीजिए, 20 मार्क्स दे दीजिए, 5 साल के अंदर में इंडिया टोटली लिटरेट हो जा सकता है। सो यही मुहिम हम चला रहे हैं एट इंडिया ह्यूमैनिटी फाउंडेशन।
1: वंडरफुल दोस्तों, सुनकर ही मुझे ऐसा लग रहा है कि हम अपने भारत का स्वर्णिम सपना देख पा रहे हैं। मतलब एक टाइम पर हम ये चाहते हैं कि हमारा पूरा भारत लिटरेट हो, लेकिन ये फिगर अचीव नहीं हो पा रहा है क्योंकि जो इलिटरेट रह गए हैं वो बुजुर्ग हैं और वो यंग बच्चे नहीं हैं। अगर हम बच्चों की बात करें तो 14 साल तक की तो एजुकेशन हर बच्चे को मिल ही रही है और फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, इंश्योर भी किया जा रहा है कि वो किसी ना किसी तरीके के फॉर्मल स्कूल में चले जाएं। लेकिन जो बुजुर्ग रह गए हैं उन्हें कहाँ मिल रही है एजुकेशन, और उन्हें लिटरेट बनाना शायद अब आने वाली पीढ़ी का काम है और ये करंट पीढ़ी का काम है। तो बहुत आसानी से शेखर जी ने एक बहुत अच्छा तरीका निकाला है कि अगर हमारे 25 करोड़ बच्चे हैं और 20 करोड़ इलिटरेट हैं, सो अगर हर बच्चा एक बुजुर्ग को भी पढ़ाएगा, मात्र एक बुजुर्ग, आप अपने आसपास ढूंढिए, आप अपने दूर दराज में कहीं जाकर ढूंढिए, तो ये इतनी खूबसूरती से हो सकता है और वाकई हम देख पाएंगे कि हमारा देश पूरी के पूरी तरीके से लिटरेट हो गया है। सो ये एक सपना है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप सभी इस सपने में आज ही से जुड़ जाएं। कैसे जुड़ेंगे, किस तरीके से आप इसे अपने शहर, अपने राज्य और साथ के साथ अपने स्टेट में कर सकते हैं, इसके बारे में हम जरूर करेंगे बात। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लव।

0: बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। आज मानवता की राह पर हम चल रहे हैं रोटेरियन शेखर मेहता जी के साथ, जो कि फाउंडर हैं इंडिया ह्यूमैनिटी फाउंडेशन के और पास्ट रोटरी इंटरनेशनल के प्रेसिडेंट भी रहे हैं।
1: शेखर जी, अब एक बड़ा अहम सवाल। मान लीजिए कि हम इस सपने को पूरा करना चाहते हैं और आपके सपने में पूरा देश जुड़ना चाहता है, सो किस तरीके से इसे फॉलो किया जा सकता है? क्या स्कूल अपने लेवल पर इसे कर सकते हैं? क्या राज्य के इंडिविजुअल अपने लेवल पर कर सकते हैं? किस तरीके से इसे किया जा सकता है?
2: भावना जी, मैंने कहा कि बच्चे जुड़ सकते हैं, लेकिन बच्चों के अलावा लेट्स से हाउसवाइफ्स हैं या कोई भी आदमी वॉलंटियर कर सकता है कि मुझे एक जन को पढ़ाना है। ये देश का काम है, मेरे कोई पैसे नहीं लग रहे हैं। अब स्टेट का सब्जेक्ट हो जाता है ये, तो स्टेट को चाहिए। ये जो एनईपी के अंदर में 60-40 में डिवाइडेड है, स्टेट गवर्नमेंट का भी पैसा लगता है और सेंट्रल का भी पैसा मिलता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा हर चीफ मिनिस्टर इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। इट इज इजी टू इम्प्लीमेंट। वो अगर अपने एजुकेशन मिनिस्टर के थ्रू सारी स्कूलों के अंदर में इसे जारी करवा दे और कहने कि हर बच्चे को 15 मार्क्स दिए जाएंगे जो इसे कंप्लीट करेगा, तो हम उस बात को चारों तरफ फैलाने के लिए तैयार है। हम हजारों के अंदर में वॉलंटियर्स ऑल ओवर इंडिया जोड़ने के लिए तैयार है। हर स्टेट के अंदर में हम 22 स्टेट्स में ऑलरेडी काम कर चुके हैं। वी हैव द एक्सपीरियंस एंड इंडिया ह्यूमैनिटी फाउंडेशन इज रेडी टू वर्क विद एनी गवर्नमेंट जो की चाहेगी कि हम उनके साथ जुड़े। इंडिविजुअली कोई भी बच्चा बोल सकता है कि मुझे पढ़ाना है, तो वो अपनी स्कूल के अंदर में जाके आगे या स्कूल ही इसको इनिशिएटिव को ले ले, वो बेस्ट है। अगर 100 बच्चे हैं तो वो हमको लिख दे इंडिया ह्यूमैनिटी फाउंडेशन IHF.org पे, IHF.org.in.org.in पे अगर हमको लिख देंगे, हम इमीडिएटली उस स्कूल के साथ संपर्क कर लेंगे, उनको कैसे आगे बढ़ना है उस मैटर को आगे बढ़ा लिया जाए। कॉरपोरेट से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो जुड़े हमारे साथ सिर्फ 600 रुपए में। आप यू कैनॉट बिलीव, सिर्फ 600 रुपए में एक आदमी या औरत की जिंदगी बदल जा सकती है।
1: वाकई
2: भावना जी, आप और मैं पढ़ लिख सकते हैं। इमेजिन करिए, आपको अगली बार बैंक में जाना पड़े और आपसे एक फॉर्म भी नहीं भरा जा रहा है और आपको जब रुपए निकालने हैं तो आपको दायां बायां देख के चुपके से अपना अंगूठा लगाना पड़ रहा है। शर्म की बात लगती है हर बार जो करते हैं।
1: वाकई
2: वो समझते हैं, जिस दिन वो पढ़ लिख लेते हैं, खुद का सिग्नेचर करके लेते हैं, आई टेल यू उनकी डिग्निटी आ जाती है लाइफ में, एक एम्पावरमेंट हो जाता है, एक अलग ही फीलिंग हो जाती है। आपको हमको, हम नल चलाते हैं उसमें से जल आता है ना
1: जी,
2: रेगिस्तान के आसपास जाइए वहां पर जल की वैल्यू समझ आती है। वैसे ही जो नहीं पढ़ लिख सके अनफॉर्चुनेटली फॉर व्हाटएवर रीजन, वो जब आज पढ़ लिख लेते हैं थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन मैं नहीं कह रहा हूँ कि उन्हें नौकरियां मिल जाएंगी, लेकिन इज्जत से बड़ी चीजें नहीं है।
1: वाकई
2: उनको एक मान मिलेगा, इज्जत मिलेगी, उन्हें अच्छा लगेगा। तो मैं कहूंगा स्कूलों को जुड़ना चाहिए, कॉर्पोरेट्स को जुड़ना चाहिए। वो आए, हम उनसे बात करने के लिए तैयार हैं। वो जस्ट इंटरेस्ट शो करें, 600 रुपीज एंड वी विल मेक एडल्ट लिटरेट। एंड एवरी एडल्ट जिसे पढ़ाया जा रहा है उसकी फुल डिटेल, अगर भावना जी आप 10 जन को स्पॉन्सर करेंगे ना, आप 10 जन की प्रोग्रेस देख पाएंगे इंटरनेट पर जाकर हमारे इस साइट के ऊपर। इतना ट्रांसपेरेंट और क्लियर तरीका है।
1: So, दोस्तों, अगर आप ये सुन रहे हैं ना, आई एम श्योर आप अब एक्साइटेड हैं। और फिर चाहे आप एक इंडिविजुअल हैं, आप एक एनजीओ हैं, आप सरकार में रहने वाले कोई मिनिस्टर हैं, या फिर अगर आप मुझे सुन रहे हैं और सिर्फ छोटी सी मानवता करना चाहते हैं, तो ये आपके पास मौका है। आप ये सोचिए, एक फूल प्रूफ पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया हुआ है। बस आपको ये करना है कि वॉलंटियर करना है, आगे बढ़ना है और किसी एक इंसान के जीवन को बदल देना है। और आप सोचिए कि उससे आप भारत को इंटरनेशनल मैप पर किस तरीके से बदल पाएंगे। सो अगर आपको भी लग रहा है कि ये एक अचीवेबल सपना है, तो बस जुड़ जाइए। कुछ भी नहीं करना है, इंडियन ह्यूमैनिटी फाउंडेशन, इतना सिंपल। इंडिया ह्यूमैनिटी फाउंडेशन की वेबसाइट पर जाइए, कनेक्ट हो जाइए, और ज्यादा जानकारी के लिए आपके पास हमारा नंबर तो है ही, आप इनसे जुड़ जाइए। बस फिलहाल बहुत ही प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक ले रही हूँ, जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। फील गुड, फील लव।

0: बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। आज मानवता की राह पर हम चल रहे हैं रोटेरियन शेखर मेहता जी के साथ, जो कि फाउंडर हैं इंडिया ह्यूमैनिटी फाउंडेशन के और पास्ट रोटरी इंटरनेशनल के प्रेसिडेंट भी रहे हैं।
1: शेखर जी, मुझे बताइए, सुनने में मुझे बहुत आसान लग रहा है, बट क्या आपने इतने

0: लंबे समय से इस काम को कर रहे हैं, रियल टाइम चैलेंजेस फेस किए हैं, और अगर हाँ तो क्या?
1: प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट तो ऑलरेडी है। अब प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट इस लेवल का है कि जब गवर्नमेंट से डिस्कशन किया, दे हैव एक्सेप्टेड द सेम प्रोग्राम। द एनईपी सेज इट एनकरेजेस कि बच्चे पढ़ें, एक तरीका यह है। दूसरा और एक तरीका भी हम करते हैं, उसका है विद्या प्रोग्राम, जहां हम 40 लोगों को एक गांव में इकट्ठा करते हैं, एक जन उन्हें पढ़ाता है, उसे अक्षर साथी कहते हैं। वहां पर पढ़ाने का तरीका जैसे क्लासरूम में होता है वैसा, जहां 1:1 की जगह या 1:30-40 लोगों को पढ़ाया जाता है। बोथ मॉडल्स वर्क, लेकिन आई वुड से जल्दी अगर अचीव करना है, कम पैसों में अचीव करना है, तो ईच वन टीच वन जो दीक्षा मॉडल है अक्षर ज्योति प्रोग्राम के अंडर में, दैट इज एक्सीलेंट। हाँ, बाधाएं क्या आ रही थी? इम्प्लीमेंटेशन में बाधाएं नहीं आ रही। रूरल एरिया में प्रोग्राम बहुत ज्यादा सक्सेसफुल इसलिए होता है कि वहां के फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स हैं, वो पहली बार स्कूल जा रहे हैं, माँ बाप खुद अनपढ़ हैं। मैं जब ये किताबें बांटता था लोगों को, तो मैं बिहार में था, नेपाल के बॉर्डर पे, वहां बच्चों को दिया, तो मैंने कहा किसे पढ़ाओगे? बोले अम्मी को पढ़ाऊंगी। कोई बोलता है घर में काका को पढ़ाऊंगा। तो घर में ही लोगों के इतने अनपढ़ लोग हैं, एंड घर घर विलेजेस में बहुत अच्छा चल सकता है। आप शहर में बैठे हैं, लेकिन विलेज में कैसे करेंगे? आप वेबसाइट पे जाइए, 10 लोगों का स्पॉन्सर करिए, सिर्फ 6,000 रुपए लगेंगे। आप स्पॉन्सर करिए, आपको हम डिटेल्स देंगे, वो 10 लोगों की इनको पढ़ाया गया है, आपके उन 10 जन को जो आपने स्पॉन्सर किया। एक ही चैलेंज है, आई वुड वॉन्ट कि मोर एंड मोर स्टेट्स इसके अंदर जुड़े। कुछ एक स्टेट्स इस काम को कर रहे हैं, लेकिन बहुत काम बाकी है अभी भी। एंड कॉर्पोरेट वर्ल्ड जुड़े, इंडिविजुअल्स जुड़े, हमारे ऑनलाइन कैंपेन चलते हैं, रिसोर्सेस, अगर ये फंड्स आने लगे इनको स्पॉन्सर करने के लिए, तो कहीं रुकावट नहीं है, ये बहुत इजीली ये काम कर सकते हैं।
0: वाकई दोस्तों, जब ना हम अपने घर में होते हैं ना, सो हम अपनी चार दीवारी के बारे में सोचते हैं, और हम घर के अंदर की बातों को सोचते हैं। फिर हम जब घर से बाहर निकलते हैं, और अगर हम अपने शहर तक पहुंचते हैं, तो हमें नजर आता है कि शहर में किन चीजों की कमी है। जब आप अपने राज्य तक पहुंचते हैं, तो आपको ये समझ में आता है कि वहां क्या कमी है। पर आप सोचिए, जब आप इंटरनेशनली एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जाते हैं, और आप विश्व के अलग अलग देशों को देखते हैं, और वहां आपको समझ में आता है कि हमारा भारत कहां लैक कर रहा है, तो कहीं ना कहीं अंदर से आत्मा ही आवाज देती है कि क्या हम इसे ठीक कर सकते हैं। और कुछ इसी तरीके से पहल की शेखर मेहता जी ने इस खास इंडिया ह्यूमैनिटी फाउंडेशन की। उन्हें ये समझ में आया कि अगर भारत लिटरेट हो जाएगा, तो हम किस तरीके से अपने आप को इस इंटरनेशनल कहना चाहिए मैप पर बदल सकते हैं। लेकिन अब परेशानी ये है कि दो चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, उन लोगों की जो आगे बढ़कर साथ निभाएं, और दूसरी तरफ वो लोग जो इसे एग्जीक्यूट कर सकें। सो एग्जीक्यूट करने के लिए बच्चों से लेकर बड़े तक बहुत सारे वॉलंटियर्स हो सकते हैं, और उसके लिए मात्र कुछ दिनों की जरूरत है। आपका थोड़ा सा समय, जो शायद आप किसी रील को देखते हुए या मोबाइल फोन पर गेम खेलते हुए यूं ही निकाल देते हैं, अगर आप ये समय किसी का जीवन बदलने के लिए दे देंगे, तो कहीं ना कहीं आपको ये लगेगा कि वाकई ये जो जीवन है, इसमें कुछ अच्छा किया गया। सो दोस्तों, मैं तो आपसे यही गुजारिश करूंगी कि इस पहल के साथ जरूर जुड़िए। आप चाहे किसी भी रूप में जुड़ सकते हैं, आप अगर समय नहीं दे सकते हैं तो आप धन दे सकते हैं, आप स्पॉन्सर कर सकते हैं, अगर आप समय दे सकते हैं आप वॉलंटियर्स जोड़ सकते हैं, तो आप वॉलंटियर्स के साथ जुड़ जाइए, और इस खूबसूरत सी पहल को आगे जरूर बढ़ाइए। और फिलहाल जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लव।

0: बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। आज मानवता की राह पर हम चल रहे हैं रोटेरियन शेखर मेहता जी के साथ, जो कि फाउंडर हैं इंडिया ह्यूमैनिटी फाउंडेशन के और पास्ट रोटरी इंटरनेशनल के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। और अब हम इनसे पूछना चाहेंगे कि ये जो इंडिया ह्यूमैनिटी फाउंडेशन है, इसने जो लिटरेसी की अलख जगाई है वो तो बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन इसके अलावा भी शेखर जी आप बहुत सारे काम कर रहे हैं इस फाउंडेशन के अंडर, तो किस प्रकार के काम है वो?
1: मैंने आपको बताया था, हार्ट सर्जरी करते हैं, नए हॉस्पिटल्स सेटअप किए हैं, डायलिसिस सेंटर सेटअप करते हैं, और एक बड़ा यूनिक प्रोग्राम शुरू किया था हमने, वो था शेल्टर किट। तो कब जब को बिहार में डिजास्टर हुआ था कोसी रिवर वाला, तब हमें लगा कि लोग तो घरों से बेघर हो गए। जब बाढ़ आती है या कोई भी अर्थक्वेक या कुछ भी ऐसी विपदा आती है, तो आदमी घर से निकलता है, एक हाथ में वाइफ का हाथ होता है और एक हाथ में बच्चों का, और कुछ नहीं होता उसके पास। कई बार महीने लग जाते हैं उन्हें घर वापस पहुंचने में, और जब पहुंचते हैं तो देखते हैं वहां घर ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो हमने एक ट्रंक लिया बड़ा सारा, जैसे मिलिट्री वाले ट्रंक रखते हैं, उस ट्रंक के अंदर में 52 डेली यूज के सामान ऐसे डाल दिए जिससे कि किसी का टेम्पररीली घर वापस से बस जाए। तो उसमें 2 तारपोलिन रहते हैं, एक बिछाने के लिए, एक ऊपर छत बना लेने के लिए टेंट जैसा। उसके अंदर में हस्बैंड वाइफ 2 बच्चों के लिए कपड़े हैं, 2 जोड़ी ब्लैंकेट्स हैं, बिछाने के लिए चद्दर है, 4 स्टेनलेस स्टील की प्लेट्स हैं, ग्लासेस है, खाना बनाने के लिए स्टोव है, बर्तन है, माचिस है, कैंडल है, जेरिकेन है पानी लाने के लिए, जेरिकेन है केरोसिन लाने के लिए, वाटर प्योरीफाइंग टैबलेट्स हैं, रस्सी है, और जो भी मतलब जो भी चीज उसे वापस से अपने आप को रिसेटल करने के लिए चाहिए वैसी है। और लास्ट 20 डिजास्टर्स जो इंडिया भर में हुए होंगे, हर डिजास्टर के अंदर में हमने हजारों के अंदर में इनको भेजा है। सो दिस इज अगेन वेरी नाइस प्रोग्राम कि अगर कभी भी कोई जरा सा विपदा हो किया जा सकता है। हम सर्विकल कैंसर का काम भी करते हैं, बच्चों को सर्विकल कैंसर का, अभी नेक्स्ट 1 महीने के अंदर में 2 महीने में करीब 2000 बच्चों को और दिया जाएगा। आई एम वेरी हैप्पी टू सी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी ये डिसाइड किया है कि 14 साल के बच्चे होते ही उन्हें सर्विकल वैक्सीन का कैंसर का वैक्सीन दिया जाएगा। लेकिन उससे बड़े जो हैं, जो 15 साल से ज्यादा के हैं और जो वैक्सीन की ये सुविधा गवर्नमेंट की तरफ से नहीं पाएंगे, उनके लिए ऐसी संस्थाओं को आगे आना चाहिए और ये सपोर्ट करना चाहिए। तो हमारे डिफरेंट पार्टनर्स हैं, फंडिंग एजेंसीज हैं, वो हेल्प करते हैं एंड वी आर एबल टू डू दिस। सो दीज आर सम ऑफ द प्रोग्राम्स जिसके अंदर में इन्वॉल्व है।
0: देखिए भाई, इंडिया ह्यूमैनिटी फाउंडेशन, इतने सारे विंग्स और इतने सारे काम। अगर आपको लगता है कि कोई भी ऐसा काम जो कि आपके दिल से रेजोनेट करता है, कोई ऐसा कॉज जो आपको लगता है उसमें आप भी जुड़ना चाहते हैं, तो ये मौका आपके पास है। आप ऐसे किसी भी कार्यक्रम के साथ जुड़ना चाहते हैं, ऐसी कोई भी चीज आप करना चाहते हैं, जैसे एक छोटा सा किट आप न सिर्फ स्पॉन्सर कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, हार्ट सर्जरीज को आप सपोर्ट कर सकते हैं, और आपके पास अक्षर ज्योति कार्यक्रम तो है ही, जहां पर आप किसी को लिटरेट बना सकते हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया ह्यूमैनिटी फाउंडेशन अपने आप में आपको मौका देती है कि आप थोड़ी सी मानवता अपने अंदर ले आए। फिलहाल जुड़े रहे अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन के साथ, यानी रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। फील गुड, feel love.

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। आज मानवता की राह पर हम चल रहे हैं रोटेरियन शेखर मेहता जी के साथ, जो कि फाउंडर हैं इंडिया ह्यूमैनिटी फाउंडेशन के और पास्ट रोटरी इंटरनेशनल के प्रेसिडेंट भी रहे हैं।
1: शेखर जी, अब एक आखिरी सवाल। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय निकाला और आज हमारे सभी लिसनर्स को आपने मोटिवेट किया, लेकिन जाने से पहले क्या खास मैसेज आप देकर जाना चाहेंगे इन सभी को?
2: लिटरेसी में एक प्रोग्राम है हमारा पढ़ो भारत, वो भी चल रहा है। लास्ट ईयर पढ़ो भारत 2025 था, उसमें हमने लाखों किताबें इकट्ठी करी और 1000 से ज्यादा लाइब्रेरीज इंडिया भर के अंदर में सेटअप करें। इस साल पढ़ो भारत 2026, उसके अंदर में हमने इसको कंपटीशन का रूप दे दिया है, जहां इंडिया भर की स्कूल्स इस कंपटीशन में पार्ट ले सकती हैं। उन्हें सिर्फ अपने बच्चों को बोलना है कि आप किताबें स्कूल में लाके डोनेट कीजिए। स्कूल विल डोनेट द बुक्स, इंडिया ह्यूमैनिटी फाउंडेशन विल कलेक्ट द बुक्स हर शहर के अंदर में जहां पे भी है, और वहीं से उन बुक्स से लेके हम लाइब्रेरीज बना देंगे। 51 स्कूल्स अराउंड इंडिया, जो टॉप 51 कंट्रीब्यूट करेंगी, उनका स्पेशल प्राइजेस दिए जाएंगे। 11 को कैलकटा बुलाया जाएगा फॉर इवेंट, जहां पे उनको जो विनर है उसे रोलिंग ट्रॉफी और बाकी सबको मेमेंटोज और सर्टिफिकेट्स मिलेंगे। और जो स्कूल हर 500 किताब के ऊपर में, उसके नाम पर हम एक लाइब्रेरी क्रिएट कर देंगे। अगर लेट्स से मॉडर्न स्कूल दिल्ली की है, उन्होंने 2000 किताबें दी, तो 4 लाइब्रेरीज गांवों में जाके हम उनके नाम पे, तो बाहर लिखा हुआ रहेगा स्पॉन्सर्ड बाय मॉडर्न स्कूल, जबकि स्कूल को कुछ नहीं करना पड़ा, सिर्फ बच्चे अपनी किताबें इकट्ठी कर रहे हैं और दे रहे हैं। इसके लिए उन्हें लॉग इन करना पड़ेगा। मैं आपसे भी शेयर कर दूंगा, आप नेक्स्ट प्रोग्राम में कभी आप बता दे सकते हैं। तो वही सेम इंडिया ह्यूमैनिटी फाउंडेशन की जो वेबसाइट है, उस पर जाके पढ़ो भारत सेक्शन में जाने से ही वहां पर स्कूल अपने आप को रजिस्टर कर सकती है। और अगर कोई भी वॉलंटियर करना चाहता है कि मैं गुड़गांव में, या मान लीजिए मैं चेन्नई में, आई वॉन्ट टू बी वन ऑफ द पीपल हु विल गो टू द स्कूल्स, टेल देम अबाउट इट, एंड हम उनको समझा के स्कूल के अंदर में जोड़ना चाहेंगे उन स्कूलों को इस प्रोग्राम में, तो वो वॉलंटियर कर सकते हैं एज अ सिटी लीडर। हम उनको सिटी लीडर बोलते हैं। 31 अक्टूबर तक ये प्रोग्राम चलेगा, उसके बाद में रिजल्ट्स डिक्लेयर होके नवंबर दिसंबर के अंदर में हम एक प्रोग्राम करेंगे, विनर्स को यहाँ पे बुलाएंगे। आपको भी भावना जी रिक्वेस्ट करूंगा, तब आप आइएगा
0: जरूर।
2: आखिरी मैसेज, जो पहला और आखिरी मैसेज, तो यही है कि मेरे हिसाब से ये एक यज्ञ है, यज्ञ है भारत को पूर्णतः साक्षर बनाने का। इसमें आहुति हम हर भारतीय को देनी चाहिए, या तो समय से दें, या धन से दें, या हम जोड़े लोगों को, इस बात को फैलाएं। ये बहुत जरूरी है। अगर मैं किसी स्कूल में हूं, तो एक स्कूल मान लीजिए वो शहर में है, वहां उनको आसपास में इलिटरेट नहीं मिल रहे हैं, तो वहां का शहर का एक बच्चा गांव के एक बच्चे को स्पॉन्सर नहीं कर सकता। अपने माँ बाप को जाके बोले कि मेरे तो तकदीर अच्छे थे कि मैं इस स्कूल के अंदर में हूँ, लेकिन मेरे यहाँ से 100 किलोमीटर दूर एक और बच्ची है जिसे ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, उसे किताबों की जरूरत होती है। और कई बार ये होता है कि ये एडल्ट, ये जो बच्ची है, ये जाके घर पे बोल सकते हैं कि भाई एक एडल्ट की और जिंदगी बदल जाएगी। मैं तो आज स्कूल गई हूँ, लेकिन देर इज समबडी, मेरी दादी नानी की उम्र की जो स्कूल नहीं जा पाई थी, मैं अगर एक ऐसे जन को स्पॉन्सर कर दूं थ्रू देयर पेरेंट्स नेचुरली, वो एक तरीका है। वो वॉलंटियर नहीं कर पाएंगे 60 दिन गांव में जाके, हो सकता है बैंगलोर जैसी जगह या चेन्नई जैसी जगह या दिल्ली के अंदर में मेट्रोपॉलिटन जगह में उन्हें इलिटरेट लोग ना मिले, लेकिन देश तो हमारा है, कोने में पहुंचने की जरूरत है। सो लेट अस पार्टिसिपेट, जहां जहां जो स्कूल पार्टिसिपेट कर सके, पढ़ो भारत में पार्टिसिपेट करिए, आप अक्षर ज्योति प्रोग्राम में जरूर से पार्टिसिपेट करिए, और जो खुद ना पार्टिसिपेट कर सके वो हमारी वेबसाइट पर जाइए, देखिए आप कहाँ जुड़ना चाहते हैं, जरूर जुड़िए, समय से धन से, लेकिन जुड़िए जरूर। मैंने कहा यज्ञ है, आहुति हम सबको देनी है।
1: बहुत ही खूबसूरत सा संदेश। और दोस्तों, अगर आप मुझे रेडियो पर सुन रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारे ब्रॉडकास्ट एरिया में जहां कहीं पर भी आप हैं, आप इनके साथ जुड़ सकते हैं। और अगर आप मुझे इंटरनेट रेडियो के जरिए सुन रहे हैं, तो विश्व भर में आप मुझे सुन पा रहे हैं, और आप इस देश के किसी भी कोने में हैं। अगर आप एक भारतीय हैं, तो न सिर्फ ये भाषा आपके करीब है, लेकिन साथ के साथ ये देश भी आपके दिल के करीब है। सो आप भी आगे आ सकते हैं और आप भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। बस मैं तो यही कहूंगी कि अपनी मानवता को हमेशा जिंदा रखिए। वक्त है आप सभी से इजाजत लेने का, लेकिन आपसे इजाजत लेते हुए वादा कर देती हूँ अगले हफ्ते होगी मेरी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए आप कहीं नहीं जाने वाले हैं, आप जुड़े रहने वाले हैं रेडियो मानव रेस्टा 107.8 FM के साथ। आज का ये जो खूबसूरत सा सफर था हमने तय किया इंडिया ह्यूमैनिटी फाउंडेशन के साथ। फिलहाल मुझे यानी आरजे भावना को दीजिए इजाजत। फील गुड, फील लाइव।

0: मशहूर हो जाए।
1: जो देश अपनी धरती को नष्ट करता है वो खुद बाखुद नष्ट हो जाता है। जंगल हमारी धरती के लिए बेहद जरूरी हैं, क्योंकि ये जंगल हवा को शुद्ध और ताजा बनाकर हम लोगों को नई शक्ति देते हैं। रेडियो मानव रचना 107.8 का संदेश, पर्यावरण की रक्षा, दुनिया की सुरक्षा, दुनिया की सुरक्षा।
2: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं यादों की डायरी प्रियंका के साथ, और आज की हमारी कहानी है काली सलवार, जिसे लिखा है सादत हसन मंटो ने।
3: दिल्ली आने से पहले वो अंबाला छावनी में थी, जहां कई गोरे उसके ग्राहक थे। इन गोरों से मिलने जुलने की वजह से वो अंग्रेजी के 10-15 शब्द सीख गई थी। इनको वो आम बातचीत में इस्तेमाल नहीं करती थी, लेकिन जब वो दिल्ली में आई और उसका कारोबार ना चला, तो एक दिन उसने अपनी पड़ोसन तमंचा चांद से कहा, दिस लाइफ वेरी बैड, यानी ये जिंदगी बहुत बुरी है जिसमें खाने को ही नहीं मिलता। अंबाला छावनी में उसका धंधा बहुत अच्छा चलता था। छावनी के गोरे शराब पीकर उसके पास आ जाते थे। वो 3-4 घंटे में ही 8-10 गोरों को निपटा कर 20-30 रुपए पैदा कर लिया करती थी। अगर वो उससे कुछ रियायत चाहते तो वो सिर हिलाकर कह दिया करती थी, साहब हमारी समझ में तुम्हारी बात नहीं आती। और अगर वो उससे जरूरत से ज्यादा छेड़छाड़ करते तो वो उनको अपनी जुबान में गालियां देना शुरू कर देती। वो हैरत में उसके मुंह की तरफ देखते तो वो उनसे कहती, साहब तुम एकदम उल्लू का पट्टा है, समझा। ये कहते वक्त अपने लहजे में गुस्सा न लाती, बल्कि बड़े प्यार से उनके साथ बातें करती। यहाँ दिल्ली में जब वो आई थी, एक भी गोरा उसके घर नहीं आया था। 3 महीने उसको हिंदुस्तान के शहर में रहते हो गए थे, जहाँ उसने सुना था कि बड़े लाट साहब रहते हैं जो गर्मियों में शिमला चले जाते हैं। मगर सिर्फ 6 आदमी उसके पास आए थे, सिर्फ 6, यानी महीने में 2। और इन 6 ग्राहकों से उसने, खुदा झूठ ना बुलवाए, तो 18.5 रुपए वसूल किए थे। 3 रुपए से ज्यादा पर कोई मानता ही नहीं था। सुल्ताना ने इनमें से 5 आदमियों को अपना रेट 10 रुपए बताया था, मगर ताज्जुब की बात है, इनमें से हर एक ने यही कहा, भाई हम 3 रुपए से 1 कौड़ी ज्यादा नहीं देंगे। न जाने क्या बात थी कि इनमें से हर एक ने उसे 3 रुपए के काबिल समझा। चुनांचे जब 6ठा आदमी आया तो उसने खुद उससे कहा, देखो मैं 3 रुपए 1 टाइम के लूंगी, इससे 1 धेला तुम कहो तो मैं ना लूंगी, अब तुम्हारी मर्जी, रहना है तो रहो वरना जाओ। 6ठे आदमी ने ये सुनकर तकरार ना की और उसके यहाँ ठहर गया। जब दूसरे कमरे में वो दरवाजा बंद करके अपना कोट उतारने लगा तो सुल्ताना ने कहा, लाइए 1 रुपया दूध का। उसने 1 रुपया तो न दिया, लेकिन नए बादशाह की चमकती हुई अठन्नी जेब में से निकाल कर उसको दे दी, और सुल्ताना ने भी चुपचाप ले ली कि चलो जो आया गनीमत है। 18.5 रुपए 3 महीने में, 20 रुपए महीना तो इस कोठे का किराया था, जिसको मकान मालिक अंग्रेजी भाषा में फ्लैट कहता था। इस फ्लैट में ऐसा पखाना था जिसमें जंजीर खींचने से सारी गंदगी पानी के जोर से एकदम नल में नीचे गायब हो जाती थी, और बड़ा शोर होता था। शुरू शुरू में तो शोर ने उसे बहुत डराया था। पहले दिन जब वो शौच जाने के लिए उस पखाने में गई तो उसकी कमर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। फारिग होने के बाद जब वो उठने लगी तो उसने लटके हुए जंजीर का सहारा ले लिया। उस जंजीर को देखकर उसने ख्याल किया, चूंकि ये खास लोगों की रहने की जगह है, इसलिए ये जंजीर लगाई गई होगी कि उठते वक्त तकलीफ ना हो और सहारा मिल जाए। मगर जैसे ही उसने जंजीर को पकड़कर उठना चाहा, ऊपर खटखट की आवाज हुई और फिर एकदम पानी इस शोर के साथ बाहर निकला कि डर के मारे उसके मुंह से चीख निकल गई। खुदा बख्श कमरे में अपना फोटोग्राफी का सामान ठीक कर रहा था और साफ बोतलों में हाइड्रोकोलीन डाल रहा था कि उसने सुल्ताना से पूछा, क्या हुआ, ये चीख तुम्हारी थी? सुल्ताना का दिल धड़क रहा था। उसने कहा, ये मुआ पैखाना है या क्या है? बीच में ये रेलगाड़ी की तरह जंजीर क्यों लटका रखी है? मेरी कमर में दर्द था। मैंने कहा चलो इसका सहारा ले लूंगी, पर इस मुई जंजीर को छेड़ना था कि वो धमाका हुआ कि मैं तुमसे क्या कहूँ। इस पर खुदा बख्श बहुत हंसा और उसने सुल्ताना को उस पैखाने के बारे में सब कुछ बता दिया था कि ये नए फैशन का है जिसमें जंजीर हिलाने पर सब गंदगी जमीन के नीचे धस जाती है। खुदा बख्श और सुल्ताना आपस में कैसे मिले ये एक लंबी कहानी है। खुदा बख्श रावल पिंडी का था। एंट्रेंस पास करने के बाद उसने लॉरी चलाना सीखा। चुनांचे 4 साल तक वो रावल पिंडी और कश्मीर के बीच लॉरी चलाने का काम करता था। इसके बाद कश्मीर में उसकी दोस्ती एक औरत से हो गई। उसको भगाकर वो लाहौर ले आया। लाहौर में चूंकि उसको कोई काम ना मिला तो इसलिए उसने अपनी औरत को पेशे पर बैठा दिया। 2-3 साल तक ये सिलसिला जारी रहा और फिर वो औरत किसी और के साथ भाग गई। खुदा बख्श को मालूम हुआ कि वो अम्बाला में है। वो उसकी तलाश में अम्बाला आया जहाँ उसको सुल्ताना मिल गई। सुल्ताना ने उसको पसंद किया, चुनांचे दोनों का संबंध हो गया। खुदा बख्श के आने से सुल्ताना का कारोबार एकदम चमक उठा। औरत चूंकि अंधविश्वासी थी इसलिए उसने समझा कि खुदा बख्श बड़ा लक्की है जिसके आने से इतनी तरक्की हो गई। चुनांचे इस विश्वास ने खुदा बख्श की अहमियत उसकी नजर में और बढ़ा दी। यहाँ वो गोरों की फोटो खींचता रहता। 1 महीने के अंदर अंदर उसकी छावनी में बहुत से गोरों से जान पहचान हो गई। चुनांचे वो सुल्ताना को वहीं ले गया। यहाँ छावनी में खुदा बख्श के जरिए कई गोरे सुल्ताना के पक्के हो गए और उसकी आमदनी भी दुगनी हो गई। सुल्ताना ने कानों के लिए बूंदे खरीदे, 5.5 तोले की 8 कंगड़ियां भी बनवा ली, 10-15 अच्छी अच्छी साड़ियां भी जमा कर ली। घर में फर्नीचर वगैरह भी आ गया। कुल मिलाकर अम्बाला छावनी में वो बड़ी खुशहाल थी। मगर एकाएक न जाने खुदा बख्श के दिल में क्या समाई कि उसने दिल्ली जाने की ठान ली। सुल्ताना इनकार कैसे करती जबकि खुदा बख्श को अपने लिए बड़ा लकी समझती थी। उसने खुशी खुशी दिल्ली जाना कबूल किया। सोचा कि इतने बड़े शहर में जहाँ लाट साहब रहते हैं उसका धंधा और भी चलेगा। चुनांचे जल्दी जल्दी घर का भारी सामान बेच बाज कर वो खुदा बख्श के साथ दिल्ली आ गई। यहाँ पहुँच कर खुदा बख्श ने 20 रुपये पर एक छोटा सा फ्लैट ले लिया जिसमें वो रहने लगे। एक ही किस्म के नए मकानों की लंबी सी कतार सड़क के साथ साथ चली गई थी। म्यूनिसिपल कमेटी ने शहर का एक भाग खास वेश्याओं के लिए रख दिया था ताकि वो शहर में जगह जगह अड्डे ना बनाए। नीचे दुकानें थी और ऊपर 2 मंजिला रिहायशी फ्लैट। चूंकि सब इमारतें एक ही डिजाइन की थी इसलिए शुरू शुरू में सुल्ताना को अपना फ्लैट तलाशने में बड़ी मुश्किल होती थी, पर जब नीचे लॉन्ड्री वाले ने अपना बोर्ड घर की पेशानी पर लगा दिया तो उसको एक पक्की निशानी मिल गई। बोर्ड पर लिखा था, यहाँ मैले कपड़ों की धुलाई की जाती है। ये बोर्ड पढ़ते ही वो अपना फ्लैट तलाश लिया करती थी। इस तरह उसने बहुत सी निशानियां कायम कर ली थी। मसलन बड़े बड़े अक्षरों में जहाँ कोयले की दुकान लिखा था वहीं उसकी सहेली हीराबाई रहती थी जो कभी रेडियो घर में गाने जाया करती थी। जहाँ यात्रियों के खाने का सारा इंतजाम है लिखा था वहीं उसकी दूसरी सहेली मुख्तार रहती थी। पलंग के कारखाने के ऊपर अनवरी रहती थी जो उस कारखाने के सेठ के पास नौकर थी। चूंकि सेठ साहब को रात के वक्त अपने कारखाने की देखभाल करनी होती थी इसलिए वो अनवरी के पास ही रहते थे। दुकान खोलते ही ग्राहक थोड़ी आते हैं। चुनांचे जब 1 महीना तक सुल्ताना बेकार रही तो उसने यही सोचकर अपने दिल को तसल्ली दी, पर जब 2 महीने गुजर गए और कोई आदमी उसके कोठे पर न आया तो उसे बहुत चिंता हुई। उसने खुदा बख्श से कहा, क्या बात है खुदा बख्श, हमें आए आज पूरे 2 महीने हो गए, किसी ने इधर का रुख नहीं किया। मानते हो आजकल बाजार बहुत मंदा है, पर इतना मंदा भी तो नहीं कि महीने भर में कोई शक्ल ही देखने ना आए। खुदा बख्श को भी ये बात बहुत अरसे से खटक रही थी मगर वो खामोश था। वो इसके आगे कुछ कहने ही वाला था कि सीढ़ियों पर किसी के चढ़ने की आवाज आई। खुदा बख्श और सुल्ताना दोनों ने इस आवाज की तरफ ध्यान दिया। थोड़ी देर के बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। खुदा बख्श ने लपक कर दरवाजा खोला। एक आदमी अंदर दाखिल हुआ। ये पहला ग्राहक था जिससे 3 रुपये में सौदा तय हुआ। उसके बाद 5 और आए यानी 3 महीने में 6, जिनसे सुल्ताना ने 18.5 रुपये वसूल किए। 20 रुपये महीना तो फ्लैट के किराए में ही चले जाते थे, पानी का टैक्स और बिजली का बिल अलग था, इसके अलावा घर के दूसरे खर्चे थे, खाना पीना, कपड़े लत्ते, दवा दारू और आमदनी कुछ भी नहीं थी। 18.5 रुपए 3 महीने में आए तो उसे आमदनी तो नहीं कह सकते। सुल्ताना परेशान हो गई। 5.5 तोले की 8 कंगनियां जो उसने अंबाले में बनवाई थी आहिस्ता आहिस्ता बिक गई। आखिरी कंगनी की जब बारी आई तो उसने खुदा बख्श से कहा, तुम मेरी सुनो और चलो अंबाले में, यहाँ क्या धरा है भाई। होंगे यहाँ लाट साहब, पर हमें तो ये शहर रास नहीं आया। तुम्हारा काम भी वहाँ खूब चलता था, चलो वहाँ चलते हैं। जो भी नुकसान हुआ उसको अपना सिर सदका समझो। लो इस कंगनी को बेच कर आओ, आज रात की गाड़ी से ही यहाँ से चल देंगे। खुदा बख्श ने कंगनी सुल्ताना के हाथ से ली और कहा, नहीं जाने मन, अंबाला अब नहीं जाएंगे, यही दिल्ली में रहकर कमाएंगे। तुम्हारी चूड़ियां सब की सब वापस आएंगी। अल्लाह पर भरोसा रखो, वो बड़ा कारसाज है, यहाँ भी वो कोई ना कोई सबब बना ही देगा। सुल्ताना चुप हो गई। चुनांचे आखिरी कंगनी भी हाथ से उतर गई। सूने हाथ लेकर उसको बहुत दुख होता था, पर क्या करती, पेट भी तो आखिर किसी काम धंधे से भरना था ना। 5 महीने गुजर गए और आमदनी खर्च के मुकाबले चौथाई से भी कुछ कम रही तो सुल्ताना की परेशानी और ज्यादा बढ़ गई। खुदा बख्श भी अब सारा सारा दिन गायब रहने लगा था। सुल्ताना को इसका भी दुख था। इसमें कोई शक नहीं कि पड़ोस में उसकी 2 मिलने वालियां मौजूद थी, उनके साथ वो अपना वक्त काट सकती थी। हर रोज उनके यहाँ जाना और घंटों बैठे रहना उसको बुरा लगता था। चुनांचे आहिस्ता आहिस्ता उसने इन सहेलियों से मिलना जुलना भी छोड़ दिया। सारा दिन वो अपने सुनसान मकान में बैठी रहती, कभी सुपारी काटती रहती, कभी पुराने फटे कपड़ों को सीती रहती और कभी बाहर बालकनी में आकर जंगले के पास खड़ी हो जाती और सामने रेलवे रोड में खड़े और चलते इंजनों की तरह घंटों बेमतलब देखती रहती। अंबाला छावनी में जब वो रहती थी तो स्टेशन के पास ही उसका मकान था, मगर वहां उसने कभी इन चीजों को ऐसी नजरों से नहीं देखा था। अब तो कभी कभी उसके दिमाग में ये ख्याल आता कि ये जो सामने रेल की पटरियों का जाल सा बिछा है और जगह जगह से भाप और धुआं उठ रहा है, बहुत सी गाड़ियां हैं जिनको चंद मोटे मोटे इंजन इधर उधर धकेलते रहते हैं। सुल्ताना को कभी कभी ये इंजन सेठ मालूम होते थे जो कभी कभी अंबाला में उसके यहाँ आया करते थे। खुदा बख्श से उसने कई बार कहा, देखो मेरे हाल पर रहम करो, यहाँ घर में रहा करो, मैं सारा दिन यहाँ बीमारों की तरह पड़ी रहती हूँ। मगर उसने हर बार सुल्ताना को ये कहकर तसल्ली दी, जाने मन, मैं बाहर कुछ कमाने की फिक्र कर रहा हूँ, अल्लाह ने चाहा तो चंद दिनों में ही बेड़ा पार हो जाएगा। पूरे 5 महीने हो गए थे मगर अभी तक ना सुल्ताना का बेड़ा पार हुआ था ना खुदा बख्श का। मुहर्रम का महीना सिर पर आ रहा था मगर सुल्ताना के पास काले कपड़े बनवाने के लिए कुछ भी नहीं था। मुख्तार ने लेडी हिमल्टन की एक नए ढंग की कमीज बनवाई, उसकी आस्तीनें काली जॉर्जेट की थी, जिसके साथ मैच करने के लिए उसके पास काली सैटन की सलवार थी जो काजल की तरह चमकती थी। अनवरी ने रेशमी जॉर्जेट की एक बड़ी उम्दा साड़ी खरीदी थी। उसने सुल्ताना से कहा था वो इसी साड़ी के नीचे सफेद बॉस्की का पेटीकोट पहनेगी क्योंकि ये नया फैशन है। इस साड़ी के साथ पहनने को अनवरी ने काली मखमल का एक जूता भी लिया था जो बड़ा नाजुक था। सुल्ताना ने जब ये तमाम चीजें देखी तो उसको इस एहसास से बहुत दुख हुआ कि वो मुहर्रम मनाने के लिए ऐसा लिबास खरीदने की हैसियत तक नहीं रखती। अनवरी और मुख्तार के पास ये लिबास देखकर जब वो घर आई तो उसका दिल बहुत दुखी था। उसे ऐसा मालूम होता था कि फोड़ा सा उसके अंदर हो गया है, घर बिल्कुल खाली था। खुदा बख्श वैसे ही हमेशा की तरह बाहर था। देर तक वो दरी पर गांव तकिया सिर के नीचे रखकर लेटी रही, पर जब उसकी गर्दन ऊंचाई की वजह से अकड़ सी गई तो उठकर बाहर बालकनी में चली गई ताकि गमगीन ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दे। बाजार में ऐसे आदमी चलने शुरू हो गए थे जो ताक झाक करने के बाद चुपचाप घर का रुख करते हैं। ऐसे ही एक आदमी ने गर्दन ऊंची करके सुल्ताना की तरफ देखा। सुल्ताना मुस्कुरा दी और उसको भूल गई क्योंकि अब सामने पटरियों पर एक इंजन आ गया था। सुल्ताना ने गौर से उसकी तरफ देखना शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता ये ख्याल उसके दिमाग में आया कि इंजन ने भी काला लिबास पहन रखा है। ये अजीबोगरीब ख्याल दिमाग में से निकालने की खातिर जब उसने सड़क की ओर देखा तो उसे वही आदमी बैलगाड़ी के पास खड़ा नजर आया जिसने उसकी तरफ ललचाई नजरों से देखा था। सुल्ताना ने उसे हाथ से इशारा किया। उस आदमी ने इधर उधर देखा और सुल्ताना से इशारों में पूछा, किधर से आऊं? सुल्ताना ने उसे रास्ता बता दिया। वो आदमी थोड़ी देर खड़ा रहा मगर फिर बड़ी फुर्ती से ऊपर चलाया। सुल्ताना ने उसे दरी पर बैठाया। जब वो बैठ गया तो उसने बातचीत शुरू करने के लिए कहा, आप ऊपर आते डर रहे थे? वो आदमी ये सुनकर मुस्कुराया, तुम्हें कैसे मालूम हुआ? डरने की बात ही क्या थी? इस पर सुल्ताना ने कहा, मैंने ये इसलिए कहा कि आप देर तक वहीं खड़े रहे और फिर कुछ सोच कर आए। वो ये सुनकर फिर मुस्कुराया, तुम्हें गलतफहमी हुई है, मैं तो ऊपर वाले फ्लैट की तरफ देख रहा था, वहां कोई औरत खड़ी अपने मर्द को ठेंगा दिखा रही थी, मुझे ये मंजर पसंद आया। फिर बालकनी में सब्ज बल्ब रोशन हुआ, मैं कुछ देर के लिए ठहर गया। सब्ज रोशनी मुझे बहुत पसंद है, आंखों को बहुत अच्छी लगती है। ये कहकर उसने कमरे का जायजा लेना शुरू किया। फिर वो उठ खड़ा हुआ। सुल्ताना ने पूछा, आप जा रहे हैं? आदमी ने जवाब दिया, नहीं, मैं तुम्हारे मकान देखना चाहता हूँ, चलो मुझे तमाम कमरे दिखाओ। चलिए। सुल्ताना ने उसको तीनों कमरे एक एक करके दिखा दिए। उस आदमी ने बिल्कुल खामोशी से उन कमरों का मुआयना किया। जब वो फिर उसी कमरे में आ गए जहां पहले बैठे थे तो उस आदमी ने कहा, मेरा नाम शंकर है। सुल्ताना ने पहली बार गौर से शंकर की तरफ देखा। वो ठीक ठाक कद मामूली शक्ल सूरत का आदमी था मगर उसकी आंखें सबसे अलग साफ शफाक थी। कभी कभी उसमें एक अजीब किस्म की चमक भी पैदा होती थी। गठीला और कसरती बदन था, खाकी रंग की गर्म पैंट पहने था, सफेद कमीज थी जिसका कॉलर गर्दन पर से ऊपर को उठा हुआ था। शंकर कुछ इस तरह दरी पर बैठा था कि मालूम होता था कि शंकर की बजाय सुल्ताना ग्राहक है। इस एहसास ने सुल्ताना को थोड़ा परेशान कर दिया, चुनांची उसने शंकर से कहा, फरमाइए। ये सुनकर वो लेट गया। मैं क्या फरमाऊं? तुम ही कुछ फरमाओ, तुम ही ने तो मुझे बुलाया है। सुल्ताना ये सुनकर चकरा गए मगर इसके बावजूद उसे बेख्तियार हंसी आ गई। आप काम क्या करते हैं? शंकर ने जवाब दिया, ये ही जो तुम करती हो। क्या तुम क्या करती हो? मैं कुछ नहीं करती। तो मैं भी कुछ नहीं करता, सुल्ताना ने भन्ना कर कहा। ये तो कोई बात ना हुई, आप कुछ ना कुछ तो जरूर करते होंगे ना? शंकर ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, तो तुम भी तो कुछ ना कुछ जरूर करती होगी। झक मारती हूँ। तो मैं भी झक मारता हूँ। तो आओ झक मारे, मैं हाजिर हूँ, मगर झक मारने के दाम मैं कभी नहीं दिया करता। होश की दवा करो, ये लंगर खाना नहीं। तो मैं भी वॉलंटियर नहीं। सुल्ताना यहाँ रुक गई। उसने पूछा, ये वॉलंटियर क्या होते हैं? जाने तुम क्या उटपटांग बातें करते हो, बोलो रहोगे? इसी शर्त पर जो मैं पहले बता चुका हूँ। सुल्ताना उठ खड़ी हुई, तो जाओ रास्ता पकड़ो। शंकर आराम से उठा, पतलून की जेबों में उसने अपने दोनों हाथ ठूंसे और जाते हुए कहा, मैं कभी कभार इस बाजार से गुजरा करता हूँ, जब भी तुम्हें जरूरत हो बुला लेना, मैं बहुत काम का आदमी हूँ। शंकर चला गया और सुल्ताना काले लिबास को भूलकर देर तक उसके बारे में सोचती रही। इस आदमी की बातों ने उसके दुख को बहुत हल्का कर दिया था। शाम को जब खुदा बख्श आया तो सुल्ताना ने उससे पूछा, तुम आज सारा दिन किधर गायब रहे? पुराने किले के पास से आ रहा हूँ, वहाँ एक बुजुर्ग कुछ दिनों से ठहरे हुए हैं, उन्हीं के पास हर रोज जाता हूँ कि हमारे दिन फिर जाए। कुछ उन्होंने तुमसे कहा? नहीं, अभी वो मेहरबान नहीं हुए, पर सुल्ताना मैं जो उनके खिदमत कर रहा हूँ वो अकारत कभी नहीं जाएगी। अल्लाह का फजल अगर शामिल हाल रहा तो जरूर वारे न्यारे हो जाएंगे। सुल्ताना के दिमाग में मुहर्रम मनाने का ख्याल समाया हुआ था। खुदा बख्श से रोनी आवाज में कहने लगी, सारा सारा दिन बाहर गायब रहते हो, मुहर्रम सिर पर आ गया है, कुछ तुमने इसकी फिक्र की कि मुझे काले कपड़े चाहिए? घर में फूटी कौड़ी नहीं, कंगनिया थी सो वो एक एक करके बिक गई, तुम ही बताओ क्या होगा? यूं फकीरों के पीछे कब तक मारे मारे फिरा करोगे? मुझे तो ऐसा दिखाई देता है कि यहाँ दिल्ली में खुदा ने हमसे मुंह मोड़ लिया है। मेरी सुनो तो आप काम शुरू कर दो, कुछ तो सहारा हो ही जाएगा। खुदा बख्श तरी पर लेट गया और कहने लगा, पर ये काम शुरू होने के लिए भी तो थोड़ा कुछ सरमाया चाहिए। सुल्ताना ने बात काट कर कहा, तुम खुदा के लिए कुछ करो, चोरी करो या डाका मारो, पर मुझे एक सलवार का कपड़ा जरूर ला दो। मेरे पास सफेद बॉस्की की कमीज है, उसको मैं काला करवा लूंगी। सफेद निनॉन का एक दुपट्टा भी मेरे पास है, वही जो तुमने मुझे दिवाली पर लाकर दिया था, ये भी कमीज के साथ रंगवा लिया जाएगा। सिर्फ सलवार की कसर है सो वो तुम किसी ना किसी तरह पैदा कर दो। देखो तुम्हें मेरी जान की कसम है, किसी ना किसी तरह जरूर ला दो, मेरा मरा मुंह देखो अगर ना लाओ। मैं कहां से लाऊं? अफीम खाने के लिए तो मेरे पास पैसे नहीं। कुछ भी करो मगर मुझे 4.5 गज काली साटन ला दो। तुम अगर चाहो तो जरूर इतने पैसा पैदा कर सकते हो। जंग से पहले ये साटन 12-14 आने गज मिल जाती थी, अब 1.25 गज के हिसाब से मिलती है। 4.5 गजों पर कितने रुपए खर्च हो जाएंगे? अब तुम कहती हो तो मैं हीला करूंगा। ये कहकर खुदा बख्श उठा, चलो अब इन बातों को भूल जाओ, मैं होटल से खाना ले आऊं। होटल से खाना आया, दोनों ने मिलकर निपटाया और सो गए। सुबह हुई, खुदा बख्श पुराने किले वाले फकीर के पास चला गया और सुल्ताना अकेली रह गई। कुछ देर लेटी रही, कुछ देर सोती रही, इधर उधर कमरों में टहलती रही। दोपहर का खाना खाने के बाद उसने अपना सफेद निनॉन का दुपट्टा और सफेद बॉस्की की कमीज निकाली और नीचे लॉन्ड्री वाले को रंगने के लिए दे आई। कपड़े धोने के अलावा वहां रंगने का काम भी किया जाता था। ये काम करने के बाद उसने वापस आकर फिल्मों की किताब पढ़ी, जिसमें उसकी देखी हुई फिल्मों की कहानी और गीत छपे हुए थे। ये किताब पढ़ते पढ़ते वो सो गई। जब उठी तो 4 बज चुके थे, क्योंकि धूप आंगन में मोरी के पास पहुंच चुकी थी। नहा धोकर फ्री हुई तो गर्म चादर ओढ़कर बालकनी में आ खड़ी हुई। तकरीबन 1 घंटा सुल्ताना बालकनी में खड़ी रही। अब शाम हो गई थी, बत्तियां रोशन हो रही थी, नीचे सड़क पर रोशन के आसार नजर आने लगे थे। सर्दी थोड़ी सी ज्यादा हो गई थी मगर सुल्ताना को ये नागवार महसूस ना हुई। वो सड़क पर आते जाते टांगों और मोटरों की तरफ एक अरसे से देख रही थी। अचानक उसे शंकर नजर आया। मकान के नीचे पहुंचकर उसने गर्दन ऊंची की और सुल्ताना की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। सुल्ताना ने गैर इरादी तौर पर हाथ का इशारा किया और उसे ऊपर बुलवा लिया। शंकर ऊपर आया तो सुल्ताना बहुत परेशान हुई कि उससे क्या कहे। दरअसल उसने ऐसे ही बिना सोचे समझे इशारा कर दिया था। शंकर भी ऊपर चला आया।

0: शर्तें? सुल्ताना ने हंसकर कहा, क्या निकाह कर रहे हो मुझसे?
1: निकाह और शादी कैसी?
0: ना तुम उम्र भर किसी से निकाह करोगी ना मैं। ये रस्में हम लोगों के लिए नहीं। छोड़ दो इन फिजूल की बातों को, कोई काम की बात करो।
1: बोलो क्या बात करूं?
0: तुम औरत हो, कोई ऐसी बात शुरू करो जिससे दो घड़ी दिल बहल जाए। इस दुनिया में सिर्फ दुकानदारी नहीं, कुछ और भी है।
1: साफ साफ कहो, तुम मुझसे क्या चाहते हो?
0: जो दूसरे चाहते हैं। शंकर उठकर बैठ गया।
1: तुम में और दूसरों में फिर क्या फर्क रहा?
0: तुम में और मुझ में कोई फर्क नहीं, उनमें और मुझ में जमीन आसमान का फर्क है। ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जो पूछनी नहीं चाहिए।
1: सुल्ताना ने थोड़ी देर तक शंकर की इस बात को समझने की कोशिश की, फिर कहा, मैं समझ गई हूँ।
0: तो कहो क्या इरादा है?
1: तुम जीते मैं हारी, पर मैं कहती हूँ आज तक किसी ने ऐसी बात कबूल ना की होगी।
0: तुम गलत कहती हो। इस मोहल्ले में तुम्हें ऐसी सादा लो औरतें भी मिल जाएंगी जो कभी यकीन नहीं करेगी कि औरत ऐसी जिल्लत कबूल कर सकती है जो तुम बगैर किसी एहसान के कबूल करती रही हो। लेकिन इनके ना यकीन करने के बावजूद तुम हजारों की तादाद में हो। तुम्हारा नाम सुल्ताना है ना?
1: हाँ सुल्ताना ही है।
0: शंकर उठ खड़ा हुआ और हंसने लगा। मेरा नाम शंकर है। ये नाम भी उटपटांग होते हैं। चलो आओ अंदर चले। शंकर और सुल्ताना दरी वाले कमरे में वापस आए तो दोनों हंस रहे थे, न जाने किस बात पर। जब शंकर जाने लगा तो सुल्ताना ने कहा, शंकर मेरी एक बात मानोगे?
1: शंकर ने जवाब में कहा, पहले बात बताओ।
0: सुल्ताना कुछ झेप सी गई। तुम कहोगे कि मैं दाम वसूल करना चाहती हूँ, मगर
1: कहो कहो रुक क्यों गई हो?
0: सुल्ताना ने हिम्मत से काम लेकर कहा, बात यह है कि मुहर्रम आ रहा है, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि काली सलवार बनवा सकूं। यहाँ के सारे बखेड़े तो मुझसे सुन ही चुके हो। कमीज और दुपट्टा मेरे पास मौजूद है जो मैंने आज रंगवाने के लिए दे दिया है। शंकर ने यह सुनकर कहा,
1: तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूं जिससे तुम काली सलवार बनवा सको?
0: नहीं, मेरा मतलब यह है कि अगर हो सके तो तुम मुझे काली सलवार बनवा दो। मेरी जेब में तो इत्तेफाक से ही कुछ होता है। बहरहाल मैं कोशिश करूंगा। मुहर्रम की पहली तारीख को तुम्हें ये सलवार मिल जाएगी।
1: लो बस अब खुश हो गई।
0: सुल्ताना के बूंदों की तरफ देखकर शंकर ने पूछा, क्या ये बूंदे तुम मुझे दे सकते हो?
1: सुल्ताना ने हंसकर कहा, तुम इनका क्या करोगे, चांदी के मामूली बूंदे हैं, ज्यादा से ज्यादा 5 रुपए के होंगे।
0: इस पर शंकर ने कहा, मैंने तुमसे बूंदे मांगे हैं, इनकी कीमत नहीं पूछी।
1: बोलो देती हो?
0: ले लो। ये कहकर सुल्ताना ने बूंदे उतार कर शंकर को दे दिए। सुल्ताना को कतई यकीन नहीं था कि शंकर अपना वादा पूरा करेगा, मगर 8 रोज के बाद मुहर्रम की पहली तारीख को सुबह 9 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। सुल्ताना ने दरवाजा खोला तो शंकर खड़ा था। अखबार में लिपटी हुई चीज उसने सुल्ताना को दी और कहा, साटन की काली सलवार है, देख लेना, शायद लंबी हो।
1: अच्छा अब मैं चलता हूँ।
0: शंकर सलवार देकर चला गया और कोई बात उसने सुल्ताना से ना की। उसकी पतलून में शिकने पड़ी हुई थी, बाल बिखरे हुए थे। ऐसा महसूस होता था कि अभी अभी सोकर उठा है और सीधा इधर ही चलाया है। सुल्ताना ने कागज खोला। साटन की काली सलवार थी, ऐसी ही जैसी वो अनवरी के पास देख कर आई थी। सुल्ताना बहुत खुश हुई। बूंदों और इस सौदे का जो अफसोस उसे हुआ था, इस सलवार ने और शंकर के वादे निभाने ने उसे दूर कर दिया था। दोपहर को वो नीचे लॉन्ड्री वाले से अपनी रंगी हुई कमीज और दुपट्टा लेकर आई। तीनों काले कपड़े जब उसने पहन लिए तो दरवाजे पर दस्तक हुई। सुल्ताना ने दरवाजा खोला तो अनवरी दाखिल हुई। उसने सुल्ताना के तीनों कपड़ों की तरफ देखा और कहा, कमीज और दुपट्टा तो रंगा हुआ महसूस होता है, पर हाँ ये सलवार नहीं है।
1: कब बनवाई?
0: सुल्ताना ने जवाब दिया, आज ही दर्जी से लाई हूँ। ये कहते हुए उसकी नजरें अनवरी के कानों पर पड़ी।
1: ये बूंदे तुमने कहाँ से लिए हैं?
0: अनवरी ने जवाब दिया, आज ही मंगवाए हैं। इसके बाद

0: रेडियो 107.8 FM पर ढेर सारी मस्ती, खूब सारा फन, क्योंकि ये है फरीदाबाद का रेडियो नंबर वन।
1: हेलो फरीदाबाद, स्वागत है आपका आपके अपने रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, और मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजी स्नेहा, और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। जी हाँ, सक्सेस मंत्रा एक ऐसा प्रोग्राम जहाँ पर हम लेकर आते हैं उन लोगों की कहानियाँ जिन्होंने सिर्फ अपने करियर में सिर्फ कहीं तो सक्सेस ही अचीव नहीं की है, बल्कि अपने काम से पूरे देश की तस्वीर बदलने में भी कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। जी हाँ, कुछ लोगों की कहानियाँ ऐसी होती है ना कि हमें भी मोटिवेट करती है कि हम भी अपनी लाइफ में कुछ करें, और ऐसी ही कुछ कहानियां, कुछ ऐसी जर्नी आपके लिए लेकर आ जाते हैं हम हर हफ्ते। और दोस्तों, हम सब ने ना एक ऐसी चीज है जिसका यूज करा होगा और नाम सुना होगा, वो है दिल्ली मेट्रो। जी हाँ, दिल्ली मेट्रो में ट्रेवल तो जरूर किया होगा आप सभी ने, ऑफिस जाना हो, कॉलेज जाना हो, या फिर सिटी में कहीं भी जाना हो। मेट्रो ने हमारी लाइफ को बहुत ईजी बना दिया है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि इंडिया में जो मेट्रो एक सक्सेसफुल पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उस सिस्टम को बनाने के पीछे कौन से लोग रहे होंगे? आज के एपिसोड में हम उन्हीं की बात करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर ई श्रीधरन की, जिन्हें हम प्यार से मेट्रो मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ, डॉक्टर ई श्रीधरन एक इंजीनियर थे, लेकिन उनकी आइडेंटिटी सिर्फ एक इंजीनियर थे की लिमिटेड नहीं थी, बल्कि उन्होंने इंडियन रेलवे में अपने करियर की शुरुआत की और धीरे धीरे ऐसे प्रोजेक्ट्स का हिस्सा भी बने जो अपने टाइम पर बहुत चैलेंजिंग माने जाते थे। जी हाँ, उनका करियर हमें एक इम्पोर्टेंट बात सिखाता है कि सक्सेस सिर्फ टैलेंट से नहीं, बल्कि उसके लिए डिसिप्लिन, ऑनेस्टी, टाइम की वैल्यू और अपने काम के प्रति डेडिकेशन भी जरूरी होता है। जी हाँ, और आज हम उनकी पूरी जर्नी को स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। हम जानेंगे कि उन्होंने इंडियन रेलवे में क्या इंपॉर्टेंट काम किया है, पंबन ब्रिज जैसे चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स में उनका क्या रोल रहा है, और फिर कैसे कोंकण रेलवे जैसे इतने बड़े प्रोजेक्ट्स को रियलिटी में बनाने में उन्होंने कैसे लीडरशिप दी अपनी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात हम करने वाले हैं कि दिल्ली मेट्रो की एक ऐसे प्रोजेक्ट जिसने दिल्ली की पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया। लेकिन दोस्तों, ये एपिसोड सिर्फ एक इंजीनियर की अचीवमेंट्स की लिस्ट ही नहीं है, बल्कि ये एक ऐसे इंसान की स्टोरी है जिन्होंने हमें ये दिखाया है कि अगर प्लानिंग आपकी क्लियर हो और टीम आपकी स्ट्रांग हो और कमिटमेंट आपकी जेन्युइन होना, तो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट प्रोजेक्ट भी कम्प्लीट किया जा सकता है। तो आपको क्या करना है, आपको बने रहना है सक्सेस मंत्रा के साथ, यानी कि सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ, क्योंकि हम ना आज बहुत सारी बातें करने वाले हैं। उसी के साथ ही आपके लिए लेकर आ गई हूँ बहुत ही प्यारे प्यारे से गाने भी, तो बहुत सारी चीजें जानेंगे, बहुत सी चीजें समझेंगे और बहुत सी चीजों को अपनी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश भी करेंगे। और इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM, feel good, feel like.

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूँ आरजी सिंह आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। जी हाँ, और आज सक्सेस मंत्रा की इस कड़ी में हम चल रहे हैं मेट्रो मैन ऑफ इंडिया के साथ। जी हाँ, डॉक्टर ई श्रीधरन की जर्नी के साथ आज हम चल रहे हैं। पिछले सेगमेंट में हमने शुरू किया कि इंडिया के फेमस मेट्रो मैन के बारे में जाना। हमने जाना कि उनकी जर्नी सिर्फ एक इंजीनियर की जर्नी नहीं है, बल्कि डेडिकेशन, डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबिलिटी की एक इंस्पायरिंग स्टोरी थी। अब चलिए उनके करियर के स्टार्टिंग फेज में चलते हैं। डॉक्टर ई श्रीधरन ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई को कंप्लीट किया और उसे कंप्लीट करने के बाद इंडियन रेलवे को ज्वाइन कर लिया। रेलवे इंजीनियरिंग का काम ऑलरेडी बहुत ही चैलेंजिंग था, लेकिन उनके करियर का एक प्रोजेक्ट ऐसा था जहाँ उन्हें बहुत कम टाइम में एक बहुत डिफिकल्ट चैलेंज हैंडल करना पड़ा, और ये प्रोजेक्ट था पंबन ब्रिज का। तमिलनाडु में पंबन ब्रिज एक इम्पोर्टेंट रेलवे कनेक्शन था जो कि रामेश्वर आइसलैंड को मेनलैंड से कनेक्ट करता था। 1964 में एक पावरफुल साइक्लोन की वजह से ही रेलवे ब्रिज बहुत बुरी तरह से डैमेज हो गया। जो ट्रेन की कनेक्टिविटी थी वो भी इससे डिस्टर्ब हो गई, और ऐसे सिचुएशन में बहुत ज्यादा सीरियस उस टाइम पे हो गया था। इस डिफिकल्ट सिचुएशन में डॉक्टर श्रीधरन को ब्रिज को रिपेयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। जी हाँ, सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये थी कि उनके पास इस काम को करने के लिए बहुत ही लिमिटेड टाइम था। उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर चैलेंजिंग कंडीशन में काम किया और ब्रिज को एक्सपेक्टेड टाइम से पहले ही रिस्टोर करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। दोस्तों, यहीं से हमें उनकी वर्किंग स्टाइल का एक इंपॉर्टेंट पार्ट समझने को मिलता है कि प्रेशर में पैनिक नहीं बल्कि प्लानिंग और एग्जीक्यूशन पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। पंबन ब्रिज प्रोजेक्ट ने उन्हें सिर्फ टेक्निकल एक्सपीरियंस ही नहीं दिया बल्कि लीडरशिप और डिसीजन मेकिंग की भी वैल्यूएबल एक्सपीरियंस है, और यही एक्सपीरियंस आगे चलकर उन्हें करियर में बहुत काम भी आया। जी हाँ, इंडियन रेलवे में काम करते हुए उन्होंने डिफरेंट रेलवे प्रोजेक्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी हैंडल किया। हर प्रोजेक्ट के साथ उनका एक्सपीरियंस और लीडरशिप स्किल स्ट्रांग होती गई। उनकी जर्नी हमें एक सिंपल सा सक्सेस मंत्रा भी देती है, और वो ये है कि जब आपको डिफिकल्ट सिचुएशन मिले तो उसे प्रॉब्लम समझकर रुकना नहीं चाहिए बल्कि उसे अपॉर्चुनिटी समझकर सॉल्यूशन को ढूंढना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, करियर में चैलेंजेस आना बहुत नॉर्मल है। डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि कोई चैलेंज देखकर पीछे हट जाता है और कोई उसे चैलेंज को अपनी नेक्स्ट अचीवमेंट बनाकर आगे बढ़ता है। और डॉक्टर श्रीधरन ने बार बार दूसरा ऑप्शन ही चूज किया, लेकिन उनकी जर्नी में अभी और भी बड़े चैलेंजेस आने वाले थे। जी हाँ, एक ऐसा रेलवे प्रोजेक्ट जो इंडिया का सबसे ज्यादा मुश्किल काम होने वाला था और एक मुश्किल घड़ी से गुजरने वाली थी उनकी जर्नी। तो दोस्तों, उस प्रोजेक्ट का क्या नाम था, कहाँ पर वो काम हुआ, इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन आपको क्या करना है, आपको बने रहना है रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूं आरजे स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। जी हां, एक ऐसा प्रोग्राम जो लेकर आता है आपके लिए अलग अलग जर्नी और ऐसे लोगों की लाइफ की जर्नी जो आपको मोटिवेट करते हैं आगे बढ़ने के लिए, आपको अपनी लाइफ से इंस्पायर करते हैं। और दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आज इस जर्नी में डॉक्टर ई श्रीधरन के बारे में, उनकी करियर के बारे में जान रहे हैं, उनकी जर्नी के बारे में जान रहे हैं। और अब तक हमने उनके करियर की स्टार्टिंग फेज और पेम्बन ब्रिज जैसे प्रोजेक्ट के बारे में भी जाना, लेकिन उनके करियर का एक बहुत ही बड़ा चैप्टर अभी बाकी है। जी हाँ, और वो है कोंकण रेलवे। जी हाँ दोस्तों, कोंकण रेलवे सिर्फ एक रेलवे लाइन ही नहीं थी, बल्कि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसे कम्प्लीट ना इंजीनियरिंग के साथ साथ पेशेंस, प्लानिंग और स्ट्रॉन्ग लीडरशिप का भी टेस्ट था। कोंकण रेलवे ने महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका के डिफिकल्ट कोस्टल टेरेन को रेलवे नेटवर्क से कनेक्ट करने का काम किया। इस रूट में माउंटेन्स, डीप वैलीज, रिवर्स और चैलेंजिंग जियोग्राफिकल कंडीशंस भी थी, इसी वजह से रेलवे ट्रैक बनाना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था। 1990s के बिगनिंग में डॉक्टर ई श्रीधरन को कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड का फर्स्ट मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया। उनके सामने एक ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और एक डिफिकल्ट टेरेन में रेलवे प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करना। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये थी कि इस प्रोजेक्ट में हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर का रेलवे रूट डेवलप करना था, जिसमें न्यूमेरस ब्रिज और टनल्स भी बनाने थे। और ऐसे प्रोजेक्ट में सिर्फ टेक्नोलॉजी काफी नहीं होती है, बल्कि टीम को एक क्लियर डायरेक्शन भी चाहिए होती है। डेडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है और हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना पड़ता है। डॉक्टर श्रीधरन ने प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए स्ट्रॉन्ग प्लानिंग की और टीम वर्क पर पूरा फोकस किया। उन्होंने इंजीनियर्स और वर्कर के साथ लार्ज टीम के साथ मिलकर चैलेंजिंग कंडीशन में काम किया। कोंकण रेलवे के कंस्ट्रक्शन के दौरान उन्होंने टनल और ब्रिज बनाना मेजर चैलेंजेस था, लेकिन टीम ने टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एक्सपर्टीज और डिटेल प्लानिंग का यूज करके डिफिकल्टीज को ओवरकम कर दिया। ये प्रोजेक्ट इंडियन रेलवे इंजीनियरिंग के लिए एक मेजर अचीवमेंट बना और डॉक्टर श्रीधरन की रेपुटेशन एक एफिशिएंट प्रोजेक्ट लीडर के रूप में और ज्यादा स्ट्रांग हो गई। दोस्तों, यहाँ से ना हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मिलती है जो हमें सक्सेस मंत्र मिलता है कि बड़े गोल्स को ना अचीव करने के लिए सिर्फ बड़े सपने नहीं, बल्कि आपकी बड़ी प्लानिंग ही काम आती है। और अगर गोल बड़ा है तो प्रॉब्लम भी बड़ी होगी, लेकिन अगर आपकी टीम स्ट्रांग हो, प्लानिंग आपकी क्लियर हो और लीडर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे ना हटे, तो डिफिकल्ट प्रोजेक्ट्स भी पॉसिबल बन सकते हैं। और कोंकण रेलवे के बाद डॉक्टर श्रीधरन के करियर में एक और प्रोजेक्ट आया जिसने उन्हें पूरे देश में एक बड़ा नाम बना कर दिया। जी हाँ, मैं जिसकी बात कर रही हूँ वो है दिल्ली मेट्रो की। जी हाँ, दिल्ली मेट्रो की प्रोजेक्ट के बारे में भी बात करेंगे, पर अभी वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। आप जुड़े रहिए, सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील

स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, और मैं हूँ आपकी होस्ट आपकी दोस्त आरजे स्नेहा, और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। और आज सक्सेस मंत्रा में हम बात कर रहे हैं मेट्रोमैन की, मेट्रोमैन ऑफ इंडिया की आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर ई श्रीधरन के बारे में। और दोस्तों पिछले सेगमेंट में हमने बात की कौन कौन रेलवे की, जहाँ पर डॉक्टर ई श्रीधरन ने डिफिकल्ट ट्रेनिंग के बीच में भी एम्बिशन रेलवे प्रोजेक्ट को लीड किया, लेकिन उनके करियर का वो प्रोजेक्ट जिसने उन्हें पूरे देश में मेट्रोमैन ऑफ इंडिया के नाम से फेमस कर दिया वो था दिल्ली मेट्रो। जी हाँ, 1990s के एंड में दिल्ली में बढ़ती पॉपुलेशन के साथ ट्रैफिक भी बहुत बड़ा होने लगा था, इसकी प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा सामने आ रही थी। सिटी को एक रिलायबल और एफिशियंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जरूरत थी, और इसी नीड को देखते हुए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी कि DMRC के फॉर्मेशन के बाद डॉक्टर श्रीधरन को इसका मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया। उनके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था, वो था दिल्ली जैसे बड़ी सिटी में मेट्रो नेटवर्क डेवलप करना, वो भी लिमिटेड टाइम और रिसोर्सेज के साथ। डॉक्टर श्रीधरन की वर्किंग स्टाइल का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था टाइम मैनेजमेंट। जी हाँ, उन्होंने प्रोजेक्ट के डेडलाइन को बहुत सीरियसली लिया, कंस्ट्रक्शन के साथ सेफ्टी क्वालिटी और एफिशिएंसी पर भी पूरा फोकस किया। उनकी लीडरशिप में दिल्ली मेट्रो के फर्स्ट फेज का नाम सक्सेसफुली कम्प्लीट हुआ, और 2002 में दिल्ली मेट्रो की फर्स्ट ऑपरेशनल लाइन पब्लिक के लिए ओपन हुई, और ये दिल्ली के लिए एक मेजर चेंज था। मेट्रो ने लोगों को फास्ट, कंफर्टेबल और कंपैरेटिवली रिलायबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ऑप्शन दिया। धीरे धीरे दिल्ली मेट्रो का नेटवर्क एक्सपेंड होता गया और NCR के कई एरियाज में भी सिस्टम से कनेक्ट होने लगे। लेकिन दोस्तों दिल्ली मेट्रो की सक्सेस सिर्फ ट्रैक्स, ट्रेन या फिर स्टेशन की स्टोरी नहीं है, ये एक मैनेजमेंट लेसन भी है। जी हाँ, डॉक्टर श्रीधरन ने ये प्रूव कर दिया कि अगर प्रोजेक्ट में क्लियर प्लानिंग, स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस, टेक्निकल नॉलेज और अकाउंटेबल लीडरशिप हो तो एक कॉम्प्लेक्स आइडिया को ग्राउंड रियलिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है। उनकी पंक्चुअलिटी और प्रोफेशनल डिसिप्लिन की वजह से दिल्ली मेट्रो एक बेंचमार्क प्रोजेक्ट के रूप में देखा जाने लगा, और बस यही वजह है कि डॉक्टर श्रीधरन की स्टोरी इंजीनियरिंग स्टूडेंट के साथ साथ हर यंग प्रोफेशनल के लिए इम्पोर्टेंट है। सक्सेस मंत्रा नंबर 1, अपने काम की डेडलाइन को सीरियसली लो। जी हाँ, सक्सेस मंत्रा नंबर 2, क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज कभी मत करिए। और सक्सेस मंत्रा 3, लीडरशिप का मतलब सिर्फ ऑर्डर्स देना नहीं होता बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना भी होता है। लेकिन दिल्ली मेट्रो की स्टोरी यहीं पर खत्म नहीं होती है। डॉक्टर श्रीधरन ने मेट्रो के एक्सपेंशन और ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट में भी इम्पोर्टेंट रोल को कंटिन्यू किया है। अगले सेगमेंट में दिल्ली मेट्रो के कुछ और बातें भी करेंगे और अदर मेट्रो प्रोजेक्ट्स और फिर पब्लिक सर्विस के बारे में भी बात करेंगे, पर अभी वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। आप जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव। अकेली है

जो देश अपनी धरती को नष्ट करता है वो खुद ब खुद नष्ट हो जाता है। जंगल हमारी धरती के लिए बेहद जरूरी हैं, क्योंकि ये जंगल हवा को शुद्ध और ताजा बनाकर हम लोगों को नई शक्ति देते हैं। रेडियो मानव रचना 107.8 का संदेश, पर्यावरण की रक्षा, दुनिया की सुरक्षा।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूँ आरजे स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। और आज सक्सेस मंत्रा में हम बात कर रहे हैं डॉक्टर श्रीधरन की जर्नी के बारे में। डॉक्टर श्रीधरन की जर्नी के बारे में बहुत सारी चीजें जान रहे हैं हम, और साथ ही इतनी देर से हम इनके बारे में बात कर रहे हैं, पर मैं खुद भी बताते बताते ना, मैं आपको सही बताऊं, मैंने ना कुछ चीजें अपनी लाइफ में ना मैंने सोचा है कि मैं अप्लाई भी करने वाली हूँ, और वो ये है कि अपने काम से ना कभी पीछे नहीं हटना, चाहे प्रेशर कितना भी हो, पर उसे ना हमेशा ये सोचना है सॉल्यूशन निकाल कर उस पर हम काम कैसे कर सकते हैं, और अपनी डेडलाइन को हमेशा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमेशा पूरा करो। और अभी तक जैसे हमने डॉक्टर श्रीधरन की जर्नी के बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को देखा है, इंडियन रेलवे से लेकर पेमेन ब्रिज, कोंकण रेलवे और फिर दिल्ली मेट्रो तक के सफर को। लेकिन दोस्तों दिल्ली मेट्रो के बाद भी उनका कंट्रीब्यूशन खत्म नहीं हुआ। जी हाँ, दिल्ली मेट्रो को सक्सेसफुल बनाने के बाद डॉक्टर श्रीधरन ने इंडिया में अर्बन ट्रांसपोर्टेशन और मेट्रो सिस्टम को डेवलप करने के विजन से आगे बढ़ाया। जी हाँ, उनकी एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस के बेनिफिट दूसरे सिटीज के मेजर प्रोजेक्ट को भी मिल रहे थे। उन्होंने कोंकण मेट्रो के डेवलपमेंट में भी इम्पोर्टेंट एडवाइजरी रोल प्ले किया है। उनका एक्सपीरियंस प्रोजेक्ट प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और मैनेजमेंट में बहुत ही वैल्यूएबल था। लेकिन डॉक्टर श्रीधरन के पर्सनैलिटी का एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट भी था, और वो ये था कि वो सिर्फ बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए फेमस नहीं थे, बल्कि उनकी वर्किंग फिलॉसफी भी लोगों के लिए बहुत ही इंस्पिरेशन बन चुकी थी। उनके लिए पंक्चुअलिटी, ऑनेस्टी और डिसिप्लिन सिर्फ वर्ड ही नहीं थे, बल्कि ये उनके काम करने का तरीका था। दोस्तों हम अक्सर कहते हैं ना कि सक्सेस के लिए टैलेंट जरूरी होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन टैलेंट के साथ साथ अगर डिसिप्लिन नहीं है तो टैलेंट का फुल पोटेंशियल यूज नहीं हो पाता। डॉक्टर श्रीधरन की जर्नी हमें एग्जैक्टली यही समझाती है। उन्होंने अपने करियर में डिफिकल्ट प्रोजेक्ट्स को हैंडल किया है, बड़ी बड़ी टीम के साथ भी काम किया है और स्ट्रिक्ट डेडलाइन के अंदर रिजल्ट्स को डिलीवर भी करने की कोशिश की है। उनकी लीडरशिप का एक इम्पोर्टेंट लेसन है कि लीड बाय एग्जांपल। जी हाँ, अगर लीडर खुद पंक्चुअल है, रिस्पॉन्सिबल है और अपने काम को लेकर सीरियस है तो टीम पर भी वही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और एक और इम्पोर्टेंट क्वालिटी थी, वो थी सिंप्लिसिटी। जी हाँ, इतनी बड़ी अचीवमेंट्स के बाद भी डॉक्टर श्रीधरन की पब्लिक इमेज एक डिसिप्लिन्ड और सिंपल पर्सनैलिटी की रही है। उनकी स्टोरी हमें ये रिमाइंडर देती है कि डेजिग्नेशन बड़ा होना और पर्सनैलिटी का बड़ा होना दोनों अलग चीज होती है। उनके कॉन्ट्रीब्यूशन को रिकग्नाइजेशन भी मिला, उन्हें पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया, उसके बाद पद्म विभूषण जैसे प्रेस्टीजियस सिविलियन ऑनर से सम्मानित किया गया। लेकिन दोस्तों अवार्ड्स किसी जर्नी का फाइनल गोल नहीं होता है, रियल सक्सेस तब होती है जब आपके काम का बेनिफिट सोसाइटी को मिले। और डॉक्टर श्रीधरन के केस में भी उनके काम ने मिलियंस ऑफ पीपल की डेली ट्रेवल को इजियर बनाने में कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। तो आज का सक्सेस मंत्रा कि अपने करियर में सिर्फ पोजिशन अचीव करने का टारगेट मत रखिए, ऐसा काम करिए जो इम्पैक्ट आपके बाद भी लोगों को दिखे। वक्त हो गया है इसी के साथ एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, और मैं हूँ आपकी होस्ट आपकी दोस्त आरजे स्नेहा। और आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर ई श्रीधरन के बारे में। उनके बारे में आज हम बहुत सारी बातें जान रहे हैं। पिछले सेगमेंट में जैसे कि हमने जाना उनके करियर के बारे में, उनके कई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में जाना, और बहुत सारे ऐसे ब्रिजेस और बहुत सारे ऐसे रेलवे की जर्नी जानी जिन पर उन्होंने काम करा। उनकी जर्नी बहुत ही चैलेंजिंग और अचीवमेंट से भरी हुई रही है। लेकिन अब सवाल ये है कि डॉक्टर श्रीधरन की सक्सेस का एक्चुअल फॉर्मूला क्या था? आखिर ऐसी क्या क्वालिटी थी जिन्होंने उन्हें एक सक्सेसफुल इंजीनियर के साथ साथ एक एक्सपेक्टेशनल लीडर भी बना दिया? सबसे पहली क्वालिटी थी डिसिप्लिन। जी हाँ, डॉक्टर श्रीधरन के करियर में टाइम और डेडलाइन की बहुत इंपॉर्टेंस रही है। उन्होंने अपने काम को ऑर्गेनाइज्ड वे में करने की और कमिटमेंट को सीरियसली लेना और उस पर फोकस किया है। और दोस्तों, डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ सुबह जल्दी उठना या फिर रूटीन को फॉलो करना नहीं होता है, बल्कि डिसिप्लिन का रियल मीनिंग होता है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी गई है उसे ऑनेस्टली और कंसिस्टेंटली कंप्लीट करना। सेकेंड क्वालिटी है टाइम मैनेजमेंट। आज स्टूडेंट और हर यंग प्रोफेशनल के पास बहुत सारे डिस्ट्रेक्शंस है, सोशल मीडिया है, एंटरटेनमेंट है, और एंडलेस नोटिफिकेशन के बीच फोकस मेंटेन करना डिफिकल्ट हो सकता है। डॉक्टर श्रीधरन की जर्नी हमें सिखाती है कि अगर आप अपने टाइम को रिस्पेक्ट करते हैं तो आप अपने गोल को बहुत आसानी से पा सकते हैं। थर्ड है रिस्पॉन्सिबिलिटी। लीडरशिप का मतलब सिर्फ सक्सेसफुल रिजल्ट का क्रेडिट लेना नहीं होता है, बल्कि जो सिचुएशन डिफिकल्ट हो तब रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करना भी लीडरशिप है। फोर्थ है इंटीग्रिटी। अगर आप टैलेंटेड हैं, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन लोग आप पर कितना ट्रस्ट करते हैं ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोफेशनल लाइफ में ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए बहुत वैल्यूएबल होती है। और फिफ्थ है टीम वर्क। जी हाँ, कोकण रेलवे और दिल्ली मेट्रो जैसे मैसिव प्रोजेक्ट्स एक सिंगल पर्सन के एफर्ट से पॉसिबल कभी भी नहीं हो पाता। इंजीनियर्स, वर्कर्स, प्लानर्स, ऑफिशियल्स और बहुत सारे प्रोफेशनल्स ने मिलकर इस काम को पूरा किया है। और इसीलिए अगर आप स्टूडेंट है तो एक इम्पॉर्टेंट लेसन याद रखिएगा, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग अलोन। अपनी टीम को रिस्पेक्ट कीजिए, दूसरों से सीखिए, और जब अपॉर्चुनिटी मिले तो दूसरों को भी ग्रो करने में हेल्प कीजिए। दोस्तों, डॉक्टर श्रीधरन की जर्नी हमें ये बताती है कि सक्सेस का मतलब सिर्फ फेमस होना ही नहीं है, बल्कि सक्सेस का मतलब है अपने स्किल्स का यूज करके कुछ मीनिंगफुल क्रिएट करना। आप इंजीनियर हो, जर्नलिस्ट हो, आर्टिस्ट हो, एंटरप्रेन्योर हो, या किसी भी फील्ड में हो, अगर आप डिसिप्लिन, ऑनेस्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और कंसिस्टेंसी को अपनी वर्किंग स्टाइल का पार्ट बना लेते हो तो आप अपने करियर को स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन दे सकते हो। और इसी थॉट के साथ अब हम बढ़ेंगे अपने फाइनल सेगमेंट की तरफ, जहां पर हम उनके 5 पावरफुल सक्सेस मंत्रास को भी जानेंगे। पर उससे पहले लूंगी मैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। आप जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूं आरजे सिंह आपके साथ और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। और आज सक्सेस मंत्रा में हम बात कर रहे हैं डॉक्टर ई श्रीधरन की, जिन्हें हम मेट्रो मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। आज के इस पूरे एपिसोड में हमने उनकी जर्नी की ऐसी पर्सनैलिटी को जाना जिन्होंने इंजीनियरिंग को सिर्फ अपना प्रोफेशनल ही नहीं बल्कि नेशन बिल्डिंग का एक पावरफुल टूल बनाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर ई श्रीधरन की, यानी कि इंडिया के मेट्रोमैन की। पेमेंट ब्रिज से लेकर कोकन रेलवे

0: क्रिएट एन इम्पैक्ट। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर ई श्रीधरन की स्टोरी का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट शायद यही है कि उन्होंने अपनी सक्सेस को अपने तक ही लिमिटेड नहीं रखा, बल्कि उनके प्रोजेक्ट्स ने लाखों लोगों की डेली लाइफ को बहुत ही इंपैक्ट किया है। तो अगर आज आप किसी डिफिकल्ट फेज से गुजर रहे हैं या कोई बड़ा गोल अचीव करना चाहते हैं या अपने करियर को लेकर कंफ्यूज है, तो एक बात याद रखिएगा, बड़े सपनों को रियलिटी में बदलने के लिए टैलेंट के साथ डिसिप्लिन, पेशेंस और कंसिस्टेंट एक्शन भी जरूरी होता है। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजे स्नेहा, और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा ओनली ऑन रेडियो मानव रचना 107.8 FM। आज के एपिसोड से अगर आपको एक भी लेसन मिला हो तो उसे सिर्फ सुनी हुई बात बनाकर मत छोड़िएगा, बल्कि अपनी लाइफ में उसे अप्लाई भी कीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी के साथ, उनकी लाइफ की जर्नी के साथ, उनके सक्सेस मंत्रा के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप मूविंग टुवर्ड्स योर सक्सेस। और इसी के साथ मैं ले रही हूँ आपसे इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए आपको क्या करना है, आपको जुड़े रहना है रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइफ।
1: ज्वाला, समुंदर की लहरों को देखो जो बार बार हमारे करीब आकर जैसे कह रही हूँ कि आओ हमारे कंधों पे बैठ जाओ ताकि हम तुम्हें तुम्हारे देश, तुम्हारे घर ले चले। और मैं इनसे कह रहा हूं कि सिर्फ 2 दिन और, बेचारे डॉक्टर ने हमारे लिए किश्ती तैयार करवाई है जिसे हम तुम्हारे कंधों पर रखकर नाचते कूदते अपने घर चले जाएंगे।
2: और मैं ये कह रही हूँ, भगवान ने हमें नया जन्म दिया है, नई धरती, नया घर दिया है, हम क्यों ना प्यार में गुमसुम अपने सारे जन्म इसी जजीरे पे गुजार दें जहां से हमें कोई अलग ना कर सके।
1: ज्वाला, हमें कोई अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं।
2: तुम उस कमीने दीवान को नहीं जानते भारत, और मेरे सीधे साधे पिताजी को भी नहीं जानते। वहां पहुंचते ही जबरदस्ती मेरी शादी दीवान से कर दी जाएगी।
1: ऐसा कभी नहीं हो सकता ज्वाला, मेरी जिंदगी कोई मुझसे छीन नहीं सकता।
2: तो फिर एक वादा करो,
1: मेरी जान मांग लो, जान मेरी।
2: सिर्फ इतना वादा कि अपने देश पहुंचने के बाद तुम मुझे एक पल भी अपने से जुदा नहीं करोगे। इतना याद रखोगे कि राजकुमारी चित्रलेखा मर चुकी है और तुम्हारी ज्वाला जिंदा है, सिर्फ तुम्हारे लिए।
1: ज्वाला, ये मेरा वादा है।

0: सिटी का जंक्शन 107.8 FM फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन, अपना रेडियो स्टेशन,
1: मन का रेडियो बजने दे जरा।
2: सुमारू विंटेज से सारे अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।

0: ऐसी ही और सदाबहार फिल्में और गाने देखने के लिए आज ही डाउनलोड करें शिमारूमि और सब्सक्राइब करें क्लासिक पैक।
1: योर सिटी योर रेडियो, फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन, रेडियो मारुरचना 107.8 एफएम।
2: वेल हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, जय माता दी, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं हूं आरजे सागर, आया हूं लेकर के शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। इस वक्त आप लोग सुन रहे हैं रेडियो मानवश्ना 107.8 एफएम, और ये जो शो है हमारा, ये बहुत स्पेशल होता है। रीजन बीइंग, मैं हर बार ये बात आपको बोलता हूं कि एक एजुकेशनल शो के तौर पे आपको ये शो सर्व करता है। आपको प्रोसेस के बारे में पता लगता है, आपको पूरे स्टार्टअप के बारे में पता लगता है, एक स्टार्टअप कैसे शुरू होता है, इंडस्ट्री के बारे में आपको पता लगता है, आपको पता लगता है फाउंडर्स कौन है, उनका बैकग्राउंड क्या है, आपको पता लगता है कि जिस कंपनी की बात हो रही है उसने अलग क्या किया। सो आज वापस से लेकर के आए एक और शो, करेंगे डिस्कस कौन सी कंपनी है, किस इंडस्ट्री में डील करती है। सो मेनी थिंग्स आर देयर, जस्ट स्टे ट्यून्ड विद अस, क्योंकि अभी लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक। फील गुड, फील।

पुरस्कार चंदन का दिन में आज भी कितना हसीन दिखाई दे रहा है। हर तरफ बहार ही बहार छाई हुई है।

वेलकम बैक। बिना किसी देरी के अपने शो को यहाँ से हम आगे लेकर चल रहे हैं दोस्तों। मैं हूँ सागर। शो चल रहा है आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। आप लोग जुड़े हुए रेडियो मारवाष्ट 107.8 FM के साथ, फील गुड फील लाइव। तो आज की जो हमारी इंडस्ट्री है भैया, उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं पहले। मतलब कंपनी की तरफ तो बहुत बाद में हम लोग चलने वाले हैं, पहले आपको इंडस्ट्री समझाते हैं। दिस इंडस्ट्री इज इंश्योरटेक। सिंपल पॉइंट है, इंश्योरेंस प्लस टेक्नोलॉजी इक्वल्स टू इंश्योरटेक। अभी देखिए, टेक्नोलॉजी लगभग हर एक इंडस्ट्री के साथ जुड़ चुका है। अब चाहे आप फाइनेंस की बात करें, आप चाहे हेल्थ केयर की बात करें, आप चाहे फैशन की बात करें, आप चाहे मेडिकल की बात करें, हर जगह पर आपको टेक वर्ड सुनाई देता है। उसकी वजह हम सब लोग समझते हैं कि टेक्नोलॉजी की वजह से ये सारी चीज़ें जो है डिजिटलाइज हो पाई हैं। तो वैसे ही हमारी आज की जो कंपनी है वो डील करती है इंश्योरटेक में। बेसिकली इंश्योरेंस कंपनी है, लेकिन डील करती है इंश्योरेंस प्लस टेक्नोलॉजी वाले एरा में, तो इंश्योरटेक में आ जाती है। पहले इंडस्ट्री को यहाँ पर हम लोग आपको समझाएंगे बहुत अच्छे से। तो इंश्योरटेक में जो कंपनीज डील करती हैं, दीज कंपनीज आर हैविंग अ सेट ऑफ टूल्स जो यूज करते हैं सॉफ्टवेयर, डेटा ऑटोमेशन, API बोले तो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है, इनका इस्तेमाल करते हैं टू क्रिएट इंश्योरेंस, टू सेल इंश्योरेंस, टू गिव यू द सर्विसेज, टू सेटल इंश्योरेंस, ठीक है, जो ज़्यादा फास्ट हो सकता है, कॉस्ट इफेक्टिव थोड़ा होता है ये, प्लस ज़्यादा कस्टमर्स तक पहुँच सकते हो आप। इसको आप ऐसे समझिए कि एक दुकान है जो एक लोकल मार्केट में खुली हुई है, अब वो दुकान कितने लोगों तक पहुँच सकती है एक लोकल मार्केट में। हद से हद क्या होगा, वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू आप दुनिया जहां में वो खबर पहुंचा देंगे कि वहां पर एक दुकान है सबसे अच्छा सामान देती है, बट स्टिल देयर आर लिमिटेशंस। वही सेम चीज अगर वही दुकान ऑनलाइन हो जाए, वही दुकान अगर टेक्नोलॉजी के ऊपर आ जाए, किसी तरीके से ग्लोबल एक्सेस उस दुकान का मिल जाए, तो उसके कस्टमर बाई डिफॉल्ट ज्यादा बढ़ चुके होंगे। ऐसा नहीं है चीजों के ड्रॉबैक नहीं होते, हर चीज के होते हैं, लेकिन यहाँ पर फिलहाल हम इंडस्ट्री को समझ रहे हैं। और क्योंकि हम लोग इंश्योरटेक की बात कर रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी के एरा में इंश्योरेंस कैसे ऑपरेट कर रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। सो दिस इज द इंडस्ट्री, ठीक है, यहाँ पर चाहे इंश्योरेंस को सेटल करना हो, चाहे इंश्योरेंस जो है बनाना हो, बेचना हो, खरीदना हो, सब कुछ जो है डिजिटली होता है। यहाँ पर ऑटोमेटेड अंडरराइटिंग होती है विद डेटा, एम्बेडेड इंश्योरेंस होता है वाया API, ठीक है, माइक्रो जो है प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं, मोटर प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं, हेल्थ प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं, सब कुछ बेचा जाता है थ्रू एप्लीकेशंस और आई वुड से मार्केट प्लेसेस। जी हाँ, मार्केट प्लेसेस भी हैं, जैसे पॉलिसी बाजार है वो एक मार्केट प्लेस है जहाँ पर आपको सारे इंश्योरेंस मिल जाते हैं एक ही जगह पर। So this is the overview of this industry. We are addressing it. The name of this industry is InsurTech. लेंगे एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद बताएंगे आपको इंडिया में कैसे ये काम कर रहा है। लेकिन फिलहाल मजा लीजिए इन गानों को और जुड़े रहिए हमारे साथ। फील गुड फील।

वेलकम बैक। आशा करता हूँ म्यूजिकल वाइब आपको पसंद आई है। फिलहाल इसी के साथ अपने शो को आगे लेकर चलेंगे। मैं हूँ सागर। शो चल रहा है यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। पहले इंडस्ट्री को हम आपको समझा रहे हैं यहाँ पर, जो कि है इंश्योरटेक, यानी कि इंश्योरेंस एंड टेक्नोलॉजी। अभी यहाँ पर बात करेंगे इंश्योरटेक इंडिया में कैसे काम कर रहा है, मतलब करंट रियलिटी क्या है इंश्योरटेक की इंडिया में। और यहाँ पर देखिए, हम बिल्कुल ऐसी बातें करते हैं जो आपके लिए वाकई में काम आ सकती हैं, जो वाकई में आपके जीवन में कुछ मूल्य जोड़ सकती हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ग्रोथ बहुत तेजी से हो रही है, बट अभी भी हमें बात एक्सेप्ट करनी होगी कि हम अर्ली स्टेज में हैं। उसका रीजन ये है कि बहुत सारे नए नए स्टार्टअप्स जो हैं वो आए हैं और बहुत ज़्यादा पुराने नहीं हुए हैं, ठीक है। मल्टीपल रिसर्च हाउसेज हैं ऐसे जो प्रोजेक्ट करते हैं मल्टी बिलियन डॉलर ग्रोथ इन द कमिंग 5 to 10 years, ठीक है, जो मतलब लिटरली काफ़ी अच्छा खासा आपको जो है दिखाई देगा। और यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं कि जो प्रोजेक्ट्स हैं वो डबल डिजिट में कन्वर्ट होने वाले हैं। जैसे 2024 की बात करते हैं, 0.9 billion US dollars, ये एक आप कह सकते हैं कि मार्केट वैल्यू था। 2030 तक ये डबल डिजिट में हो सकता है। इससे पता लगता है कि भैया बहुत तेजी से मार्केट जो है वो ग्रो कर रही है। यहाँ पर तीन ऑपरेटिंग मॉडल जो हैं वो डोमिनेट करते हैं इंडियन मार्केट को। पहला है डिजिटल इंश्योरेंस, जिसको आप कह सकते हैं जो न्यू एज जनरल इंश्योरेंस है, जैसे एको है, डिजिट है, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स आपको ऐसे नजर आएंगे जो डिजिटली आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सेकंड जो यहाँ पर मॉडल है वो है मार्केट प्लेसेस, या फिर आप उनको एग्रीगेटर बुला सकते हैं, या फिर आप उनको ब्रोकर्स भी बुला सकते हैं। इसमें पॉलिसी बाजार बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है जिसके नाम हम सब ने सुना है। उसके बाद दूसरा नाम है रिन्यू बाय, तीसरा नाम है टर्टल मिंट, ठीक है। ये वो कह सकते हैं कि आप मॉडल्स हैं जो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मल्टीपल ब्रांड्स के जो है इंश्योरेंस दिखा सकते हैं, जिनको आप कंपेयर कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली आप उनको बाय कर सकते हैं। तीसरा यहाँ पर जो मॉडल डोमिनेट करता है वो है B2B टेक प्रोवाइडर। तो इंडिया में जो B2B टेक इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स हैं, वो आप एक तरीके से समझ सकते हैं कि एक ऐसा लैंडस्केप है जो प्राइमरीली काम करता है बाय इंश्योर टेक कंपनी, लेकिन इनका काम होता है कि टेक्नोलॉजिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म्स हैं, वो बनाना तैयार करना इंश्योरर्स के लिए। यानी कि जो इंश्योरेंस में डील करती हैं कंपनीज, जो डायरेक्ट आपको इंश्योरेंस सेल करती हैं, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, डिस्ट्रीब्यूशन के प्लेटफॉर्म तैयार करना, वो सारी चीज़ें यहाँ पर जो है ध्यान में रखी जाती हैं। मतलब ये डायरेक्ट अंडर राइटिंग नहीं करते हैं पॉलिसी।

कंपनीज की, बट जो फर्म्स हैं उनको एम्पावर करते हैं, ठीक है, बाय सिंपली यू नो सिंप्लीफाइंग देयर प्रोजेक्ट्स। जहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि रिस्क कवरी भी आपको नजर आता है, जिसमें एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म है विद API जो बैंक्स, NBFCs एंड बाकी अदर कंपनीज को इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स जो है ऑफर करता है डिजिटली। तो ये एक आप तरीके से समझ सकते हैं कि बिजनेसेस के लिए ज्यादा काम करता है, मतलब रेदर देन बीइंग डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विद अ कस्टमर जो एंड कस्टमर है उसके ऊपर ना जा करके, इंश्योरेंस कंपनीज को ये जो कैटेगरी है वो टारगेट करती है। तो ये मेजरली तीन मॉडल्स हैं जो इंडियन मार्केट में डोमिनेट करते हैं, जो मैंने अभी यहाँ पर आपको बताया। एक है डिजिटल इंश्योरेंस, दूसरा है मार्केट प्लेसेस और तीसरा है B2B टेक प्रोवाइडर्स। अब लेंगे एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद अगले पॉइंट्स की तरफ चलेंगे। फिलहाल जो हमारा पॉइंट है वो है इंडिया में जो करंट रियलिटी है इंश्योरटेक की, उसको हमने आपको समझाने की कोशिश करी थोड़ी थोड़ी। फिलहाल जुड़े रहिए हमारे साथ, खींच जाइएगा मत, फील गुड फील लाइफ।

वेलकम बैक। उम्मीद कर रहा हूँ आपकी म्यूजिकल वाइब पसंद आई। बिना किसी देरी के शो को आगे लेकर चलेंगे। मैं सागर, शो आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दोस्तों, इंडिया में जो करंट सिनेरियो है, जो करंट रियलिटी है इन शॉर्ट टेक कंपनीज की, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक हमने आपको एक ओवरव्यू दिया, मार्केट ग्रोथ बताई और जो मेन डोमिनेटिंग मॉडल्स हैं इंडिया में जो ऑपरेट करते हैं वो आपको बताए। एक और पॉइंट यहाँ पर आपको जानना होगा कि हमारे यहाँ पर रेगुलेटरी एनवायरनमेंट है जो फ्रेंडली तो है बट बहुत स्ट्रिक्ट है, जिसको हम जानते हैं IRDAI के नाम से, जो एक गवर्निंग बॉडी है, एक रेगुलेटरी बॉडी है जो सारी इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं उनको ये कह सकते हैं आपकी देखती है, उनको लुक आफ्टर करती है। इसका पूरा नाम है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एक ऐसा प्रोसेस है जो ये इंश्योर करता है किसी कस्टमर के साथ गलत ना हो और कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस यहाँ पर फॉलो ना की जाए। ठीक है, टाइम टू टाइम यहाँ से हमें गाइडलाइंस भी मिलती हैं, सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स को भी यहाँ पर डिफाइन किया जाता है। मतलब एक्सपेरिमेंटेशन अलाउड तो है बट कंप्लायंस बहुत हैवी है। डेटा सिक्योरिटी बहुत जो है अच्छे से यहाँ पर देखा जाता है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है, बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो सेलिंग इंश्योरेंस वर्सेस बीइंग अ टेक पार्टनर, ये दो अलग चीजें हो जाती हैं, लेकिन रेगुलेटरी बॉडी हमारे पास है लकीली जो इन सारी चीजों को लुक आफ्टर करती है। सो दैट्स हाउ थिंग्स आर यू नो वर्किंग इन इंडिया। प्लस फंडिंग एंड कंसोलिडेशन जो है वो भी इंडिया में अच्छा खासा हमें नजर आया है बीते कुछ सालों में। बट अगेन दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ आर डिस्कशन बिकॉज ये बहुत अलग हो जाता है। बट इतना कह सकते हैं कि इन्वेस्टर्स अभी बहुत हैं जो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। इनफैक्ट बहुत सारी फॉरेन ऐसे ब्रांड्स हैं फॉरेन के जो यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं और यहाँ के जो स्टार्टअप्स हैं उनको एम्पावर करते हैं। आइए बात करते हैं की इनसाइट्स की एंड डिमांड ड्राइवर्स की, लाइक एग्जैक्टली कौन सा वो पैटर्न है, कौन सी वो चीज़ है जो इस इंडस्ट्री को आगे लेकर के जा रहा है। देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है स्मार्टफोन प्लस डिजिटल पेमेंट एंड प्लस KYC। मतलब ये सारी चीजें मैटर करती हैं। इंश्योरेंस जब आप खरीदते हैं तो पहले हुआ करता था आपको फॉर्म भरना होता था, फिर आपको पैसे पे करने होते थे, आपको अपना जो आईडी प्रूफ है वो जमा कराना होता था। अब ऑनबोर्डिंग बहुत इजी हो गई है, लो कॉस्ट पेमेंट जो है यहाँ पर आपको दिखाई देती है, स्मॉल टिकट्स जो है वो आप यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से इंश्योरेंस एक्सेसिबल हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दिस आप अपने फोन से खरीद सकते हैं, आपके पास फोन है, एक इंटरनेट का कनेक्शन आपके पास है, दैट्स ऑल यू नीड। आधार हमारे पास, ई आधार जैसी ऑप्शंस अभी अवेलेबल हैं, प्लस हम सबके पास इतना होता है कि हम ऑनलाइन जाकर के महज कुछ बॉक्सेस जो हैं वो हमें टिक करने होते हैं, इन्फॉर्मेशन डालनी होती है, एंड वी आर डन। तो ये एक आपको मेजर समझना होगा कि डिमांड ड्राइवर है। सेकंड है, एम्बेडेड इंश्योरेंस इज ह्यूज। ट्रैवल, ई कॉमर्स, मोबिलिटी एंड जो फिनटेक प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी दोस्तों कंटेक्चुअल जो इंश्योरेंस है वो बेच सकते हैं एट पॉइंट ऑफ नीड। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि मल्टीपल पार्टनरशिप्स आपको मिल जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा, आपने बस की टिकट बुक करी है, अब बस की टिकट के साथ वो 10 रुपए या 20 रुपए एक्स्ट्रा लेते हैं और वहां पर आपको एक इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं आपकी ट्रैवल जो जर्नी है उसके लिए। होता है ना ऐसे, ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसी बहुत सारी और चीजें हैं। तो ये क्या हुआ, एक और पार्टनर हमने वहां पर जोड़ लिया। तो ऐसे करके ज्यादा तेजी से वो जो है एक तरीके से आप समझ सकते हैं मल्टीप्लाई हुई है ये मार्केट इंडिया में, क्योंकि मल्टीपल पार्टनर्स आ गए हैं अभी हमारे पास। सो दैट्स हाउ थिंग्स आर वर्किंग। वक्त एक और म्यूजिकल ब्रेक का, उसके बाद फर्दर और कुछ की इनसाइट्स और डिमांड ड्राइवर्स हैं जो हम आपको बताएंगे, लेकिन ये सब बातें होंगी इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद। जुड़े रहिए हमारे साथ, फील गुड फील लाइफ।

वेलकम बैक। मेरा नाम सागर, शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। आप लोग जुड़े हुए रेडियो मार्वस्टर 107.8 एफएम के साथ। दोस्तों, हम यहां पर इंश्योर टेक जो इंडस्ट्री है उसको आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें अगला पॉइंट आता है डेटा एंड मशीन लर्निंग, जो एक और की ड्राइवर के तौर पर आप उसको समझ सकते हैं। स्टार्टअप्स जो हैं अभी डेटा यूज करते हैं और

टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं, जब भी कोई टेक प्लेटफॉर्म बनाया जाता है, वहां पर डेटा, मशीन लर्निंग, इन चीजों का ही मेन रोल होता है, जिसकी बदौलत ये प्लेटफॉर्म्स जो हैं खड़े हो पाते हैं और लोगों की प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर पाते हैं। सो या दैट इज अनदर थिंग। बट हाँ, यहाँ पर यह है कि एडवांटेज है तो एट द सेम टाइम डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि डेटा प्राइवेसी को लेकर बहुत सारे कंसर्न्स भी बने होते हैं। आपने देखा होगा, एक इंश्योरेंस कंपनी को अगर आप कॉल करेंगे तो आपके पास 4-5 इंश्योरेंस कंपनीज की तरफ से कॉल आने शुरू हो जाते हैं। सो इट शोज कि हमारा डाटा कैसे ट्रेवल होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कस्टमर ट्रस्ट एंड क्लेम एक्सपीरियंस। ठीक है, जो एक और इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब मार्केट में वो प्लेयर रुकेगा जो कस्टमर के ट्रस्ट को गेन करेगा, और जब क्लेम की बारी आएगी तो वहां पर क्लेम जो है टाइमली प्रोसेस कर दिया जाएगा, बेवजह उसको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, सारे ग्राउंड चेक किए जाएंगे। इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी टीम कितनी स्ट्रांग है, कितना आप जो है वहां पर बैकएंड पर काम करके चल रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर बैड हैंडलिंग जो है वो अफोर्ड नहीं की जा सकती है किसी भी कंपनी के द्वारा, क्योंकि अगेन मैं पहले ही बात बताई थी कि हमारे पास IRDA है जो पूरे इंश्योरेंस को रेगुलेट करती है, गवर्निंग बॉडी है हमारे पास। सो देर आर मल्टीपल थिंग्स, मतलब इंश्योरेंस में ओम्बड्समैन होता है जिनको आप रीच आउट कर सकते हैं अगर कोई चीज़ ऐसी प्रॉब्लमेटिक है जो आपको तंग कर रही है, या आपको लग रहा है कि आपके राइट्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, यू कैन गो टू ओम्बड्समैन। वहां से आप सेटिस्फाई नहीं है, यू कैन गो टू IRDA। सो देर आर प्रोसेसेस जो यहाँ पर बनाए गए हैं इसलिए कि चीजें स्मूथली यहाँ पर रन कर पाए। इसलिए कस्टमर का ट्रस्ट गेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और सही तरीके से हैंडल करना ये बहुत जरूरी है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को टॉलरेट नहीं किया जाता है। रेगुलेशन शेप्स प्रोडक्ट चॉइसेस, जो भी इंश्योरर्स को लाइसेंस मिलता है, ठीक है, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस है या वो हेल्थ इंश्योरेंस है, वहाँ पर कैपिटल की ज़रूरत होती है, टाइम की ज़रूरत होती है। बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो सक्सीड हुए हैं एज डिस्ट्रीब्यूशन, एज ब्रोकिंग, एज टैक्स सर्विस, जो बहुत अलग अलग तरीके से आपको नज़र आती हैं चीज़ें, कि मल्टीपल कैटेगरीज में इंश्योरेंस कंपनीज डील करती हैं। मतलब ये बहुत टेक्निकल हो जाता है, बट अल्टीमेटली डिपेंड्स कि आपके पास कैपिटल कितनी है, कितना टाइम है, क्या क्या प्रोडक्ट आप बना रहे हैं। वो अच्छी बात ये है कि अभी इतनी सारी हमने वर्टिकल्स बना दिए हैं, इतनी सारी चीज़ें आ गई हैं बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, तो छोटे लेवल पर भी प्लेयर जो है ऑपरेट कर सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि आपको बहुत बड़ा एक ऐसा ही ब्रांड ओपन करना है जो इंश्योरेंस ही कवर कर रहा है, आप एक ऐसा ब्रांड भी ओपन कर सकते हैं जो मार्केट प्लेस के तौर पर सर्व कर रहा है, या जो एक ब्रोकरेज फर्म है जो यहाँ पर वाजिब एक बिजनेस है। ऑल डिपेंड्स कि आपके पास कितना कैपिटल है। सो या वो है कि एक लाइसेंस मिलता है, उसके बाद एक जो कंपनी है वो यहाँ पर काम कर सकती है। वक्त एक और म्यूजिकल ब्रेक का, स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।

चाहता हूँ आपको ये गाने पसंद आए। फिलहाल इसी के साथ शो को आगे लेकर चलेंगे। मैं हूँ सागर। शो चल रहा है यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत, और जो हमारी आज की इंडस्ट्री है वो है इंश्योरटेक, जिसको यहाँ पर समझ रहे हैं। अभी तक हमने बात करी दोस्तों कि क्या है ये इंश्योरटेक, कैसे काम कर रहा है इंडिया में, की इनसाइट्स क्या है, डिमांड ड्राइवर्स क्या है। आइए बात करते हैं एक प्रैक्टिकल रोड मैप की, जो अगर आप अपना कुछ स्टार्ट करने का सोच रहे हैं सो इट माइट हेल्प यू आउट। तो यहाँ पर जो है भैया 12 से 18 महीने का एक जो है प्लान बनाना होगा फॉर अ स्टार्टअप, अगर आप इंडिया में इंश्योरेंस में कोई अपना ब्रांड ओपन करना चाहते हैं। और यहाँ पर एक बहुत स्मॉल फाउंडिंग टीम को जो है हम यहाँ पर अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। आपके पास लिमिटेड इनिशियल फंडिंग है, और उसके बाद क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे फेजेज आते हैं वो मैं समझा रहा हूँ। लेकिन पहले ही मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये कोई गारंटेड रोड मैप नहीं है, ये बस एक रेफरेंस के तौर पर है टू गिव यू मोर क्लैरिटी, मोर स्पेसिफिक क्लैरिटी ऑन दिस पार्ट, कि अगर आपको अपना कुछ स्टार्ट करना है सो हाउ कैन यू एंटर इन दिस इंडस्ट्री। पहला है चूज योर बिजनेस मॉडल। आपको डिजिटल इंश्योरर बनना है, आपको B2C एग्रीगेटर बनना है, मार्केट प्लेस बनना है, या ब्रोकर बनना है जो बहुत फास्टली आप लॉन्च कर सकते हैं, कमीशंस के द्वारा जो है आपको यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट होता है। फिर है B2B2C टेक API प्रोवाइडर, जिसको आप IaaS के तौर पे जानते हैं, यानी कि इंश्योरेंस एज अ सर्विस, जो है प्लेटफॉर्म्स बनाता है, तैयार करता है नए जो स्टार्टअप्स होते हैं उनके लिए, जो हमने पहले बात भी करी थी, ठीक है। या फिर आप एक एम्बेडेड प्रोडक्ट पार्टनर के तौर पर भी यहाँ पर आ सकते हैं, अगर स्पीड चाहिए आपको, आपको मॉडरेट रेगुलेटरी बर्डन चाहिए। कुल मिलाकर के भैया बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे वर्टिकल्स हैं। लेकिन एक चीज यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ, एक जो एक ब्रूटल ऑनेस्ट चीज है यहाँ पर, वो ये है कि अगर आपके पास कैपिटल नहीं है और कोई भी रेगुलेटर एक्सपीरियंस नहीं है तो एज अ इंश्योरेंस आपको स्टार्ट नहीं करना चाहिए, स्टार्ट एज B2B और एग्रीगेटर, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो पहला जो काम है आपका वो है प्रॉब्लम वैलिडेशन एंड कस्टमर डिस्कवरी। एक आपको टाइट वर्टिकल और चैनल को जो है समझना होगा, उसको आइडेंटिफाई करना होगा, जैसे माइक्रो हेल्थ इंश्योरेंस फॉर गिग वर्कर्स जो अभी नहीं है एग्जैक्टली, ठीक है। यूज्ड कार मार्केट प्लेसेस में बहुत ज्यादा वो नहीं हुई है अभी कि उनका इंश्योरेंस कैसे होगा, तो ऐसी बहुत सारी और चीजें हैं जो अभी कवर की जानी है, ठीक है। ट्रेवल इंश्योरेंस जिसको और अच्छे से जो है कवर किया जा सकता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको आइडेंटिफाई करनी होगी कि किस प्रॉब्लम को आप टारगेट कर रहे हो। सेकंड आता है फिर टेक्निकल कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होंगी, प्लस जो लीगल डिजाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक मिनिमल प्रोडक्ट आपको बनाना होगा, चेकआउट फ्लो जिसमें बहुत आसान होगा, कोर्ट इंजन जो है बहुत ईजी होगा, यूजर इंटरफेस बहुत आसान होगी, कोई भी इंसान अगर आए तो वो ईजिली खुद से नेविगेट उसको कर पाए। पॉलिसी डॉक्यूमेंट जनरेटर जो है वो आपको यहाँ पर क्रिएट करना होगा, एक बैकएंड पर प्रोसेस आपको बनाना होगा जो डायरेक्ट कस्टमर का डाटा लेगा और जनरेट कर देगा उसके लिए पॉलिसी क्या ठीक रहेगी, ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। आपको टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो ड्राफ्ट करनी होंगी, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ताकि कंप्लायंस इश्यूज ना हो यहाँ पर, और IRDA जो है वो आपको तंग ना करे, इसके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि IRDA का काम ये है कि अच्छे से यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी जो है ऑपरेट करें, ये देखना। उसके बाद आता है रेगुलेटरी सैंडबॉक्स इफ एप्लीकेबल, जहाँ पर आपको जो है क्लेम की फ्री

टाइम टू सेटलमेंट, वो टेक्निकल चीजें हो जाती है, उसकी तरफ ना जाए तो ही बेटर है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है स्केल डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑटोमेट ऑपरेशंस। आपको अंडरराइटिंग को ऑटोमेट करना होगा जहां पर पॉसिबल हो सकता है, जैसे मशीन लर्निंग है, पेमेंट्स को आपको इंटीग्रेट करना होगा, आपको KYC के ऊपर जो है मास्टरी हासिल करनी होगी, जिसकी वजह से आप इस चीज को जो है और अच्छा बना सकते हैं। उसके बाद फिर आपको फंड रेजिंग एंड ग्रोथ की तरफ जाना होगा, मतलब क्योंकि मैंने बताया कि इन्वेस्टर्स बहुत सारे हैं जिनकी तरफ आपको जाना होगा। सो इंश्योरेंस एक ऐसी कैटेगरी है दोस्तों जो बहुत टेक्निकल भी है, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी है, एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा कैपिटल भी वहां पर चाहिए। सो इट इज रियली रिक्वायर्ड कि आप पहले उस इंडस्ट्री को समझें, पहले आप ढंग से उसको एक्सप्लोर करें, तभी जाकर के आप उस मार्केट में आप कह सकते हैं कि एक सक्सेसफुल तरीके से एक मॉडल को ऑपरेट कर सकते हैं। सो या दैट इज अ थिंग दैट मैटर्स, तो इसलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है। फिलहाल लेंगे एक और म्यूजिकल ब्रेक और उसके बाद फाइनली बात करेंगे आज के ब्रांड की। कहीं जाइएगा मत, जुड़े रहिए हमारे साथ। फील गुड, फील लाइव।

फील गुड फील लाइव। उम्मीद कर रहा हूँ आपको अभी तक इंडस्ट्री समझ आ गई है। लेट्स टॉक अबाउट द कंपनी। फाइनली जो आज की हमारी कंपनी है वो है आर्टिवेटिक। आर्टिवेटिक.ai इसका पूरा नाम है। ओके, ये अपने आप में बहुत खास हो जाती है क्योंकि इंश्योर टेक में डील करती है, हेल्थ टेक में डील करती है। इन दो सेगमेंट्स को आप मर्ज कर सकते हैं यहाँ पर। सो बेसिकली व्हाट दिस कंपनी डज, दिस कंपनी इज सिंपली यूजिंग AI, मशीन लर्निंग एंड डेटा, और यहाँ पर ये इंश्योरेंस प्रोसेस को जो है ऑटोमेट करते हैं। सो बेसिकली इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो इंश्योरर्स की हेल्प करता है विद अंडरराइटिंग, रिस्क असेसमेंट, क्लेम्स, फ्रॉड डिटेक्शन, कस्टमर ऑनबोर्डिंग एंड पर्सनलाइज्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। सो इन सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं, आर्टिवेटिक एक आप कह सकते हो एक ऐसी कंपनी है जो ये कोशिश कर रही है टू मेक इंश्योरेंस फास्टर, स्मार्टर एंड लेस डिपेंडेंट ऑन मैनुअल पेपर वर्क। अच्छा, ये काम कैसे करता है? सिंपल सा तरीका है, जब आप इंश्योरेंस कोई खरीदने जाते हो तो उसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे प्रोसेस हैं जो इन्वॉल्व होते हैं। आपको इंश्योरेंस मिलेगा किस ग्राउंड पे आपको मिलेगा? आप बोलते हो कि मेरे को 5 करोड़ रुपए का सम अश्योर्ड चाहिए, तो देखा जाएगा कि आप उतना प्रीमियम पे कर सकते हो, कोई फ्रॉड वाला एंगल तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है मल्टीपल कंपनी से आपका इंश्योरेंस चल रहा हो और आप यहाँ पर आ गए हैं। तो ये तमाम चीजें डिटेक्ट की जाती हैं, इसके लिए प्रोसेस होता है। फिर अंडरराइटिंग होती है, रिस्क मैनेजमेंट होता है, देखा जाता है कि कितना रिस्क है। लेट्स से एक इंसान है स्मोकर है और एक इंसान है नॉन स्मोकर है, अब दोनों का रिस्क असेसमेंट बहुत अलग तरीके से किया जाएगा। ये तमाम चीजें जो है बैकएंड प्रोसेस का पार्ट होती है। तो ये जो कंपनी है जिसकी आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आर्टिवेटिक, ये AI टूल बना दी है, जो AI टूल हेल्प करता है इंश्योरेंस की कि वो इन तमाम चीजों को विदाउट रिलाइंग ऑन मैनुअल वर्क वो असेस कर सके। हालांकि बहुत सारे डेटा की वहाँ पर जरूरत होती है, बट द बॉटम लाइन इज की दैट दिस कंपनी इज हेल्पिंग अदर कंपनीज इन यू नो इशूइंग इंश्योरेंस एंड असेसिंग द रिस्क एंड डूइंग द अंडरराइटिंग पार्ट एंड डिटेक्टिंग द फ्रॉड्स एंड जस्ट हेल्पिंग कस्टमर्स इन प्रोसेसिंग विद द क्लेम्स। दैट इज द ओवरव्यू। फिलहाल लेंगे एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।

feel good, feel live. Okay, what was the idea behind it? Artivatic start hui thi 2017 mein. Operation 2017 mein start hua tha. Isko start kiya tha Layak Singh and Puneet Tandon ne. इन दो फाउंडर्स को जो है ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट करते थे बिफोर आर्टिवेटिक. इनका एक्सपीरियंस रहा है अच्छा खासा, एक्सपेरिमेंटल काफ़ी जो है ये लोग रहे हैं. इनका इनसाइट बहुत सटीक था कि इंश्योरेंस में ना बहुत ज़्यादा स्लो वर्क है, बहुत ज़्यादा मैनुअल वर्क है, ह्यूमन डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा प्रोसेस जो है वहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं. सो दे बिलीव्ड इन दिस थिंग कि AI जो है बड़े डेटाबेस को एनालाइज कर सकता है, इवेल्युएट कर सकता है, डिसीजंस फास्ट जो है लिया जा सकता है, ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ लिया जा सकता है. सो द कंपनी इनिशियली एक्सप्लोर डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ इट्स टेक्नोलॉजी, बट इवेंचुअली उन्होंने इंश्योरेंस में लेकर के आ गए और इंश्योरेंस में अच्छा काम कर रही है कंपनी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फाउंडर्स, जो नाम मैं यहाँ पर आपको बता चुका हूँ, Layak Singh एंड Puneet Tandon. Layak Singh इज एन IIT खड़गपुर एलुमनस और एक सीरियल एंटरप्रेन्योर हैं. बिफोर आर्टिवेटिक उन्होंने काफ़ी वेंचर्स जो हैं वो बिल्ड किए, जिसमें एजुकेशन, लाइफस्टाइल, डेटिंग एंड एक कॉगशियो बहुत फेमस एक प्लेटफॉर्म है जो इनका एक अच्छा खासा आप कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस रहा है जहाँ पर. दूसरा नाम है Puneet Tandon. Puneet का बैकग्राउंड रहा है टेक का और प्रोडक्ट का. Puneet ये बैकग्राउंड लेकर के आते हैं. इनका भी मल्टीपल जो है कंपनीज के साथ एक्सपीरियंस रहा है, जैसे कि स्कॉलास्टिक एंड मैग्नासॉफ्ट एंड कॉगजियो, साथ साथ MS फ्रॉम न्यू जर्सी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी. प्रीवियस स्टार्टअप इन्होंने आप कह सकते हैं कि दोनों का ही अच्छा खासा यहाँ पर काम आया, जहाँ पर प्रीवियस स्टार्टअप से इनको जो एक्सपीरियंस मिला, जो एजुकेशन मिली, जो लर्निंग्स इनकी रही वहाँ पर. तो ये चीज़ें हैं इनकी जो यहाँ तक लेकर के आई और इस कंपनी को स्टार्ट किया. तो बॉटम लाइन ये है कि कोई भी चीज़ आप आज कर रहे हो वो आपकी कभी वेस्ट नहीं होगी, कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपके काम वो चीज़ ज़रूर आएगी, जो यहाँ पर इस केस में भी हम लोग देख पा रहे हैं कि इन दोनों ने अलग अलग जगहों पर काम किया, डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स में काम किया, बहुत ही अलग अलग एक्सपीरियंसेस रहे एंड एग्जैक्टली वो सब आकर के काम आया इनकी इस कंपनी में, विच इज़ आर्टिवेटिक. आप मुझे बताइए कोई इसमें आपको डाउट है या कुछ पूछना चाहते हैं तो 8010781078 पर. फिलहाल लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात करेंगे. स्टे ट्यून्ड.

गुड फील लाइव। मैं सागर, शो चल रहा है पर आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की। दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं जिस कंपनी की, उसका नाम है आर्टिवेटिक। और यहाँ पर अभी तक हमने जाना है कंपनी के ओवरव्यू के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में हमने जाना है, फाउंडर्स के बारे में, उनके बैकग्राउंड के बारे में, ये कंपनी अलग क्या करती है या इस कंपनी ने अलग से क्या किया। तो ओवरव्यू में हालांकि मैं बात क्लैरिफाई कर चुका हूँ, बट स्टिल ट्रेडिशनली जो चीज़ें होती थी, जो इंश्योरेंस हम लोग इशू करते थे, उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा होता था, इंसानों के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी थी। सो बेसिकली मेडिकल रिकॉर्ड्स को चेक करना, KYC करना, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट्स, क्लेम हिस्ट्री, तमाम जो डेटा सेट है उसको एक सॉफ्टवेयर में कंपाइल किया जाता है, वहाँ पर फिर उसको कंपाइल करके रिस्क डिसाइड किया जाता है। आर्टिवर्टिक ने जो है ये चीज़ थोड़ी सी अलग तरीके से करी। उन्होंने बेसिकली सारे प्रोसेस को कंपाइल करके एक AI टूल बनाया। हालांकि ओवरनाइट नहीं हुआ है, मैं ये भी कहूंगा कि बहुत सारे प्रोसेस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ होती है, क्योंकि बहुत बारीक बारीक चीज़ें होती है। जब आप इंश्योरेंस की बात करते हो, एक कस्टमर को समझना, रिस्क फैक्टर समझना कि वो कस्टमर इतना, जो उसने सम अश्योर्ड लिया है, कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली कंपनी का पॉइंट ये है कि उनको अपना रिस्क मिनिमाइज करना है। तो ये तमाम चीज़ें जो है अंडरराइटिंग का पार्ट होती है। तो आर्टिवर्टिक का जो सिस्टम है वो तमाम इंफॉर्मेशन लेकर के आता है, AI का या मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करता है, उसको एनालाइज करता है, रिस्क को स्कोर करता है, उसकी स्कोरिंग की जाती है, डिसीजंस जो है वो रेकमेंड किए जाते हैं। और इनका एक फ्लैगशिप अंडरराइटिंग प्लेटफॉर्म है जो बहुत ज़्यादा चलन में है, इंश्योरेंस कंपनीज जिसको आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं, उसका नाम है ऑसिस, AUSIS। तो यहाँ पर 1200 से ज़्यादा पैरामीटर्स हैं जिनके ऊपर जो है इवैल्यूएशन किया जाता है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स अंडरराइटिंग डिसीजन जो है विद इन 60 सेकेंड्स वहाँ पर वो दिया जाता है, 60 सेकंड के अंदर अंदर डिसीजन मेकिंग यहाँ पर कर ली जाती है और कंपनी को बता दिया जाता है वेदर यू शुड इश्यू दिस पॉलिसी और नॉट। तो बहुत उम्दा है, जिसमें कंपनीज की बहुत हेल्प होती है, क्योंकि रिस्क असेसमेंट विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन यहाँ पर हो पा रहा है। ये इस कंपनी ने किया अलग। फिलहाल लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड फील लाइव।

वेलकम बैक, मैं हूं सागर। शो चल रहा है आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की। आज की हमारी जो कंपनी है उसका नाम है आर्टिवर्टिक, और यहां पर हम अब बात करेंगे अपनी कंपनी के यूएसपी की। इस कंपनी की यूएसपी सिंपली ये नहीं हो सकती है वी यूज एआई। द रियल यूएसपी इज एआई पावर्ड इंश्योरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, और इन दो चीजों में बहुत फर्क है। एआई को आप बहुत वेग तरीके से समझ सकते हैं, ब्रॉड कैटेगरी के तौर पर समझ सकते हैं, लेकिन एआई पावर्ड इंश्योरेंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, क्योंकि बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिनको एवेल्युएट करना, जहां पर मॉड्यूलर एपीआई बेस्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, किसी भी कंपनी के एग्जिस्टिंग सिस्टम के साथ जो है उसको अलाइन करना, और सब कुछ स्क्रैच से रीबिल्ड करना। इसमें मल्टीपल स्टेजेस जो है उनको कवर किया जाता है, जैसे कि प्रोडक्ट डिजाइन, डिस्ट्रीब्यूशन, अंडरराइटिंग, क्लेम्स, फ्रॉड एंड सर्विसिंग। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। अगर आप कभी किसी इंश्योरेंस कंपनी के ऑफिस में एंटर करेंगे, जो हेड ऑफिस होता है, तो आपको समझ में आएगा कि हर एक डिपार्टमेंट में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं विद इन अ डिपार्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अंडरराइटिंग में भी मल्टीपल होते हैं। एक मेडिकल अंडरराइटिंग होता है, एक नॉन मेडिकल अंडरराइटिंग होता है, फाइनेंशियल अंडरराइटिंग होता है। तो ये तमाम चीजें अंडरराइटिंग में आती हैं, लेकिन इतने सारे प्रोसेस होते हैं, सबको ब्रेकडाउन किया जाता है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन होता है, प्रोडक्ट डिजाइनिंग जो बहुत क्रूशियल पार्ट होता है, एक्चुअरीज एक डिपार्टमेंट होता है जो एक इंश्योरेंस पॉलिसी डिजाइन करता है, जिसमें सारी चीजें देखी जाती हैं कि इंश्योरेंस पॉलिसी जो है बनानी चाहिए नहीं बनानी चाहिए, रिस्क फैक्टर क्या होगा, किसको कैटर करेंगे, किसको टारगेट करेंगे, बेनिफिट्स क्या होंगे, व्हाट इफ दिस गोज रॉन्ग, व्हाट इफ दिस गोज इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, अगर पॉलिसी कंपनी के लिए घाटा लेकर के आई तो क्या होगा। तो ये तमाम चीजें एक्चुअरीज में आती है, जहां पर रिस्क इवैल्यूएशन किया जाता है, और ये सारी चीजें हमारी जो आज की कंपनी है आर्टिवर्टिक, ये अच्छे से इसको कर पा रही है। एंड आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट यूएसपी ऑफ दिस कंपनी, कि ये तमाम चीजें अलग तरीके से कर रही है। तो ये है जी इस कंपनी की यूएसपी, कि सिंपली एआई नहीं बनाया, एआई बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है जो हेल्प करता है बाकी इंश्योरेंस कंपनीज को, यू नो, पॉलिसी डिसाइड करने में, इशू करनी या नहीं करनी, रिस्क इवेल्युएट करने में, एनालाइज करने में, तमाम चीजें आती है वहां पर। दिस इज आर्टिवर्टिक फॉर यू। Let's take another musical break, then we'll continue the show. Stay tuned with us. Feel good, feel live.

मैं सागर, शो चल रहा है आत्मनिर्भर भारत कहानी कामयाबी की। अब बात करते हैं कंपनी के ग्रोथ ड्राइवर्स की। क्यों ग्रो कर रही है कंपनी? सिंपल सा तरीका है, इंश्योरेंस बहुत ज्यादा मैनुअल था तो यहाँ पर ऑटोमेशन लेकर के आ गई है कंपनी। तो एक अपॉर्चुनिटी इनको नजर आई कि इनिशियल स्टेज में, अर्ली डेज में, कि एआई कर सकता है कुछ ऐसा। यस, कर सकता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दिया, डिजिटल डेटा इनके पास है, AI could use medical, financial, behavioral and other data for risk assessment. Instant insurance की demand जो है वो ज़्यादा बढ़ने लगी है। लोगों को चाहिए personalized experience। फटाफट से हमारा insurance issue हो सकता है क्या? अब फटाफट insurance issue का मतलब है कि सारे process इतने तेज करने पड़ेंगे आपको कि manual work जो इसके पहले था traditionally उसको इतना fast करना पड़ेगा। फटाफट evaluation हो जाए, underwriting हो जाए, risk assessment हो जाए, policy designing हो जाए, एक इंसान के लिए कौन सी policy ठीक होगी, ये तमाम चीज़ें कितना जल्दी किया जा सकता है वो कंपनी जीत सकती है जो इसको एक्सेल कर लेगी। क्योंकि हम उस जमाने में जीते हैं जहाँ पर हर चीज़ क्विक कॉमर्स के थ्रू हम लोग मंगाने लग गए हैं। तो क्विक कॉमर्स के ज़माने में आप कस्टमर को ये नहीं बोल सकते हो कि आप कई महीनों तक वेट करिए या 15 दिन तक वेट करिए तब जा करके एक डिसीजन लिया जाएगा। हाँ, पहले चीज़ें चलती थी क्योंकि इतना ज़्यादा टैक हमारे पास नहीं था, बट नॉट एनी मोर। और यही बात समझ में आ गई हमारी कंपनी को, विच इज़ आर्टिवेटिक। एंड नेक्स्ट यहाँ पर आता है कि रिन्यू बाय ने, जो एक और कंपनी है इंश्योरेंस टैक में ही डील करती है, 2022 में एक्विजिशन किया, इस कंपनी का एक्वायर कर लिया। और बहुत ही स्ट्रेटेजिक था क्योंकि वो ऑलरेडी काम कर रहे थे, इंश्योरेंस में अच्छा खासा अनुभव था इनका, आर्टिवर्टिक एक बिल्कुल नया टूल आया था, तो उन दोनों का मर्जर हुआ, तो जिससे आप कह सकते हो कि और ज्यादा एम्पलीफाई हुई चीजें। तो ये है जी हमारी आज की कंपनी, इसके बारे में सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। आई मीन व्हाट एग्जैक्टली दिस कंपनी डज, क्या इन्होंने अलग किया, क्या USP है, फाउंडर्स कौन है, बैकग्राउंड क्या रहा है, स्टार्टअप स्टोरी क्या रही है, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस ग्रो ड्राइवर्स क्या है। अब आप मुझे बताइए आपको आज की ये स्टडी कैसी लगी। फिलहाल इसी नोट पर मेरा वक्त है शो को यहाँ पर कंक्लूड करने का। आशा करता हूँ शो आपको पसंद आया होगा। कोई फीडबैक है तो 8010781078 पर लिखकर मुझ तक भेज दीजिए। फिलहाल चलता हूँ, फिर लौटेंगे लेकर एक और शो, लेकिन तब तक अपना ख्याल रखिए, खैरियत से रहिए। दिस इज आरजे सागर साइनिंग ऑफ।

0: यहाँ तो नहीं आया बेटी, पुल पे होगा शायद।
1: पुल वहाँ अकेला क्या कर रहा है?
2: क्या कोई इंसान बंजर पर्वत पे हरियाली ला सकता है, वो भी बिना पैरों के? 70 साल के एक चीनी बुजुर्ग ने बीमारी में दोनों पैर गंवाने के बावजूद एक बंजर पर्वत पे 17,000 पेड़ लगाकर उसे एक हरा भरा जंगल बना दिया।
3: लेकिन हमें किसी पर्वत पर नहीं जाना है, हमें अपने आसपास पेड़ लगाना है।
4: और ये बिल्लू ने पूरी जान से बल्ला घुमा दिया और ये लगा छक्का।
5: ये क्या किया? मेरी सारी साड़ी खराब कर दी, बदतमीज कहीं का। बोल दो तेरे घर जाकर अभी तेरी मम्मी को।
6: आंटी जी, इतनी सी गलती पर हमारी मम्मी को बुलाते हो और रोज अपने कचरे से सड़क गंदी करते हो, आपकी मम्मी को बुलाएं?
7: अनजाने में की हुई गलती गलती नहीं होती, पर जानबूझकर की गई गलती के लिए अनजानापन क्यों?
8: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम में हूं दीक्षा आपके साथ। और आज हम जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात कराने वाले हैं, वो ना केवल फरीदाबाद के निवासी हैं, बल्कि फरीदाबाद हरियाणा को पूरे देश में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और रिप्रेजेंट भी ऐसे मंच पर कर रहे हैं, ऐसे काम में कर रहे हैं जिसकी बहुत बड़ी अहमियत होती है। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और साथ ही मीडिया एडवाइजर टू द CM ऑफ हरियाणा, ऑनरेबल CM ऑफ हरियाणा नायब सिंह सैनी जी के मीडिया एडवाइजर हमारे बीच में हैं आज राजीव जेटली जी, जिनको आपने बहुत सारी टीवी डिबेट्स में देखा होगा, बहुत बार इनको मुख्यमंत्री साहब के साथ देखा होगा, बहुत बार सोशल मीडिया पर चर्चाएं करते हुए देखा होगा, डिबेट्स में पार्ट लेते देखा होगा। लेकिन आज हम इनसे जो बातें करने वाले हैं वो पॉलिटिकल नहीं है, बिल्कुल भी पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई बातें नहीं करने वाले हैं। हम बातें करने वाले हैं इनके जीवन की, इनके फिटनेस की और कुछ मोटिवेशन की, वो भी युवाओं के लिए। तो बातों का सिलसिला दोस्तों जारी है, आइए मुलाकात करते हैं राजीव जेटली जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो मानव रचना में।
9: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
8: और दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, इससे पहले कि हम बहुत फॉर्मल या इनके बारे में आपको कुछ बताएं, मैं आपको ये बताते हुए बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ कि लगभग 10 से 12 साल पहले ये हमारी बहुत सी डिबेट्स और बहुत सारे डिस्कशंस का हिस्सा रहा करते थे। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि राजीव जी आज भी हमसे बात करने के लिए अलग से समय निकाल कर तुरंत आ जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।
9: माय प्लेजर, थैंक यू सो मच।
8: सो राजीव जी, बहुत सारी बातें हम एक पॉलिटिकल डिबेट की तरह नहीं करेंगे, क्योंकि हम रेडियो मानव रचना है, कम्युनिटी रेडियो है और युवाओं के साथ जुड़े हुए हैं। तो बहुत सिंपल सा सवाल जो आपसे बहुत लोगों ने पूछा होगा, लेकिन शायद हमारे श्रोताओं और दर्शकों को नहीं पता होगा, पॉलिटिक्स में आना कैसे हुआ? क्योंकि अब आपको काफी साल हो गए हैं, पर कमाल की बात यह है आप अभी भी युवा हैं।
9: नहीं नहीं, अभी युवा नहीं रह गए हम, लेकिन ये है कि पॉलिटिक्स बड़ा, कई बार मैं खुद सोचता हूँ कि मैं कैसे आया।
8: जी,
9: मुझे एक मेरे बड़े सीनियर एक ब्यूरोक्रेट थे
8: जी,
9: मतलब ही वाज IFS, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में थे, तो वो मुझे किसी एक लीडर से मिलवाने के लिए ले गए, बिकॉज वो लीडर जो है उनके जब भी वो किसी जगह पे उनकी ट्रांसफर होती थी, किसी कंट्री में होते थे
8: जी,
9: तो वो लीडर उनके घर पे रहते थे जाकर।
8: अच्छा।
9: तो उन्होंने मुझे कहा कि हम तुम्हारे को किसी से आज मिलवाते हैं, तो मैं चला गया उनके साथ रूटीन में। अच्छा, वहां जाके डिस्कशन शुरू हुई, आई वॉज प्योरली मार्केटिंग गाय, तो अब क्योंकि मार्केटिंग का था, सेल्स का था, तो बोलने की आदत थी,
8: बातचीत अच्छी हो जाती
9: थी। जब वो डिस्कशन कर रहे थे तो हमने भी अपने व्यूज देने शुरू कर दिए, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप वाइडेंट यू ज्वाइन अवर पार्टी, आप हमारी पार्टी क्यों नहीं ज्वाइन करते? और मुझे तो ये भी नहीं पता था कि पार्टी में क्या होता है, तो उन्होंने कहा हमारी, एक्सेप्ट कि मैं ज्वाइन कर लूंगा कोई बात नहीं, तो उन्होंने कहा हमारी पार्टी में कोई पद ले लो, तो बिलीव में मेरे को पद भी नहीं पता था क्या होते हैं। तो मैंने उनसे कहा जी आप क्या बनाओगे, मुझे MP बनाओगे या MLA बनाओगे? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ये नहीं, एक और पद होते हैं संगठन के
8: जी,
9: फिर वो क्या होते हैं? तो उन्होंने कहा पहले थोड़ा सीख के आओ फिर दोबारा आना। अच्छा, मैं भूल गया उस बात को। कुछ दिनों के बाद फिर उनका फोन आया कि भाई तुमने विचार किया?
8: अच्छा।
9: तो मैंने कहा जी हाँ किया। तो ऐसे करते करते किसी के रेफरेंस से मैं गया, और बस एक प्रॉब्लम है, इसको प्रॉब्लम कह लो, USP कह लो, या मेरी अच्छी बात कह लो या बुरी बात कह लो, या तो मैं कोई काम करता हूँ या करता ही नहीं।
8: अच्छा।
9: तो उसमें ऐसा हम एंगेज हुए कि सब कुछ छूटता चला गया, फिर उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते ही चले गए, और रिसर्च करनी शुरू कर दी और मेहनत करनी शुरू कर दी, बहुत धक्के भी खाए रैलीज में, या वहाँ बहुत मेहनत करी।
8: बिल्कुल।
9: तो मुझे लगता है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने खुद देखा प्रैक्टिकली कि मेरे पास तो कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी नहीं था,
10: बिल्कुल
9: मेरा कोई फैमिली पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, किसी लीडर्स का मेरे सिर पे हाथ नहीं था, तो मेरे लिए वो रास्ता था वो थोड़ा ज्यादा लंबा रहा
10: जी।
9: कि जिसे कहा जा सकता है कि कहीं पे हम एक किलोमीटर आसानी से सीधा जा सकते हैं, तो उस एक किलोमीटर के लिए मुझे 15 किलोमीटर चलना पड़ा।
10: बिल्कुल, बिल्कुल।
9: तो ये चैलेंजेस थे मेरे साथ, लेकिन मुझे कई बार ऐसा भी लगता है कि वो चैलेंज ना होते तो शायद मैं आज इतनी गहराई तक उन चीजों को सीख करके आगे ना आता, फिर आज मेरे लिए चैलेंज बन जाते। वो कहते हैं ना, सिस्टम्स आर पेनफुल बट फ्रूटफुल।
10: एब्सोल्युटली।
9: तो हमने नियम को पकड़ के रखा तो आज थोड़े से फलदायी नजर आ रहे हैं, पहले तो कष्टदायी थे, इसमें कोई डाउट नहीं है।
10: जी बिल्कुल। यानी जो रास्ता आसानी से बहुत सारे लोग ऐसे तय कर जाते हैं, जो जनरली कहा जाता है पॉलिटिक्स में, अगर आप खानदानी पॉलिटिशियन हैं तो बहुत आसानी से आप आगे बढ़ जाते।
9: थोड़ा सा नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। जिसको हम आसानी से कहते हैं, इसीलिए मैंने बोला, जिसे जो आसानी से चीज मिलती है वो बाद में जाके पेन देती है।
10: हाँ, शुरुआत में तो आपको,
9: शुरुआत में तो आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जिसमें स्ट्रगल्स ज्यादा होते हैं वो आपको बाद में जाकर बहुत मजबूती देती है। तो इसलिए आप प्रिपेयर होते हैं, आप लूज नहीं कर रहे होते कुछ भी, और आपको क्योंकि आपने वो सारे रास्ते देखे हैं और उन रास्तों पे वापस भी चलना पड़े तो आपके लिए वो नए नहीं होंगे, आपके पहचाने भी होंगे, तो आप विल बी कम्फर्टेबल ऑल द टाइम।
10: तो मुश्किल रास्तों पर चलना सबसे ज्यादा आसान हो जाता है जब आप बहुत कुछ सीख जाते हैं। अक्सर आसान रास्ते आपको काफी दूर तक नहीं ले जा पाते, लेकिन मुश्किल रास्ते आपकी दूरियां और आपकी मंजिल को और ज्यादा मजबूत बना देते हैं। दूरियां छोटी कर देते हैं लेकिन मंजिल बहुत कमाल की हो जाती है। राजीव जेटली हमारे सामने एक लाइव एग्जांपल है इस चीज का। तो दोस्तों, बातें और भी जारी रहेंगी, कुछ खास, कुछ मोटिवेटेड, कुछ पॉजिटिव बातें, लेकिन अभी वक्त एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लग रही है, ये इंटरव्यू अच्छा लग रहा है, तो जरूर अपने मैसेजेस के जरिए हमें बता सकते हैं आप अपनी राय 8010781078 पर। बातों का सिलसिला जारी रहेगा छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। मैं हूँ दीक्षा आपके साथ।

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM में दीक्षा आपके साथ। और आज हम जिनसे बात करें हैं वो है मीडिया एडवाइजर टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, साथ ही राष्ट्रीय प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, और बहुत सी अलग अलग प्लानिंग्स जो कि स्ट्रैटेजिक मीडिया प्लानिंग्स होती हैं, सरकारी कम्युनिकेशंस होते हैं, पब्लिक आउटरीच इनिशिएटिव्स होते हैं। और चीफ मिनिस्टर साहब की कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी क्या होगी, किस तरीके से वो मीडिया से रूबरू होंगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन, ये सारी प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, ये सब कुछ करते हैं राजीव जेटली जी हमारे बीच में हैं, जो कि मीडिया एडवाइजर टू द ऑनरेबल सीएम ऑफ हरियाणा हैं। और इनसे आज हम कुछ हट के बात करें, यानी राजनीति के बारे में बात नहीं करें, लेकिन हाँ राजनीति में कैसे पहुंचे ये तो इन्होंने बता दिया है, लेकिन आगे भी और भी बहुत सी बातें जान रहे हैं। राजीव जी, कोई ऐसा अनुभव, अभी आपने बताया कि आप पॉलिटिक्स में आ गए, बस आपको किसी ने परखा, शायद तराश लिया और आप यहाँ पर आ गए, क्योंकि एक जौहरी की नजर ही होती है जो हीरे को देख के समझ जाती है कि कितना चमकदार है, तो आप उस फील्ड में एंटर कर गए। लेकिन ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें वाकई बहुत स्ट्रगल होती है, शायद लोगों को लगता होगा सब कुछ प्लेटर पे आ जाता है, बट हमने देखा है क्योंकि हम मीडिया की फील्ड से हैं तो हम जानते हैं कि एक रैली के लिए बस में लोगों को ऑर्गेनाइज करके लेके जाना, उनको समझाना, और फिर उसके बाद इलेक्शंस में रातों रात भी आप सो नहीं पाते हैं, आप चलते रहते हैं, आप चाहे आप एक कंटेस्टेंट हो या ना हो, आप बिना किसी शर्त के, बिना किसी अपने कहते हैं ना स्वार्थ के, आप उस पार्टी के साथ, उस नेता के साथ चलते रहते हैं। सो ये जो स्ट्रगल होती है, ये आजकल के शायद बच्चों को, या मैं कहूंगी युवाओं को नहीं पता, उन्हें लगता है चीजें सिर्फ सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा प्रभाव दे रही है, आजकल कुछ हद तक है भी सही। सो कुछ वो स्ट्रगल के दिन हमें जरूर बताएं, कुछ ऐसा अनुभव जो आप सबके साथ शेयर करना चाहें।
1: इसमें दो बातें आती हैं, मैंने क्या स्ट्रगल किया मैं उस पर ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये मैं कई बार, ये एक जनरेशन गैप भी रहता है हमारा, हमें भी ऐसे ही बोला जाता था कि हमने कितना स्ट्रगल किया, आज तुम्हारे पास उतना नहीं है, हमारे वक्त में लाइट नहीं होती थी, हम ऐसे पढ़ते थे, हमारे वक्त में पंखे नहीं होते थे, हमारे वक्त में पानी ऐसे आता था, दिस दैट, बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं। उसके बाद जब हम आए तो हमें लगता था कि ये मेरा स्ट्रगल है, इसको वो समझ नहीं पा रहे हैं। आने वाली पीढ़ी के भी अपने अपने स्ट्रगल हैं, लेकिन हम उनसे अपना कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं, हम सोचते हैं कि ये मेरी जैसी बात क्यों नहीं कर रहा, हमें ये नहीं पता कि उसके स्ट्रगल्स किस लेवल के हैं, वो किस तरीके से उसको देख रहा है, किस तरीके से उसको फेस कर रहा है। तो हम ये जो गैप है ना, ये गैप कहीं ना कहीं पर, अच्छा पहले क्या होता था, ये ट्रांजिशन बहुत स्लो था, टेक्नोलॉजी तो आ रही थी लेकिन काफी स्लो था, तो एक सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन जो पिछली पीढ़ी गई थी और जो अगली पीढ़ी आई थी उनके बीच में सिंक्रोनाइजेशन थोड़ा अच्छा था। अभी क्या हुआ, जो पिछले 10-20 सालों में देखेंगे, 10-20 साल में नहीं, 15-1 सालों में देखेंगे, 15 सालों में इतना ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, इतनी चेंज हुआ कि हम भी हैरान हो गए कि ये क्या हो गया है। अब कई बार हम क्या कि हम अपने कुछ टेक्नोलॉजी के साथ जितनी हमें अंडरस्टैंडिंग होती है हम उसको लेकर के काम करना शुरू कर देते हैं, अपने बच्चों को देखते हैं फिर वो हमें बताते हैं, तो टेक्नोलॉजी तो बहुत दूर की बात हो गई, उनके तो वर्ड्स भी डिफरेंट है। मैं बहुत हैरान होऊंगा आपको कि मैं अपने ही बच्चों से बात करता हूँ तो मैं उनको बोलता हूँ थोड़ा धीरे बोल, समझ नहीं आ रही मुझे, क्योंकि वो कार्टून की तरह बोलते हैं, उनकी स्पीड इतनी तेज हो चुकी है, वो वीडियो देखते हैं तो फास्ट स्पीड पे देखते हैं, बोलते हैं तो फास्ट स्पीड पे बोलते हैं, तो मैं कई बार सोचता हूँ कि भाई मेरे को तेरी बात नहीं समझ आ रही, तू मेरा ही बच्चा है, मैं तेरे को ही नहीं समझ पा रहा, तो सोचो कि कितना बड़ा गैप आ चुका है हमारे बीच में, और वो आपस में समझ पा रहे हैं एक दूसरे को। तो ये एक चुनौती इसलिए हो गई क्योंकि हम अपने से बाहर निकले नहीं और वो बहुत फॉरवर्ड हो गए। तो ये आज देखिए, मैं तो आई सैल्यूट टू दिस पीपल, दिस यंग्स, क्योंकि हम जिस लेवल पे, शायद हम अपनी ग्रेजुएशन करने के बाद भी नहीं सीख पाए थे उतनी बात, कोई आपको फिफ्थ क्लास का बच्चा बता सकता है?
0: बिल्कुल,
1: जिस तरह की वोकैबुलरी उनकी है, जिस तरीके के नॉलेज उनके पास है, मुझे नहीं लगता कि हमारे दौर में शायद कोई आदमी ने किसी एक सब्जेक्ट में पीएचडी भी करी हो तो उतनी नॉलेज नहीं रखता होगा। हम कहते तो है पहले एजुकेशन हाई लेवल की, मैं नहीं मानता इस बात को। जिस लेवल पे आज बच्चे खड़े हैं, हाँ ये एक थोड़ा सा मेरे को कई बार डाउट होता है कि जिस लेवल पे वो, जिस फास्ट स्पीड से वो आगे चल रहे हैं, अपनी एज से जो आगे आगे चलते चले जा रहे हैं नॉलेज को लेकर के, वो भी कहीं ना कहीं एक बड़ी दिक्कत ना लेकर के, अगर ये, हाँ क्योंकि अगर ये ऐसा ही चलता रहा और वो अपग्रेड होते रहे तब तक तो ठीक है, लेकिन कहीं सैचुरेशन स्टेज ना आ जाए, क्योंकि सैचुरेशन स्टेज बहुत बुरी चीज होती है, जब वो आती है तो उसके बाद देखा आपने कि ये जो कई बार आपने देखा होगा कि हर आदमी जो बहुत कुछ बहुत जल्दी अचीव कर लेता है, फिर ही वांट टू गेट इनटू समथिंग न्यू, और वो न्यू जो उनसे होता है कई बार उसको दूसरे रास्ते पे ले जाता है, वो नशे में ले जाता है, क्योंकि उसको हर नई चीज एक्सपीरियंस कर रही है, तो ये नुकसान तो कई बार होते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ और ये अपनी दिशा में आगे बढ़ते चले गए। मैं अभी एक स्टोरी पढ़ रहा था एक न्यूज़पेपर में कि लिकर की सेल डाउन हो गई है, शराब की सेल कम हो गई है। तो उसके पीछे की जो वजह बताई कि अब बच्चों को नशा टेक्नोलॉजी का हो गया है, तो शराब की नशे की तरफ नहीं जा रहे हैं। तो आप ये सोचिए, इससे एक बात का अंदाजा लगता है कि इसका नशा कितना बड़ा है।
0: एब्सोल्युटली, मुझे लगता है बच्चों में क्या, आप बड़ों में देखिए। हम बुजुर्गों को देखते हैं पार्क में सुबह सैर करते हैं,
1: सुबह
0: जैसे ही वो बैठते हैं बेंच पे, सबकी जेब से फोन निकल आते हैं, चाहे वो भजन सुन रहे हो, चाहे वो कोई कथा सुन रहे हो, कुछ भी सुन रहे हो, बट एक वो नशा रहता है, आपका एडिक्शन है। आप चाहे रात को सो रहे हो, सोते सोते आप फोन देख के सोते हैं। पहले हम एक दूसरे से मिलके गुड नाइट बोल के सोते थे, अब हम फोन देख के सोते हैं और सबसे पहले फोन को उठाते हैं उठते ही। तो ये एक एडिक्शन
1: मेरे को लगता है। ये भी अच्छे के लिए, आपने देखा पीछे कई, मैंने ऐसी मूवीज देखी, आपने भी देखी होंगी, अवतार जैसी मूवीज आई, उसमें क्या प्रॉब्लम क्या होती है कि मेरे बच्चे मुझे टाइम नहीं दे रहे। असली प्रॉब्लम ये थी, और ये भी कहते थे कि भाई मुझे सब कुछ तो मिल गया लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है,
0: टाइम नहीं है,
1: ठीक है, बच्चों के पास टाइम नहीं है। आज वो इतने बिजी हैं अपने मोबाइल के साथ कि उनको लगता है कि मेरे को कोई टाइम देने वाला है। मैं आज कोई व्यक्ति अगर किसी को वेट करना है किसी के लिए, और मैं तो रेड लाइट पे देखता हूँ, ये जो सिग्नल्स पे लोग 2 मिनट के लिए गाड़ी रुकती है, 2 मिनट भी अपना मोबाइल खोल के बैठ जाते हैं कुछ देखने के लिए। तो उन्होंने पहले तो लगाया था टाइमर कि सिग्नल पे कि इतने मिनट के बाद, ताकि आदमी बोर ना हो, ही शुड बी प्रिपेयर कि इतनी देर में गाड़ी चलेगी। लेकिन अब मैंने देखा है कि कई बार लोग अपना मोबाइल खोलते हैं, उसमें लगा लेते हैं, वीडियो देख रहे होते हैं, वो ग्रीन हो जाता है, उसके बाद उनका ध्यान होता है, पीछे हॉर्न बजता है, तब जाके वो आगे चलते हैं। तो सोचिए कि कुछ चीजें तो बहुत अच्छी हो रही है, कुछ कुछ नुकसान तो होते हैं, वो कब होंगे कैसे होंगे, मुझे लगता है नहीं होना चाहिए, लेकिन जो होंगे उसके लिए भी हम तैयार रहेंगे आगे।
0: जी बिल्कुल। अब जब फोन की बात चली है तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि हम आपके बारे में भी बहुत कुछ जानना चाहते हैं, आप कितना समय फोन पे बिताते हैं, क्योंकि इतने सारे इन्फॉर्मेशन आपको जाननी है, एक शहर के बारे में नहीं, पूरे राज्य के बारे में, और कुछ मामलों में तो आपको देश के बारे में जानकारी चाहिए। और एक प्रवक्ता के तौर पर जब आप डिबेट के लिए जाते हैं, कैसी तैयारी करते हैं? क्योंकि हमने जब प्रवक्ताओं को देखा है स्क्रीन पर, एक तो गुस्सा बहुत जल्दी कर जाते हैं और दूसरी सबसे कमाल की चीज ये होती है, हर एक चीज के बारे में बहुत जानकारी होती है, मतलब आपको पढ़ना पड़ता है, तैयारी करनी पड़ती है। बट जब आप इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी के साथ रहते हैं तो चीजें भूल भी जाते हैं, और आप लाइव डिबेट में ये रिस्क नहीं ले सकते।
1: मुझे याद है कि जब मैं पहले डेली, मेरे पास एक डायरी होती थी, और कहीं कोई कुछ कहता था, कहीं कुछ बोलता था, या मैं कुछ न्यूज़पेपर में पढ़ता था या न्यूज़ में सुनता था, तो मैं डायरी में उसको नोट कर लेता था।
0: अच्छा।
1: और उसका मैंने एक इंडेक्स भी बना रखा था, और मैंने कुछ पेजेस बनाए हुए थे, कुछ मैंने लॉ एंड ऑर्डर पे बना रखे थे, तो उसमें जो भी लॉ एंड ऑर्डर टू रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती थी, ये मेरे बिगिनिंग, जो मेरे इनिशियल डेज थे जब मैंने शुरुआत करी थी, तब की बात है। इसी तरीके से अलग अलग मैंने बना रखे थे। तो जब भी मुझे कोई डिबेट आती थी, मैं उस दिन उसको पढ़ता था कि अगर मुझे कौन सा कंटेंट कहाँ यूज करना पड़ जाए वो मैं देखूंगा। लेकिन फ्रेंकली आज शायद मैंने अब कोई नोट नहीं बनाना होता, क्योंकि अभी इतना कुछ अंडरस्टैंडिंग आ चुकी है कि अब हमें कई बार 15 मिनट का टाइम मिलता है जी, इस सब्जेक्ट पे डिबेट है, कंटेंट अभी नहीं, अपने आप हैंडल कर लेना, ठीक है,
0: इतना एक्सपीरियंस हो गया,
1: वो होता है, फिर उसके बाद वो आ जाता है। लेकिन नो डाउट, ये हम पहले न्यूज़पेपर का वेट करते थे नेक्स्ट डे, आज हमारे पास कोई भी खबर होती है इतनी फास्ट आती कि न्यूज चैनल उसको कवर नहीं कर पाता, उससे पहले हम इंस्टाग्राम पे देख लेते हैं उसको।
0: बिल्कुल।
1: इतनी फास्ट न्यूज आती है और वो इतना अपडेट कर जाती है आपको कि आपको सब कुछ पता ही होता है। कई बार आपको ऐसा लगता है आधे घंटे पुरानी खबर भी आपको बोरिंग लगनी शुरू हो जाती है, मतलब इतनी पुरानी और बासी लगती
0: है,
1: इतनी बार वो आ सकती है। तो ये नो डाउट, अब कोई भी चीज के लिए, मैं थोड़ा सा एक बात बता दूं कि ठीक है हम प्रवक्ता हैं, हमारे को अपनी पार्टी की लाइन रखनी है और पार्टी का विचार रखना है, लेकिन नो डाउट कि अब क्योंकि हर आदमी के पास इतने कंटेंट हैं देखने के लिए कि शायद वो हमें सुनता भी है कि नहीं सुनता। मैं एक दिन मैं अपने बॉस से हंस रहा था, तो उन्होंने कहा कि भाई माइलेज मिलता है आपको टीवी पे जाते हो तो डिबेट में जाते हो, तो मैंने कहा सर मुझे तो एक चीज तो मेरे को है एक जगह पे, पहले तो मैं फ्लाइट में जाता था तो हर आदमी पहचानता था, ट्रेन में कहीं गया तो उधर भी सब लोग पहचान लेते थे, कोई सेल्फी भी खिंचवा के चले जाते थे, लेकिन अब मैंने कहते हैं, अब आजकल मैंने कहा आजकल एटीएम में जो हमारे सिक्योरिटी वाले बैठे होते हैं वो पहचान लेते हैं, क्योंकि वो एटीएम के अंदर बैठते हैं, कोई काम होता नहीं, वो सारा दिन रील देखते रहते हैं, तो हम कहीं ना कहीं उनको दिख जाते हैं सुबह से शाम तक। तो मैंने कहा अब हमारी पहचान यहाँ तक रहेगी, क्योंकि अब इतनी टेक्नोलॉजी फॉरवर्ड, बहुत सारे सोर्सेस हैं। और वो जो गाना नहीं है अमिताभ बच्चन का, मुझसे बेहतर कहने वाले, मुझसे बेहतर सुनने वाले, तो वो गाना मैं आज कल दो दिन पहले सुन रहा था वो, कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे। तो उसमें बहुत बात वही थी कि भाई हर रोज चीजें बदल रही हैं, रोज टेस्ट भी बदल रहे हैं, सिस्टम भी बदल रहे हैं, थॉट्स भी बदल रहे हैं, इंटरेस्ट भी बदल रहे हैं। तो या तो हमें अपने आप को बदलना है उनके साथ साथ,
0: बिल्कुल
1: हम नहीं बदलेंगे तो फिर हम ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएंगे और वो कलर हो जाएंगे।
0: बिल्कुल, और बदलना एक प्रकृति का नियम भी है, लेकिन समय के साथ बदलाव हो तो अच्छा लगता है, पर बदलाव थोड़ा तेजी से आ रहा है आजकल के समय में। तो बहुत सारी बातों का सिलसिला जारी रहेगा दोस्तों, लेकिन अभी वक्त एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। राजीव जेटली जी से बातों का सिलसिला जारी है, और इस सिलसिले में बहुत सी बातों के साथ साथ कुछ मीठे मीठे गाने भी, यानी म्यूजिकल ब्रेक भी। तो कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए रेडियो 107.8 FM के साथ। मैं हूं दीक्षा आपके साथ।

0: फील गुड फील लाइव रेडियो मानव रचना 107.8 FM, मैं हूं दीक्षा आपके साथ। बहुत सी बातें चल रही हैं आज हमारे खास मेहमान राजीव जेटली जी से, जो कि मीडिया एडवाइजर हैं टू द ऑनरेबल CM ऑफ हरियाणा और साथ ही नेशनल स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के। इलेक्शन की स्ट्रैटेजीज, मीडिया की स्ट्रैटेजी क्या होंगी, किस तरीके से इलेक्शंस के लिए कैंपेनिंग होगी, किस तरीके से प्रेस आउटरीच होगा, पॉलिटिकल नैरेटिव क्या होते हैं, उसमें डेवलपमेंट्स क्या होती हैं, इलेक्शन वॉर रूम कम्युनिकेशन सपोर्ट कैसे दिया जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो शायद एक आम इंसान को नहीं पता होती, लेकिन ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। और ऐसे ही शख्स हमारे बीच हैं राजीव जेटली जी, जो कि मीडिया एडवाइज़र हैं ऑनरेबल CM ऑफ हरियाणा, और इनसे कुछ खास बातों का सिलसिला जारी है। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, क्योंकि जब आप पॉलिटिक्स में होते हैं और स्पोक्स पर्सन की प्रोफाइल पर हैं नेशनल लेवल पर, और इसके साथ साथ आप मीडिया एडवाइज़र हैं माननीय मुख्यमंत्री के, सो यहाँ पर कैसी तैयारी आपकी रहती, क्योंकि मीडिया आजकल के समय में फोन में आ गया है, ये छोटी सी स्क्रीन आपको पूरी दुनिया दिखा देती है। जैसा आपने कहा कि एक के बाद एक रील्स आती रहती हैं, एल्गोरिथम के थ्रू आप जो है दुनिया भर की इंफॉर्मेशन 5 मिनट में ले लेते हैं, तो ऐसे में आपकी तैयारी कैसे होती है, आप अपनी तैयारी कैसे रखते हैं और मेंटली कैसे स्ट्रांग रहते हैं, क्योंकि इतनी ट्रोलिंग भी होती है।
1: ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने उठाया है। मुझे ऐसा लगता है कि पहले मीडिया मैनेजमेंट बहुत आसान होता था, और इतना आसान होता था किसी भी एडवाइजर के लिए, क्योंकि उसे पता है कि इतने न्यूज़पेपर, इतने न्यूज़ चैनल,
0: इतने चैनल जी।
1: आज की डेट में इतने न्यूज़पेपर तो है ही हैं, उतने चैनल भी हैं, लेकिन साथ में हजारों ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं न्यूज के, जिसको आपको मैनेज करना बहुत चैलेंजिंग होता है, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, और कई बार तो क्योंकि वो गवर्नमेंट नॉर्म्स में भी नहीं आते हैं तो वो किसी भी डायरेक्शन में चले जाते हैं, एथिक्स की भी कई बार कमी हो जाती है, क्रेडिबिलिटी की भी कई बार कमी हो जाती है। तो ऐसे में 3-4 हज़ार लोगों को एक साथ देखना, ये मेरे लिए, हमारे लिए नो डाउट बहुत बड़ा चैलेंज होता है, बहुत बड़ा चैलेंज होता है, लेकिन कोशिश होती है। फिर कुछ कुछ फार्मूले बनाने पड़ते हैं, मन में सोचने होते हैं कि इनको एक साथ कैसे करा जाए या कैसे कैसे करा जाए, ये असली चैलेंज है आज की डेट में। देर आर वेरियस, बहुत सारे टूल्स भी आते हैं इन चीजों के, लेकिन वो टूल्स किसी को डाउन करने के लिए, किसी को उठाने के लिए हो सकते हैं। अगर फिजिकली आप सोचते हैं कि आपको चीजों को मैनेज करना है, तो फिर आपको फॉर्मूला, फिर आते हैं ना वहीं पे घूम फिर के पाइथागोरस का फॉर्मूला जाता है कि आपको उसी को फॉलो करना पड़ेगा। टूल्स को यूज करोगे तो किसी का नुकसान होगा, किसी का फायदा होगा, लेकिन इवेंचुअली इतनी चीजें टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो जाती है कि वो टूल्स भी शायद कल काम करने बंद कर देंगे, फिर आपकी मैनेजमेंट फेल हो जाएगी।
0: और ऐसे में मुझे लगता है एथिक्स की बात आपने कही, एथिक्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, जब हम मीडिया के बारे में पढ़ाई कर रहे होते हैं, जब स्टूडेंट्स होते हैं मीडिया के, तो सबसे पहले ये बताया जाता है कि आपको एथिकल काम करना होगा, मतलब आपको वो काम करना होगा जो सही है। लेकिन आजकल के समय में मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, छोटे छोटे यूट्यूब चैनल्स होते हैं, इंस्टाग्राम पेजेस होते हैं, बहुत सारे तो सही काम कर रहे हैं, अच्छे भी हैं, आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, लेकिन बहुत सारे जो हैं वो कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिविटी भी लेकर आ रहे हैं, या फिर कुछ कह सकते हैं कि आपको जेन्युइन सोर्स नहीं होते हैं अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए। दूसरा, AI की वजह से बहुत सारा कॉन्टेंट ऐसा है जो ठीक नहीं है, या जिसको आप बुजुर्ग देख रहे हैं उनको लग रहा है अरे ये तो सच में हो गया, और वो उसको सच मान बैठ रहे हैं और डिप्रेशन में भी आ जाते हैं, बच्चे बहुत घबरा जाते हैं देख के कि ये AI कंटेंट और नहीं है, ये नहीं समझ पाते। सो एथिक्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे,
1: ये इसको लागू करता हूं, ये एथिक्स कोई आज का शब्द नहीं है, एथिक्स तो हमारे ग्रंथों में ही आ गया था
0: जी,
1: ऋषि मुनियों ने भी बता दिया था, तो एथिक्स आज का शब्द नहीं है। थोड़ा सा इसको रिफाइंड तरीके से जब मल्टीनेशनल इंडिया में आई, तब उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट एक अलग एथिकल डिपार्टमेंट बनाया कि कंपनी के में काम करने के एथिक्स के

0: होंगे। एथिक्स तो बहुत सिंपल एक शब्द है। देखिए, आपको एक प्लेटफॉर्म मिला है, आपको मौका मिला है, आज आप जल्दी जल्दी से, हम वहीं चलते हैं वापस जहां से हमने शुरुआत करी थी, कि अगर आपकी बिगिनिंग में स्ट्रगल कम होगी तो बाद में आपको तकलीफ आएगी। ये सस्ती टीआरपी और नंबर ऑफ व्यूज बढ़ाने के लिए जो आप ये रास्ता चूज करते हैं वो रास्ता आपको कल ना कहीं पे डेड कर देता है, खत्म कर देता है। मैं किसी एक्टर्स के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, मैं आई एम सॉरी टू से। अभी आपको डिसाइड करना है कि आपको राखी सावंत बनना है या समीता पाटिल बनना है, क्योंकि देखिए जल्दी टीआरपी आपको मिलेगी लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको जो बेनिफिट देगी चीज,
1: जो लोग याद करेंगे
0: तो आपकी कला होगी, वो आपका काम होगा, वो आपकी मैच्योरिटी होगी, वो आपकी डिलीवरी होगी, बहुत सारी चीजें मिलकर के तब आप एक मुकाम पा सकते हैं जहां पर जाकर के आप कहें कि आज लोग मुझे पहचानते हैं, मुझे जानते हैं, मेरी क्रेडिबिलिटी है। क्रेडिबल शब्द जो है ना वो अपने आप में सब कुछ प्रूव कर देते हैं। तो अगर मैं भी देखूंगा कि भाई आज इसने एक खबर डाली है या न्यूज चलाई है, मुझे पता कल को पता चला ये तो फेक थी, ये तो बराबरी थी, कल से मेरे उसके प्लेटफॉर्म के प्रति मेरे जो
1: नेगेटिव नहीं,
0: क्रेडिबिलिटी खो चुका होगा वो। आप कुछ भी लिखता चला जाए, कुछ भी बोलता चला जाए, उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो ऐसी अगर कोई आज नहीं चल रहा है, किसी को आज 200 व्यू मिल रहे हैं, किसी दूसरे को 10,000 व्यू मिल रहे हैं, आज उसको 200 मिल रहे हैं, लेकिन जब लोगों को पता चलेगा ही इज द क्रेडिबल, इसकी न्यूज क्रेडिबल है, तो कल को अपने आप वो ग्रो करना शुरू करेगा। तो मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ, सिस्टम्स आर पेनफुल बट फ्रूटफुल। तो आपको ये फॉलो करके चलना, ये निर्भर आप पर करता है, आप उसको फॉलो करना चाहते हैं नहीं करना चाहते, चॉइस आपकी है। प्लेटफॉर्म वही रहेगा लेकिन सर्वाइव वो करेगा जो अपनी पेशेंस बना के एथिकल ग्राउंड पे क्रेडिबल के साथ अपनी डिलीवरी देके आएगा।
1: जी बिल्कुल। और सक्सेस की बात करते हैं, आजकल जब हम बात करते हैं सक्सेस की, तो बच्चों से जब हम बात करते हैं, क्योंकि हम युवाओं के बीच ज्यादा रहते हैं, तो ज्यादातर बच्चों का जो एम होता है ना वो करियर में होता है कि हमें यूट्यूबर बनना है, इन्फ्लुएंसर बनना है। और हमारी कैंपस में बहुत सारी इन्फ्लुएंसर्स हैं, मतलब लाखों की फैन फॉलोइंग है बहुत सारे बच्चों की। सो क्या सिर्फ ये रास्ता चुनना सही है कि हाँ सोशल मीडिया पे आप अपनी पहचान बना लें तो आप आगे बढ़ जाएंगे, या अपनी फील्ड में पकड़ बनानी भी जरूरी है, जो बच्चों को शायद अभी नहीं समझ आ रहा है। या तो हमारे पास वो बच्चे हैं जो 10 साल की उम्र में जानते हैं कि हमें म्यूजिशियन बनना है या आर्किटेक्ट बनना है या डॉक्टर बनना है, या फिर कुछ युवा ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पर जाके ही अपनी पहचान बना के खुश हैं।
0: मैं तो एक रिक्वेस्ट करूंगा, आपने सोल्यूशन दे दिया, ये प्रॉब्लम नहीं है जो बात आपने करी है। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप बनिए इन्फ्लुएंसर्स, आप सोशल मीडिया पे आइए। मुझे ऐसा लगता है कि आपको वो सब्जेक्ट चूज कर लेना चाहिए जिस सब्जेक्ट पे आपकी दूसरी वर्किंग चल रही है या आपकी पढ़ाई चल रही है या आपको कोर्स चल रहा है, आप उसमें बनिए ना। आपके पास भी एक बड़ा व्यूवर होगा जो आपको देखेगा। मान लीजिए मैं मेडिकल की पढ़ाई कर रहा हूँ और मैं मेडिकल के ऊपर ही कोई ना कोई नई रिसर्च के ऊपर डिस्कशन कर रहा हूँ, मैं इन्वाइट करता हूँ कि भाई मैंने आज साइंस मैगजीन में पढ़ा और उसमें इस तरीके का फाइंडिंग्स आई हैं और एक क्लिनिकल ट्रायल 1, 2, 3, 4 पे चल रहा है और FDA में अप्रूवल मिली है कि नहीं मिली है, दिस दैट। देखिए आप क्यों नहीं चलेगा, अपनी फील्ड की इन्फॉर्मेशन दीजिए ना। अब मान लीजिए आप एक डॉक्टर है, फिर भी आपने बैग उठाया और चल पड़े कि मैं आज आपको हिमाचल घुमा के लाऊंगा, ठीक है, क्योंकि चल रहा है, आप फूडी बन गए, फूड के ऊपर बोल रहे हैं। तो मैं कहता हूँ अगर उसमें भी करना है तो आपको यू शुड चूज योर ओन फील्ड,
1: बिल्कुल
0: वो आपको देगी, पे करके जाएगी वो,
1: आप अपनी फील्ड को भी समझ पाएंगे और अच्छे उसकी रिसर्च भी कर पाएंगे,
0: उसके भी व्यूवर्स होंगे अपने, उसके भी अपने रिसर्च करके, कोई साइंटिस्ट है, कोई इंजीनियर है, कोई किसी भी फील्ड से आता है, वो उस चीज पर डिस्कस करेगा, उसके जैसे लोग उसकी बात को समझने वाले लोग नहीं आएंगे क्या? जैसे लोग कोई महात्मा होता है, संत जिसे कहते हैं हम, उन्होंने सत्संग करना शुरू किया, अब इतने सारी लोग होते हैं, उसमें से जिनको उनकी बात अच्छी लगी उनके फॉलोअर बन गए, जिनको नहीं लगी वो दूसरी जगह चले गए।
1: बिल्कुल,
0: तो ये ओपन है मार्केट,
1: बिल्कुल मार्केट ओपन है, बस आपको सेलेक्ट करना है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं उस मार्केट में। तो दोस्तों बातें जारी रहेंगी लेकिन अभी वक्त है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। अगर आपको ये बातचीत अच्छी लग रही है और आप किसी के साथ शेयर करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। आप हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए, इंटरनेट रेडियो मानव रचना, प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से जाकर, और इस ऐप में आरजे दीक्षा के फोल्डर में पॉडकास्ट सेक्शन में जाकर आपको राजीव जेटली जी से ये सारी बातचीत मिल जाएगी, जिसको आप दुनिया के किसी भी कोने में कहीं भी शेयर कर सकते हैं। और साथ ही इस बातचीत को आप हमारे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, रील्स और पॉडकास्ट के माध्यम से। रेडियो मानव रचना का इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक पेज और यूट्यूब पेज जरूर लाइक कीजिए।

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम में हूं दीक्षा आपके साथ। बहुत सारी बातें और कुछ खास जानकारी। आपके अपने शहर के निवासी हैं जो कि राष्ट्र पटल पर बहुत कुछ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हरियाणा को भी, फरीदाबाद को भी। हमारे साथ एक ऐसी हस्ती हैं जिन्होंने शुरुआत करी थी एक आम आदमी के रूप में, लेकिन राजनीति में एक बड़ा मकाम हासिल किया है। राजीव जेटली जी जो कि मीडिया एडवाइजर हैं ऑनरेबल सीएम ऑफ हरियाणा नायब सिंह सैनी जी के, और सबसे कमाल की बात है ये खट्टर साहब जो पूर्व मुख्यमंत्री थे हरियाणा के, उनके भी मीडिया एडवाइजर रह चुके हैं। तो बहुत सारी बातें हम जान रहे हैं राजीव जेटली जी से, लेकिन आज राजनीति की बातें नहीं हो रही हैं, बातें हो रही हैं युवाओं की, जेंजी की, मोटिवेशन की और राजीव जेटली की अपने पर्सनल लाइफ की। राजीव जी, बहुत सारे युवाओं की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आजकल के समय में युवा ताकत हम अपने आप को बोलते हैं, युवा देश है। बाकी अगर देशों की तुलना में बात करें तो सबसे ज्यादा युवा हमारे देश में है और युवाओं की अपनी बहुत जबरदस्त ताकत है, लेकिन एक्सपोजर बहुत ज्यादा है। ऐसे में बच्चे डिप्रेशन में भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं, स्ट्रेस में आ रहे हैं क्योंकि घबरा जाते हैं। अगर कोई चीज उनको नहीं मिली तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, हताश हो जाते हैं। पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे को सब कुछ मिले, हर माता पिता चाहते हैं कि बच्चों को सब कुछ दे दे और वो समय से पहले दे भी देते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में बच्चों को क्या करना चाहिए और पेरेंट्स को कैसे हैंडल करना चाहिए, ये मैं आपसे जानना
1: बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि मैंने जहाँ से शुरुआत करी थी कि बच्चों को पूरी इंडिपेंडेंस मिलनी चाहिए टेक्नोलॉजी को सीखने की, आगे बढ़ने की, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लगता है जहाँ पर आती है, जैसे आपने स्ट्रेस की बात करी, एंजाइटी आजकल सबसे बड़ा बीमारी चल रही है, ये तभी शुरू होती है। बचपन तो आपके कंट्रोल में रहता है, थोड़े से बड़े होने के बाद वो आपके कंट्रोल से बाहर हो सकता है, लेकिन आप मैंडेटरी उनके लिए फिजिकल एक्सरसाइज करवा दें, उनको खेलना शुरू करवा दें, एक आदत डाल दें उनको कि आपको इतनी एक्सरसाइज तो करनी ही करनी है, इतनी देर तो खेलना ही खेलना है। तो देखो, सबसे बड़ा एंजाइटी किलर तो आप कहते हैं एक्सरसाइज ही होती है, स्पोर्ट्स ही होते हैं, या स्ट्रेस किलर भी जो सब स्पोर्ट्स और एक्टिविटीज ही है हमारी। तो ये काम मुझे लगता है पेरेंट्स को करना चाहिए, बाकी लेट देम लिव, जैसे वो कर रहे हैं उनको करने दीजिए, फिजिकली उसको मजबूत रखिए, क्योंकि आज की डेट में देखिए पढ़ाई वढ़ाई पे तो बहुत जोर देने का मुझे लगता नहीं कि जरूरत है, क्योंकि वो आपसे ज्यादा पढ़ते हैं और आपसे अच्छा, उनके पैरामीटर्स ही बहुत हाई हो गए। हम देखे, जब मैं स्कूल में टेंथ का रिजल्ट आता था या बोर्ड के एग्जाम होते थे, हम जब अपना रिजल्ट उस टाइम दुकान न्यूज पेपर भी और स्टेशनरी की शॉप पे आता था, वो तो स्टेशनरी की शॉप पे आता था, जैसे ही हम उससे पूछते थे रोल नंबर दिस, तो वो ये कहता था पास हो गए, हम पीछे मुड़ के नहीं देखते थे कि दोबारा बुला के ना बोलते फेल हो गए, तो पास हो गए बहुत बड़ी बात थी। और आज बच्चे जो उनसे हैं वो 98% लेने के बाद इस बात को रो रहे होते हैं 2% मेरे कहाँ कटे हैं। तो यहाँ इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अब बच्चों की पढ़ाई की चिंता शायद हमें नहीं करनी है, अब उनकी फिजिकल एक्टिविटीज की चिंता करनी है, कितने मजबूत हो रहे हैं, उनके इम्यून सिस्टम की चिंता करनी है, उनके बेसिकली ये है कि अब हमारे को उनको फिट रखना है, बाकी तो उनको आपको समझा रही है वो अपने आप में ही बहुत बड़े ट्रेंड है।
0: बिल्कुल, यानी पढ़ाई जो है वो हर बच्चा कर ही लेता है। देखिए, स्कूल जाता है, 6-7 घंटे वहाँ बैठता है, किताबें पढ़ रहा है, और अगर उसको नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे लगता है सोशल मीडिया का वो आप उसको यूज करवाइए कि अपने सब्जेक्ट की वीडियोस देखे।
1: नहीं, वो अपने आप बोल, दे आर कैपेबल एनफ टू हैंडल दिस सिचुएशन, बिकॉज़ मैंने देखा उसको कि आजकल तो हम तो स्कूल में छुट्टी होती हो जाए तो हम इतने खुश होते थे, सुबह हम कई बार बीमारी का बहाना भी करते थे कि मुझे स्कूल नहीं जाना, लेकिन अब तुम बच्चे को खुद बोलोगे कि नहीं आज छुट्टी करे तो हम छुट्टी करने को तैयार नहीं है,
0: उसको ज्यादा मजा स्कूल में। स्कूलों का सिस्टम बदल गया। लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ आपका राज, कि इतने सारे कामों के बीच, इतने प्रोफाइल संभालने के बाद अपने लेवल पे आप स्ट्रेस को कैसे दूर रखते हैं, क्या करते हैं, आपका रूटीन क्या होता है?
1: देखिए, मैं तो एक बात के लिए बहुत मैं एक्सरसाइज से कोई कंप्रोमाइज नहीं करता।
0: अच्छा,
1: और मैं मेडिटेशन भी डेली करता हूँ। मैं
0: टाइम कैसे मिलता है, मैं टाइम मैनेजमेंट जानना चाह रही हूँ, क्योंकि
1: सुबह आप वॉक करिए, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करिए और मेडिटेशन करिए, 3-4 चीजें नहीं करोगे तो मर जाओगे आप, ये जरूरी है, ये करनी ही पड़ेंगी आपको। और सबसे मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट जो है वो एक्सरसाइज जरूरी है और मेडिटेशन उससे भी ज्यादा जरूरी हो गया आजकल मेंटल हेल्थ के लिए हमारे, तो आपको मेडिटेशन बहुत जरूरी है और करनी, अच्छी टेक्निक के साथ आप करेंगे तो काफी आपको स्ट्रेस कम होगा। मैं एक एंजाइटी प्रॉब्लम से निकला हूँ।
0: अच्छा,
1: उसके बाद ही मैं इन चीजों की तरफ गया हूँ, नहीं तो मुझे पहले नहीं पता था कि इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, मेडिटेशन के, योग के बेनिफिट्स क्या होते हैं,
0: बिल्कुल
1: स्ट्रेचिंग के और एक्सरसाइज के बेनिफिट्स क्या होते हैं। मैं एक बार मुझे आई हैड सम प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम तो थी नहीं, लेकिन किसी डॉक्टर ने मुझे बोल दिया कि भाई आपको ऐसा लगता है इरिटेटिंग बॉल सिंड्रोम है, IBS है, तो और डॉक्टर ने बोला डायग्नोस तो नहीं किया था उसने, तो मैंने उससे पूछा कि इसका आईबीएस का ट्रीटमेंट कैसे है, कोई देयर इज नो नोन क्योर फॉर द आईबीएस। तो मैंने फिर भी क्या है, कहते आप गोली खाओ या 45 मिनट्स की एक्सरसाइज करो। जिस दिन उसने मुझे बोला 45 मिनट्स की एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज तो मैं पहले भी करता था, स्पोर्ट्स में हम पूरी तरह से एक्टिव रहते थे, लेकिन फिर मैं और ज्यादा सीरियसली उसको काम को करना शुरू किया, मुझे आज तक वो प्रॉब्लम नहीं आई। आज 15 साल हो गए, तो मैंने सोचा कि कितनी प्रॉब्लम्स को फिक्स कर रही है एक ही बात, और हमारी बॉडी को फिक्स कर रही है, हम उसी को अवॉइड कर रहे हैं। तो मैं तो सबको एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई आप यू शुड गो फॉर एक्सरसाइज,
0: बिल्कुल
1: योग जरूर करें, मेडिटेशन जरूर करें,
0: बिल्कुल। और हमारे देश में तो मतलब योग इतना खूबसूरती से सिखाया जाता है, यहाँ पे आप कुछ नहीं कहीं नहीं जा सकते, तो मुझे लगता है आप अपने इसी फोन पे सीख लीजिए, देख लीजिए कुछ अच्छे।
1: जो करने वाला होता है
0: वो कहीं से भी
1: नहीं, जो करने वाला होता है, जो कर रहा होता है वो दूसरे की नजर में बेवकूफ होता है, ये क्या कर रहा है, लेकिन जो महसूस कर रहा होता है उसे लगता है ये बेवकूफ है,
0: बिल्कुल
1: दूसरे यही कर क्यों नहीं पा रहे हैं, इनको पता ही नहीं कि क्या चमत्कार मेरे अंदर हो रहे हैं इस टाइम।
0: बिल्कुल, तो योग करने से, क्योंकि मैं ये एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, योग करने से आपका सिर्फ शरीर ठीक नहीं रहता, आपका मन
1: mentally,
0: भी अच्छा रहता
1: है, मन भी, yes.
0: आप ज्यादा ध्यान लगा पाते हैं चीजों पे, आप ज्यादा अच्छी बात कर पाते हैं, आप में संयम आ जाता है, ठहराव आ जाता है, ये चीज है मुझे पर्सनली।
1: बिल्कुल बिल्कुल, आप इंसाइक्लोपीडिया हो जाते हैं, आप आर्टिकुलेट हो जाते हैं, और आपकी मेमोरी अच्छी रहती है, आपके ऊपर स्ट्रेस नहीं होता, कोई कितना भी लोड डाल दे आपके पास फार्मूलास होते हैं हर बात से बाहर निकलने के।
0: युवाओं की बात कर रहे हैं राजीव जी, तो मैं ये भी जानना चाहूंगी, आजकल के बच्चों में, बच्चों की भी बात नहीं कर रही हूं, मैं आजकल के लोगों की ही बात करूंगी, चाहे उम्र आप 25 साल की लगा लें चाहे 50 की लगा लें, पेशेंस बहुत कम हो गया है लोगों में। रोज आप न्यूज़पेपर उठाते हैं, कि आप तो पढ़ते ही होंगे न्यूज़पेपर जब भी सुबह देखते हैं, तो उस न्यूज़पेपर को अक्सर लोग मना कर देते हैं पढ़ने से, बच्चों को बोले न्यूज़पेपर पढ़ो तो कह रहे हैं अरे मैम शुरू

0: कहीं ना कहीं वो एग्रेशन की फॉर्म में बाहर भी निकलेगी। तो मैं, मुझे ऐसा लगता है सारी बीमारियों की जड़ केवल इतनी ही है कि अगर हम कहीं पर फिजिकल एक्सरसाइज से दूर जा रहे हैं तो हम इम्पेशेंट हो रहे हैं, हम सड़कों पे अपनी उस पावर को दिखाना चाह रहे हैं, हम दूसरे के ऊपर जल्दी से अग्रेशन में आ जाते हैं, उस पर अटैक कर देते हैं। और आपने देखा, आप तो ये अपना आपा खो देते हैं, अगर किसी के पास कोई वेपन है तो वो वेपन को इजीली यूज कर रहा है, इसको ये भी नहीं पता कि इसके रिजल्ट्स क्या होने वाले हैं, उसको उसके उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं उसके बारे में अंदाजा ही नहीं है। तो वहां अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को भी लूज कर रहे हैं आप। तो मुझे लगता है यहाँ पे सिर्फ जो रोल रहने वाला है वो माँ बाप का ही रहने वाला है, पेरेंट्स का रहने वाला है। एक एक बात को सोच के बैठ जाएं, मेरा बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा, दैट इज एंटायरली डिफरेंट थिंग, लेकिन वो फिजिकली फिट है कि नहीं है इस बात को इंश्योर कर ले, क्योंकि पढ़ाना और लिखाना, पढ़ना और लिखना ये सोसाइटी का एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं अंग बन चुका है, और उन्होंने पढ़ना ही पढ़ना है। उनको पता है कि अगर मुझे इस सोसाइटी में रहना है तो मुझे हैव टू बी इक्वल टू ऑल दीज पीपल, तो वो तो करेगा ही करेगा। उसको आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप उसको देखो, ज्यादा लाड प्यार में कहीं ऐसा ना हो कि आप उसको चॉकलेट खिला के और मैगी खिला के लास्ट में इस नौबत पे ला दो कि फिर वो इस तरीके से अग्रेशन दिखाना शुरू कर दे।
1: बिल्कुल, तो फिजिकल यानी एनर्जी को डाइवर्ट करने की जरूरत है। जो एनर्जी आप घर पे रहकर सिर्फ फोन के आगे या किताबों के आगे, फॉर दैट मैटर मैं ये भी कहना चाहूंगी कि कई बच्चे होते हैं जो खेलने नहीं जाते, सिर्फ किताबें पढ़ते रहते हैं, उन बच्चों के लिए भी खेलना जरूरी है, उन युवाओं के लिए भी फिजिकल एक्सरसाइज जरूरी है, क्योंकि आपकी जो एनर्जी सारा दिन शरीर में जा रही है, एनर्जी तो है, तो उसको कहीं डाइवर्ट कीजिए ताकि गलत चीज के लिए समय ही ना बचे। बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा दोस्तों, लेकिन अभी वक्त एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। कुछ खास बताना चाहें, कुछ खास कहना चाहें तो कह सकते हैं आप 8010781078 पर। फिलहाल वक्त एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, मैं हूं दीक्षा आपके साथ।

कुछ खास इन्फॉर्मेशन, कुछ खास बातचीत रूबरू है आज हमारे खास मेहमान राजीव जेटली जी के साथ, मीडिया एडवाइजर टू द सीएम ऑफ हरियाणा, बीजेपी नेशनल स्पोक्स पर्सन, इलेक्शन कम्युनिकेशन और मीडिया स्ट्रेटजी एक्सपर्ट। और राजीव जेटली जी से बहुत सारी बातें हम कर रहे हैं। मैंने पहले

0: भी आपको बताया है कि रेडियो मानव रचना के साथ इनका सफर बहुत पुराना है, लगभग 10-12 साल पहले से ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सारी डिस्कशंस का हिस्सा रह चुके हैं एज एन एक्सपर्ट, और आज ये हमारे सिर्फ एक बुलावे पर यहाँ आए हैं, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो राजीव जी से बातचीत का सिलसिला जारी है। सर, ये भी जानना चाहूंगी आपसे, आप पॉलिटिक्स में आए और आज आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहती हूँ आजकल का युवा पॉलिटिक्स में आना चाहता है, उसे शौक है आने का लेकिन उसे रास्ते नहीं पता, उसे समझ नहीं आता, वो आना चाहता है, रिप्रेजेंट करना चाहता है, अपने शहर को अपने देश को एक बड़े स्तर पर ले जाना चाहता है, पर उसे तरीके नहीं पता क्योंकि इसका कोई कोर्स नहीं होता।
1: मैं एक बात बताता हूँ आपको, आजकल क्या हुआ है कि हमने जो स्टार्टअप्स लेकर के आए हैं, मेरी क्रिएटिविटी के लिए मेरे को सरकार ने एक प्लेटफॉर्म दिया है, इसको मैं अपना पॉजिटिव पॉइंट कह लूं या नेगेटिव पॉइंट कह लूं गवर्नमेंट का, तो दोनों ही इसमें एंगल है। इसमें हमें हमारे पास कार्यकर्ताओं की शॉर्टेज हो जाती है, जैसे बीजेपी एक पार्टी है, बीजेपी अलग अलग डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ से लोग आते हैं, वो बीजेपी के अंदर आते हैं, काम करते हैं और एक विचार के साथ चलते हैं, लेकिन अगर कहीं हमें कमी महसूस होती है हमारी ही दिए हुए जो प्लेटफॉर्म्स हैं उसी में हमारे पास कार्यकर्ताओं का अभाव हो जाता है, क्योंकि हमने उनको दिया है स्टार्टअप्स के मौके, हमने उनको दिया फाइनेंशियल
0: स्टेबिलिटी
1: का मतलब उसको किस तरीके से आपको लोन लेना है, कैसे आपको स्टार्ट करना है, तो उसे लगता है कि मैं जितने एफर्ट्स अब मेरी अपनी क्रिएटिविटी के लिए जो मेरे पास थॉट्स हैं, जो थॉट्स पहले कहीं ना कहीं किसी और के लिए यूज करते थे, उन्होंने अपने थॉट्स को अपनी इंडस्ट्री का एक सबसे बड़ा आम बना करके अपनी ग्रोथ के लिए एक जिसे कहते हैं एक इंजन है उनका जो प्रोपेल कर रहा है उसको, तो वो आज उस दिशा में ज्यादा जा रहे हैं, और ये चैलेंजेस सबके साथ हैं, और यूथ जो आना चाहता है सबके लिए मुझे लगता है आज की डेट में तो आप बहुत संभावनाएं हैं, क्योंकि अब पॉलिटिकल पार्टियां भी देख रही हैं कि किसमें कितना टैलेंट है। आप देखिए आईटी विंग्स में जो लोग आते हैं कई बार वो, और इतने आगे जा रहे हैं, वो मैंने देखा बहुत अर्ली स्टेज पे वो मेंबर पार्लियामेंट बन जाते हैं, राज्यसभा से मेंबर पार्लियामेंट बन जाते हैं, जिसको हम एल्डर हाउस कहते हैं उसमें यंग जा रहे हैं, तो अपने टैलेंट की वजह से जा रहे हैं, अपने यूएसपी की वजह से जा रहे हैं जो उन्होंने पार्टी के लिए किया है। अब तो पार्टी नहीं करेगी आप झंडा उठा करके सड़कों पर जाइए, वो तो कहते हैं कि कुछ ऐसा करके दिखाई जिससे हमारी पार्टी भी आगे बढ़े, देश भी आगे बढ़े, डेवलपमेंट भी हो, मल्टीपल्स एंगल आपको वही आ गई। इवेंचुअली बात तो आपकी टेक्नोलॉजी पे ही आ गई,
0: बिल्कुल,
1: कि तकनीक को मतलब स्ट्रक्चर अगर आप अच्छा बना लेंगे, थोड़ी मेहनत जरूर लगती है, अब घर को आप खुद बनाए आर्किटेक्ट से बनवाए, तो आर्किटेक्ट से बनवाएंगे तो नो डाउट कुछ चीजें आपकी समझ में नहीं आएंगी, लेकिन फाइनली जब आप देखेंगे टेक्निकली वो साउंड होगा,
0: बिल्कुल।
1: तो इसी तरीके से टेक्निकली जो बच्चे ज्यादा अच्छा कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी में, उनको बहुत सारी ऐसी संभावनाएं हैं। हम जैसे लोग तो मर गए बीच में, क्योंकि हमने अपना पूरा टाइम निकाल दिया, तब बोलते थे आप मैच्योर नहीं हो, जब आप बड़े हो गए तो आप बड़े बनोगे, जब हमारा वक्त आया तो फिर अब जेंजी का टाइम आ गया, तो हमारा तो टाइम ही बीच में से निकल गया।
0: लेकिन देखिए ये टाइम निकलने के बाद ये मुख्यमंत्री साहब को मीडिया की सलाह दे रहे हैं और चैनल्स पे दिखाई देते हैं, तो सर आपका टाइम बहुत अच्छा चल रहा है। कुछ बातें कर लेते हैं सक्सेस के बारे में। सक्सेस बच्चों को, यंगस्टर्स को आज के समय में चाहिए और जल्दी चाहिए, लेकिन स्लो सक्सेस से घबराते हैं जब समय लगता है। जैसे आप सिविल सर्विसेज का एग्जाम ले लें, क्योंकि वो अब तक हमारे देश का एक ऐसा एग्जाम है, चाहे सिविल सर्विसेज हो या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो बड़ा, जिसमें अगर सक्सेस नहीं मिलती दो अटेम्प्ट तक तो तीसरे में एक व्यक्ति हिम्मत हार जाता है, लेकिन कई ऐसे भी होते हैं जो 5-5 अटेम्प्ट के बाद छठे में सक्सेसफुल हुए हैं। सो वो स्लो सक्सेस से घबराने वाले बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
1: मैं इससे भी इम्पोर्टेंट बताता हूँ आपको, हम कहते हैं कि सक्सेस, अभी आप देखिए कि सिविल एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, नहीं कर पाते हैं, उसी के अंदर फिर उसको दोबारा अटेम्प्ट करते हैं, तीसरी बार करते हैं, चौथी बार करते हैं, एक तो ये पार्ट है सक्सेस को देखने का। एक मैं उनकी बात बता रहा हूँ जो यूपीएससी पास कर चुके हैं, मैं ऐसे पर्सनली ऐसे लोगों को जानता हूँ जो मेरे दोस्त रहे हैं, जो आईएएस टॉपर रहे हैं, और उन्होंने 1.5 साल भी जॉब नहीं करी,
0: छोड़ दिया
1: यूपीएससी पास करने के बाद, और ये जो जॉब छोड़ने वाला रेशियो है ये और बढ़ता चला जा रहा है,
0: आजकल काफी
1: बहुत बढ़ रहा है, जो आईएएस जॉब छोड़ के जा रहे हैं वो बहुत बढ़ रहा है। तीसरी एक सबसे बड़ा चैलेंज, ये मैं पर्सनल मेरी अपनी राय है ये, कि मैक्सिमम देखिए आईआईटीएन डॉक्टर्स यूपीएससी करते हैं, यूपीएससी पास करते हैं, आ जाते हैं। मैं कल किसी एक मेरे एक अच्छे बड़े अच्छे दोस्त हैं, सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं, और तीन चार बैठे थे, तीनों चारों ही MBBS थे।
0: अच्छा।
1: तो मैंने उन सबसे पूछा कि आपने कितने लोगों का अधिकार मारा, आपने पहले MBBS करा, उसके बाद आपने UPSC करा, वहाँ आपने MBBS की सीट ली, वो IITN जिसको एक बड़ा अच्छा इंजीनियर बनना था, वो भी आज एक क्लरिकल प्रशासनिक सेवा में काम कर रहा है। तो मैंने तब कहा कि यार हमारे, मेरे तो पर्सनल सोच है कि आप UPSC करके आए, लेकिन जिस फील्ड में आए हैं उसी फील्ड में जाएं। अगर आप डॉक्टर हैं तो आपको हेल्थ में ही जाना चाहिए, कुछ कंट्रीब्यूट तो करेंगे, बिकॉज आपकी जो पिछली एजुकेशन थी वो भी उसमें ऐड करेगी। अगर आप इंजीनियर हैं तो आपको टेक्निकल फील्ड में जाना चाहिए। ये मेरी पर्सनल सोच है, इसमें सरकार कब क्या करेगी मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है ये बहुत लंबे टाइम से, 31 साल से इस बात चलती आ रही है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। जो लोग ड्रॉप कर रहे हैं, ड्रॉप जो जो जॉब छोड़ के जा रहे हैं, मैं उनकी बात बता रहा हूँ। तो लेकिन इतनी अनंत संभावनाएं हैं, जो UPSC भी कर रहे हैं उनके पास भी है। लेकिन कई बार आदमी अच्छा खिलाड़ी नहीं बन पाता, लेकिन मैंने नोटिस किया है हमेशा जो अच्छा खिलाड़ी होता है कभी अच्छा कोच नहीं बन पाया वो। आप उठा के रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, और जो कभी अच्छा नहीं खेल पाया उनसे बेस्ट कोच नहीं बनेगा। तो जरूरी नहीं है कि आपको IAS पास करने हैं, हो सकता है आपकी पढ़ाई से दूसरे लोग IAS बन गए।
0: बिल्कुल, और बहुत सारे ऐसे टीचर्स होते हैं सिविल सर्विसेज के जो नहीं पास कर पाए, लेकिन वो कोचिंग में आ गए, और कोचिंग में वो शायद उनसे भी बहुत आगे,
1: उनसे भी बेस्ट निकल गए। और दूसरी बात, आपकी प्रिपरेशन इस लेवल की होती है कि आप जहाँ पे भी जाएंगे उस फील्ड में कोई भी आपको डिनाई नहीं कर सकता, इग्नोर नहीं कर सकता।
0: बिल्कुल, अच्छी अपॉर्चुनिटी, जानकारी आ जाती है आपके दिमाग में, आपका दिमाग इतना खुल जाता है, इतना कुछ हो जाता है उसमें कि आप कभी भी, मुझे तो नहीं लगता कोई बात संवाद कभी ये हार सकते हैं किसी,
1: नहीं हार सकते।
0: बिल्कुल। राजीव जी, मीडिया की फील्ड से आप ताल्लुक रख रहे हैं, और हरियाणा का मीडिया जो है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए मैं ये सवाल जानना चाह रही हूँ, आज के समय में बहुत सारे लोग, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले बात करी कि मीडिया पे कंट्रोल सोशल मीडिया पे नहीं है, कोई भी माइक उठा के आसानी से मीडिया का चैनल खोल के और अपने आप को रिप्रेजेंट कर लेता है, लेकिन हाँ रजिस्ट्रेशन वगैरह प्रोसेस अलग होते हैं, लेकिन आपके फैन फॉलोइंग बढ़ जाती है तो आप अपने तर्क रखने लग जाते हैं। पर जो एक सही चैनल से मीडिया में जाना चाहते हैं युवा, प्रॉपर जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन पढ़ के, जो आज से 20 साल पहले नहीं इतना पॉपुलर था, उनके लिए क्या सलाह देना चाहेंगे, कैसे मीडिया की फील्ड में जाएं, क्या कुछ ऐसे चीजें हैं जो उनको अपने अंदर लानी चाहिए?
1: बहुत लोग एग्जाम देते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, एक ही कॉलेज से करते हैं, लेकिन कुछ लोग आपने देखे कि वहां पे इनोवेशन करके दिखाते हैं। और डॉक्टर सभी होते हैं, एक ही कॉलेज से निकल के आते हैं
0: जी।
1: लेकिन कई लोग डायग्नोस बेटर करते हैं, बाकी ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये आपकी के ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना आगे और कैसे जाना चाहते हैं। देखिए, स्कूल भी एक होता है, सिलेबस भी एक होता है, कॉलेज भी एक होता है, लेकिन आपने किस तरीके से उस पढ़ाई को किया है। मैंने जहाँ थोड़ी देर पहले भी आपको एक बात बताई थी कि अगर एथिकल पेशेंस के साथ आप काम करते हैं तो रिजल्ट्स बहुत बेहतर नजर आते हैं। मैं एक सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ बैठा था एम्स के, तो उन्होंने मुझे एक बात बताई कि कितने ही पेशेंट्स इस दुनिया से चले जाते हैं, उसकी वजह ये नहीं होती कि उनको ट्रीटमेंट नहीं दिया जा सकता था, ट्रीटमेंट भी मिलता है, लेकिन वजह ये होती है कि वो डायग्नोस्ट नहीं हो पाते। और नंबर्स ऑफ पेशेंट इतने ज्यादा होते हैं कि आज की डेट में डायग्नोसिस फिजिकली किसी का कर पाना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। तो मैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, मैं तो ये कहूंगा कि जो भी बच्चा जाना चाहता है एक प्रॉपर एजुकेशन ले करके और अच्छी तरीके से सोच करके, अगर उसको जर्नलिस्ट ही बनना है तो बहुत सोच करके जाए। देखिए, अगर वो एक लुक्रेटिव लाइफ चाहता है तो शायद
0: वो नहीं होती है, जर्नलिज्म
1: मुश्किल है, मुश्किल है वो। और फिर उसके बाद अगर आपको उस लुक्रेटिव लाइफ के लिए, जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं, एथिक्स को दांव पे रखना है, तो फिर आप एक बेटर जर्नलिस्ट बन नहीं पाते। तो ये पहले आपको डिसाइड करना है कि आपको बनना क्या है। तो ये तक जुनून है, ये आपका प्रोफेशन नहीं हो सकता।
0: बिल्कुल, यानी आप अगर सोच रहे हैं कि जर्नलिस्ट बनने के बाद आपको सैटरडे संडे की छुट्टी मिलेगी, या आप बहुत ज्यादा भाग दौड़ नहीं करेंगे, आप इसी स्टूडियो में बैठे रहेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। इस स्टूडियो से बाहर बहुत बड़ी दुनिया है जिसको कवर करके आपको लाना है और कुछ मिनटों में दुनिया को बताना है। सो वो जो बैक स्टोरी होती है बैक स्टेज, वो बहुत बड़ी और बहुत थका देने वाली भी होती है, जिससे लोग बहुत ज्यादा थक भी जाते हैं, परेशान भी हो जाते हैं, तो वो चीज के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। राजीव जी, अब चलते चलते बस मैं चाहूंगी कुछ शब्द आप हमारे माता पिता, बच्चों और जितने हमारे श्रोता और ऑडियंस आपको देख रही है, सुन रही है, उनके लिए लेकर आए, क्योंकि आप कैसे खुद को काम रख पाते हैं, कैसे खुद को स्ट्रेस फ्री रख पाते हैं, फिजिकल फिट भी आप, मुझे लग रहा है कि आप 10 साल बाद स्टूडियो में आए हैं, पर वैसे के वैसे ही लग रहे हैं अगर हम पुरानी वीडियोस उठाएं तो।
1: तो मैं रेडियो मानव रचना के भी आप पे आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मैंने वैसे तो हमने सारी बातें कर चुके हैं
0: जी,
1: तीन चीजों का ध्यान रखिए, आपके बच्चे कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, ठीक ही कर रहे हैं, वो जो भी कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, फिजिकली फिट रखिए उन्हें, सारी प्रॉब्लम्स आपकी वहां पे खत्म हो जाती हैं। दूसरी बात, उन पर ट्रस्ट रखिए, मैंने बताया था कि लीकर की सेल डाउन हो गई है एक आपको उस प्रॉब्लम से बाहर निकालती है। तीसरी बात यह है कि जो गैप है वो गैप ना आ जाएगा, सिंक्रोनाइजेशन, सिंक होना बहुत जरूरी है। तो आपको यू नीड टू बी वेल प्रिपेयर्ड कि भाई वो जो कर रहा है, इंस्टेड ऑफ दैट कि तुम ये कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, इससे ज्यादा अच्छा है कि तुम जाकर उसके साथ ही बैठकर उसको सीख लो, शायद आप भी एंजॉय करने लग पड़ोगे उस बात को,
0: आप भी टेक्नोलॉजी को सीख जाओगे, टेक्निकली स्टेबल हो जाओगे,
1: आप भी एंजॉय कर ले,
0: यानी दोस्त बनना पड़ेगा
1: नेचुरली।
0: वो माता पिता वाला जो एक सिस्टम होता था जो 90s और 80s में होता था, वो वाला सिस्टम
1: अब माता पिता टाइप के रहे भी नहीं गए वैसे, अब तो सब लोग दोस्त जैसे ही हैं, तो वो जो छोटी मोटा गैप है उसको भी फिल कर देना चाहिए
0: जी बिल्कुल, यानी बच्चों के साथ दोस्ती करके चलेंगे तो बच्चे भी आपके अच्छे दोस्त बन जाएंगे। राजीव जी बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए और इतने दिल खोल कर पॉजिटिव बातें करने के लिए हमारे साथ, क्योंकि राजनेता के साथ राजनीति के अलावा अगर कोई बात करनी है तो आपको बहुत सारी बातें चाहिए होती हैं, क्योंकि इस पूरी कॉन्वर्सेशन में हम पॉलिटिक्स को कहीं कवर नहीं कर रहे हैं और हमारा पर्पस सिर्फ और सिर्फ इतना रहा है कि आप तक एक पॉजिटिव जानकारी और एक पॉजिटिव कॉन्वर्सेशन पहुंचाई जाए। बहुत बहुत शुक्रिया,
1: थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।
0: तो बहुत सारी बातें हम कर चुके हैं, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर ये सारी कॉन्वर्सेशन, ये पॉडकास्ट सुनने के लिए आप हमारी ऐप रेडियो मानव रचना डाउनलोड कर सकते हैं, इंटरनेट रेडियो जो आपको प्ले स्टोर ऐप स्टोर से मिल जाएगा, और ये सारी कॉन्वर्सेशन आप कभी भी कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में शेयर कर सकते हैं। साथ ही हमारे इंस्टाग्राम पेज और हमारे सोशल मीडिया पर फेसबुक और यूट्यूब को भी जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर ये जानकारी अच्छी लगे तो अपने कॉमेंट भी जरूर शेयर करें। फिलहाल मुझे यानी दीक्षा को दीजिए इजाजत और जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 के साथ। फील गुड फील लाइव, दिस इज दीक्षा साइनिंग ऑफ।
2: Hi, I'm Digmanshu Dhulia. You're listening to Radio Manav Rachna 107.8 FM. Feel good, feel live.
3: Aaja tujhe bhi main kara doon ta man chepe disco.
4: Well, hello, good afternoon, namaskar, sat sri akal, ram ram, jai mata di, assalamu alaikum dosto, main hu RJ Sagar, aaj ko hu lekar ke show Voice of Youth, and right now you're listening to Radio Manav Rachna 107.8 FM. Feel good, feel live. Now this show is really special, reason being कि यहाँ पर हर बार हमारे साथ एक expert होते हैं जिनसे हम उनके domain की बात करते हैं, and we try to make sure कि जब तक हमारा show खत्म हो तब तक आपके पास कुछ एक skill set पहुँच चुका हो। आज हमारे साथ है Mr. Pawan, Pawan का थोड़ा सा मैं आपको introduction देना चाहूँगा। Pawan is a banker, at the same time he is a content creator, so we're gonna talk about banking part and content creation part and fitness part। तो ये तीन हिस्सों में हमारा show आज का रहने वाला है, कोशिश करेंगे यहाँ पर आपको ये बता पाएं कि एग्जैक्टली जो बबल हमारे सामने की बैंक की लाइफ बहुत अच्छी होती है उसको डिकोड कर पाएं, एट द सेम टाइम कंटेंट की दुनिया की भी थोड़ी सी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले पवन भाई स्वागत है आपका।
5: नमस्कार, वेलकम।
4: पहले अपने बारे में थोड़ा सा बताइए हमारे श्रोताओं को जो आपको नहीं जानते हैं कि आप कौन हैं, क्या करते हैं।
5: हाँ, मेरा नाम पवन है और मैं एक बैंकर हूँ। जैसे कि आज हम देख रहे हैं अपने समाज में या फिर अपने आसपास एनवायरनमेंट में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम काम करते हैं वहाँ सभी देखते हैं हमारे आसपास के जो हमारे कलीग हैं या फिर हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, उनको हम मोस्टली देखते हैं कि थोड़ा अनफिट हैं और लोगों के अंदर भी फिटनेस के रिगार्डिंग जागरूकता थोड़ी सी कम है। मैं एक बैंकर हूँ और मुझे बैंक में रहते सर्विस को मेरे 10 से 12 साल हो चुके हैं, तो मैं देखता हूं कि जो रिटायरमेंट में मैंने काफ़ी स्टाफ को देख लिया है और रिटायरमेंट में जब मैं उनको देखता हूं कि वो रिटायरमेंट के समय वो कुछ नहीं लेके जाते हैं, उनकी हेल्थ जो है बिल्कुल एक नेगेटिव हेल्थ होती है, मोस्टली हेल्थ उनके चश्मे लगे रहते हैं, हेल्थ जो है उनका शुगर हाई रहता है, किसी का थायराइड रहता है, क्योंकि उसका एक मेन रीज़न ये है क्योंकि वो अपने फिटनेस को बॉडी को टाइम नहीं दे पाते, दिन का 9 to 5 की जॉब, उसके बाद शाम को फैमिली के बाद फिर सुबह अपना जॉब, मतलब बैंक का बैंकर है जो मोस्टली स्ट्रगल है थोड़ा सा लाइफ में, लेकिन अपने फिटनेस में लाइफ में बिल्कुल टाइम नहीं दे पाता है। मेरा मोटो ये है कि जितनी भी हमारे यूथ हैं या फिर एल्डर्स हैं, हमारे बड़े भाई हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, जितने भी हैं जो रिटायरमेंट भी हो चुके हैं वो सभी अपना हेल्थ में थोड़ा ध्यान लगाएं, जो जिम नहीं जा सकते हैं वो रनिंग करें, घर के अंदर अपना कार्डियो सेक्शन कर सकते हैं, अच्छी डाइट लें, ऑफिस में रह के या फिर स्टूडेंट भी हैं और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है वो अपना एक छोटे छोटे से स्नैक्स वगैरह आइटम बना लें हेल्थी फूड के, जो अपने टाइम टू टाइम अपना वेरी करते रहें, अपना ईट लें तो ताकि बॉडी के लिए प्रॉपर प्रोटीन कार्ब्स एंड जो भी न्यूट्रिशन बॉडी को चाहिए होते हैं वो सारे सप्लीमेंट भी की ज़रूरत पड़ती है तो अपना बीच बीच में लेते रहें, जिससे कि हेल्थ जो है इंसान अपने फिट रह सके। और फिटनेस एक छोटी चीज़ नहीं है कि आज हम ज्वाइन करेंगे तो हमें आज कल मिल जाएगी, फिटनेस एक बहुत लंबी जर्नी है जिसे अचीव करने के लिए हमें रोज़ छोटा थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। ये प्रयास जो है हमें अभी रिजल्ट नहीं देगा, लेकिन जिस समय हम रिटायरमेंट पे होंगे, जैसे हम बैंकर्स हैं या फिर किसी और ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं, सभी बैंक में होते हैं या फिर डिपार्टमेंट में होते हैं, कुछ स्टूडेंट होते हैं, सीनियर सिटीजन भी होते हैं, अब स्टूडेंट हैं आज के टाइम पे हम देखते हैं बच्चे ऐसे ही खा रहे हैं, जंक फूड फास्ट फूड खाते हैं, हेल्थी चीज़ कुछ नहीं खाते, कोक कोल्ड ड्रिंक्स ये सब चीज़ें हैं। मेरा तो ये बेसिकली कहने का मतलब ये है कि इन सब चीज़ों को लोग अवॉइड करें, थोड़ा सा कम करें और अपना खान पान जो है अच्छा रखें। अगर आदमी फिटनेस पे नहीं ध्यान दे पाता है, कम से कम अपना अच्छे फूड पे ध्यान लगाए, ये इनका रिजल्ट तो है। इन फ्यूचर जब आप पहुंचोगे अपने एज पे 50-60 पे पहुंचोगे तब आपको ये फील होगा कि हमारी बॉडी में क्या प्रॉब्लम है। और हमारा कहना यह है, हम भारत से हैं तो हमारे भारत की पहली कहावत यह है कि पहला सुख जो है निरोगी का आया है। अगर सुख रहना है जीवन में तो सबसे पहले आदमी को अपना शरीर को स्वस्थ रहना चाहिए, अगर खुद का शरीर स्वस्थ है तो ही हम जीवन में आगे कुछ और करने का प्लान करते हैं। हम स्वस्थ हैं तो अपने परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं, हम स्वस्थ हैं तो हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट को स्वस्थ रख सकते हैं, अपने स्टाफ को स्वस्थ रख सकते हैं। और अच्छे खाना खाते हैं तो साथ वाला पर्सन भी अच्छा ही खाएगा आपको देख करके, क्योंकि आदमी जैसा देखता है वैसा ही सीखता है, आसपास का माहौल जैसे ही होता है। अगर साथ में कुछ हमारी संगत खराब होगी तो हम संगत खराब ही सीखेगा, अगर हम अच्छा खाएंगे तो साथ वाला भी अच्छा ही खाएगा, अच्छा खाएगा तो उसकी अच्छी स्वस्थ रहेगी, अच्छी स्वस्थ रहेगी तो वो अपनी फिटनेस पे भी थोड़ा ध्यान लगाएगा कि सोचेगा व्यक्ति की अपनी फिटनेस को शारीरिक।
6: तो बेसिकली आप फिटनेस को प्रमोट करते हो एंड आप ये चाहते हो कि लोग हेल्दी रहें, अच्छा खाना खाएं, अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो करें।
5: जी जी।
6: और आप एक बैंकर हैं। ऑलराइट, सो अमेजिंग। पवन भाई ने बताया यहाँ पर कि किस तरीके से उनका जो थॉट प्रोसेस है वो फिटनेस को कैसे प्रमोट करते हैं एंड द वे हाउ वी शुड लिव आवर लाइफ्स, एंड बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, रीजन बीइंग कि ही इज़ करेक्ट कि उनकी आंखों के सामने जब लोग रिटायर होके जाते हैं तो वो फिट नहीं होते हैं एंड ही सी इट एज इफ कि आप अपने ओल्ड एज में एग्जैक्टली आपकी बॉडी को सबसे ज़्यादा फिटनेस की जरूरत होती है एंड एट दैट टाइम यू आर नॉट बीइंग फिट, दैट इज गोना अफेक्ट योर लाइफ। वी गोना टॉक अबाउट हाउ इज द लाइफ ऑफ अ बैंकर, बट उसके लिए हम बात करेंगे इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद। तो फिलहाल मजा लीजिए इन गानों का और जुड़ रही है हमारे साथ, क्योंकि वक्त है म्यूजिकल ब्रेक का। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक, मैं हूं सागर। शो यहां पर चल रहा है वॉइस ऑफ यूथ। हमारे साथ यहां पर आज की जो मेहमान है वो है मिस्टर पवन। और अभी तक हमने जाना पवन के बारे में, पवन भाई ने बताया कि एग्जैक्टली वो फिटनेस को प्रमोट करते हैं बीइंग अ बैंकर। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। पवन जी, मेरा अगला प्रश्न आपसे रहेगा कि बैंकर की लाइफ कैसी होती है? रीजन बीइंग कि बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए बैंकिंग एक ड्रीम जॉब होती है, तो मैं जानना चाहूंगा आपके शब्दों में कि एक बैंक की जिंदगी, एक बैंकर की जिंदगी कैसी होती है, कैसा होता है बैंक का माहौल?
1: बैंक की जॉब 9 to 5 की बहुत ही ज़्यादा अच्छी जॉब है, कोई बुरी जॉब नहीं है। लेकिन आज के इस टाइम में देख के, प्राइवेटाइजेशन को देख के, और इतने सारे बैंक हैं, कंपटीशन इतना है जॉब में कि स्ट्रगल हो गई है लाइफ। अब जो बैंकर्स की लाइफ है 9 to 5 नहीं, अब बैंकर्स जो है 8-8 बजे तक भी बैंक में जॉब करता है और उसके पास वर्कलोड बहुत ज़्यादा है वैसे। लेकिन ये सब जगह नहीं है, आदमी अपना काम को अगर इंजॉय से करे तो बैंकर जो है अच्छे से अपनी जॉब को कर सकता है, 9 to 5 भी कर सकता है अपने वर्कलोड को। बैंक में लोगों का ड्रीम रहता है, जो स्टूडेंट होते हैं अपना 12th पास करते हैं, उसके बाद अपनी ग्रेजुएशन करते हैं और IBPS का एग्ज़ाम दे के अपना बैंकर सिलेक्ट करके बैंक में लग सकते हैं, जिसकी अपना ड्रीम रहता है बैंकर्स की जॉब। बैंक में अलग अलग पोस्टेड हैं, सबकी पोस्ट का अलग अलग, गवर्नमेंट पे स्केल है, सबका अलग अलग अपना फैसिलिटी है, सबकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबकी अलग अलग पावर हैं, वो उसी हिसाब से उसी लिमिट में अपना काम करता है। स्ट्रगल इसलिए है क्योंकि बैंकर्स की जो जॉब है वो अब गवर्नमेंट जॉब है। जैसे मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ तो फेस ये करना होता है कि हमको कहीं भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है, इंटर सर्कल ट्रांसफ़र या फिर अंटर स्टेट ट्रांसफ़र हो सकता है, जिसमें हमारे ये फेस करना पड़ता है कि हम अपने फैमिली को टाइम नहीं दे पाते, अपने बच्चों को, माता पिता को टाइम नहीं दे पाते। और बाहर जाने के बाद हमको बहुत सारे खाने की समस्या होती है, जो चीज़ हमारा रेगुलर फूड होता है, हमारा लोकल फूड, वो हमें वहाँ नहीं मिलता। या फिर हमें रहने की समस्या होती है, हमें देखना पड़ता है यहाँ हमारा एनवायरनमेंट है या नहीं है। और सबसे ज़्यादा समस्या तो होती है अपनी फैमिली देने के लिए, या बैंकर्स जो हैं जिनका भार ट्रांसफ़र हो जाता है उनको घर आने के लिए दूर, जैसे फ्राइडे होता है तो सैटरडे को छुट्टी लेकर के अपने घर आते हैं, और संडे को फिर मंडे को फिर सुबह बैंकर जाते हैं। ये थोड़ा सा स्ट्रगल है बैंकर्स के लिए कि लाइफ में वो जॉब भी करना है और दूर रहता है, जबकि मेरा मानना ये है कि कोई भी बैंकर है, सभी बैंकों उनको अपने ही सर्कल में ट्रांसफ़र हो तो ज़्यादा बेस्ट है। क्योंकि कोई भी एम्प्लॉई है, कोई भी वर्कर कहीं पे काम करता है, वो अपने काम को अपनी जगह पे ज़्यादा अच्छा करेगा, क्योंकि वो फ्रेश मूड में रहेगा तो वो अच्छा काम करेगा। क्योंकि कोई भी आदमी सुबह सुबह भागता है, भाग के अपने जॉब पे जाएगा, सीट संभालेगा, आधे से ज़्यादा उसको अपना माइंड फ्रेश करने में लगा रहता है कि मैं अब सीट संभालूंगा, फिर शाम को उसे ये लगा रहता है कि मैं अपने घर जाऊँगा अभी। तो थोड़ा स्ट्रगल है इस चीज़ में बैंकर्स में।
0: सो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि बैंकर की लाइफ बहुत हेक्टिक होती है, और जो ये ड्रीम होता है आपका कि आपको बैंकिंग की लाइफ चाहिए, उसको ज़रूर पूरा करना चाहिए, लेकिन आपको अदर साइड ऑफ द स्टोरी ज़रूर पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली वहाँ पर जाकर के बहुत सारा बिजी आपकी लाइफ हो जाती है, हेक्टिक हो जाती है, जिसकी वजह से ट्रांसफ़र भी आपका कहीं और हो सकता है, परिवार से भी आप दूर हो सकते हैं। उन तमाम चैलेंजेस के लिए आपको तैयार होना चाहिए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या सच में बैंक की लाइफ ऐसी होती है कि 9 बजे गए 5 बजे छुट्टी हो गई, या उसके बियॉन्ड भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लोगों को नहीं पता है, अमूमन जो नहीं दिखाई देती हैं?
1: आप सही कह रहे हैं कि 9 to 5 जो है बैंक की जॉब है, वैसे वर्किंग आवर सभी बैंकों का 10 बजे स्टार्ट होता है, चाहे वो प्राइवेट हो या फिर PSU बैंक हो। बट डिपेंड करता है कि हमारा काम करने की जो है क्वालिटी कैसी है, हमारी अपनी एफिशिएंसी हम कितना दे सकते हैं अपने वर्क में, कि हमें अपना काम कितने बजे तक ख़त्म करना है। अपना स्टाफ में एक बॉन्डिंग होनी चाहिए आपस में, सब कोलैब करके, किसी भी आप ब्रांच में जाके देखेंगे, अलग अलग बैंकों में जाके देखेंगे कि रस इतना ज़्यादा रहता है कि किसी काउंटर पे भीड़ बहुत ज़्यादा है, किसी पे बहुत भीड़ कम है। अगर ये सब मिल के बैंकर्स एक दूसरा एम्प्लॉय सपोर्ट करता है तो सब 9 to 5 में अपना घर जा सकता है, 6 बजे भी जा सकता है ताकि आदमी अपना घर पहुँच जाए। लेकिन अब वो नहीं रहा है क्योंकि ज़्यादातर वर्कलोड इतना ज़्यादा है, कस्टमर डीलिंग ज़्यादा है बैंकर्स में, तो थोड़ा सा जो बैंक का एम्प्लॉई है वो टाइमली फ्री नहीं हो पाता है वैसे। लेकिन मिलके करे और हंसते रहे, अपना खुल के काम करे तो आदमी सारा काम आता है तो फ्री हो सकता है वैसे।
0: सो इट्स ऑल अबाउट हाउ यू मैनेज योर टाइम, हाउ यू मैनेज योर वर्क, एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स। सो बहुत सुंदर बात बोली पवन भाई ने यहाँ पर। एक और म्यूजिकल ब्रेक का, उसके बाद अपने शुमया की बात करेंगे एंड वी गोना टैप इन द कंटेंट क्रिएशन पार्ट की एग्जैक्टली कंटेंट क्रिएशन कैसे चल रहा है उनका, कैसे किया जाता है, उस एक एस्पेक्ट को समझने की कोशिश करेंगे. इनके 1 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, उस एक पर्टिकुलर पहलू को हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे. बट कहीं चाहिए मत, जुड़ रहे हैं हमारे साथ. फील गुड फील.

0: वंस अगेन आई एम होपिंग आपको मजा आ रहा होगा। अगर आपके पास कोई फीडबैक है मेरे लिए, पवन के लिए, तो 8010781078 इस कॉन्टैक्ट नंबर तक अपनी बात जरूर पहुंचाएं। फिलहाल यहाँ पर शो को आगे लेकर भी चलेंगे। मैं हूँ सागर, शो चल रहे हैं पर वॉइस ऑफ यूथ, और एक बैंकर की जुबानी हम ये तमाम चीज़ें समझ रहे हैं। अभी तक हमने जानू की लाइफ के बारे में, अभी तक हमने समझा कि एग्जैक्टली लाइफ स्टाइल कैसा होता है एक बैंकर की लाइफ का, एग्जैक्टली डेली का जो दिन होता है काम कैसे रैप होता है, एंड बहुत सारी चीज़ें हमें जानने को मिली एग्जैक्टली इनसाइट्स की। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर कि एक बैंक में भी BTS होता है बिहाइंड द सीन्स, जो हमें कई बार नहीं दिखाई देता है। अब शो को आगे बढ़ाएंगे और मैं बात करना चाहूँगा कंटेंट क्रिएशन की। पहला प्रश्न तो मेरा ये है कि कंटेंट क्रिएशन आपने क्यों स्टार्ट किया, आपको क्यों लगा कि ये करना चाहिए?
1: मैंने बैंक जो है अपना 2015 में ज्वाइन किया था। उस समय मेरा ट्रांसफ़र घर से लगभग 60 किलोमीटर दूर था, तो मैं जो ट्रैवल करता था रोज़ ट्रेन से, बस से या फिर ऐसे करता था, तो सुबह 7 बजे निकल के 2 घंटे में ऑफिस पहुंच गए 9 बजे, उसके बाद अपना वर्किंग आवर स्टार्ट करके शाम को वहां से 5-6 बजे फ्री होके फिर 2 घंटे रात को घर आके, तो 8 बजे घर आने के बाद ये लाइफ स्ट्रगल चलता ही रहता था। तो लगभग 5-6 महीने के बाद मेरे को ये फील हुआ कि इस तरीके से तो मैं अभी यूथ हूँ, अगर मैं यंग हूँ, ये अगर ऐसा चलता रहेगा तो मेरी हेल्थ बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। और हम मैं देख ही रहा हूँ कि यहाँ मोस्टली हैं बैंकर्स में, हम आसपास में भी देखते हैं सब फिट नहीं है। फिर मेरे को लगा कि हमें फ़िटनेस पर थोड़ा ध्यान लगाना चाहिए। उसके बाद फिर मैंने अपना फ़िटनेस में थोड़ा लाइन ली लगाई, उसमें सुबह फिर मैं अपना उठ के जहाँ पे मेरे को ऑटो लेना पड़ता था, मैं वहाँ पे पहले अपना पैदल वॉक करना स्टार्ट करा ऑटो की जगह पे, ताकि उस समय मेरी एक्सरसाइज हो जाती थी और मेरा टाइम भी थोड़ा अच्छा रहता था। शाम को अगर ऑफिस में कभी लेट होते थे तो शाम को ऑफिस में बैग रख के अपना आसपास की मैंने कोई जिम ज्वाइन करके वहाँ पे अपना वर्कआउट स्टार्ट किया। और फिटनेस को फिर मैंने तब से ही अपना एक ये ले लिया कि ये फिटनेस ये ड्रीम नहीं है, एक एम है जो कि मुझे आगे तक मुझे हमेशा ही सुख ही देगा। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर आप फिट रहोगे तो ही आप आगे की लाइफ और अच्छी जी पाओगे। बैंकर्स में फिर होने के बाद फिर मैं जगह जगह ट्रांसफ़र हुआ, जगह जगह देखा, कहीं हमें कुछ चेंजेस मिलते हैं, कभी कुछ फूड की चेंजेस, कभी ट्रैवल की चेंजेस, लेकिन फ़िटनेस को मैंने हमेशा अपनी प्रायोरिटी पे रखा। मैंने ऑल टाइम सुबह ही रनिंग के रख के शाम को जिम रखी। जिम आदमी को वर्कआउट करना चाहिए, और रनिंग में आदमी को हर व्यक्ति को अपनी रनिंग जब भी टाइम मिले, अगर वर्कआउट नहीं कर पाता है वो अपनी रनिंग रखे।
0: तो आपने बेसिकली फिट रहने के लिए कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया। इंस्टाग्राम पर ग्रो कैसे किया जाता है?
1: इंस्टाग्राम पर ग्रो करने के लिए कंटेंट आपका जो है फिटनेस के रिलेटेड, आप रेगुलर उसमें अपना पोस्ट डालें, रेगुलर आप अपना जो भी वर्कआउट शेड्यूल है, मैं अपना रेगुलर वर्कआउट शेड्यूल डालता हूँ, उसमें जो भी अपना डाइट प्लान है मैं अपना वो सब उसमें डालता हूँ। कंटेंट ये है कि आप लोगों को ये गाइड कर सकते हैं आपको किस तरीके से अपना डाइट प्लान जो है वो रख रहे हैं, आप अपना क्या खा रहे हैं, कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप जो भी वर्कआउट कर रहे हैं रनिंग का, तो वो सब अपना कंटेंट जो बना के अपना उसमें डाल लें इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पे या फिर आप यूट्यूब चैनल जो भी है उसमें।
0: बहुत सारे लोग हैं जो कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना चाहते हैं, जिनको कंटेंट बनाना है, शुरू करना है, वो अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं कंटेंट की?
1: अगर किसी भी फ्रेंड्स को अपने कंटेंट स्टार्ट करना है, सबसे पहले वो सिलेक्ट कर ले कि उसको करना क्या है। अगर फिटनेस में सिर्फ रनिंग ही करनी है तो अपना रनिंग का स्टार्ट धीरे धीरे से कर सकता है, अपने अपने जो भी शेड्यूल है उसका डेली का, सुबह मॉर्निंग में जगने का और नाइट में कितने बजे वो फ्री होता है स्लीप का। वैसे अपने फिटनेस को लेने के लिए सबसे पहले मेन चीज़ तो ये है कि यही है इसका मोटो लोगों तो, कि ईट रिपीट एंड स्लीप, अपना अच्छा खाना और उसको रिलैक्स करना और अच्छी नींद लेना, फिट रहने के लिए तो यही है। कंटेंट स्टार्ट करने के लिए सभी फ्रेंड्स को सबसे पहले अपना वर्कआउट जो भी शेड्यूल है अपने वर्कआउट को अपना ठीक रखे, अपना रेगुलर पोस्ट डाले जो भी वर्कआउट कर रहे हैं, अपनी कंसिस्टेंसी रखे और रेगुलर पोस्ट रखे, अवॉइड करे अल्कोहल, अवॉइड करे जंक फूड और अवॉइड करे बहुत सी चीज़ें हैं जो बच्चे अवॉइड कर सकते हैं।
0: सो बेसिकली अवॉइड ऑल दोस थिंग्स जो आपकी बॉडी को नेगेटिव अफेक्ट करती हैं एंड द थिंग्स दैट एक्चुअली पुट योर लाइफ एट स्टेक। सो अवॉइड ऑल दीज थिंग्स एंड जस्ट स्टार्ट डूइंग इट, जो भी आप करना चाहते हैं, बीट फिटनेस, कॉमेडी, टेक या जो भी आपका डोमेन हो सकता है, इस बिन इशू आप पकड़ना चाहते हैं, जस्ट गेट स्टार्टेड। सो दैट इज द बॉटम लाइन ऑफ दिस। मेरे सवाल यहाँ पर खत्म होते हैं पवन भाई, कोई भी ऐसी चीज़ जो मैं ना पूछ पाए और आप अपने मन में लेकर आए हो तो प्लीज़ फील फ्री।
1: सबसे मेन चीज़ तो यह है, मेरा तो ड्रीम यह है इंडिया के अंदर हो या इंडिया से बाहर, सब लोग किसी भी एज से लेकर के अब अवेज तक अपने हेल्थ को फिट रखे। फिट का मतलब ये नहीं है कि हमने आज वर्कआउट कर लिया, शाम को सो गए, हम फिट हो गए। एक लंबी जर्नी है, सबको अपने अच्छे खान पान से लेके, अपना अच्छा सोने से लेके, अपनी शारीरिक कसरत, घर के अंदर भी कोई काम भी एक फिटनेस ही है, लेकिन एक रेगुलर रूटीन में जो अपने फिटनेस को, बॉडी को, अपने मानसिक मेंटलिटी को फिट रखता है, वो फिट रखे वो ज़्यादा ठीक है। मेरा तो यही है, मैं सब में और आपके साथ मिलके बहुत अच्छा लगा सर।
0: थैंक यू सो मच। और दोस्तों, आज हमने बात करी एक बैंकर से और एक कंटेंट क्रिएटर से, इन्होंने हमें बताया कि एग्जैक्टली बैंकिंग लाइफ कैसी होती है, हमें बताया कि कंटेंट को कैसे स्टार्ट किया जाता है, बताया एग्जैक्टली कि कंटेंट को ग्रो कैसे करना होता है, एट द सेम टाइम फिटनेस को बहुत प्रमोट करते हैं। आपने अभी तक ये अगर पूरा संवाद सुना है तो आपको समझ में आ गया होगा कि थ्रू आउट ऑल द क्वेश्चंस, ऑल द आंसर्स, ये फिटनेस को ही टॉप पे रख के बात कर रहे थे। सो आई थिंक दैट्स मोर देन इनफ टू लेट अस नो कि एग्जैक्टली फिटनेस आपके पास एक ऑप्शन नहीं है, कोई चॉइस नहीं है, दैट इज़ द मैंडेटरी थिंग जो आपको करनी ही चाहिए एंड दैट इज़ नॉन नेगोशिएबल, जो हम सबको फॉलो करना चाहिए। ऑल राइट, ऑन दिस नोट वक्त है अपने शो के यहाँ पर कंक्लूड करने का। उम्मीद कर रहा हूँ आज का शो आपको पसंद आया होगा, आज के शो से कुछ मूल्य आप लोगों तक पहुँच पाए होंगे। फिलहाल इसी नोट पर इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच पवन भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए, इट मीन्स अ लॉट टू अस।
1: थैंक यू सर।
0: ऑल राइट दोस्तों, नाउ ऑन दिस नोट, दिस इज योर दोस्त एंड होस्ट आरजे सागर।

0: मिट्टी से गहरा रिश्ता रखता हूँ। अरे भाई किसान का बेटा हूँ, ये गर्व से कहता हूँ। किसान भाइयों, ककड़ी के बारे में आज आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन आप जानते हैं मैं किसी भी फसल की बात करता हूँ तो उसकी किस्में कौन कौन सी होनी चाहिए ये जानकारी आपको ज़रूर देता हूँ। ककड़ी की जब बात आती है तो इसकी एक किस्म होती है जिसका नाम है पंजाब लॉन्ग मिलोन वन। ये किस्म 1995 में तैयार की गई थी और ये जल्दी पकने वाली किस्म है। इसकी बेलें जो हैं लंबी होती हैं, हल्के रंग का तना, पतला और लंबा फल होता है। इसकी औसतन पैदावार 86 क्विंटल प्रति एकड़ होती है, लेकिन अगर दूसरे राज्यों की किस्मों की बात करें तो एक किस्म है करनाल सेलेक्शन। ये किस्म ज़्यादा मात्रा में फल पैदा करती है। इसके फल हल्के हरे रंग के और कद में लंबे और गुद्दा कुरकुरा और अच्छे स्वाद वाला होता है। इसके अलावा एक और नस्ल है जिसका नाम है अर्का शीतल। ये किस्म IIHR लखनऊ द्वारा विकसित की गई है। इसके फल हरे रंग के होते हैं जो कि मध्यम आकार के होते हैं। इसका गुद्दा कुरकुरा और अच्छे स्वाद वाला होता है। 90 या 100 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। लेकिन इस फसल को उगाने के लिए ज़मीन की तैयारी कैसे की जाए ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। ककड़ी की खेती के लिए अच्छी तरह से तैयार ज़मीन की आवश्यकता होती है। मिट्टी को भुरभुरा करने के लिए हैरो से 2 या 3 बार जुताई करना ज़रूरी होता है, तब जाकर के ककड़ी की फसल बेहतरीन हो सकती है। लेकिन जब बात आती है बिजाई की तो बिजाई के बारे में भी आपको बताऊंगा और बीज के बारे में भी आपसे बहुत सारी बातें करूंगा, जैसे बीज की मात्रा क्या होनी चाहिए या बीज का उपचार कितना ज़रूरी होता है, ये सारी जानकारियां आपको दूंगा, लेकिन सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर।
1: क्या

दोस्तों, हम कितने भी मॉडर्न क्यों ना हो जाएं, लेकिन बिना किसान की मेहनत के जिंदा नहीं रह सकते। किसान भाइयों, बात हो रही है ककड़ी के बारे में, आइए बात कर लेते हैं बिजाई की या बिजाई के समय की। देखिए, बीजों की बिजाई के लिए फरवरी मार्च का महीना अनुकूल होता है, लेकिन जब बात आती है फासले की तो इसका भी हमें ध्यान रखना जरूरी है। खालियों के बीच 200 से 250 सेंटीमीटर और मेड़ों के बीच 60 से 90 सेंटीमीटर फासले का प्रयोग करें। फसल के अच्छे विकास के लिए दो बीजों को एक जगह पर ही बोएं। और अगर बीज की गहराई की बात आती है तो बीजों को 2.5 से 4 सेंटीमीटर यानी कि इतनी गहराई में बोना चाहिए। लेकिन बिजाई का अपना एक ढंग भी होता है। बीजों को बेड या मेड़ पर सीधे बोया जाता है। लेकिन किसान भाइयों, आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे जो बीज होते हैं उसमें बहुत सारे रोग भी लग जाते हैं। और सवाल एक ये है कि बीज की जो मात्रा है वो कितनी होनी चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रति एकड़ में 1 किलो बीज का प्रयोग करें। और उपचार की बात आती है तो मिट्टी से होने वाली बीमारियों से बचने के लिए बेनलेट या बविस्टीन 2.5 ग्राम से प्रति किलो बीजों का उपचार करें। इससे क्या होगा, बीज को जो रोग लगने वाले थे वो रोग लगेंगे नहीं, और जब बीज को कोई रोग नहीं लगेगा तो आपकी फसल बेहतर होगी, स्वस्थ होगी और इसका दाम भी आपको अच्छा ही मिलेगा। करते हैं कुछ और भी बातें करते हैं ककड़ी के बारे में, जैसे खाद कैसे लगाएं या खाद कौन सी होनी चाहिए, खरपतवार का कैसे ध्यान रखें, ये सारी बातें भी आपके साथ साझा करूंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर।

0: बात।
1: दोस्तों, किसान वो भगवान है जो खुद का पेट खाली रखकर दूसरों का पेट भरता है। तो आइए किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं खाद की। अगर आप ककड़ी की फसल अच्छी तरह से उगाना चाहते हैं तो आपको नर्सरी बेड से 15 सेंटीमीटर दूरी पर फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा और नाइट्रोजन का 1/3 भाग बिजाई के समय डालें। बाकी की बची हुई नाइट्रोजन बिजाई से 1 महीने के बाद में डालें। अब बात आती है खरपतवार की, क्योंकि जो खरपतवार होती है ना, वो फसल को एकदम बर्बाद कर देती है। तो इसके लिए क्या करना है, नदीनों की रोकथाम के लिए बेलों के फैलने से पहले इनकी ऊपरी परत की कसी से हल्की गुड़ाई कर दें। इससे जो खरपतवार है वो कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन जब बात सिंचाई की आती है तो ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। किसान भाइयों, बिजाई के बाद तुरंत सिंचाई करना आवश्यक है और गर्मियों में 4 से 5 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। और बारिश की बात करें तो बारिश के मौसम में सिंचाई आवश्यकता अनुसार करें, वरना आपकी फसल पर प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा दोस्तों, बहुत सारे ऐसे कीट होते हैं जो कि बड़े खतरनाक होते हैं हमारी फसल के लिए। ऐसा ही एक कीट होता है जिसका नाम है चेपा और थ्रिप्स। ये कीट पत्तों का रस चूसते हैं जिससे पत्ते पीले पड़ जाते हैं और फिर गिर जाते हैं। थ्रिप्स के कारण पत्ते मुड़ जाते हैं जिससे पत्ते कप के आकार के और ऊपर की तरफ मुड़े हुए होते हैं। जब भी आपको इसका हमला फसल पर दिखाई दे तो थायामेथोकस्म 5 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी की स्प्रे फसल पर कर दें। इससे ये जो कीट है चेपा और थ्रिप्स, ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे और आपकी जो फसल है वो फसल एकदम स्वस्थ और सुरक्षित रहेगी। लेकिन बात अभी ख़त्म नहीं हुई है, और भी कीट हैं जो कि आपकी फसल के लिए बहुत हानिकारक हैं, उनके बारे में भी आपसे बात करूँगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर अन्नदाता।

को इशारों से बुलाए, कितनी रंगीन है फिजाएं, जापानी परियां मुस्कुराए, देखो वो गोरी गोरी राहें हमको इशारों से बुलाएं।

0: दोस्तों, एक दिन जीकर देखो जिंदगी किसान की, कैसे वो मिट्टी से सजा देता है थालियां हिंदुस्तान की।
1: किसान भाइयों, ककड़ी के बारे में आज आपसे बात हो रही है और पीछे मैंने एक कीट का जिक्र किया था जो कि हमारी फसल के लिए बहुत ही हानिकारक होता है, चेपा और थ्रिप्स। इनके बारे में तो आपको बता दिया था। इसके अलावा एक और कीट होता है जो जाना जाता है भुंडी के नाम से। इनके कारण फूल, पत्ते और तने नष्ट हो जाते हैं। अगर इसका हमला दिखाई दे तो मेलाथियोन 2 मिलीलीटर या कार्बोरिल 4 ग्राम को प्रति लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। ये भुंडी की रोकथाम में सहायक है। इसके अलावा एक होती है मक्खी, जो कहलाती है फल की मक्खी। ये ककड़ी की फसल का गंभीर कीट है। किसान भाइयों, नर मक्खी फल की बाहरी परत के नीचे अंडे देती है और उसके बाद ये छोटे कीट फल के गुद्दे को अपना भोजन बनाते हैं। उसके बाद क्या होता है, ये जो हमारा फल है वो फल गलना शुरू हो जाता है और फिर गिर जाता है। अब इसका उपचार सुन लीजिए। फसल को फल की मक्खी से बचाने के लिए नीम के तेल 3.0% फोलियर स्प्रे करें। इससे इस मक्खी यानी फल की मक्खी को कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा इसकी कुछ बीमारियां भी हैं, जैसे सफ़ेद फफूंद लग जाती है। इसकी रोकथाम कैसे करनी चाहिए, इसकी जानकारी भी आपको दूंगा। आप मेरे साथ बने रहिए और सुनते रहिए अन्नदाता।

दोस्तों, छत टपकती है उसके कच्चे घर की, फिर भी वो किसान करता है दुआ बारिश की। किसान भाइयों, ककड़ी की फसल के बारे में आज आपसे बहुत सारी बातें साझा कर रहा हूं, लेकिन बात चल रही थी कुछ कीटों के बारे में जो कि फसल के लिए हानिकारक होते हैं। कुछ बीमारियां भी होती हैं जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती हैं, जैसे सफ़ेद फफूंदी। पत्तों के ऊपरी सतह पर सफ़ेद रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। ये जो धब्बे हैं ना किसान भाइयों, प्रभावित पौधे के मुख्य तने पर भी दिखाई देते हैं। इसके कीट पौधे को अपने भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं और इनका हमला होने पर पत्ते गिरते हैं और फल पकने से पहले ही गिर जाते हैं। अगर इसका हमला खेत में नजर आए तो पानी में घुलनशील सल्फर 20 ग्राम को 10 लीटर पानी में डालकर 10 दिनों के अंतराल पर 2 से 3 बार स्प्रे करें। इस तरह से इस बीमारी पे कंट्रोल पाया जा सकता है। इसके अलावा एक और बीमारी है जिसका नाम है एंथ्राक्नोस। ये पत्तों पर अपना हमला करती है जिसके कारण पत्ते

0: एक दरिया मोड़ा उसने, एक समंदर बांध रखा है, किसान के एक टूटे हल ने पूरे देश को संभाल रखा है।
1: किसान भाइयों, ककड़ी के बारे में आपसे बहुत सारी बातें कर ली हैं, लेकिन अब समय है फसल की कटाई का। देखिए किसान भाइयों, इसके जो फल है ना, 60 से 70 दिनों में कटाई के लिए तैयार हो जाते हैं, और कटाई मुख्य तौर पर फल के पूरी तरह विकसित होने और नर्म होने पर ही की जाती है। कटाई मुख्य रूप से फूल निकलने के मौसम में 3 से 4 दिनों के अंतराल पर की जाती है, लेकिन जब बात आती है बीज उत्पादन की, तो इस बात को भी जरा ध्यान से सुनिएगा। ककड़ी को अन्य किस्मों जैसे वाइल्ड मेलन, खरबूजा, स्नैप मेलन, यानी इनसे 1000 मीटर के फासले पर रखें। खेत में से प्रभावित पौधों को हटा दें। जब फल पक जाएं, यानी जैसे उनका रंग बदल कर हल्का हो जाए, तब उन्हें ताजे पानी में रखकर हाथों से तोड़ें और गूदे से बीजों को अलग कर लें। बीज जो नीचे स्तर पर बैठ जाते हैं, उन्हें बीज उद्देश्य के लिए इकट्ठा किया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों, बीज उत्पादन के बारे में भी आपसे बात हो गई, फसल की कटाई कैसे की जाए ये भी बता दिया, और कौन कौन सी बीमारियां हैं, कौन कौन से कीट हैं जो कि हमारी फसल को नेस्तनाबूद कर देते हैं, उनसे रोकथाम कैसे की जा सकती है, ये सारी बातें विस्तार से आपको बता दी हैं। पर अब वक्त है आपसे आज्ञा लेने का। चलता हूँ, और चलते चलते सभी किसान भाइयों को करता हूँ राम राम सलाम।
2: पर भंग का रंग जमा हो चकाचक, हिरला पान चबाए, आहा।

कैसा सीधा सादा, मैं कैसा भोला भाला। अरे कैसा सीधा सादा, मैं कैसा भोला भाला। जाने कौन घड़ी में पड़ गया, पढ़े लिखों से पाला। मीठी छुरी से मीठी

गोरी बाबा अरे कैसी गोरी गोरी पोती की दिखी छोरी करके जोरा जोरी कर गई हमरे दिल की चोरी मिली छोरी तो हुआ निहाल छोरा गंगा किनारे वाला ओ छोरा गंगा किनारे वाला ओ खई के पहन बनाओ रतबाला खुल जाए बंद अकल का

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर हाजिर है आपका दोस्त फहीम लेकर यादों का सफर। दोस्तों, इन दिनों बात हो रही है रचनाकार मधु कांकरिया के बारे में। उनके बारे में पिछले एपिसोड में मैंने आपसे बहुत सारी बातें की थी। उनका कहना है कि हर एक देश का, समाज का अपना स्वतंत्र बोध होता है और युग बदलने के साथ साथ उसका बोध भी बदलता रहता है, जिसका रूप साहित्य में देखने को मिलता है। जिस तरह व्यक्ति और समाज एक दूसरे के परिपूरक हैं, ठीक उसी तरह साहित्य और युग बोध भी अनुपूरक हैं। एक के बिना अन्य की कल्पना असंभव है, ऐसा कहना है मधु कांकरिया का। लेकिन इनके बारे में आज के एपिसोड में और बहुत सारी बातें आपके साथ साझा करूंगा। फिलहाल आवाज की दुनिया के दोस्तों को फहीम का नमस्ते, सलाम।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, मधु कांकरिया का युगबोध सजग, सतर्क और स्पष्ट है। अपनी कहानियों में उन्होंने तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रवृत्तियों को भली भांति भाप कर यथार्थ वर्णन किया है। जो प्रवृत्तियां, परिस्थितियां, समस्याएं उन्हें एक बेहतर समाज के निर्माण में बाधक प्रतीत हुई हैं, उनका हल प्रस्तुत करने का यत्न भी एक शुद्ध साहित्यकार की भांति किया है। मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित होने के कारण मधु कांकरिया की कहानियों में समाज का वास्तविक यथार्थ अंकित हुआ है, जहां कल्पना के अटने की ज्यादा गुंजाइश देखने को नहीं मिलती है। सूरज पालीवाल के मुताबिक मार्क्सवाद जीवन और जगत को देखने की स्वस्थ दृष्टि देता है, जिसका प्रभाव मधु कांकरिया के जीवन और रचना जगत में देखा जा सकता है। वो मार्क्सवादी नहीं है, लेकिन उसकी विरोधी भी नहीं है, इसलिए उनकी रचनाओं का आकाश विस्तृत है। घर परिवार की सीमाओं का जो बार बार अतिक्रमण होता है, उसके सूत्र इसी मार्क्सवाद के प्रभाव में देखे जा सकते हैं। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर।
1: शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, मधु कांकरिया का रचना संसार बहुत विस्तृत है, जिसके कारण वो अपने समकालीन रचनाकारों जैसे मालती जोशी, कृष्णा सोबती, मन्नु भंडारी, ममता कालिया, राजी सेठ, अनामिका, उषा प्रियंवदा, सुधा अरोड़ा, नासिरा शर्मा और सूर्य बाला से अलग और विशिष्ट हैं। दोस्तों, मधु कांकरिया के व्यक्तित्व का खुला दर्शन उनके साहित्य में परिलक्षित होता है। वो ड्राइंग रूम में बैठकर लिखने वालों में से नहीं है, वो उन गलियों में जरूर भटकती हैं जहां उनके पात्र हैं। वो फॉर्मूला टाइप कहानी में विश्वास बिल्कुल नहीं करती, जीवन जैसा है उसको वैसा ही साहित्य में उतारने की कोशिश उनकी हमेशा रहती है। जीवन में जो स्त्री हार रही है उसे वीर बाला या झांसी की रानी बनाकर बहुत नहीं दिखाती हैं। यही उनकी लेखन की खासियत है जो और लेखकों से उनको अलग करती है। इनके बारे में बातों का सिलसिला जारी रहेगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर यादों का सफर।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, बात हो रही है मधु कांकरिया के बारे में, उनके लेखन के बारे में। मधु कांकरिया की हर एक कहानी समकालीन दौर से इस प्रकार संबंधित है कि प्रत्येक पाठक खुद को उसमें जरूर पाता है। अगर स्त्री की बात करें तो 20वीं सदी के अंतिम दशक की लेखिकाओं ने स्त्री मुक्ति की समस्याओं को अपने अनुभवों, भोगी हुई जिंदगी की यातनाओं, मुक्ति की छटपटाहट और बेचैनी को वाणी प्रदान की है। आज की स्त्री अपने सामने उपस्थित चुनौतियों को स्वीकार करती है, सामंती परिवेश की जकड़न और रूढ़ मर्यादाओं को तोड़ती है, साथ में सकारात्मक रूप से अपने दृढ़ व्यक्तित्व को भी वाणी प्रदान करती है। मधु कांकरिया की कहानी, जिसका नाम है दाखिल। कहानी दाखिल में पति द्वारा प्रताड़ित स्त्री यानी सुकीर्ति के जीवन का जिक्र हुआ है। अब सुकीर्ति के बारे में किस तरह से जिक्र किया है मधु ने, आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, मैं आपसे जिक्र कर रहा था मधु कांकरिया की उस कहानी का जिसका शीर्षक है दाखिल। दाखिल में पति द्वारा प्रताड़ित स्त्री यानी सुकीर्ति के जीवन संघर्ष का बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया गया है। सुकीर्ति के प्रति पति का व्यवहार कैसा था, ये छोटे से विक्रम यानी जो बेटा है उसके कहने से पता चलता है कि मैंने फेंके हैं ये चाकू यहाँ, मुझे डर था कहीं पापा गुस्से में ये चाकू ही तुम पर ना फेंक दें। उस दिन जो गरम गरम चाय किस तरह फेंकी थी पापा ने आपके ऊपर। दोस्तों, सुकीर्ति अपने बेटे को एक अच्छे स्कूल में दाखिला कराना चाहती है, लेकिन पति के ना होने से ये काम सहज नहीं था। वो अपने भाई को पति बनाकर बच्चे के एडमिशन का प्रयास करती है और आखिरकार अनेक संघर्ष के बाद वो इसमें सफलता पाती है। पितृसत्तात्मक समाज में एक अकेली स्त्री का जीवन बहुत ही कठिन और संघर्षशील होता है। पुरुष के बिना नारी के अस्तित्व को आज भी लोग स्वीकार नहीं कर पाते हैं, ये हकीकत है और यही सत्य है। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर सुनते रहिए फहीम के साथ यादों का सफर।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, भारतीय नारी के विषय में पहले से ही पवित्र संकल्पना रही है कि वो किसी भी प्रतिकूल या नकारात्मक स्थिति में अपने सतीत्व का विसर्जन नहीं करेगी, क्योंकि ये नारी का आभूषण है। उसकी पवित्रता पितृ सत्ता की वैचारिकी और उससे तराशी स्त्री सोच से आबद्ध रही है, लेकिन आज के युग तक आते आते इस दृष्टिकोण में काफी कुछ बदलाव आए हैं। जीवन मूल्य के प्रति बदले हुए चिंतन के कारण वर्तमान में स्त्री स्वतंत्रता के साथ जीवन बिताना चाहती है। अगर उसकी स्वतंत्रता पर जबरदस्ती लगाम लगा दी जाए तो उसका मन आजादी के लिए तड़पने लगता है। वो किसी न किसी तरह स्वतंत्र होने की सोच में डूब जाती है। फिर रास्ता कोई भी हो, सही हो या गलत हो, उसे परवाह नहीं रहती। दोस्तों, मधु कांकरिया की एक कहानी है जिसका नाम है चूहे को चूहा ही रहने दो। इस कहानी के बारे में आपसे जिक्र करूंगा, सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर यादों का सफर।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, बात हो रही है मधु कांकरिया के बारे में और उनकी लेखन के बारे में। जैसा कि मैंने बताया था, उनकी एक कहानी है जो कि बड़ी मशहूर है, नाम है चूहे को चूहा ही रहने दो। ये कहानी एक प्रतिशोध परायण स्त्री का बयान बनती है। एक बार नायिका हिम्मत करके अपने छोटे भाई के मित्र से हाथ मिला लेती है तो उसका पति उसके हाथों को दीवार पर रगड़ देता है ताकि स्पर्श के चिन्ह मिट जाएं। नायिका कहती है, मेरे पति ने मेरी देह की जमीन पर ऐसी हदबंदी कर दी थी, ऐसे कटीले बाड़े डाल रखे थे कि मैं किसी हम उम्र इंसान से बात करने तक तरस जाया करती थी। पति से बदला लेने के लिए एक अजनबी से शारीरिक संबंध बनाकर घोषित करती है, हाँ हाँ, आज की ये रात अकस्मात नहीं थी, इसके मेघ खंड मेरे अवचेतन में जाने कितने वर्षों से खंड खंड इकट्ठे हो रहे थे, आज की रात मेरे प्रतिशोध की रात है। तो इस तरह से दोस्तों, मधु कांकरिया ने अपनी कहानियों के माध्यम से समाज में फैली जो कुरूतियां हैं, जो बुराइयां हैं, उनको खत्म करने का प्रयास किया और जो स्त्रियां हैं उनको जागरूक करने की कोशिश की। इनके बारे में अगले एपिसोड में आपसे और भी बहुत सारी बातें करूंगा। फिलहाल इजाजत चाहता हूं। अपना ख्याल रखिए, आसपास सफाई का ख्याल रखिए, आसपास पेड़ पौधे लगाएं और सुनते रहें रेडियो मानव रचना 107.8 FM। चलता हूं, फिर मुलाकात करूंगा। अपना ख्याल रखना। नमस्ते, खुदा हाफिज।

नमस्कार, मैं बोल रहा हूँ सिंगराज धाना, टोक्यो 2020 पैरोलंपिक सिल्वर ब्राउन मेडलिस्ट इन शूटिंग। आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 फील गुड फील।

हेलो फरीदाबाद, स्वागत है आपका आपके अपने रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर। और मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजी स्नेहा, और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम ट्रेंडिंग तड़का, जहाँ पर हर बात होती है ट्रेंड वाली। जी हाँ, हर हफ्ते संडे शाम 4 से 5 लेकर आ जाती हूँ आपके लिए कुछ खास ट्रेंडिंग टॉपिक, और इसी के साथ लेकर आती हूँ आपके लिए बेहद ही खूबसूरत से गाने भी। और यहाँ पर हम बात करते हैं उन टॉपिक्स की जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई है, हम सबसे जुड़ी हुई है। जी हाँ, कभी हमें कुछ टॉपिक्स ऐसे भी होते हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं, तो कभी कभी हमारा पर्सपेक्टिव ही चेंज कर देते हैं। मैं आपकी होस्ट और दोस्त आरजी स्नेहा, और आज फिर से आ गई हूँ लेकर एक और ऐसा टॉपिक जो शायद हम सबकी डेली लाइफ का हिस्सा भी है। जी हाँ, लेकिन इसके बारे में हम उतना सीरियसली लेते ही नहीं है, हम इसके बारे में ज़्यादा सोचते ही नहीं है। दोस्तों, एक सवाल आपसे कि आज आपने क्या खाया? हो सकता है कि शायद आपने ब्रेड या फिर पोहा खाया हो, या लंच में दाल चावल या फिर रोटी सब्जी खाई हो, और शाम को चाय के साथ कुछ ना कुछ स्नैक्स तो हो ही जाते हैं, और अगर बाहर निकल गए तो स्ट्रीट फूड का टेम्पटेशन तो अलग ही लेवल का होता है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि जो फूड हम खा रहे हैं वो सेफ है या नहीं, उसकी क्वालिटी कैसी है, उसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ हो रहे हैं वो सेफ हैं हमारे लिए या फिर नहीं, और पैकेट्स पर जो इंफॉर्मेशन लिखी होती है क्या हम उसे कभी प्रॉपरली चेक करते हैं। बस इसी कनेक्शन से आज का हमारा टॉपिक जो मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए वो है FSSAI। जी हाँ, आपने FSSAI का नाम ज़रूर सुना होगा। हम सब कहते हैं कि जो भी हम पैकेट बाहर से खरीदते हैं उस पर हम एक बार चेक करते हैं कि उस पर FSSAI का मार्क है या नहीं। पैकेज फूड के पैकेट पर एक लोगो आता है और लाइसेंस नंबर भी देखा होगा आपने, लेकिन क्या आपको एक्चुअली पता है कि FSSAI क्या करता है, ये फूड इंडस्ट्री के लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, और एक कंज्यूमर के रूप में इसका हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस हो सकता है। FSSAI का फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जी हाँ, सिंपल वर्ड्स में समझे तो इसका मेन फोकस है कि जो हम फूड हम तक जो पहुंच रहा है वो सेफली और क्वालिटी स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए हमारे पास आए, और यहीं से आज की कॉन्वर्जेशन और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि फूड सेफ्टी सिर्फ रेस्टोरेंट्स या फिर कहीं तो फूड कंपनीज या फिर शॉपकीपर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। एज कंज्यूमर हमें भी ये देखना चाहिए, हमें भी इसके लिए अवेयर होना बहुत जरूरी है। तो आज का ये ट्रेंडिंग टॉपिक जिसमें हम FSSAI को सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर ही नहीं बल्कि अपनी डेली फूड चॉइस के कनेक्शन से भी समझने वाले हैं। पैकेट पर FSSAI नंबर का मतलब क्या होता है, फूड लेवल पढ़ना क्यों जरूरी है, स्ट्रीट फूड खाते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है हमें, और हम किसी फूड प्रोडक्ट को लेकर कंप्लेंट कर सकते हैं या नहीं, इन सभी चीजों के बारे में आज हम इस प्रोग्राम में जानने वाले हैं। बहुत सारी बातें होने वाली है। जी हाँ, और आपको क्या करना है, आपको ना जुड़ जाना है हमारे साथ इस टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए। और आपको अभी मैं सुनाने वाली हूँ बहुत ही प्यार सा गाना, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि यहाँ पर बातों के साथ में प्यारे प्यार से गाने भी आते हैं, तो सुने बहुत ही प्यार सा गाना सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूँ आरजे स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम ट्रेंडिंग तड़का, जहाँ पर हर बात होती है ट्रेंड वाली। और इस हफ्ते फिर से आ गई हूँ मैं लेकर आपके लिए कुछ खास ट्रेंडिंग टॉपिक। जी हाँ, आज का हमारा ट्रेंडिंग टॉपिक है FSSAI। जी हाँ, हम इसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, आज हम फूड सेफ्टी के बारे में बात कर रहे हैं। अभी तक हमने बात की कि FSSAI क्या है और फूड सेफ्टी में इसका क्या रोल होता है, लेकिन अब एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है कि जब हम मार्केट से कोई पैकेज्ड फूड खरीदते हैं तो क्या हम पैकेट को सिर्फ फ्रंट साइड से देख कर ही डिसाइड कर लेते हैं कि हमें यही चाहिए। यूजुअली क्या होता है कि पैकेट देखा, ब्रांड पसंद आया, फ्लेवर देखा, प्राइस देखा और बस शॉपिंग बकेट में वो चला गया। लेकिन दोस्तों, फूड पैकेट के फ्रंट के साथ साथ उसकी बैक साइड भी इंपॉर्टेंट होती है। जी हाँ, क्योंकि वहीं पर ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो हमें प्रोडक्ट को बेटर अंडरस्टैंड करने में हमारी हेल्प करती है। सबसे पहले बात करते हैं कि FSSAI लाइसेंस नंबर की। जी हाँ, पैकेज जो फूड होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, उस पर FSSAI से रिलेटेड लाइसेंसिंग इंफॉर्मेशन दी जाती है। इसका पर्पस ये बताना होता है कि फूड बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंडर है। उसके बाद देखिए इंग्रेडिएंट्स लिस्ट होती है, ये बहुत यूजफुल होती है कि प्रोडक्ट में क्या क्या चीजें यूज हो रही है, ये इंग्रेडिएंट्स लिस्ट का पता चलता है हमें इससे। अगर आप किसी पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट को अवॉइड करना चाहते हैं तो ये लिस्ट आपके लिए स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। फिर आती है डेट इन्फॉर्मेशन। जी हाँ, मैन्युफैक्चरिंग और पैकेजिंग डिटेल्स और बेस्ट बिफोर और एक्सपायरी जैसे इन्फॉर्मेशन इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। सिर्फ पैकेट देखकर प्रोडक्ट फ्रेश अज्यूम कर लेना ये सही हैबिट नहीं है। एक और इम्पॉर्टेंट सेक्शन होता है, वो है न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन, जिसमें कैलोरीज, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, शुगर, सोडियम जैसे न्यूट्रिएंट्स की इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है। अगर आप अपनी डाइट को लेकर कॉन्शियस हैं तो ये सेक्शन आपको इन्फॉर्म चॉइस लेने में हेल्प कर सकता है। और हाँ, वेजिटेरियन या फिर नॉन वेजिटेरियन सिंबल भी चेक करना यूजफुल होता है, अगर आपकी फूड प्रेजेंस स्पेसिफिक है तो। अब छोटी सी एक चैलेंज वाली बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब आप सुपरमार्केट जाएं तो किसी एक पैकेज्ड फूड को उठाइए और उसकी बैक साइड को 30 सेकंड प्रॉपरली पढ़िए। हो सकता है कि आपको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिले जो आपने पहले

कभी नोटिस ही ना की हो। दोस्तों, फूड लेवल पढ़ना कोई डिफिकल्ट काम तो नहीं है, बस थोड़ी सी हैबिट को डेवलप करना हमें पड़ेगा, क्योंकि स्मार्ट कंज्यूमर वो नहीं है जो अच्छा लुकिंग पैकेज देखकर उठा लेते हैं, बल्कि स्मार्ट कंज्यूमर वो होते हैं जो लेबल पढ़कर इन्फॉर्म्ड चॉइस करते हैं। तो अगली बार शॉपिंग करने वक्त फ्रंट देखिए, लेकिन डिसीजन लेने से पहले बैक पर, उसके बैक साइड के प्रिंट पर भी एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। मैं हूँ आरजे स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम ट्रेंडिंग तड़का, जहाँ पर हर बात होती है ट्रेंड वाली। जी हाँ, इस हफ्ते फिर से आ गए हैं लेकर आपके लिए कुछ खास ट्रेंडिंग टॉपिक, और आज बात हो रही है हमसे जुड़ी हुई। जी हाँ, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम क्या चीजें यूज करते हैं, क्या प्रोडक्ट यूज करते हैं, नॉट प्रोडक्ट बट क्या क्या चीज़ें हम लेते हैं, उन सभी चीज़ों के ऊपर आज हम बात कर रहे हैं। फूड सेफ्टी के ऊपर बात कर रहे हैं कि क्या हमारे लिए सही है और क्या नहीं है, क्या आप उस पर FSSAI का जो मार्क है वो चेक करते हैं, लाइसेंस नंबर चेक करते हैं या नहीं। अब तक हमने जैसे कि जाना कि FSSAI क्या है और पैकेज्ड फूड खरीदते वक्त हमें लेबल पर क्या क्या चेक करना चाहिए, लेकिन अब बात करते हैं उस फूड की जिसके लिए हम प्रोडक्ट लेबल को चेक नहीं करते, क्योंकि सामने होता है एक गर्मा गर्म प्लेट और उसकी अमेजिंग सी स्मेल। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ स्ट्रीट फूड की, जो हम गोल गप्पे खाते हैं, मोमो खाते हैं, चाट, चाउमिन, समोसे, रोल्स। देखो ये नाम ही ऐसे ना, इन्हें सुनते ही मुंह में पानी आ गया है ना। स्ट्रीट फूड हमारी फूड कल्चर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, अफोर्डेबल भी है और टेस्टी भी है, और वैरायटी तो इतनी है कि हर गली में कुछ ना कुछ नया मिल रहा होता है। लेकिन टेस्ट के साथ एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, वो है हाइजीन। जी हाँ, जब भी आप स्ट्रीट फूड खा रहे हो तो सबसे पहले एक बार आप अपने आसपास का एनवायरनमेंट नोटिस ज़रूर कीजिएगा। क्या फूड प्रॉपरली कवर्ड है, क्या वेंडर इंग्रेडिएंट्स को क्लीन और हाइजीनिक कंडीशन में रख रहा है या नहीं, क्या जो सर्व करने के लिए चीज़ें यूज़ हो रही है वो रीजनली क्लीन है या नहीं है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो है पानी। जी हाँ, चाट हो गया, गोलगप्पे हो गए, या फिर ड्रिंक में जो वाटर यूज़ होता है उसकी क्लीनिनेस बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। अगर आपको पानी की क्वालिटी पर डाउट लग रहा है तो बेटर है कि आप उस फूड को अवॉइड करें। फिर आती है रॉ और कुक्ड फूड का हैंडलिंग। जी हाँ, अगर वेजिटेबल्स, सॉसेस या फिर कुक्ड फूड ओपन में बहुत देर तक रखा गया है तो कॉशन ज़रूरी है। और दोस्तों, एक चीज़ जो हम अक्सर देखते हैं वो है सेम ऑयल का बार बार यूज़ होना। जी हाँ, अगर ऑयल का कलर, स्मेल अनयूजुअल लग रहा है या फिर ऑयल बहुत ज़्यादा डार्क दिख रहा है तो वहाँ फूड चूज़ करते वक्त थोड़ा सा केयरफुल रहना बेटर रहेगा आपके लिए। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप स्ट्रीट फूड खाना ही बंद कर दें, बिल्कुल नहीं। पॉइंट सिर्फ इतना है कि स्ट्रीट फूड को आप इंजॉय कीजिए, लेकिन थोड़ी सी अवेयरनेस के साथ। एक सिंपल रूल याद रखिए, जहाँ पर क्लीनिनेस दिखे वहाँ कॉन्फिडेंस से खाइए, जहाँ हाइजीन डाउटफुल लगे वहाँ थोड़ा सा रुक जाइए, एक बार देख लीजिए उसके बाद खाइएगा। और अगर आप किसी फूड वेंडर को चूज़ करते हैं तो ओवरऑल क्लीनिनेस को देखिए, वेंडर का हाइजीन, फूड की स्टोरेज और उस वो जो चीज़ें यूज़ कर रहा है उन सबको, और उसके सराउंडिंग का एरिया सारा आप देखिए, उसके बाद जा कर के वहाँ पर कुछ खाइए। क्योंकि फूड का टेस्ट तो कुछ मिनट के लिए होता है, लेकिन फूड सेफ्टी को इग्नोर करने का इम्पैक्ट ज़्यादा सीरियस हो सकता है, शायद हमारी जो हेल्थ है उस पर भी बात आ जाए। तो इसमें नेक्स्ट टाइम जब आपका मन करे ना कि प्लेट में टेस्टी सा स्ट्रीट फूड हो, तो टेस्ट के साथ हाइजीन का तड़का होना भी बहुत ज़रूरी होता है, उसे भी चेक कर लीजिएगा। इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड,

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूँ आरजे स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम ट्रेंडिंग तड़का। और आज हम बात कर रहे हैं ट्रेंडिंग तड़का में एक ऐसे टॉपिक की जो हमारी प्लेट से लेकर सोशल मीडिया की फीड तक पहुंच चुका है और वो है फूड ट्रेंड्स। जी हाँ, आजकल इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब खोलते ही हमें क्या दिखता है, तो वहाँ पर दिखता है हमें फूड के नए नए ट्रेंड्स जो रोज देखने को मिलते हैं। कभी कोई एक्स्ट्रा चीजी फूड वायरल हो रहा है, तो कभी कोई कलरफुल ड्रिंक्स, कभी गेंस साइज डिशेस होती हैं, तो कभी कोई एक्सट्रीमली स्पाइसी फूड चैलेंज करता है। और हम भी क्या करते हैं, वीडियो देखी, इंटरेस्टिंग लगी और सोचा यार ये तो ट्राई करना बनता है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, जो फूड सोशल मीडिया पर वायरल है क्या वो ऑटोमेटिकली सेफ भी है या नहीं? इसका आंसर है ये ज़रूरी नहीं है। सोशल मीडिया पर किसी फूड का वायरल होना उसकी सेफ्टी या फिर क्वालिटी का सर्टिफिकेट नहीं होता है। हमें ये समझना ज़रूरी है कि अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन और फूड सेफ्टी दोनों अलग चीज़ें हैं। फॉर एग्जाम्पल, कलरफुल फूड को ही ले लीजिए, ब्राइट कलर्स देखकर फूड अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन फूड में यूज होने वाला जो कलर है और इंग्रेडिएंट्स है वो परमिटेड है या नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। इसी तरह नेचुरल, हेल्दी, ऑर्गेनिक, शुगर फ्री या फिर हाई प्रोटीन जैसे वर्ड दिखाकर भी प्रोडक्ट को ऑटोमेटिकली हेल्दी अज्यूम नहीं करना चाहिए। लेबल को समझना उससे भी ज्यादा जरूरी है। आजकल फूड चैलेंजेस भी काफी पॉपुलर है कि एक्स्ट्रा स्पाइसी नूडल्स, ह्यूज पोर्शंस या फिर अनयूजुअल कॉम्बिनेशन, चैलेंजेस देखने में फन लग सकता है, लेकिन हर ट्रेंड हर पर्सन के लिए सुटेबल हो ये जरूरी नहीं है। और एक और ट्रेंड है कि वायरल फूड हैक्स। जी हाँ, सोशल मीडिया पर कुछ लोग घर पर नए नए फूड एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तो और शायद वो इंस्टेंटली वायरल भी हो जाए, लेकिन हर वायरल हैक साइंटिफिकली टेस्टेड या फिर फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हो ये अज्यूम नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, इसका सिंपल सा सॉल्यूशन क्या है कि आप ट्रेंड को फॉलो करिए लेकिन ब्लाइंडली मत करिए। कोई फूड प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो लेबल चेक कीजिए, रेस्टोरेंट या फिर फूड आउटलेट पर हैं तो हाइजीन देखिए, और अगर कोई फूड ट्रेंड अननेसेसरली रिस्की लग रहा है तो सिर्फ व्यूज या फिर लाइक्स के लिए उसे ट्राई करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया पर एक फूड ट्रेंड कुछ दिन का होता है लेकिन फूड सेफ्टी की इंपॉर्टेंस हमेशा के लिए। तो इसलिए अगली बार जब भी आपकी फीड में कोई टैम्पटिंग सी फूड वीडियो आ जाए तो एक सेकेंड रुक कर सोचिएगा कि लुक्स टेस्टी बट इट इज़ सेफ और नॉट, तो सोचिएगा जरूर। इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील

वेलकम बैक साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूँ आरजी स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम ट्रेंडिंग तड़का। और आज ट्रेंडिंग तड़का में हम बात कर रहे हैं हमारी फूड सेफ्टी की। जी हाँ, हम आज FSSAI के ऊपर बात कर रहे हैं, उसकी जो खास जानकारी है आपकी जो फूड से जुड़ी हुई, आपके प्रोडक्ट से जुड़ी हुई, उसके बारे में आज हम बता रहे हैं। और अब तक हमने पैकेज्ड फूड के लेबल से लेकर स्ट्रीट फूड और वायरल फूड ट्रेंड्स तक काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें कर ली है, बहुत कुछ जाना हमने इसके बारे में। लेकिन फूड सेफ्टी की बात हो रही है और मिलावट का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? मिलावट, ये वर्ड सुनते ही हमारे माइंड में सबसे पहले क्या आता है कि दूध में कुछ मिलाया गया है, मसालों का कलर अनयूजुअल है, मिठाई की क्वालिटी थोड़ी डाउटफुल लग रही है। और फिर हम सोचते हैं कि आखिर असली और मिलावटी फूड को पहचाने कैसे। सबसे पहले समझते हैं कि फूड एडल्ट्रेशन होती क्या है। सिंपल वर्ड्स में, जब किसी फूड प्रोडक्ट की क्वालिटी या फिर कंपोजिशन को गलत तरीके से बदला जाता है, जैसे किसी अनवांटेड या फिर अनसेफ सब्सटेंस को ऐड करना या किसी इंग्रेडिएंट को चीपर सब्सटीट्यूट से रिप्लेस करना या फिर उसे यूज ब्रॉडली, मिलावट के कॉन्टेक्स्ट में समझा जा सकता है। अब प्रॉब्लम ये है कि हर मिलावट आंखों से आइडेंटिफाई करना पॉसिबल नहीं होता। सिर्फ कलर या फिर स्मेल या फिर टेस्ट को देखकर ये कंफर्म नहीं किया जा सकता कि फूड सेफ है या नहीं। इसलिए सोशल मीडिया पर चलने वाले रैंडम होम टेस्ट को भी फाइनल प्रूफ नहीं समझना चाहिए। इंटरनेट पर आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो आपको बताएंगी कि दूध में ये डालो, मसाले में पानी डालो या फिर कुछ डालो, मिठाई को कुछ इस तरीके से चेक करो और पनीर के ऊपर कोई केमिकल डालो तो आपको पता चल जाएगा कि ये सही है या नहीं है, रियल है या फिर फेक है। लेकिन हर वायरल टेस्ट साइंटिफिकली रिलायबल हो, ये जरूरी नहीं है। जी हाँ, तो कंज्यूमर के तौर पर हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो जो ट्रस्टेड सोर्स है उसी से फूड प्रोडक्ट्स परचेज करिए। पैकेज प्रोडक्ट में लेबल, इंग्रेडिएंट्स, डेट और लाइसेंसिंग इन्फॉर्मेशन चेक करें। फ्रेश फूड खरीदते वक्त प्रोडक्ट की ओवरऑल अपीयरेंस और हाइजीन पर ध्यान दें। और फूड का कलर, स्मेल और टेक्सचर क्लियरली अनयूजुअल लगे तो उसे कंज्यूम करने से पहले कॉशन जरूर रखें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपको किसी फूड प्रोडक्ट के अनसेफ या फिर सस्पिशियस होने का स्ट्रांगली ऐसा कोई डाउट आए ना आपके मन में, तो उसे इग्नोर करके कंज्यूम करना जरूरी नहीं है। कंसर्न को रिपोर्ट करना भी एक रिस्पॉन्सिबल स्टेप हो सकता है। यहाँ पर FSSAI का रोल इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बनाने और फूड बिजनेस के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को सपोर्ट करने में FSSAI की इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन दोस्तों, कंज्यूमर अवेयरनेस भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। हमें हर वायरल वीडियो पर बिलीव नहीं करना चाहिए, बल्कि उसकी बजाय हम वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन पर ट्रस्ट ज्यादा करें तो वो हमारे लिए ज्यादा सही रहेगा। तो याद रखिएगा कि सस्ता या अट्रैक्टिव फूड हमेशा बेटर चॉइस नहीं होता है, सेफ और क्वालिटी फूड चूज करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो हमारे लिए बहुत सही रहेगा और हमारी फैमिली के लिए भी। तो अगर आपको किसी फूड की क्वालिटी पर डाउट है तो एक सिंपल सा रूल फॉलो कीजिए कि डाउट हो तो चेक करिए, उसे इग्नोर मत कीजिए। वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, जुड़े रहिए, सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूँ आरजे सिंह आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम ट्रेंडिंग तड़का। और आज का हमारा टॉपिक है ट्रेंडिंग तड़का में, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं FSSAI के बारे में और फूड सेफ्टी के बारे में। अब तक हमने फूड लेबल्स, स्ट्रीट फूड, वायरल फूड ट्रेंड्स और मिलावट जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर बात कर ली है, लेकिन अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल कि अगर हमें किसी फूड प्रोडक्ट की क्वालिटी या फिर सेफ्टी को लेकर जेन्युइनली कंसर्न हो तो हम क्या कर सकते हैं? क्या आप बस अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को बता देंगे वो आपके लिए इनफ होगा, या फिर इसकी प्रॉपर कंप्लेंट भी की जा सकती है? तो इसका जवाब ये है कि दोस्तों, एज अ कंज्यूमर अवेयर होना इंपॉर्टेंट है, लेकिन अपनी कंसर्न को राइट चैनल तक पहुंचाना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, फूड सेफ्टी से रिलेटेड कॉर्नर्स के लिए FSSAI फूड सेफ्टी कनेक्ट प्लेटफॉर्म एक ऑप्शन है। इसके थ्रू कंज्यूमर्स फूड सेफ्टी से रिलेटेड कंप्लेंट्स या फिर कंसर्न अथॉरिटी तक रिपोर्ट कर सकता है। मान लीजिए आपको कोई पैकेज्ड फूड प्रोडक्ट मिला जिसका लेबल सस्पिशियस लग रहा है और प्रोडक्ट डैमेज कंडीशन में है, या आपको फूड क्वालिटी या फिर हाइजीन को लेकर सीरियस कंसर्न है। ऐसे केस में कंप्लेंट करते वक्त जितनी क्लियर इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी उतना बेटर होगा। और फॉर एग्जांपल, प्रोडक्ट का नेम, ब्रांड, बैच या फिर लॉट नंबर, डेट इन्फॉर्मेशन, परचेज डिटेल और अगर पॉसिबल हो तो बिल या फिर प्रोडक्ट के फोटोग्राफ्स जैसे डिटेल्स यूजफुल हो सकती है। लेकिन यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कंप्लेंट रिस्पॉन्सिबली करें। जी हाँ, सिर्फ सोशल मीडिया पर किसी ब्रांड के अगेंस्ट पोस्ट कर देना बिना वेरिफिकेशन के एलिगेशन लगा देना सॉल्यूशन नहीं है। अगर जेन्युइन कंसर्न है तो प्रॉपर प्लेटफॉर्म पर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन के साथ रिपोर्ट करना बेटर अप्रोच है। और फूड आउटलेट्स की बात करें तो हाइजीन इशू देखने पर आप पहले अपनी सेफ्टी को प्रायोरिटी दें। अगर कंसर्न सीरियस है तो उसे एप्रोप्रिएट फूड सेफ्टी अथॉरिटी तक रिपोर्ट किया जा सकता है। दोस्तों, कंज्यूमर का रोल सिर्फ प्रोडक्ट खरीदने तक ही लिमिटेड नहीं होता है, बल्कि कंज्यूमर अवेयरनेस फूड सेफ्टी सिस्टम का इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक और इंटरेस्टिंग बात है कि हम अक्सर सोचते हैं कि कंप्लेंट करने से क्या होगा, लेकिन जब कंज्यूमर जेन्युइनली प्रोडक्ट को रिपोर्ट करते हैं तो अथॉरिटीज को पोटेंशियल फूड सेफ्टी इश्यूज आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिल सकती है। तो अगर आपको कभी ऐसा फूड सेफ्टी से रिलेटेड कोई जेन्युइन प्रॉब्लम फेस कर रहे हो आप, और अगर आपको सच में प्रॉब्लम लग रही है तो पैनिक मत कीजिए और ना ही बिना वेरिफिकेशन के उसे सोशल मीडिया पर स्प्रेड कीजिए। इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कीजिए, राइट प्लेटफॉर्म को चूज कीजिए और रिस्पॉन्सिबल वे में कंप्लेंट कीजिए, क्योंकि एक अवेयर कंज्यूमर सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की सेफ्टी के लिए भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसी थॉट के साथ हम बढ़ते हैं आज के ट्रेंडिंग तड़का के लास्ट सेगमेंट पे। जी हाँ, लास्ट सेगमेंट की तरफ हम चल रहे हैं, जिसमें मैं आपको फूड सेफ्टी चेकलिस्ट के बारे में बताऊंगी, पर उससे पहले लूंगी मैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। आप जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूं आपकी होस्ट आपकी दोस्त आरजे स्नेहा और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम ट्रेंडिंग तड़का। और आज हम ट्रेंडिंग तड़का में बात कर रहे हैं FSSAI और फूड सेफ्टी के बारे में। और अब हम आ गए हैं हमारे आज के आखिरी फाइनल सेगमेंट में। जी हाँ, आज का पूरा एपिसोड हमने डेडिकेट किया FSSAI के ऊपर और फूड सेफ्टी के बारे में जाना। हमने जाना कि FSSAI क्या है, पैकेज्ड फूड के लेबल पढ़ना क्यों ज़रूरी है, स्ट्रीट फूड खाते वक्त हाइजीन कैसे चेक करनी चाहिए और वायरल फूड ट्रेंड्स को ब्लाइंडली फॉलो क्यों नहीं करना चाहिए, मिलावट को लेकर क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए और अगर कोई जेन्युइन फूड सेफ्टी कंसर्न हो तो उसे रिपोर्ट करना भी ज़रूरी है, उसे भी हम कर सकते हैं। तो अब इन सब बातों में एक सिंपल सी फूड सेफ्टी चेकलिस्ट इसमें कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए, आप इसे याद रखिएगा कि 5 सेकेंड फूड सेफ्टी चेक। सबसे पहला, लेबल चेक कीजिए। जी हाँ, जब भी पैकेज्ड फूड खरीदने जाएं, एक बार उसका लेबल ज़रूर पढ़िए। प्रोडक्ट का नाम, इंग्रेडिएंट्स और दूसरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को ज़रूर देखिएगा। सिर्फ अट्रैक्टिव पैकेजिंग देखकर डिसीजन को मत लीजिएगा। दूसरा है डेट चेक। जी हाँ, प्रोडक्ट की डेट इन्फॉर्मेशन को इग्नोर ना करें। पैकेट खोलने से पहले ही एक क्विक चेक कर लेना एक इम्पॉर्टेंट और यूजफुल हैबिट है। तीसरा है सील पैकेट और पैकेजिंग चेक। जी हाँ, अगर पैकेट डैमेज है या फिर लीकिंग है या फिर टैम्पर्ड या फिर अनयूजुअल कंडीशन में लगे तो उसे परचेज या फिर कंज्यूम करने से पहले कॉशन जरूर रखें। चौथा है हाइजीन चेक। जी हाँ, रेस्टोरेंट हो या फिर स्ट्रीट फूड स्टॉल क्यों ना हो, एक बार सराउंडिंग अपनी क्लीनिनेस, फूड हैंडलिंग और वहाँ जो यूज़ हो रही हैं चीज़ें और सभी चीज़ों को ऑब्जर्व करना एक अच्छी हैबिट हो सकती है। और पांचवा है थिंक बिफोर यू ईट। जी हाँ, अगर फूड का स्मेल, उसकी अपीयरेंस या फिर

कंडीशन क्लियरली अनयूजुअल लग रही है, तो सिर्फ वेस्ट ना करने के थॉट से उसे कंज्यूम करना जरूरी नहीं है, बल्कि अपनी सेफ्टी को प्रायोरिटी रखिए। दोस्तों, फूड सेफ्टी का मतलब ये नहीं है कि हम फूड को लेकर स्केयर्ड हो जाएं, या इसका मतलब है कि अवेयर और रिस्पॉन्सिबल चॉइस को हम अपनाएं। और FSSAI का रोल अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम कंज्यूमर्स का अवेयरनेस भी इक्वली वैल्यूएबल है। तो आज के एपिसोड का एक सिंपल सी लाइन याद रखिएगा कि फूड टेस्टी हो ये जरूरी है, लेकिन फूड सेफ हो ये उससे भी ज्यादा जरूरी है। अगली बार जब भी आप कुछ खरीदें या फिर खाएं, तो बस कुछ सेकंड रुककर सोचिएगा, उसका लेबल चेक कीजिएगा, डेट चेक कीजिएगा और हाइजीन देखिएगा। इसी अवेयरनेस के साथ आज के ट्रेंडिंग तड़का को यहीं पर एक फुल स्टॉप देते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजे स्नेहा, और मिलूंगी आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। जी हाँ, तब तक के लिए मैं ले रही हूँ आपसे इजाजत, मेरा वक्त हो गया है आप सभी से इजाजत लेने का। मिलूंगी अगले एपिसोड में किसी और नए ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ, किसी और नए ट्रेंड के साथ, और थोड़े से और तड़के के साथ। तब तक के लिए हेल्दी रहिए, अवेयर रहिए और खाइए जरूर, पर सेफ्टी के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। कीप लिसनिंग, कीप स्माइलिंग एंड स्टे अवेयर। और हम क्या कहते हैं, फील गुड, फील लाइफ।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम में हूँ दीक्षा आपके साथ और प्रोग्राम है सुरक्षा संवाद, जिसे हम आपके साथ लेकर आते हैं खास तौर पर से फरीदाबाद पुलिस के साथ। एक ऐसा प्रोग्राम जहां पर कभी महिला सुरक्षा की बात होती है तो कभी साइबर फ्रॉड की तो कभी ट्रैफिक की, लेकिन आज इसी कड़ी में हम जो बात करने वाली हैं वो बात हम सभी से जुड़ी हुई है, हर किसी के घर से जुड़ी हुई है, हर किसी के लाइफस्टाइल से भी जुड़ी हुई है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं वेरिफिकेशंस के बारे में, हम बात करने वाले हैं ड्रग्स के बारे में, नशा मुक्ति के बारे में, और साथ ही थोड़ी सी बात करेंगे सड़क पर चलते हुए लोगों के बारे में जो गाड़ियां चला रहे हैं पर पेशेंस खो चुके हैं, यानी कुछ हद तक ट्रैफिक के भी बारे में। तो बहुत सारी बातें आज हम करने वाले हैं, किसी एक टॉपिक पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये सारे मुद्दे, ये सारे टॉपिक हम सबसे और आप सबसे जुड़े हुए हैं। आज इसी कड़ी में हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं एसीपी अर्जुन जी, जो कि बटकल के एसीपी हैं और फरीदाबाद पुलिस से जुड़े रहे हैं और काफी समय से पुलिस सेवाओं से जुड़े हुए हैं। तो अर्जुन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मानव रचना में।
1: धन्यवाद जी।
0: सबसे पहले सर आपसे जानना चाहती हूँ, हम वेरिफिकेशन के प्रोसेस के बारे में आज हम बात करेंगे, नशा मुक्ति के भी बारे में बात करेंगे और ट्रैफिक के भी बारे में बात करेंगे। ये तीनों चीज़ें एक आम इंसान से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि हम सड़क पे जाते हैं लेकिन हम देखते हैं कि ट्रैफिक में लोग अपना आपा खो देते हैं, लड़ने लग जाते हैं अगर ज़रा सी गाड़ी कहीं टच हो जाती है, या अगर कोई आपसे तेज़ चला लेता है तो रोड रेज हो जाती है, या फिर अगर कहीं पर थोड़ा सा भी कट मिला तो रॉन्ग साइड भी गाड़ी निकाल लेते हैं। तो ये एक कंट्रोल लोगों का जो है खुद पर से जाता जा रहा है। दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है नशा, ड्रग्स। बच्चे खास तौर पर से इसमें बहुत छोटी उम्र से इन्वॉल्व होने लगते हैं, लेकिन पुलिस हमसे ज़्यादा जानती है कि कहाँ कहाँ क्या क्या होता है। और तीसरी जो सबसे ज़रूरी चीज़ है जो अपराध को रोकने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, वो है वेरिफिकेशन। खास तौर पर से वेरिफिकेशन, अगर आप अपने घर में कोई डोमेस्टिक हेल्प लगा रहे हैं या फिर आप किसी व्यक्ति को अपना मकान या दुकान किराए पर दे रहे हैं। तो सर सबसे पहले वेरिफिकेशन से शुरू करते हैं, वेरिफिकेशन कितनी ज़रूरी है ये मैं आपसे जानना चाहूँगी, विस्तार से समझाएं और फिर उसके प्रोसेस के बारे में मैं आपसे सवाल पूछूंगी।
1: वेरिफिकेशन आम आदमी की सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है
0: जी,
1: टेनेंट के लिए भी ज़रूरी है और लैंडलॉर्ड के भी ज़रूरी है
0: जी।
1: आजकल हर घर में कोई ना कोई टेनेंट है, हर घर में कोई ना कोई एक या दो नौकर हैं, और उनकी वेरिफिकेशन होती है तो आइडेंटिफिकेशन हो जाती है, आइडेंटिफाई हो जाते हैं। अगर उनसे कोई गलती होती है या वो गलती करते हैं जानबूझ के, छुपने की कोशिश करते हैं, अपराध की नीयत से कोई काम करते हैं, बहुत लोग नाम बदल के यहाँ रहते हो, अगर उनकी वेरिफिकेशन समय पे हो जाए तो उनको आइडेंटिफाई करना, उनको ट्रेस करना बड़ा आसान हो जाता है। अब पश्चिमी बंगाल का आदमी कोई यहाँ आके रह रहा है, काम कर रहा है, फरीदाबाद, गुड़गांव, NCR में, महानगर में अगर कोई काम कर रहा है तो उनको, क्योंकि मानव मात्र की यहाँ गिनती में बड़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि भारत में कोई कहीं जा सकता है और एक यूनिक आईडी ना होने की वजह से हम उसको हर जगह आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हर एक की वेरिफिकेशन हो। वेरिफिकेशन के लिए सबसे बढ़िया बात ये है कि वेरिफिकेशन अगर करवाते हैं तो लैंडलॉर्ड है उसके लिए एक बहुत सुरक्षा का, मान लिया वो उनके साथ नहीं करे, अड़ोस पड़ोस में कहीं, रात में, दिन में, कहीं भी अगर कोई वो क्राइम करता है तो वो आइडेंटिफाई हो जाएगा और ट्रेस हो जाएगा
0: जी।
1: इसलिए बहुत ज़रूरी है, सुरक्षा की दृष्टि से हम देखते हैं तो राष्ट्रीय सुरक्षा कहिए, आंतरिक सुरक्षा कहिए, इसमें वेरिफिकेशन प्रति व्यक्ति बहुत ज़रूरी है
0: जी। अर्जुन जी, बहुत सारी जगहों पर हमने देखा है जो स्लम एरियाज होते हैं या जो छोटी कॉलोनीज हैं, फरीदाबाद में काफ़ी ऐसी कॉलोनीज हैं, और यहाँ पर किराएदार रखना बहुत कॉमन है, या फिर जो गांव बने हुए हैं, अर्बन विलेजेस जिनको आप कह लेते हैं, उनमें लोगों ने एक एक घर में 10-10 कमरे बना रखे हैं। उन 10-10 कमरों में बहुत सारे लोग जो हैं वो डोमेस्टिक हेल्प के तौर पर जो काम करते हैं वो रहते हैं, बहुत सारे लेबर वहाँ पर रहते हैं, इनकी वेरिफिकेशन कराना उनके लिए मुश्किल काम होता है। सो क्या कोई ऐसा प्रोसेस या तरीका है, एक तो मैं पहले आपसे पूछना चाहूँगी प्रॉपर वेरिफिकेशन का क्या प्रोसेस है, और बाकी इस तरीके से जहाँ पर ज़्यादा टेनेंट्स रह रहे हैं जो 2-2, 3-3 हज़ार रुपये किराया दे रहे हैं, वहाँ पर एक व्यक्ति को लगता है कि इतना तो दिन उसने रहना भी नहीं है जितना मैं वेरिफिकेशन कराऊँ।
1: वेरिफिकेशन के लिए मैम बड़ी सी बात यह है कि हम समय समय पर अभियान चलाते हैं, जागरूकता अभियान चलाते हैं, लोगों को आपके FM के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हम जगह जगह पर अभियान चला के लोगों को जागरूक करते हैं कि आप अपनी वेरिफिकेशन करवाएं, टेनेंट वेरिफिकेशन करवाएं, सर्वेंट वेरिफिकेशन करवाएं। उन स्लम एरियाज के लिए तो हमने यही अभियान रखा हुआ है कि जब जब मौका मिलता है, जब जब पुलिस राइडर्स जाती है, PCR जाती है, ERVs जाती है, होती है, फिजिकली जाके लोगों को बताते हैं, और कभी कभी हम एक कॉम्बिंग अभियान चलाते हैं। कॉम्बिंग अभियान में हम एक साइड से ले लेते हैं एक बस्ती को, उसको पूरे को कॉम्ब की तरह छानते हैं, कौन वेरिफिकेशन है दिखाइए, वेरिफिकेशन नहीं होती उनकी उस दिन पकड़ के वेरिफिकेशन करवाते हैं, वेरीफाई करते हैं उनको। एक तो ये है। दूसरा जो आपने प्रावधान पूछा, प्रोसीजर पूछा, उसके लिए हमें दो सिस्टम रखे हुए हैं, एक तो है मैनुअल और एक है ऑनलाइन। ऑनलाइन के लिए ये है कि आपके पास किसी भी व्यक्ति ने जो वेरिफिकेशन करवानी है, हमारा हर समय पोर्टल है, उस पोर्टल पे जाएंगे, उस पे वेरिफिकेशन लिख के आएगी, टेनेंट वेरिफिकेशन, सर्वेंट वेरिफिकेशन, सर्विस वेरिफिकेशन और पांच चार वेरिफिकेशन और है उनमें। तो जैसे मोस्टली हम जब देखते हैं तो टेनेंट वेरिफिकेशन और सर्वेंट वेरिफिकेशन है, उनके लिए जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं वो उन पे अपलोड कर देंगे, उनके अपलोड करने के बाद वो पोर्टल के माध्यम से हमारे पुलिस स्टेशन में पहुंच जाएंगे, पुलिस स्टेशन के लोग उसको देख के उस जगह पे वेरीफाई करके, उस आदमी को वेरीफाई करके, दो लोगों को वेरीफाई करवा के वापस अपलोड कर देंगे, और वो वहाँ आके वापस उसी पोर्टल पे आके जैसे अब क्लिक होगा आपके पास इन्फॉर्मेशन आएगी और आपको सर्टिफिकेट निकाल लेंगे। एक प्रोसीजर तो ये है। दूसरा ये है कि अगर कहीं कुछ दिक्कत आती है, नहीं करवा पाता कोई आदमी, तो वो एक हमारा चैम्बर बना हुआ है, उस चैम्बर में वो जाए और वहाँ 9 to 5 चलता है, वो सीपी ऑफिस में हमारे यहाँ
0: जी,
1: और वहाँ पे रसीट कटती है, वो आपको डॉक्यूमेंट लेके रसीट काट के दे देंगे, वो फिजिकली कंसर्न पुलिस स्टेशन में चला जाएगा, वो लोग उसी तरह वेरिफिकेशन करवा के वापस वहाँ जमा करवा देंगे और उनको वो सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ये प्रोसीजर है।
0: यानी पुलिस कमिश्नर ऑफिस में आकर वेरिफिकेशन के लिए जो है आपको डॉक्यूमेंट्स देने होंगे
1: जी।
0: इसमें सर मैं आपसे जानना चाहूंगी डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं जो जरूरी होते हैं। एक आधार कार्ड जो है वो तो अब सभी के पास होता है।
1: हम दो डॉक्यूमेंट, दो आईडी रिक्वायर रखते हैं, एक आधार प्लस एक आईडी कोई और जो फोटो वाली आईडी रहे, जैसे डीएल है, कोई पासपोर्ट है, कोई और है, जो भी फोटो वाली दो आईडी को देखते हैं ताकि उनको मैच करवाने में, उनको वेरीफाई करने में दिक्कत ना हो, एक पे भरोसा ना रखें हम।
0: जी
1: दो आईडी मांगे,
0: यानी जिन पे आपकी फोटो लगी हुई हो, सिर्फ दो चीजें,
1: दो आईडी
0: वो मांगी जाती हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं कार्यक्रम सुरक्षा संवाद में एसीबी बटकल श्री अर्जुन जी से, बहुत सी बातें और भी जारी रहेंगी। अभी हमने जाना वेरिफिकेशन के बारे में, आगे भी हम बहुत से ऐसे मुद्दों पर बात करने वाले हैं जो आम इंसान से जुड़े होते हैं। खास तौर पर से हम बात करेंगे नशा मुक्ति अभियान जो फरीदाबाद पुलिस चला रही है, और साथ ही ट्रैफिक को लेकर क्या कर रही है ट्रैफिक पुलिस। लेकिन अभी वक्त है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। मैं हूँ दीक्षा, आपके साथ सुन रहे हैं आप प्रोग्राम सुरक्षा संवाद।

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं दीक्षा, आपके साथ कार्यक्रम सुरक्षा संवाद, जिसे आपके बीच लेकर आता है फरीदाबाद पुलिस। और आज इसी कड़ी में हम बात कर रहे हैं नशा मुक्ति अभियान, वेरिफिकेशन और फरीदाबाद के ट्रैफिक के बारे में। हमारे साथ हमारे आज के मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं ACP भटकल श्री अर्जुन। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, फरीदाबाद में क्या वाकई लोग वेरिफिकेशन कराते हैं बहुत ज्यादा या कम ही है?
1: नहीं, बहुत लोग ऐसे हैं जो वेरिफिकेशन करवाते हैं खुद से, फिर हम अभियान चलाते हैं, फिर हम रेडियो के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से और खुद जाके लोगों को जागरूक करते हैं, तो बहुत लोग करवाते हैं। विशेष अभियान में बहुत ज्यादा वेरिफिकेशन होती है, बहुत ज्यादा, एक डेटा बन जाता है पुलिस के पास। कोई गड़बड़ करता है, कोई क्राइम करके भागता है, या यहाँ दिन में कोई क्राइम कर रहा है, रात में क्राइम कर रहा है, कहीं रात में काम कर रहा है, कहीं दिन में काम, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए सेफ्टी की दृष्टि से वो ठीक ठाक एनालाइज कर लेते हैं।
0: दिल्ली NCR में एक बहुत प्रचलन है कि यहाँ पर डोमेस्टिक हेल्प जो है वो फुल टाइम होती हैं काफ़ी ज़्यादा, और मेट्रो सिटीज़ में ये कल्चर आ गया है सपोर्ट के लिए, क्योंकि हस्बैंड वाइफ वर्किंग है। ऐसे में सर, एहतियात के तौर पर आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि आप डोमेस्टिक हेल्प रख रहे हैं सुबह से रात तक, या फुल टाइम है आपके पास 24 घंटे? अब कई बार ना लोग विश्वास में आ जाते हैं कि ये हमारी डोमेस्टिक हेल्प थी, उसकी बेटी है या बेटा है, वो हमारे घर में रह रहा है, हम उसे 10 साल से जानते हैं, तो इतना वेरिफिकेशन नहीं कराएंगे, शायद उसे बुरा ना लग जाए।
1: लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है, अगर कोई विश्वास पात्र आपके पास सर्विस दे रहा है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, बट वो डॉक्यूमेंटेशन पूरा करवा ले अपना। देर सवेर कहीं ना कहीं जिस दिन दिक्कत आती है उस दिन वो विश्वास रखा रह जाता है और कागज आपके पास होता नहीं है। तो ये हमारी राय ये है, हमारी प्रार्थना भी है ये आम जन से, कि वो मैक्सिमम अपनी वेरिफिकेशन करवाएं टेनेंट की और सर्वेंट की।
0: आजकल सर काफी ट्रेंड चल गया है कि लोगों ने अपने जो घर हैं वो टूरिस्ट प्लेसेस पे खास तौर पर से छोटे छोटे समय के लिए रेंट पे देना शुरू कर दिया है। अगर हम बात करें कुछ ऐसे शहरों की जहाँ पर टूरिस्ट अब ज़्यादा जाने लग गया है, पहाड़ी एरिया हो गए, या लोग वैसे ही घूमने के लिए चले जाते हैं कि वीकेंड आ रहा है, बट वो ऑफिशियली होम स्टे नहीं होते हैं, या फिर ऐसा कहें कि होटल्स नहीं होते हैं, छोटे छोटे से घर हैं और घर में एक कमरा दे दिया कि यंगस्टर्स आ गए, उनको कितना ध्यान रखना चाहिए?
1: उनको स्पेशली गाइडलाइन जारी की गई है कि जिसको भी आप किराए पे रखेंगे, वो चाहे परमानेंट टेंट रखें, 2 दिन के लिए रखें, होम स्टे में रखें, होटल्स में रखें, ओयो में रखें, जैसी जिसकी सुविधा बनती है, ये सेकेंडरी मैटर है कि वो रजिस्टर्ड है कि नहीं, बट जिस आदमी को आप रख रहे हैं तो कम से कम उसका रजिस्ट्रेशन जरूर चेक कर लें, उसका रजिस्ट्रेशन जरूर कर लें कि आपके पास प्रॉपर आईडी फोटो स्टेट की हुई हो, आपने आईडी मैच करवा रखी हो कि जो आईडी दे रहा है, क्योंकि आधार पे, पैन पे, इन पे कई बार फोटो ऐसी होती है वो मिसमैच सी लगती है, तो अच्छे से वेरिफिकेशन करके अपने पास अपना रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। और रजिस्टर हम हर महीने लगभग चेक करते हैं कि आपके पास कितने लोग आए हैं किराए पे, ऐसी सबकी लिस्ट होती है, तो सबको चेक किया जाता है बीच बीच।
0: बिल्कुल बिल्कुल, यानी अगर आप अपने घर को किसी भी फॉर्म में किराए पर दे रहे हैं, चाहे आप 10 दिन के लिए दे रहे हैं, चाहे आप होटल बना रहे हैं, चाहे आप होम स्टे कर रहे हैं, चाहे वैसे ही किराए पर दे रहे हैं, आपको ज़रूर वेरिफिकेशन कराना चाहिए। मुझे बहुत सारे लोग सर एक शहर में रहते हैं और दूसरे शहर में घर किराए पे होता है, अब यहाँ पे क्या होता है कि आपने घर किराए पे दे दिया, आप 2-2, 3-3 साल वहाँ जाते ही नहीं हैं, और वहाँ पर क्या गतिविधियाँ हो रही हैं कुछ नहीं पता होता। अब आजकल समय ऐसा है कि आसपास वाले भी ज़्यादा मेलजोल नहीं रखते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए, कितने कितने समय में क्या एहतियात बरतना चाहिए?
1: ऐसी परिस्थिति में 89 डेज का प्रावधान है कि 90 दिन किसी टेनेंट को ना होने दे, किराएदार जहाँ बैठे हैं आपके, जब आप किसी शहर में रह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, बट 90 दिन से पहले एक बार उनको चेक कर लें कि जिसको आपने किराए पे दिया क्या वही वाकई रह रहा है, जिसकी वेरिफिकेशन आपने करवाई वही रह रहा है। ऐसा तो नहीं है कि वेरिफिकेशन करवाने के बाद आप जा नहीं रहे 6 महीने, और 6 महीने बीच में कोई और लोग घुस गए उसमें, ताकि वो वेरीफाइड भी ना हो और आपके साथ भी कोई गड़बड़ हो जाए तो पता चले आपको। तो इसलिए हर 3 महीने में 89 डेज में हर जो ऑनर है जिसने किराए पे दे रखा है, तो उससे यही अपील करते हैं बार बार कि वो अपने टेनेंट्स को चेक करता रहे कि यही टेनेंट है जिनके हमने वेरिफिकेशन करवाई थी।
0: जी, और ये मुझे लगता है लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं है, क्योंकि आप दिल्ली में रह रहे हैं, आपका एक घर कहीं बम्बई में है या लखनऊ में है, और वहाँ पर आपने वो किराए पे दे रखा है, तो आप कहाँ जा पाते हैं, लोगों के पास में समय होता है, बट एक्चुअली में 90 दिन में अगर जा रहे हैं तो आप चेक रख पाते हैं कि वाकई वही लोग रह रहे हैं या कुछ और गतिविधियाँ चल रही हैं, तो घर के अंदर जाके एक बार जरूर देखें, आपका घर है, कोई रोकेगा नहीं आपको, आप फोन करके जाएं, चाहे वैसे जाएं, बट जाना जरूर चाहिए। बातों का सिलसिला जारी रहेगा। दोस्तों, अगर आपके मन में भी कुछ सवाल हैं तो बिल्कुल भेज सकते हैं हमें 8010781078 पर। और साथ ही अगर आप ये कॉन्वर्सेशन इस पॉडकास्ट को किसी के साथ शेयर करना चाहें या सुनना चाहें तो फिर आप हमारी इंटरनेट रेडियो ऐप रेडियो मानव रचना डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से, और आरजे दीक्षा के फोल्डर में जाकर आपको सुरक्षा संवाद के नाम से ACP श्री अर्जुन के साथ ये सारी बातचीत मिल जाएगी, जिसे आप दुनिया के किसी भी कोने में कभी भी शेयर कर सकते हैं। वक्त है अभी एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का।

0: फील गुड फील लाइव रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम में हूँ दीक्षा आपके साथ। बहुत सारी बातें जारी हैं कार्यक्रम सुरक्षा संवाद में। एसीपी अर्जुन हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एसीपी हैं भटकल क्षेत्र के फरीदाबाद में, और इस कार्य को करते हुए बहुत से वक्त हो गया है इनको, और ये आज जिस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए आए हैं वो है वेरिफिकेशन। जी हाँ, वेरिफिकेशन के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन नशा मुक्ति और फरीदाबाद के ट्रैफिक को लेकर चर्चा अभी भी जारी है। आइए करते हैं और भी विस्तार से बात। अब सर बात करते हैं एक ऐसी परेशानी की जो एक ऐसा मुद्दा है जो सिर्फ देश में नहीं पूरी दुनिया में कह रहा है, और वो है नशा। अब नशा एक तो होता है अल्कोहल, जो आम तौर पर लोग लेते हैं, बड़ी उम्र के भी लेते हैं और कुछ यंगस्टर्स भी लेते हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक नशा होता है ड्रग्स का, जिसके बारे में वर्ल्ड वाइड बहुत से अभियान चलाए जाते हैं। हर देश कोशिश करता है कि ड्रग्स के सर्कुलेशन को लोगों तक पहुंचाने में रोका जाए, पर फिर भी ये खुलकर बिकता है और खुलकर युवा जो है इसको कंज्यूम करते हैं। तो मेरा सवाल आपसे अब इस मुद्दे पर ये है कि हम अपने आसपास आजकल बहुत सारी फिल्में देख रहे हैं, बहुत सारे गाने देख रहे हैं जिसमें गन कल्चर, ड्रग्स कल्चर, वीड की बात, इस तरीके के बहुत से शब्दों का इस्तेमाल होता है और खुल के होता है। रोक भी लगी है, एक बीप लगाने से सबको समझ आ जाता है कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन क्या है वो दिख जाता है, पता चल जाता है। अब इससे युवा कितने प्रभावित हो रहे हैं, कितना फर्क पड़ रहा है, क्योंकि आप खुद इस प्रोफेशन में हैं कि आप युवाओं के पूरे आंकड़े या फिर कुछ जानकारियां ज़्यादा हम एक आम आदमी से ज़्यादा रखते हैं।
1: मैम बिल्कुल सही सवाल है आपका। नशे से सरकार नशे के प्रति बहुत बड़े अभियान चला रही है। सरकार के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, लगभग हम फरीदाबाद में कहें तो 36-37 डिपार्टमेंट है, सभी डिपार्टमेंट्स के लिए सरकार की हिदायत है कि नशे को बिल्कुल बंद करना है, नशे को नो कहना है, किसी सूरत में नशे को यस नहीं कहना है। और नशे की वजह से हमारी पीढ़ी समाप्त हो रही है, खासकर युवा पीढ़ी जिसको पता नहीं है, बच्चे जिनको अंदाज़ा ही नहीं है जीवन में क्या हो रहा है क्या चल रहा है, वो कोई सीरीज़ देख के कहिए या कोई रील देख के कहिए कि वो उसकी तरफ बढ़ रहा है। और जो ड्रग पेडलर है उनके लिए भी बच्चा एक आसान सा स्टेप है, उसको मोल्ड करना, उसको पैसे का लालच दे के खुद को उसको डाल देना या आगे ड्रग पेडलिंग में यूज कर लेना बड़ा आसान है। इसके लिए पुलिस के द्वारा विशेष अभियान अब भी चल रहा है, और हर 15 दिन में एक पुलिस स्टेशन, कोई ना कोई एक पुलिस चौकी, कोई ना कोई कार्यक्रम हर एक बस्ती में, हर एक बीट लेवल पे, बीट लेवल का मीन 2-3 गलियों तक के हम प्रोग्राम कर रहे हैं लोगों को जागरूक करने के लिए। और इस विषय में मैं यही कहूँगा कि शराब को पीछे छोड़ दिया है नशे ने आज के दिन। अगर ये कहें कि शराब नशा नहीं रहा, नशे की गिनती में नहीं रहा, नशे की गिनती से बाहर हो गया, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि आजकल सुल्फा, गांजा, भांग, चिट्टा और कई तरह के सिंथेटिक नशे हैं, कोई सूखे नशे हैं, वो इतने आगे हैं कि आप शराब को भूल जाएंगे। हम नशे के किसी भी सूरत में हक में नहीं हैं। हम रोज प्रचार प्रसार करते हैं, स्कूलों में जाते हैं, परिवारों में जाते हैं, नुक्कड़ सभाएं करते हैं, ये कहने के लिए कि एक आदमी नशे के चपेट में आता है तो कम से कम पूरा परिवार ख़त्म कर देता है। तो नशे के जागरूकता के बारे में बच्चों को हम जाते हैं, लोगों को ये कहते हैं कि एक व्यक्ति 5 लोगों को नशे की बुराइयां बताए, अपने आप नशा कम होता जाएगा, और लोग खुल के विरोध करें। जो लोग नशा करते हैं वो तो पीड़ित है, नशा कहाँ से आ रहा है, वो वहीं बस्ती से आ रहा है, कहीं से आ रहा है, तो वो लोग नशा बेचने वालों का हर हाल में विरोध करें। एक बार देशव्यापी विरोध हो गया तो नशे को जगह नहीं मिलेगी।
0: जी जी, और ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, ये जो पूरा एक चलता है सिस्टम, ये एक देश से दूसरे देश बहुत इजीली चला जाता है,
1: ये वर्ल्ड वाइड है, प्रतिबंधित है, फिर भी वर्ल्ड वाइड है।
0: हाँ।
1: प्रतिबंधित है, किसी भी देश में नशा शायद ही कहीं खुला हो, हर एक जगह प्रतिबंधित है, लेकिन हर एक जगह नशा है। तो इसके लिए वर्ल्ड वाइड अभियान चला रखे हैं, भारत सरकार ने विशेष अभियान चलाया हुआ है, विशेष टीमें गठित की है, पुलिस ने अपनी विशेष टीम गठित की है, रोज कम से कम 5 या 6 प्रोग्राम स्कूलों में, पब्लिक में, स्लम बस्ती में, सबको जाके नशे के प्रति जागरूक करते हैं, और उन लोगों के प्रति कार्रवाइयाँ रोज हो रही है। आंकड़े देखेंगे तो हमने अभी NDPS की जितनी भी FIR लॉज की हैं उनके आंकड़े के हाई लेवल पे गए, वो इसलिए कि इधर जागरूकता अभियान है, इधर धरपकड़ शुरू है, तो लोग भी सहयोग कर रहे हैं लेकिन छुप के कर रहे हैं। हम ये प्रार्थना करते हैं कि लोग खुल के सामने आए, क्योंकि कई लोगों को ये लगता है हमें क्या ले रहा है, हमारा क्या ले रहा है, सवाल आपका हमारा नहीं, सवाल पीढ़ी का है। वो घूमते घूमते पता नहीं किस दिन किसके घर में नशा घुस जाएगा, हम सोच भी नहीं पाएंगे
0: जी।
1: सबसे अपील यही करते हैं कि नशे के विरोध में खड़े हों और हर आदमी जहां खड़ा है वहीं से चार लोगों को जागरूक करे, यही अपील करते हैं
0: जी। जी सर, मैं ये भी जानना चाहूंगी ये शुरुआत कैसे होती है, क्योंकि आप बहुत क्लोजली बच्चों को भी देखते हैं, कॉलेज वाले स्टूडेंट्स को भी देखते हैं, बड़ों को भी देखते हैं, ये शुरुआत कैसे होती है, कैसे बच्चों को फंसाया जाता है इस पूरे ट्रैप में?
1: बच्चे का मन बिल्कुल साफ बिल्कुल शुद्ध होता है, बच्चा स्कूल में पढ़ता है, घर में होता है तो माँ बाप को रोल मॉडल मानता है, स्कूल में पढ़ता है तो टीचर्स को रोल मॉडल मानता है, इसी तरह से उसकी जो दिमाग की मॉडलिटी है, जो उसका मूव करना है, उसका सीखने का, लर्न करने का या उसको मोल्ड करने का जो सिस्टम है बहुत नरम है, इसी का फायदा उठा के घुसपैठिए कहिए या उनसे थोड़ी बड़े उम्र के कहिए या ऐसे लोग जो बच्चों को बरगलास के वो बच्चों की मार्फत एंट्री करते हैं,
0: यानी बच्चों को अपने उसमें
1: चंगुल में फंसाते हैं,
0: चंगुल में फंसाते हैं।
1: एक बार जो बच्चा या तो पेडलिंग में, ड्रग पेडलिंग में आ गया या बच्चा कंज्यूम करने लग गया, तो वो नशे ऐसे हैं कि शराब छूट सकती है, वो नशे छूट नहीं सकते, वो दलदल में धंसता चला जाता है। इसीलिए हम बार बार अपील करते हैं कि सब लोग नशे वालों के खिलाफ खड़े हों, एकजुट जैसे स्वतंत्रता की लड़ाई हमारे जन जन के पास थी, तो आज वो समय आ गया कि जन जन को नशे के खिलाफ बोलना चाहिए।
0: बिल्कुल, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सब इस चीज के लिए शायद इम्पोर्टेंस नहीं रखते हैं, क्योंकि अगर जिसके घर में होता है सिर्फ वही समझ सकता है।
1: बिल्कुल,
0: और कुछ हमारे देश में ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पर ये बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट तरीके से है। सर, इसमें मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि बच्चा अगर एक बार इस चीज में फंस जाता है, एज क्या होती है नॉमिनल, जो अगर हम एक नॉर्मल एज देखें बच्चे,
1: मान के चलेंगे हम 12-13 साल का बच्चा अगर बड़ा इजी फंसता है इसमें, उसको पता नहीं होता इसकी बुराइयां क्या है, क्योंकि वो 12-13 की जो एज होती है वो 18 साल से नीचे और 12 साल से ऊपर की एज होती है, तो वो घर वालों की प्रतिबंधता को नकारते हुए दोस्तों में जाना पसंद करेगा। हर प्रत्येक वो चीज जो उनका परिवार, उनके माँ बाप, उनके पेरेंट्स मना करेंगे उसकी तरफ वो दौड़ेगा, और उसी का फायदा ये ड्रग पेडलर उठा के उसको शिकार बनाते हैं।
0: मतलब 12 साल के जो बच्चे हैं उनके माता पिता को बहुत ध्यान
1: बहुत 12 से 18 जैसे 18 पार कर जाएगा बच्चा तो वो समझने लगेगा, देखने लगेगा, उसमें जिम्मेवारी थोड़ी थोड़ी आने लगेगी, वो समझता है। ये बच्चे बिल्कुल कच्ची मिट्टी के मान के चलो, जो रूप देंगे इन बच्चों को वही रूप चला जाएगा, तो इसी का फायदा उठा के लोग घुसपैठ करते हैं।
0: जी जी, और सोशल मीडिया इसमें कितना रोल प्ले करता है आपको?
1: सोशल मीडिया रोल प्ले करता है, पीछे जो बहुत ऐसे गाने भी हुए हैं जिनमें नशे की बात, गन कल्चर की बातें आई, वो प्रतिबंधित भी हुए हैं, बट सरकार भी अपने लेवल पे काम कर रही है, पर ये सरकार के साथ सहयोग करना पड़ेगा आम जन को, सरकार काम कर रही है आम जन के लिए, आम जन को भी सरकार का सपोर्ट करना चाहिए, जो सरकार चाह रही है कि ये काम नहीं होना चाहिए, और उसमें भी आम जन के ही आदमी है, सरकार के आदमी बहुत नहीं मिलेगा कोई आदमी कि सरकार का आदमी कोई इस काम में हो, तो आम जन का आदमी है उनको सपोर्ट करना पड़ेगा इस बात के लिए कि आइडेंटिफाई किया हमने, ये आदमी नशा भेजते हैं, यहाँ ये एक्टिविटी हो रही है, ये प्रशासन को बताना पड़ेगा तभी एक्शन हो पाएगा। मान लिया कोई PCR राइडर गश्त पे है तो वो पेट्रोलिंग कर रही है, उनके सामने से हट गया, तो आमजन जिसने देखा वो रिपोर्ट करे, उस पे एक्शन होगा।
0: तो लोग क्यों नहीं रिपोर्ट करते हैं, अभी भी डरते हैं पुलिस से?
1: पुलिस से नहीं डर रहे हैं, दिक्कत कई तरह की है, कुछ लोग तो इस बात के लिए अवेयर नहीं है कि हम क्यों करें,
0: एक जागरूकता नहीं है।
1: हम जागरूकता अभियान इसीलिए चला रहे हैं, सरकार ने एक विशेष टीमें बना के हर एक डिपार्टमेंट को बोला है कि रोज कोई ना कोई जागरूकता अभियान चलाएंगे। आप पेपर देखेंगे तो रोज पुलिस भी कर रही है और डिपार्टमेंट भी नशा मुक्ति अभियान चला रहे हैं और बहुत काम कर रहे हैं और वो ठीक ठाक काम कर रहे हैं।
0: जी, तो नशा मुक्ति की जब हम बात करते हैं सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी किस किस तरीके के नशे जो हैं आते हैं। हमने पहले देखा था कि दवाइयां बहुत ऐसी होती हैं जो प्रतिबंधित होती हैं पर वो मिल जाती हैं इजली, दवाइयां जो होती हैं वो कितना इफेक्ट करती हैं, कैसे बच्चों को फंसाती हैं, और इसके अलावा क्या क्या होते हैं, क्योंकि पेरेंट्स को जनरली नहीं पता होता, ये सिर्फ यंगस्टर्स को पता होता है कि किस किस तरीके के नशे जो हैं वो मिल रहे हैं, किस किस फॉर्म में मिल रहे हैं, क्या उनका कलर होता है, क्या वो लिक्विड हैं, इंजेक्टेबल हैं, या पाउडर्स हैं, या टैबलेट्स हैं, क्या है?
1: बच्चे को जो सबसे पहले नशे की तरफ लेके जाते हैं, कहीं कहीं से शराब का सेवन बहुत कम रह गया है, उससे पहले सिगरेट में कुछ मिला के पिला दिया, एक बार उसने सुट्टा लगा लिया, जो सुट्टे के नाम पे बहुत रील्स आती हैं, बहुत सीरीज आती हैं, तो उनको वो देखता है बच्चा, वो सुट्टा लगा लिया, उसने जब एक बार लगा लिया तो उसी में कुछ देते जाते हैं, वो इंजेक्ट की स्टेज जो आती है वो तो 3rd-4th स्टेज है,
0: काफ़ी बाद में
1: होती, उससे पहले तो कुछ और चीज़ें हैं उनको कुछ मिला के खिला दिया, कुछ पिला दिया, सिगरेट में पिला दिया या कोल्ड ड्रिंक में पिला दिया, इस चीज़ के आते हैं। इंजेक्ट वाली स्टेज तो लास्ट में आते हैं। इंजेक्ट वाली स्टेज के बाद संभलना बड़ा भारी काम है, बहुत भारी काम है। वो तो ड्रग एडिक्शन सेंटर में भी बात बन सकती है, अदरवाइज बाहर नहीं पेरेंट्स रोक पाए,
0: खुद नहीं छोड़ सकते।
1: नहीं, जो क्योंकि जैसे ही वो नशे की तरफ घुसेगा तो वो घर से परिवार से कटने लगेगा, चोरियाँ करने लगेगा बच्चा, तो क्राइम की दुनिया में इसी रास्ते से इंटर करते हैं लोग। तो नशा बहुत बुराई मानेंगे हम तो, कि नशा किसी सूरत में नहीं होना चाहिए।
0: बिल्कुल, यानी इतनी सारी चीज़ें जो दुनिया भर में मिल रही हैं वो बहुत ख़तरनाक हैं। और अगर आपके घर में बच्चे हैं जिनकी 12-13 साल की उम्र है और इन टीनेजर्स को आप एकदम सही जीवन देना चाहते हैं तो इनके साथ थोड़ा समय बिताना ज़रूरी है, इनकी थोड़ा सा चेक रखना भी ज़रूरी है।
1: हम तो ये कहेंगे कि बच्चे को दोस्त की ज़रूरत होती है और वो दोस्त घर से बाहर तलाशता है। हम पेरेंट्स से प्रार्थना करेंगे कि वो दोस्त अपने आप को मोल्ड करके अपने आप को तरीके से उसके दोस्त बन जाएं, ताकि उसको दोस्ती के लिए बाहर ना जाना पड़े। आप पेरेंट्स का हिटलरशिप ना चला के मित्रता पूर्ण उनके साथ रहिए, ताकि वो
0: की बात करें।
1: हाँ, ताकि वो 70% कम से कम 80% 70% आपके साथ बात कर ले, तो उससे उसको जरूरत ही नहीं पड़ेगी उसको उनके पास जाने की। वो दिक्कत का बात यह है कि हम पेरेंटिंग करते करते ये भूल जाते हैं कि बच्चे की कुछ रिक्वायरमेंट होती है, कुछ चेंजेज आते हैं बच्चे में, ऐसे हार्मोनल चेंजेज आती हैं, कुछ बायोलॉजिकल चेंजेज आते हैं, तो उन चेंजेज को वो आपसे शेयर ना करके कहीं और शेयर करें। इससे अच्छा तो आप एजुकेट करें बच्चे को, फ्रेंडशिप रखें उसके साथ, ताकि वो आपसे शेयर कर ले तो नौबत नहीं आए।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, सुरक्षा संवाद में बातचीत जारी रहेगी, वक्त एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। मैं हूँ दीक्षा आपके साथ।

0: फील गुड फील लाइव रेडियो मानव रचना 107.8 FM में हूँ दीक्षा, आपके साथ बातचीत का सिलसिला जारी है। हमारे खास मेहमान ACP बटकल अर्जुन जी, जो कि फरीदाबाद पुलिस में हैं और साथ ही हमारे साथ इस कार्यक्रम के आज गेस्ट भी हैं। हम इस कार्यक्रम को आपके बीच लेकर आते हैं फरीदाबाद पुलिस के सहयोग से और बहुत से अलग अलग विषयों पर हम चर्चा करते हैं। आज जिन विषयों पर हमने बातचीत करी है वो है वेरिफिकेशन, यानी आप अपने घर में अगर कोई हाउस हेल्प रखते हैं, ड्राइवर रखते हैं, या फिर आप अपना घर या दुकान किसी को रेंट पर देते हैं, तो वेरिफिकेशन कराना यानी पुलिस वेरिफिकेशन का क्या प्रक्रिया होती है, किस तरीके से वेरिफिकेशन कराना लाभदायी साबित हो सकता है, इस पर चर्चा करी है। साथ ही हमने नशा मुक्ति पर बात करी है और फरीदाबाद ट्रैफिक के बारे में भी बात कर रहे हैं।
1: सर, ये भी जानना चाहूंगी आपसे कि अभी आपने कहा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो देख कर भी अनदेखा कर देते हैं, पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करते, तो क्या ऐसा प्रावधान है कि अगर कोई इन्फॉर्म कर रहा है तो उसकी पहचान, उसका नाम जो है वो एकदम छुपा के रखा जाएगा, रिवील नहीं किया जाएगा?
2: बिल्कुल ऐसा प्रावधान किया हुआ है कि जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी, हमने नीचे कांस्टेबल लेवल तक ये कहा हुआ है कि आपके पास इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए और इन्फॉर्मेशन आने के बाद उस पर एक्शन होना चाहिए। जो लोग कंप्लेंट कर रहे हैं उनका नाम, बेशक उनकी झूठी कंप्लेंट रही हो या कामयाबी ना मिली हो, उनका नाम ना पब्लिश करेंगे ना किसी को बताएंगे हम। वो हमारे लिए एक सोर्स है, अच्छा सोर्स है, आज नहीं तो कल वो हेल्प ही कर रहे हैं हमारी। तो पहले ही ऐसा था, कुछ साल पहले, 15 साल पहले कहेंगे तो पुलिस के पास जाने से लोग कतराते थे, पुलिस को बताने से कतराते थे, हम लफड़े में क्यों पड़े। अभी ऐसा नहीं है, अगर आदमी कोई बताता है, इंसान बताता है, तो उसकी आइडेंटिटी बिल्कुल सीक्रेट रखी जाती है और उस पर एक्शन होता है।
1: जी बिल्कुल, यानी सीक्रेट आइडेंटिटी का प्रावधान है, तो किसी भी व्यक्ति को अगर कोई कंप्लेंट करनी है तो वो इजिली कंप्लेंट कर सकता है। अब सर बात करते हैं ट्रैफिक, क्योंकि दो मुद्दे ऐसे रहे जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आम इंसान के, उन पे हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन अब ट्रैफिक के बारे में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ट्रैफिक हर किसी की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। जो घर से बाहर निकलेगा वो ट्रैफिक का सामना करेगा, और गाड़ी भी चलाएगा, बाइक भी चलाएगा, स्कूटर, साइकिल, नहीं तो पैदल तो चल ही रहा है। तो इन सड़कों पर जो रोड सेफ्टी की जब हम बात करते हैं, तो आजकल के समय में क्यों लोगों में सब्र नहीं है सड़क पर चलते हुए, क्योंकि एक्सप्रेसवे पे आप चल रहे हैं, अगर लिमिट 100 की है तो 120, 130 से नीचे कोई नहीं चलाना चाहता, और ऐसे में एक्सीडेंट होना लाजमी होता है। दूसरी चीज़ जो सुबह के वक्त होती है या शाम के वक्त होती है, सुबह ऑफिस पहुंचने की जल्दी होती है, आप लेट निकलते हैं घर से, ट्रैफिक हल्का सा मिलता है तो आप रॉन्ग साइड लेते हैं, शाम को आपको वैसे ही घर जल्दी पहुंचना होता है क्योंकि आप थक चुके होते हैं, तो लोग रॉन्ग साइड बहुत लेते हैं। फिर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कोई सड़क पर चल रहा है, उसने ज़रा सा आपसे तेज़ गाड़ी निकाल ली तो आप रोड रेज में आ जाते हैं, और इसकी वजह से सिर्फ एक्सीडेंट नहीं होते, हमने ये देखा है कि मार पिटाई से लेकर खून खराबे तक की बात आ जाती है।
2: बिल्कुल सही बात है। आजकल हम देख रहे हैं कि जैसे सोशल मीडिया का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, तो लोगों की फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है। फिजिकल एक्टिविटी कम होने की वजह से पेशेंस लूज हो गया है। पेशेंस लूज हो गया तो वो ना तो रोड रेज से चूकता है, वहाँ पे भी बिल्कुल तुरंत से एक्शन करके लड़ना पसंद करता है, और ना ही ट्रैफिक के जो प्रेशर है ट्रैफिक का उसको सहन कर पाता है। अब छोटा सा उदाहरण NCR का, हम यहाँ से फरीदाबाद से गुड़गांव का लेते हैं जी। गुड़गांव से फरीदाबाद जाने के लिए एक सड़क जाने की है और एक सड़क आने की है। एक सड़क पे जाते वक्त दो व्हीकल साथ निकल सकते हैं। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, थोड़ा सा समय होता है जो ट्रैफिक रश होता है, क्रॉल करके चलता है, उसमें लोग पेशेंस करने के बजाय ओवरटेक करके आ जाएंगे, रॉन्ग साइड चले जाएंगे, तो आपकी ट्रैफिक बिल्कुल स्मूथ चल रही, स्लो चल रही है, इतना ही है, थोड़ी देर क्योंकि प्रेशर है सुबह शाम का तो स्लो चलेगी। आप उसको थोड़ा जज्ब कर लें, अंदाज़ा लगाएं कि हमारी वजह से दूसरों को दिक्कत ना हो। जो सामने से आने वाला है उसने कोई गलती थोड़ी की है, हम दूसरी साइड रॉन्ग साइड चले जाएंगे, जाम लग जाएगा, वो सब लोग और फंस जाएंगे, इससे अच्छा तो अपनी रो में चले, थोड़ा सा पेशेंस रखें, जहाँ 15 मिनट लगने थे वहाँ 17 मिनट लग जाएंगे, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, 2 मिनट

0: थोड़ा पैसेज करना पड़ेगा, उसको भी टाइम लगता है जी। हाँ। वो रीड करेगा, सर्च करेगा, निकालेगा, इतना
1: और कभी टेक्निकल एरर्स भी हो जाते हैं। बिल्कुल
0: तो हमें पेशेंस की जरूरत है। और सड़क पे जो घर से निकलता है वो अपने काम से निकलता है, कोई लड़ने के लिए, कोई एक्सीडेंट करने के लिए नहीं निकलता। एक्सीडेंट बाय चांस हो जाता है तो हमें पेशेंस की जरूरत है। और दूसरी बात, मैं तो ये भी कहूँगा, एक्सीडेंट चलो हो गया तो हम जो लाखों रुपए इंश्योरेंस के देते हैं वो इसीलिए देते हैं कि वो ठीक करवा लेना, कि इसलिए देते हैं कि हम लड़ लें।
1: बिल्कुल, लड़ने की आदत बहुत दिल्ली एनसीआर में बहुत ज्यादा है।
0: वो अग्रेसिव इसलिए हो गए हैं कि उनके फिजिकल वर्कआउट नहीं रहा। अगर कोई इंसान फिजिकल वर्कआउट, योग, प्राणायाम करेगा, कोई फिजिकल एक्सरसाइज करेगा, जिम जाएगा और जाएगा, तो उससे उसका स्ट्रेस फ्री हो जाएगा, तो उससे फिर वो लड़ने की तरफ नहीं जाएगा, काम की तरफ फोकस करेगा। जो आदमी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेगा उसके दिमाग में एक्स्ट्रा स्ट्रेस दे रहे, स्ट्रेस के चक्कर में लड़ भिड़ पड़ता है।
1: बिल्कुल, यानी कहीं का गुस्सा कहीं
0: निकलता है। बिल्कुल सही कहा।
1: और हमेशा हमने ये देखा है कि जो भी स्ट्रांग होता है वो अपने से कमजोर वाले गुस्सा निकालता है, तो वही चीज हो जाती है कि आपकी गाड़ी बड़ी है, आप छोटी गाड़ी वाले से लड़ लेते हैं या ऑटो वाले से लड़
0: बड़ी गाड़ी रखी है, इंश्योरेंस की गाड़ी रखी है, इंश्योरेंस पे कर रहे हैं समय पे, तो ये हमें बड़ा दिल करना पड़ेगा कि वो इंश्योरेंस इसीलिए दिन के लिए पे किया था हमने, कि अगर कोई छोटी मोटी बात गलती से, ना गलती से एक्सीडेंट हो गया तो उसके कवर करने के लिए हमने इंश्योरेंस करवाया था, ना कि लड़ने के लिए करवाया था। ये पेशेंस हमें बड़ा दिल करके करना ही पड़ेगा
1: जी। अब उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे जो बिल्कुल अपने दो मिनट बचाने के लिए रॉन्ग साइड लेते हैं? और खास तौर पर से मैंने ये देखा है कि फरीदाबाद में रॉन्ग साइड का कल्चर जो है वो बहुत ज्यादा है। आप दिल्ली जाएं चालान से डर लगता है, लेकिन फरीदाबाद में लोगों को शायद चालान से डर ही नहीं लगता है। हालांकि हम बहुत ट्रैफिक ऑफिसर से बात कर चुके हैं और उन सब के बाद चीज़ें यही निकल के आती है कि चालान तो बहुत हो रहे हैं, अभियान तो बहुत हैं, लेकिन फिर भी लोग सुधर नहीं रहे।
0: अभी इसमें दो बातें कहेंगे हम। एक तो NPR कैमरेज लगा रखे हैं, हर एक जगह कैमराज हैं, उनमें बहुत लोगों को तो पता ही नहीं है कि हमारा चालान हो कहाँ रहा है। वो रॉन्ग साइड जाएंगे और उनका हो जाएगा। पीछे एक किसी ने आके बताया जी मेरा 1,12,000 का चालान हो गया स्कूटी का।
1: अच्छा,
0: हम बहुत हैरान थे इस बात के लिए कैसा हुआ। पता चला कि वो श्रीमान जी घर से निकलते हैं विदाउट हेलमेट होते हैं, रॉन्ग साइड जाते हैं और सिग्नल जंप करते हैं, तो तीन चालान जाते वक्त, तीन चालान आते वक्त हर रोज लेते
1: हैं,
0: छह चालान डेली के ले रहे हैं, तो वो उनको पता ही नहीं चला। 3 महीने में लगभग वो 1,00,000 कुछ के पार निकल गए।
1: अच्छा,
0: उसके बाद उनको दिमाग में आया, वो खुद अब 2-3 जगह में पता चला कि वो खुद लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि ऐसा नहीं करना, आपके घर चालान पहुंचे।
1: ये फरीदाबाद के हैं,
0: ये फरीदाबाद के हैं। दूसरा एक अभियान और चलाया फरीदाबाद पुलिस ने कि रॉन्ग साइड जाने वालों को कोशिश करेंगे हम कंट्रोल करें, फिर भी ना हो तो रॉन्ग साइड जब एक जहां बीच में डिवाइडर बना हुआ है, एक सड़क जाने की है एक आने की है, अगर उस पर रॉन्ग साइड है तो उसका चालान की बजाय व्हीकल जब्त करके पैदल जाए।
1: जी,
0: स्पष्ट पता है कि हमें ये सड़क जाने की और ये आने की है, फिर भी धक्का कर रहे हैं, तो उनके व्हीकल जब्त कर लिया जाए, वो पैदल टैक्सी से निकल जाए, वो एक बार जाएंगे दोबारा नहीं जाएंगे,
1: दोबारा नहीं जाएंगे। अब तो स्ट्रिक्टनेस जरूरी है।
0: ये लास्ट में आके तब करनी पड़ी जब जागरूक अभियान चला दिए हमने, सब कुछ कर दिया, फिर भी समझ नहीं आ रहा, तो मन मना के चला है, तो मन मना के पुलिस ने मन मना लिया है कि जी ऐसे जो करेंगे उनका व्हीकल जब्त कर लिया जाए, उनको पैदल भेजा जाए।
1: और जब्त करते हैं?
0: हाँ करते हैं, शुरू कर दिया काम,
1: कर दिया है। तो शुरू, जो लोग हमें सुन रहे हैं और वो रॉन्ग साइड के आदि हो चुके हैं, तो आपको हम ये बता दें कि गाड़ियां जब्त करने का जो ट्रेंड है वो फरीदाबाद पुलिस का शुरू हो चुका है। तो अगर आपको लग रहा है आप रॉन्ग साइड लेके आसानी से निकल जाएंगे, कभी एक आधी बार निकल सकते हैं, पर जनरली अब आप पकड़ में भी आ जाएंगे
0: जी।
1: तो सर, बहुत सारी बातें आपने कही हैं और बहुत सारी जानकारी दी है। चलते चलते एक छोटा सा मैसेज हमारे लिसनर्स के लिए जरूर कही।
0: हम सभी से प्रार्थना करेंगे, आग्रह करेंगे कि नशे के खिलाफ एकजुट होके, जैसे स्वतंत्रता संग्राम चलाया था, स्वतंत्रता की लड़ाई चलाई थी, हर घर से इंसान स्वतंत्रता के लिए निकला था, इसी तरह अपील करें कि नशे के खिलाफ भी हर घर से हर इंसान जागरूक हो और जागरूक करे और नशे को बाय बाय कहे। ट्रैफिक के बारे में ये भी प्रार्थना करेंगे कि ट्रैफिक के नियमों का पालन करें, जहाँ जहाँ बंद पड़ता है हर एक जगह पुलिस व्यवस्था के लिए लगाई हुई है, लेकिन हर आदमी के लिए हर जगह पुलिस लगाना संभव नहीं है। जब तक लोग सहयोग नहीं करेंगे ट्रैफिक स्मूथ नहीं चल पाएगी। सबकी व्यवस्था के लिए सब लोग सहयोग करें। और तीसरा हमारा वेरिफिकेशन के लिए था, वेरिफिकेशन आपकी, आपके नगर की, आपके देश की सुरक्षा के लिए है, कोई इसमें बुराई नहीं है, समय पे कराने पे कोई फालतू लफड़ा नहीं है, आजकल ऑनलाइन सब कुछ हो रहा है, बिल्कुल ठीक स्मूथ हो जाएगा, यही हमारी प्रार्थना है, यही इंतजार है
1: जी। तो बहुत सारी बातें आज हमने सुरक्षा संवाद में जानी है। हमारे साथ जुड़े रहे भटकल के ACP श्री अर्जुन जी, और जिन्होंने बहुत सारी डिटेल में बातें बताई हैं कि वेरिफिकेशन कितनी ज़रूरी होती है, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना कितना ज़रूरी है, नहीं करेंगे तो आपकी गाड़ी तक जब्त हो सकती है, और

सबसे जरूरी चीज, नशे के खिलाफ जंग छेड़नी पड़ेगी। आपको जागरूक होना पड़ेगा और अपने बच्चों को इस नशे से बचाना पड़ेगा। फिलहाल सुरक्षा संवाद में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर से करेंगे मुलाकात एक नए अधिकारी के साथ। उम्मीद है आप सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपने सवाल हमें 8010781078 पर भेजते रहें। फिलहाल मुझे यानी दीक्षा को दीजिए इजाजत।

0: हाय दोस्तों, मैं हूं रूप कुमार राठौर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना पर 107.8 एफएम। फील गुड, फील लाइफ।
1: हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और मैं लेकर आ गई हूं आपके लिए प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर एक खास कार्यक्रम जिसमें मैं आपको ऐसे लोगों से मिलवाती हूँ जो मानवता की राह पर चलते हैं, ऐसे काम करते हैं जो ना सिर्फ लोगों के जीवन को बदल देते हैं लेकिन जीवन को एक नई राह भी देते हैं। आज इस कड़ी में हम जिनसे बात करने वाले हैं वो हैं रोटेरियन शेखर मेहता, फाउंडर इंडिया ह्यूमैनिटी फाउंडेशन और पास्ट रोटरी इंटरनेशनल के प्रेसिडेंट। सो करेंगे इनका स्वागत रेडियो वाला प्रश्न 107.8 एफएम के स्टूडियो में। अगर मैं आपसे सबसे पहला सवाल पूछूं, इंडिया ह्यूमैनिटी फाउंडेशन, तो क्या कहेंगे आप? इंडिया ह्यूमैनिटी फाउंडेशन की शुरुआत कैसे हुई और इसके पीछे क्या कहानी थी?
2: शुरुआत हुई 2010 में
1: जी,
2: और तब मैं रोटरी इंटरनेशनल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सिलेक्ट हुआ था। तो विश्व भर से 17 लोग इकट्ठे होते हैं उस बोर्ड पे, तो इंडिया से मैं हुआ था। तो मुझे लगा कि मैं इंडिया में, जब मुझे इस मौका मिल गया कि इंडिया में करीब 1.5 लाख रोटरी के मेंबर्स होते हैं, वर्ल्ड वाइड 14 लाख मेंबर्स हैं, तो हम जो काम कर रहे थे उसे और बड़ा काम किया जा सकता है। तो एक फाउंडेशन अलग से बना लिया था, तब इसका नाम रोटरी इंडिया ह्यूमैनिटी फाउंडेशन हुआ करता था। एंड तो हमने कुछ गोल सेट किए थे, जैसे कि हम 5,000 बच्चों की हार्ट सर्जरीज कराएंगे, हम इंडिया को टोटली लिटरेसी की तरफ, टोटल लिटरेसी की तरफ ले जाएंगे, देन एक शेल्टर के प्रोग्राम था डिजास्टर मैनेजमेंट का, वो करेंगे, आई हॉस्पिटल सेटअप करेंगे। सो यही कुछ इंडिया लेवल के प्रोग्राम्स हमने सेटअप किए थे और आज अब 16 साल हो गए हैं, रीजनेबल सक्सेस मिली। 5,000 हार्ट सर्जरी सोची थी, ये नहीं कि हमको ही करनी थी, हमको ये बात को फैलाना था चारों तरफ में, लोग और जुड़े, लोग भी करें, हम भी करें। हमने 2,500 हार्ट सर्जरी खुद करी होंगी, लेकिन इंडिया भर के अंदर में रोटरी दूसरे संस्थाओं को जोड़ के 25,000 से ज्यादा हार्ट सर्जरी हो गई है अभी तक।
1: वाओ, So, ये तो एक बहुत बड़ा नंबर है। और देखिए दोस्तों, हम कई बार ना ऐसा सोचते हैं कि हम मानवता के काम करने के लिए अगर आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास पैसे नहीं होंगे या हमारे पास मदद नहीं होगी। दरअसल मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छे कन्विक्शन की जरूरत होती है। आप एक अच्छे कन्विक्शन से शुरू करिए, मदद और साथ के साथ रिसोर्सेस कहीं ना कहीं से आपके पास पहुंच ही जाते हैं, बस एक जज्बे की जरूरत है। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। वक्त एक छोटे से प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक का। फील गुड, फील लाइफ।

0: बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। आज मानवता की राह पर हम चल रहे हैं रोटेरियन शेखर मेहता जी के साथ, जो कि फाउंडर हैं इंडिया ह्यूमैनिटी फाउंडेशन के और पास्ट रोटरी इंटरनेशनल के प्रेसिडेंट भी रहे हैं।
1: शेखर जी, अब अगला अहम सवाल, अगर मैं लिटरेसी की बात करूं तो भारत आज भी, मैं ये नहीं कह सकती हूं कि 100% एक लिटरेट कंट्री है। सो आप लिटरेसी फैलाने के लिए इंडिया ह्यूमैनिटी फाउंडेशन को किस तरीके से एम्पावर कर रहे हैं?
2: वो बहुत सही बात कही आपने, कुछ तो आपने पहले जो कही, मैं एकदम सहमत हूँ उस बात से कि आदमी को एक ख्वाब होने की जरूरत है, फिर जज्बा होने की जरूरत है। गांधी जी ने कहा था, फाइंड द गोल एंड द मींस विल फॉलो।
1: यस,
2: और ये हमेशा होता है, अगर इफ यू फाउंड द राइट गोल। सो द नेक्स्ट गोल दैट इंडिया ह्यूमैनिटी फाउंडेशन, उनका जो नेक्स्ट गोल है वो है टूवर्ड्स अ टोटली लिटरेट इंडिया। इंडिया की लिटरेसी रेट अभी भी 80% से ज्यादा नहीं है। हम 80th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस मनाया हमने, लेकिन 80% से ज्यादा नहीं है। लास्ट सेंसस में तो वो 74% थी, लेकिन वो सेंसस 2011 में हुआ। अभी का सेंसस, हालांकि मेरे पास में आया सेंसस का कागज, उसमें नहीं पूछा जा रहा है मैं लिटरेट हूँ कि नहीं, तो मुझे नहीं पता कि इस सेंसस के अंदर में वो फिगर्स आएंगे कि नहीं। बट वी डिसाइडेड कि नहीं, हमको इंडिया को टोटली लिटरेट बनाना है, और उसके लिए हमने एक प्रोग्राम शुरू किया, अक्षर ज्योति। अक्षर ज्योति में हम उस प्रोग्राम को दो भाग में डिवाइड करते हैं। एक है बड़ा इंटरेस्टिंग, ईच वन जो कि जिस प्रोग्राम का नाम है दीक्षा। तो हम स्कूल के बच्चों को बोलते हैं कि आप एक एडल्ट को पढ़ाएंगे। भारत में 20 करोड़ एडल्ट इलिटरेट है आज के दिन, 20 करोड़, और हमारे एजुकेशन सिस्टम में 25 करोड़ से ज्यादा बच्चे हैं। अगर ये बच्चे सब, हर कोई तो पढ़ा नहीं पाएगा, लेकिन अगर हम क्लास 7-8 के बच्चे, 7-8-9-10-11-12 तक के बच्चों में, 12 को छोड़ दिया हमने, 10 को छोड़ दिया, उनके एग्जाम्स रहते हैं, लेकिन बाकी सब पढ़ा सकते हैं। एंड मैंने हजारों हजारों बच्चों से मिला हूं मैं, हर कोई रेडी है एक एडल्ट को बनाने के लिए। आप उनसे किसी क्लासरूम में जाके आप बोलिए इंडिया टोटली लिटरेट नहीं है, तुमको उसमें मदद करनी है, आप देखिएगा सारे बच्चे अपने हाथ उठाएंगे। फिर हमने कुछ किताबें, दो किताबें डेवलप करी, एक स्पेशल टूल किट डेवलप किया है इंडिया की वेरियस लैंग्वेजेस के अंदर में। हम स्कूलों में जाते हैं, बच्चों को समझाते हैं, वो वॉलंटियर करते हैं, उनको वो किताबें देते हैं, वो 60 दिन तक 45 मिनट से एक घंटा अगर एक एडल्ट को पढ़ाएंगे तो 60 दिन के बाद वो एडल्ट लिटरेट इतना हो जाएगा कि वो पढ़ सकेगा, लिख सकेगा और बेसिक अरिथमेटिक कर सकेगा। अगली जनगणना में उसका नाम लिटरेट में होगा। और अगर हम इस प्रोग्राम को बढ़ा, और जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में अप्रूव्ड है, इनफैक्ट मेरा ही डिस्कशन हुआ था प्रकाश जावड़ेकर जी, जब एजुकेशन मिनिस्टर थे, उनको मैंने ये आइडिया दिया था, उनको बहुत समझ में आई ये बात, वो मिनिस्टर थे एजुकेशन के, हम लोग गए, डिस्कशंस हुए, एंड डिस्कशंस होते होते ये हुआ। और मैंने एक और सजेशन दिया था कि इन बच्चों को हर स्कूल से 15 से 20 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलने चाहिए देश का इस काम को करने के लिए। कुछ पैसे नहीं लग रहे, एक किताब बच्चे को हाथ में पकड़ानी है, उसे फॉलो अप कर लेना है, और उसे एट द एंड एक मेडल दे दीजिए, एक सर्टिफिकेट दे दीजिए, 20 मार्क्स दे दीजिए, 5 साल के अंदर में इंडिया टोटली लिटरेट हो जा सकता है। सो यही मुहिम हम चला रहे हैं एट इंडिया ह्यूमैनिटी फाउंडेशन।
1: वंडरफुल दोस्तों, सुनकर ही मुझे ऐसा लग रहा है कि हम अपने भारत का स्वर्णिम सपना देख पा रहे हैं। मतलब एक टाइम पर हम ये चाहते हैं कि हमारा पूरा भारत लिटरेट हो, लेकिन ये फिगर अचीव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो इलिटरेट रह गए हैं वो बुजुर्ग हैं और वो यंग बच्चे नहीं है। अगर हम बच्चों की बात करें तो 14 साल तक की तो एजुकेशन हर बच्चे को मिल ही रही है और फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, इंश्योर भी किया जा रहा है कि वो किसी ना किसी तरीके के फॉर्मल स्कूल में चले जाएं। लेकिन जो बुजुर्ग रह गए हैं उन्हें कहां मिल रही है एजुकेशन, और उन्हें लिटरेट बनाना शायद अब आने वाली पीढ़ी का काम है और ये करंट पीढ़ी का काम है। तो बहुत आसानी से शेखर जी ने एक बहुत अच्छा तरीका निकाला है कि अगर हमारे 25 करोड़ बच्चे हैं और 20 करोड़ इलिटरेट हैं, सो अगर हर बच्चा एक बुजुर्ग को भी पढ़ाएगा, मात्र एक बुजुर्ग, आप अपने आसपास ढूंढिए, आप अपने दूर दराज में कहीं जाकर ढूंढिए, तो ये इतनी खूबसूरती से हो सकता है और वाकई हम देख पाएंगे कि हमारा देश पूरी के पूरी तरीके से लिटरेट हो गया है। सो ये एक सपना है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप सभी इस सपने में आज ही से जुड़ जाए। कैसे जुड़ेंगे, किस तरीके से आप इसे अपने शहर, अपने राज्य और साथ के साथ अपने स्टेट में कर सकते हैं, इसके बारे में हम जरूर करेंगे बात। जुड़े रहिएगा रेडियो 107.8 एफएम के साथ। फील गुड, फील लव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। आज मानवता की राह पर हम चल रहे हैं रोटेरियन शेखर मेहता जी के साथ, जो कि फाउंडर हैं इंडिया ह्यूमैनिटी फाउंडेशन के और पास्ट रोटरी इंटरनेशनल के प्रेसिडेंट भी रहे हैं।
1: शेखर जी, अब एक बड़ा अहम सवाल। मान लीजिए कि हम इस सपने को पूरा करना चाहते हैं और आपके सपने में पूरा देश जुड़ना चाहता है, सो किस तरीके से इसे फॉलो किया जा सकता है? क्या स्कूल अपने लेवल पर इसे कर सकते हैं? क्या राज्य के इंडिविजुअल अपने लेवल पर कर सकते हैं? किस तरीके से इसे किया जा सकता है?
2: बाबा जी, मैंने कहा कि बच्चे जुड़ सकते हैं, लेकिन बच्चों के अलावा लेट्स से हाउसवाइफ्स है या कोई भी आदमी वॉलंटियर कर सकता है कि मुझे एक जन को पढ़ाना है, ये देश का काम है, मेरा कोई पैसे नहीं लग रहे हैं। अब स्टेट का सब्जेक्ट हो जाता है ये, तो स्टेट को चाहिए। ये जो एनईपी के अंदर में 60-40 में डिवाइडेड है, स्टेट गवर्नमेंट का भी पैसा लगता है और सेंट्रल का भी पैसा मिलता है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा हर चीफ मिनिस्टर इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। इट इज इजी टू इम्प्लीमेंट। वो अगर अपने एजुकेशन मिनिस्टर के थ्रू सारी स्कूलों के अंदर में इसे जारी करवा दे और कहने कि हर बच्चे को 15 मार्क्स दिए जाएंगे जो इसे कंप्लीट करेगा, तो हम उस बात को चारों तरफ फैलाने के लिए तैयार है। हम हजारों के अंदर में वॉलंटियर्स ऑल ओवर इंडिया जोड़ने के लिए तैयार है। हर स्टेट के अंदर में हम 22 स्टेट्स में ऑलरेडी काम कर चुके हैं। वी हैव टेक

महावीर का जो जीवन है वो ऐतिहासिक नहीं है और बुद्ध का जो जीवन है वो भी ऐतिहासिक नहीं है। इतिहास दो कौड़ी का है क्योंकि हमारी पकड़ बहुत गहरी है। हम ये कहते हैं कि जब भी जितने बुद्ध हुए उन सबका जो सार निचोड़ है वो हमने फिर गौतम बुद्ध में पढ़ लिया, फिर हमने गौतम बुद्ध के नाम से लिख दिया। फिर आगे कोई बुद्ध होगा, गौतम बुद्ध तब तक भूल जा चुके होंगे, बिछड़ गए होंगे इतिहास की पुरानी रास्तों पर, भूल चुके होंगे। फिर नया बुद्ध सारे बुद्धों में जो होता है उसको फिर से पुनर्जीवित कर देगा। लेकिन कथा वही है, नाम बदल जाते, रंग ढंग बदल जाते, लेकिन कथा वही है, गीत वही है, धुन वही है, टेक वही है। इसलिए सारी बातें बुद्ध के जीवन में जो लिखी है तुम ऐसा मत सोचना कि वो सच सच ऐतिहासिक अर्थों में नहीं है। कई बातें ऐसी हैं जो दूसरे बुद्धों के जीवन में घटी होंगी और कई बातें ऐसी हैं जो आने वाले बुद्धों के जीवन में घटेंगी। बुद्ध के जीवन में हमने सबका सार रख दिया है, निचोड़ है। गुलाब का एक फूल है ये इतिहास, और हमने बहुत से फूलों का इत्र निकाल लिया ये पुराण। उस इत्र में सभी गुलाबों की गंध आ गई, मगर अब तुम ये ना कह सकोगे किस गुलाब से बना ये इत्र, अब मुश्किल है, अब बताना बिल्कुल मुश्किल है। जो तुम्हारी बगिया में खिला था उस गुलाब से, या जो पड़ोसी की बगिया में खिला था उस गुलाब से, कि पीले गुलाब से, कि लाल गुलाब से, कि सफेद गुलाब से, अब ये बताना बहुत मुश्किल है। अब तो ये इत्र सबका सार निचोड़, हमने इत्र लिखा, पश्चिम गुलाबों की रूपरेखा लिखता है, एक एक गुलाब का हिसाब रखता है। हम कहते हैं एक एक गुलाब का हिसाब रखने से सार भी क्या है, सब गुलाब अपनी मूलभूत सत्ता में समान होते हैं। इसलिए हमारे सत्य सार्वलौकिक, सार्वभौम है, शाश्वत है। पूछा है तुमने मनुष्यों में जो प्रथम बुद्ध हुए होंगे, नहीं कोई प्रथम नहीं हुआ, प्रथम के भी पहले बहुत हुए, तो प्रथम कहने का कोई अर्थ नहीं, और अंतिम भी कोई नहीं होगा, अंतिम के बाद भी होते रहेंगे। प्रश्न है कि किस मार्ग से गए होंगे वे, उनका गुरु कौन था, उनके पहले इतना ही समय हो चुका था जितना हमारे पहले हुआ है, क्योंकि समय अनंत है, इसमें हिसाब नहीं लगाया जा सकता। मैंने सुना है एक म्यूजियम में, म्यूजियम का गाइड एक यात्रियों के दल को चीजें दिखा रहा था, फिर उसने एक अस्थि पंजर बताया और कहा कि ये 1,03,007 पुराना है। यात्री भी थोड़े चौंके, 1,03,007 पुराना, उनका 1 करोड़ तो ठीक, मगर ये 3 साल और 7 दिन इतना हिसाब रखा है। उसने कहा कैसे पता चला ये 3 दिन और 7 दिन का, ये 3 साल और 7 दिन का, तो उसने कहा ऐसे पता चला कि आज से 3 साल 7 दिन पहले इस म्यूजियम का जो डायरेक्टर है उसने मुझे कहा था कि ये 1 करोड़ वर्ष पुराना। तब मैं उसमें जोड़ता जाता हूँ क्योंकि 3 साल 7 दिन बीत चुके, अतीत अनंत है। तुम क्या सोचते हो कि हम बुद्ध के 2500 साल बाद हुए, 2500 साल बाद, तो क्या तुम सोचते हो अतीत की अनंतता में धन 2500 साल जुड़ गए? अतीत की अनंतता में क्या जोड़ोगे, क्या कटाओगे? अनंत अतीत की दृष्टि से तो कुछ भी नहीं बीता है, 2500 साल कुछ भी नहीं बीते, बीता ही नहीं कुछ। अनंत में कुछ जोड़ो तो बढ़ता नहीं और घटाओ तो घटता नहीं। उपनिषद का वचन तुम्हें याद है ना, पूर्ण में पूर्ण को जोड़ दो तो पूर्ण बड़ा नहीं होता, और पूर्ण में से पूर्ण को निकाल दो तो पूर्ण छोटा नहीं होता। पूर्ण का अर्थ ही ये होता है, उसमें जोड़ा नहीं जा सकता और घटाया नहीं जा सकता, कितना ही जोड़ते चले जाओ। अनंत का ख्याल करो, हमसे पहले अनंत काल बीत चुका है। अनंत का अर्थ ही होता है कि जिसका कभी कोई प्रारंभ नहीं था, अब उसमें 2500 साल जोड़ने से कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। जितना काल हमसे पहले बीता है उतना ही काल बुद्ध के समय में भी बीत चुका था, उतना ही, और हमारे बाद भी 2500 साल बाद जब कोई आएगा और चर्चा करेगा तब भी उतना ही काल बीता है, कुछ फर्क नहीं पड़ा है। इसलिए किस मार्ग से गए होंगे उनके पहले जो बुद्ध गए थे, अनंत अनंत बुद्ध स्वभावतः उसी मार्ग में से उन्होंने अपना मार्ग चुना होगा। उनके पहले जो अनंत दीप स्तंभ हुए थे उन्हीं की रोशनी में उन्होंने अपनी खोज की होगी।
यहाँ कोई पहला नहीं है और यहाँ कोई अंतिम नहीं है, हम सब संयुक्त। तुम ऐसा सोचो, तुम अपने पिता से पैदा हुए, तुम्हारे पिता अपने पिता से पैदा हुए होंगे, पिता के पिता और किसी से पैदा हुए होंगे। तुमने कभी ऐसा सोचा कि पहला आदमी किससे पैदा हुआ? वैसे ये भी प्रश्न है, पहला आदमी किससे पैदा हुआ? पहला आदमी हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब भी कोई आदमी पैदा होगा पिता की जरूरत पड़ेगी, माँ की जरूरत पड़ेगी, किसी से पैदा होगा। पहला आदमी हो ही नहीं सकता और न अंतिम आदमी हो सकता है, क्योंकि जो है वो रहेगा, मिटता नहीं, जो है था और रहेगा। इसका तुम्हें बोध आ जाए, ये विस्तार का तुम्हें थोड़ा स्मरण आ जाए। ये कठिन है स्मरण करना, क्योंकि हमारी बुद्धि की बड़ी सीमा है। कितने खींचो तानो हम कहते कोई तो हुआ होगा पहले, हमारा मन पूछ ही चला जाता है, कोई तो हुआ होगा पहले, कभी तो अंत होगा। इसे और तरह से देखो, हम कहते हैं जगत असीम है। सोचो, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, प्रकाश की गति से चलो। प्रकाश बड़ी तीव्र से तीव्र गति है, 186,000 मील प्रति सेकंड प्रकाश की गति से तुम्हारा हवाई जहाज चला जा रहा है। या और भी बड़ी गति खोज लो, क्या तुम कभी ऐसी घड़ी में आओगे जहां तुम जगत की सीमा पर पहुंच जाओ? समझना, इस पर दार्शनिक बहुत चिंतन करते रहे कि ऐसी कोई जगह आएगी जहां तख्ती लगी हो कि यहां समाप्त हो गया संसार, अब आगे मत जाना नहीं तो गिर पड़ोगे। मगर अगर आगे गिर पड़ने को भी जगह है तो अभी संसार बाकी। अगर सीमा भी खींची जा सकती है कि यहाँ संसार समाप्त हो गया, तो सीमा तो बनती ही दो से, तो यहाँ से कोई और चीज शुरू हो गई। हर अंत शुरुआत, हर द्वार कहीं खुलता है कहीं बंद होता है। अगर तुम एक ऐसी जगह पहुंच गए, ठीक है यहाँ होता है ऐसा कि तुम पहुंच गए महाराष्ट्र खत्म गुजरात शुरू, ये यहाँ हो जाता है, लेकिन गुजरात तो होना चाहिए ना, तो महाराष्ट्र खत्म कैसे होगा? महाराष्ट्र खत्म हो जाता है गुजरात शुरू हो जाता है, हिंदुस्तान खत्म हो जाता है पाकिस्तान शुरू हो जाता है। जहाँ कुछ खत्म होता है वहाँ तत्क्षण कुछ शुरू हो जाता है। अगर ये विश्व कहीं खत्म होता हो और एक रेखा आ जाती है, यहाँ तख्ती लगी चुंडी चौकी बनी, बस आगे मत बढ़ना, यहाँ संसार खत्म, तो उसका मतलब है आगे कुछ तो होगा। नहीं, ऐसी चुंडी चौकी पर तुम कभी ना पहुंचोगे, ऐसी कोई चुंडी चौकी है ही नहीं, हो ही नहीं सकती, होना ही असंभव है। क्योंकि जहां भी रेखा खींचनी हो, रेखा दो के बीच खींचती, और अगर दूसरा मौजूद है तो अभी अंत नहीं आया, तो रेखा खींची नहीं सकती, रेखा असंभव है। जब हम कहते हैं जगत असीम है तो हम कहते हैं आकाश असीम, और जब हम कहते हैं जगत अनंत है तो हम कहते हैं समय काल की धारा अनंत। समय और आकाश दोनों अनंत है, यहाँ न कभी कोई प्रथम हुआ और न कोई अंतिम होगा। चौथा प्रश्न, आपके चरणों में सिर रखकर अपना प्रेम प्रकट करना मेरा ध्येय था, जिसके कारण मुझे संन्यास लेने में अड़चन नहीं हुई, कृपया बताएं कि गुरु की क्या जिम्मेदारी है, मुझे कैसे भरोसा आए कि मुझे गुरु प्राप्त हो गया, मैं आपसे चकित हूँ। पहली तो बात, क्या मुझ पर कोई मुकदमा चलाने का इरादा है? गुरु की जिम्मेदारी, गुरु जाने, तुम जान के क्या करोगे? क्या अगर जिम्मेदारी पूरी न की गई तो अपनी झंझट बखेड़ा खड़ा करोगे? गुरु की जिम्मेदारी गुरु जाने, तुम अगर पूछना ही हो तो शिष्य की जिम्मेदारी पूछो, क्योंकि वो तुम्हें करनी है। अपनी बात पूछो, अपनी बात तो तुमने नहीं पूछी, तुम फिक्र कर रहे हो कि गुरु की क्या जिम्मेदारी। जैसे तुम्हारा काम तो अब पूरा हो गया, क्योंकि चरणों में सिर रख दिया, बात खत्म हो गई। हालांकि चरणों में सिर अभी रखा नहीं, नहीं तो जिम्मेदारी पूछते नहीं। जब चरणों में सिर रख ही दिया तो बचा क्या? अब बात खत्म हो गई, अब जो मर्जी उसको करो, अब जैसा लगे करो, ये गर्दन काटनी हो तो काट दो, अब कोई बात न रही पूछने की। लेकिन तुमने चरणों में सिर रख के जैसे गुरु पे अनुकंपा की कि अब बोलो, हम तो कर दिए जो करना था, अब आपकी तरफ से क्या होगा, जो कि हमने तो सिर रख दिया, सिर में है क्या? सिर काट के बेचने जाओगे कितने में बिकेगा? ऐसा हुआ,
कि अकबर के पास फरीद कभी कभी आता था, अकबर फरीद के पास भी कभी कभी जाता था। फरीद अनूठा फकीर था। जब अकबर फरीद के पास जाता या फरीद अकबर के पास आता तो अकबर सिर झुका के उसके चरणों में प्रणाम करता था। अकबर के वजीरों को बात न चलती थी, उनको बड़ा आखरता था कि बादशाह और किसी फकीर के चरणों में सिर झुका है। आखिर उनसे न रहा गया और उन्होंने कहा, ये शोभा नहीं देता, आप अपना सिर झुकाएं फकीर के कदमों, इसकी कोई जरूरत नहीं। साधारण आदमी जैसा आदमी आपने समझा क्या है, आप क्यों इतना अपने को विनम्र कर लेते। तो अकबर ने कहा, तुम एक काम करो, इसका उत्तर तुम्हें शीघ्र दूंगा, अभी रुको। कोई महीने 15 दिन बाद एक आदमी को फांसी हुई, अकबर ने उसका गर्दन कटवा ली और अपने वजीरों को कहा कि इसको बाजार में जाके बेचो। सुंदर आदमी था, सुंदर चेहरा था, आंखें बड़ी प्यारी थी, साफ सुथरा करके सोने की थाली में रख के वजीर उसको बाजार में बेच ले रहा। जिसकी दुकान पे गया उसी ने कहा, हटो बाहर निकलो, तुम्हारा दिमाग खराब हुआ, इसको करेंगे क्या लेके। आदमी का सिर किस काम आता है, अगर हाथी का सिर होता तो कुछ काम भी आ जाए, हरिन का सिर हो तो कुछ सजावट के काम आ जाए, इसको हम रखेंगे क्या, ये बदबू आएगी और गंदगी होगी, हटो। कोई आदमी 2 पैसा देने को तैयार नहीं हुआ। वजीर बड़े हैरान हुए, लौट के आया अकबर से कहा कि दुखी है हम, लेकिन कोई आदमी 2 पैसा देने को तैयार नहीं। उल्टे लोग नाराज होते, जिसके पास हम गए उन्होंने कहा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, इसको करेंगे क्या। तो अकबर ने कहा, ये तुम्हारे लिए मेरा उत्तर, आदमी के सिर की कीमत क्या है, 2 पैसे में भी कोई लेने को तैयार नहीं। तुम सोचते हो मेरा सिर काट के किसी दिन तुम बेचने जाओगे तो कोई खरीदे, तो जिसकी 2 कौड़ी कीमत नहीं है उसको अगर मैंने किसी फकीर के चरणों में झुका दिया, तुम्हें अड़चन क्या है, जिसका कोई मूल्य नहीं। इसका नाम झुकाना है, सिर में मूल्य नहीं है, इसको जानना ही सिर का झुकाना है। तुमने झुकाया होगा सिर, लेकिन यही सोच के कि बड़ा गजब कर रहे, बड़ी अनूठी घटना तुम कर रहे हो, देखो सिर झुका रहे हो। तुम्हारे मन में ख्याल है कि सिर का कोई बड़ा मूल्य है, मैं जानता हूँ कि तुमने बड़ी अड़चन से झुकाया होगा, बहुत दिन सोचा होगा, विचारा होगा, लेकिन तुम्हारे सोच विचार से कुछ सिर में मूल्य नहीं आ जाता। सिर झुकाने का अर्थ यह है कि तुमने ये कहा इस सिर में तो कुछ भी नहीं है, अब सिर के आगे कुछ यात्रा हो जाए, सिर में तो कुछ नहीं पाया, अब सिर के पार जाने की अभी प्रगट की, इसलिए पूर्व में हम सिर झुकाते हैं गुरु के चरणों में जाके। हम ये कहते हैं कि सिर से तो कुछ मिला नहीं, सिर की तो दौड़ धूप खूब कर लिए, सिर को तो मारा धापी खूब कर ली, इससे कुछ मिला नहीं, पीड़ा पाई, असंतोष पाया, अतृप्ति पाई, ज्वर ग्रस्त रहे, दुख स्वप्न देखे, सिर से तो कुछ मिला नहीं, ये तो हम आपके सिर में रख, ये तो आपके पैरों में रख देते हैं ये सिर, अब कुछ ऐसा बताएं कि सिर के ऊपर कैसे जाएं, सिर का कोई मूल्य नहीं है, यही घोषणा सिर झुकाने में। तुम पूछते हो कि मैंने तो अपना सिर आपके चरणों में रख दिया, अब बताएं कि गुरु की जिम्मेवारी क्या है। तुम सोचते हो तुम्हारा काम खत्म हो गया, तुम्हारा काम शुरू हुआ, सिर में तो कुछ था नहीं, कचरा तुमने चढ़ा दिया पैरों से, अब भूल जाओ सिर को, अगर नहीं भूले और याद रखा तो चढ़ाया ही नहीं, और अब पूछो कि शिष्य की जिम्मेवारी क्या है, अब मैं क्या करूं। ये तो कोई करने जैसी बात न थी, ये तो सिर्फ शुरुआत है करने की, क्योंकि बहुत बड़ा काम नहीं हो गया, इससे कुछ क्रांति नहीं हो जाएगी, अब क्या करूं, व्यर्थ तो छोड़ दिया, अब सार्थक को कैसे तलाशूं, ये पूछो। लेकिन तुम पूछते हो गुरु की जिम्मेवारी क्या है, तुम्हारा मतलब ये है कि हमारे तरफ का काम तो हमने कर दिया, अब आप बताएं आपकी जिम्मेवारी क्या है। ये बात ही शिष्य न होने का लक्षण, मेरी जिम्मेवारी मैं समझता हूँ, तुम उसे समझ भी ना सकोगे, अभी तुम शिष्य भी नहीं हुए तो तुम गुरु की जिम्मेवारी तो कैसे समझ सकोगे। गुरु की जिम्मेवारी तो तभी समझ में आएगी जब तुम शिष्यत्व की गहराई में इतने उतर जाओगे कि तुम्हारे भीतर ही गुरु का जन्म होने लगेगा, तब तुम गुरु की जिम्मेवारी समझ सको। अभी तो तुम्हें आंख चाहिए, अभी तो तुम्हें विनम्रता चाहिए, सरलता चाहिए, ध्यान चाहिए, प्रेम चाहिए, भक्ति चाहिए, अभी तो तुम्हें बहुत कुछ करना है। ये तो सिर्फ घोषणा हुई तुम्हारी, तुमने शपथ ली कि हम झुक गए, अब हम करने को तैयार, अब जो कहेंगे हम करेंगे, लेकिन
प्रश्न महत्वपूर्ण है, क्योंकि अधिक लोगों का यही भाव होता है कि हम तो कर दिए जो करने योग्य था, अब जो करना हो आप करें। मैं करूंगा लेकिन मेरे अकेले किए कुछ भी ना होगा, क्योंकि तुम्हारी स्वतंत्रता परम, तुम अगर सांस दोगे तो ही होगा। मैं तो करूंगा लेकिन अगर तुमने विरोध किया तो कुछ भी ना हो सकेगा। तुमने अगर द्वार दरवाजे बंद रखे तो ये सूरज की किरण बाहर ही खड़ी रहेगी और भीतर ना आ सकेगी। सूरज की किरण जोर जबरदस्ती से भीतर आ भी नहीं सकती, तुम्हें सहयोग देना होगा, द्वार दरवाजे खोलना होगा। अब तुम पूछते हो मुझे कैसे भरोसा आए कि मुझे गुरु प्राप्त हो गए, ये तुम्हें भरोसे का सवाल ही नहीं। तुम्हें तो इतना ही भरोसा लाना है कि तुम शिष्य हो गए, बस इतना ही भरोसा आ जाए तो बात समाप्त हो गई। तुम्हारा काम तुम पूरा कर दो, इतनी बात तुम्हारी तुम पूरी कर दो कि तुम शिष्य हो गए, तुम्हारे शिष्य होने में ही भरोसा आ जाएगा कि गुरु मिल गए। और कोई उपाय नहीं, मैं और कोई प्रमाण नहीं जुटा सकता। जो भी प्रमाण जुटाऊंगा वो व्यर्थ होंगे, उनसे कैसे भरोसा आएगा। मैं लाख कहूं कि तुम्हें मिल गया, इससे कैसे भरोसा आएगा। तुम शिष्य बनोगे, उसी शिष्य बनने में कुछ रस धार बहेगी, कुछ प्राणों में गुनगुनाहट उठेगी, कुछ मस्ती जगेगी। उसी मस्ती में प्रमाण मिलेगा कि गुरु मिल गए, अब अकेला नहीं हो। तुम अपने अकेलेपन में भी एकांत में जब मौन बैठोगे तब तुम पाओगे कि कोई मौजूद है। तुम अपने भीतर भी झांकोगे तो पाओगे कोई मौजूद है। तुम्हारा हाथ किसी के हाथ में, चलते उठते बैठते जैसे जैसे तुम शिष्य बनते जाओगे वैसे वैसे तुम्हें लगता जाएगा कि गुरु साथ। एक घड़ी ऐसी आती है कि तुम तो विसर्जित ही हो जाते, तुम्हारे भीतर गुरु ही विराजमान हो जाते। अभी तो सिर झुकाया है, अभी हृदय में विराजमान करना होगा और उसी के साथ प्रमाण मिलेगा। शिष्य का ऐसा भाव होता है। स्वामी योग प्रीतम ने एक गीत लिखा है, जब तुम अपना माधुरी लुटाते हो मुझ पर, मेरे प्राणों के नील कमल खिल जाते, तेरी स्वर लहरी का आलिंगन पाते ही हृदय वीणा हौले से झंकृत हो जाती है, तेरी मस्ती की धुन बजने लगती मुझ में, मेरे तन मन की पंखुड़ियां खुल जाती हैं, छिड़ जाता कैसा राग तुम्हारे कंठों से, अंतस आंगन में कोटि दीप जल जाते हैं, जब तुम अपना माधुरी लुटाते हो मुझ पर, मेरे प्राणों के नील कमल खिल जाते। जाने कैसा जादू है तेरी चितवन में, मन के सब खिड़की दरवाजे खुल जाते हैं, मन का सारा काठिन्य पिघल जाता पल में, जन्मों जन्मों के पाप साफ धुल जाते हैं, जब तुम निज करुणा जल बरसाते हो मुझ पर, मेरे भीतर सत झरने बह जाते हैं, जब तुम अपना माधुरी लुटाते हो मुझ पर, मेरे प्राणों के नील कमल खिल जाते। तेरे भीतर से बरस रहा है प्रेमामृत, जो प्यासे चातक की जाते हैं महाभाग, तू एक छबीला फूल जगत की बगिया का, वे धन्य भ्रमर जो लूट रहे तेरा पराग, जब तुम अपना आशीष लुटाते हो मुझ पर, मेरे नभ में सौ सौ सूरज उगाते हैं, जब तुम अपना माधुरी लुटाते हो मुझ पर, मेरे प्राणों के नील कमल खिल जाते। शिष्य का भाव ऐसा है, वो तो आंखें खोल कर जैसे चातक चंद्रमा को निहारे, ऐसा गुरु को निहारता है। प्रमाण नहीं पूछता, तुम्हारी आंख ही धीरे धीरे प्रमाण देने लगेगी। जैसे जैसे तुम्हारी आंख खुलेगी और रोशनी तुम्हारे भीतर उतरेगी वैसे वैसे प्रमाण मिलेगा। वो तो अपने हृदय को खोल के बैठ जाता, वो तो अपनी सब साज सुरक्षा छोड़ देता, वो तो अपने हृदय पर से सब द्वारपाल हटा देता। वो तो कहता आओ, जब भी आओ, दिन रात सोते जागते मेरा हृदय खुला पाओ। धीरे धीरे गुरु की पगध्वनि हृदय के पास सुनाई पड़ने लगती। पूछा है मैं आपसे, चकित हूँ, सुंदर है, चकित हो ये शुभ है, लेकिन इतने से ही काम नहीं होगा। चकित होना अच्छी शुरुआत है, तुम आश्चर्य से भर गए हो, लेकिन ये आश्चर्य भाव जल्दी ही खो जाएगा अगर आगे न बढ़े। आश्चर्य भाव तो ऐसा ही है जैसे हम कार को चलाना शुरू करते तो बैटरी से कार शुरू होती, मगर बैटरी से चलती नहीं, शुरू हो गई फिर तो इंजन से चलती, फिर तो पेट्रोल से चलती। चकित भाव तो
कार में बैठने की भांति है। यात्रा शुरू हो जाती है लेकिन तुम इसी के सहारे रहे तो ज्यादा देर नहीं चल पाएगी। आश्चर्य से जो भर गया ये शुभ लक्षण है। इस घड़ी में वो झुक जाता है लेकिन बस इस पर ही मत रुक जाना, बहुत आगे जाना है। ये तो पहला कदम हुआ। बहुत अभागे हैं जिनको आश्चर्य भी नहीं होता, जो चकित भी नहीं होता। तुम सौभाग्यशाली हो कि चकित तो हुए, चौंके तो, विस्मय तो आया, रहस्य की थाप तो पड़ी, थोड़ा धक्का तो लगा, मगर इस धक्के को ही लेके मत बैठना, नहीं तो धीरे धीरे ये धक्का भी खो जाएगा और तुम वैसे के वैसे रह जाओ। ये जो थोड़ा सा धक्का लगा है इस धक्के का उपयोग कर लो और चल पड़ो। यात्रा बड़ी और बहुत करने को पड़ा है, शायद उसी चकित भाव ने तुमने आके सिर भी झुका दिया है। तुम्हारे सिर झुकाने में समर्पण मालूम नहीं होता, चकित भाव मालूम होता है। कभी कभी आदमी भौचक्केपन में कुछ कर जाता है लेकिन वो कुछ बहुत दूरगामी पाठे नहीं बन सकता, कुछ और गहराई में झुकना पड़ेगा। नहीं जो झुका कर किसी दहरी पर झुका द्वार तेरे तुम्हारी शरण में, न पाया कहीं तृप्ति का एक कण भी, यहाँ जल कहाँ आपका हर कुआं है, तने इंद्र धनुष है मगर वायु भी सब, यहाँ आद्र बादल कहाँ सब धुआं है, चखे फल यहाँ के सभी तिक्त कटु है, मिला शांति मधुरस तुम्हारे स्मरण में, जहाँ से चखो छार में जग समंदर, यहाँ खूब निर्झर मगर सब जहर के, किरण जाल मोहक मगर सब छलावा, यहाँ विष बुझे दंश है हर लहर के, नहीं छाओ शीतल जगत यह मरुस्थल, गिरा हार थक कर तुम्हारे चरण में, नहीं जो झुका कर किसी दहरी पर झुका द्वार तेरे तुम्हारी शरण में। चलो झुका कहीं झुका, इतने पर ही मत रुक, रुके रह जाना। झुकना तो शुरुआत है मिटने की, मिटे बिना ना चलेगा, और तुमने झुकते से ही मिटने के खिलाफ आयोजन शुरू कर दिए। तुम पूछते हो कैसे भरोसा आए कि मुझे गुरु प्राप्त हो गया है, तुम पूछते हो कि गुरु के कर्तव्य क्या है, गुरु की जिम्मेवारी क्या है, तुम गुरु का हिसाब रखने लगे। तुमने गलत बात पहले से ही उठा ली, फिर मेरे साथ ज्यादा देर न चल सकोगे, ये मैं तुम्हें कह दूं। मेरा हिसाब जिसने रखा वो ज्यादा देर मेरे साथ चला नहीं, वो ज्यादा देर चल ही नहीं सकता क्योंकि वो बहुत होशियार है, चालाक है, वो रत्ती रत्ती हिसाब लगा के चलता है। मेरे साथ जुआरियों की दोस्ती, जो हिसाब किताब रखते नहीं, जिन्होंने एक दफा दांव पर लगा दिया तो फिर लौट कर देखा नहीं, फिर उन्होंने कहा कि अब ठीक, अब तुम जो करो सो ठीक, अब तुम जो कहो सो ठीक। तुमने अगर अपनी बुद्धि बचाई तो सिर उठ उठ जाएगा, बार बार चरण चूक चूक जाएंगे, तो ये तो बात ही भूल जाओ। मेरे कर्तव्य का मुझे पता है, मेरी जिम्मेवारी मुझे मालूम, तुम्हें मालूम होने से कुछ लाभ भी ना होगा। तुम अपना कर्तव्य पूछो, तुम अपनी जिम्मेवारी पूछो। तुम्हारी जिम्मेवारी अब ये है कि जो सिर झुका है उसे काट ही डालना है। तुम्हारी जिम्मेवारी ये है कि अभी झुके हो अब बिल्कुल मिट जाना, मिट कर ही तुम हो सकोगे, खोकर ही तुम पा सकोगे, तुम जाओ तो ही परमात्मा। आखिरी प्रश्न, यद्यपि मैं सिख परिवार से आया हूँ तो भी 25 वर्षों तक मेरा विश्वास ईसाइयत में रहा, लेकिन आपकी पुस्तकें पढ़ने के बाद मुझे लगा कि यह तो बड़ी जीवंत बात है और मेरे लिए ईसाइयत का प्रभाव समाप्त हो गया। आप पर पूरा ईमान आ गया है लेकिन मन अभी भी अशांत, देर रात तक आपका साहित्य पढ़ता हूँ तो ही कहीं नींद आती, कृपा कर मेरा मार्गदर्शन कर। देखो 25 साल की श्रद्धा इतनी जल्दी टूट गई तो श्रद्धा न रही होगी, फिर 25 साल की श्रद्धा इतनी जल्दी टूट गई तो मुझको जो श्रद्धा आ गई उसको टूटने में कितनी देर लगेगी। श्रद्धा तो तुम्हारी 25 साल वाली भी न टिकी और ये श्रद्धा भी तुम्हारी ये कितनी देर टिकेगी। तुम्हारा तर्क में समझा, तुम्हारा तर्क से अधिक है कि वो श्रद्धा ईसाइयत पर थी, ये श्रद्धा आप पर, ये तो फर्क हुआ।
लेकिन तुम तो वही के वही हो। ईसा पर श्रद्धा हो कि बुद्ध पर कि महावीर पर, इससे अंतर नहीं पड़ता। असली अंतर तो श्रद्धा किसकी है, उसमें रूपांतरण हो तो ही पड़ता है। अब तुम सिख परिवार में पैदा हुए तो नानक पे श्रद्धा रही होगी बचपन, ईसा पे आ गई। मुझे पढ़ा वो भी चली गई, कल कुछ और पढ़ लोगे, कल किसी और को सुन लोगे, ये भी। तुम्हारी श्रद्धा को परखो, तुम्हारी श्रद्धा श्रद्धा नहीं। अब फर्क समझना, जिसने सच में ही नानक पे श्रद्धा की है वो मुझे सुन के नानक पे श्रद्धा नहीं छोड़ता है, मुझ पे श्रद्धा आ जाती और नानक पे श्रद्धा बढ़ जाती। जिसको सच में ही ईसा पर श्रद्धा रही वो मुझे सुन के ईसा पर श्रद्धा नहीं छोड़ता है, मुझ पे श्रद्धा आ जाती, ईसा पर श्रद्धा और गहरी हो जाती। क्योंकि मैं जो कह रहा हूँ कुछ ईसा और नानक के विपरीत तो नहीं, मैं जो कह रहा हूँ वो वही है जो उन्होंने कहा है। और निश्चित ही जीसस ने जो कहा वो 2000 साल पुरानी भाषा में कहा, उससे तुम्हारा तालमेल उतना नहीं बैठ सकता जितना मेरा बैठ सकता, क्योंकि मैं तुम्हारी भाषा में बोल रहा हूँ। नानक ने कहा वो 500 साल पुरानी भाषा, 500 साल लंबा फासला है, नानक में और मुझ में ठीक 500 साल का फासला है, 500 साल छोटा फासला नहीं। सब भाषा बदल गई, सत्य को कहने का ढंग बदल गया, सत्य को समझने की प्रक्रिया बदल गई, लोग बदले, लोगों का मन बदला, वातावरण बदला। इस सारी बदलाहट में मैं तुमसे जो कह रहा हूँ वो तुम्हारे मन के ज्यादा अनुकूल पड़ेगा, ये स्वाभाविक है, क्योंकि मैं तुम्हारी भाषा बोल रहा हूँ। नानक उनकी भाषा में बोले जिनसे बोलते थे, जीसस उनकी भाषा में बोले जिनसे बोलते थे। मैं तुमसे बोल रहा हूँ, मैं 20वीं सदी से बोल रहा हूँ, मैं अत्याधुनिक मन से बोल रहा हूँ। स्वभावतः तुम्हें मेरी बात ज्यादा ठीक से पकड़ में आ जाएगी, लेकिन अगर तुम्हें मेरी बात पकड़ में आ गई तो तुम्हें नानक की बात भी पकड़, तुम अहोभाव से भर जाओगे कि नानक पर श्रद्धा तो थी लेकिन अभी तक ठीक ठीक साफ साफ नहीं हुआ, साफ साफ हो गई बात। महावीर की बात तुम्हें ठीक से पकड़ में आ जाएगी, बुद्ध की बात ठीक से पकड़, इसलिए तो बुद्ध नानक महावीर कृष्ण क्राइस्ट पर बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी श्रद्धा खंडित करने नहीं हूँ, तुम्हारी श्रद्धा को मजबूत करने को। अगर मैं कभी किसी के विपरीत बोलता हूँ तो सिर्फ इसीलिए कि वे धार्मिक व्यक्ति नहीं है, लोगों ने भ्रांति से उन्हें धार्मिक समझा है। तो ही अगर मैं जानता हूँ कि कोई व्यक्ति धार्मिक है तो मैं एक शब्द भी उसके विपरीत नहीं बोलता। हाँ, अगर किसी अधार्मिक व्यक्ति को किन्हीं भूल भ्रांतियों के कारण धार्मिक समझ लिया गया तो मैं जरूर कठोरता से खंडन करता हूँ, जरूर कठोरता से खंडन करता हूँ, क्योंकि वो खतरनाक बात है। जिससे कभी पीछे किसी ने पूछा महर्षि दयानंद के संबंध में, तो मैंने कहा कि नहीं, मैं महर्षि दयानंद के पक्ष में एक शब्द नहीं बोल सकता, मेरे लिए वे वैसे ही महात्मा है जैसे महात्मा गांधी। दोनों सामाजिक राजनीतिक आंदोलनकारी, धर्म बहाना, लेकिन नानक या कबीर या कृष्ण या जरथुस्त या मोहम्मद या ईसा, उन्होंने जो कहा है वही मैं कह रहा हूँ, उससे अन्यथा कहने को कुछ है नहीं। सत्य एक है, जिन्होंने जाना है उसी एक सत्य को कहा है, भिन्न भिन्न ढंग से कहा होगा लेकिन एक ही सत्य को कहा है। वेद कहते हैं उस एक सत्य को ही ज्ञानियों ने अलग अलग ढंग से कहा। तो पहली तो बात यह है कि तुम अपनी श्रद्धा परखो, तुम्हारी श्रद्धा में कहीं भूल चूक है। नानक तो उठ गई, ईसा पे जम गई, मुझ पे जम गई, मैं तुम्हारी श्रद्धा से खुश नहीं। साधारणतः तुम यही सोच रहे होगे कि तुम्हारा प्रश्न सुनकर मैं प्रसन्न होऊंगा कि चलो कितना अच्छा हुआ कि एक आदमी जीसस से टूटा और मेरा हुआ। इतने जल्दी कोई मेरा नहीं हो सकता, जो जीसस का न हुआ वो मेरा कैसे हो सकेगा। और अगर तुम मेरे हो गए हो तो तुम्हारे पास आंख आएगी जिससे तुम जीसस को पहचान पाओगे और पहली दफा जीसस को हो पाओगे, और वही आंख तुम्हें नानक का भी बना देगी। लेकिन तुमने श्रद्धा का अर्थ मालूम होता है कुछ तार्किक निष्पत्तियां मान रखा है, जो बात तुम्हारे तर्क को जच जाती फिर तुम चूकोगे, क्योंकि धर्म तर्क की बात ही नहीं। मैं जरूर तर्क का उपयोग करता हूँ, मैं तर्क पे सवारी करता हूँ, इसलिए कभी कभी तार्किकों को मेरी बात बहुत जच जाती, लेकिन वो भ्रांति में न रहे, जल्दी ही उनको चौंका दूंगा।
देर अबेर नहीं लगेगी, ज्यादा देर नहीं लगेगी कि मैं कोई ऐसी बात कहूंगा जो कि तर्क के बिल्कुल बाहर होगी, विपरीत होगी। तो तुम्हें मेरी बातें ठीक लग गई होंगी क्योंकि मैं जो कह रहा हूँ वो तर्कयुक्त है, लेकिन तर्क का मैं उपयोग कर रहा हूँ साधन की तरह, ले जाना है तर्क के पास। जीसस ने तर्क का उपयोग नहीं किया, जीसस तो कह दिए जो कहना है।

अगर अपने पैर पर खड़े रहना है तो उसे तर्क जुटाने पड़ते हैं, तो ईसाई जज भी हो। लेकिन मेरे बस में पश्चिम का तर्क ही नहीं है, पूरब का तर्क भी है, और मेरे बस में तर्कातीत भी है, इसलिए फिर मेरा तर्क तुम्हें जज गया होगा, क्योंकि मेरे तर्क में पश्चिम के सारे तर्क में जो कुशलता है वो तो है ही, पूरब के तर्क जो मधुरिमा है वो भी, और तर्कातीत जो अनुभव है उसका रंग भी है, इसलिए तुम्हें जज गई होगी बात। लेकिन अब मौका आ गया है कि तुम अपनी श्रद्धा को ठीक पहचान लो, और ये अब तक की खड़ी वाली श्रद्धा को तुम फेंको, इसलिए अड़चन भी आ रही है। तुम कहते हो आप पर पूरा ईमान आ गया है, क्या ईसाइयत पर पूरा ईमान नहीं था? 25 साल था तो पूरे ईमान का क्या भरोसा, अभी पूरा है, अभी खिसक जाएगा। ये तुम्हारी आदत है, तुम जिससे भी ईमान ले आते हो मान लेते हो पूरा हो गया, फिर उतर जाएगा तो पूरी उतर जाएगा, और तब तुम्हारी अड़चन साफ है। तुम कहते हो मन अभी भी अशांत है, अब ईमान आने से थोड़ी मन शांत होता, नहीं तो मन कभी का शांत हो गया होता। सिख घर में पैदा हुए थे, सिख धर्म पर ईमान रहा होगा, उससे मन शांत ना हुआ, फिर ईसाइयत 25 साल लंबा वक्त है, उससे मन शांत ना हुआ। मेरे साथ तो शायद 2-4 महीने की दोस्ती होगी, इससे कैसे मन शांत हो जाएगा? एक बात तो समझो कि भरोसा कर लेने से मन शांत नहीं हो जाता, मन शांत करने के लिए मन की अशांति के कारण तोड़ डालने पड़ेंगे। तुम्हें एक डॉक्टर पर भरोसा आ गया, इससे थोड़ी इलाज हो जाए, डॉक्टर पर भरोसा आ गया ये सहयोगी बात है। अब डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लेके भी तो काम शुरू करोगे ना, तो तुमने इतना कह दिया कि आ गया डॉक्टर पर भरोसा, लेकिन अभी भी बीमारी दूर नहीं हो रही, बात क्या है? और ईमान पूरा आ गया, ईमान आ गया इसको लाभ होगा, लेकिन इतना काफी नहीं है, पर्याप्त नहीं है, दवा भी लेनी होगी, औषधि भी लेनी होगी, और पथ्य भी स्वीकार करना होगा, कुछ बातें छोड़नी होगी, कुछ बातें पकड़नी होगी, रूपांतर करने होंगे। इसके पहले कि ये श्रद्धा भी खो जाए कुछ करो, इस श्रद्धा का उपयोग कर लो, जो हुआ अतीत में हुआ, जितने दिन बेकार गए गए, अब बेकार मत जाने दो, अब इस श्रद्धा के प्रभाव में कुछ कर गुजरो ताकि मन की व्यवस्था बदल जाए। तुम अशांत हो, उसका अर्थ है मन में अशांति के कारण होंगे। तुमने कभी ध्यान किया? बिना ध्यान के शांति ना आएगी। तुमने कभी पूजा की, भक्ति की? बिना पूजा भक्ति के शांति ना आएगी। तुमने कभी प्रेम किया? बिना प्रेम के शांति ना आएगी। और तुमने कभी विश्लेषण किया कि तुम्हारे मन की अशांति का मूल कारण क्या है? क्यों रात तुम सो नहीं पाते? तुम्हारा मन दौड़ता होगा, और धन कमा लूं, और बड़े पद तक पहुंच जाऊं, ये कर गुजरूं, वो कर गुजरूं, तुम्हारा मन दौड़ता रहता होगा, इसलिए तुम सो नहीं पाते। तो मन की दौड़ के जो महत्वाकांक्षाएं हैं उनको विदा करो। धन पाके क्या होगा, पद पाके क्या होगा, मौत आती, मौत की पगध्वनि सुनो, वो धन भी छीन लेगी, पद भी छीन लेगी। जागो और मन की व्यवस्था बदलो। अब अगर तुम मेरे प्रभाव में आ गए हो तो मेरी सुनो भी, उस अनुसार थोड़ा करो भी, ध्यान करो, नाचो, गाओ, गुनगुनाओ, थोड़ा मस्ती में डूबो, अचानक तुम पाओगे अशांति गई, और जब अशांति जा चुकी होगी तब तुम्हें जो श्रद्धा आएगी वो असली श्रद्धा होगी, क्योंकि जिसके द्वारा अशांति चली गई हो फिर उसको छोड़ना असंभव हो जाए, और जिसके द्वारा सुख का थोड़ा सा स्वाद आ जाएगा उसको फिर कैसे छोड़ सकोगे? तुम्हें ईसा से कुछ भी सुख का स्वाद नहीं आ पाया, क्योंकि तुमने ईसा की मान के कभी कुछ किया नहीं, बाइबल पढ़ते रहे होगे, तो बाइबल पढ़ने से क्या होगा? ये तो ऐसे ही जैसे कोई पाकशास्त्र की किताब बैठे पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, भूख लगी है और मरा जा रहा है, और चिल्लाता है कि क्या करूं, पाकशास्त्र की किताब पढ़ रहा हूं फिर भी भूख नहीं मिटती, तो बाइबल तुम पढ़ते रहे हो, लेकिन इससे कुछ नहीं हुआ। अब तुम मेरी किताबें मत वैसा ही उपयोग करने लगना जैसा बाइबल का किया था। बिल्कुल तुम कह रहे हो कि जब रात नींद नहीं आती तो आप का साहित्य पढ़ता हूं तो कहीं नींद आती, तो तुम साहित्य का उपयोग इस तरह कर रहे हो नींद लाने की दवा की तरह। साहित्य का उपयोग करो जीवन को बदलने के लिए, जीवन को क्रांति देने के लिए। अच्छा हुआ क्योंकि नानक तो है नहीं, तुम अगर उन पर श्रद्धा भी रखते तो बहुत कुछ होने वाला नहीं था। ईसा तो अब है नहीं,

श्रद्धा भी रखते तो बहुत कुछ होने वाला नहीं था। तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम किसी जीवित आदमी के करीब आ गए। संयोग है, इस सौभाग्य के क्षण का ठीक उपयोग कर लो तो फिर शायद श्रद्धा को और कहीं जाने की जरूरत न रहे। यही श्रद्धा तुम्हारा अंतिम पड़ाव बन जाए। जीवन अपने में न तो सुख है न दुख, देखने देखने की बात है, दृष्टि की बात है। कैसे देखते हैं इस पर सब निर्भर है। सुख और दुख हमारी व्याख्याएं, सुख और दुख तथ्य नहीं है, सुख और दुख हमसे बाहर नहीं है, सुख और दुख हमारे देखने के ढंग के परिणाम है, निष्पत्तियां हैं। वही बात एक व्यक्ति को सुख हो सकती, वही बात दूसरे को दुख हो सकती, और उसी बात में कोई निरपेक्ष भी रह सकता, न सुख हो न दुख हो। और कभी ऐसा भी होगा कि जो बात तुम्हें आज सुख थी कल दुख हो गई, और जो आज दुख थी कल सुख हो गई। और कभी ऐसा भी होगा, ऐसे क्षण भी आएंगे जब तुम भी सुख और दुख के बाहर हो जाते हो, तटस्थ हो जाते हो। अगर कोई अपने जीवन का ठीक ठीक निरीक्षण करे, सम्यक निरीक्षण करे, तो इस सत्य को खोजने के लिए शास्त्रों में जाने की जरूरत नहीं। सुकरात का बड़ा प्रसिद्ध वचन है, अपरीक्षित जीवन जीने योग्य नहीं। ठीक ठीक सम्यक निरीक्षण करके ही कोई जीवन योग्य जीने को पाता है। सुकरात से किसी ने पूछा कि तुम एक संतुष्ट सुअर होना पसंद करोगे या एक असंतुष्ट सुकरात? तो सुकरात ने कहा, मैं असंतुष्ट सुकरात होना पसंद करूंगा, संतुष्ट सुअर होना नहीं। क्यों पूछा पूछने वाले ने? क्योंकि आदमी संतोष के लिए ही तो सब करता है। सुकरात ने कहा कि असंतुष्ट सुकरात एक दिन संतोष पा लेगा, और ऐसा संतोष फिर जिसे छीना नहीं जा सकता। संतुष्ट सुअर तो नाम मात्र को ही संतुष्ट है, अभी उसने असंतोष ही नहीं जाना। असंतोष के पार होना भी कैसे जानेगा? जीवन का ठीक ठीक निरीक्षण हो तो हम सुख और दुख दोनों के पार हो जाते, क्योंकि एक सत्य रोज रोज साफ होने लगता है, हमारी व्याख्या है। अगर हमारी ही व्याख्या है तो हम मुक्त हो गए। सारे धर्मों का अगर सार सूत्र पकड़ना हो तो इस बात में पकड़ लेना कि जीवन में जो भी हम अनुभव करते हैं वो हमारी व्याख्या है, इसलिए हम जब चाहें तब स्वतंत्र हो सकते हैं, क्योंकि अपनी व्याख्या बदलना अपने हाथ में है। अगर जीवन में सुख दुख हमसे बाहर होते तो बंधन हमसे बाहर होता। समझो, ऐसा नहीं है कि किसी ने तुम्हें कारागृह में डाल दिया है। अगर किसी ने कारागृह में डाला हो और जंजीरें पहनाई हो तो फिर तो तुम उसके हाथ में हो। मुक्त करेगा तो मुक्त होगे, मुक्त ना करेगा तो ना हो सकोगे। और किसी तरह मुक्त हो भी गए तो फिर भी पकड़े जा सकते हो, फिर दोबारा पकड़े जा सकते हो। तो तुम्हारी मुक्ति कोई बहुत गहरी मुक्ति नहीं हो सकती। जब अमुक्ति दूसरे पर निर्भर है तो मुक्ति भी दूसरे पर निर्भर रहेगी, और ये तो भारी परतंत्रता हो गई। मुक्ति में भी बंधे हैं तो ये तो भारी परतंत्रता हो गई। स्थिति ऐसी है कि तुमने मान रखा है कि तुम कारागृह में हो, ये तुम्हारी मान्यता है। जंजीरें असली नहीं है, सिर्फ मान्यता की है, सिर्फ धारणा की है। इसलिए जिस दिन तुम आंख खोल कर देखोगे जंजीरें पिघल जाएंगी, जंजीरें विसर्जित हो जाएंगी। ऐसा ही समझो कि जैसे रात सपने में तुमने पाया कि तुम कारागृह में पड़े हो और सुबह जाग के देखा कि अपने घर में हो। कारागृह तुम्हारी कल्पना का जाल था। बुद्ध के आज के सूत्र महत्वपूर्ण है। पहले सूत्र, पहले तीन सूत्र, सुसुखम वत् जीवाम वैरिनेसु अवेरिनो वैरिनेसु मनुष्येसु विहराम अवेरिनो। वैरियों के बीच अवेरी होकर, अहो
हम सुखपूर्वक जीवन बिता रहे हैं। वैरी मनुष्यों के बीच अवैरी होकर हम विहार करते हैं। सुसुखम वत जीवाम आतुरेसु अनातुरा, आतुरेसु मनुष्येसु विहराम अनातुरा। आतुरों के बीच अनातुर होकर अहो हम सुखपूर्वक जीवन बिता रहे हैं। आतुर मनुष्यों के बीच अनातुर होकर हम विहार करते हैं। तीसरा सूत्र, सुसुखम वत जीवाम उत्सुकेसु अनसुका, उत्सुकेसु मनुष्येसु विहराम अनसुका। आसक्तों के बीच अनासक्त होकर अहो हम सुखपूर्वक जीवन बिता रहे हैं। आसक्त मनुष्यों के बीच अनासक्त होकर हम विहार करते हैं। इन सूत्रों के जन्म की कथा समझे। सांख्य और कोली राज्यों के बीच रोहिणी नामक नदी के पानी को रोककर दोनों जनपद वासी खेतों की सिंचाई करते थे। एक बार ज्येष्ठ मास में फसल के सूखने को देखकर दोनों जनपद वासी सांख्य और कोलियों के नौकर अपने अपने खेतों की सिंचाई करने के लिए रोहिणी नदी पर आए। दोनों ही पहले अपने खेतों को सींचना चाहते थे, अतः दोनों में झगड़ा हो चला। यह समाचार उनके मालिक सांख्य और कोलियों को मिला। छत्री तो छत्री, तलवारें निकल गई। वे सेना को साथ लेकर तैयार होकर युद्ध करने के लिए निकल पड़े। भगवान बुद्ध रोहिणी तट पर ही ध्यान करते थे। उन्हें यह खबर मिली, वे आकर युद्ध को तत्पर दोनों सेनाओं के मध्य में खड़े हो गए। सांख्य और कोलियों ने भगवान को देखकर हथियार फेंक वंदना की। भगवान ने कहा, महाराज यह कैसा झगड़ा है, किस बात के लिए झगड़ा है? दोनों राज्यों के राजाओं ने कहा, बनते कारण ही नहीं जानते। भगवान ने पूछा, फिर कारण कौन जानता है? अकारण तलवारें निकाल ली है, कारण भी न पूछा, कारण तो खोज लेते। उन्होंने कहा, शायद सेनापतियों को पता हो। सेनापतियों ने उप सेनापतियों की ओर इशारा किया, उप सेनापतियों ने सैनिकों की ओर, और अंततः बात नौकरों पर पहुंची। तब कहीं कारण का पता चला। नौकरों ने कहा, बनते पानी के कारण। बुद्ध ने कहा, पानी के कारण? पानी तो सदा से बहता है। लड़े तुम आज, झगड़ा पानी के कारण नहीं हो सकता। नौकरों ने कहा, समझे बनते, पहले कौन उपयोग करे? तो बुद्ध ने कहा, पहले के कारण, पानी के कारण नहीं। प्रथम कौन हो, पानी को दोष मत दो। बुद्ध हंसे और उन्होंने साखियों और कोलियों के प्रधानों से पूछा, महाराज पानी का क्या मूल्य है? राजा बहुत लज्जित हुए, शर्माते बोले, अल्प मात्र बनते ना कुछ, पानी का क्या मूल्य? और मनुष्यों का बुद्ध ने पूछा, राजा और भी सक्षम है और बोले, अमूल्य बनते, मनुष्य से ज्यादा मूल्यवान और क्या है? बुद्ध ने कहा, तो फिर सोचो, अल्पमात्र मूल्य के लिए अमूल्य को मिटाने चले हो, पानी के लिए खून बहाने चले हो, और नदी ऐसी ही बहती रहेगी। तुम गिरोगे, कटोगे, मरोगे, और नदी ऐसी बहती रहे, ऐसी ही बहती रहेगी, और नदी को पता भी ना चलेगा। असार के लिए सार को गमाते हो, कंकड़ पत्थरों के लिए हीरे जवाहरात फेंकने चले हो, इसलिए तुम्हारे जीवन में दुख है, चिंता है, अंधकार है। मुझे देखो, मेरे महासुख को देखो, क्या है इसका राज? यही कि मैं वैर रहित विहरता हूँ, यही कि सार को मैं सार और असार को असार देखता हूँ। और तब उन्होंने ये तीन गाथाएं कही। पहले तो इस कहानी के एक एक शब्द को समझिए। शास्त्रों में जो बोध कथाएं हैं, वो ऐसे ही पढ़ लेने के लिए नहीं है। उनके शब्द शब्द में अर्थ है और परत परत अर्थ है। एक परत उघाड़ोगे तो दूसरा परत अर्थ मिलेगा, और जितने गहरे जाओगे कथा में उतने ही चौंकोगे कि तुम सीढ़ी दर सीढ़ी उतरते जा सकते हो। पहली बात, झगड़ा हुआ नदी के तट पर नौकरों में, झगड़ा हुआ नौकरों में, और मालिक खींचे चले आए।
तो नौकर मालिक मालूम होते हैं और मालिक नौकर मालूम होते हैं। ये पहली बात ख्याल में लेने जैसी है और ये मनुष्य के संबंध में बड़ी गहरी बात है। कहानी में शायद तुम्हें सीधी साफ हो भी ना सके क्योंकि ये कहानियां ध्यान के विषय हैं। इन कहानियों पर खूब ध्यान कोई करे तो इनकी परतें उखड़ती हैं। पहली परत, आंखें हाथ नाक कान नौकर है और मालिक इनके पीछे खींचा हुआ चला आता है। आंख ने कह दिया सौंदर्य है और तुम चले दीवाने हुए और तुम्हें पता भी नहीं है कि सौंदर्य है या नहीं। आंख ने कह दिया, आंख पे भरोसा कर लिया। कान ने कह दिया और कान पे भरोसा कर लिया। स्वाद ने कह दिया और स्वाद पे भरोसा कर लिया। ऐसे नौकर चाकरों के बस में मालिक घिसटता है और जिस दिन तुमसे कोई पूछेगा गहरे में कि ऐसा तुमने क्यों किया, तुम कहोगे कारण पता नहीं, तुमने देखा नहीं। कोई आदमी किसी के प्रेम में पड़ जाए, पूछो उससे क्यों, वो कंधे पिचकाता है, वो कहता है क्यों का तो कुछ पता नहीं। एक आदमी धन के पीछे पागल होकर दौड़ रहा है, पूछो क्यों, शायद वो कह चुके सब लोग दौड़ रहे, सारी दुनिया दौड़ रही इसलिए, और भी दौड़ रहे हैं इसलिए। एक आदमी पद के लिए पागल है, पूछो क्यों, शायद सास उसे हो ही ना। इंद्रियों ने कुछ खबरें दी, इंद्रियों की खबरों को मान के भीतर का मालिक चल पड़ा है। तो साक्य और कोलियों के राज के बीच रोहिणी नामक नदी के पानी को रोककर दोनों जनपदवासी खेतों की सिंचाई करते थे। दूसरी बात, यहां हम सब एक ही जीवन को भोग रहे हैं, इसलिए झगड़ा तो प्रतिपल हो सकता है क्योंकि हर एक के बीच वही नदी बह रही है, उसी से जल मुझे लेना, उसी से जल तुम्हें लेना, जीवन एक है। तो हम सब पड़ोसी हैं। जीसस का बहुत प्रसिद्ध वचन है, अपने पड़ोसी को ऐसा ही प्रेम करो जैसा अपने को, और एक दूसरा वचन है कि अपने दुश्मन को ऐसा ही प्रेम करो जैसा अपने को। संत अगस्तीन से किसी ने पूछा कि दोनों वचन एक से लगते फिर भी बड़े भिन्न हैं। एक तरफ जीसस कहते हैं अपने पड़ोसी को ऐसा प्रेम करो जैसा अपने को, और एक तरफ जफर कहते हैं दुश्मन को ऐसा प्रेम करो जैसा अपने को। तो अगस्तीन ने कहा, जहां तक मैं समझता हूं, दुश्मन और पड़ोसी दोनों एक ही के नाम है। जो पड़ोसी है वही तो दुश्मन है। तुमने ख्याल किया तुम्हारा दुश्मन है कौन? तुम्हारा पड़ोसी। जो दूर है उससे तो दुश्मनी नहीं होती, जो पड़ोस में उससे दुश्मनी होती, क्योंकि एक ही जीवन की नदी, उस पर दोनों दावेदार। छोटी छोटी बात पे झगड़ा हो जाता है। बातें ही क्या है, झगड़े के लिए कारण भी कहां है, झगड़े योग्य कारण कहां है। तुम लड़े किन छोटी छोटी बातों पर हो, कभी किसी ने आधा फुट जमीन दबा ली, झगड़ा हो गया। तुमने कभी सोचा भी नहीं है कि झगड़ के तुम क्या गमा रहे हो। और एक बात तो स्वीकार करने की ही है कि ये जीवन हमारा साझी का जीवन है, हम सब एक ही जीवन जी रहे हैं। तो नदी तो एक है, जल सबको पीना है, प्यासे सब हैं, और स्वभावतः छीना झपटी हो सकती है, लेकिन छीना झपटी करने में मूढ़ता है, मूर्छा है। दोनों जनपदवासी एक ही नदी के जल से अपने खेतों को सींचते हैं। एक बार ज्येष्ठ मास में फसल के सूखने को देखकर दोनों जनपदवासी साखियों और कोलियों के नौकर अपने अपने खेतों की सिंचाई के लिए नदी पर गए। दोनों ही पहले अपने खेतों को सींचना चाहते थे। अब पहले से कुछ लेना देना नहीं है, खेत सींचना असली बात होगी। असली बात है कि खेत सूख रहा है, धूप घनी है, जेठ की दोपहरी है, पानी देना जरूरी है। असली बात पानी देना है। पहले और पीछे का कोई भी मूल्य नहीं है, लेकिन जीवन के सारे झगड़े पहले और पीछे के झगड़े। इतना हम भूल जाते हैं पहले पीछे में कि खेत में तो एक तरफ पड़े रह गए, जब झगड़े शुरू हो गया तो नदी से किसी ने भी पानी नहीं दिया। खेत प्यासे के प्यासे खड़े, खेत रोते के रोते खड़े,
यहां दूसरी ही बात चल पड़ी। कई बार ऐसा होता है कि मूल कारण तो एक तरफ पड़ा रह जाता है, व्यर्थ की बातें बीच में आ जाती, फिर हम मूल को तो भूल ही जाते, फिर हम उन व्यर्थ पर ही जूझते रहते। पहले और पीछे का सारा झगड़ा है, सारी प्रतियोगिता इस बात की है कि कौन पहले। जीसस का दूसरा प्रसिद्ध वचन है कि जो अंतिम है, जो अंतिम होने में समर्थ है, वे ही मेरे प्रभु के राज्य के मालिक होंगे। जो अंतिम होने में समर्थ है, इस जगत में सबसे बड़ी सामर्थ है अंतिम होने की सामर्थ। प्रथम तो कोई भी पागल होना चाहता है, प्रथम होने में कुछ विशिष्टता नहीं है, सभी प्रथम होना चाहते। प्रथम होना तो बड़ी सार्वजनिक बीमारी है, प्रथम होने का पागलपन तो सभी पर चढ़ा है। और ये प्रथम होने के पागलपन को ही मैं राजनीति कहता हूं, इसलिए राजनीति सारे झगड़ों का मूल आधार है। जब तक दुनिया से प्रथम होने का रोग नहीं जाता, तब तक दुनिया से राजनीति नहीं जाएगी, और जब तक राजनीति नहीं जाती तब तक युद्ध नहीं जाएंगे, तब तक हिंसा नहीं जाएगी। लाख समझाओ अहिंसा, इससे कुछ भी ना होगा। तुम हिंसा का सूत्र पकड़ो, हिंसा का सूत्र है मैं पहले, अहिंसा का सूत्र है मैं अंतिम होने को राजी। क्योंकि असली सवाल होने का है, आखिर में खड़ा हो जाऊंगा, सबसे पीछे खड़ा हो जाऊंगा, वहां खड़ा हो जाऊंगा जिस जगह से कोई धक्का देने को आए ही नहीं। पहले का झगड़ा था, और जब पहले का झगड़ा हो तो पानी भी गौण हो गया, खेत भी गौण हो गए। खेत और पानी तो छोड़ो, जिनके लिए खेत की सिंचाई की जा रही थी वे मनुष्य भी गौण हो गए, जिनके लिए भोजन जुटाने के लिए खेत खड़े थे वे मनुष्य भी गौण हो गए। झगड़ा हो चला। क्या है झगड़ा सारी दुनिया में? रूस का अमेरिका का झगड़ा क्या होगा? भारत पाकिस्तान का झगड़ा क्या होगा? चीन तिब्बत का झगड़ा क्या होगा? इसराइल इजिप्त का झगड़ा क्या है? वही झगड़ा है, उसी झगड़े की ये कहानी। और जब इक्का दुक्का आदमी पागल होता है तब तो हम पहचान लेते हैं, जब भीड़ पागल होती तो पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब समूह के समूह पागल हो जाते हैं तो पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है।

0: पर हम।
1: अरे कहाँ पर अटक गए यार?
2: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन।
3: युग तुम हो हट गए।
4: ओम शांति एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी।
5: आप एक्शन जो जुडिशरी एक्शन है वो तो लेंगे, लेकिन एक बार वो आपके पास आ गए फिर आपको उनके साथ क्या करना है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाए। रिफॉर्म करने के लिए एक्चुअली क्या चाहिए होता है? जैसे आपने कहा, एक तो मोटिवेशन कि हम अपने आप को ही नहीं आज रिफॉर्म कर पा रहे या हम अपने आप को ही नहीं हील कर पा रहे, तो हम औरों के लिए कहाँ से करेंगे? और दूसरा टाइम, टाइम फैक्टर बहुत इम्पोर्टेंट होता है।
4: देन अगेन माइंडसेट्स हैं कि क्रिमिनल्स कभी नहीं होते, आप कुछ भी कर लीजिए। इनफैक्ट एक और बहुत बड़ा माइंडसेट हमारे साथ चलता है कि जो सपोजिटली लोअर वर्कर्स हैं, दे नेवर चेंज, यू नो, दे विल ऑलवेज बी लाइक दिस।
5: लेबलिंग, अगेन लेबलिंग। तो वो जितना लेबल हम करते जाएंगे तो वो जो स्टैम्पिंग है वो और ज्यादा होती जाती है। अगेन हम क्या कर रहे हैं, वही जो हमने कहा, उनको अपने बिलीफ सिस्टम के अंदर फिट कर रहे हैं। अगर किसी ने कुछ भी ऐसा किया कर्म थोड़ा सा, हम कहेंगे लेबर, वो तो सारे ही ऐसे होते हैं, यू नो, बिलीफ सिस्टम, वो बिलीफ सिस्टम में उनको फिट कर लेते हैं। तो रिफॉर्मेशन करने के लिए टाइम चाहिए, पेशेंस, पेशेंस बहुत चाहिए, कंटिन्यूस दोनों तरफ से, जो जिसे रिफॉर्म होना है और जिसे वो करना है, दोनों के अंदर मोटिवेशन होना चाहिए।
4: आई थिंक उसके साथ साथ जुड़ा हुआ एक बात है जो रिफॉर्म नहीं होने देती, वो समवेयर ये भी है, जो रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है उसको कंटिन्यूस अवेयरनेस है कि मैं रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहा
5: हूँ। एब्सोल्युटली, एंड दिस इज अ वेरी बिग थिंग। और वो पहली बात जो उसकी कॉन्शियसनेस है वो ये है, अगर जो रिफॉर्म करने के निमित्त है, अगर उसके अंदर ये कॉन्शियसनेस होगी कि ये क्रिमिनल है, तो वो उसे रिफॉर्म नहीं कर सकता। उसका हर एक शब्द और हर एक एक्शन एक पनिशमेंट ही है, क्योंकि वो क्रिमिनल को कर रहा है। तो वो, और फिर एक रिफॉर्मर के अंदर एक नेचुरल संस्कार ये क्या बन जाता है, गलतियां निकालने का, कमजोरियां देखने का और जजमेंटल बनने का। दैट इज नॉट रिफॉर्मेशन, क्योंकि फिर तो आप एक सटल तरह से पनिशमेंट ही दे रहे हैं। नॉर्मली अगर आप एक सीन ऑफ क्राइम को देखते हैं या एक गलती होते हुए देखते हैं, किसी ने किसी के साथ गलती की, एंड आई एम थर्ड पर्सन, लेकिन जब इन्होंने इनको दर्द दिया, सो कॉल्ड जैसे हम सोचते हैं, और मुझे भी वो दर्द महसूस होना शुरू हो गया, तो आई एम ऑल्सो अ विक्टिम, एंड अब आई एम इन द रोल ऑफ रिफॉर्मिंग। लेकिन बिकॉज आई एम अ विक्टिम, तो मुझे लगता है इन्होंने अत्याचार किया।
4: Because I empathized with that victim.
5: Yeah, but I could feel the pain, ना? मैंने पेन अपने साथ ले लिया, तो मुझे लगता है ये अपराधी है, ये क्रिमिनल है, इन्होंने गलत किया, तो मैं कभी उनकी हेल्प नहीं कर सकती। जैसे ही मुझे ये रियलाइजेशन आएगा कि ये जो पेन मैंने अभी अभी क्रिएट किया इस सीन को देखकर, ये मेरा अपना क्रिएशन था, उन्होंने जो करना था वो किया, लेकिन जो पेन मैंने क्रिएट किया ये मैंने अभी अभी अपना क्रिएट किया, लेट इट गो, लेट द पेन गो। जैसे ही पेन चला जाएगा, आई विल बी एबल टू सी दैट पर्सन एज द पर्सन इज, विदाउट जजमेंट, विदाउट दैट गुड बैड राइट रॉन्ग, वो जजमेंटल नहीं होना है। हम उसके साथ जिसने अटैक किया है या जिसने गलती की है उसके साथ एम्पथाइज करना अब शुरू कर सकते हैं, उनको समझना शुरू कर सकते हैं कि उन्होंने जो किया वो क्यों किया। When I understand कि मेरे अंदर क्लैरिटी आई है कोई, मुझे जो चीजें जैसी हैं वैसे समझ में आने लग गई है, Now I only have to empower. रिफॉर्म नहीं करना है मुझे, मुझे उनको सशक्त करना है। वो भी मेरी तरह ही आत्मा है, लेकिन वो कुछ बातों को भूल चुकी है, तो मुझे सिर्फ उन बातों की स्मृति को लाना है, लेकिन मैं वो तब ला पाऊंगी जब मैं उनको वो रिस्पेक्ट से देख सकती हूँ। क्योंकि जैसे क्रिमिनल देखा, there you go.
4: जैसे हमने वो आत्मा देखा, आत्मस्वरूप अपना वाला, जैसे मैं हूँ वैसी देखा, बट आई थिंक
5: तब हम वो वाइब्रेशन भेज पाएंगे जो एम्पावरमेंट क्रिएट करेगी, और वो एम्पावरमेंट के लिए तभी हम कर पाएंगे जब हम उनको जज नहीं करेंगे कि ये क्रिमिनल है, वो भी मेरी तरह एक आत्मा है। जैसे वो थॉट क्रिएट कर लिया, यू सी व्हाट यू विल डू मैजिक विद देम। वो आप उनको रिफॉर्म नहीं करते हैं, बिकॉज द वर्क इज ऑल डन बाय मी माई सेल्फ, लेकिन वो खुद जो करने की उनको शक्ति चाहिए बस वो हमें देनी है, वो स्मृति वापस लानी है, और उसके लिए हम ये टैग हटा दें कि क्रिमिनल है, और गुड बैड ये जो जजमेंटल हम बनने की कोशिश करते हैं ये हटा दें, और उनको रिस्पेक्ट और डिग्निटी क्योंकि उस समय क्या हो गया, वो रिस्पेक्ट और डिग्निटी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है. तो वो रिस्पेक्ट और डिग्निटी जो हम सबको देते हैं, वो रिस्पेक्ट और डिग्निटी अगर हम उनको दें, अपने आप को वो एम्पावर कर देंगे. हमें नहीं करना. सोल कॉन्शियसनेस विल वर्क एवरीवेयर. ये हम जो ऑलरेडी थॉट क्रिएट कर देते हैं, वो ऐसा कहेंगे, वो ऐसा करेंगे, तो हम वो ऑलरेडी एनर्जी ट्रांसमिट कर देते हैं एंड देन वो ऐसा ही करेंगे.
4: तो हर नेगोशिएशन पे एक एम्पावर होके हम खुद जा सकते हैं.
5: अभी क्या होता है, या तो हम सुपीरियर फील करते हैं या इंफीरियर फील करते हैं, और सोल कॉन्शियसनेस में वी आर इक्वल. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि हम तो सोल कॉन्शियस हैं, सामने वाला तो नहीं है, वो अपने अहंकार में है. लेकिन जब हम उसे वो दृष्टि से देखेंगे, तो है तो आत्मा, वो सिर्फ भूली हुई है. तो जब हम उसको उस दृष्टि से देखेंगे, उसके अंदर भी वो स्मृति जागृत होगी और आत्मा के जो गुण है वो ऑटोमेटिकली जागृत हो जाते हैं. ये सारे गुण कुछ बोलने से जागृत नहीं होंगे. आप कितना भी बोल दीजिए कि आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत प्यारे हैं, इट वोंट वर्क. इट हैज टू कम फ्रॉम डीप विदिन, बट इट्स वेरी डीप रूटेड. ये लगता है कि नहीं, तो बहुत इजी है, हम जाकर वहां सोचेंगे कि ये तो आत्मा है.
4: हम भूल जाते हैं ना उस वक्त तो, क्योंकि बाकी सारी चीजों ने फॉग किया होता है.
5: थॉट भी नहीं आना चाहिए कि सामने वाले ने गलती की है, सामने वाला एक अपराधी है, सामने वाला. ये थॉट ट्रेस में भी नहीं होगा, तब वो प्योरिटी ऑफ वाइब्रेशन, इसको हम कहेंगे प्योरिटी ऑफ थॉट, जहाँ एक इम्प्योरिटी का ट्रेस भी नहीं है, दैट विल रीच टू द अदर सोल. And that will bring about empowerment.
4: That's wonderful. Actually, अगर हम पूरे aspect को देखें तो सारे crime जो scenes हैं और इस वक्त जिस हालात में पूरा समाज है, मुझे लगता है कि आज हम में से हर कोई criminal है. थॉट में नहीं, मतलब एक्शन में नहीं तो कहीं ना कहीं थॉट में तो है ही, लेकिन एक्शन में भी हम में से हर तीसरा बंदा जो है, तीसरा व्यक्ति criminal नजर आ रहा है. यहाँ अगर हम क्राइम के सीन से हटके अपने घर पे भी आ जाते हैं, तो यही फिलॉसफी शायद हम अपने रिफॉर्मिंग ऑफ किड्स, यू नो, रिफॉर्मिंग ऑफ चिल्ड्रन, हमारे कि हमारा बच्चा बात नहीं मान रहा है, यही सही रास्ता है, ये ऐसे करना चाहिए उसे, लेकिन वो क्यों नहीं समझ पा रहा है, रिबेल हो रहा है, तो यहाँ शायद वो पनिशमेंट.
5: जितना हम पनिशमेंट को यूज करते हैं, तो मेजोरिटी केसेस में ये देखा जाता कि जो रिबेल होने की नेचर है, वो संस्कार और भी ज्यादा कड़क होता जाता है. जो हम कई बार पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चे बहुत जिद्दी हो गए हैं या बहुत ढीठ हो गए हैं, कि अब कितना भी बोलो वो नहीं मानते हैं, क्योंकि हमारा जो शिक्षा देने का तरीका था वो कहीं ना कहीं, वी यूज अ शॉर्टकट मेथड बिकॉज अगेन लैक ऑफ टाइम, लैक ऑफ पेशेंस, एंड मोर देन दैट आई थिंक लैक ऑफ अवेयरनेस माई सेल्फ.
4: आई डोंट नो, सी दैट्स द बिगेस्ट थिंग, क्योंकि कभी भी कोई पेरेंट जानते बूझते नहीं करना चाह रहा होगा, लेकिन शायद वो जान ही नहीं पाते हैं कि कितना नुकसान हो रहा है इस पूरे एटीट्यूड.
5: तो अपनी अवेकनिंग कितनी इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि जब हम जागृत अवस्था में रहेंगे तो हम औरों को भी अपने साथ लेकर चलेंगे. और अभी भी आपने देखा होगा कि अपनी इस पूरी यात्रा के दौरान जितना हम अपने आप को समझ लेते हैं और हमें अंदर का पूरा मैकेनिज्म समझ में आता है कि ये सारा सिस्टम कैसे वर्क करता है, हम औरों को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं. जब कोई सामने से गुस्सा करता है, नाउ फॉर एग्जांपल, हमें पता चलता है कि ये गुस्सा नहीं है एक्चुअली, ये अंदर कोई दर्द है, ये अंदर हर्ट है कोई, और ये दर्द एक गुस्से के रूप में बाहर आ रहा है. तो पहले हम कैसे रिएक्ट करते थे, गुस्सा कर दिया मुझे कैसे गुस्सा कर दिया, अब समझ में आता है ये गुस्सा थोड़ी है, ये तो अंदर कितना दर्द है. So now you cannot have hatred, you will have compassion. वो खुद इतने दर्द में है तो वो आपको भी सही पर्सपेक्टिव में नहीं देख पा रहे, तो उन्होंने वो कर्म किया, लेकिन उनको किस चीज की आवश्यकता है. अब वही बात होगी, एक दर्द में है, अब मैं उसकी बात को लेके मैं भी दर्द में चली जाऊं, तो हम दोनों को हेल्प कौन करेगा. और फिर मैं उनको और दर्द दूं, बच्चे ने गलती की पेरेंट के साथ, तो पेरेंट भी दर्द में चला गया, बच्चे को और दर्द दिया. It's become a cycle. And then it is, how do we come out of this cycle? And then we say we're all in pain. Who will heal who? Everyone is a patient now. So that's why let me take up the responsibility. And इसीलिए जो हम कहते हैं meditation के लिए time नहीं है, या I don't have time for myself. What we don't realize is it's not just for myself. It's for my family also.
4: For my all loved ones, जिनके लिए मैं ज़िंदगी देने को तैयार हूँ, सब कुछ करने को तैयार हूँ. Unawareness में मैं कहाँ तक कितना नुकसान. रिश्तों की बात करें, मतलब हमारे पास वक्त ज्यादा नहीं है, लेकिन इसको मैं जरूर थोड़ा सा छूना चाहूंगी कि आज जो रिश्तों में इतनी कड़वाहट, इतनी दूरियां, इतना कम्युनिकेशन गैप इधर इधर होते हुए नजर आ रहे हैं, हस्बैंड वाइफ की बात करें या किसी भी तरह का रिश्ता, तो वहां पे भी शायद एक भी अगर जागरूक अवस्था में,
5: ओनली वन, यू नीड ओनली वन. कई बार घरों में लोग कहते हैं ओ जी मैंने अगर अपने ऊपर मेहनत की लेकिन बाकी सब लोग तो वैसे ही हैं. लेकिन कोई बात नहीं, बाकी सब वैसे ही रहेंगे. वन पर्सन हैज टू टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी और वो एक करे उससे औरों को तो बेनिफिट होगा, औरों को प्रेरणा भी मिलेगी करने की.
4: और उसमें एक को ये नहीं समझना पड़ेगा कि मैं एहसान कर रहा हूँ. यू नो समवेयर ये इसके साथ भी कि मैं ही करता जा रहा हूँ, मैं ही कब तक करूंगा, मैं ही कर रहा हूँ.
5: जब अभी जब हम कुछ करते हैं इस तरह से तो हमें लगता है कि मैं एहसान कर रहा हूँ. लेकिन जब अवेयरनेस से करेंगे तो हमें समझ में आएगा दिस इज द वे टू बी. इसके अलावा तो और कोई रास्ता ही
4: और मतलब ये मेरे लिए
5: वे, दिस इज द नेचुरल वे ऑफ लिविंग. अभी तक जो हमारा वे ऑफ लिविंग था बिटरनेस को पकड़ के, हर्ट को पकड़ के, दैट वॉज नॉट अ नेचुरल वे ऑफ लिविंग. और सफरिंग किसके लिए? बहुत प्राउडली हम कहते हैं उन्होंने ये कहा, मैंने अभी तक वो बात नहीं भूली, इतने साल से मैंने वो बात पकड़ के रखी हुई है. नुकसान किसका है? उनका, वो भूल चुके हैं. अपना सारा दिन अपनी सफरिंग सेल्फ क्रिएटेड है. इवन ये अगर हमें समझ में आ जाए बॉटम लाइन, आई क्रिएट माय ओन सफरिंग. टिल व्हेन?
4: टिल आई अंडरस्टैंड, टिल आई अवेक.
5: लेट मी स्टॉप नाउ. नोबडी क्रिएट सफरिंग फॉर मी, नोबडी कैन कॉज मी पेन, ओनली एंड ओनली मी. How much more do I want to cause pain for myself? When will I stop? That's it. And then, मेरे को लगता है 10 minutes अपने लिए निकालना
4: मुश्किल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं. In fact, that's it. ये तो हम understand कर ही चुके हैं और अब हर बार और clarity से आता जा रहा है कि meditation is empowering my own self. You know, healing की हम बात कर रहे थे, ना सिर्फ healing अपने लिए, पूरे परिवार के लिए और gradually पूरे समाज के लिए. जो अब बात ये करते हैं कि हम समाज सेवा करना चाहते हैं तो ये दिस इज द वे एक्चुअली टू गो आउट एंड लाइक फर्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ. सर शिवानी, आज की इस बातचीत ने कई परिपेक्ष तोड़े हैं, एक नया अंदाज दिया है जिंदगी को देखने का और किस तरह से क्राइम या क्रिमिनल्स को देखना है बड़े परिपेक्ष में देखें तो वो भी बदल रहा है. जिंदगी कितनी खूबसूरत है, हम में से हर कोई ऐसा ही चाहता है. लेकिन जिंदगी जीते जीते कई बार जब ऐसे मोड़ आते हैं, जब लगता है कि हम हर्ट हो गए या मुश्किलें बहुत ज़्यादा खड़ी हो जाती हैं, ऐसे में हमने इन दिनों की बातचीत में ये जाना कि जब हम हर्ट होते हैं तो या तो हम रिवेंज लेते हैं, वी वॉन्ट टू लैश आउट, या फिर हम पनिश करना चाहते हैं उसे जिसने हमें हर्ट किया है, या फिर हम ये सोचते हैं कि रिफॉर्म किया जाए. और इस पर हमने बहुत ही नए नज़रिए से बातचीत की कि इस ज्ञान को जानते हुए, खुद को पहचानते हुए और अध्यात्म या ध्यान का साथ देते हुए, आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ पावरफुल सोल, इस एस्पेक्ट को अपने साथ रखते हुए जब अब इन मुश्किलों का सामना करना पड़ा तो एक नया अंदाज था. आज थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और क्षमा की बात करते हैं कि किस तरह से क्षमा हमारे जीवन में लाई जा सकती है, क्षमा का सही परिपेक्ष क्या है. और इसे बातचीत करने के लिए हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी. ओम शांति.
5: ओम शांति.
4: सिस्टर शिवानी, अब बहुत डिफरेंट हो गया है सब कुछ, देखने का तरीका बदला है और जिस तरह से हम एक सशक्त हो के सुबह के ध्यान से जो एक शक्ति लेकर हम दिन भर उस बात को याद रखते हैं कि आई एम अ पीसफुल सोल, आई कैन चेंज, नो वन एल्स इज रिस्पॉन्सिबल, ये हर्ट भी मैं खुद ही अपने आप को दे रही हूँ, तो बाकी चीज़ें दिखने लगती हैं. इसी से जुड़ा एक और एस्पेक्ट होता है क्षमा का, उसको भी हम सही परिपेक्ष में अगर देखना चाहें, कहीं ना कहीं जब हम क्षमा करते हैं हम कहते हैं कि वी फॉरगिव यू, समवेयर हम ऊपर उठ जाते हैं. वो ऊपर उठना आज मुझे थोड़ा डाउटफुल लगने लग गया है, हमारे बहुत से दर्शकों को भी, ये कहीं सही नहीं है. तो सही परिपेक्ष क्या हो?
5: जैसे हमने देखा कि आज दिन तक हम समझते हैं कि दूसरा हमें हर्ट कर रहा है, तो तब हमने जो रिस्पॉन्सेस क्रिएट किए वो थे बदला लेने का, पनिश करने का. उससे अच्छा हमने समझा कि दूसरों को परिवर्तन करने का प्रयास करें. और एक जो ऑप्शन हमारे पास है, यू नो बिकॉज दीज आर ऑल चॉइसेस दैट वी हैव, कि जब एक इमोशन हमारे अंदर क्रिएट होता है, व्हाट इज द चॉइस दैट आई हैव दैट टाइम? फॉरगिवनेस, फॉरगिव करना या क्षमा करना. जो आज दिन तक हम सुनते आए कि क्षमा बहुत, यू नो क्षमा अगर हम कर देंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा. इट्स द हाईएस्ट थिंग दैट समबडी कैन गिव इफ यू कैन टोटली फॉरगिव.
4: इनफैक्ट ये कहा भी जाता है कि आप बड़े बन जाओ ना, क्षमा कर दो,
5: क्षमा कर दो कि उसने तो गलती की, आप क्षमा कर दो. तो क्षमा करना, ये आज दिन तक हमने रियलाइज भी किया कि सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि यस इफ आई फॉरगिव देन एवरीथिंग इज ओके, लेकिन जब उसको करने पर आते तो कहीं ना कहीं मुश्किल लगता, क्योंकि फिर वही बात पकड़ लेते लेकिन उसने हमारे साथ ये किया, तो तो अब मैं कैसे क्षमा करूँ, उसने तो मुझे इतना तकलीफ दिया, अब मैं इसको कैसे क्षमा करूँ। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि क्षमा क्या है, और अगर मुझे फगिव करना है किसी को तो मुझे क्या याद रखना पड़ेगा जिससे मेरे लिए फगिव करना, और वो भी फॉरगिवनेस की राइट परसेप्शन से, और उसको जब राइट पर्सपेक्टिव से हम समझेंगे कि एक्चुअली भी हम फॉरगिव किसको कर रहे हैं, लेकिन हमें फॉरगिव करना वो और इजी हो जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जैसे आज भी हमारे पास बहुत फोन्स आते हैं, बहुत ईमेल्स आती हैं, या हम जब एक दूसरे से भी बात करते हैं, वी रियलाइज के ईच वन, जब हम अपने बारे में बात कर रहे हैं तो हम एक विक्टिम बन के बात करते हैं। आपको पता है मेरे साथ क्या हुआ, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ इतना धोखा हुआ, मेरे साथ इतना अत्याचार हुआ, मेरे इन लॉज मेरे साथ ये कर रहे हैं, मेरे पेरेंट्स, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, यू नो देयर इज अ होल लिस्ट। सो वी आर ऑलवेज अ विक्टिम, एंड तब हम उस विक्टिम की फीलिंग में हम अपनी पूरी लाइफ काट देते हैं। तो अगर हमें रियली फॉरगिव करना है, आई विल हैव टू कम आउट ऑफ दिस विक्टिम, यू नो आई एम द विक्टिम, यू नो मेरे पर अत्याचार किया जा रहा है, हमें इससे निकलना होगा। और इससे फिर हम तभी निकल सकेंगे जब हम ये रियलाइज करेंगे कि कोई कुछ नहीं कर रहा है, जो कुछ कर रहा है मैं कर रही हूँ। अभी तक समझते थे आई एम विक्टिम क्योंकि आप कर रहे हैं, लेकिन जब मैं खुद कर रही हूँ तो कौन विक्टिम और कौन विक्टिमाइजर। सबसे पहले क्योंकि फॉरगिवनेस के लिए एक बहुत एलिवेटेड स्टेज चाहिए, फॉरगिवनेस के लिए हमें प्यार चाहिए। आई कैन ओनली फॉरगिव इफ आई एम फिल्ड विद लव, इफ आई नो द ट्रूथ, इफ आई एम एट पीस, देन आई कैन फॉरगिव। अगर मैं डिस्टर्ब्ड हूँ, मुझे मेरे अंदर नफरत है और प्यार का बिल्कुल कोई ट्रेस ही नहीं, तो फॉरगिवनेस कहाँ, वो पॉसिबल नहीं। तो वो विक्टिम की फीलिंग से बाहर निकल आइए कि जो है

0: है वो मैंने क्रिएट किया है, फिनिश भी
1: मैं ही करूँगा,
0: मुझे करना है। अगर किसी ने मुझे फिजिकली हार्म कर दिया, यू नो, कोई एक्सीडेंट है, कोई फिजिकल अब्यूज है या कुछ भी इस तरह से है, कोई मारपीट हो जाती है, चोट लग जाती है एक दूसरे की वजह से, तो आई हैव टू रिमेम्बर कि मैं शरीर नहीं हूँ जिसको चोट लगी। क्योंकि जब मुझे ये लगता है मुझे चोट लगी, यू नो, जब मुझे चोट लगी, आई हेट यू फॉर इट, आपकी वजह से मुझे ये चोट लगी या मेरे शरीर के अंग को ये हो गया, लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ तो चोट किसको लगी? तो शायद उनकी गलती की वजह से मेरे शरीर को तो चोट लगी, लेकिन मुझे चोट किसकी वजह से लग रही है? मुझे चोट तो अपनी वजह से लग रही है। तो देन व्हाट हैपेंस, दैट नेगेटिविटी जो हम दूसरे के प्रति फील कर रहे हैं, बिकॉज इसमें प्रोसेस क्या है अंदर, कि जो हम दूसरे के प्रति वो नेगेटिविटी फील कर रहे हैं उसको आई हैव टू, और ऑप्शन क्या है? और माफ हम किसके लिए कर रहे हैं? से एक तो या तो फिजिकल पेन है, अगर मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम है वो फिजिकल पेन हो गया, लेकिन साथ साथ मैंने अपने को क्या हार्बर कर दिया, इमोशनल पेन भी कैरी किया। अब जो वो इंसिडेंट होता है वो तो एक बार होता है, बट मैं उसको अंदर ही अंदर अगेन रिलिव करते जाते हो, तो ज्यादा पेन कौन दे रहा? तो उस समय इफ मतलब इसमें बड़ा बनना या क्या कहे इसको, लेकिन ये अपने लिए ही और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे साथ। अगर मेरे साथ कुछ गलत हुआ है एंड इफ आई होल्ड इट विद मी, द लॉस इज ओनली माइन, आई हैव नो अदर चॉइस एक्चुअली। मे बी इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ नॉलेज एंड एनलाइटनिंग, लेकिन आई हैव नो अदर चॉइस देन टू फॉरगिव इफ आई वॉन्ट टू लीड अ हेल्दी लाइफ आगे। नहीं तो मेरी जो बाकी जीवन है वो सिर्फ दर्द में बीतेगी, और ऐसी जीवन की फिर क्वालिटी का क्या?
1: बिल्कुल। और यहाँ पीयर प्रेशर, यहाँ सोसाइटी, समाज एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। हम क्यों नहीं समझ पाते, और पूरा समाज जो है वो जिसके साथ ये घटा है उसे बार बार बार बार वो याद दिलाता जाता है कि आपके साथ क्या घटा है।
0: एब्सोल्युटली। और वो एक रबिन हो जाता है कि आपके साथ अत्याचार हुआ, आपके साथ अच्छा नहीं हुआ, तो क्या होता है वो नेगेटिव। सी एवरी टाइम हम किसी के साथ इस तरह से कहते हैं वो ऑलरेडी दर्द में है, वी गिव मोर के और नेगेटिव। सारा खेल तो एनर्जी का है ना, तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि अगर कोई उस विक्टिम फीलिंग में भी है तो वो नेगेटिव एनर्जी में है, हमें क्या देना है? और तभी हमने देखा कि इफ आई एम इन दैट पीसफुल स्टेट, तो मैं उस आत्मा को भी वो शांति की वाइब्रेशन, वो पावरफुल वाइब्रेशन देकर उसको उस दर्द से बाहर निकलने में मदद करूं।
1: पेन में हूँ,
0: अगेन अपने आप को समझाना पड़ेगा कि मैं जो एक अगेन मैं विक्टिम हूँ, इस फ्रेम ऑफ माइंड से निकलना पड़ेगा। मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ है या मेरे साथ कुछ ऐसा हादसा हो गया है, वो एक बार हो गया है, ठीक है, अब मुझे विक्टिम बनकर कितना समय चलना है? दिस आई विल हैव टू आस्क, बिकॉज अदरवाइज मैं पूरी जीवन चल सकती हूँ विद दिस थॉट कि मैं विक्टिम हूँ, यू नो, और वो जीवन फिर क्वालिटी बहुत दर्द वाली होगी। तो उससे बाहर निकलना होगा कि मैं विक्टिम हूँ, एक इंसिडेंट था, ओवर, आई हैव टू मूव अहेड, विक्टिम वाली फीलिंग से बाहर निकलना होगा। और बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि जीवन है, जीवन की यात्रा में चीज़ें आएंगी, ये होता है, ऐसी चीज़ें होंगी, अगर कोई ऊपर नीचे बात हो जाती है, आई हैव टू मूव ऑन टेकिंग इट, कि इट्स अ लेसन विच हैज़ कम फॉर मी, आई हैव टू लर्न फ्रॉम इट, मूव ऑन, आई हैव अ चॉइस। जैसे कई लोगों की आदत सी हो जाती है कि जो उनको मिलता, जहाँ वो बैठते, जिसके साथ बात करते, वो वापस वही बात दोहराना शुरू कर देते हैं। आपको पता है मेरे साथ क्या हुआ? You know, even not, we're not talking of really, you know, victims on some big...
1: I can talk about myself, yeah. At times we start sharing, actually, itna zyada.
0: Aapko pata hai mere saath kya hua. And wo ek record ki tarah play hota jata hai. Ke jahan jahan baithe logon ke saath, apna, jaise bolte hai na, apna rona rona shuru kar dete hai. Ke mere saath kya hua, mere saath kya hua. We are not able to move ahead. To mere saath jo hua... वो हुआ, लेकिन मैं जितनी बार उसको रिपीट करती हूँ और जितनी बार वो एनर्जी अपने अंदर क्रिएट करती हूँ, तो वो कितनी बार हो जाता है। सो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? इवन पहली बार जो किसी ने मेरे साथ कुछ किया गलत, लेकिन उसकी जो फीलिंग थी वो तो मैंने ही क्रिएट की, लेकिन ये जो बार बार मैं क्रिएट करती हूँ, ये किसने क्रिएट की? मैंने की। तो आई हैव टू अंडरस्टैंड थिंग्स हैपन, I have to move on. वो एक रिकॉर्ड प्लेयर जैसे अटक जाता है ना नीडल, वहां पे उसी लाइफ के उस सीन पर आकर हम अटक जाते हैं और उसी सीन को बार बार दोहराते
1: रहते हैं। लेकिन बहुत मुश्किल होता है उसे बाहर निकला, बिकॉज इट्स काइंड ऑफ अ विशियस सर्कल। अगेन शायद एक बार हमने पेन की बात की थी, तो एडिक्शन हो जाता है या वट एवर इट इज। इट इज यू नो एट टाइम्स आई हैव सीन पीपल एक्चुअली गेटिंग इन टू इट, और वो निकलते ही नहीं, निकलना ही नहीं चाहते। और वो उस विक्टिमाइज्ड, जो खासकर जो ज्यादा ट्रामा से गुजरे होते हैं, वो तो वो कौन सी विल पावर है, कौन सी ऐसी बात है जो हम एक कोशिश कर सकते।
0: मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, और जो हुआ दैट इज नाउ ओवर। अब मुझे फोकस सिर्फ किस पर करना है कि आगे क्या, क्योंकि पास्ट ठीक है वॉज नॉट वेरी नाइस, लेकिन मुझे फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए अंदर की स्थिति को ठीक करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर मेरी स्थिति ठीक नहीं होगी तो आगे की परिस्थिति भी ठीक नहीं होगी, एंड आई कंटिन्यू टू लिव इन दैट पेन। जैसे कई बार हमारे पास कई ऐसे पेरेंट्स आते हैं या फैमिलीज आती जिनके घर में कुछ बात चल रही है, लाइक लेट्स से बच्चा डिप्रेशन में है, या किसी बच्चे का डिवोर्स का कुछ चल रहा है, कुछ भी इस तरह का एक बहुत बड़ी बात होती है उस परिवार के लिए। तो सबसे पहली चीज जो हम उनके साथ शेयर करते हैं, स्टॉप डिस्कसिंग दिस इन द हाउस, स्टॉप इट, टोटली स्टॉप इट। क्योंकि जब तक आप उसको डिस्कस करते रहेंगे, क्योंकि एंडलेस है वो जो डिस्कशन होती है। लेट्स से कई पेरेंट्स हैं जिनकी बेटी घर आई है, यू नो अपने हस्बैंड से अलग होकर आ गई है, या वो प्रोसेस में चल रहे हैं। अब उस बेटी को उससे बाहर निकलना है, लेकिन सारा दिन घर में डिस्कशन क्या होती है,
1: वही हो रही होती है,
0: वही डिस्कशन हो रही है। तो हम उससे बाहर निकल रहे हैं या उसके अंदर और भी घुस रहे हैं, तो हमें इतना स्टॉप करना है कि हमारे थॉट में भी ना वो बात आए। लेकिन हम तो पूरा टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं, या वो ऐसा है, वो ऐसी है, यू नो दैट होल डिस्कशन। और जब भी फैमिली आती है, रिलेटिव्स आते हैं, क्लोज फ्रेंड्स आते हैं, अगेन दैट्स द ओनली टॉपिक।
1: और बार बार उससे क्या है, वो रिजेंटमेंट, कहीं वो मेरे ख्याल से थॉट खत्म भी होने वाला हो, क्योंकि वायुमंडल में इतना ज्यादा वो फैला हुआ हो। एंड नाउ आई कैन क्लियरली सी इट, यू नो कि हम विजुलाइज कर सकते हैं कि व्हाट रियली हैपेंड।
0: एब्सोल्युटली। तो वो पूरे घर का और उस फैमिली का एनर्जी लेवल क्या हो जाएगा। तो वो बेटी या वो बच्चा अगर निकलना भी चाहे उससे, हम ही निकलने नहीं दे रहे, यू नो हम भी बार बार। और बहुत हम उनको यही कहते हैं कि सिंपथी नहीं चाहिए, नॉर्मल, जस्ट ट्रीट द पर्सन एज नॉर्मल। क्योंकि जितनी बार आप सिंपथी देंगे, आप फिर उनको वही याद दिला रहे हैं कि आप विक्टिम हैं, यू नो। तो एक तो मैं खुद फील कर रही हूँ कि मैं विक्टिम हूँ, और दूसरा सब मुझे फील करा रहे हैं कि मैं विक्टिम हूँ बाय बार बार सेइंग बेचारे आप।
1: आई थिंक समवेयर यू नो व्हाई बाकी सब लोग भी हम क्यों फील करवाते हैं, बिकॉज वी ऑल्सो लाइक द सेंस ऑफ पावर दैट यू नो वी आर एबल टू हेल्प समबडी, बिकॉज वी डोंट वी वुड लाइक to help somebody,
0: right? But we're not really helping.
1: Yes,
0: you know, a help at that time would mean empowerment. Lekin baar baar keh kar ke hai aapke sath aisa hua, bichare aap, ab aapka kya hoga, ya even ye kehna koi baat nahi sab theek ho jayega, matlab it's not to hurt anyone, lekin koi baat nahi sab theek ho jayega wo theek hai, but by saying that we're saying ki abhi sab galat hai, you know. To jitna hum normalcy ko create kar sake, सब ठीक हो जाएगा ये बोलने की बात नहीं है, सब ठीक क्रिएट करना है घर के वायुमंडल में। और बिल्कुल वायुमंडल ऐसा हो जाना चाहिए, बातचीत करने का तरीका ऐसा हो जाना चाहिए जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, देन वी आर एबल टू फिनिश इट।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: ओम शांति।
1: ओम शांति।

नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर सभी श्रोताओं का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं आपके कम्युनिटी मेंबर मंजू चंदीला और हम सबके कल्याण के लिए हम शिव पुराण सुनवा रहे हैं, क्योंकि भगवान शिव कल्याणकारी हैं, मंगलकारी हैं और हमारा उद्देश्य यही है कि हर मानस का मंगल हो, कल्याण हो, सबके दुखों का विनाश हो सके। इसीलिए इसी उद्देश्य को लेकर हमने यह ग्रंथ आरंभ किया है और इसको सुनवाने के